0: अधिकार और कर्तव्य को समझते भारत के जेन अल्फा की दूसरी गवाही भी उत्तर प्रदेश से आई है। इसके लिए अब कन्नौज चलते हैं।
1: कई दिनों से समस्याएं थी जिनको लेकर हम झेल रहे थे, सह रहे थे, लेकिन अब कुछ ज्यादा ही ओवर हो गया था
2: जी।
1: तो उसके लिए हमने ये किया क्योंकि परेशान हो चुके थे, और एक नहीं, क्लास 6 के जूनियर से लेकर क्लास 12 के बच्चे सभी परेशान हैं।
0: कन्नौज के जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ने वाले ये वो जैन अल्फा हैं जो अपनी समस्याओं के निदान के लिए सड़क पर नहीं उतरे, बल्कि खुद को ही एक कमरे में बंद कर लिया। इनका वीडियो वायरल हुआ, मीडिया पहुंचा। इन छात्रों ने अपनी पहचान छिपाने के लिए मुंह ढक लिया, ये इनका अधिकार है। लेकिन अपने दूसरे अधिकारों के लिए इन्होंने खुद को क्लास में लॉक करने का ऐसा तरीका लगाया कि प्रशासन को जागना पड़ा। पहले शिकायत सुनिए, फिर समाधान देने पहुंचे जिलाधिकारी को।
1: मैं इसमें खाने की सही व्यवस्था नहीं होती, हाउस में लाते हैं। खाने की व्यवस्था इसलिए नहीं क्योंकि 550 बच्चे हैं वहाँ पर, ना तो फैन लगा है ना कोई फैन, वैसे क्या नाम गैस फैन नहीं लगे हैं, तो सफोकेशन होती है। खाते हैं वहाँ पर, बच्चे भी नहीं बैठ पाते, 550 बच्चे हैं, इतनी जगह नहीं है। तो हम लोग हाउस में ले आते हैं तो ये कहते हैं कि तुम लेटरिन में खाते हो, उसी का सूंघते हो, उसी में खाते हो, उसी में बैठ कर खाते हो, गंदे गंदे सब खाना। ऐसा कच्चे चावल, चावल रखे हैं हम दिखाते हैं, चावल कच्चे बिल्कुल, जो गले से नीचे ना होते। हम लोग करीब 100 से 100 बच्चे हैं।
2: कितनी देर से बंद है
1: सर? हम कल
2: 4 बजे से,
1: कल शाम से हम लोगों ने खाना नहीं खाया।
2: स्कूल प्रशासन की सूचना दी थी इस बात की आप लोग बंद है अंदर?
3: सूचना सबको दी, आए मतलब आए विद्यालय।
1: हमारी डिमांड है कि डीएम सर आए और हमसे बात करें आकर।
4: इस विद्यालय में बच्चों को कुछ अपनी कठिनाइयां थी, जिसमें हम लोग आज गए और उनके बीच वार्ता की। जहां उन वो रह रहे थे उनके हॉस्टल में, उन्हीं के बीच में हम लोग बैठे। सभी बच्चे अनुशासित हैं, अच्छे बच्चे हैं, और मेरिट में ये लोग सेलेक्ट होकर के यहाँ आए हैं। विधिवत रूप से उनको सुना गया है। जो उनकी कठिनाइयां थी उनके बारे में हम लोग दूर करेंगे उनको, और सरकार हर तरीके से विद्यार्थियों के साथ है और मेधावी विद्यार्थियों के साथ भी है। किसी प्रकार की कोई कठिनाई इन लोगों को नहीं होने देंगे।
5: कहीं नारा लग रहा है कि कलेक्टर साहब का आना हो को आना होगा, कहीं नारे लगाए जाते हैं, हमारी बातें आपको सुननी होंगी। ये हमारे वो बच्चे हैं जिन्हें नागरिक शास्त्र का पाठ पढ़ाया जाता है, लेकिन ये पहली बार उन पाठों का प्रयोग भी कर रहे हैं। ये हमारे वो बच्चे हैं जिन्होंने आंदोलन के बारे में पढ़ा है, लेकिन पहली बार ये बच्चे खुद आंदोलन कर रहे हैं। अब दो चीजों की जरूरत है। पहले, ऐसे हर आंदोलन में बच्चों की मांगें सुनी जाएं, उनकी बातों को पूरा किया जाए, और दूसरी जरूरत ये कि सरकारें देखें कि आखिर क्यों अब भी हमारे बच्चों के स्कूलों की स्थिति खराब है।
0: अधिकार और कर्तव्य को समझते भारत के जैन अल्फा की तीसरी गवाही राजस्थान के अलवर से आई है।
6: 4 साल हो गई, 3 ईयर स्कूल बने हुए, मात्र 5 टीचर है,
7: जो भी थर्ड ग्रेड के,
0: अधिकारियों के सामने मर्दानी बनकर अपने हक को बुलंद करती एक छात्रा बोलती, और तभी
6: मजाक बना रखा है स्कूल को, ना इसमें बैठने लायक एक भी कमरा है, कितने
7: मैदान
6: है, चार साल हो गए खाते में, कलेक्टर को मैंने खुद अपने लिखित में कागज दिया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई।
7: सही बात,
6: अगर आपके बच जाते तभी आप यही सुविधा रखते क्या?
0: ये बच्चे चीख नहीं रहे, बस उन अधिकारियों के कानों में सामने खड़े होकर अपनी आवाज पहुंचा रहे, जो एसी कमरों से अब तक बहुत कम निकलते रहे, जो फाइलों में ऑल इज वेल लिखते रहे, उन्हें अब सुनना भी पड़ रहा है, बदलाव करना भी पड़ रहा है।

0: पुलिस की गाड़ी भी आ चुकी है और पुलिस की गाड़ी आ चुकी है और
1: जिस मानसून सत्र में हंगामे की वजह से संसद का कामकाज भूल गया, वहाँ इस मानसून में राजस्थान के अलवर में होता यह हंगामा कामकाज धुलने का नहीं, कामकाज को सुधारने का। ये बच्चे अलवर जिले के थाना गाजी में जोधावास गांव की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के हैं, जो कुछ बड़ा या अलग नहीं मांग रहे, बस ये चाहते हैं स्कूल दिया है तो सुरक्षित क्लासरूम हो, टीचर हो, स्कूल आने का रास्ता साफ हो, सड़क बने।
2: हमारी स्कूल को सीनियर हुए 4 साल हो गई, मात्र 5 टीचर है, जो थर्ड ग्रेड के जो बड़ी सीनियर क्लासों को पढ़ाते हैं, सेकंड ग्रेड का बस मात्र 1 टीचर है और जिसको भी कुछ भी होगा जो 400 रखा है और लेक्चरर
3: हमारे विद्यालय में विद्यार्थियों को पहुंचने के लिए अच्छा रास्ता है, फुले हमारे जो सहपाठी है वो नदी क्रॉस करके आते हैं, तो हम चाहते हैं कि उनको नदी क्रॉस करने के लिए पुलिया का निर्माण किया जाए।
1: प्रदर्शन के बाद अधिकारियों ने पहले यहां तुरंत 7 टीचर और लगाकर शिक्षकों की कमी को पूरा किया, लेकिन इसके बाद भी धरना खत्म नहीं होता।
4: सभी से वार्ता की गई, 4 घंटे वो रुके, तो पहले तो ये है कि वो एक सीनियर स्कूल है, वहाँ 6 अध्यापक थे, तो उसकी वजह 7 अध्यापक वहाँ और लगा दिए मौके पर ही, और 13 अध्यापक अब वहाँ 170 बच्चों के ऊपर हो गए।
1: बच्चे पूरा हिसाब चाहते हैं, इनके स्कूल के क्लासरूम की हालत देखिए, जहाँ पढ़ना खतरे से खाली नहीं, यहाँ बच्चे बाल बाल बचते हैं जब एक क्लासरूम में हादसा हो जाता है, इसीलिए धरना देना जारी रखते हैं। अधिकार और कर्तव्य को समझते भारत के जैन अल्फा की चौथी गवाही मध्य प्रदेश के उज्जैन से आई। छात्राओं के नारों की गूंज उज्जैन में गूंज रही, 700 से ज्यादा बच्चियां उज्जैन के सर्राफा कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हैं, जो अभी महाकाल मंदिर के पास जयसिंहपुरा में चलता है। अब इनके स्कूल को संदीपन विद्यालय में मर्ज किया जा रहा है, दलील ये कि स्कूलों की गुणवत्ता और शिक्षा में सुधार लाया जाएगा। छात्राओं का कहना है कि अब जिस स्कूल के साथ मर्ज किया जा रहा है वहां की दूरी ज्यादा है, रास्ते में इन्हें दिक्कत होगी, इसीलिए कलेक्टर दफ्तर के बाहर आकर धरना दे दिया। कलेक्टर शिकायत सुनने आए नहीं, जिला शिक्षा अधिकारी को भेज दिया।
5: स्कूल जयसिंहपुरा में और हमारा स्कूल शिफ्ट हो रहा है, हम इतनी दूर नहीं जा सकते, हमारे मम्मी पापा हमको परमिशन नहीं देंगे, वो बहुत दूर है और उधर का इलाका भी बहुत मतलब बहुत खराब है, हम कैसे जाएंगे।
6: लड़कियां गांव से आती है 10-10 किलोमीटर दूर से यहाँ तक, और छोटे और इतनी दूर से अगर वो दाऊद खेड़ी जाएंगे तो कब पहुंचेंगे, रात को 10 बजे, अगर बीच में अगर कोई दुर्घटना हो गई उनके साथ तो जिम्मेदार क्या, कलेक्टर रहेगा या कोई और रहेगा।
7: हमारे मम्मी पापा ने बोल दिया अगर सराफा स्कूल में दावत खेड़ी जाएगा तो हमें पढ़ाएंगे ही नहीं वो बिल्कुल भी।
8: अभी एकदम निर्णय नहीं होगा कि वहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, शासन के भी निर्देश है कि जिला स्तरीय मॉनिटरिंग समिति निर्णय ले, तो जिला स्तरीय मॉनिटरिंग समिति की बैठक शीघ्र होने वाली है, जिसमें पालकों के प्रतिनिधि को सूचित किया जाएगा, वो भी आएंगे और वो भी अपना पक्ष रखेंगे, उसके बाद जो निर्णय होगा वो मॉनिटरिंग समिति लेगी।
1: देश के तमाम राज्यों में होते ये प्रदर्शन इस बात को साबित करते हैं, सरकारों की तमाम कोशिश के बाद व्यवस्था बुनियादी जरूरतों को स्कूली ढांचे में पूरा करने में नाकाम है, जिसकी वजह से अब बच्चों को मैदान में उतरना पड़ रहा है।
9: राजस्थान में भर्तियों का भ्रष्टाचार खुला, जहां योग्य किनारे हो जाएं, अयोग्य जनता की सेहत से खिलवाड़ करने लगे, फर्जी डिग्री लगाकर डॉक्टर बनकर मरीजों का इलाज करने लगे, 3 डॉक्टर गिरफ्तार किए गए, 20 से 30 लाख रुपए में फर्जी डिग्री इन्होंने बनवाई थी। राजस्थान एसओजी इस पूरे मामले की तह तक पहुंचने में जुटी है।

0: चेहरा छुपा रहे ये तीनों राजस्थान के वो फर्जी डॉक्टर हैं जो कई वर्षों से मरीजों की जान से खिलवाड़ करते रहे, दवाइयां उनके लिए लिखते रहे। आशीष शर्मा फर्जी डिग्री वाला डॉक्टर, करौली के सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ये मरीज देखता था।
1: आदेश दिनांक 18/12/2023 के तहत हमारे पास एक लिस्ट आई थी, उस लिस्ट में डॉक्टर आशीष का सीरियल नंबर 11 पर है। उसकी रैंक एग्जाम में एफएमजी इंटर्नशिप रैंक 245 थी।
0: नरेश रौलनिया फर्जी डिग्री वाला डॉक्टर, उदयपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज से इंटर्नशिप करके कोटपुतली के पल्स अस्पताल में डॉक्टर बन गया। जयपुर के मुरलीपुरा में ये श्री नारायण अस्पताल चला रहा डॉक्टर राजेंद्र यादव है, जो चीन से 2006 से 2012 के बीच एमबीबीएस करने का सर्टिफिकेट लेकर आया। साल 2012 से लेकर 8 बार इसने राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड की एफएमजी स्क्रीनिंग परीक्षा देने की कोशिश की, पर एक बार भी पास नहीं हो पाया। फिर इसने खुद ही नकली सर्टिफिकेट छपवा कर 29 लाख में राजस्थान मेडिकल काउंसिल से मरीज देखने का लाइसेंस हासिल कर लिया। एसओजी की गिरफ्त में आए राजेंद्र यादव के अस्पताल में जब आज तक संवाददाता खबरदार करने पहुंचते हैं, तो यहां अस्पताल को और आगे बढ़ाने का काम चलता मिलता है। डॉक्टर की गिरफ्तारी के बाद भी अस्पताल खुला हुआ है। फर्जी डॉक्टर और उसकी डेंटिस्ट पत्नी 6 साल से यहां मरीज देख रहे थे।
2: तो कब उनको अरेस्ट की पुलिस ने?
3: 4 रोज पहले।
2: 4 रोज पहले? अब पता था आपको कि उनके पास नकली डिग्री है?
3: नहीं,
2: किसी को पता नहीं था?
3: नहीं।
0: डॉक्टर की फर्जी डिग्री वाले आशीष शर्मा ने कजाकिस्तान से साल 2021 में एमबीबीएस करने का सर्टिफिकेट बनवाया था। भारत में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड की एफएमजी स्क्रीनिंग परीक्षा 3 बार देने के बावजूद वो पास नहीं हो सका। इसके बाद आरोपी ने शुभम गुर्जर के जरिए 25 लाख रुपए देकर एफएमजी परीक्षा का फर्जी सर्टिफिकेट बनवाया। शुभम गुर्जर भी पहले 25 लाख में फर्जी सर्टिफिकेट बनवाता था। हैरत की बात है कि दोनों ही राजस्थान सरकार के करौली मेडिकल कॉलेज में मरीज देख रहे थे। दोनों गिरफ्तार हो चुके हैं।
4: आदमी जितने पैसे करोड़ों रुपए खर्च करके वो बाहर अपनी एमबीबीएस करता था, और यहाँ पे जो किंग पिन्स हम लोगों ने जिनको अरेस्ट किया है, उनके इंटरोगेशन से 25 से लेके 35 लाख 40 लाख तक ये अमाउंट लेते थे सर्टिफिकेट अवेलेबल कराने का।
0: नरेश तो इनसे भी आगे निकला। तजाकिस्तान से फर्जी डॉक्टरी की डिग्री हासिल कर पल्स हॉस्पिटल कोटपुतली के इमरजेंसी वार्ड में काम कर रहा था। वो बिना एफएमजी स्क्रीनिंग परीक्षा पास किए और बिना राजस्थान मेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रेशन के मरीजों का इलाज करता रहा।
4: फेक एफएमजी एग्जाम के जो सर्टिफिकेट वाला जो स्कैंडल हम लोगों ने खोला है, उसमें करीब 30 के करीब हम डॉक्टर्स और अनएसोसिएट्स को इसमें अरेस्ट कर चुके हैं, और हमारे पास में करीब 80-90 और अधिक इसके अलावा भी कुछ नाम हमारे पास में चल रहे हैं जो इस सारे सिस्टम में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व रहे हैं।
0: राजस्थान एसओजी के मुताबिक इस मामले में अब तक 100 से अधिक फर्जी डॉक्टर की पहचान की जा चुकी है, जिन्होंने कथित तौर पर फर्जी स्क्रीनिंग प्रमाण पत्र तैयार करवाया है। इन्हें पकड़ना आसान नहीं हो रहा था क्योंकि इन्होंने सारे फर्जी सर्टिफिकेट ऑफलाइन बनवाए हैं। इस मामले में राजस्थान मेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रार डॉक्टर राजेश शर्मा समेत 4 कर्मचारी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं।
5: राजस्थान के अस्पतालों में मरीज देखने वाले फर्जी डॉक्टरों के पकड़े जाने का सिलसिला जारी है। अब तक 35 से ज्यादा फर्जी डॉक्टर पकड़े जा चुके हैं, मगर अभी भी 80 से ज्यादा फर्जी डॉक्टर अस्पतालों में मरीज देख रहे हैं और मरीजों के जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कैमरा मनीष के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक।
6: उत्तराखंड में हुए एक और टनल एक्सीडेंट की यह खबर है। चमोली में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की टनल में कल एक हादसा हुआ। 7 मजदूर इस हादसे में अब तक मारे गए, 3 लापता हैं, 12 मजदूर घायल हैं। लापता मजदूरों की तलाश हो रही है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों उत्तराखंड में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए जो टनल्स बनाई जा रही हैं उनमें हादसे हो रहे हैं, और यह हादसे आखिर कब तक होते रहेंगे?
7: बार बार उत्तराखंड की सुरंगों में
3: क्यों हो रहे हैं इतने बड़े हादसे? विकास की राह में विनाश का इंतजाम कौन कर रहा है? क्या उत्तराखंड की नदियों में जरूरत से ज्यादा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं? उत्तराखंड के कच्चे पहाड़ों में बड़ी बड़ी सुरंगें खोदकर विनाश कौन ला रहा है? उत्तराखंड में एक और मौत की सुरंग बनी है चमोली जिले के पीपलकोटी की टीएचडीसी की सुरंग। तस्वीरें बता रही हैं कि सुरंग के अंदर इस वक्त क्या हालात हैं। पूरी स्थिति समझने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि यह हादसा कहां और कैसे हुआ। उत्तराखंड के चमोली जिले के पीपलकोटी में टीएचडीसी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन रहा है। ये प्रोजेक्ट अलकनंदा नदी पर बन रहा है जिसकी क्षमता होगी 444 मेगावाट। बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट का 80% काम पूरा हो चुका है। इस प्रोजेक्ट के तहत एक 65 मीटर ऊंचा डैम बन रहा है जिसमें दो सुरंगें होंगी। पहली है हेड रेस टनल यानी HRT जिसकी लंबाई है 13.4 किलोमीटर और दूसरी है टेल रेस टनल TRT जिसकी लंबाई है 3.04 किलोमीटर। गुरुवार को जो हादसा हुआ वो इसी TRT सुरंग में हुआ है। अब ये समझिए कि यह हादसा कैसे हुआ। इस इलाके में जमकर बारिश हो रही है, मॉनसून का सीजन है और आसमान से आफत बरस रही है। कई जगहों पर भूस्खलन और बादल फटने की घटनाएं भी हो रही हैं। इन हालात में भी इस टनल में काम चालू था। बताया जा रहा है कि गुरुवार को अचानक से सुरंग में 150 मीटर दूर तेज आवाज के साथ भारी भूस्खलन हुआ। मलबा, पत्थर और पानी तेज गति से टनल के अंदर घुस गए। उस वक्त वहां पर कुछ मजदूर काम कर रहे थे। इसी हादसे में कुछ मजदूर मलबे में दब गए और बाकी फंस गए। टनल में कई जगह से मलबा आने से ऑक्सीजन लेवल बेहद कम हो गया था। बताया जा रहा है कि टनल के अंदर मलबा 2 दिन से आ रहा था, लेकिन इसके बाद भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ने इस पर ध्यान नहीं दिया और काम चालू रखा। इसके बाद तो टनल में लगातार पानी भरता गया। हालांकि हादसे की सूचना मिलते ही राहत और बचाव दल मौके पर पहुंच गया था। ये तस्वीरें बता रही हैं कि अंदर क्या हालात थे। बताया गया कि सुरंग के अंदर कुल 22 मजदूर फंसे हुए थे। 7 मजदूरों की मौत हो गई है, 3 अभी भी फंसे हैं। 12 मजदूरों का अस्पताल में इलाज चल रहा है।
7: गुरुवार शाम को 6:30 बजे के आसपास पीपलकोटी विष्णुघाट परियोजना की जो TSDC की ये टनल है, TRT टनल, इसके अंदर 1500-1600 मीटर के करीब में एक लूज जो है टनल के अंदर गिरा और उसके बाद एक बहुत जबरदस्त, यहाँ पे बताया जा रहा है, हवा का झोंका और पानी का बहुत बड़ा रिसाव हुआ और उसने कुछ लोगों को तो अंदर की ओर धकेला और कुछ लोगों को बाहर की ओर धकेला। ऐसे में कुछ तो ठीक ठाक निकल चुके हैं लेकिन अभी तक 3 लोग लापता है। पता चला इस पूरे हादसे में 22 लोग यहाँ पे हताहत हुए थे, जो कुछ घायल हैं, कुछ 7 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। वहीं अभी राज्य आपदा प्रबंधन सचिव जो है विनोद कुमार सुमन, वो यहाँ पे निरीक्षण करके गए। उनका कहना है कि डीवाटरिंग करने का काम किया जा रहा है और जल्द से जल्द इस पानी को बाहर निकाला जाएगा ताकि जो 3 लोग हैं अंदर उनका रेस्क्यू हो नहीं पा रहा है, पानी भर जा रहा है। ऐसे में लगातार यहाँ पे ITBP की फोर्स है, वो लगातार आ रही है, जा रही है। जो टीमें हैं वो लगातार लगी हैं, कभी मशीनें भेजी जा रही हैं, कभी ड्रम भेजे जा रहे हैं, अलग अलग तरीके से यहाँ पे इस समय जो रेस्क्यू और बचाव के काम चल रहे हैं वो करवाए जा रहे हैं।
3: लेकिन समस्या ये है कि टनल के अंदर लगातार पानी भरता जा रहा है, इसी वजह से रेस्क्यू टीमों को दिक्कतें आ रही हैं। जैसे ही कल रात ये रेस्क्यू टीमें पहुंची तो टनल में बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ था। तुरंत इन्होंने टेम्पररी नाव बना दी, नीचे बड़े बड़े ड्रम बांधे और एक अस्थायी नाव का निर्माण किया और उसके बाद देखिए कैसे इन जुगाड़ की नावों से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया।
8: कल तक काफी लोगों को निकाला हम लोगों ने, जिसमें से 12 लोग को सुरक्षित बचाया गया है, 7 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है, 3 लोग अभी लापता चल रहे हैं जिनको खोजने का काम चल रहा है। पानी का लेवल ज़्यादा होने से थोड़ी सी समस्या आ रही है हम लोगों को। डीवाटरिंग पंप अभी 5 काम कर रहे हैं, तो डीवाटरिंग पंप की संख्या को बढ़ाने के लिए कहा गया है TSDC से, वो पंप मंगा रहे हैं NTPC के माध्यम से। और बाकी हमने कहा जहाँ भी पंप जितने भी अवेलेबल हैं पंपों की संख्या बढ़ाइए, क्योंकि अभी जिस गति से पानी हम निकाल रहे हैं लगभग उसी गति से पानी ऊपर से आ रहा है, इसके कारण जो है थोड़ी समस्या हो रही है। अभी मैनुअल तरीके से हम राहत बचाव कर्मी दल जाके ढूंढ कर रहे हैं, खोजबीन कर रहे हैं, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिल पाई है अभी तक।
3: अभी सबसे पहली प्राथमिकता 3 लापता लोगों को खोजने की है, लेकिन टनल के अंदर बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि करीब 1 किलोमीटर के इलाके में पानी भरा है और कहीं कहीं तो पानी 5 फीट तक गहरा है। पानी में बहुत सी गाद और मलबा है, कीचड़ है, इसी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में समस्याएं हैं। पहली कोशिश यही है कि टनल के अंदर से पानी को किसी तरीके से बाहर निकाला जाए।
9: कठिनाई जैसे मैं बता रहा हूं आपको कि पानी का एरिया जो है बहुत लंबा है, लगभग 1 किलोमीटर एरिया है जो पानी से भरा हुआ है और उसमें हाइट जो है 3-4 फीट तक जा रही है, कहीं कहीं पर 5 फीट भी है। तो उस पर्टिकुलर एरिया में 1 किलोमीटर लंबा प्लस 3-4 फीट गहरा पानी है, और वो केवल पानी नहीं है, वो स्लजी वाटर है, तो उसमें जो सर्च करने के लिए दिक्कत आ रही है। बट हम अपने ज़्यादा से ज़्यादा ट्रूप्स को यूज़ करके और मैक्सिमम एरिया जो है मैनुअली सर्च करके क्लियर कर रहे हैं।
10: क्या लग रहा है कब तक ये हो पाएगा या फिर पानी कैसे भर रहा है इतना ज़्यादा पानी?
9: जी देखिए, मोस्ट फेवरेबल कंडीशन यही होगी जब पानी कम होगा। तो पानी कम करने के लिए जैसा मैंने बताया, संस्थान ने जो मोटर्स लगाई हैं वो सही कार्रवाई करें। बट हो क्या रहा है कि जो इसका दूसरा सोर्स है जहाँ से ये कोलैप्स हुआ है, वहाँ से पानी कंटिन्यूसली आ रहा है, तो जितना हम निकाल रहे हैं उतना ही आ रहा है, तो ये कंडीशन थोड़ा सा हमारे लिए डाइसी हो रही है इस वजह से।
10: कितनी टीम मेंबर एनडीआरएफ यहाँ पे लगी हुई है?
9: देखिए, एनडीआरएफ की यहाँ पर 3 टीमें वर्तमान

0: पर जाकर रेस्क्यू का काम उन्होंने देखा। घायलों से मुलाकात की। अब वो कह रहे हैं कि राज्य की सुरंगों की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि सुरंगों में लगातार हादसों को कैसे टाला जाए।
1: एक और नहीं बताएंगे, टनल दुर्घटनाएं हमेशा हो रही, सिलक्यारा हुई, ये हुई, इससे पहले टनल की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार क्या संबंधित एजेंसी को कोई निर्देश देगी?
2: बिल्कुल निर्देश देंगे, और हमारे लिए जो भी कार्मिक जो भी काम करने वाले हैं उनकी सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। बिना सुरक्षा के, जब तक पूरी सुरक्षा के प्रबंध नहीं हो जाते तब तक इन कामों को भी आगे नहीं बढ़ाएंगे।
0: गढ़वाल से बीजेपी के सांसद अनिल बलूनी भी पहुंचे, टनल के अंदर गए, पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन देखा। सबसे ज्यादा समस्या यही आ रही है कि टनल में लगातार पानी भर रहा है। बड़े बड़े पंप लगाकर पानी को निकाला तो जा रहा है, लेकिन जितना पानी निकलता है उतना फिर से सुरंग में आ जा रहा है।
3: वाकई बड़ी मुश्किल परिस्थितियों में अंदर काम हो रहा है, और आप सब लोग जानते हैं अभी ऑपरेशन जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है, और हमारे NDRF और SDRF के जवान और बाकी जो हमारा स्थानीय प्रशासन है सब मिलकर अंदर, क्योंकि काफ़ी पानी भरा हुआ है और काफ़ी मुश्किल परिस्थितियाँ हैं, उन सब में काम कर रहा है। अभी बताया जाता है कि 3 लोग मिसिंग की जानकारी जो है वो सब है, हम अंदर देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति मिल सके हमें, और सारे लोग बातचीत कर रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं। अभी प्रशासन पूरी ताकत से लगा है, आगे पूरे आगे तक जाने की तैयारी में है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में आगे जाके कुछ अच्छी सूचना भी हम लोगों को मिल सके तो अच्छी बात है।
0: इन हालात में सबसे ज्यादा समस्या मौसम को लेकर भी है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, बारिश रुकी नहीं रही। ऐसे में डर ये भी है कि कहीं और ज्यादा भूस्खलन न हो जाए। अभी तो पहली प्राथमिकता उन 3 लापता मजदूरों को खोजने की है।
4: आ जाओ।
0: कमल नयन सिलोड़ी, चमोली, आज तक।
5: छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।
6: हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हाँ और जिंदाबाद रहेगा।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: जनता ने जिनको तीन तीन बार नकारा, अब वो गाली गलौज पर उतर आए हैं, ओछी राजनीति पर उतर आए हैं। राहुल गांधी जी की भाषा अमर्यादा और अहंकार से भरी नजर आती है। राजनीति में मतभेद लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन अशोभनीय टिप्पणी, संवैधानिक पदों का अपमान, ये एक आदत सी बन गई है राहुल गांधी जी की। अब तो लगता है राहुल गांधी जी का पालन पोषण और संस्कार, इस पे प्रश्न चिन्ह उठने लगे हैं। कांग्रेस की मानसिकता उजागर हो रही है, भारत की गौरवशाली राजनीतिक परंपरा रही है, और इस गौरवशाली राजनीतिक परंपरा का अपमान बार बार कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने किया, विशेषतौर पर राहुल गांधी जी ने किया है। आप कल्पना कीजिए, एक महिला विदेशी राष्ट्रीय अध्यक्ष पर अभद्र, अमर्यादित और ओछी टिप्पणी करना, ये राहुल गांधी जी और कांग्रेस की मानसिकता दिखाती है।
1: प्रधानमंत्री जी हमारे जहां जाते हैं, जिस ढंग से मिलते हैं, राहुल गांधी ने वही तो उठाया था। राहुल गांधी ने तो और कुछ कहा नहीं, किसी और ने कहा हो तो उसकी जिम्मेदारी राहुल गांधी की तो नहीं हो सकती। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, भारत की विदेश नीति इस समय सबसे कमजोर और भारत के हितों के सबसे ज्यादा खिलाफ।

देश मना रहा है 80वां स्वतंत्रता दिवस। लाल किले के प्राचीर से लगातार 13वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फहराएंगे तिरंगा। पहली बार राष्ट्रीय गान से पहले गूंजेगा वंदे मातरम। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र के नाम संदेश। कहा, युवा आबादी सबसे मूल्यवान संपत्ति। 13 शहीदों समेत 89 सैन्य कर्मियों को मेंशन इन डिस्पैचेस सम्मान। नहीं थम रहा प्रधानमंत्री मोदी पर राहुल गांधी के बयान पर बवाल। राजनाथ सिंह ने बताया, लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरे का संकेत। विदेश मंत्रालय ने कहा, आदर के साथ रखनी चाहिए बात। कृष्णानगर सर्किट हाउस खाली कराने के आरोप पर महुआ मोइत्रा का हंगामा। बोली, जान लेने पर उतारू है भीड़। ओम बिरला को टैग कर मांगी मदद। अखिलेश यादव और अभिषेक बैनर्जी ने ममता सरकार पर बोला हमला। और इंडोनेशिया के तट के पास 7.7 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप। फ्लोरेंस क्षेत्र में 10 किलोमीटर गहराई पर आया भूकंप। सुनामी की चेतावनी जारी। समुद्र तट और नदी किनारे रहने वालों को ऊंची जगहों पर जाने की सलाह।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज देश आजादी का जश्न मना रहा है। आप सभी को 80वें स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। और आज हर भारतवासी के दिल में देशभक्ति का जज्बा है, गर्व है और उन वीर सपूतों को नमन है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ, अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। और अब महज डेढ़ घंटे का इंतजार है जिसके बाद देश की नजरें दिल्ली के लाल किले पर पहुंच जाएंगी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराएंगे, राष्ट्र के नाम अपना संबोधन देंगे। और इसी में नजर रहेगी कि प्रधानमंत्री किन बातों पर ज्यादा आज जोर देते हैं। हमारे साथ कई खास मेहमान भी स्टूडियो में चित परिचित आपके चेहरे मौजूद हैं। हमारे साथ आशुतोष जी जुड़े हुए हैं, संगीत रागी जी जुड़े हुए हैं, सत्य प्रकाश मिश्र जी जुड़े हुए हैं, जिन सबके साथ हम चर्चा करेंगे। सुबह से ही लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां पूरी हो चुकी है। प्रधानमंत्री के पहुंचने से पहले रक्षा सचिव, CDS, तीनों सेनाध्यक्षों के साथ रक्षा मंत्री समारोह स्थल पर पहुंचेंगे और फिर सुबह 7:30 बजे राष्ट्रगीत के साथ समारोह की शुरुआत होगी। इस बार सबसे ज्यादा इस बात पर नजर है कि इस बार राष्ट्रगीत के साथ साथ हम वंदे मातरम भी सुनने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरंगा फहराएंगे, गार्ड्स राष्ट्र सलामी देंगे, राष्ट्रगान की धुन के बीच 21 तोपों की सलामी भी होगी। और इसके बाद करीब 7:36 समझिए हर बार ऐसे ही वक्त पर होता है, प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करेंगे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पिछले 12 साल से लगातार उन्होंने लाल किले के प्राचीर से तिरंगा फहराया है, राष्ट्र के नाम संबोधन दिया है और इस बार 13वीं बार आज वो लाल किले के प्राचीर से बोलने वाले हैं। ये हर बार की तस्वीर जिसमें आप 12 तस्वीरें देख रहे हैं, इससे पहले की 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी और उसके बाद से 2025 तक की तस्वीरें आपके सामने हैं। इस बार साल 2026 में। और इस बार इस वक्त हमारे साथ सीधे संजय शर्मा जुड़ गए हैं, 80वें स्वतंत्रता दिवस की संजय बहुत शुभकामनाएं आपको भी। किस तरह की तैयारी है और किस तरह के सुरक्षा के इंतजाम है सुबह सुबह हमारे दर्शकों को दिखाइए, क्योंकि अक्सर ये चर्चा होती है कि सुबह 5-6 बजे उठकर क्या वाकई लोग देखने लगते हैं, तो इस बात का यही प्रमाण है कि अभी भी हजारों हजार लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं कि किस तरह की तैयारी है आज की।
1: जी हाँ बिल्कुल, 10,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी यहाँ लाल किला और आसपास तैनात हैं। इसके अलावा 3,000 से ज्यादा ट्रैफिक पुलिस कर्मी तैनात हैं। कुल मिलाकर 15,000 से ज्यादा पुलिस कर्मी, 4-5 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था है जहां हम लाल किले के पास खड़े हैं। पीछे लाल किले की प्राचीर दिखाई पड़ रही है और ये जो VIP पार्किंग है, यहां सभी पार्किंग में सुरक्षा के ऐसे इंतजाम हैं कि जहां AI युक्त लगभग 1,000 से ज्यादा कैमरे हैं, जिन कैमरों से सुरक्षा व्यवस्था पर निगरानी रखी जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो 4 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था है, धरती, जल और आकाश, सबकी सुरक्षा हमारे पास के दावे के साथ साथ, यानी हेलीकॉप्टर्स भी निगरानी रख रहे हैं। इसके अलावा जमीन के नीचे जहां सीवर लाइन जा रही है उसकी भी पूरी निगरानी की गई है। हर एक सीवर का जो ढक्कन है उस पर जांच के बाद स्टिकर लगाया हुआ है और यहां पर हर जगह AI कैमरे से युक्त लाल किले की प्राचीर जो पीछे दिखाई पड़ रही है, इस पर भी पुलिस कर्मी तैनात हैं और लगातार वो गश्त किए जा रहे हैं। लोगों का तांता लगातार बढ़ता चला जा रहा है और सबसे बड़ी बात, जो लाल किले से प्रधानमंत्री संबोधन करेंगे उसके पहले इस बार पहली बार ऐसा होगा कि राष्ट्रगान जनगण मन अधिनायक और राष्ट्रगीत वंदे मातरम समग्र में गाया जाएगा, यानी चारों स्टांजा के साथ। और चूंकि संसद ने पारित कर दिया है, इसके बाद यह पहला अवसर होगा जब स्वतंत्रता 80वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले के प्राचीर से वंदे मातरम की गूंज होगी। और उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री जैनजी से सीधा संवाद करेंगे, तो उनके भाषण को लेकर ऐसी उत्सुकता है और ऐसे सूत्र बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री जैनजी से सीधा संवाद करने वाले हैं, तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो जैनजी से संबंधित होगी, बहुत सारी उद्घोषणा ऐसी होगी जो जैनजी से संबंधित होगी। तो जैनजी आधारित ये लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री का भाषण होगा, यानी हेलो फ्रेंड्स वाले स्टाइल में।
0: बिल्कुल, और देखते हैं प्रधानमंत्री आज लाल किले के प्राचीर से क्या बोलते हैं। विकसित भारत 2047 का हमेशा एक खाका खींचने की उनकी कोशिश होती है, कई बार सामाजिक विषयों पर भी प्रधानमंत्री अपनी बात रखते हैं, तो सभी को इंतजार रहेगा कि आज प्रधानमंत्री वहां से क्या कहते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की है कि हम लोग वंदे मातरम की गूंज आज लाल किले से सुनने वाले हैं। और ये हिमांशु भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, आप जहां पर खड़े हैं वहां से दिखाइए तस्वीरें।
2: देखिए इस वक्त मैं लाल किले के जो पीछे जो रिंग रोड का हिस्सा है वहां पर मौजूद हूं और यहां पर सिक्योरिटी अरेंजमेंट आप देखिए, यहां से आगे सिर्फ वो गाड़ियां जा रही हैं, या तो वो गवर्नमेंट की व्हीकल है या फिर जिन पे पास लगे हुए हैं, क्योंकि बाकी जो गाड़ियां हैं उनको दूसरी तरफ घुमा दिया जा रहा है। और इस बैरिकेड तक पहुंचने के लिए कम से अगर हम 500 मीटर की बात करें तो 500 मीटर में तीन अलग अलग बैरिकेड है जहां पर गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। अब यहां पर जो गाड़ियां सीधे से आ रही हैं, जो कि ऑलरेडी दिल्ली में अगर हम बात करें तो तीन से चार बैरिकेड पार करके आई हैं, यहां भी इनको रोका जा रहा है। जिनके पास पास नहीं है आप देखिए उन सबको डाइवर्ट कर दिया जा रहा है। और ये सारी सिक्योरिटीज इस बार ज्यादा बढ़ा करके इसलिए है कि जो सेंट्रल एजेंसी से जो जानकारी मिल रही थी, नंबर एक, नंबर दो, जो अलग अलग इनपुट्स आ रहे थे उन सबको ध्यान में रख करके इस पूरे इलाके में, अंजना जिस रोड पे हम हैं ये सामने का जो रिंग रोड का पूरा इलाका है यहां पर ही 1000 से ज्यादा सीसीटीवी लगाए गए हैं, जिसमें फेस रिकॉग्निशन वाले सिस्टम वाले सीसीटीवी भी हैं। यानी कि अगर कोई शख्स ऐसा दाखिल होता इस इलाके में जिसके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस दर्ज है तो उसको पहचानने में कुछ मिनट ही लगेंगे। आप देखिए किस तरीके से एक एक गाड़ी को वेरीफाई किया जा रहा है, उनके पासेस को देखा जा रहा है और जरा सा भी वक्त गवाए अगर जिसके पास वैलिड पास नहीं है उन सबको तुरंत, देखिए जो भी गाड़ियां सामने की तरफ जा रही हैं उन पे पास लगे हुए, अगर ये गाड़ी जा रही है देखिए इस पे चार नंबर पास लगा हुआ है तो इसकी भी आगे इसका रास्ता जिस तरफ है वहीं पर ये गाड़ी जा पाएगी। तो पूरी तरीके से इस इलाके को सिक्योर किया गया। और एक दिन में नहीं, 15 अगस्त के पहले हमने देखा कि किस तरीके से मॉक ड्रिल्स दिल्ली में अलग अलग इलाकों में किए गए, हर जगह पर मॉक ड्रिल करके तमाम एजेंसीज के रिस्पांस टाइम चेक किए गए थे कि क्या रिस्पांस टाइम है, किस तरीके का कोऑर्डिनेशन है इस इलाके के लिए। हर डिवीजन में पूरे लाल किले इलाके को डिवीजन में अलग अलग बांटा गया, जिनके आईपीएस ऑफिसर्स को पूरी जिम्मेदारी दी गई और सब अपने इलाके के एक एक इलाके देख रहे थे कि कहीं कोई चूक ना रह जाए। अब ये जो इलाका है जहां पर हम मौजूद हैं, यहां पर सामने यमुना भी है। अगर आप रोड पार करते हैं सामने ये स्टेडियम पार करके आप आगे की तरफ जाते हैं तो यमुना नदी है। तो पूरी यमुना में लगातार पेट्रोलिंग हमने देखी कि केंद्रीय रिजर्व फोर्सेस कर रही थी, दिल्ली पुलिस कर रही थी लगातार बोट के जरिए। और जो खाली इलाका है जो यमुना से लेकर रोड तक का जो बीच का इलाका है उनमें भी पूरी तरीके से नजर बना के रखी गई है। और यही वजह कि जो इनपुट्स मिल रहे थे उनको ध्यान में रख करके सिक्योरिटी अरेंजमेंट इस बार किए गए। सोचिए 24,000 टोटल गेस्ट हैं और उन 24,000 गेस्ट के ऊपर अगर हम देखें तो 12,000 पुलिस कर्मियों की तैनाती इस पूरे इलाके में की गई है। कई कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, 6 के करीब, जो 6 कंट्रोल रूम अलग अलग इलाकों के लिए रिस्पांसिबल है, 6 जोन में जो बांटा गया है और वो अपने अधिकारियों से संपर्क में है। एंटी ड्रोन काइट कैचर, अंजना एक काइट कैचर्स की भी तैनाती की गई है ताकि अगर कहीं कोई पतंग इस इलाके में आ जाती है तो उसको तुरंत कैसे उसको रोका जाएगा, कैसे उसको तुरंत पकड़ा जाए। तो हर तरीके से सोचा गया है, छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखा गया है, यानी कि एक पतंग भी इस इलाके में उड़ती हुई नहीं नजर आएगी, उसको तुरंत पकड़ लिया जाएगा। और बकायदा ट्रेनिंग दी गई है जो लोग इस पूरे इलाके में रिंग रोड से लेकर के लाल किले का जो पूरा इलाका है और सामने का जो चांदनी चौक का पूरा इलाका है, हर जगह इसी तरीके की सुरक्षा हमें देखने को मिल रही है। जी
0: धन्यवाद आपका हिमांशु, हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं और सुरक्षा के तमाम इंतजाम दिखा रहे हैं। लाल किले और उसके आसपास की सुरक्षा है भी बहुत सेंसिटिव, पूरा एरिया है, हाल में घटना भी हुई थी उसके बाद से ज्यादा ख्याल रखा जा रहा है। सत्यप्रकाश मिश्र जी आपके साथ शुरुआत करते हैं, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत, और इस बार वंदे मातरम की वहां से गूंज, और ये जो 12 साल का एक पूरा खाका दिखाई देता है, कैसे, क्या कहेंगे आप?
3: मैं इतना जरूर आज कहूंगा कि पहले तो स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना पूरे देशवासियों को, आपको। एक सबसे बड़ा जो सवाल आज उठेगा लाल किला की प्राचीर से कि वो 13वीं बार इस देश को उस प्राचीर से संबोधित करेंगे। उनकी पहली यात्रा संबोधित हुई थी इस देश के जनधन को लेकर के, जो गरीब थे। 1914 में पहली बार जब वो तिरंगा फहरा रहे थे प्रधानमंत्री मोदी, तो जनधन खाता वहीं से शुरू हुआ था। आज भी जन वही है, धन बढ़ा है। तो आज स्वतंत्रता दिवस पर भारत जिसकी आर्थिक दर 6.6 आंक रही है विश्व बैंक भी, और वो 7.2 तक जा सकता है, तो सबसे बड़ी बात जो होगी वहां से कि इस देश की आर्थिक तरक्की और इस देश के युवाओं का भविष्य, वहां से एक नई शुरुआत प्रधानमंत्री के मुख से आ सकता है। रही बात की बाकी दुनिया में भारत की साख बड़ी है, मजबूती बड़ी है, उस पर भी जरूर कोई ना कोई बात प्रधानमंत्री करेंगे। स्वतंत्रता दिवस की 80वीं जयंती एक दिवस है, ये 80 साल का भारत आजाद हुआ है, तो कह सकते हैं आजाद है हम, मिट्टी से सुगंध यह आती है, ए जान से प्यारे हम वतनों, अभी काम बहुत कुछ बाकी है, तो काम होगा, भारत आगे बढ़ा है और प्रचंड तरीके से आगे बढ़ेगा। एक जो सवाल आता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में प्रधानमंत्री मोदी जी का कितना एक स्टेटस है, एक वजन है, जो प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में 35 अवार्ड ले सकता है, अलग अलग देशों के सर्वश्रेष्ठ सम्मानों से सम्मानित हो सकता है, तो भारत के लिए गर्व का विषय है। आज तक भारत को इतना सम्मान उसके किसी प्रधानमंत्री को नहीं मिला। मैं तुलना नहीं करना चाहता था, लेकिन ये बात सच है कि प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 12 सालों में भारत को जो ऊंचाई दी, जो ताकत दी, वो आज लाल किले के प्राचीर से फिर दोहराया जाएगा, नए वचन आएंगे और सबसे बड़ी बात नई दिशा आएगी, युवाओं का भविष्य संवरेगा।
0: आप क्या सुनना चाहते हैं आशुतोष जी प्रधानमंत्री से आज, और क्या बोल सकते हैं, आपको क्या लग रहा है जो ज्वलंत चीजें हैं जेंजी का जिक्र?
4: देखिए प्रधानमंत्री जी हमेशा चौंकाते हैं, तो कोई प्रेडिक्शन तो मैं उनके बारे में करता नहीं हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से जंतर मंतर के बाद देश के अंदर युवाओं के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है और एक नई नई बेचैनी साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। अभी कल लखनऊ के अंदर खबर है कि 100 बच्चे सड़क पर खड़े हो गए और उन्होंने कहा भाई हमारे स्कूल में स्थिति नहीं है। तो एक चीज जो बिल्कुल स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं जो एजुकेशन को लेके या एजुकेशन रिफॉर्म को लेके जो चिंता है, पेपर लीक को लेके जो चिंता है और उसकी वजह से छात्र में उत्तेजना है, उसको कहीं ना कहीं एड्रेस करने की ज़रूरत है। और मुझे ये अच्छा लगा कि देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने उस बारे में अपने संबोधन में उसका जिक्र भी किया, और होना भी चाहिए, क्योंकि अगर एजुकेशन अगर ठीक नहीं होगा तो आपकी युवा पीढ़ी या आपकी अगली पीढ़ी वो देश को उस तरीके से आगे नहीं ले जा पाएगी जिस तरीके का सपना हमारे देश के तमाम बड़े नेता देखते हैं, प्रधानमंत्री जी खुद उसको देखते हैं। इससे जरूरी यह है कि शिक्षा को लेकर बड़े रिफॉर्म की जरूरत है। ये जो शिक्षा हो गई कि अगर आप 3 घंटे का एग्जाम देंगे और उसके बाद पूरी जिंदगी आपको कोई और एग्जाम देने की जरूरत नहीं, आप बड़े बड़े पदों पर पहुंच सकते हैं, इसको डिसकंटिन्यू करना चाहिए। इसकी जगह क्रिएटिविटी, अफोर्डेबिलिटी और साथ ही साथ इनोवेशंस यानी रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, इस पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि दुनिया इस वक्त इतनी तेजी के साथ बदल रही है, अगर हमारी शिक्षा उससे कदम ताल नहीं करेगी, हमारे यहाँ अभी भी अगर ये स्थिति पैदा होगी कि एक ही टीचर वो मैथ भी पढ़ा रहा है, हिंदी पढ़ा रहा है, संस्कृत भी पढ़ा रहा है, सब कुछ पढ़ा रहा है।
0: मैं तो कह रही हूँ प्राथमिक स्कूलों की स्थिति ही बदल दे,
4: बिल्कुल
0: सबसे बड़ी समस्या इस देश में प्राथमिक स्कूलों की है, और उन स्कूलों में जाकर वहां की हालत देखिए तब समझ में आएगा कि कहां पर सबसे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। और मैं तो हर दिन हर शो में मिड डे मील्स की तस्वीरें दिखा रही हूं और बार बार ये कह रही हूं कि एक एक विधायक, एक एक सांसद अपने अपने इलाके के स्कूल ही देख ले, उसी में इस देश का कल्याण है। देखते हैं क्या होता है इस पर। लेकिन स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभकामनाएं दी है और उन्होंने अपने पोस्ट के जरिए पूरे राष्ट्र को शुभकामनाएं दी है। उनके तीसरे कार्यकाल में तीसरी बार वो लाल किले के प्राचीर से तिरंगा फहराने वाले हैं। 140 करोड़ भारतीयों के साथ देश नई ऊंचाई छुएगा, प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसी कामना जाहिर की है। हर क्षेत्र में तेजी से भारत प्रगति कर रहा है और आगे बढ़ेगा। संगीत रागी जी आपको भी बहुत शुभकामनाएं 80वें स्वतंत्रता दिवस की। आप क्या मानते हैं आज के दिन के लिए क्या सबसे बड़ी चीजें जिस पर होनी चाहिए चर्चा?
5: अन्ना जी आज तक के सारे दर्शकों का और पूरे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे लगता है कि मैं जो याद है 2014 का वो स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री का संबोधन, और उस दिन मैं जयपुर में था, और उसके बाद मैं लगातार देख रहा हूँ कि 2025 तक का जितने प्रधानमंत्री के संबोधन रहे हैं, तो जैसा कि अभी मिश्रा जी ने कहा उसमें एक पहले जब उनका उद्बोधन हुआ था तो उसमें स्वच्छ भारत अभियान निकल करके आया था, और देश की जितनी भी जिसको आप कहते हैं कि जितना वोकैबुलरी जिसे आप कहते हैं विकास का, विकास को लेकर के हो, जितनी वोकैबुलरी नरेंद्र मोदी ने दिया है और उस वोकैबुलरी को ऐसे समझ दे जैसे स्किल मिशन हुआ, डेवलप्ड इंडिया हुआ, जनधन योजना हुआ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सारे जितने अभियान हैं
0: प्रधानमंत्री ने शौचालय हर घर शौचालय से लेकर कैसे मतलब
5: ऐसे ऐसे
0: महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, सामाजिक बातों पर भी उन्होंने
5: सामाजिक बातों पर जो छोटी छोटी बातें थी महिलाओं के टॉयलेट को लेकर किसी पर उन्होंने बात नहीं की थी, इस पर स्वच्छता को लेकर के गांधी जी को उन्होंने ला करके जोड़ दिया कि भाई गांधी जी स्वच्छ भारत देखना चाहते थे 2047 तक। अब ये मूल्यांकन हो सकता है कि कितना ये अभियान आगे बढ़ा कितना नहीं बढ़ा, लेकिन हम ये भी हमें ये भी देखना चाहिए कि जब तक समाज उस दिशा में प्रेरित नहीं होगा सरकार के अकेले बूते की बात नहीं है। और इस अभियान से सारे फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करें तो फाइनेंशियल इंक्लूजन को लेकर के, फिर डेवलपमेंट को लेकर के, रिफॉर्म्स को लेकर के, हर बातें जितनी महत्वपूर्ण बातें आई हैं प्रधानमंत्री के लाल किले के प्राचीर से निकल करके आई है, तो इस बार भी मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी युवाओं को जरूर संबोधित करेंगे, किसानों को जरूर संबोधित करेंगे। कुछ ऐसे कंसर्न्स हैं जो कि राजनीतिक तौर पर प्रधानमंत्री जरूर उसको एड्रेस करना चाहेंगे, क्योंकि जो आंदोलन निकला है उस आंदोलन के बाद भी कई आंदोलन की संभावनाएं दिख रही है। मुझे लगता है कि
0: हम लौट रहे हैं, आज तो चर्चा दिन भर रहनी है, आप लोग सुबह सुबह आ ही गए हैं सभी लोग, थोड़ा सा इंतजार करिए क्योंकि कुछ ही देर में प्रधानमंत्री की तस्वीरें आनी शुरू होंगी। आप सभी को भी और सिर्फ लाल किला क्या पूरे देश में आज 80वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं और जश्न मन रहा है, सारी तस्वीरें दिखाएंगे। छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं, देखते रहिए आज।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस।
7: भिखारियों का मनोविज्ञान क्या है?
8: तैयारी तुम भी कर रहे हो क्या?
7: नहीं सर।
8: 12th किससे की हो?
7: 12th सर मेरा PCM से रहा।
8: कंपाउंड क्या होता है?
7: बेसिकली जो एक्युमुलेटेड चीजें रहती हैं उसके ऊपर,
8: यही है भीख मंगे वाली क्वालिटी। तुम पूछ रहे थे ना, यही है यही। एक मिनट,
7: ये जो आपका तरीका बहुत सर बहुत अच्छा नहीं है, इस तरीके से समझाने का स्टूडेंट्स को, इसे सर ह्यूमिलिएशन कहते हैं।
8: देख भाई, अपनी गारंटी पे छेड़ना।
9: सनी सर, अगर आपकी परमिशन हो तो आपके 2.5 किलो के हाथ का दमखम इस सभा के सामने आज स्वाद माना चाहेंगे।
10: क्यों मेरे साथ पंगा लेना चाहते हैं सब लोग?

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: आप दो सेकंड सांस रोक के बता दो, मैं आप लोगों को मान जाऊंगा।
2: एक घंटे तक रोक के
1: एक घंटे में जान पे रहना, उसके कैसा हो रहा था वो।
3: सिर्फ इतना है कि न्याय चाहिए उस बच्चे के लिए। बच्चा तो गया, पर किसी और की जिंदगी उस स्कूल में खराब नहीं हो।
4: जब आपके सामने आपका कोई दोस्त तड़प तड़प कर दम तोड़ जाए और स्कूल प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा रह जाए तो खून खौलना लाजमी हो जाता है। जयपुर के महाराणा प्रताप स्कूल के इन छात्रों का भी खून खौल रहा है, क्यों ये इन्हीं बच्चों से सुनिए।
5: उसने बाइट ली, वो भागा, सांस नहीं आ रही थी, पानी पीने गया और फिर वो बेहोश हो गया। पूरा नहीं, आधा ही खाया था, आधी फेंक दी थी।
6: खराब
5: थी,
6: पहले पता नहीं चला।
5: पहले पता नहीं,
6: फंगस लगी थी, बदबू आ रही थी।
5: बदबू आ रही थी,
6: बदबू आ रही थी, पूरा नहीं थी।
7: सबसे बड़ी लापरवाही ये है ना,
5: स्कूल की पर हॉस्पिटल भेज देते तो वो आज चिंता रहे।
4: इस स्कूल में 12वीं क्लास के छात्र प्रिंस की जिन हालात में मौत हुई उसे सुनकर किसी का भी आक्रोश भड़क जाए। इस स्कूल में छात्र कैंटीन से पेटीज खरीदता है, खाते ही उसकी तबीयत बिगड़ती है, उसकी सांस बंद हो जाती है, बदन नीला पड़ जाता है, मुंह से झाग निकलने लगता है, लेकिन स्कूल प्रशासन अस्पताल ले जाने की जहमत तक नहीं उठाता। जाहिर है इस स्कूल ने लापरवाही की हद कर दी है। दरअसल इस स्कूल ने अपराध किया है। 50 से 100 मीटर की दूरी पर अस्पताल है, लेकिन स्कूल प्रशासन को बच्चे को वहां तक ले जाने का ख्याल तक नहीं आया। माना कि बच्चे की हालत काफी बिगड़ गई थी, लेकिन कम से कम उसे अस्पताल तो ले जाते, क्या पता कोई अनहोनी हो जाती। वक्त पर इलाज से बच्चे की जान बच जाती, लेकिन अब कुछ नहीं बचा है सिवाय एक माँ के आंसू और पिता के ताउम्र कुरीदने वाले दर्द के। होनहार प्रिंस अब इस दुनिया में नहीं रहा, परिवार के लिए अब उसकी यादें ही शेष है। माता पिता को जब भी उसकी याद आएगी तो ये ख्याल भी आएगा कि प्रिंस की किन परिस्थितियों में मौत हुई थी। अब सारा दारोमदार पुलिस पर है, क्या प्रिंस के माता पिता को इंसाफ मिल पाएगा।
8: संदिग्ध परिस्थितियों में डेथ का मैटर हमारे सामने आया है और उस पर जो उनके परिजन हैं उन्होंने ये आशंका जताई है कि स्कूल में किसी प्रकार की लापरवाही की वजह से उनकी मृत्यु हो गई है, तो उस पर भी प्रकरण पंजीबद्ध करके इसमें अनुसंधान किया जा रहा है। जो मौके की फुटेज और ये सारी चीज़ें उनको कलेक्ट किया जा रहा है और उसमें भी जो भी चीज़ें आएंगी, जो फैक्ट्स आएंगे, वो आपके सामने हम रखेंगे।
4: पुलिस जांच की बात कर रही है, उसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। मौत की वजह का पता तो तभी चल पाएगा, लेकिन पुलिस की असली जिम्मेदारी ये तय करने की है कि वक्त पर अस्पताल ना पहुंचाने वाले स्कूल पर सख्त कार्रवाई जरूर हो। विशाल शर्मा, जयपुर आज तक।
9: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

0: अगर आप नई एसयूवी या फैमिली कार खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो अगस्त का महीना आपके लिए बड़ी बचत का मौका लेकर आया है। स्वतंत्रता दिवस और फेस्टिव सीजन से पहले ऑटो कंपनियों ने ग्राहकों को शोरूम तक खींचने के लिए डिस्काउंट और बेनिफिट्स की झड़ी लगा दी है। कई लोकप्रिय एसयूवीज और एमयूवीज पर 1 लाख रुपए तक से लेकर 2.5 लाख रुपए तक के ऑफर्स मिल रहे हैं, यानी नई गाड़ी खरीदने वालों के लिए यह महीना काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। होंडा एलिवेट पर 2.45 लाख रुपए तक के बेनिफिट्स मिल रहे हैं, वहीं टाटा सफारी और हेरियर पर 2.25 लाख रुपए के ऑफर्स हैं, जबकि मारुति ग्रैंड विटारा पर 1.5 लाख रुपए तक और महिंद्रा थार रॉक्स पर 1,20,000 रुपए तक और ह्युंडई क्रेटा पर 85,000 रुपए तक के ऑफर्स उपलब्ध हैं। ऑटो कंपनियां कीमत तो कम नहीं कर रही हैं, लेकिन कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस, स्क्रैपेज बेनिफिट और कॉरपोरेट ऑफर्स के जरिए ग्राहकों को ज्यादा बचत का मौका देकर लुभा रहे हैं। खास बात यह है कि सबसे ज्यादा फोकस एसयूवी और एमयूवी सेगमेंट पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा किया की कई गाड़ियों पर 75,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक के बेनिफिट्स मिल सकते हैं। टोयोटा और मारुति सुजुकी भी अपने चुनिंदा मॉडल्स पर आकर्षक बेनिफिट्स दे रहे हैं। कार कंपनियों की रणनीति ऐसे समय में आई है जब बाजार में नए मॉडल लॉन्च होने वाले हैं और डीलर्स पुराने स्टॉक को तेजी से क्लियर करना चाहते हैं, और यही वजह है कि कई लोकप्रिय मॉडल्स पर सामान्य दिनों के मुकाबले कहीं ज्यादा ऑफर्स देखने को मिल रहे हैं। ऑटो इंडस्ट्री के जानकारों का मानना है कि कंपनियां फेस्टिव सीजन से पहले ही बिक्री बढ़ाने और इन्वेंट्री कम करने के लिए आक्रामक डिस्काउंट रणनीति अपना रही है। एसयूवी सेगमेंट में बढ़ती प्रतिस्पर्धा भी इस छूट की एक बड़ी वजह है। कई ऑफर्स मॉडल ईयर 2025 और 26 स्टॉक पर लागू हैं। हालांकि डिस्काउंट की ये रकम शहर, डीलर और वेरिएंट के हिसाब से बदल सकती है। ऐसे में नई गाड़ी खरीदने वालों के लिए इस समय अलग अलग ब्रांड्स के ऑफर्स की तुलना करने का हो सकता है। कई लोकप्रिय एसयूवी पर 1 लाख रुपए से ज्यादा के बेनिफिट्स मिल रहे हैं, जो आम दिनों में कम ही देखने को मिलता है। फेस्टिव सीजन से पहले कार कंपनियों की छूट ग्राहकों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। ऐसे में नई एसयूवी या एमयूवी खरीदने वालों के लिए समय डील्स और ऑफर्स के लिहाज से सबसे बेहतर दौर में से एक माना जा रहा है। आदित्य राणा के साथ आज तक ब्यूरो।
1: 11 बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

सिवा स्वतंत्रता दिवस। लाल किले के प्राचीर से लगातार 13वीं बार प्रधानमंत्री मोदी फहराएंगे तिरंगा। पहली बार राष्ट्रगान से पहले गूंजेगा वंदे मातरम। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र के नाम संदेश। कहा, युवा आबादी सबसे मूल्यवान संपत्ति। 13 शहीदों समेत 89 सैन्यकर्मियों को सम्मान। नहीं थम रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी के बयान पर बवाल। राजनाथ सिंह ने बताया, लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरे का संकेत। विदेश मंत्रालय ने कहा, आदर के साथ रखनी चाहिए बात। कृष्णानगर सर्किट हाउस खाली कराने के आरोप पर महुआ मोइत्रा का हंगामा। बोली, जान लेने पर उतारू है भीड़। ओम बिरला को टैग कर मदद मांगी। अखिलेश यादव और अभिषेक बैनर्जी ने बीजेपी सरकार पर बोला हमला। और इंडोनेशिया के तट के पास 7.7 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप। फ्लोरेंस क्षेत्र में 10 किलोमीटर गहराई पर आया भूकंप। सुनामी की चेतावनी जारी। समुद्र तट और नदी किनारे रहने वालों को ऊंची जगहों पर जाने की सलाह।

0: नमस्कार आपको सभी हमारे दर्शकों को और यहाँ पर मौजूद तीनों पैनलिस्ट को 80वें स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। आइए आपको सीधे लाल किले लिए चलते हैं क्योंकि अब ज्यादा देर का इंतजार नहीं है। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचने वाले हैं और अभी से ही तैयारियां शुरू हो गई हैं। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं लाल किले के इसी प्राचीर से। अपने तीसरे कार्यकाल के तीसरे बार और 13वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लाल किले के प्राचीर से न सिर्फ झंडारोहण करेंगे बल्कि देश को संबोधित करेंगे। और ये भव्य नजारा जो कहते हैं ना सुर्ख दीवारें लाल किले की, इस बात की गवाही देती है कि भारत अपनी स्वतंत्रता के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना सब कुछ न्योछावर किया और उस बलिदान को आज पूरा देश याद रखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ ही देर पहले देशवासियों को शुभकामनाएं भी दी है और स्वतंत्रता के लिए जो शहीद हुए उनको भी नमन किया है। और आज प्रधानमंत्री इस लाल किले के प्राचीर से क्या संबोधन देते हैं इस पर पूरे देश की नजर रहेगी क्योंकि हाल ही के जेंजी आंदोलन और उसके बाद से जेंजी का पूरा मुद्दा किस तरह से उठता है, प्रधानमंत्री किस नजर से इस बात पर अपनी जो संबोधन है उसमें अपनी कहते हैं उस पर नजर रहेगी। और भव्य ये नजारा हर उस देशवासी के लिए जो ये देखिए वंदे मातरम खूबसूरत लिखा हुआ क्योंकि ये भी पहली बार हो रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर लाल किले को भव्य तरीके से सजाया गया है और इस बार वंदे मातरम का वहां से लगभग जो सभी स्टैंजास है उसके साथ वो वहां पर गाया जाएगा। तो ये भी पहली बार लाल किले से होगा, एक अद्भुत सुबह की जिसको कहते हैं एक न सिर्फ राष्ट्रभक्ति की खुशबू होती है उसका एक अलग सा मिजाज आज लोगों के दिलों में होता है बल्कि इसी के साथ ये बच्चे जो देश भर से आज पहुंचते हैं तिरंगे के अलग अलग रंगों में वो भी नजारा। और हमेशा प्रधानमंत्री संबोधन के बाद जब नीचे लौटते हैं उसके बाद से वो इन बच्चों से जरूर मिलते हैं, उनके साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि विकास में हम हर क्षेत्र में चाहिए। जल्दी से आपको दिखा देते हैं, शिवानी हमारी सहयोगी वहां पर पहुंची है और कैसा दिख रहा है ये पूरा नजारा देखिए।
1: 80वें स्वतंत्रता दिवस को लेकर उत्साह चरम पर है। मैं इस वक्त लाल किले पर मौजूद हूं जहां पर आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं जो दर्शक हैं वो लगातार यहां पर पहुंच रहे हैं और सुबह 3 बजे से यहां पहुंचने लगे थे लोग और बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे क्या बोलना चाहेंगे?
2: हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।
3: Happy Independence Day.
1: Salute to you and to all our forces for who have been in the service of the nation. And आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस बार लाल किले पर युवा शक्ति को विशेष थीम के रूप में उत्सव मनाया जा रहा है। वंदे मातरम के 150 सालों की यात्रा और युवाओं को किस तरह से भारत के योगदान में लगाया जा सकता है, भारत के लिए उनकी भूमिका क्या है उस पर यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप यहाँ पर आए हैं, कुछ बोलना चाहेंगे आप जेन ज़ीज़? आप कुछ बोलना चाहेंगे? इंडिपेंडेंस डे बेटा, आप कुछ बोलना चाहोगे? आप
2: नहीं नहीं कुछ नहीं बोलना
1: चाहेंगे।
4: जी हम निस्बड़ से हैं और निस्बड़ आपको पता होगा संस्था है नोएडा में, तो उनकी तरफ से हमारा सिलेक्शन हुआ है। ये वुमेन एंटरप्रेन्योर के तौर पे हैं, मैं इनके साथ हूँ।
1: तो आपको आज खास अतिथि की तरह?
2: यस, हमें बुलाया
4: स्पेशल गेस्ट की तरह।
2: वी फील प्राइड कि हम इस प्रीशियस मोमेंट पर प्रेजेंट हैं।
4: जी भारत माता,
2: भारत माता की जय।
1: मैम कहाँ से आए हैं?
5: हम करावल नगर से आए हैं। मधु सिसोदिया मेरा नाम है, पूर्व जिला अध्यक्ष हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है आजादी का जश्न मनाने के लिए यहाँ पर सब लोग आए हैं।
1: सर आप कहाँ से आए हुए हैं, क्या बोलना चाहेंगे आज प्रधानमंत्री एक एड्रेस करेंगे? बहुत कुछ
6: बहुत अच्छा लगेगा मैडम और मोदी आज का हमको त्योहार मनाने वाली आज बात है तो इसकी हम बहुत खुशी मनाएंगे। थैंक यू सो मच।
1: तो छोटे बच्चे हैं जो यहाँ पर भारत माता की जय करते हुए पहुंच रहे हैं और ये अपने स्कूलों से यहाँ पर विशेष अतिथियों के तौर पर यहाँ पर इनवाइटेड हैं। जी आप क्या बोलना चाहेंगे आज युवा शक्ति और वंदे मातरम को यहाँ पर मनाया जा रहा है?
7: सबसे पहले तो जय हिंद आपको मैम, बहुत अच्छा लग रहा है तिरंगा आप पे। हम नागपुर महाराष्ट्र से आए हैं यहाँ पर सिर्फ आज का दिन अटेंड करने के लिए और बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ खुद को कि 80वें वर्ष के भारत के इस दिन पर मैं यहाँ पर हूँ और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तरफ से यहाँ इतना बड़ा इवेंट हो रहा है और इसमें मैं शामिल हो रहा हूँ और इतने दूर।
1: क्या उम्मीद है आज प्रधानमंत्री जी बोलेंगे?
7: कुछ बहुत बड़ी बातें हमें सुनने की आशंका है आज। कुछ बहुत टाइम से जो बिल अटके थे शायद उसके बारे में कुछ बताए तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि FCRA की बातें जो इतने टाइम से चल रही थी तो शायद यहाँ से कोई ऐलान हो जाए जैसा हर बार होता है हर 15 अगस्त को।
1: तो बहुत सारी उम्मीदें हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को लेकर कि क्या बोल सकते हैं, किस बारे में उनकी बात होगी, और हर बार वो कुछ नया और महत्वपूर्ण बोलते हैं और उनकी जो घोषणाएं होती हैं वो राष्ट्र के प्रति बेहद अहम और महत्वपूर्ण रहती हैं। तो आप देख सकते हैं कि लाल किले पर इस बार भी उत्साह चरम पर नजर आ रहा है, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम के बीच लोग चले आ रहे हैं इस उत्सव का हिस्सा बन रहे। कैमरा पर्सन प्रदीप गुप्ता के साथ शिवानी शर्मा, दिल्ली आज तक।
0: आइए एक बार फिर से आपको लाल किला ही लिए चलते हैं जहां से हमारे सहयोगी संजय शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, एक बार फिर से दिखाइए, और मुझे लगता है कि आप जो पार्किंग लॉट है वहां से पीछे की तस्वीर भी दिखाई देती है वहां पर हैं। क्या अब तो मुझे लगता है कि लगभग ज्यादा से ज्यादा लोग, क्योंकि शिवानी ने कुछ देर पहले बात की लोग से जो पहुंच रहे थे, अब तो सभी लोग पहुंच गए होंगे?
8: जी हाँ, बिल्कुल सारे लोग पहुंच गए हैं, अधिकतर लोग पहुंच गए हैं, और ये हम लाल किले की दीवार के बिल्कुल किनारे खड़े हैं और यहाँ यहाँ के ठीक बगल में वो समारोह स्थल है। चूंकि वहां सुरक्षा इंतजाम की वजह से जो हमारे लाइव यूनिट्स होते हैं, लाइव करने के का जरिया है, वो वहां पर जैमर लग जाता है जिस वजह से दिक्कत आती है, और सुरक्षा के इंतजाम की वजह से भी हमें थोड़ा अलग हटकर लाइव करना होता है। लेकिन जहां तक वहां की बात है, हमने कितने लोगों से बात की है, लोगों को ये उम्मीद है कि जैन जी की जो समस्याएं हैं जिनसे वो जूझ रहे हैं उनको प्रधानमंत्री उन पर बात करेंगे, और जो चीजें संसद के सत्र में नहीं आ पाई हैं उनका भी हो सकता है कि जिक्र करें और ये बताएं कि सरकार क्या करना चाहती थी और संसद का सत्र कैसे धुला, उस पर भी बात हो सकती है। चूंकि संसद का सत्र सत्रावसान हो चुका है लिहाजा वो चीजें की जा सकती हैं, लेकिन जहां तक सुरक्षा की बात है तो सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल चाक चौबंद है। 5 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है जिसमें किसी भी, जैसे कहें तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता जैसी स्थिति है, और लाल किले की प्राचीर पर भी पुलिसकर्मी सन्नद्ध और तैनात हैं ताकि किसी भी तरह की कोई नापाक हरकत ना की जा सके, और 10,000 से ज्यादा दिल्ली पुलिस के सुरक्षाकर्मी, 3,000 से ज्यादा ट्रैफिक कर्मी यहां पर तैनात हैं। इसके अलावा फेस रिकॉग्निशन सहित AI युक्त 1,000 से ज्यादा कैमरे जगह जगह चप्पे चप्पे पर लगे हैं ताकि किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, और जैसा कि बताया गया कि जो सड़कों पर सीवर लाइन है, सीवर लाइन के अंदर भी जांच करके उसके ढक्कनों को सील बंद कर दिया गया है ताकि कोई भी वहां से ना निकल सके ना उसके अंदर घुस सके। तो सुरक्षा के इंतजाम बिल्कुल तगड़े हैं, और प्रधानमंत्री जिन चीजों का उल्लेख करें या लोगों की आकांक्षाएं हैं वो लोगों ने बताया है कि वो युवाओं से संबंधित चीजें ज्यादा बताएं, तो उनको उम्मीद है कि लाल किले के प्राचीर से ऐसी कोई बड़ी घोषणाएं होंगी जिससे युवाओं को लगेगा कि हाँ सरकार हमें प्रायोरिटी पर रखकर सोच रही है। महिलाओं ने भी यह बताया कि महिलाओं को लेकर उनके कल्याणकारी योजनाएं भी, उनका भी ऐलान प्रधानमंत्री कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी जो स्थिति है वो ये है कि लोगों को यह आशंका है कि कहीं बारिश ना हो जाए चूंकि आसमान उमस काफी ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं।
0: बिल्कुल उत्साह में कमी नहीं है, और यहाँ स्टूडियो में भी काफी उत्साह है। अब लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं, और धीरे धीरे लोग अपनी जगह भी ले रहे हैं। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री भी निकलेंगे, और जिसके बाद लगभग समझ लीजिए 7:35-36 के आसपास वहां पर झंडारोहण होगा लाल किले के प्राचीर से, और सुबह सुबह की ये अद्भुत तस्वीरें जो हर देशवासी के मन को हर्ष से भर देती हैं। इससे पहले कि मैं यहां पर मौजूद संगीत रागी जी, सत्य प्रकाश मिश्र जी और आशुतोष जी से बात करूं, आइए एक बार फिर से अब चलते हैं हिमांशु के पास, क्योंकि हिमांशु आप वहां पर खड़े हैं जहां से बैरिकेडिंग करके, और जो जिन गाड़ी को पहले से पहचान है या जो पेट्रोलिंग के लिए वहां पहुंच रहे हैं उन्हीं को इजाजत दी जा रही है, क्या है इस वक्त वहां की तस्वीर? सुरक्षा एक बड़ा कंसर्न है, और लाल किले में हाल में जो घटना हुई थी उसके बाद से भी एक ये है कि भाई इस पूरे इलाके को, और ये देखिए अद्भुत नजारा, एक सेकंड आपको रोक रही हूं, ये एरियल व्यू है जिसमें आप वंदे मातरम जो वहां पर लिखा गया है आज, क्योंकि आज वंदे मातरम की गूंज. वंदे मातरम क्या मतलब, इस मातृभूमि को जिसे हम अपनी माँ मानते हैं उसके सामने नमन कर रहे हैं, ये बजने वाला है. और ये जो लाल किले की दीवारें हैं, देखिए आजादी के
9: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी
0: दशकों का आप देखिए, 80 साल अब तो हो गए, उसकी भी गवाही यही लाल किला दे रहा है. और उससे पहले जो आजादी के लिए एक पूरी स्वतंत्रता हासिल करने के लिए जो लड़ाई थी उसकी गवाही भी इस लाल किले ने दी है. एक लंबी कहानी इस बात को लेकर भी है कि यहीं से क्यों 15 अगस्त को आजादी का ये स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है. लेकिन उससे पहले हिमांशु जल्दी से, और ये छात्र जो अलग अलग जगहों से आए हुए हैं, बताइए हिमांशु.
10: देखिए अब बहुत ज्यादा वक्त बचा नहीं है, जब इस बैरिकेड को पूरी तरीके से इस रास्ते को बंद कर दिया जाएगा तो अब कुछ ही समय रह गया है. और जिस तरीके से हमने देखा कि अभी पिछले 15 मिनट में एंट्री हुई है उसके बाद अब कम हो गए हैं क्योंकि ज्यादातर गेस्ट अब चले गए हैं. खासतौर से जो विदेशी मेहमान थे हमने देखा कि वो बड़ी संख्या में इस रास्ते से अंदर गए हैं. कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी इस रास्ते से वो अंदर गए हैं. तो अब ज्यादातर जो पीछे बैरिकेड है वहीं पर अब गाड़ियों को फिल्टर कर दिया जा रहा है क्योंकि इस बार जो इनपुट था अंजना वो सिर्फ विदेशी ताकतों से नहीं था कि कुछ इस तरीके के मॉड्यूल भी एक्टिव थे जो लोकल लेवल पे लोकल क्रिमिनल्स की मदद से वारदात को पिछले कुछ समय में अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे. तो ऐसे में सिक्योरिटी का जो स्टैंडर्ड था वो चारों तरफ से जो आमतौर पर हम देखते आए 15 अगस्त को वो तो था ही, लेकिन उसके अलावा जिस तरीके से वेरिफिकेशन चलाई गई, जिस तरीके से मैन टू मैन चेक किया गया, यहां पर जो खाली जगह है, जो कोई भी ऐसा इलाका नहीं छोड़ा गया जहां पर दस्तक न दी गई, जहां पर पुलिस के जवान पहुंचे नहीं, इस पूरे इलाके में जहां पर हम मौजूद हैं, इस पूरे 10 किलोमीटर के रेंज में आप कहिए तो कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो वेरीफाई नहीं की गई, क्रॉस चेक नहीं किया गया. पिछले 15 दिन से लगातार नजर बना के रखी गई थी. एक एक गाड़ियां जो अंदर जा रही हैं, यहां तक जब आप देख रहे हैं जो अंदर सीधे निकल रही हैं, हमने देखा कि उन गाड़ियों को चार चार बैरिकेड पार करके यहां तक वो गाड़ियां पहुंची हैं और बकायदा मैसेजिंग हो रही है एक एक गाड़ियों को लेकर के. तो सिक्योरिटी का लेवल जो रोड पर दिख रहा है, इसके अलावा जो पर्दे के पीछे जो कंट्रोल रूम में बैठे लोग हैं जो लगातार कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, चाहे दूसरे राज्य की पुलिस हो, क्योंकि बॉर्डर पर सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ी है, कई ऐसे बॉर्डर के इलाके हैं जहां पर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है, उसके अलावा जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उनसे जो लगातार इनपुट मिल रही है. तो राउंड द क्लॉक पिछले 15 दिनों से, इसीलिए कई जगहों पर हमने देखा कि आपस में कोऑर्डिनेशन कैसा है एजेंसीज का, कि अगर कहीं कोई गड़बड़ी होती है तो रिस्पांस टाइम क्या है. कई बड़ी जगहों पर अचानक मॉक ड्रिल की गई और इस बार की जो मॉक ड्रिल थी हमने देखी दूसरे से अलग थी क्योंकि एजेंसी जो दूसरी थी उन्हें भनक तक नहीं थी. आमतौर पे एक दूसरे को जानकारी हो ही जाती है लेकिन इस बार भनक तक नहीं थी और कॉल जाने पर ऐसे रिस्पांस किया गया जैसे ओरिजिनल कॉल आई हो. तो इस तरीके की तैयारी इस बार 15 अगस्त को देखने को मिली और वजह यही है अंजना कि इनपुट जो है जो लोकल क्रिमिनल्स का इस्तेमाल पिछले कुछ समय से ISI करने के जुगाड़ में है और उनको ट्रेन किया जा रहा है. बाकायदा वीडियो कॉल पे उनको मैसेजेस भेजे जा रहे हैं. कई जगहों पर CCTV ऐसी जगहों पर कैमरे लगवाए गए जिनसे वो लाइव फुटेज ले सके. तो आप सोचिए ऐसी परिस्थिति में आप यहाँ की जो पूरे एक एक खंभे, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो पुलिस की नजर से बची हो. जी अंजना
0: धन्यवाद आपका इन तस्वीरों के लिए. एक बड़ी खबर जो इंडोनेशिया से आ रही है वो भी अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं. तैयारियां हम लगातार दिखा रहे हैं 80वें स्वतंत्रता दिवस की, क्योंकि इंडोनेशिया में आज 7.7 तीव्रता का भूकंप आया है और आप कल्पना कर सकते हैं 5 के आसपास की तीव्रता का भी जब भूकंप आता है तो बहुत उससे नुकसान होता है, लेकिन यहाँ तो 7.7 है. इसका केंद्र समुद्र के अंदर 35 किलोमीटर की गहराई पर बताया जा रहा है. भूकंप से इंडोनेशिया में कई इमारतें मकानों को नुकसान पहुंचा है. भूकंप के बाद सुनामी की आशंका जताते हुए चेतावनी भी जारी की गई है. साथ ही तेज भूकंप के बाद कई झटके भी महसूस किए गए हैं और जो लोग आप देख रहे हैं दहशत में भागते हुए घरों से, उनके लिए खौफ भरी ये घड़ी है. और ज्यादातर जगहों से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जहां पर लोग घरों से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं. कितना वाकई नुकसान हुआ है इसका आकलन तो बाद में आएगा, लेकिन अगर मकान इस तरह से गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं तो हम और आप इन्हीं तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तीव्रता का कैसा असर रहा होगा। हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन स्वतंत्रता दिवस की जो कवरेज है वो जारी है आज तक पर, देखते रहिए आज।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: जब से पेपर लीक के खिलाफ कांग्रेस जनता पार्टी ने देश भर में आंदोलन किया है, तब से देश की सियासत से लेकर न्यायपालिका तक जेन जी इम्पैक्ट देखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने हैदराबाद की नासलर यानी नेशनल लॉ स्टडी एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी से जुड़े विवाद पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया को फटकार लगाई है। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा है कि भले ही छात्रों का फैसला गलत हो या उन्हें किसी ने गलत सलाह दी हो, फिर भी उन्हें अपनी बात रखने और विरोध करने का अधिकार है। जस्टिस सूर्यकांत ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के उस सर्कुलर पर भी नाराजगी जताई जिसमें नासलर के 2026 बैच के लॉ ग्रेजुएट्स का वकील के तौर पर एनरोलमेंट रोकने को कहा गया था। सीजेआई ने कहा कि ये मेरे और छात्रों के बीच का मामला है, इसे मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है। बार काउंसिल इसमें दखल देने वाला कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को नोटिस भी जारी किया और यूनिवर्सिटी के किसी छात्र या फैकल्टी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया। विरोध के बाद बार काउंसिल ने यूटर्न ले लिया है। छात्रों की नाराजगी सीजेआई की पिछले महीने की एक टिप्पणी को लेकर थी। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा था, कॉकरोच की तरह ऐसे युवा हैं जिन्हें इस पेशे में रोजगार नहीं मिल रहा है। इनमें से कुछ मीडिया, कुछ सोशल मीडिया और कुछ आरटीआई और दूसरे तरह के एक्टिविस्ट बन रहे हैं। ये हर किसी पर हमला करना शुरू कर देते हैं। ये टिप्पणी दिल्ली में नीट प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़ी याचिका की सुनवाई के दौरान की गई। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 13 अगस्त को सभी स्टेट बार काउंसिलों को निर्देश दिया था कि नासलर के 2026 बैच के किसी भी ग्रेजुएट को अगले आदेश तक वकील के तौर पर एनरोल न किया जाए। साथ ही यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से 3 दिन के भीतर रिपोर्ट मांगी गई थी। आदेश जारी होने के कुछ घंटे बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपना रुख बदल लिया। काउंसिल ने कहा कि नासलर के 2026 बैच के ज्यादातर छात्र निर्दोष हैं और वो सीजीआई के अनादर वाले किसी भी अभियान में शामिल होने के इच्छुक नहीं थे।
1: कुछ गलत रिपोर्टिंग हो गई, कुछ गलत इन्फॉर्मेशन मिल गए तो एक लेटर भेज दिया गया नालसर को, लेकिन 30 मिनट के अंदर जैसे ही सही बातों का पता चला, स्टूडेंट्स के इनोसेंस का पता चला, तुरंत उस लेटर को वापस ले लिया गया। आधी रात को बार काउंसिल की मीटिंग हुई, सभी मेंबर्स ने डिस्कस किया, पूरा डेलिबरेशन हुआ उस पर, और उसके बाद पूरा का पूरा मामला जो है सो क्लोज कर दिया गया। तो मैटर स्टैंड्स फुल्ली क्लोज्ड नाउ। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को ये बात नहीं बताई गई शायद कि मामला जो है सो उसको क्लोज कर दिया गया, वो लेटर पूरी तरह वापस ले लिया गया, कोई ऑर्डर नहीं है, स्टूडेंट्स जैसे चाहें वो जहां चाहें अपने को एनरोल कराएं। अब सुप्रीम कोर्ट को हम एक्सप्लेन करेंगे।
0: सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी बार काउंसिल के एक्शन पर सवाल उठाए थे। आज तक ब्यूरो।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद था है और जिंदाबाद रहेगा।
1: एक और यूपी चुनाव में

एक और यूपी चुनाव में बीएसपी की 2007 जैसी सामाजिक रणनीति पर चर्चा चल रही है। ब्राह्मण समाज के नेताओं को फिर पार्टी से जोड़ने की कोशिश हो रही है। वहीं दूसरी ओर ब्राह्मण नेता लगातार बीएसपी से दूर हो रहे हैं। कुछ नेता पार्टी छोड़ रहे हैं और कुछ कार्रवाई के चलते पार्टी से बाहर हो रहे हैं। यूपी में चुनावी तैयारियों के बीच ये बीएसपी प्रमुख मायावती की एक दिन पहले की पोस्ट है, जब उन्होंने पार्टी विरोधी गतिविधियों पर आरोप लगाते हुए पूर्व मंत्री अनंत कुमार मिश्रा को बीएसपी से बाहर कर दिया। ये पहला मौका नहीं है जबकि किसी बड़े ब्राह्मण नेता पर मायावती ने एक्शन लिया है या किसी बड़े नेता ने बीएसपी का साथ छोड़ा है। बीते एक दशक में कई ब्राह्मण नेता बीएसपी से दूर होते गए। मौजूदा यूपी सरकार में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ब्रजेश पाठक 2004 में बीएसपी में शामिल हुए और इसी साल सांसद भी बने। फिर साल 2016 में वो बीएसपी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। पूर्व मंत्री नकुल दुबे भी 2022 में बीएसपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए। दिवंगत रामवीर उपाध्याय, रंगनाथ मिश्रा और विनय शंकर तिवारी जैसे नेता भी बीएसपी से दूर हो गए। अम्बेडकर नगर से बीएसपी सांसद और विधायक रहे राकेश पांडे और उनके बेटे रितेश पांडे ने पार्टी छोड़ दी। अब अनंत मिश्रा पर मायावती की ताजा कार्रवाई ब्राह्मण नेताओं के बीएसपी से दूर होने की अगली कड़ी है। दरअसल बीएसपी की दलित ब्राह्मण वोटों की सोशल इंजीनियरिंग का सबसे जबरदस्त असर 2007 के विधानसभा चुनावों में दिखा था। 2007 में बीएसपी ने 80 से ज्यादा ब्राह्मण उम्मीदवारों को टिकट दिया था, जिसमें से 41 ब्राह्मण नेता विधायक बने थे। बीएसपी की ये सोशल इंजीनियरिंग इतनी सफल रही कि दूसरे दलों ने भी इसे साधने का प्रयास किया, लेकिन साल 2017 का विधानसभा चुनाव आते आते ब्राह्मण नेताओं का बीएसपी से मोहभंग शुरू हो गया। हालांकि अब बीएसपी फिर से ब्राह्मण समाज को साथ जोड़ने की कवायद में जुटी है। यही वजह है कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी ने पहला प्रत्याशी भी ब्राह्मण बनाया और इसके बाद सादाबाद सीट से भी ब्राह्मण उम्मीदवार का ऐलान किया। इसके बावजूद दूसरे दलों के बड़े ब्राह्मण नेता बीएसपी को लेकर ज्यादा उत्साहित नजर नहीं आ रहे हैं। शायद इसी को देखते हुए अनंत मिश्रा पर एक्शन के बाद मायावती ने सोशल मीडिया पर सफाई भी दी है। ये ब्राह्मण समाज व अन्य सभी समाज के जो भी लोग अभी तक पार्टी से निकाले गए हैं या निकाले जा रहे हैं, या वे अपने निजी स्वार्थ में दूसरी पार्टियों में चले गए हैं, या फिर वे अपने गलत कारनामों की वजह से उनसे बचने के लिए खासकर सत्ताधारी पार्टी में शामिल हो गए हैं। उधर बीजेपी कह रही है कि बीएसपी की किसी भी कोशिश का अब फायदा होने वाला नहीं। यूपी चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। हर पार्टी सामाजिक समीकरणों को साधकर मजबूत चुनौती देने की कोशिश में लगी है, लेकिन ब्राह्मण नेताओं को साथ लाने की बीएसपी की कोशिश इतनी आसान नहीं लग रही है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ समर्थ श्रीवास्तव आज तक।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

देश मना रहा है 80वां स्वतंत्रता दिवस। लाल किले के प्राचीर से लगातार 13वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फहराएंगे तिरंगा। पहली बार राष्ट्रगान से पहले गूंजेगा वंदे मातरम। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र के नाम संदेश, कहा युवा आबादी सबसे मूल्यवान संपत्ति। 13 शहीदों समेत 89 सैन्यकर्मियों को सम्मान। नहीं थमरा प्रधानमंत्री मोदी पर राहुल गांधी के बयान पर बवाल। राजनाथ सिंह ने बताया लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरे का संकेत। विदेश मंत्रालय ने कहा आदर के साथ रखनी चाहिए बात। कृष्णानगर सर्किट हाउस खाली कराने के आरोप पर महामंत्र का हंगामा। बोली जान लेने पर उतारू भीड़। ओम बिरला को टैग कर मांगी मदद। अखिलेश यादव और अभिषेक बैनर्जी ने बीजेपी सरकार पर बोला हमला। और इंडोनेशिया के तट के पास 7.7 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप। फ्लोरेंस के 10 किलोमीटर गहराई पर आया भूकंप। सुनामी की चेतावनी जारी। समुद्र तट और नदी किनारे रहने वालों को ऊंची जगहों पर जाने की सलाह।

0: नमस्कार। 80वें स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं, जिसके साथ हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। जो हमारे तमाम दर्शक अब 7 बजे हमारे साथ उठकर इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, लिए चलेंगे आपको सीधे लाल किला, जहां पर अब प्रधानमंत्री का इंतजार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि 13वीं बार यहां से झंडारोहण करने वाले हैं, राष्ट्र को संबोधित करेंगे। और ये तस्वीरें आ रही है जिसमें आप वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को देख रहे हैं, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को देख रहे हैं, परिवार के साथ आए हुए हैं। और इस बार वंदे मातरम का गान लाल किले की प्राचीर में जब गूंजेगा तो हम और आप कल्पना कर सकते हैं कि हम सभी का मन कैसे हर्ष से भरेगा। स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को शुभकामनाएं दी हैं। NSA अजीत डोभाल को आप देख रहे हैं, वहां पर मौजूद हैं। और हर क्षेत्र में तेजी से भारत प्रगति कर रहा है, ये प्रधानमंत्री ने लिखा है। और सब कुछ जैसे अपनी जगह पर आज तैनात है इस देश की आजादी के 80 साल का जश्न मनाने के लिए। आज हर धुन देश के नाम, आज हर बात जो है वो देश के नाम, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो लाल किले के प्राचीर से 12 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ देश किस तरह से आगे बढ़ेगा, सरकार का खाका, बल्कि इसके साथ साथ इस बात की हर बार जानकारी दी है या फिर चर्चा की है इस मंच से कि कैसे हम अपने समाज को, अपने देश को कुछ बदलाव के, स्वच्छता अभियान से लेकर अगर आप देखें तो हर घर शौचालय हो, जल हो, हम कैसे अपनी बच्चियों का सम्मान कर सकते हैं, कैसे माएं अपने लड़कों से भी पूछें कि वो रात में कब घर लौटने वाले हैं। तो तरह तरह की बातें इस मंच से राष्ट्र के नाम प्रधानमंत्री ने हमेशा कही है। और आज ये बच्चे जिसे आप पीछे से देख रहे हैं, जिनकी नजर से अगर लाल किले को देखिए तो बड़ा भव्य नजारा है, क्योंकि ये बच्चे देश भर से आते हैं, अलग अलग जगहों से आते हैं। ब्रेवरी अवार्ड्स जिन बच्चों को मिला होता है वो होते हैं, आप इस वक्त लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। सभी लोग वहां पर पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में मुझे लगता है कि शुरुआत हो जाएगी। लगभग समझिए 7:30 बजे के आसपास, 7:36 का यूजुअली टाइम होता है जब झंडारोहण और उसके बाद प्रधानमंत्री का देश के नाम संबोधन होता है। लेकिन इस बार वंदे मातरम के साथ साथ जनगणमन के साथ साथ वंदे मातरम की भी गूंज आप सुनेंगे। और उससे पहले राजनाथ सिंह कैसे अपने आवास पर झंडारोहण कर रहे हैं रक्षा मंत्री, उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। शिवराज सिंह चौहान ने भी अपने घर पर झंडारोहण किया है। जी किशन रेड्डी को आप देख रहे हैं, तो मंत्रियों के आवास में जहां पर झंडारोहण हुआ है उन कार्यक्रम की तस्वीरें देख रहे हैं आप। और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी निकलेंगे और उसके बाद से ये होगा। तो ये राजनाथ सिंह के घर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, उनके आवास की। शिवराज सिंह चौहान भी अक्सर जो तमाम मंत्री होते हैं वो अपने घर पर भी झंडारोहण करते हैं और उसी की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। 80वां स्वतंत्रता दिवस है ये, उन शहीदों को नमन करता हिंदुस्तान आज लाल किले को देखता है बड़ी आस के साथ, बड़े विश्वास के साथ और राष्ट्रभक्ति के साथ, क्योंकि ये लंबा सफर रहा है भारत का, आजादी का एक लंबा सफर, और उसके बाद को भी जो 80 साल है उसको लाल किले ने देखा है इस देश में। आइए आपको लिए चलेंगे हमारे तमाम जो सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 3 खास मेहमान यहां पर भी हमारे साथ हैं। संगीत रागी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आशुतोष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सत्यप्रकाश मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन एक बार फिर से उन बच्चों पर कैमरा गया है जिनके पीछे ये लिखा है विकसित भारत का संकल्प जो है भारत का 2047 का। लेकिन इन बच्चों की नजर से जब आप लाल किले को देखेंगे तो वो ये समझते हैं, वो ये जान पाते हैं, वो ये देख पाते हैं कि ये भारत का जो पहले का सफर रहा है आजादी तक का और उसके बाद से भारत किस तरह से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री का संबोधन भी होगा, 13वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झंडारोहण करने वाले हैं और सब कुछ जैसे सच कर इस वक्त तैयार है यहां से अपने कार्यक्रम के लिए। लेकिन एक बार फिर से आपके साथ शुरुआत करें सत्यप्रकाश मिश्रा जी, प्रधानमंत्री में आज, क्योंकि देखिए जेंजी आंदोलन हुआ और उसके बाद से हर तरफ ये चर्चा है, तो ऐसा और राष्ट्रपति के भी संबोधन में इस बात के संकेत मिले कि कैसे युवा शक्ति है, ताकत है, क्या कुछ आपको लगता है पीएम बोलेंगे?
1: एक बड़ी आबादी का बड़ा हिस्सा है युवा और देश भी युवा है। 80वां स्वतंत्रता दिवस तो भी तो बाल्य से थोड़ा आगे बढ़ा है देश। मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय धर्म के मुताबिक इस राष्ट्रीय मर्म को समझते हुए जरूर थोड़ा ऐसा कुछ जरूर बोलेंगे जिससे देश के युवा को एक नई दिशा मिले। देखिए दिशा है उनके पास, थोड़ी उसमें तेजी आए। जिस देश की आबादी में करीब 30% से अधिक हिस्सेदारी उनकी हो तो उस पर तो प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए। उम्मीद है कुछ ऐसा बोलेंगे जो रास्ता बदलेगा, दिशा नई तय करेगा। आप स्काई रूट पे, वो एक कंपनी थी, उसके बारे में प्रधानमंत्री ने सदन के बाहर कहा कि अब जो हमारे देश का युवा है वो सैटेलाइट बना रहा है स्टार्टअप इंडिया से, और उन्होंने यही स्वतंत्रता के लाल किले के प्राचीर से ही डिजिटल इंडिया की भी शुरुआत करी थी।
0: तस्वीरें आनी शुरू हो गई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप इस वक्त देख रहे हैं और मुझे लगता है कि राजघाट पर हर बार की तरह प्रधानमंत्री पहले पुष्प अर्पित करेंगे, श्रद्धांजलि देंगे बापू को।
2: आंदोलन के लिए प्रेरित किया बापू का जीवन,
0: ये सादगी आज के भारत और उन लोगों के लिए सबसे बड़ा दिन होता है जिनके परिवार आज देखते हैं कि जिनके
2: राजघाट प्रतीक है,
0: परिवार से लोगों ने इस देश के लिए सब कुछ अपना सर्वस्व निछावर किया है।
2: श्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो चुका है
0: राजघाट में पहुंचकर बापू को श्रद्धांजलि, इस बात की गवाही देता है पुष्पांजलि कि ये देश हमेशा अपने शहीदों को याद रखता है, नमन करता है उनके सामने। और हे राम जो आखिरी शब्द थे महात्मा गांधी के, उन्हें महात्मा यूं ही नहीं कहा जाता है, महात्मा गांधी ने इस देश को एक राह एक दिशा दिखाई आजादी के उस संग्राम में, जिस तरह से उन्होंने शांति और अहिंसा की राह पर चलकर इस देश को प्रेरणा दी, इस देश को रास्ता दिखाया, इस देश को ये बताया कि सिर्फ अपने अपनी ताकत के बलबूते अहिंसा सबसे बड़ी आपकी ताकत बन सकती है और हथियारों की जरूरत नहीं होती जब अंग्रेजों जैसे दुश्मन से भी लड़ना हो, सिर्फ अहिंसा और अपने आंदोलन के जरिए उनके खिलाफ एक लड़ाई लड़ी जा सकती है। और यही महात्मा गांधी ने किया। और आज जब आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं, वो जाकर वहां पर नमन करेंगे, श्रद्धांजलि देंगे। 13वीं बार ऐसा हो रहा है जब 15 अगस्त को प्रधानमंत्री शुरुआत कर रहे हैं, ये शुरू से रस्म रहा है, जो भी भारत में प्रधानमंत्री रहे हैं वो सबसे पहले राजघाट में जाते हैं, बापू को श्रद्धांजलि देते हैं और उसके बाद से लाल किले पहुंचते हैं।

0: का ये प्रिय भजन था जो अभी आपने सुना, और ये भजन हमेशा वो गुनगुनाते थे, और इसीलिए ये भजन एक तरह से उनसे जुड़ा हुआ है। जैसे ही ये भजन आप सुनेंगे, आपको महात्मा गांधी, उनका बलिदान याद आएगा देश के लिए। वो कैसे कैसी ताकत बने, इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। और महात्मा गांधी और उन तमाम शहीदों को इसी के साथ नमन किया जाता है जिन्होंने अपना सब कुछ इस देश के लिए न्यौछावर किया है, जिन्होंने बलिदान दिया अपने जीवन का। उन सभी लोगों को याद करने का आज दिन है, और शुरुआत महात्मा गांधी के इस श्रद्धांजलि के साथ। एक बार फिर से बताता है कि भारत किस तरह से अपने जिन लोगों ने इस आजादी की लड़ाई को इतनी ताकत दी उनको किस तरह से देखता है, और आजादी का अर्थ क्या है कि आज हम याद करें उन लोगों को जिन्होंने पूरी ताकत लगा दी, अपना सब कुछ, अपना सर्वस्व लगा दिया इस देश की आजादी के लिए, ताकि हम और आप आजादी से जी सके, और फिर वो जश्न जो आज लाल किले से होने वाला है। मुझे लगता है कुछ ही देर में अब प्रधानमंत्री जैसे यहां से निकलेंगे उसके बाद वहां पर वो पहुंचने वाले हैं। ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें 25 तक, और ये अब 26 की तस्वीर भी इसमें जुड़ गई है। 13वीं बार आज प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, और अपने आप में आप इसको अगर देखें तो आशुतोष जी, ये तस्वीरें बता रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार वहां पर गए बापू को श्रद्धांजलि, और जो भी भारत में प्रधानमंत्री रहे इससे पहले भी रहे हैं वो सभी जाते रहे हैं। लेकिन ये जो पल होता है ना, ये बहुत ही एज ए नेशन एक इमोशनल मोमेंट होता है सभी के।
1: देखिए, ये हर देश के अंदर और हर राष्ट्र के अंदर कुछ ऐसे प्रतीक चिन्ह होते हैं जो पूरे देश को बांध कर रखते हैं, और ये जो तस्वीर है, आप किसी भी विचारधारा से होइए, कोई भी आपकी सोच हो, लेकिन बापू तक आकर सारी चीजें सिमट जाती हैं, क्योंकि बापू की जो सबसे बड़ी फिलॉसफी थी सबको साथ लेकर चलने की थी। आप कहीं पे भी हो, किसी भी तरीके से बात करते हो, और यही उनकी सबसे बड़ी कामयाबी है। और मुझे देखिए, हम लोग शायद इस बात को उसको महसूस नहीं करते हैं, लेकिन 1820 तक जो चाइना और इंडिया का जो ग्लोबल कंट्रीब्यूशन था इकोनॉमिक ग्रोथ में, वो 60% था, और ये अंग्रेजों के आने के बाद हिंदुस्तान वहां पहुंच गया जहां हम लोगों का कंट्रीब्यूशन 2% या 3% के आसपास जाके रह गया। उस देश को जो निरक्षरता थी, भुखमरी थी, उसको एकजुट करना और इतने सारे जातियों इतने सारे धर्मों के लोगों को लेकर चलना और सबको साथ लेकर चलना और उनको सड़क पर उतार देना, जो मैं बार बार हमेशा याद रखता हूं कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया में नेहरू जी गांधी जी के कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करते थे, बोला सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये नहीं कि उन्होंने आजादी दिलाई, वो तो दिलाई उन्होंने, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका ये था कि उन्होंने इस देश को ब्रिटिश साम्राज्यवाद के डर से मुक्ति दिलाई, और उस जब डर से मुक्ति मिल गई तो हर आदमी सड़क उतर गया।
0: गृहमंत्री अमित शाह वहां पर मौजूद है, और सभी केंद्रीय मंत्री वहां पर लगभग पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच जाएंगे। ये दूरी बहुत लगभग आप समझ लीजिए आधे किलोमीटर की है, राजघाट से लेकर लाल किले की, और उसके बाद से औपचारिक रूप से पूरे समारोह की शुरुआत होगी। संगीत रागी जी, भज प्यारे तो सीताराम, मतलब जो हे राम वहां लिखा हुआ भी है, और एक एक संदेश बापू की श्रद्धांजलि पर हर भारतीय प्रधानमंत्री जाकर देता है, क्योंकि आज शहीदों को उनकी जो सब कुछ देश के लिए उन्होंने न्यौछावर किया उसका जश्न है, और उनको याद किए बिना ये दिन संपूर्ण नहीं।
2: मजेदार बात है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का मैं जो रेड फोर्ट से जो भाषण था उसको मैं देख रहा था।
3: बापू ने संपूर्ण मानव जाति को,
2: तो मूलतः 1953 के पश्चात उन्होंने गांधी जी को ज्यादा याद किया है। 1953 से पहले लाल किले की प्राचीर से उतना उन पर प्रगाढ़ता से उन्होंने उसका जिक्र नहीं किया, लेकिन उसके बाद के जितने भी भाषण हैं, देखिए गांधी, मैं बिल्कुल मानता हूं कि गांधी जी एक बहुत बड़े प्रतीक थे और एक बड़े पुरुष महान व्यक्तित्व के मालिक थे, लेकिन जो आप बज रहा है जिसे आप रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीताराम, तो ईश्वर अल्लाह तेरो नाम जो है ये शब्द गांधी जी के हैं। ये जो ओरिजिनल भजन था वो उसका नहीं भजन है, वो उसमें और कुछ था। आज वो जिक्र करने का विषय नहीं है कि नेहरू जी ने डिस्कवरी,
0: धन्यवाद खुद ही समझ लेने के लिए।
2: नहीं नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया में ये बहुत आज के दिन में चीजें निकल कर
0: आई है। दी जा रही है तो मन से दीजिए।
2: मैंने कहा ये विषय बहुत आज के दिन में, ये आज से 25 साल पहले तक ये बातें बहुत ठीक लगती थी, कि गांधी जी ने स्वतंत्रता दिलाई, लेकिन गांधी जी के अतिरिक्त भी इस देश के बहुत बड़े नायक थे. हम सुभाष चंद्र बोस को कैसे भूल सकते हैं, आजाद हिंद फौज के कंट्रीब्यूशन को कैसे भूल सकते हैं, जिसके कम से कम 32,000 सैनिकों ने अपनी जान दी, उनको हम कभी याद नहीं करते हैं, उनका हम नमन नहीं करते हैं. और ये बात भी हमको ध्यान रखना चाहिए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सिर्फ भारत ही आजाद नहीं हुआ था, जिसे हम बार बार कहते हैं एक व्यक्ति के कारण आजादी मिल पाई, तो बहुत सारे आजाद देश हुए, उनके भी अपने अपने नायक थे, वहां पर स्वतंत्रता आंदोलन चला, लेकिन
0: और वो भी पूरे मन से अपने अपने जो स्वतंत्रता सेनानी है उनका सम्मान करते हैं, और ऐसे ही भारत भी करता है.
4: अपने एक संगीत रागी जी में जोड़ना चाहूंगा, राजनाथ जी एक सेकंड, बस एक सेकंड, भारत की कल्पना नहीं हो सकती ना स्वतंत्रता संग्राम की कल्पना हो सकती है. जिस छोर को छू देंगे गांधी में, इतना बड़ा कैनवास है गांधी जी का कि आप पहुंच जाएंगे वहां तक. तो आज वो विषय बिल्कुल नहीं है. और मालूम है कि गांधी से महान व्यक्ति और कैनवस उनका जितना बड़ा है काम करने का हर तरह की आजादी को लेकर, शायद दूसरा व्यक्ति तो नहीं दिखता मुझे.
0: और जो अशांति से, मतलब आप सोचिए कि इतना उनको घृणा थी, उन्होंने सिर्फ अहिंसा का राह भारत को दिखाया. वो चाहते थे शांति और अहिंसा, ये दो शब्द ऐसे रहे जो कि कभी भी हाथ से ना हिले. और यही हर किसी तरह की, अगर आप देखिए तो बुरी चीज से आपको दूर रखा, उस तरह की हिंसा से दूर रखा, और इस तरह की आजादी भारत को मिली, उसका जो वैल्यू है वो अनंत है. तो उस पर अलग से किसी दिन आप कहीं पर बोल लीजिएगा. आज मुझे लगता है कि बड़ा हर्ष और खुशी का दिन है. तो हम लोग 140 करोड़ भारतीय जो इस वक्त जश्न मना रहे हैं, उसमें हम सब भी शामिल हों. तस्वीरें लाल किले की आप देख रहे हैं. कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचने वाले हैं. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उनके स्वागत के लिए मौजूद है. आशुतोष जी जल्दी
5: सेकंड के लिए. सर, महात्मा गांधी दुनिया के इतिहास में अकेले शख्स थे जिन्होंने दो देशों के अंदर मानव मुक्ति के लिए आंदोलन किया, और दोनों देशों में उनकी गिरफ्तारियां हुई, उनकी उनकी मारपिटाई हुई, और उनके साथ अत्याचार हुआ. और सिर्फ वो नहीं, बल्कि उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उनके बेटे, सब लोगों ने वो कुर्बानियां दी. और जब वो तो वो और सोचिए दक्षिण अफ्रीका में जाके वो कर रहे थे वो आंदोलन. तो ऐसा कोई व्यक्तित्व तो पूरी दुनिया में है ही नहीं, इतिहास में कोई नहीं आपको मिलेगा.
0: एक बार फिर से तस्वीरें हम लाल किले की दिखा रहे हैं, जहां पर अब प्रधानमंत्री का कैबल केट पहुंच चुका है. और कुछ ही देर में आप देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री उनका स्वागत करेंगे, और उसके बाद से गार्ड ऑफ ऑनर जिसका वो निरीक्षण करेंगे. प्रधानमंत्री पीछे वाले हिस्से से ऊपर पहुंचेंगे लाल किले के प्राचीर पर, जहां पर वो झंडारोहण करेंगे. और इसी के साथ इस बार जनगण मन और वंदे मातरम पूरा आप सुनेंगे. भव्य नजारा होगा, क्योंकि आज पहली बार वंदे मातरम वहां पर गाया जा रहा है. और वंदे मातरम जो भारत के लिए, जिसका अर्थ एक स्टैंजा को लेकर उस पर अलग विवाद रहा कि पहले उसको क्यों हटाया गया था, अब उसको जोड़ा गया है. पहली बार अब उसको यहां से गाया जाएगा. और ट्रम्पेट्स इस वक्त वहां पर बजते हुए, जिनके साथ स्वागत हो रहा है.
3: लाल किला परिसर में पहुंचने पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत विधिवत रूप से रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ द्वारा किया जाएगा. रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार सिंह भी वहां पर उपस्थित हैं, जो प्रधानमंत्री महोदय का परिचय जीओसी दिल्ली एरिया लेफ्टिनेंट जनरल राजेश सेठी से कराएंगे.
6: After the inspection of the Guard of Honor, the Prime Minister shall move.
0: तो प्रधानमंत्री का काफिला पहुंच चुका है. कुछ ही देर में निरीक्षण होगा गार्ड ऑफ ऑनर का, जो प्रधानमंत्री करेंगे. रक्षा मंत्री वहां पर मौजूद है उनका स्वागत करने के लिए. और आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सभी के जो चीफ है वो वहां पर पहुंचे हुए हैं, और वो सभी उनका स्वागत करने वाले हैं. तो ये तस्वीरें आप सीधे लाल किले की प्राचीर से देख रहे हैं. भव्य नजारा, क्योंकि अलग अलग एंगल से जब आप देखिए सामने इतना खूबसूरत, कई बार आपको दिखेगा कि
3: गार्ड कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल अर्जुन सिंह माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आगमन
0: होंगे, और लाल किले रक्षा मंत्री अब उनका स्वागत करने के लिए वहां पर मौजूद है.
3: रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ, रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार सिंह, गार्ड ऑफ ऑनर में थल सेना दस्ते की कमान संभाली है मेजर आदित्य शर्मा ने, नौ सेना दस्ते की कमान लेफ्टिनेंट कमांडर नीलम राणा और वायु सेना दस्ते की कमान स्क्वाड्रन लीडर विपिन कुमार संभाल रहे हैं।
0: राजनाथ सिंह
3: पुलिस दस्ते की कमान
0: पहले गृहमंत्री रहे, अब रक्षा मंत्री हैं देश के, और ये 2014 से उनका इसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पूरा उनका सफर रहा है। और आज फिर एक ऐसी घड़ी जो आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री महोदय का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो स्वागत यहाँ पर करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। और अब
3: गार्ड ऑफ ऑनर माननीय प्रधानमंत्री महोदय को पेश किया जाएगा।
7: Dance, Leon!

0: उत्तर सेना पुलिस सम्मानगढ़ निरीक्षण के लिए हाजिर।
1: गार्ड कमांडर द्वारा माननीय प्रधानमंत्री महोदय से सलामी गारद के निरीक्षण का अनुरोध और उसे स्वीकार करके वे सलामी गारद की ओर बढ़ रहे हैं। बैंड सुमधुर धुन बजाएगा और माननीय प्रधानमंत्री महोदय सलामी गारद का निरीक्षण करेंगे।

0: करने के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले के प्राचीर की तरफ बढ़ रहे हैं। थोड़ी देर में ही झंडारोहण जनगणमन के साथ साथ आज आप वंदे मातरम यहां से सुनने वाले हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। 80वां स्वतंत्रता दिवस और ये कदम ताल लाल किले के प्राचीर की तरफ, जिस पर इससे पहले 79 times भारत के प्रधानमंत्री अलग अलग वक्त पर जो गए हैं और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचने वाले हैं। थोड़ी देर में उनका संबोधन होगा। अब जल्दी से, क्योंकि अब तो वो घड़ी करीब आ रही है, सत्य प्रकाश मिश्रा जी, क्या कुछ यहाँ से आज बड़ा मतलब हो सकता है, बात हो सकती है, और इसी के साथ इस दिन का भारत के लिए, भारत के सफर में क्या महत्व?
1: प्रवेश के लिए लोकतंत्र को बनाने और संप्रभुता को कायम रखने में जो कीमत चुकाई है इस देश ने और उस जो कुर्बानियां है उसका महत्व बढ़ता है। यहाँ से प्रधानमंत्री मोदी जी और तमाम भारत के प्रधानमंत्री ने लाल किला के प्राचीर से इस देश की अखंडता और एकता पर सदैव बल दिया है, उस पर बल मिलेगा, और विविधता में एकता इस देश में हमेशा कायम रहा है उस पर भी बात होगी, तो देश आगे बढ़े प्रधानमंत्री की हमेशा यही इच्छा रहेगी। देखते हैं आज प्रधानमंत्री मोदी देश को क्या कहते हैं और कैसे चौंकाते हैं।
0: आप क्या कहेंगे संगीत रागी जी?
2: मुझे लगता है कि आज प्रधानमंत्री जी जो है वो शिक्षा नीति के बारे में बात करना पसंद करेंगे, युवाओं को संबोधन करेंगे, किसानों को संबोधन करेंगे और कुछ न कुछ ऐसी नई योजना निकल करके आएगी, क्योंकि मैंने जो भी 13 बार में 12 बार जब उनके भाषणों को देखा है तो कुछ न कुछ नई बातें निकल करके आई है, नया कोई कार्यक्रम निकल करके आया है, चाहे वो जनधन से लेकर के जिसके हम जिक्र कर रहे थे, स्किल इंडिया से लेकर के डेवलप्ड इंडिया, विकसित भारत, ये सारे तमाम चीजें जो है कुछ एक आगे का रोड मैप यहाँ से निकल करके आएगा जो 2027 से लेकर के 2029 तक जाएगा और उसके आगे जो भारत, विकसित भारत की कल्पना जो प्रधानमंत्री की एक है कि 2047 तक हम भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में खड़ा करेंगे, तो उस संकल्प को फिर प्रधानमंत्री जी दोहराएंगे और मुझे लगता है कि कुछ नई योजनाओं के साथ और नए प्रोजेक्ट के साथ प्रधानमंत्री, हर प्रधानमंत्री ये जिक्र करता है कि हमारे सामने वैश्विक चैलेंजेस क्या है, आर्थिक स्तर पर हमारी क्या चुनौतियां हैं, हम विकसित भारत के तौर पर हम स्किल इंडिया में जाएंगे तो क्या है, सेमीकंडक्टर में हम क्या करने जा रहे हैं, क्या क्या हमारे अब तक के अचीवमेंट रहे हैं और किन किन चीजों की चुनौतियां हमारे सामने खड़ी है और वर्तमान भारत की सामाजिक आर्थिक जो चुनौतियां हैं, वैश्विक स्तर की जो चुनौतियां हैं, उन सबका जिक्र प्रधानमंत्री जी जरूर करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि ये पिछले जितने भी उनके भाषण रहे उसमें उसका एक पैटर्न का यदि हम एनालिसिस करें तो मुझे लगता है हर विषय को उन्होंने छुआ है।
0: आशुतोष जी, आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने सामाजिक विषयों पर भी बोला है, तो जो हमने दिल्ली में देखा क्या उसमें आप ऐसा भी कोई जिक्र उम्मीद कर रहे हैं कि हो?
2: देखिए 10 सेकंड से जोड़ देना चाहता हूँ, जैन जी शब्द का वो प्रयोग तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे, युवा शक्ति का प्रयोग करेंगे
3: जी। देखिए जब से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं अब तक जो 12 बार उन्होंने संबोधन किया है और इस बार जो संबोधन कर रहे हैं उसका संदर्भ बिल्कुल अलग है। हमारे ख्याल से आपके प्रधानमंत्री बनने के बाद का सबसे चुनौतीपूर्ण, राजनीतिक तौर पर सबसे चुनौतीपूर्ण वक्त इस वक्त है और बहुत डिसाइसिव मोमेंट उनके लिए है, क्योंकि एक तरीके की बेचैनी इस वक्त समाज में दिखाई पड़ रही है, युवाओं में बेचैनी दिखाई पड़ रही है और कहीं ना कहीं लोगों को लगने लगा कि जो वायदे किए गए थे वो वायदे पूरे नहीं हो रहे हैं, चाहे वो शिक्षा का प्रश्न हो, चाहे स्वास्थ्य का।
4: दिस एड्रेस विल स्पॉटलाइट आवर नेशनल प्रोग्रेस व्हाइल चार्टिंग अ फ्यूचर डिफाइंड बाय इंक्लूजन, इक्विटी एंड अपॉर्चुनिटी।
5: उपस्थित जनसमूह, उत्कंठा से प्रतीक्षा माननीय प्रधानमंत्री महोदय के उद्बोधन की। लाल किले के प्राचीर के सामने जो नेशनल फ्लैग गार्ड मौजूद है वहां पर संयुक्त टुकड़ी के साथ थल सेना का
0: भी है। कुछ लोग देखिए अलग अलग कैमरा वहां मॉनिटर भी है शायद, और अन्य रैंक पर थल सेना पता है वो देख रहे हैं, वंदे मातरम
5: मौजूदगी
0: इस तरह से
5: सूबेदार ईश्वर सिंह कर रहे हैं।
0: अलग अलग टोपियां पहनाई गई हैं, कपड़ों का रंग है जिससे वो लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, और आपको विदेश मंत्री एस जयशंकर दिखाई दे रहे हैं, आपको वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दिखाई दे रही हैं, कृषि मंत्री वहां पर मौजूद हैं, आपको एनएसए अजीत डोवाल और पीके मिश्रा साहब दिखाई दे रहे हैं विजुअल्स में, तस्वीरों में, और वहां पर तमाम लोग जो आज ये अद्भुत सौभाग्य मिला है कि 80वें स्वतंत्रता दिवस पर वो वहां पर मौजूद हैं आज दर्शक दीर्घा में, ताकि वो इस भव्य आयोजन के साक्षी बन सके। कुछ ही देर में झंडारोहण के कार्यक्रम की शुरुआत होगी और हर किसी को इंतजार है उस पल का जब आप वंदे मातरम की गूंज से इस पूरे लाल किले के प्राचीर को देखेंगे। सामने का नजारा अगर देखिए तो पूरा हिंदुस्तान ही लाल किले से लाल किला देखता है, लेकिन एक अद्भुत नजारा है। और ये देखिए, मुझे लगता है कि एक तस्वीर ऐसी है जिसमें आप जो बीच में रैम्पार्ट से ही मुझे लगता है ये कैमरा आपको दिख रहा था, जहां पर ये बच्चे सामने दिखाई दे रहे थे, और वैसे ही उनके आगे अगर आप देखेंगे तो पूरा चांदनी चौक का पूरा इलाका है वो दिखता है। बड़ी खूबसूरत नजार एक तरह से तस्वीर होती है सुबह की, हालांकि लगता है कि वहां ये देखिए, अब मुझे लगता है वेव कर रहे हैं लोग, तो उनको वहां स्क्रीन पर भी अपनी तस्वीर दिखाई दे रही है कि भाई अब हम लोग ऑन स्क्रीन है। आज इतना उत्साह होता है, यकीन मानिए जो लोग वहां पर खुद से पहुंचते हैं उनमें कई बार कहते हैं उनके लिए बहुत बड़ा अद्भुत रहता है। तमाम नेता गण तो हर वर्ष वहां पर पहुंचते हैं, लेकिन जो लोग देश के अलग अलग कोनों से जिनको मौका मिलता है उनके लिए बहुत बड़ा दिन होता है। स्पीकर ओम बिरला साहब को आप देख रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके बाद उधर गृहमंत्री अमित शाह मौजूद हैं, और इस कार्यक्रम के लिए
5: झीलों के नाम पर
0: सीडीएस और तीनों सेनाध्यक्ष हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं। तमाम जो अलग अलग देश के हिस्सों से लोग आए हैं उनके लिए बहुत बड़ा दिन होता है, मतलब उनके लिए हमेशा देखिए एक बार फिर से कैमरा पहुंचते ही वेविंग की तस्वीरें, क्योंकि सबको लगता है कि भाई हम आज इस क्षण में शामिल हैं, तो वो उनके लिए बहुत बड़ा दिन होता है। और कई सालों तक फिर कहानियां चलती है रागी जी, कि हम जब गए थे लाल किले में तो हमने ये
5: नदियों के नाम पर रखे गए थे, और इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष स्वाधीनता दिवस समारोह में जो एनक्लोजर्स हैं उनके नाम भारत की प्रमुख झीलों के
2: लिए स्वतंत्रता दिवस पर और गणतंत्र दिवस पर।
6: जब हम छोटे शहर के लोग देखते थे टेलीविजन पर
2: स्कूल में, जब
6: लाल किले से प्राचीर से लोग वहां देख रहे थे,
2: खत्म कर लेता
6: हूं, इच्छा होती थी कि शायद हम भी कभी शरीक हो पाए।
2: खत्म कर लेता हूं,
0: तो पूरा हुआ है कि नहीं आपका? अभी नहीं हुआ है।
2: नहीं नहीं, हम लोग कभी स्कूल में जब हुआ करते थे तो प्रभात फेरियां लगाया करते थे
6: स्कूल में थे,
2: प्रभात फेरियां हुआ करती थी स्वतंत्रता दिवस पर, गणतंत्र दिवस पर अपने अपने झंडे बनाया करते थे हम लोग,
6: स्वतंत्रता दिवस की उमंग
2: करके ला करके बांस के उसमें उसमें लगा करके, और वो उत्साह एक अद्भुत उत्साह हुआ करता था। मैं जब जिक्र कर रहा हूँ तो 75, 76, 77 इन सब
3: उत्तेजना आकर्षण इस बात को होता था कि स्कूल में लड्डू मिलता था, और मतलब उस दिन का हम इंतजार करते थे।
0: होंगे लेकिन जब तिरंगा होता है जनगण मन तो अंदर में एक भावना आती है, नहीं आती है
2: कोई कितने दिनों से
0: वो इमोशन सिर्फ आप खुद फील कर सकते हैं।
2: तिरंगे का कलर बनाने का एक अपने से तिरंगा बनाने का उस समय तो थोड़े वगैरह मिल जाता
5: था। फ्लैग होस्टिंग

0: Andarsenopolis
1: है। और इसी के साथ झंडारोहण का कार्यक्रम हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और फिर
2: And the 21-gun salute, flower petals being showered at the venue by two Mi-17 helicopters of the Indian Air Force, one trooping the national flag and the other trooping a flag depicting Vande Mataram. The captains of the helicopters, Wing Commander Rajat and Squadron Leader Ankit
1: Kaushne. जिसमें आप देख रहे हैं हेलीकॉप्टर से वहां पर पुष्प वर्षा की जा रही है,
3: वंदे मातरम के 150
1: तिरंगा उसके साथ भी लहराता हुआ शुभ और पावन और ये पर पुष्प वर्षा आज उस देश के नाम
3: का झंडा लेकर आसमान में विलीन होते हुए
1: स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना सब कुछ इस देश की आजादी के लिए समर्पित किया।
3: विशिष्ट दर्शक दीर्घा में मौजूद
1: सिवा ये स्वतंत्रता दिवस जहाँ 13वीं बार प्रधानमंत्री ने झंडारोहण किया है और वंदे मातरम जिसका धुन बजा आज लाल किले के प्राचीर से और उसके बाद अब पीएम का संबोधन वहां से शुरू होने वाला है। और इस वक्त भी देखिए कैसे ये पुष्प वर्षा हमारे जवानों पर होता हुआ जो वहां से आगे बढ़ रहे हैं। दिल्ली पुलिस की ये टुकड़ी आपको दिखाई दे रही है, ये सभी वहां से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जल थल वायु तीनों सेनाओं की
2: टुकड़ियां
1: वहां से धुनों के साथ और आर्मी के इस बैंड की हमेशा चर्चा होती है जिसको आप यहाँ से लेकर बीटिंग द रिट्रीट में देखते हैं। बड़ा भव्य उन्होंने बजाया, मतलब पूरा गीत वंदे मातरम का अपने धुन से बजाया है आज उन्होंने और पहली बार ऐसा हुआ है तो ये अपने आप में बहुत खूबसूरत नजारा रहा। तो तीनों जो जल थल वायु सेना की टुकड़ियां हैं वो वहां से निकलती हुई और दिल्ली पुलिस की भी एक टुकड़ी वहां से निकलती हुई। सारे जहां से अच्छा का धुन इस वक्त बज रहा है और ये सारे ऐसे गीत जो अंदर से आपको बहुत खुश करते हैं, अपने देश पर गर्व कराते हैं और पीछे वो लोग जो आज पहुंचे हुए हैं इस तस्वीर को देखने के लिए। बच्चे के मन में ये गीत तो पूरी तरह से समाया होता है सारे जहां से अच्छा, क्योंकि ये आपको बताता है कि आप अपने देश पर कैसे गर्व कर सकते हैं। और इसी के साथ अब कुछ ही क्षणों में मुझे लगता है प्रधानमंत्री का जो संबोधन है वो शुरू होगा। लेकिन आज कई मायनों में इतिहास रचता हुआ क्योंकि वंदे मातरम की धुन के साथ आज शुरुआत की गई है और उसके बाद झंडारोहण और जनगणमन। तो शहीदों को भी नमन है और साथ में ये 13वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज झंडारोहण वहां से किया है, उनका संबोधन होगा और वंदे मातरम जो जिसकी धुन वहां पर बजी वो सामने लिखा हुआ भी, तो अपने आप में ये एक कीर्तिमान आज भारत के लिए। और
4: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हम सब 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आज हर दिलों की धड़कन वंदे मातरम के नाद से गूंज रही, आज हर घर तिरंगा है, हर मन तिरंगा है और देश उत्साह और उमंग के साथ नए संकल्पों को लेकर के आज आगे बढ़ रहा है। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश आज उन महान सपूतों का पुण्य स्मरण करती है जिन्होंने देश की आजादी के लिए त्याग बलिदान की पराकाष्ठा की। अपने तप त्याग और बलिदान से आजादी के एकमात्र लक्ष्य को लेकर के अपनी पूरी जिंदगी खपा दी। पूज्य बापू समेत सभी स्वातंत्र सेनानियों को बलिदान की महान परंपरा जगाने वाले महान क्रांतिकारियों को आज मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। आज जो इस समारोह में उपस्थित है उन सब के लिए आज एक ऐतिहासिक पल भी है। आजादी के बाद 15 अगस्त को लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं तो इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले दिनों देश के कुछ हिस्सों में बाढ़ का प्रकोप रहा, भूस्खलन का प्रकोप रहा, अनेक परिवार प्रभावित हुए। उनके दुख दर्द को हम भली भांति अनुभव करते हैं। पीड़ित परिवारों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम और पूरा देश उनके साथ खड़े हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, कोई भी राष्ट्र तब महान बनता है तब अपनी सिद्धियों को प्राप्त करता है जब अपने सपनों अपने संकल्पों और अपने सामर्थ्य के दम पर आगे बढ़ता है। मेरे देशवासियों, अब छोटे सपनों से चलने वाला नहीं, हमें बड़े सपने, क्योंकि बड़े सपने हमारी सोच को भी विस्तार देते हैं, हमारी सोच की क्षितिज को विस्तृत करते हैं, हमारे संकल्प दृढ़ होने चाहिए। जब संकल्प दृढ़ होता है तो कठिनाइयों से आपदाओं के बीच से रास्ते निकालने का सामर्थ्य अपने आप उभर करके आता है। और मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे संकल्प भी ऊंचे होने चाहिए, क्योंकि जब सपने ऊंचे होते हैं, संकल्प ऊंचे होते हैं, तो हमारे सामर्थ्य की ऊंचाई भी बढ़ती है, हमारे प्रयासों की ऊंचाई भी बढ़ती है, और तब जाकर के हम सपनों को साकार कर सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आज भारत ने भी एक बहुत बड़ा सपना देखा है, दृढ़ संकल्प के साथ देखा है, नई ऊंचाइयों को छूने के लिए देखा है। और वो सपना है, जब आजादी के 100 साल होंगे, 2047 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे, 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ से इस लक्ष्य को हमें हासिल करना है। और जब दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश विकसित होने का संकल्प लेता है तो ये दुनिया की नजरों में भी हमारे साहस का परिचायक बन जाता है। दुनिया हमारी तरफ देखने का नजरिया बदलने के लिए मजबूर हो जाती है। प्यारे देशवासियों, और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, पिछले 12 वर्ष में देश के कोटि कोटि नागरिकों ने, दलित हो, पीड़ित हो, वंचित हो, आदिवासी हो, गांव में रहने वाला हो, शहर में रहने वाला हो, गरीब हो, मध्यम वर्ग का हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, नारी हो, पुरुष हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, हर किसी ने पिछले 12 साल में एक संकल्प के साथ, समर्पण के साथ देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में हर प्रकार से प्रयास किया है। मैं उनके इस प्रयासों का आदरपूर्वक स्वीकार करता और उसी का परिणाम है कि इतने कम समय में 25 करोड़ देशवासी गरीबी को परास्त करके गरीबी से बाहर निकले हैं। इन्हीं देशवासियों का प्रयास का परिणाम है कि हम कभी फ्रेजाइल फाइव में गिरे जाते थे, 12 साल के भीतर भीतर हम एक मेजर इकोनॉमी में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गए हैं। साथियों, देश आजाद हुआ, बहुत सारे सपने लेकर के आजाद हुआ, लेकिन हम गति नहीं पकड़ पाए, रफ्तार नहीं पकड़ पाए। होती है, चलती है, अरे हो जाएगा, देखा जाएगा, उसी में खोए रहे। 2014 तक आते आते तो पूरे विश्व ने हमें फ्रेजाइल फाइव के उस में डंप कर दिया था। ऐसे समय पिछले 12 साल में भारत ने एक नई रफ्तार पकड़ी, तेज गति से हम आगे बढ़ रहे हैं और देशवासियों का संकल्प है कि अब 140 करोड़ देशवासियों के संकल्प को, सामर्थ्य को रोकना नामुमकिन है। प्यारे देशवासियों, पिछले 12 वर्षों में डिफेंस प्रोडक्शन करीब 4 गुना, खादी और ग्रामोद्योग का उत्पादन करीब 5 गुना हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करीब 7 गुना बढ़ा, आधुनिक रेलवे कोच का निर्माण 21 गुना बढ़ा, मोबाइल फोन उत्पादन 33 गुना बढ़ा। इतना ही नहीं, आधुनिक युग को देकर के भी, डिजिटल और इनोवेशन की दुनिया में भी हमने अपना परचम लहराया। इंटरनेट कंज्यूमर करीब करीब 4 गुना बढ़े, पेटेंट ग्रांट होने की संख्या 4 गुना बढ़ी, डिजिटल ट्रांजैक्शन 100 गुना बढ़े, सामान्य मानवीय की सुविधाओं की तरफ भी हमने उतना ही गंभीरता से काम किया। हर साल औसतन 15 गुना ज्यादा तेजी से हमने नल से जल कनेक्शन दिए, हर साल औसतन 6 गुनी ज्यादा रफ्तार से लोगों को गैस कनेक्शन दिए, हर साल 4 गुनी रफ्तार से गरीबों के लिए टॉयलेट बनाने का काम किया, हर साल 3 गुना ज्यादा तेजी से गरीबों को घर देने का काम किया। देश ने गवर्नेंस में भी बहुत बदलाव लाया, हजारों की संख्या में कंप्लायंसेस खत्म किए, सैकड़ों की तादाद में पुराने कानून खत्म किए। पिछली शताब्दी के कानूनों से 21वीं शताब्दी की मार्च नहीं हो सकती। हमने आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मेट्रो का विस्तार किया, हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ताकत दी, जिस स्पीड से काम, जिस स्केल पर काम किया, ये सब, ये रफ्तार, ये विस्तार, ये अचीवमेंट आजादी के बाद पहली बार पिछले एक दशक ने देखा है। और जब इतनी सारी सिद्धियां हमारे सामने हो, इतनी तेज गति दिखाई देती हो, देशवासियों का सामर्थ्य पल पल प्रकट होता है, तब तो 2047 में विकसित भारत बनने का संकल्प कभी भी अधूरा नहीं रह सकता है। ये सारे आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि हम आगे बढ़ने वाले हैं, मेरे प्यारे देशवासियों। लेकिन उसके लिए आत्मविश्वास की जरूरत होती है, आत्मगौरव की जरूरत होती है, और साथ साथ आत्मनिर्भर भारत होना भी बहुत जरूरी होता है। और इसलिए बीते वर्षों में हमारा कन्विक्शन रहा है कि भारत को हमें अब दूसरे देशों पर निर्भर रह करके नहीं जीना, हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। दुनिया में बहुत कुछ मिलता है, सस्ता मिलता है, जल्दी मिल सकता है, लेकिन उससे हमारा सामर्थ्य तैयार नहीं होता, न हमारे सामर्थ्य की कसौटी होती है। और इसलिए हमें भी अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है, अपने हितों की सुरक्षा हमें खुद को करनी है। और इसलिए आत्मनिर्भर भारत का संकल्प बहुत दृढ़ता के साथ हम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। मेक इन इंडिया, स्वदेशी, वोकल फॉर लोकल, इन सारे क्षेत्रों में आज हर भारतीय का मन जुड़ रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं सेमीकंडक्टर का। देश आजाद होने के बाद विश्व में तो सेमीकंडक्टर की चर्चा हो चुकी थी, हमारे यहां भी बातें होती थी, लेकिन सेमीकंडक्टर का कोई बड़ा प्लान हम आगे नहीं बढ़ा पाए। और आज स्थिति क्या है? आज की डिजिटल दुनिया में, आज की टेक्नोलॉजी में चीप का महात्म्य हम समझते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होगा, हमारे मेडिकल इक्विपमेंट होंगे, हमारे ट्रांसपोर्ट के रास्ते होंगे, हर किसी में चीप अनिवार्य है। और इसे, इस चीप के बिना दुनिया थम जाए ऐसी स्थिति पैदा हो जाए। और इसलिए भारत ने आत्मनिर्भर होने की दिशा में अपना सेमीकंडक्टर प्लान, बड़ा सेमीकंडक्टर प्लान, 3 सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हो चुके हैं। और मुझे बताया गया है कि वहां जो प्रोडक्शन हो रहा है वह एक्सपोर्ट होना शुरू हो चुका है। और मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, आने वाले 7-8 वर्ष में और 5, 7 या 8 सेमीकंडक्टर प्लांट बहुत ही जल्द शुरू होने वाले। ये आत्मनिर्भर भारत हमें विकसित भारत की दिशा में जाने का महामार्ग देते। मेरे प्यारे देशवासियों, वैसे ही एक चर्चा क्रिटिकल मिनरल की हो रही है, पूरी टेक्नोलॉजी क्रिटिकल

कल मिलने के विषय में भारत के पर भरोसा करने लगे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, जैसे सेमीकंडक्टर की बात हो, क्रिटिकल मिनरल की बात हो, वैसे ही जिस टेक्नोलॉजी की दिशा में हम जा रहे हैं, दुनिया जा रही है, उसमें एनर्जी का महत्व और बढ़ता चला जा रहा है। अब एनर्जी के बिना भी नई दुनिया को चलाना मुश्किल है और इसलिए हमें चीप हो, एआई हो, डेटा सेंटर हो, हमें बहुत बड़ी मात्रा में बिजली की जरूरत होगी। एनर्जी सिक्योरिटी ये हमारे समय की मांग है और इसलिए हमने पहले से ही उस दिशा में एक के बाद एक मजबूत कदम उठाए हैं। एनर्जी सिक्योरिटी का एक बड़ा माध्यम है परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। हमने पार्लियामेंट में शांति एक्ट पास कर करके एक नए लक्ष्य तरफ जाने का रास्ता तय कर लिया है। 2047 तक हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। इसी एक दशक में हम 5 नए न्यूक्लियर रिएक्टर शुरू करने का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। इस वर्ष भारत ने फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करके एक अहम पड़ाव पार किया है और उसके कारण परमाणु ईंधन में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में हमें एक बहुत बड़ा सफलता का कदम हमने रखा है। मेरे प्यारे देशवासियों, कई बार संसाधनों की कमी के कारण देश रुकता नहीं है, लेकिन रुकने का कारण सोच की सीमाएं होती है। जब सोच बंद जाती है, सीमाओं में सड़ने लग जाती है, तब हम अपने सामर्थ्य को भी पहचान नहीं पाते हैं। देश को आज कच्चे तेल पर निर्भर रहना पड़ रहा है और हमारी गलत सोच के कारण है। आप जान के हैरान हो जाएंगे, हमने समुद्री तट पे 99% हमारा समुद्री तट का पूरा हिस्सा ऐसी सोच के कारण नो गो एरिया घोषित करके रखा था। हमने ही समंदर के अंदर जाकर के एक्सप्लोरेशन न करने का निर्णय कर लिया था। ये सोच का दारिद्र था, हमने फैसला किया ये नहीं चल सकता। हमने उस 99% को जो कभी नो गो एरिया हुआ करते थे, हमने उसको गो अहेड एरिया के रूप में खुला कर दिया है और अब हम समुद्र के भीतर भी एक्सप्लोरेशन करने की और नए नए भंडार खोजने की दिशा में हम प्रवृत्त हैं, हम प्रयास कर रहे हैं। हमने पिछले वर्ष उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रखते हुए समुद्र मंथन की घोषणा की थी और पिछले दिनों हमने 85,000 करोड़ रुपए इस काम के लिए आवंटित करके काम को गति देने का निर्णय कर लिया है। मेरे प्यारे देशवासियों, एनर्जी सिक्योरिटी, इसका मैंने कहा कि हमें अल्टरनेट स्रोतों की तरफ भी पूरी शक्ति लगाना बहुत जरूरी है और इसलिए ऊर्जा का सही इस्तेमाल बढ़ाते हुए भारत इसी दिशा में आज तेजी से काम कर रहा है। 2014 से पहले, मतलब आज से 12 साल पहले, हमारे देश में सिर्फ 70 शहरों में पाइप से गैस की व्यवस्था थी, पाइप से गैस डिस्ट्रीब्यूशन होता था। 12 साल में इन 70 शहरों को हमने

0: 700 शहरों तक पहुंचा दिया है। ये होती है रफ्तार, ये होता है विस्तार। 2014 के पहले मुश्किल से 20-22 लाख घरों में पाइप से गैस पहुंचता था, आज 2.25 करोड़ घरों में पाइप से गैस पहुंचाने का काम हो रहा है। 12 वर्ष पहले देश में सोलर एनर्जी की कैपेसिटी सिर्फ 2 गीगावाट थी, 2 गीगावाट, आज 160 गीगावाट हमने प्राप्त किया है लक्ष्य। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं एक और जानकारी देता हूं, हमने इसका लाभ देश के मध्यम वर्ग को, सामान्य परिवार को मिले इस तरफ भी उतना ही ध्यान केंद्रित किया। हमने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना चालू की और आज मुझे संतोष है कि इतने कम समय में 50 लाख घरों का सोलर एनर्जी का काम हम आंकड़ा पार कर चुके हैं, तेजी से चल रहा है और उसके कारण हजारों घरों का बिजली बिल जीरो हो गया है। हजारों घर अपनी बिजली का उपयोग करने से अतिरिक्त बिजली आज बेच करके कमाई कर रहे हैं। हर परिवार को हम इस काम के लिए 80,000 रुपया सरकार की तरफ से एक एक परिवार को मदद दी जा रही है, तब जाकर के हम इस काम को पूरा कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आपको जानकर के हैरानी होगी, ये जो हमारी रेलवे है उसका इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हमारे देश में 1925 में शुरू हुआ था। 1925 में इलेक्ट्रिफिकेशन का काम शुरू हुआ, लेकिन 90 साल में, 1925 से लेकर के 90 साल में सिर्फ 30% रेल का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था, यानी 90 साल में 30%। हमारी रफ्तार देखिए, लक्ष्य को पाने के लिए हमारी दौड़ देख लीजिए, हमने इन एक दशक के अंदर 100% काम पूरा कर दिया। 90 साल में 30%, 10 साल में 70%, ये होता है काम। और इसके कारण डीजल जो हमें बाहर से लाना पड़ता है उसकी बचत हुई, बिजली से हमारी ट्रेनें चली, पर्यावरण को फायदा होने लगा। मेरे प्यारे देशवासियों, हम यहां से नहीं रुके हैं, हम दुनिया के अंदर पीछे रहना नहीं चाहते। पिछले दिनों आपने खबर सुनी होगी, भारत ने ईंधन का एक नया क्षेत्र को भी छू लिया है। देश ने पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू कर दी है और मुझे खुशी है ये सबसे लंबी ट्रेन है और सबसे ताकतवर ट्रेन है। और दुनिया में हाइड्रोजन ट्रेन के क्षेत्र में भी भारत ने अपना झंडा गाड़ दिया है। प्यारे देशवासियों, पिछले 10-12 साल हम लगातार 2047 के लक्ष्य को पाने के लिए दौड़ रहे हैं, एक के बाद एक सोपान सिद्ध कर रहे हैं। हमने सोचा भी नहीं था कि हमें इसमें भी कुछ मुसीबतों का झेलना पड़ेगा। पिछले 10-12 वर्ष में कितने संकटों का सामना करना पड़ा। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया, सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई थी। कोरोना से बाहर निकले, युद्ध की विभीषा की खबरें आने लगी, कहीं यूक्रेन तो कहीं पश्चिम एशिया, हर जगह पे तनाव का माहौल और पता नहीं भविष्यवेत्ताओं ने तो न जाने क्या क्या घोषणाएं कर दी थी। देश को डराना, देश को भयभीत रखना, देश को चिंतित रखना, इसी में कुछ लोगों को आनंद आता है। वैक्सीन नहीं मिलेगी, कोविड में लोग बचेंगे नहीं, कुछ भी नहीं होने वाला। वेस्ट एशिया का क्राइसिस आया, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं मिलेगा, गैस नहीं मिलेगा, डीजल नहीं मिलेगा, फर्टिलाइजर नहीं मिलेगा। सारी दुनिया भर की अफवाहें फैला करके भारत के लोगों को भयभीत करने का, डराने का, चिंता के अंदर डुबो देने का कुछ लोगों को आनंद आ रहा था। लेकिन देश ने देख लिया कि पिछले 10-12 साल की सुविचारित योजनाएं रंग ला रही है और हम इतने बड़े संकट के बावजूद भी नागरिक देवो भव के मंत्र को लेकर के जीते हुए भारत ने जो तैयारियां की थी, एक के बाद एक कदम उठाया था। सोचा नहीं था यह संकट आएगा, लेकिन उस संकट के समय में ये सारी चीजें काम आ गई और आज देश में गैस भी है, पेट्रोल भी है, यूरिया भी है। हम अपनी ताकत के ऊपर खड़े हो रहे, चल रहे। मेरे प्यारे देशवासियों, दुनिया के इन संकटों का प्रभाव हर किसी पर हुआ, हम भी अछूते नहीं। यूरिया के दाम दुनिया में 3,000 रुपया पहुंच गए एक बोरी का। आज भी हम मेरे देश के किसानों को वो बोझ सहने के लिए मजबूर नहीं कर रहे, सरकार अपने कंधों पर वो बोझ उठा रहा है। और दुनिया से जो 3,000 रुपया में यूरिया का बोरा हमें मिलता है, वो हमारे किसानों को हम सिर्फ 300 रुपये में दे पाते हैं। इतना ही नहीं, डीएपी आज दुनिया में बाजार 5,000 पहुंच चुका है, लेकिन मेरे देश के किसानों को दिक्कत ना हो इसलिए 1,350 रुपये में आज भी डीएपी देने का काम हम कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, एक समय था जब मैं आत्मनिर्भरता की बात कर रहा था तो कुछ लोग, एयर कंडीशन चैम्बर में बैठ करके सोचने वाले लोग हमें बता रहे थे ग्लोबलाइजेशन का क्या होगा। लेकिन दुनिया देख रही है कि पिछले एक दशक में ऐसा लग रहा है कि दुनिया ने ग्लोबलाइजेशन बोलना ही बंद कर दिया है। जहां से ग्लोबलाइजेशन की आवाज आती थी वो बंद सुनाई नहीं देती है। दुनिया का हर देश अपनी अपनी संभालों के मिजाज की तरफ गया है। लेकिन दुर्भाग्य से इस संकट के कालखंड में कुछ लोगों ने अपना रुतबा दिखाने के लिए संसाधनों को वेपनाइज करने का खेल खेला है। दुनिया अपने पास जो कुछ भी है उसको वेपनाइज करने में लगी है, संसाधनों का वेपनाइज, रिसोर्स का वेपनाइज, पेट्रोल, डीजल, फर्टिलाइजर, दवाइयां, टेक्नोलॉजी की चिप्स। इतना ही नहीं, भूभाग को भी वेपनाइज किया जा रहा है। मुझे और ऐसे समय अगर हम आत्मनिर्भर के मंत्र को लेकर 10 साल सही दिशा में न चले होते तो हम कल्पना कर सकते हैं कि ऐसी चुनौतियों का मजबूती से मुकाबला कैसे करते हैं। और हमारी तैयारियां निरंतर बढ़ती जा रही है मेरे प्यारे देशवासियों। दूसरी तरफ आज भारत का प्रोफाइल पूरी तरफ बढ़ रहा है। आज भारत दुनिया के लिए एक स्वीकृत और सम्मानीय देश के रूप में बन रहा है। भारत के पास स्थिर पॉलिटिकल मैंडेट है, स्थिर सरकार है, भारत का वाइब्रेंट लोकतंत्र है, भारत का मजबूत न्याय तंत्र है और हम सबको दिशा देने वाला भारत का संविधान है। और अब दुनिया हमारे इन सामर्थ्य को पहचानने लगी है और इसलिए 2014 के बाद दुनिया करीब करीब 40 देशों के साथ हमारा एफटीए एग्रीमेंट हो रहा है। अब देखिए कितना बड़ा अवसर आया है। लेकिन मैं ये जो ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं ये एक बहुत बड़ा अवसर है और इसलिए खास करके मैं मेरे एमएसएमईस को कहना चाहूंगा कि हमें इस मौके को छोड़ना नहीं है, दुनिया में हमें पहुंचना है, भारत के उत्पाद की हर चीज विश्व के बाजार में पहुंचे, और चाहे हमारा टेक्सटाइल हो, हमारी मशीनरी हो, हमने दवाइयां हो, हमने मौका छोड़ना नहीं है, लेकिन वैश्विक जो पैरामीटर्स हैं उस पैरामीटर को हमें पार करना होगा। हमें दुनिया से जो मिलता है उसे अच्छा देना पड़ेगा, दुनिया में जो मिलता है उसे सस्ता देना पड़ेगा, और पंजाब के लुधियाना से लेकर के तमिलनाडु के तिरुपुर तक हमारा टेक्सटाइल सेक्टर दुनिया में पहुंच सकता है। इतना ही नहीं, केरलम से लेकर के गुजरात और तमिलनाडु से लेकर के बंगाल, ये हमारा समुद्र तट, हमारे मछुआरे भाई बहन आज इस एफपीए के कारण हमारे श्रीप यानी झींगा उसके एक्सपोर्ट की बहुत संभावना बनी है, हमारे सी फूड की दुनिया में पहुंच बनने की संभावना पड़ी हुई है, और इसे मैं चाहूंगा कि हम इस परिस्थिति का फायदा उठाते हुए हम आगे चलते हुए हम इन कामों को पार करने के लिए प्रयास करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मैंने जो भूमिका आपके सामने रखी है उसके पीछे 2047 का लक्ष्य इन मजबूत नींव पर खड़ा है। 2047 विकसित भारत का लक्ष्य हमने पिछले 10-12 साल में देशवासियों ने जो सामर्थ्य दिखाया है उस सामर्थ्य का हिस्सा है, और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सदी का एक चौथाई हिस्सा बीत चुका है और अगला एक चौथाई हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब हम रुक नहीं सकते हैं, हमारी गति नहीं रुक सकती है, हमारी दिशा तय हो चुकी है, हमें प्राप्त करके रहना है, और इसके लिए हमें अपना वर्क कल्चर बदलना होगा, हमारे वर्क कल्चर को बदलते हुए हमें हमारी सोच को भी बदलना होगा, हमें हमारे काम की गति को भी बदलना होगा। जो काम पिछले 5-7 दशक में नहीं हुए हैं वो काम हमें आने वाले 5-7 साल में करने हैं, और मेरा भरोसा है मेरे देश की युवा शक्ति पर, मेरे देश के नौजवानों पर, मेरे देश की माताओं को बहनों पर, मेरे देश के किसानों पर, मेरे देश के मजदूरों पर, कि हम इस सपने को साकार कर सकते हैं, और इसलिए हमें रिफॉर्म की गति को भी आगे बढ़ाना है। और जब मैं रिफॉर्म की बात कर रहा हूं, रिफॉर्म नहीं हमारे लिए कोई कंपल्शन है, नहीं रिफॉर्म ये हमारे लिए कोई बजबड़ है, हमारे लिए रिफॉर्म ये कन्विक्शन है। आउट ऑफ कन्विक्शन हम रिफॉर्म एक्सप्रेस पर चल पड़े हैं, और हम आने वाले दिनों में भी नेक्स्ट लेवल रिफॉर्म की ओर बढ़ने वाले हैं, और इसलिए सरकार, समाज, उद्योग, उत्पादक, किसान, हर किसी ने अपनी ट्रेडिशनल व्यवस्थाओं में रिफॉर्म करना पड़ेगा, सोच में रिफॉर्म करना होगा, अपने लक्ष्यों को रिफॉर्म करना होगा। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, हमें एक निश्चित दिशा में को लेकर के चलना होगा। मैं आज उस युग को भी याद करना चाहूंगा जब देश, भारत का सामर्थ्य सप्त सिंधु के रूप में हम जानते थे, हम समझते थे, हम सुनते थे। अब विकसित भारत बनाने के लिए हमें नई धारा चाहिए। आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्त धारा का आह्वान करता हूं। आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ वो सप्त धारा के सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे। और इसके साथ साथ देश की युवा शक्ति का सामर्थ्य का भरपूर राष्ट्र निर्माण में उपयोग होगा, उनकी शक्ति जोड़ी जाएगी। आने वाले दिनों में जब मैं सप्त धारा की बात करता हूं सप्तधारा की पहली शक्ति है मैन्युफैक्चरिंग पावर। मेरे प्यारे देशवासियों, हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत आगे बढ़ाना होगा और प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ साथ हमें छोटे छोटे पुर्जे भी बनाने हैं और बड़े बड़े प्रोडक्ट भी बनाने हैं। पूरा वैल्यू चेन हमारा होना चाहिए और उसे लेकर के चाहे हमें कंपोनेंट भी चाहिए और हमें कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग भी चाहिए, कंप्लीट प्रोडक्ट भी चाहिए। डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन का भरोसामंद केंद्र बनना होगा। इसके लिए मैं तीन चीजों पर विशेष जोर देना चाहता हूं। मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में जो मेरे भाई बहन हैं, ये समय का ये अवसर है, इस अवसर को जाने मत दें और इसके लिए हमें कॉस्ट, क्वालिटी और स्केल इसके विषय में वैश्विक मानदंडों से खरा उतरना पड़ेगा। हमारी फैक्ट्रीज कॉम्पिटिटिव हो, हमारे प्रोडक्ट्स यूजर फ्रेंडली हो, हमारा पैकेजिंग दुनिया के लोगों को लुभावने वाला हो, आकर्षित करने वाला हो, हमारा जीरो डिफेक्ट प्रिसिशन मैन्युफैक्चरिंग ये हमारी पहचान बनना चाहिए। हर मैन्युफैक्चरर, हर एंटरप्रेन्योर, हर एमएसएमई से मैं कहना चाहता हूं, ग्लोबल मार्केट में हमारी पहचान विश्वसनीयता और गुणवत्ता के आधार पर होनी चाहिए, क्वालिटी के संबंध में नो कॉम्प्रोमाइज। और इसलिए हमारा मंत्र क्वालिटी क्वालिटी क्वालिटी होना चाहिए, यही हमारा ग्लोबल ब्रांड वैल्यू बनेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, इस सप्तधारा की दूसरी शक्ति है कृषि और फूड प्रोडक्शन, खूब फूड प्रोसेसिंग। हमें इस दिशा में आगे बढ़ना होगा। हमारे किसानों ने अब दुनिया के बाजार खुल चुके हैं, एफपी के कारण हमें एक बहुत बड़ा मार्केट मिल रहा है, हमें वहां पहुंचना है, हमें उस जगह को हाथ लगाना है, हमें खेत से लेकर एक्सपोर्ट मार्केट की ओर जाना होगा। हमारे पारंपरिक खान पान हो, हमारे मिलेट्स हो, हमारे मसाला हो, हमारे पाल हो, फूल हो, क्या कुछ नहीं है हमारे पास, वो ग्लोबल ब्रांड्स बनने चाहिए। हमारे किसान केमिकल फ्री खेती को बल देंगे, दुनिया में इनकी मांग और बढ़ने वाली है और जो ग्लोबल पैरामीटर्स के अंदर हर प्रकार से सिद्ध होने वाले हमारे एग्रो प्रोडक्ट होंगे तो दुनिया में हम आसानी से पहुंच पाएंगे। मेरी सप्तधारा की तीसरी शक्ति है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। मेरे प्यारे देशवासियों, आज जमाना एआई का है, क्वांटम का है, स्पेस का है, रोबोटिक्स का है, डेटा सेंटर्स का है, पूरी तरह एक नया क्षेत्र खुल चुका है और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ये भी हर पल हमें चुनौती दे रही है और इसलिए देश को दुनिया के लिए मार्केट नहीं बना देना, हमें इनोवेशन का हब बनना है। हमने यूपीआई और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में लोहा मनवा लिया है, हमारी ताकत का परिचय करवा दिया है। अब भारत को डिजिटल पब्लिक टेक्नोलॉजी उसको भी दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना है। भारत को नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में लीड करना है। मेड इन इंडिया 6G हर कोने में पहुंचे, यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए और हमें उसमें तेजी करनी चाहिए और इसके लिए हमारा प्रयास कम नहीं होना चाहिए। सप्तधारा की चौथी शक्ति है गति शक्ति। यह गति शक्ति देश के अंदर सीमलेस फास्ट कनेक्टिविटी पर हमें बल देना होगा, शहरों को हाई स्पीड रेल से हमें जोड़ना होगा, मॉडर्न हाईवे चाहिए, इनलाइन वाटरवेज चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक की व्यवस्था चाहिए। हमें पोर्ट्स को सिर्फ सामान उतारना चढ़ाने की जगह नहीं, दुनिया के शिप्स आकर के लंगर हो जाए इतना नहीं, हमें हमारे पोर्ट्स को पोर्ट लेड डेवलपमेंट ग्रोथ की दिशा में हमें आगे बढ़ना होगा। हमारी पांचवी शक्ति है सप्तधारा की, वो है रक्षा शक्ति। और ये रक्षा शक्ति का महत्व हर प्रकार से है। मेरे प्यारे देशवासियों, डिफेंस में आत्मनिर्भर होना अब भारत ने अनुभव कर लिया, दुनिया ने अनुभव कर लिया है, इसके बिना कोई चारा नहीं है। विश्व जब अपनी अपनी ही सोच रहा है तब भारत विश्व के लिए बाजार बनकर के नहीं रह सकता है। हमें डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना हुआ, नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस टेक्नोलॉजी डेवलप करके हमें ग्लोबल सप्लायर बनने की दिशा में हमें लक्ष्य लेकर के चलना है। हमें ड्रोन काउंटर ड्रोन सिस्टम को विकसित करना होगा और हाइपरसोनिक डिफेंस टेक्नोलॉजीज उस पर हमें लीडरशिप लेनी होगी। साथियों, साइबर सुरक्षा भी आज हर घर के लिए एक समस्या बन रही है, वो भी एक रक्षा का क्षेत्र है जिसमें हमारे युवाओं की जो सामर्थ्य है उस सामर्थ्य का उपयोग हम देश के और दुनिया के लिए कर सकते हैं। हमारी सप्तधारा की छठी शक्ति है ग्रीन इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी, जो ग्रीन जॉब को भी जन्म देती है। हमें ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी स्टोरेज, ग्रीन मोबिलिटी, ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग इन ग्लोबल स्केल हमें पाकर के रहना है। हमें दुनिया में, दुनिया जब ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा करती रहती है, हम रास्ते खोजते रहते हैं, हम समस्याओं का समाधान दे रहे हैं और भारत ये ग्रीन मूवमेंट का बहुत बड़ा सामर्थ्य लेकर के चलिए। भारत के पास ब्लू इकोनॉमी के लिए भी बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा लंबा हमारा कोस्ट लाइन है। ब्लू इकोनॉमी के लिए बहुत बड़े अवसर है, फिशरीज है, कोस्टल टूरिज्म है, ओशन टेक्नोलॉजी है, ऐसे कितने ही क्षेत्र हैं जिसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत सप्तधारा की जब बात करके चला है तो हमारी सातवीं धारा है और दुनिया के लिए इसका अपना भी एक महत्व है और वो है भारत का सॉफ्ट पावर। भारत के सॉफ्ट पावर की ताकत है। आज योग ने पूरी दुनिया को भारत के साथ जोड़ के रखा हुआ है। योग दुनिया के लिए एक ऊर्जा बनता जा रहा है, भारत के लिए विश्वास का बड़ा कारण बनता जा रहा है। जिस भारत के पास आस्था के केंद्र हो, जिस भारत के पास आयुर्वेद हो, जिस प्रकार से भारत के पास होलिस्टिक हेल्थ केयर की व्यवस्था हो, हील इन इंडिया का मूवमेंट हो, हम दुनिया के अंदर हमारे सामर्थ्य को लेकर के जा सकते हैं। हैंडीक्राफ्ट हो, संस्कृति हो, हमारी फिल्में हो, हमारा क्रिएटिव वर्ल्ड हो, वीएफएक्स हो, हमारा एनिमेशन हो, हमारी गेमिंग हो, डिजिटल कंटेंट हो, क्रिएटिव वर्ल्ड के अंदर भारत अपना रुतबा दिखा सकता है। हमने उसको वैश्विक सामर्थ्य के रूप में विकसित करना होगा। आज भारत ने वेव समिट को एक बहुत बड़ी ताकत दी है। दुनिया धीरे धीरे भारत का ये जो वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट है उसकी राह देखता रहता है और वो भारत के सॉफ्ट पावर को, भारत के क्रिएटिव दुनिया को परिचित करेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत के पास विशाल वन्य संपदा है, हमारे पास 100 से ज्यादा नेशनल पार्क है। क्षमता बहुत है लेकिन विदेशी टूरिस्टों को आकर्षित करने में हम कम पड़े हैं। हमें मौका है हमारे सॉफ्ट पावर के माध्यम से दुनिया के टूरिस्टों को भारत के लिए आकर्षित करने का। हमारा सामर्थ्य हमें दुनिया को दिखाना है, हम ये काम आरा से करें और हम जल्द से जल्द हम इन लोगों, आज दुनिया में स्पोर्ट्स की जो है वो भी एक बहुत बड़ा भारत के प्रति आकर्षण का केंद्र, दुनिया के स्पोर्ट्स इवेंट भारत में क्यों न हो। कॉन्सेंट इकोनॉमी बहुत बढ़ रही है, देश के नौजवानों का आकर्षण है, विश्व का हर कोई कलाकार चाहता है कभी न कभी भारत की धरती पर अपना कॉन्सेंट करे, ये बहुत बड़ा अवसर है। हमें इसको मोबिलाइज करने के लिए व्यवस्थाएं खड़ी करनी होगी। साथियों, सप्तधारा की इन सप्त शक्तियां उद्देश्य सिर्फ एक सेक्टर में प्रगति करने का नहीं है, एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ हमें राष्ट्र को जो लक्ष्य लेकर के हम चल रहे हैं, जो एम्बिशन लेकर के चल रहे हैं, उस स्केल को हमें पार करने की दिशा में काम करना है। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ चीजें मैंने बताई हैं लेकिन मैं इससे भी आगे सोचता हूं। मैं जरा देश को झकझोरना चाहता हूं, मैं देश की शक्ति को भी झकझोरना चाहता हूं। देश यानी सिर्फ सरकार नहीं होती है, देश यानी हर नागरिक जुड़ता है। क्या हम सोच नहीं सकते कि फॉर्च्यून 500 की चर्चा तो बहुत सुनते हैं, आने वाले एक दशक में इन फॉर्च्यून 500 में 50 कंपनियां भारत की क्यों न हो, ये लक्ष्य हमारा क्यों न होना चाहिए। आज बैंकिंग सेक्टर फल फूल रहा है, दुनिया की टॉप बैंक के अंदर भारत की बैंक का झंडा भी क्यों न फहरता हो, भारत की बैंक भी टॉप बैंक 5 बैंक में भारत की भी एक बैंक होनी चाहिए। भारत की फार्मा की दिशा में हमने बहुत काम किया है, लेकिन समय की मांग है कि दुनिया की 5 बड़ी फार्मा कंपनियों में भारत की भी 1-2 फार्मा कंपनियों का नाम गूंजना चाहिए, भारत उसमें अपना स्थान बनाना चाहिए। लॉ फर्म्स होते हैं, रेटिंग एजेंसी होती है, क्या समय की मांग नहीं है कि ग्लोबल लीडरशिप अब हमारे हाथ में होनी चाहिए? टैलेंट है, सामर्थ है, हमारा लंबा इतिहास भी है, भाषाओं पर हमारा प्रभुत्व है, हमें विश्व में पहुंचना चाहिए। हमारी कोई कंसल्टिंग फर्म, अकाउंटिंग फर्म दुनिया के टॉप फर्म्स के अंदर क्यों नहीं होनी चाहिए? भारत की टेक्नोलॉजी कंपनियां दुनिया के अंदर सिरमौर हो, यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हमारे ऐसे ब्रांड हो जिससे दुनिया आकर्षित होती हो, हमारे ब्रांड हमारे देश की पहचान हो और विश्व के लिए एक डेस्टिनेशन बन जाए, उस दिशा में हमें काम करना है। और इसके लिए मैं राज्य सरकारों को कहना चाहता हूं, मैं स्थानीय स्वराज की संस्थाओं को कहना चाहता हूं, भारत सरकार का भी यह दायित्व है कि हमें हमारे रिफॉर्म की गति बढ़ानी होगी, हमें 2047 के लक्ष्य के अनुरूप हमारी व्यवस्थाओं को विकसित करना होगा। हमें बीते हुए काल के नीति नियमों से नहीं चल सकते, हमें आने वाले सपनों के हिसाब से नीति नियमों को गढ़ना होगा, और इसको अगर हम करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है और मैं देशवासियों को भरोसा देता हूं, इसी रास्ते मेहनत में कोई कमी न करते हुए हम विकसित भारत का सपना पार करके रहेंगे। हमें सबको मिलकर के चलना है, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, इंडस्ट्री हो, हम सब ने मिलकर के आगे बढ़ना है। हमें रिफॉर्म्स करते रहना है, रिफॉर्म्स को आगे बढ़ाते रहना है, और मैंने पहले भी कहा था, हम रिफॉर्म कंपल्शन से नहीं, कन्विक्शन से कर रहे हैं, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, जब मैं विकसित भारत की बात कर रहा हूं, देश को तेज गति से आगे बढ़ाने की बात कर रहा हूं, उसका सबसे बड़ा लाभार्थी कौन है? इन सारे प्रयासों का सबसे बड़ा साधक कौन है? अगर साधक है तो मेरे देश का युवा है, मेरे देश की युवा शक्ति है। विकसित भारत की यात्रा में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। इतना ही नहीं, विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी मेरे देश का युवा है, और इसलिए हमें विकसित भारत के लक्ष्य को युवाओं के साथ जोड़ करके आगे बढ़ाना है। युवाओं हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ हमें आगे बढ़ना है। साथियों, पिछले 10-12 साल में उस दिशा में बहुत कुछ हुआ है। स्टार्टअप इंडिया अभियान, आज पूरे देश में 2.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप बन गए। देश के नौजवान खुद तो काम कर रहे हैं, अनेकों को रोजगार दे रहे हैं। 1,00,000 करोड़ रुपया इनोवेशन फंड भारत सरकार ने घोषित किया है। मैं देश को नौजवानों को कहना चाहता हूं, आप अपने सपनों को लेकर के आइए, संसाधनों की कमी नहीं रहने देंगे। 1,00,000 करोड़ रुपया आपके दिल दिमाग को सामर्थ्य देने का एक व्यवस्था हमने कर दी है। रिसर्च के नए अवसर मिले, डिजिटल इंडिया के नए सस्ते डेटा, ये युवाओं को सशक्त किया। दुनिया में सस्ता डेटा कहीं है तो भारत की धरती पर है, और देश के नौजवानों को नवी ताकत दी है। स्किल इंडिया हमने नेशनल प्रोग्राम बनाया है, स्पेस सेक्टर को हमने ओपन कर दिया, नेशनल ड्रोन पॉलिसी हमने बनाई है, खेलो इंडिया पॉलिसी बनाई है, 35 वर्षों तक एजुकेशन पॉलिसी नहीं थी, नई एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आए हैं, और इसका फायदा मिडिल क्लास के परिवारों को हुआ है। साथियों 2004 से 14 आंकड़े मुझे देना चाहिए आपको। 2004 से 14 हमारे देश में 350 से भी कम यूनिवर्सिटी थी और आज 10-12 साल के भीतर भीतर करीब 650 नई यूनिवर्सिटी जुड़ चुकी है। करीब 1000 का आंकड़ा हम पहुंच रहे हैं। 2014 के पहले मेडिकल की सिर्फ 400 सीटें हुआ करती थी, आज करीब करीब 850 सीटें मेडिकल की हो रही है। इतना ही नहीं, अब विदेशी यूनिवर्सिटी भी भारत की धरती पर आ रही है। भारत के अंदर विदेशी यूनिवर्सिटी की डिग्री मेरे नौजवान को मिले, इसका प्रबंध भी हो चुका है। हमारे देश के युवा मन बचपन से ही टेक्नोलॉजी की तरफ आकर्षित हो, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं और इसलिए हमने करीब 10,000 से अधिक अटल टिंकर की लैब छोटे छोटे बच्चों के हवाले कर दी है ताकि उनका इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के अंदर उनका मन बने। 12 वर्ष युवा, हमने अनेक रास्ते खोले, हम स्टार्टअप ओपन कर दिया। आपने देखा होगा भारत के प्राइवेट स्टार्टअप 28 साल की एवरेज उम्र के बच्चों ने, नौजवानों ने दुनिया में पहले ही ट्रायल में अपना सैटेलाइट लॉन्च कर दिया और रॉकेट लॉन्च कर दिया उन्होंने। बहुत बड़ा काम कर दिया साथियों। आज करीब 2.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप है। हमने पिछले दिनों एआई इंपैक्ट समिट किया था। एआई का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे ताकि हमारा देश का नौजवान एआई की दुनिया में भी नेतृत्व करने का सामर्थ्य है। मेरे साथियों, बायो इकोनॉमी एक नया क्षेत्र है। एक समय था 2014 के पहले सिर्फ 60,000 करोड़ रुपए का बायो इकोनॉमी का काम होता था। मेरे देश के नौजवान, आपने क्या कमाल कर दिया है। देखिए, नीतियां जब सही होती है, लक्ष्य जब साफ होता है, तो मेरे देश के नौजवान कैसा करके थे। बायो इकोनॉमी में देश की युवा शक्ति ने सामर्थ्य दिखाया। 2014 के पहले जो 60,000 करोड़ का कारोबार था, आज वो कारोबार बायो इकोनॉमी का, बायो इकोनॉमी 20 लाख करोड़ पहुंच चुकी है। दोस्तों, ₹2009-10 का कालखंड था, सिर्फ 25 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारे देश में बिके थे। 1.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके थे 2009-10 में, 1.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल। इस 25-26 में 25 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, एविएशन सेक्टर भी मेरे नौजवानों के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। नए एयरपोर्ट, नए रूट, नए नए रोजगार के अवसर बना रहे हैं। मेंटेनेंस, ओवरहॉलिंग, इसके भी कारण देश में बहुत बड़ी मात्रा में स्किल मैन पावर को काम मिल रहा है। मेड इन इंडिया हवाई जहाज बनाने की दिशा में हमने सफलता पाई है। मेड इन इंडिया डिफेंस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C295 ऑलरेडी अपनी उड़ान भर चुका है, सफल उड़ान भर चुका है। ये देश के नौजवानों के लिए। मेरे साथियों, ड्रोन ने भी बहुत बड़ा काम किया है। स्वामित्व योजना, गांव में ड्रोन से स्वामित्व योजना सफल हो रही है। करीब 3.25 करोड़ परिवारों को स्वामित्व योजना का लाभ मिला है और इसके कारण 140 लाख करोड़ रुपए जैसी संपत्ति अनलॉक हुई है, जिसके कारण बैंक से लोन मिल सकता है, लोग अपना कारोबार कर सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे मध्यम वर्ग के परिवारों के सामने एक बहुत बड़ा बोझ बन चुका है कोचिंग क्लासेस की स्पर्धा। हर माँ बाप को लग रहा है कि कोचिंग क्लास में बच्चे को नहीं भेजा तो हम प्रतिष्ठित परिवार नहीं है। इन गरीब और मिडिल क्लास परिवारों की हम चिंता करते हुए हजारों करोड़ रुपए का उनका खर्च है वो भी बचे, बेटे भी अपने आसपास रह सके, उनकी देखभाल हो सके, परिवार पर आर्थिक बोझ ना आए, और इसलिए हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं हमेशा कहता आया हूं, जो खेले वो खिले। जब मैं खेले वो खिले की बात कर रहा हूं, तब मेरे प्यारे देशवासियों, आज भारत खेल की दुनिया में अपनी जगह बना रहा है। अब खेल के पोडियम में भारत का राष्ट्रगीत सुनाई देता है, भारत का राष्ट्रगान सुनाई देता है, भारत का तिरंगा झंडा लहराता दिखाई नजर आ रहा है। टॉप्स योजना ने बहुत बड़ी सफलता की है। खेलो इंडिया गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स, विंटर गेम्स, बीच गेम्स, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स के लिए कोचिंग, स्पोर्ट्स मेडिसिन, स्पोर्ट्स के लिए न्यूट्रिशन, इन सारे विषयों में भारत अब महारत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। नौजवानों के लिए पूरा नया क्षेत्र, खिलाड़ी न बन सके तो उसकी सपोर्ट सिस्टम में भी बहुत बड़ा क्षेत्र खुल रहा है। स्पोर्ट्स की दुनिया में भारत का प्रदर्शन बेहतर होता रहा है और हम 2036 में ओलंपिक के मजबूत दावेदार बनकर के आगे बढ़ रहे हैं और 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स का को भारत होस्ट करने वाला है। और मेरे साथियों, दुनिया में जो ओलंपिक की खेल होते हैं, करीब 40 प्रकार के गेम होते हैं और करीब 350-350 स्पर्धाएं होती है ओलंपिक में। और आपको जानकर के दुख होगा मेरे देशवासियों, मेरे नौजवानों, मैं आपको चुनौती देता हूं, मैं आह्वान करता हूं, मैं आपकी मदद चाहता हूं। 350 जितने स्पर्धाओं में भारत 2/3 खेलों में कहीं होता ही नहीं, हमारी मौजूदगी नहीं होती, हम क्वालिफाई नहीं होते हैं। हमने तय किया है कि 2036 में जो ओलंपिक होगा, हम चाहते हैं कि वो भारत में हो, लेकिन 2036 में जिन विधाओं में आज भारत खेलता नहीं है, जिन विधाओं में भारत क्वालिफाई नहीं करता है, जिन स्पर्धाओं में भारत ने छोड़ के रखा है, 3/4 हिस्सा हमारे इंतजार कर रहा है, भारत उस पर बल देगा। और इसके लिए हम टैलेंट हंट का एक अभियान भी चलाना चाहते हैं। हमें अगर 2036 के लिए खिलाड़ी चाहिए तो आज जो 5 साल 10 साल 15 साल की उम्र के नौजवान हैं, बेटे हैं, उनके तरफ ध्यान देना होगा, उन बेटियों पर ध्यान देना होगा। और इसलिए 5 से 15 उम्र के बच्चों में खेल प्रतिभा ढूंढने के लिए गांव गांव, शहर शहर, स्कूल स्कूल, एक टैलेंट हंट का अभियान चलाया जाएगा। बच्चों की प्रतिभा को देखा जाएगा और फिर उनको स्पेशल ट्रेनिंग दे करके देश के लिए खेलने वाले अच्छे खिलाड़ी बनाए जाएंगे। मेरे प्यारे युवा, देश के सामने, देश के नौजवानों के सामने नशा एक बहुत बड़ा संकट बनता जा रहा है। नशा मुक्त भारत, ये हम सबका सामूहिक दायित्व तो होना चाहिए। हमारे उज्जवल भविष्य के लिए हमारी युवा पीढ़ी मजबूत हो, हमारा युवा सामर्थ्य हमारे देश के लिए काम आए, इसलिए नशा मुक्त भारत। पिछले दिनों माय भारत के वॉलेंटियर्स ने, देश के एनजीओज ने, देश के सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों ने, देश के आध्यात्मिक पुरुषों ने मिलकर के नशा मुक्त भारत का 100 सप्ताह का एक कार्यक्रम तय किया है। 100 सप्ताह तक एक अभियान चलने वाला है। मैं हर परिवार को कहना चाहता हूं कि आप भी इस अभियान का हिस्सा बने, आप इसके साथ जुड़िए और देश के नशा मुक्त भारत के सपने को पूरा करने के लिए आप आगे आइए। मेरे प्यारे देशवासियों, 21वीं सदी में दशकों पुरानी जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों को खत्म करना बहुत अनिवार्य है। नक्सलवाद माओवाद लाखों युवाओं के भविष्य को तबाह कर दिया, अनेक माताओं के दुधमल नौजवानों को छीन लिया, बर्बाद कर दिया, हर मां बाप के सपनों को चूर चूर कर दिया। इस नक्सलवाद ने चार चार दशक तक हिंदुस्तान के बहुत बड़े हिस्से को, बहुत बड़ी आबादी को दबोच करके रखा था, बंदूक के नोक पर दबोच करके रखा था, संविधान की धज्जियां उड़ा दी थी और देश के सामान्य नागरिकों की रक्षा में 3,500 से ज्यादा हमारी पुलिस के, सुरक्षा बल के जवान शहीद हो गए। युद्ध के अंदर जितने सैनिक मरते हैं उससे ज्यादा हमारे पुलिस जवानों को जान की बाजी लगानी पड़ी ताकि देश के सामान्य मानवी को सुरक्षा मिले। ये नक्सलवाद ने धरती को लहू लुहान कर दिया था। 2014 में आपने जब हमें मौका दिया उसी दिन हमने संकल्प लिया था कि हम देश को नक्सलवाद से मुक्त करेंगे और आज मुझे खुशी है कि नक्सली माओवादी हिंसा आखिरी सांस भी शायद रहने की अब तो ताकत नहीं रही है, पूरी तरह उसे खत्म करने की दिशा में जहां पर कभी नक्सलवादियों की गोलियां चलती थी, जहां पर कभी धरती रक्त रंजित रहा करती थी, आज उसी नक्सल क्षेत्रों में, उसी इलाकों में नक्सल मुक्त होने के कारण विकास, विश्वास और प्रयास का तिरंगा लहरा रहा है मेरे प्यारे देशवासियों। लेकिन इस चुनौती को हमने कम नहीं आंकना है, इस चुनौती से हमें और भी सावधान रहने की जरूरत है। वर्षों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे, सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था। मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है, लेकिन हथियारी नक्सल तो गए लेकिन दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, सुरक्षित भारत बनाना हम सबका दायित्व है। चुनौती सीमा के भीतर हो या सरहद से बाहर, भारत हर परिस्थिति के लिए तैयार है। आज युद्ध का नेचर बदल रहा है, अब युद्ध सीमा पर ही होता है गारंटी नहीं है, आज युद्ध सीमा के अंदर कहीं रिफाइनरी पे जाकर के, कहीं बैंकिंग सेक्टर को जाकर के, कहीं डेटा सेंटर को जाकर के, एक प्रकार से लड़ाई का नया रूप इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़े जा रहे हैं, फैक्ट्रियां तोड़ी जा रही है। हमने मिशन सुदर्शन चक्र की पिछले सालों घोषणा की थी, बहुत तेजी से उस पर काम चल रहा है। आज डिफेंस एक्सपोर्ट हमारा करीब 50 गुना बढ़ा है, करीब 100 देशों में हमारे अस्त्र शस्त्र पहुंच रहे हैं, वैश्विक पटल पर भारत की प्रतिष्ठा धीरे धीरे बढ़ रही है। बदलते हुए समय में अस्त्र शस्त्र की तरफ काम करना है, सैन्य बलों का सामर्थ्य बढ़ाना है, लेकिन साथ साथ नागरिकों को भी तैयार करना होगा। पिछली शताब्दी के युद्धों के अनुरूप जो सिविल डिफेंस की व्यवस्थाएं हमारे देश में विकसित हुई है वो कालबाह्य हो चुकी है, और इसलिए मैं आज लाल किले से घोषणा कर रहा हूं कि हम आने वाले दिनों में सिविल डिफेंस का एक वाइब्रेंट नेटवर्क खड़ा करेंगे, आधुनिक
1: व्यवस्थाओं से उनको परिचित कराएंगे, आधुनिक संकटों से नागरिकों को रक्षा करने की क्या व्यवस्था हो सकती है। एक बहुत बड़ा वॉलेंटरी फोर्स सिविल डिफेंस का आधुनिक चुनौतियों को पार करने वाला हम बनाने वाले हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, राष्ट्र के निर्माण में आज हमारी बहनों बेटियों का योगदान हम सबके लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का कारण बना हुआ है। फाइटर जेट हो या सिविल एविएशन, हमारी बेटियां सबसे आगे दिखाई दे रही है। खेलकूद का मैदान हो, हमारी बेटियां आगे दिखाई दे रही। स्टेम एजुकेशन में भर्ती होने की प्रक्रिया हो, सबसे ज्यादा हमारी बेटियां आगे दिख रही है। आज सेना में भी एनडीए से जो बेटियां निकली है वो बड़े रौब के साथ देश की सेना का नेतृत्व करने का सामर्थ्य दिखाने लगी है। सर, मेरी बेटियों की ताकत कैसी है। मैं पिछले दिनों सारण में एक सेमीकंडक्टर प्लांट में गया, वहां आदिवासी बेटियां देश के अलग अलग कोने से आई हुई बेटियां काम कर रही थी। वो उस गांव से आई थी जिन्होंने पासपोर्ट क्या होता है पता तक नहीं था। वो बेटियां विदेशों में गई ट्रेनिंग लेकर के आई और आज चिप निर्माण का काम कर रही है और बड़े कॉन्फिडेंस, मैं जो उनका कॉन्फिडेंस देखा मैं सचमुच में बहुत प्रभावित हुआ था। आज तीन करोड़ बहनों को हमने लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया था, उसको पार कर लिया। अब हम 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। 3 करोड़ नई लखपति दीदी बनना मतलब ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव मातृशक्ति के द्वारा आने वाला है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज पंचायतों में, नगर पालिका में, महानगर पालिका में बहुत बड़ी मात्रा में हमारी महिलाएं जनप्रतिनिधि बनकर के देश का मार्गदर्शन कर रही है, समस्याओं का समाधान कर रही है, बहुत ही सक्षम नेतृत्व दे रही है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने पार्लियामेंट में नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित किया था, लेकिन किसी न किसी कारण से राजनीति के अखाड़े में पिछले 40 साल से ये सपना हमेशा राजनीतिक अखाड़े का शिकार हो गया है। मैं देश के सभी राजनीतिक दलों से आज लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे की छाया में खड़े होकर के प्रार्थना करता हूं, आग्रह करता हूं, आइए उन महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनिए, उन महिलाओं के सम्मान में आगे आइए और जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, वे भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, आप भी यश लीजिए, आप भी क्रेडिट लीजिए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए। मेरे प्यारे देशवासियों, विकसित भारत का संकल्प तभी पूरा होगा जब विकास अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा। 2014 से पहले सिर्फ 25 करोड़ लोगों के पास सोशल सिक्योरिटी का कवर था, सिर्फ 25 करोड़ के पास। साथियों, पिछले 5-7 दशक में सिर्फ 25 करोड़, हमने एक दशक के भीतर भीतर 100 करोड़ देशवासियों को सोशल सिक्योरिटी का कवच दिया है। आयुष्मान भारत योजना से 70 साल की उम्र के बुजुर्गों से भी आज 5 लाख रुपए तक मुफ्त दवाई की व्यवस्था हो रही है। करोड़ों करोड़ों परिवारों को इसके कारण बहुत बड़ी सुविधा मिली है और इस आयुष्मान कार्ड के कारण 2 लाख करोड़ रुपया जो दवाई और ऑपरेशन के पीछे खर्च होना था वो मेरे परिवारों के बच्चे हैं। वो गरीब परिवार है, वो मध्यम वर्ग के परिवार है, उनको इतनी बड़ी। मेरे प्यारे देशवासियों, आज मुझे एक काम के लिए आपकी मदद चाहिए। मैं आप सबसे एक मदद मांग रहा हूं। सभी नौजवानों से मैं चाहता हूं कि आप इसका नेतृत्व करिए। आपका 1 या 2 घंटे देश को बहुत बड़ी शक्ति देने वाले हैं। आपको लगेगा ये एक दो घंटे में मैं देश की क्या शक्ति, मैं बताता हूं, आप बहुत बड़ी शक्ति बनने वाले हैं और इसलिए हर घर में वातावरण बने। इन दिनों देश में जनगणना का काम हो रहा है, सेंसस का काम हो रहा है, गिनती चल रही है और गिनती सिर्फ आंकड़ों से बात बनती नहीं है, उसकी बारीकियों से नीतियां बनती हैं, योजनाएं बनती हैं, देश आगे बढ़ने की अपनी रूपरेखा तैयार करता है और इसलिए सटीक जानकारियां होना बहुत जरूरी है। कभी कभी जो सरकार की तरफ से प्रतिनिधि आते हैं वो इतनी जल्दी में होते हैं, कभी स्पेलिंग एक लिख देते हैं, कभी अलग लिख देते हैं और इसके कारण अल्टीमेट परिणाम हमें सही मिलने में दिक्कतें आती हैं। अब जब टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और इस बार निर्णय किया है, आप स्वयं भी जनगणना में अपनी जानकारियां अपने मोबाइल फोन से भर करके दे सकते हैं। बाद में कोई बाबू आएंगे, कोई प्रतिनिधि आएंगे, आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन आप परिवार के सब बैठ करके अगर डिजिटली अपना रजिस्ट्री करवा दे, सारी बारीकियां, स्पेलिंग में भी गलती ना हो, कोई भी जानकारियों में गलती ना हो, आप जितनी परफेक्ट जानकारी देंगे देश को आगे बढ़ने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। और इसलिए मैं देश के नौजवानों कहता हूं कि आप अपने परिवार के लोगों को बिठा करके पूरे फॉर्म को समझिए, पहले कागज पे फॉर्म को भर दीजिए, कोई गलती है तो करेक्ट कर लीजिए और फिर टेक्नोलॉजिकली उसको डिजिटली इसको अपलोड कर दीजिए। आप देखिए इतना बड़ा काम देश कर लेगा और देश का समय और शक्ति सही काम के लिए उपयोग आएगा। और इसलिए मेरे देश के नौजवानों को जनगणना के इस काम में सक्रियता से जुड़ने के लिए मैं आग्रह करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, मैंने लाल किले से पंच प्राण की बात कही थी, इस पंच प्राण ने देश को अपने आत्मगौरव की ओर लेकर के आगे बढ़ने का, लक्ष्यों को पार करने के सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ने का एक बहुत बड़ा संबल दिया है। हमें गुलामी की मानसिकता हर पल मिटाते ही रहना है। जिस भारत का सपना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देखा था, बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा था, पंडित नेहरू ने देखा था, सरदार पटेल, भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु ने देखा था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा था, भगवान बिरसा मुंडा ने देखा था, ज्योतिबा फुले ने देखा था, उन सब से प्रेरणा लेकर के हम आगे बढ़े। इस आइए इस संकल्प को हम दोहराए, स्वयं से ऊपर राष्ट्र का हित हो, स्वयं से ऊपर राष्ट्र का हित हो और कर्तव्य ही हमारी पहचान हो। मैं सभी देशवासियों से कहूंगा समय हमारा है, मैं सभी देशवासियों से कहूंगा समय हमारा है, अवसर हमारा है, संकल्प हमारा है। आइए सपनों को संकल्प बनाए, संकल्प को सामर्थ्य बनाए और सामर्थ्य को सफलता में बदल के रहें। आइए हर कदम को विकास का कदम बनाए, कदम से कदम मिलाए, मन से मन मिलाए, लक्ष्य से जुड़े रहे, एक दीप से जले दीप हजारों, आओ मिलकर विकसित भारत बनाए। इसी एक भावना के साथ इस मंगल पर्व पर आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: सब कहा है कि ऑनलाइन कोचिंग का सरकार अपना एक पूरा नेटवर्क बनाएगी ताकि बच्चों को जाना ना पड़े।
1: अच्छी तरीके जानती हैं, मैं कोचिंग के सख्त खिलाफ हूँ, प्राइवेट ट्यूशन के सख्त खिलाफ हूँ। आप जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जो लगातार बंद हो रहे हैं, आपने पिछले एक साल एक लाख
0: उस पर कितना फोकस होता है।
1: 25
0: हमारे साथ सांसद इस वक्त बीजेपी के लहर सिंह जी जुड़ रहे हैं। लहर जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन पूरे देश ने देखा है, आप अपनी नजर से क्या बताएंगे? आपको सबसे ज्यादा बड़ी चीज इसमें क्या लग रही है? युवा शक्ति की पीएम ने आज कई बार बात की।
2: आज आदरणीय प्रधानमंत्री ने बहुत कई संदेश दिए हैं, उससे पहले मैं पूरे देश को बधाई देना चाहूंगा। आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में सैकड़ों वर्षों की गुलामी से आज हमारे को आजादी मिली है, इस दिन तो हम सबके लिए बड़े हर्ष और उल्लास का विषय है। मैं सबको बधाई देना चाहूंगा। हैविंग कहने के बाद में आज मुझे जो लगा कि आने वाले इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में बहुत बड़ा पुश देने वाले हैं और आमूलचूल परिवर्तन करने वाले हैं ताकि इकोनॉमी सुदृढ़ता के साथ आगे बढ़े। और ग्लोबल जो चैलेंजेस हमारे सामने हैं, चाइना और अमेरिका जैसे देशों की तरफ से हमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली समस्याएं खड़ी की जाती है, तो उनसे हम कैसे पार पाएं और उनसे वो हमारे पर दबाव नहीं डाल सके हैं, इसके लिए उनका मुझे लगता है कि ये प्रयास उसमें रहेगा। और एक और बात जो है मुझे इसमें लगती है कि उन्होंने एआई के जो आने वाले खतरों की वजह से, एआई से जो पूरे विश्व में चिंता का विषय बन रहा है, उसको भी उन्होंने एड्रेस करने की कोशिश की है कि इसमें इसका प्रभाव हम पर कम से कम पड़े और हम इस चैलेंज का मुकाबला कर सकें। और चौथी बात जो है ये कि हमारा जो मिडिल क्लास जो है, यहाँ हमारे देश की बहुत बड़ी ताकत है, तो कई तरह के संकट आने के बाद में भी, जैसे शेयर मार्केट से हमारे फॉरेन इंस्टीट्यूट चले गए, फिर भी आज हमारा शेयर मार्केट बना हुआ है और लोगों का जो हमारी जो ये एक स्ट्रेंथ है मिडिल क्लास की, जो हमारी इकोनॉमी, इस देश की इकोनॉमी को बहुत आगे बढ़ाने में सहायक होगी। और इसके लिए भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मिडिल क्लास को कैसे संभाला जाए, इसका भी उन्होंने बड़ा पुश किया है। और एक जो हमारे समस्या जो है हमारे सामने, हाँ, जो
0: बिल्कुल मैं लौट रही हूँ आपके पास। देखिए, प्रधानमंत्री ने जो युवा शक्ति की आज चर्चा की कि उसका कमाल रहा है, भारत जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, वीरों को उन्होंने नमन किया। इसी के साथ साथ जब भी देखिए बजट पर डिस्कशन होता है तो इस बात की चर्चा हमेशा होती है कि हम अपनी आर्थिक शक्ति को कैसे बताएं। अगर विश्व के मंच पर भारत को अपनी आवाज को सबसे प्रबल करना है तो आपको इंडिस्पेंसिबल बनना पड़ेगा। अब जैसे रेयर अर्थ मिनरल्स या फिर ऐसी तमाम चीजें होती है जिनकी चर्चा होती है, या फिर चाइना ने जिस तरह से मैन्युफैक्चरिंग को लेकर जिस तरह का काम किया है, तो ऐसे में आज प्रधानमंत्री ने सप्तधारा जो शक्ति की बताई है उसमें पहली धारा ही उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग से शुरू की है। आइए पहले प्रधानमंत्री ने क्या कहा है वो आपको सुना देते हैं, उसके बाद से लिए चलेंगे सत्य जी और संगीत रागी जी के पास।
3: जब मैं विकसित भारत की बात कर रहा हूं, देश को तेज गति से आगे बढ़ाने की बात कर रहा हूं, उसका सबसे बड़ा लाभार्थी कौन है? इन सारे प्रयासों का सबसे बड़ा साधक कौन है? अगर साधक है तो मेरे देश का युवा है, मेरे देश की युवा शक्ति है। विकसित भारत की यात्रा में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। इतना ही नहीं, विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी मेरे देश का युवा है, और इसलिए हमें विकसित भारत के लक्ष्य को युवाओं के साथ जोड़ करके आगे बढ़ाना है। युवाओं हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ हमें आगे बढ़ना है। साथियों, पिछले 10-12 साल में उस दिशा में बहुत कुछ हुआ है। स्टार्टअप इंडिया अभियान, आज पूरे देश में 2.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप बन गए। देश के नौजवान खुद तो काम कर रहे हैं, अनेकों को रोजगार दे रहे हैं। 1 लाख करोड़ रुपया इनोवेशन फंड भारत सरकार ने घोषित किया है। मैं देश के नौजवानों को कहना चाहता हूं, आप अपने सपनों को लेकर के आइए, संसाधनों की कमी नहीं रहने देंगे। 1 लाख करोड़ रुपया आपके दिल दिमाग को सामर्थ्य देने का एक व्यवस्था हमने कर दी है। रिसर्च के नए अवसर मिले, डिजिटल इंडिया के नए सस्ते डेटा, ये युवाओं को सशक्त किया। दुनिया में सस्ता डेटा कहीं है तो भारत की धरती पर है, और देश के नौजवानों ने नौजवानों को उसे नवी ताकत दी है। स्किल इंडिया हमने नेशनल प्रोग्राम बनाया है, स्पेस सेक्टर को हमने ओपन कर दिया, नेशनल ड्रोन पॉलिसी हमने बनाई है, खेलो इंडिया पॉलिसी बनाई है, 35 वर्षों तक एजुकेशन पॉलिसी नहीं थी, नई एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आए हैं, और इसका फायदा मिडिल क्लास के परिवारों को हुआ है। साथियों 2004 से 14 आंकड़ा मुझे देना चाहिए आपको, 2004 से 14 हमारे देश में 350 से भी कम यूनिवर्सिटी थी और आज 10-12 साल के भीतर भीतर करीब 650 नई यूनिवर्सिटी जुड़ चुकी है, करीब 1000 का आंकड़ा हम पहुंच रहे हैं। 2014 के पहले मेडिकल की सिर्फ 400 सीटें हुआ करती थी, आज करीब करीब 850 सीटें मेडिकल की हो रही है। इतना ही नहीं, अब विदेशी यूनिवर्सिटी भी भारत की धरती पर आ रही है। भारत के अंदर विदेशी यूनिवर्सिटी की डिग्री मेरे नौजवान को मिले इसका प्रबंध भी हो चुका है। हमारे देश के युवा मन बचपन से ही टेक्नोलॉजी की तरफ आकर्षित हो उस दिशा में हम काम कर रहे हैं और इसलिए हमने करीब 10,000 से अधिक अटल टिंकर की लैब छोटे छोटे बच्चों के हवाले कर दी है ताकि उनका इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के अंदर उनका मन बने। 12 वर्ष युवा, हमने अनेक रास्ते खोले, हम स्टार्टअप ओपन कर दिया, आपने देखा होगा भारत के प्राइवेट स्टार्टअप 28 साल की एवरेज उम्र के बच्चों ने, नौजवानों ने दुनिया में पहले ही ट्रायल में अपना सैटेलाइट लॉन्च कर दिया और रॉकेट लॉन्च कर दिया, उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया। साथियों आज करीब 2.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप है।
0: प्रधानमंत्री ने एआई स्किल्स पर, उन्होंने कहा कि लगभग हम 1 करोड़ युवाओं को आने वाले वक्त में एआई स्किल ट्रेनिंग भी देंगे और ये मुझे लगता है फ्यूचर रेडी रहना। और जो युवाओं पर आज उनका फोकस था, जो उन्होंने अलग अलग बात की है कि मेडिकल में सीट्स की बात या अन्य बातें, सत्य जी उसको आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि हम सब ये उम्मीद कर रहे थे कि आज युवाओं पर पीएम बोलेंगे।
4: हाँ, पीएम बहुत ऊर्जावान भी दिखे, वो युवा जैसे ऊर्जावान दिखे, उन्होंने अपनी उपलब्धि भी गिनाई लेकिन भविष्य की नीतियां भी बताई। एक सबसे महत्वपूर्ण एक लाइन उन्होंने कहा है कि विकसित भारत का सपना तभी पूरा हो सकता है, संभव हो सकता है, जब विकास देश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। ये लाइन हम उनसे ले सकते हैं। 21 साल मात्र बचा है, 2047 में भारत को विकसित बनाना है, तो उन्होंने शब्दधारा की बात की, एआई की बात की, नौजवानों को जो दिया है उसकी बात की, आगे जो देंगे उसकी बात करी है उन्होंने। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो इस भाषण में उनके पिछले 12 साल के भाषण से ज्यादा स्पीड, ज्यादा ऊर्जा और अधिक योजनाएं दिखती हैं और अस्पष्ट दिशा दिखता है, हमें जाना किधर है। अगर सप्तधारा में आप ग्रीन और ब्लू इकोनॉमी की बात देखें तो इस दो इकोनॉमी पर यदि भारत काम करता है तो दोनों ही क्षेत्र में अपार संभावना है। अगर सेमीकंडक्टर को 5 से 7 गुना अधिक बढ़ाना है उसमें अपार संभावना है। देखिए, जहां मोबाइल नहीं बनता था 33 गुना ज्यादा मोबाइल बन रहा है भारत में, ये प्रधानमंत्री बता रहे हैं। तो प्रधानमंत्री महोदय ने जिस ऊर्जा से अपनी उपलब्धियां बताई हैं, देश किधर जा रहा है और जिस कमिटमेंट के साथ बताई हैं, उससे ये प्रतीत होता है कि देश को आज उन्होंने युवाओं को स्पष्ट संदेश दिया, विकसित भारत का लक्ष्य ऐसे होगा। और 2 घंटे की उन्होंने मदद मांगी है जनगणना से संबंधित चीजों को, लोगों ने इसको हास्यास्पद बनाया होगा लेकिन भारत की जनगणना जातिगत जनगणना है, आर्थिक स्थिति की जनगणना है, तो वो बताएगा कि भारत कहां खड़ा है। तो भारत जहां से खड़ा है वहां से चलेगा, तभी 2047 में विकसित भारत का सपना पूरा हो पाएगा। उस समय प्रधानमंत्री कौन होंगे ये आज तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इन्हीं नीतियों के कारण भारत 2047 तक तीव्र गति से विकसित भारत की ओर बढ़ेगा।
0: कुछ और जो ऐलान आज किए गए हैं प्रधानमंत्री की तरफ से वो जल्दी जल्दी आपको करके बता देते हैं, क्योंकि जो एआई यूथ स्किलिंग, 1 करोड़ युवाओं को ट्रेन किया जाएगा एआई में, क्योंकि आने वाले वक्त में एआई से अलग होकर अब परफॉर्म करना बहुत मुश्किल है, तो उसको अगर आपको एम्ब्रेस करना है तो उसकी ट्रेनिंग आपको जरूरी है और उस पर प्रधानमंत्री ने आज बात कही है। इसी के साथ उन्होंने सिविल डिफेंस रिफॉर्म की बात की है जिसमें मॉडर्नाइज ट्रेनिंग दी जाएगी, यानी नए युग की ट्रेनिंग दी जाएगी और एनहांस कैपेबिलिटीज टू एड्रेस इवॉल्विंग सिक्योरिटी नीड्स, यानी आने वाले वक्त में जो सुरक्षा के नए मापदंड चाहिए होंगे या सुरक्षा की एक नई चुनौती सामने आएगी उसके लिए आप कैसे तैयार करेंगे अपने युवाओं को, सिविल डिफेंस रिफॉर्म की उन्होंने बात की। उन्होंने कहा स्पोर्ट्स टैलेंट हंट करेंगे हम, कैसे युवाओं को पूरे देश में नेशन वाइड कैंपेन की उन्होंने बात की जिससे 5 साल से 15 साल के बच्चों में अलग अलग जगहों पर, गांवों में, शहरों में नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट हंट होगा और ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ा कदम है और स्टेप मे बी टेकन टू लेट बट एटलीस्ट टेकन, कि भाई आप अपने देश में जो हमारे छोटे छोटे गांव में आप देखिए ना, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री धामी के साथ एक बच्ची आई ना और टाइक्वांडो में उसको कैसी मुश्किलें हो रही थी और उससे पैसा मांगा जा रहा था, उसने खुलकर कहा। तो ये बातें बहुत मायने रखती हैं कि छोटे गांवों शहरों के बच्चों को क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ता है अगर वो चाहते हैं कि वो खेल के क्षेत्र में आगे बढ़े। तो इसको भी पीएम ने आज इस मंच से एड्रेस किया है। उन्होंने बात कही है फ्री ऑनलाइन कोचिंग की। फ्री ऑनलाइन कोचिंग किया जाएगा जो कि युवाओं को दिया जाएगा अलग अलग एग्जामिनेशंस के लिए, क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे एंट्रेंस एग्जाम्स हैं जिसमें कोचिंग के लिए बच्चे जाते हैं, उनको आने जाने में भी खर्च होता है और कोचिंग में भी। हाँ,
4: कोचिंग के लिए पहले भी पिछड़े और दलित समाज और अल्पसंख्यक समाज के लिए सरकारी व्यवस्था यूजीसी के द्वारा है, और जामिया मिल्लिया इस्लामिया में तो विधिवत कोचिंग हॉस्टल चलता है किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए। इसको अगर विस्तार दिया है प्रधानमंत्री महोदय ने कि हर वर्ग को इसका लाभ मिले तो एक अच्छा कदम है।
0: और ये लाल किले के प्राचीर से बोलना मायने रखता है, मुझे लगता है कि वहां अगर बोल रहे हैं तो शायद आने वाले वक्त में हम इस पे और बेहतर काम होते हुए देखेंगे। सेमीकंडक्टर पर उन्होंने कहा 7 से 8 नए प्रोडक्शन प्लांट सेमीकंडक्टर के। देखिए भारत के लिए आने वाले वक्त में ये सेमीकंडक्टर्स गेम चेंजर बन सकते हैं, और ये अगर प्रधानमंत्री यहां से रेखांकित कर रहे हैं लाल किले से, तो उम्मीद यही करेंगे कि इसका एक सही में कार्यान्वयन होता हुआ भारत में दिखेगा, क्योंकि 7 से 8 अगर नए प्रोडक्शन यूनिट्स जो है प्लांट जो है सेमीकंडक्टर्स के खुलते हैं ये वाकई में। और वो कह रहे हैं कि सिर्फ खुलेंगे नहीं बल्कि ऑपरेशनलाइज करेंगे 1 से 2 साल के अंदर। तो ये भारत के लिए सबसे बड़ा गेम चेंजर, अगर हम वाकई सोचते हैं कि हम एक महाशक्ति बनेंगे तो उसमें ये एक गेम चेंजर साबित होगा। न्यूक्लियर एनर्जी पर उन्होंने कहा हमारा ये टारगेट है, टारगेट ऑफ 100 गीगावाट कैपेसिटी बाय 2047। 5 नए रिएक्टर्स को हम 6 से 7 साल में ऑपरेशनल कर देंगे। 6 से 7 नए जो न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स हैं उनको हम ऑपरेशनल कर देंगे 6 से 7 साल में। तो ये तमाम ऐसे बड़े ऐलान हैं जो प्रधानमंत्री ने यहां से किया है। लेकिन जो की पॉइंट्स है मुझे लगता है सप्त धारा जो उन्होंने बताई है और मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें उन्होंने सबसे ज्यादा ध्यान किन चीजों पर दिया है, किस पर फोकस करके विस्तार से भी उन्होंने बताया कि हमें कॉस्ट क्वालिटी स्केल इन 3 चीजों पर काम करना है। भारत वैसे ही मेक इन इंडिया पर स्वदेशी पर भारत में एक जोर इस वक्त है जिसकी चर्चा प्रधानमंत्री ने की, और उन्होंने कहा कि ऐसे तमाम सेक्टर्स जो अभी तक नो गो एरियाज थे, नो गो मतलब वहां नहीं जाना वो नहीं करना, वहां हम गो अहेड की का जो तरीका है उसको अपनाएंगे, गो अहेड एरियाज बनाएंगे। उसके बाद साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमें अपने आप पर भरोसा करना होगा, आत्मनिर्भर भारत पर जोर देना होगा, और कहा कि इसी के साथ 2047 का जो विकसित भारत का संकल्प है वो संकल्प पूरा होगा। संगीत रागी जी, प्रधानमंत्री की बातों का मुख्य बिंदु आपकी नजर।
5: देखिए मुझे जो सबसे फोकस पॉइंट जो मुझे दिखाई दिया वो ये कि प्रधानमंत्री 2047 को केंद्र मान करके उन्होंने ये कहना शुरू किया इस बात में अपने संबोधन में कि यह तभी संभव है जब भारत आत्मनिर्भर होगा। एक बड़ी बात उन्होंने कही कि लिबरलाइजेशन का जब जमाना था तो कहा जाता था पूरी दुनिया इंटरडिपेंडेंट है, और कोविड के टाइम से ये सबने देखा पूरी अमेरिका फॉर अमेरिकन्स, ब्रिटिश फॉर ब्रिटेन, ब्रिटेन फॉर ब्रिटिश, वे इस ढंग का जो था वो सारे नारे शुरू हो गए। तो कहा कि दुनिया का भारत बाजार बन करके रहे ये हमें स्वीकार नहीं है। हम दुनिया के डिफेंस मार्केट में हम रहें, हम बाजार बन करके रहें, ऐसा नहीं होगा। डिफेंस मार्केट में हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। उन्होंने एक पूरा लिस्ट बनाया होगा, भाई सेमीकंडक्टर की दुनिया में हम क्यों नहीं बढ़ा है, फार्मा की दुनिया में हम 5 में से क्यों नहीं एक बड़ी कंपनी के तौर पर हैं। आज यदि हम पहले हम जब पढ़ा करते थे 70 के दशक में तो हम अपने देखते थे कि भारत चावल उत्पादन में कितना है, दूध उत्पादन में कितना है, मछली उत्पादन में कितना है, गेहूं उत्पादन में कितना है। तो बाल में शुरू से 1, 2, 3 पर जो है वो चाइना, रसिया और अमेरिका हुआ करता था, भारत कहीं 5वें नंबर पर था और 4थे नंबर पर था। लेकिन आज स्थिति पूरी बदल गई है, चाहे वो चावल का मामला हो, टी का मामला हो, दूध का मामला हो, सब्जी का मामला हो, फलों का उत्पादन का मामला हो, जो है इन सबों में भारत ने बहुत प्रगति की है। फार्मा सेक्टर में भी आज दुनिया में जितना ग्लोबल वैक्सीन का सप्लाई है वो भारत कर रहा है, 60-70% यूरोप और अमेरिका के मार्केट को भारत कैटर करता है। उनका कहना है कि ये जितने हैं, चाहे लॉ फॉर्म्स हो, चाहे अकाउंटिंग फॉर्म्स हो, चाहे इंडस्ट्री है, दुनिया के बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में हमारे इंडस्ट्रीज पांच में क्यों नहीं खड़े हों, दुनिया के बड़े बड़े फॉर्म्स में हमारे फॉर्म्स क्यों नहीं हो। तो मूल मुद्दा ये है कि जो हम विकसित भारत का हम जो भविष्य देख रहे हैं वो तभी संभव है जब भारत अपनी शर्तों पर, बहुत अच्छे तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा कि अब सारे देश अपने अपने बारे में सोचना शुरू कर दिए हैं, तो भारत अपने अपने अपने बारे में क्यों नहीं सोचे और हम बाजार बन करके नहीं रहे। दूसरी बात, 2014 से लेकर के अब तक उन्होंने विपक्ष पर एक गहरा प्रहार भी किया है, कोविड को लेकर के हुआ, या जो वेस्ट एशिया में जो क्राइसिस हुआ, यूक्रेन का जो क्राइसिस हुआ, और रसिया से जो हमने तेल वगैरह के बात किया, ईरान के संबंधों को लेकर के। तो भारत ने बहुत अच्छा एक चीज प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि कुछ लोग रिसोर्सेज को हथियार बना रहे हैं। मुझे लगता है कि उनका जो निशाना था वो ईरान की तरफ था, और जहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आज एनर्जी क्राइसिस पैदा हुआ है, तो विपक्ष को उससे जोड़ते हुए उन्होंने कहा कि इस आपदा को अवसर में विपक्ष बदलना चाहती थी और देश के नागरिकों को भयभीत करना चाहती थी कि पेट्रोल नहीं मिलेंगे, डीजल नहीं मिलेंगे, फर्टिलाइजर्स नहीं मिलेंगे, और किसानों का क्या होगा, सामान्य इंडस्ट्री का क्या होगा, सामान्य रोजगार का क्या होगा, ढाबे का क्या होगा। एक प्रकार में इस देश में भय व्याप्त करने का काम जो है विपक्ष ने किया, और हमने दिखाया कि इस क्राइसिस से भी हम कैसे बाहर निकल करके आ सकते हैं। कोविड टाइम्स में भी कहा गया था कि भारत की इकोनॉमी जो होगी वो रसातल में चली जाएगी, उसका बहुत मजाक उड़ाया गया था, लेकिन पूरी दुनिया ने देखा कि कोविड का मैनेजमेंट जितना भारत ने अच्छे तरीके से किया, आप समझ सकते हैं कि यूरोप के 5-6 देशों के 8-10 देश मिला दिया जाए उससे भी ज्यादा हमारी जनसंख्या है। हम कम से कम 6 गुना जनसंख्या जो है वो अमेरिका से हमारी बड़ी है। इसके बावजूद भारत ने जिस प्रकार से कोविड मैनेजमेंट किया वो दुनिया में एक लिए एक मिसाल थी। दुनिया को वैक्सीन भी सप्लाई करके दिया, अपने लोगों को भी वैक्सीनेट किया, ये अपने आप में अभूतपूर्व। वैसे ही वेस्ट एशिया क्राइसिस के बाद पूरी दुनिया में कहीं ऐसा नहीं था जहां पेट्रोल का दाम एकदम आसमान छूता हुआ नहीं, लेकिन भारत ने उस चीज को मैनेज किया एक लिमिट के बियॉन्ड से जाने
0: में। जरा जनगणना पर लाना चाहती हूँ। प्रधानमंत्री ने आशुतोष जी आज जनगणना को लेकर भी कहा और कहा कि आप कैसे अपने मोबाइल के जरिए भी पूरी परिवार को लेकर जो जानकारी देनी है, तो ऐसा लगता है कि आज वो भी अब फोकस पॉइंट दिख रहा है सरकार का और एक गति उम्मीद है कि उसमें आएगी।
6: देखिए, जनगणना की जो बात कही है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी अगर ये कह रहे हैं, अगर आपके पास उचित आंकड़े नहीं है तो फिर आप कैसे विकास का मॉडल बनाएंगे। इसके लिए जिम्मेदार तो खुद है भाई। 2011 के बाद जनगणना अब 2026 में अगर हो रही है तो इसका मतलब जो 2026, 2025, 2024, 2020 तक की पूरी योजनाएं बन रही थी वो तो 15 साल पुराने डेटा के आधार पर बन रही थी। तो ये काम तो बहुत पहले होना चाहिए। लेकिन मैं जो बुनियादी सवाल इस बात को लेकर, इस सरकार की सबसे बड़ी फेलियर क्या है? सबसे बड़ी फेलियर ये नहीं है कि बड़ी बड़ी बातें नहीं की जाती, बहुत बड़ी बड़ी बातें की, जैसे आज उन्होंने जो सप्तधारा की बात की, अच्छी बात की उन्होंने, लेकिन हम ग्रीन एनर्जी में कहाँ है, डिलीवरी क्यों नहीं हमारे पास? जो छात्रों के अंदर जो नाराजगी दिखाई पड़ रही है, जो जेंजी में नाराजगी दिखाई पड़ रही है, वो इसलिए क्योंकि डिलीवरी नहीं दिखाई पड़ रही है। आप अगर टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं, 12 साल से आप सरकार के अंदर हैं, आपने ऐसा क्यों नहीं किया कि हम एआई के मामले में जो है आज हम रिसर्च और डेवलपमेंट को लेकर जबरदस्त तरीके से कुछ काम कर रहे होते भाई? चाइना क्यों नंबर टू कंट्री बना दुनिया के अंदर एआई के, या सेमीकंडक्टर के मामले में ताइवान क्यों इतना बड़ा बन गया है? हम एआई के मामले में पिछले कुछ सालों में हमने अच्छा काम करने की कोशिश की, लेकिन आज भी हम क्या है, हमारा काम प्लम्बिंग का है, हमारा काम जो नए टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रूज हैं वो हम शायद नहीं कर पा रहे हैं। ये हमारी बड़ी फेलियर। आज सरकार, आज जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बड़े ब्रांड नहीं बन रहे, तो भाई इतने बड़े बड़े हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो दुनिया में नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री होते हैं, वो कोई एक ब्रांड बता दी जो उन्होंने क्रिएट किया, क्यों नहीं क्रिएट कर पा रहे? क्योंकि हमारा फोकस जो है ना वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो गलत दिशा में है।
0: आशुतोष जी कुछ अच्छा बोल दीजिए।
6: मैं तीन
0: अच्छी चीजें बताइए।
6: मैं प्रधानमंत्री, सुनिए, मैं उन लोगों में से हूं जो निष्पक्ष तरीके से बोलते हैं। मेरा मानना है कि इस नरेंद्र मोदी सरकार की तीन बड़ी उपलब्धियां हैं, मैं कह रहा हूं। पहला, जिस तरीके से यूपीआई डिजिटल पेमेंट का सवाल,
0: डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर,
6: इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरा,
0: ये वाकई मतलब
6: जिस तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश की। तीसरा जो है, जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया गया, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे हमारे हाईवेज हो, उनमें कुछ कमी है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जैसे मैन्युफैक्चरिंग की बात, आप 2014 में आए, आपने कहा 2022 तक हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग होगा वो 25% होगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन का, जीडीपी ग्रोथ का. आज भी हम 13-14% पे ही हैं, क्योंकि जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, जो यूथ में नाराजगी की दिक्कत है, उसलिए क्योंकि हम मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बन पाए. चाइना दुनिया का 1/3 मैन्युफैक्चरिंग हब है, मतलब 33-34% कंट्रीब्यूशन उसका उसकी मैन्युफैक्चरिंग का दुनिया के अंदर है. हम कहां पे हैं? तो ये जो सवाल है ना, बड़े महत्वपूर्ण सवाल है. प्रधानमंत्री जी हमेशा बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बट वेयर इज द डिलीवरी? और मुझे जनगणना की बात सुनकर,
0: और ये डिलीवरी ही सरकार, मतलब उसकी परफॉर्मेंस जो है वो डिलीवरी से लिंक्ड है. बोलिए संगीत जी.
5: देखिए, जब भी हम चाइना से बात करते हैं या तुलना करते हैं, तो हम भूल जाते हैं कि हम एक डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में काम करते हैं. चाइना जिस फ्रेमवर्क में काम करता है, यदि चाइना यदि आज तय कर ले कि स्कूल में यही लागू होगा तो यही लागू होगा, फिर अलग नहीं होगा. पूरे देश में चाइना जो है वो रेजिमेंटेशन ऑफ माइंड पर काम करता था. जब उसको इंडस्ट्री खड़ा करना था तो हमारे यहाँ की तरह ट्रेड यूनियन आकर के बाहर नारे नहीं लगा रहे होते, प्रधानमंत्री के दफ्तर के आगे हंगामा नहीं हो रहा होता, और जंतर मंतर पर भी हंगामा नहीं होता.
0: आप वहां कह रहे पर हैं कि डेमोक्रेसी में विकास नहीं हो सकता?
5: नहीं, मैंने एक मिनट मेरी बात को सुनिए, मेरी बात को सुनिए. छात्रों ने आंदोलन किया था चाइना में, तियामेन स्क्वायर पे टैंक चलवा दिया था वहां की सरकार ने. हम एक डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में काम करते हैं, चाइना के साथ बिल्कुल तुलना नहीं करेंगे. चाइना आज से 15 साल पहले जो है वो एआई सेक्टर में घुसा था.
0: लोकतंत्र पर जब चर्चा होगी तो बात होगी. मैं सुन रही हूँ, तियानमेन स्क्वायर पर जो हुआ वो
6: एक बात आपको बताऊं,
0: लेकिन
5: इंडस्ट्रियल
6: हमारे पास, मेरी बात हमारे पास पॉलिटिकल विल थी.
5: आप जिसको एक मिनट पहले रुक जाइए, हायर एजुकेशन की आप बात करते हैं, चाइना ने 20 साल तक माओ के जमाने में बोला कोई हायर एजुकेशन नहीं इंस्टीट्यूशन होगा, सारे के सारे गांव में जाओ, सारे के सारे छोटे शहरों में जाओ, वहां पर एजुकेशन को डेवलप करो.
0: पर आज की बात हो रही है ना, आज मैंने फिर कहा पढ़ रहे हैं, क्या हम लोग पढ़ने को तैयार हैं? सकते थे ऐसा डेवलप पहले कल्पना नहीं हो सकती थी. वापस भारत पर आते हैं, 80वां स्वतंत्रता दिवस है, भारत के लिए एक लंबा सफर हमने तय किया है, आगे भी लंबा सफर है. जल्दी से लहर सिंह जी बड़े देर से
6: इंतजार कर रहे हैं. मैं आपको बता दूं, जब विल पावर थी तो हमने ग्रीन रिवोल्यूशन किया और अनाज खाद्यान्न के उत्पादन में हम आत्मनिर्भर हुए. हमारे पास विल पावर थी, हमने व्हाइट रिवोल्यूशन किया, हम दूध उत्पादन में वर्ल्ड पावर बने. हमारे पास विल पावर थी, हम कंप्यूटर में दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री बने, दुनिया के बड़े बड़े कॉरपोरेशन हिंदुस्तान चला रहे. अगर पिछले 12 सालों के अंदर हमने मेहनत की होती, हम एआई में नंबर वन हो सकते थे, हम सेमीकंडक्टर में हो सकते, हम रेयर अर्थ मेटल में हो सकते थे, ग्रीन एनर्जी में हो सकते थे. हमारा कहना प्रधानमंत्री जी बड़ी बड़ी बातें करते, बट वेयर इज द डिलीवरी?
5: रेयर अर्थ मेटल के मामले में आपके पास उसके सोर्सेज होंगे तब ना. अभी जो अमेरिका ऑस्ट्रेलिया गए थे प्रधानमंत्री, वो किस लिए गए थे? इसी रेयर अर्थ मेटल्स के लिए और सेमीकंडक्टर के लिए मार्केट ही ढूंढ रहे थे. को प्रोडक्शन
6: 12 साल बाद आप खोज
5: रहे भाई,
6: आप 12 साल बाद खोज रहे हैं.
5: मैं फिर आपसे कह रहा हूँ,
6: मैं आप बताओ,
5: फिर वही मैं तुलना शुरू कर दूंगा कि 2004 से 2014 तक मनमोहन
6: जानकारी नहीं है रेयर अर्थ मेटल का. एक मिनट, हमारे पास रेयर अर्थ मेटल का ट्रस्ट बना हुआ है, उसका सीईओ नहीं है, उसका डायरेक्टर्स नहीं है, 1952 से बना हुआ है.
5: पकौड़े तल रहे थे 1952 से लेकर.
6: भाई आप क्या कर रहे थे 12 साल में?
5: बीजेपी नरेंद्र मोदी की सरकार आई थी.
4: आशुतोष जी, आप 12 साल में जिसको ढूंढ रहे हैं, इसी 12 साल में कोई करिश्मा है? मुझे याद है पहला भाषण, न खाऊंगा न खाने दूंगा. तो आप जो शिफ्ट लेकर के प्रधानमंत्री आए कि पहले एक दृढ़ अर्थव्यवस्था और निश्चय वाली सरकार स्थिरता से काम करे, काम करते करते 33 गुना मोबाइल प्रोडक्शन गया है. वक्त इंतजार कीजिए, विकसित भारत आते आते भारत की 50 कंपनियां दुनिया में जानी जाएगी जो आज उन्होंने कहा है, भारत के 5 बड़े बैंक जाने जाएंगे जो उन्होंने कहा है. शोध के मामले में आईएससी बैंगलोर को दुनिया ने स्वीकार किया ना कि एक शोध संस्था है आईएससी बैंगलोर.
6: एक है भाई,
4: अगर एक सुनिए, अगर पहले 700 विश्वविद्यालय था, 732 कुछ, आज 1250 विश्वविद्यालय इसी 12 साल में है ना. पहले 50,000 डॉक्टर बनाने में हमारी हालत खराब होती थी, आज 1.5 लाख डॉक्टर करीब करीब हर साल बन रहे हैं ना. तो विकसित की तरफ चल रहे हैं ना. आप करे नहीं, आज बच्चा पैदा हुआ कल वो बड़ा हो जाए, इसी 12 साल.
6: अरे भाई 12 साल हो गए,
0: 12 साल में
4: पहले कभी सेमीकंडक्टर की चर्चा इस देश में थी क्या? पहले कभी एआई की चर्चा इस देश में थी क्या? पहले कभी किसी ने चर्चा की कि हमें ग्रीन और ब्लू इकोनॉमी पे काम करना चाहिए?
5: 6 साल पहले ही एआई इस यूनिवर्सिटी में आकर के एआई पर डिस्कशन शुरू हुआ है.
0: कैसी बात है, आपको सुनाते हैं. जिस शक्ति की सप्तधारा की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज की है, उन्होंने क्या कहा उस वक्त, पहले सुन लीजिए फिर चर्चा करेंगे.
3: मैं आज उस युग को भी याद करना चाहूंगा जब देश भारत का सामर्थ्य सप्त सिंधु के रूप में हम जानते थे, हम समझते थे, हम सुनते थे, अब विकसित भारत बनाने के लिए हमें नई धारा चाहिए। आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्त धारा का आवाहन करता हूं। आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ, वो सप्त धारा के सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे। और इसके साथ साथ देश की युवा शक्ति का सामर्थ्य का भरपूर राष्ट्र निर्माण में उपयोग होगा, उनकी शक्ति जोड़ी जाएगी। आने वाले दिनों में जब मैं सप्त धारा की बात करता हूं, सप्त धारा की पहली शक्ति है मैन्युफैक्चरिंग पावर।
7: 5% ग्रो करेंगे कि नहीं करेंगे?
4: नहीं करेंगे, उससे ज्यादा करेंगे।
0: तो जब हम लोग प्रधानमंत्री की बात आपको सुना रहे थे, तब भी यहाँ पर चर्चा उतने ही पैशन के साथ चल रहा है, तो इससे आप कल्पना कर सकते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो बड़ी बातें कही हैं, उसमें जिस सप्त शक्ति की उन्होंने बात की, आपने सुन ली। लेकिन इसी के साथ युवाओं को लेकर जिसकी चर्चा थी, क्योंकि जेन ज़ी आंदोलन हुआ जंतर मंतर पर, झारखंड में इस वक्त भी चल रहा है जब हम और आप 15 अगस्त में आज स्वतंत्रता दिवस के जश्न को मना रहे हैं, तब एक हिस्सा हम सबका उन बच्चों के साथ भी है जो अभी भी लगातार डटे हुए हैं। देवेंद्रनाथ महतो जो लगातार अनशन कर रहे हैं, अन्य छात्र भी वहां पर कई हैं जिन्होंने भोजन त्यागा है। तो बहुत सारी चीजें देश में चल रही है, उस बैकग्राउंड में प्रधानमंत्री ने युवा शक्ति की आज एक बार फिर से यहां पर चर्चा की है। तो युवा शक्ति पर उन्होंने क्या कहा है, चर्चा करें, उससे पहले एक बार सुन लीजिए।
3: जब मैं विकसित भारत की बात कर रहा हूं, देश को तेज गति से आगे बढ़ाने की बात कर रहा हूं, उसका सबसे बड़ा लाभार्थी कौन है? इन सारे प्रयासों का सबसे बड़ा साधक कौन है? अगर साधक है तो मेरे देश का युवा है, मेरे देश की युवा शक्ति है। विकसित भारत की यात्रा में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। इतना ही नहीं, विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी मेरे देश का युवा है। और इसलिए हमें विकसित भारत के लक्ष्य को युवाओं के साथ जोड़ करके आगे बढ़ाना है। युवाओं हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ हमें आगे बढ़ना है। साथियों, पिछले 10-12 साल में उस दिशा में बहुत कुछ हुआ है। स्टार्टअप इंडिया अभियान, आज पूरे देश में 2.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप बन गए। देश के नौजवान खुद तो काम कर रहे हैं, अनेकों को रोजगार दे रहे हैं। 1 लाख करोड़ रुपया इनोवेशन फंड भारत सरकार ने घोषित किया है। मैं देश को नौजवानों को कहना चाहता हूं, आप अपने सपनों को लेकर के आइए, संसाधनों की कमी नहीं रहने देंगे। 1 लाख करोड़ रुपया आपके दिल दिमाग को सामर्थ्य देने का एक व्यवस्था हमने कर दी है। रिसर्च के नए अवसर मिले, डिजिटल इंडिया के नए सस्ते डेटा, ये युवाओं को सशक्त किया। दुनिया में सस्ता डेटा कहीं है तो भारत की धरती पर है, और देश के नौजवानों को उसने नवी ताकत दी है। स्किल इंडिया हमने नेशनल प्रोग्राम बनाया है, स्पेस सेक्टर को हमने ओपन कर दिया, नेशनल ड्रोन पॉलिसी हमने बनाई है, खेलो इंडिया पॉलिसी बनाई है, 35 वर्षों तक एजुकेशन पॉलिसी नहीं थी, नई एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आए हैं, और इसका फायदा मिडिल क्लास के परिवारों को हुआ है। साथियों, 2004 से 2014 आंकड़ा मुझे देना चाहिए आपको, 2004 से 2014 हमारे देश में 350 से भी कम यूनिवर्सिटी थी, और आज 10-12 साल के भीतर भीतर करीब 650 नई यूनिवर्सिटी जुड़ चुकी है, करीब 1000 का आंकड़ा हम पहुंच रहे हैं। 2014 के पहले मेडिकल की सिर्फ 400 सीटें हुआ करती थी, आज करीब करीब 850 सीटें मेडिकल की हो रही है। इतना ही नहीं, अब विदेशी यूनिवर्सिटी भी भारत की धरती पर आ रही है। भारत के अंदर विदेशी यूनिवर्सिटी की डिग्री मेरे नौजवान को मिले, इसका प्रबंध भी हो चुका है। हमारे देश के युवा मन बचपन से ही टेक्नोलॉजी की तरफ आकर्षित हो, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं, और इसलिए हमने
8: करीब 10,000 से अधिक अटल टिंकर की लैब छोटे छोटे बच्चों के हवाले कर दी है ताकि उनका इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के अंदर उनका मन बने। 12 वर्ष युवा, हमने अनेक रास्ते खोले, हम स्टार्टअप ओपन कर दिया। आपने देखा होगा भारत के प्राइवेट स्टार्टअप 28 साल की एवरेज उम्र के बच्चों ने, नौजवानों ने दुनिया में पहले ही ट्रायल में अपना सैटेलाइट लॉन्च कर दिया और रॉकेट लॉन्च कर दिया उन्होंने। बहुत बड़ा काम कर दिया साथियों। आज करीब 2.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप है।
0: तो आज मिशन युवा भी एक तरह से देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को लेकर अलग से चर्चा की है और अलग से क्या क्या उस पर किया जा सकता है, इन सब की उन्होंने जानकारी दी। आज अगर फ्री कोचिंग की उन्होंने बात की है, वो भी ऑनलाइन, एक सरकार व्यवस्था पर काम करेगी, 1 करोड़ युवाओं को AI ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि उनका स्किल सेट इसमें तैयार हो, फ्यूचर रेडी हो रहे, हर तरह के संसाधनों की व्यवस्था युवाओं के लिए की जाएगी। और इसी के साथ साथ उन्होंने कहां कहां पर किन कॉलेजेस में सीट्स बढ़ाने की बात है, इन सब पर आज उन्होंने इस मंच से चर्चा की है। एक बार फिर से चलते हैं, सांसद लहर सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रधानमंत्री ने तो AI स्किल ट्रेनिंग की बात की है, आपने कहां पर सुन लिया कि प्रधानमंत्री सतर्क कर रहे थे खतरे से?
2: जी देखिए, अभी जो हमारे पूर्व वक्ताओं ने बहुत अच्छा विश्लेषण किया है और आशुतोष जी ने अपनी चिंता भी व्यक्त की है, मैं उनकी बातों को दोहराना नहीं चाहूंगा, उनकी बातों से सहमत हूं। अच्छा विश्लेषण उन्होंने किया है। एक दो बातें मैं कहना चाहूंगा अपनी तरफ से। एक तो युवाओं के सामने सबसे बड़ी समस्या है नशा की जो आदत पड़ती जा रही है, इस पर उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने जोर दिया है और इसमें हम सब पर कर्तव्य बनता है, हम सोसाइटी का, मीडिया का, पॉलिटिकल पार्टियों का और प्रतिनिधियों का भी और पेरेंट्स का भी, हम इन बच्चों को नशा मुक्ति से कैसे दूर रखें। यह बहुत बड़ा खतरा विश्व में भी हो रहा है और भारत में भी फैलता जा रहा है, एक बात। दूसरा, जो शिक्षा के बारे में बात कही गई है, तो मैं ये मानता हूं कि कोचिंग ये फैक्ट्रियां बंद होनी चाहिए और जैसे हमारे एक वक्ता ने कहा था कि सरकारी स्कूलों को इम्प्रूव करने के लिए पूरा ध्यान देना चाहिए। अगेन इसके लिए मैं हम सबसे आह्वान करता हूं कि हम सोसाइटी के सभी ब्रांचों का ये फर्ज बनता है कि हम ये सरकारी स्कूलों का स्तर और आगे बढ़ाएं और कोचिंग फैक्ट्रियों को हम ये बंद करें। और इसके लिए जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, ऑनलाइन की बात कही है, बहुत अच्छी बात है। और लेकिन मैं एक और बात कहना चाहता हूं, जो डिलीवरी की बात हमारे आशुतोष जी बार बार कह रहे थे, तो ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों की डिलीवरी, संसाधनों की डिलीवरी आप और हम सब मिलकर ही कर सकते हैं। हम सबको मोदी जी का आचरण करना पड़ेगा, अपने जाति से, अपने स्वार्थ से, अपने परिवार के स्वार्थों से ऊपर उठना पड़ेगा और अपने क्षेत्रीयतावाद से और भाषा के झगड़ों से आगे बढ़ना पड़ेगा, तब हम सब चीजों का लाभ पूरे देश में कर पाएंगे। और आदरणीय प्रधानमंत्री का जो है सबका साथ और सबका विकास, वो पूरी तरह से इस बारे में ईमानदार है और हम सब लोगों को यह बात समझनी चाहिए। अच्छा, दूसरा तीसरा एक बड़ा खतरा जो मैं समझ रहा हूं, ये नक्सलवाद तो कई कई समाप्त हो चुका है जंगलों से, लेकिन नक्सलवाद महत्वपूर्ण बात है, एक मिनट पूरी बात करने दे मेरे को। अब ये नक्सलवाद शहरों में आ गया है और पॉलिटिकल पार्टियों पर अर्बन नक्सल के तरह के लोग हावी होकर के उनकी नीतियों को प्रभावित कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरे की बात है। और विपक्षी पार्टियों के प्रबुद्ध नेताओं को समझना पड़ेगा कि इस तरह से अर्बन नक्सल वाले लोग हमारी पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टियां नहीं चलाएं और संसद में व्यवधान जो करने के कर रहे हैं। अच्छा, जहां तक ये इसका सवाल है शिक्षा की नीति के बारे में, मैं भी सहमत हूं कि इसमें बहुत अभी इम्प्रूव होना बाकी है, लेकिन ये संसद में चर्चा करने से ही हो सकता है। संसद में पॉलिटिकल पार्टियां जब डिबेट में भाग लेगी, नए नए सुझाव देगी, हम भी अपना सरकारी पक्ष रखेंगे और उसमें जो भी कोई संभावना होगी उनके बदलाव का होगा, तो ये संसद में चर्चा नहीं चलने देने का, ये जो एक अभिशाप हो रहा है हमारे लोकतंत्र के ऊपर बड़ा खतरा है। तो ये पॉलिटिकल, इसके पीछे नक्सलवाद, अर्बन नक्सल लोग हैं, तो इनसे मैं आशुतोष जी से भी निवेदन करूंगा कि अपने साथियों को समझाए और संसद चलने से सारी बातों का समाधान निकलने की संभावना बनती है। और बाकी जो आपने बातें की,
0: किसको समझाना है? अरे सांसद जी, पहले आप सुनिए, अब आपने अपनी बात खाली खतरे ही गिनाइएगा कि कुछ बताइएगा भी। आप राजस्थान में, जितना मुझे याद आ रहा है, आप उदयपुर के पास कहीं से सांसद हैं, आपका चुनावी क्षेत्र सर?
2: जी नहीं, मैं कर्नाटक से हूँ और उदयपुर का हूँ, मूल उदयपुर का हूँ, वैसे कर्नाटक से हूँ। अच्छा, अच्छा। मैं कर्नाटक से हूँ सांसद। जी जी हाँ
0: अपने क्षेत्र में
2: तो मैं
0: आपने कितने सरकारी स्कूलों को विजिट किया है, आपने प्राथमिक कितने स्कूलों में जाकर परिवर्तन करने की कोशिश की है, और जो प्रधानमंत्री यहाँ से बोल रहे हैं वो लास्ट माइल डिलीवरी इंश्योर हो, बच्चों को प्राथमिक स्कूलों में मिड डे मील पोषण वाला मिले, टीचर्स हो, व्यवस्था हो, आपने अगर सुनिश्चित किया हो तो कोई स्कूल गिनाए?
2: मैं जब ये मैंने जब ये एमएलसी था उस समय मैं मेरे फतेह स्कूल उदयपुर में जहां मैं पढ़ा हूँ, मैं बेंगलुरु से वहां गया और वहां मैंने कंप्यूटर लैब की स्थापना करवाई। मेरे फतेह स्कूल जो मेरा उदयपुर का स्कूल है, आप पता कर सकते हैं। और दूसरा मैं जो मावली जो एक छोटा सा गांव है जहां मेरे पिताजी की सर्विस थी, मैं ये समझ ये बात होगी 2012-13 की बात होगी,
0: 2012-13 की बात थी।
2: गुलाब चंद जी कटारे भी उस कार्यक्रम में आए थे, वो शिक्षा मंत्री 2012-13
0: कार्यक्रम तो बहुत होते हैं सर, सवाल है कि आप उसके बाद कितनी बार गए कंप्यूटर कार्यक्रम?
2: मैं कम से कम मैं 3-4 बार गया हूँ और कंप्यूटर लैब अच्छे चल रही है, अच्छा उपयोग हो रहा है एक। और दूसरा मैं राजस्थान से उसके कुचामन सिटी में किसी काम से गया था, तो वहां मुझे कहा गांव वासियों ने कि हमारे यहाँ कंप्यूटर लैब बननी चाहिए। तो उस कुचामन सिटी का छोटा सा गांव है नालोट, आप पता करवा ले। मैंने वहां कंप्यूटर लैब लगवाई हमारे मेरे राज्यसभा फंड से वहां करवाई है। और उसके बाद में मावली जो स्कूल है उदयपुर जिले में, मावली है स्कूल है, उसमें मैं चौथी क्लास पढ़ा था, चौथी और क्लास तक, तो मैं उस स्कूल में 3-4 बार जा चुका हूँ और वहां मैंने सुविधाओं के लिए कई बार उनको कहा, लेकिन वहां से जो है उन एमएलए जो है उनका कोई मेरे पास रिस्पांस नहीं आया। और राजसमंद जिले में जो मेरे स्कूल थे मैं वहां भी जा चुका हूं और इस मुद्दे को मैं
0: काउंसिल में कई बार उठा चुका हूं। बेहतर किया जा सके, सांसदों का विधायकों का इसमें क्या योगदान होना चाहिए, वो सिर्फ एक कार्यक्रम जाकर करने या फिर एक बार दो बार होने से नहीं, मतलब मुझे तो लगता है कि सप्ताह में एक बार जाने में क्या खराबी है, अपने अपने क्षेत्र में जाइए। सिर्फ अपने अल्मा मातर की बात क्यों, हर स्कूल जो आपके क्षेत्र में आता है कैसे उस व्यवस्था को बेहतर किया जाए, हम इस पर लौटेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक सेकंड जल्दी से आपको सुना देते हैं, प्रधानमंत्री ने जो नक्सलिज्म का मुद्दा आपने बताया उस पर क्या कहा है, पहले सुन लेते
8: हैं। जहां पर कभी नक्सलवादियों की गोलियां चलती थी, जहां पर कभी धरती रक्त रंजित रहा करती थी, आज उसी नक्सल क्षेत्रों में, उसी इलाकों में नक्सल मुक्त होने के कारण विकास, विश्वास और प्रयास का तिरंगा लहरा रहा है मेरे प्यारे देशवासियों। लेकिन इस चुनौती को हमने कम नहीं आंकना है, इस चुनौती से हमें और भी सावधान रहने की जरूरत है। वर्षों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे, सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था। मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है, लेकिन हथियारी नक्सल तो गए लेकिन दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। आज भारत ने भी एक बहुत बड़ा सपना देखा, दृढ़ संकल्प के साथ देखा है, नई ऊंचाइयों को छूने के लिए देखा है। और वो सपना है, जब आजादी के 100 साल होंगे 2047 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे, 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ से
3: इस लक्ष्य को हमें हासिल करना है। और जब दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश विकसित होने का संकल्प लेता है तो ये दुनिया की नजरों में भी हमारे साहस का परिचायक बन जाता है। दुनिया हमारी तरफ देखने का नजरिया बदलने के लिए मजबूर हो जाती है।
0: तो प्रधानमंत्री ने कई मुद्दों पर आज इस मंच से चर्चा की है, जिस पर अब मुझे लगता है हमारे साथ सांसद सुधांशु त्रिवेदी जी भी यहां पर स्टूडियो में पहुंच गए हैं। एक बार फिर से हमारे देशवासियों को 80वें स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। लेकिन आज प्रधानमंत्री ने यहां इस मंच से यह भी चर्चा की कि देश में दिमागी नक्सलवाद जो है उसका उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कई बार पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा, ऐसी अफवाहें देश में फैलाई गई, तो देश में एक नकारात्मकता फैलाने की कोशिश में भी कुछ लोग लगे रहे। ये दिमागी नक्सल ये क्या है सुधांशु जी?
4: देखिए सर्वप्रथम तो मैं सारे देश को बधाई देना चाहूंगा, हम स्वतंत्रता के 80वें वर्ष में प्रवेश कर गए और ये वो देश है जो इस समय दुनिया का आबादी की दृष्टि से सबसे बड़ा देश और सबसे युवा देश है। ये नहीं है, दिस इज नॉट फुल ट्रुथ, दिस इज हाफ ट्रुथ। हम दुनिया के सबसे युवा देश और सबसे प्राचीन जीवंत सभ्यता है। हम एकमात्र देश हैं जिसने हजारों सालों के इस कालखंड के बाद भी अपनी पहचान को यथावत बना के रखा हुआ है और वह इस कारण से हुआ है कि इस देश के लिए समय समय पर लोगों ने अपने जीवन की आहुति दी और समय समय पर इसकी व्यवस्था के अंदर नए प्राण फूके गए। तो जिसे मैं एक पंक्ति में कहना चाहूंगा कि आज प्रधानमंत्री जी ने सप्त सिंधु और फिर सप्त धारा का उल्लेख किया, तो ये वो देश नहीं है जिसके लिए हम लोग बच्चे थे और तब टीवी पे आता था सर जमीने हिंद पर अक्वाम आलम के फिराक काफिले बसते गए हिंदोस्तान बनता गया। हम ये कोई काफिलों का बसेरा नहीं थे, हम वो थे जो जयशंकर प्रसाद जी ने अपनी पंक्ति में कहा था कि हिमालय के आंगन में प्रथम उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। जगे हम लगे जगाने विश्व लोक में फिर फैला आलोक, व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट निखिल संस्कृति हो उठी अशोक। और आगे उन्होंने कहा था विमल वाणी में वीणा ली कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में जगे छिड़ा तब मधुर साम संगीत। संपूर्ण विश्व को जहां से ज्ञान मिला, इसलिए आज इस दिन हम ये कहते हैं कि जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे या हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। अब आते हैं दिमागी नक्सल पे जो आपने बात कही। देखिए मैं एक बात फिर जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये बात मैं पहले भी कह सकता हूं, इस समय की हमारी लड़ाई जो है अमृत काल की या आजादी की लड़ाई से बड़ी लड़ाई है। इसलिए कि आप कहेंगे ऐसा कैसे बोल रहे हैं आप, आजादी की लड़ाई वो थी कि हम जेल में थे, जो भी व्यक्ति जेल में है उसे पता है मुझे जेल से बाहर निकलना, और एक बार मुझे जेल से बाहर निकल गया तो मुझे वापस नहीं आना है। मगर आज ये जो दिमागों में मैकाले और मार्क्स की ड्रग घुसी हुई है, ये जो अर्बन नक्सल विचारधारा घुसी हुई है, इट्स लाइक अ ड्रग एडिक्ट। ड्रग एडिक्ट को ड्रग में ही अच्छा लगता है, वो ड्रग के बाहर देखना मुश्किल है। मैं किसी भी व्यक्ति से कहता हूं जेल से छुड़ाना आसान काम है, ड्रग से छुड़ाना मुश्किल काम है। इसलिए ये जो दिमागों में पराजित मानसिकता बैठी हुई है उससे निकलकर भारत के स्व को पहचानना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है और एक विचारधारा विशेष है जो सदा सर्वदा भारत को यह समझाती है कि तुम्हारे अंदर सब कुछ बुरा था, सब कुछ खराब था। उदाहरण के लिए नक्सल्स की बात कही जाती है, वो कहते हैं हम गरीब की लड़ाई लड़ रहे हैं, मगर आज तक बताइए किसी कारपोरेट हाउस के ऊपर अटैक किया हो नक्सल्स ने, किसी बड़े बिजनेसमैन के ऊपर कुछ किया हो? कुछ नहीं, उनसे तो टैक्स वसूलते हैं, मारते किसको थे? सीआरपीएफ के जवानों को, जो गरीब ग्रामीण परिवेश के किसानों से आते थे, किसान परिवार से आते थे। अर्थात और ये जानते हैं विचारधारा क्या होती है, लोग कहते हैं कैपिटलिज्म के लिए मनी इज द कैपिटल और कम्युनिज्म के लिए पॉवर्टी इज द कैपिटल। जब गरीब रहेगा तभी तो उस पर राजनीति रहेगी। इसलिए जितने भी आप देखेंगे देश, वहां पे गरीबी ही फैलती है और गरीबी से ही वो आते हैं। जो कहते हैं ना कि इंडस्ट्री से लेके वो कोई इंडस्ट्रियलाइज देश में हुआ ही नहीं, और जो आज चाइना कहने कम्युनिस्ट नाम मात्र का कम्युनिस्ट है, वो कैपिटलिस्टों का भी बाप है। और जिस ढंग से वहां वर्कर्स को हैंडल किया जाता है वो अलग है। मगर एक पक्ष देखना और दूसरा पक्ष नहीं देखना, मुझे लगता है देश को एक देश के रूप में नहीं मानना। जो चर्चिल कहते थे इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट, वही राहुल गांधी कहते हैं कि इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट लाइक द यूरोपियन यूनियन। तो मुझे लगता है ये जो विचारधाराएं हमारे दिमागों में हैं और
9: फिर मैं अंत में एक बात यह कहना चाहूंगा, फिर मैं कोट कर रहा हूं उसी देश को जिस देश ने हम पे शासन किया। 16 मई 2014 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी और भारतीय जनता पार्टी को पहली बार क्लियर मेजोरिटी मिली। 18 मई 2014 को लंदन के संडे गार्डियन ने अपने संपादकीय में लिखा कि पहली बार उस विचारधारा के हाथ में पूर्ण सत्ता आई है, क्योंकि अटल जी के टाइम में पूर्ण सत्ता नहीं थी, जिसका अब ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी से कोई संबंध नहीं है। इससे पूर्व जितनी भी पार्टियां सत्ता में रही वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी की व्यवस्थाओं और विचारों को लेकर आगे चल रही थी। जानते हो उसने शब्द क्या लिखा था? 16th of May 2014, मैं नहीं कह रहा हूं, लंदन के संडे गार्डियन ने 18 मई 2014 को अपने संपादकीय में लिखा है, 16th of May 2014 वॉज इंडिया सेकेंड ट्रिस्ट विद डेस्टिनी एंड इट शुड बी रिमेंबर इन इंडियन पॉलिटिक्स एज द डे ऑन विच ब्रिटिशर्स फाइनली लेफ्ट इंडिया। यानी ये दिन उस रूप में स्मरण किया जाना चाहिए जिस दिन इस अंग्रेज अंतिम और निर्णायक रूप से भारत छोड़कर चले गए, मतलब विचारधारा की दृष्टि से विचारधारा में एक बड़ा परिवर्तन आया और उसी की तरफ प्रधानमंत्री जी संकेत दे रहे हैं।
0: तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 80वें स्वतंत्रता दिवस पर झंडारोहण के बाद अपने संबोधन में सबसे ज्यादा फोकस अगर उनका युवा शक्ति पर रहा है तो ये जो दिमागी नक्सल वाला मुद्दा है वो आप देख ही रहे हैं कि उस पर चर्चा बहुत बड़ी होती जा रही है और सबसे ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि प्रधानमंत्री ने बहुत सारी जो चर्चाएं की हैं उसमें उन्होंने बताया कि कैसे एआई स्किल पर हम फोकस करेंगे, 1 करोड़ युवाओं को देने की कोशिश करेंगे क्योंकि आने वाले वक्त में फ्यूचर रेडी बच्चे कैसे हो पाए इस पर भी भारत का जोर होना चाहिए। उन्होंने ऑनलाइन फ्री कोचिंग देश के बच्चों को उपलब्ध कराने का भी एक पूरा ढांचा तैयार करने की बात की है। इसी के साथ साथ जब उन्होंने नक्सलवाद का अंत और उसके साथ उन तमाम इलाकों में विकास

0: आजादी के 80वें साल पर लाल किले से तिरंगा फहराकर प्रधानमंत्री मोदी का प्रण, 2047 तक बनाकर रहेंगे विकसित भारत। देश को दिया शक्ति की सप्तधारा का मंत्र, कहा समय हमारा, अवसर हमारा, संकल्प हमारा। हथियार वाले नक्सलियों को तो खत्म कर दिया, लेकिन अराजकता फैलाना चाहते हैं दिमागी नक्सली, लाल किले से बोले प्रधानमंत्री, दिमागी नक्सलियों की पहचान जरूरी, अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं है जंग। युवा शक्ति को समर्पित स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री का बड़ा ऐलान, 1 करोड़ युवाओं को मिलेगी एआई ट्रेनिंग, छात्रों के लिए खुलेंगी फ्री ऑनलाइन कोचिंग्स, कंपटीशन की तैयारी करने वालों का खर्चा होगा कम। चालीस साल से राजनीति का शिकार हो रहा है महिला आरक्षण बिल, सभी सियासी दलों से प्रधानमंत्री की अपील, महिलाओं को 33% आरक्षण दिलाने के लिए आगे आए, 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का भी लक्ष्य। और क्या हुआ जब स्टेज पर एक साथ आए सनी देओल, प्रीटी जिंटा और इंडियन कोस्ट गार्ड, दोपहर 12 बजे देखिए आज तक पर।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

सप्तधारा का आवाहन करता हूं। समय हमारा है, अवसर हमारा है, संकल्प हमारा है,

80वें स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं आप सभी दर्शकों को। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान यहां पर जुड़ गए हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी सांसद भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ सत्य प्रकाश मिश्रा जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हैं। हमारे साथ संगीत रागी जी जुड़े हुए हैं और हमारे साथ आशुतोष जी लगातार जुड़े हुए हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। इन सबके साथ चर्चा करेंगे। बड़ा दिन है और हमें उम्मीद है कि ये जश्न आप भी अपने तरीके से मना रहे होंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लाल किले के प्राचीर से बहुत सारी बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि एक महाशक्ति बनने की राह में जो सप्त धारा पर

0: में आगे बढ़ना है, उसमें देश में हम कैसे मैन्युफैक्चरिंग निर्माण से लेकर हम कैसे भारत के सॉफ्ट पावर यानी योगा, आयुर्वेद, अपना जो पर्यटन है, इन सब पर हम कैसे आने वाले वक्त में जोर दे सकते हैं, हम कैसे युवा शक्ति, युवा ऊर्जा को आगे ले जा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि ऐसे तमाम क्षेत्र जहां पर हम पहले काम नहीं करते थे, हमें वहां भी बहुत तेजी से बढ़ना होगा, हमें कैसे अपने देश को सशक्त बनाना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि समय हमारा है, अवसर हमारा है, संकल्प भी हमारा है, 2047 में विकसित भारत बनाना है। तो सप्तधारा की उन्होंने बात की, उस पर भी बड़ी चर्चा हो रही है, लेकिन प्रधानमंत्री ने आज इस मंच से यह भी कहा कि भारत ने सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल की है नक्सलवाद का अंत करके इस देश में, और उन तमाम क्षेत्रों में जहां पर नक्सलवाद का बोलबाला रहता था वहां पर परिस्थिति बिल्कुल बदल गई है, वहां विकास आज लोगों तक पहुंच रहा है, लोगों को हम मुख्य धारा में शामिल कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि कुछ लोग दिमागी नक्सल है जो देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि कई बार अफवाहें देश में फैलाई गई, पेट्रोल डीजल अब नहीं मिलेगा, इस तरह की अफवाहें फैलाकर लोगों के मन में एक डर और भय पैदा किया गया। आज इस मंच से प्रधानमंत्री ने अनेकों बातें कही, इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें ये देखिए।
1: मैं आज उस युग को भी याद करना चाहूंगा जब देश भारत का सामर्थ्य सप्त सिंधु के रूप में हम जानते थे, हम समझते थे, हम सुनते थे। अब विकसित भारत बनाने के लिए हमें नई धारा चाहिए। आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्त धारा का आह्वान करता हूं। आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ, वो सप्तधारा के सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे। और इसके साथ साथ देश की युवा शक्ति का सामर्थ्य का भरपूर राष्ट्र निर्माण में उपयोग होगा, उनकी शक्ति जोड़ी जाएगी। आने वाले दिनों में जब मैं सप्तधारा की बात करता हूं, सप्तधारा की पहली शक्ति है मैन्युफैक्चरिंग पावर। जहां पर कभी नक्सलवादियों की गोलियां चलती थी, जहां पर कभी धरती रक्त रंजित रहा करती थी, आज उसी नक्सल क्षेत्रों में, उसी इलाकों में नक्सल मुक्त होने के कारण विकास, विश्वास और प्रयास का तिरंगा लहरा रहा है, मेरे प्यारे देशवासियों। लेकिन इस चुनौती को हमने कम नहीं आंकना है, इस चुनौती से हमें और भी सावधान रहने की जरूरत है। वर्षों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे, सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था। मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है। लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा।
0: मुख्य धारा से देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा, और जो नक्सल, दिमागी नक्सल देश की गलियों में छिपे हुए हैं, जो पहले नीतियों को प्रभावित करते थे, वो अब किस तरह से देश में अपना पैर मतलब फिराक में, उन्होंने कहा मौके की फिराक में है, इसको किस तरह से समझे? सुधांशु जी, आपका परिचय एक बार करा देते हैं। अजय उपाध्याय जी भी कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं स्टूडियो में, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। बोलिए सुधांशु जी।
2: देखिए सर, प्रथम तो आज के स्वतंत्रता दिवस पे हर देशवासी को एक चीज की अनुभूति होनी चाहिए कि हम उस देश के नागरिक हैं जिसके बारे में दुनिया क्या कहती थी और आज क्या कह रही है। एंशियंट चाइनीज में इंडिया का नाम है टियानजू, सेंटर ऑफ हेवन। एंशियंट जैपनीज में है टेनजिक, यानी हेवन की प्लेस। तो वहीं जर्मनी का आर्थर शोपेनहावर कहता है कि अगर विश्व का सबसे उन्नत विकसित मस्तिष्क देखना है तो भारत का आकाश के नीचे आना पड़ेगा। तो अरेबिक ट्रेवलर्स चाहे जितने भी रहे हों, इब्न अल खल्दूम चाहे इब्न अल तबरी, उन्होंने कहा व्हेन एवर आई लुक टूवर्ड्स इंडिया आई फाउंड ए कूल ब्रीज ऑफ नॉलेज इज कमिंग। तो मुझे लगता है वो देश जिसने कभी दुनिया पे जाके इन्वेजन नहीं किया, जिस देश ने कभी कन्वर्जन की नहीं सोची, जिसने कभी दुनिया पे आधिपत्य जमाने की नहीं सोची, दुनिया को प्रेरणा देने की सोची, आज विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में फास्टेस्ट ग्रोइंग है, आज 177 देश जिसमें योग के द्वारा सीधे प्रभावित होते हैं, वो देश जो आज ब्रिक्स का भी मेंबर है जो चाइनीज ब्लॉक माना जाता है, और क्वाड का भी मेंबर है जो अमेरिकन ब्लॉक माना जाता है। तो हमें पहली बात तो ऐसे देश के नागरिक होने पर गर्व का अनुभव होना चाहिए। परंतु कुछ विचारधाराएं ऐसी हैं जिनको भारत में कोई भी अच्छी चीज जो प्रत्यक्ष भी दिख रही हो उसमें भी बुराई देखने की एक आदत हो जाती है, और ये उनमें कोई गलती भी नहीं है क्योंकि सारी विचारधाराएं ये विदेश से प्रेरित हैं, ये फॉरेन फोर्सेस के द्वारा गवर्न होती, इनका इंसेप्शन एंड इंस्पिरेशन यानी इनकी उत्पत्ति और प्रेरणा दोनों मूलतः विदेश से है, और उस कारण से भारत के अंदर अनेक प्रकार के अवरोध उत्पन्न करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप ये कहें तो जिसको आप नक्सली विचारधारा कहते हो, तो भारत तो कभी एक देश है ही नहीं, यहां तो सब अलग अलग हैं, वहां तो ये मानता है कि साहब भाषा अलग है तो देश अलग है, प्रांत अलग है तो देश अलग है, बोली अलग है तो देश अलग है। और ये वही लोग हैं जिन्होंने 60-70 सालों में, आज स्वतंत्रता दिवस पर हमें याद करना चाहिए 80 साल होने के आ रहे हैं, अनेक बार इंडिया की मर्सिया पढ़ दिया, आजादी की बात कहा गया भारत तो एक रह नहीं सकता, ये तो डेमोक्रेसियां सर्वाइव नहीं करेगी। 1967 में एक बड़े अमेरिकी पत्रकार थे, उनका नाम भूल रहा हूं, उन्होंने कहा नेहरू जी के टाइम में कि नेहरू के बाद बल्कनाइजेशन ऑफ इंडिया हो जाएगा। 67 में एक पत्रकार ने कहा दिस विल बी द लास्ट इलेक्शन ऑफ इंडिया, आज हमारे लगातार इलेक्शन हो रहे। कहा 70 के दशक में भुखमरी से देश मर जाएगा, ग्रीन रिवोल्यूशन हुई, हम उस समय की सरकारों को भी क्रेडिट देते हैं, और हम देखिए आत्मनिर्भर हुए। उसके बाद याद करिए 91 में जिस समय हम फाइनेंशियल क्राइसिस में आए, डूब जाएगा देश बर्बाद हो गया। 98 में अटल जी ने पोखरण एक्सप्लोजन किया, बर्बाद कर दिया देश को। उसके बाद जब मोदी जी की सरकार आई फ्रेजाइल फाइव में थे, आज कहां से कहां आए। तो मुझे लगता है ये वही विचारधारा है जो चंद सालों के बाद भारत, ऐसा लगता है भारत की बर्बादी के ख्वाब देखते हैं। उन्हीं के बारे में प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि तेल का हाहाकार हो जाएगा, गैस नहीं मिलेगी। मैंने हम लोगों ने ऐसे सांसदों को बोलते सुना जो ये कह रहे थे भाई पता नहीं गैस मिले ना मिले तो खरीद के रख लो, जो लोग 4 दिन 5 दिन 6 दिन पहले बुकिंग कराए थे वो लोग भी बुकिंग करा रहे थे, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं मिलेगा। यानी किसी भी प्रकार से एक ऐसा वातावरण उत्पन्न करो जिससे देश निराशा और ग्लानि में डूब जाए। मैं स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी का 30 साल पहले का 1996 का 13 दिन की अटल जी की सरकार के समय का एक वाक्य है जो सदन में उन्होंने बोला था, कोई जाके चेक कर ले। उन्होंने कहा कि इस देश में आप तब तक इंटेलेक्चुअल नहीं माने जा सकते थे, दिमागी की बात कर रहा हूं, जब तक आप अपने भारतीय होने पर ग्लानि का अनुभव और हिंदू होने पर शर्म का अनुभव ना करें, तब तक इंटेलेक्चुअल एस्टेब्लिशमेंट में आपको दिमागी आदमी माना ही नहीं जाता था। पर अब यह दिमागी बुखार उतरना शुरू हो गया है 2014 के बाद, और इसलिए मैं कह सकता हूं कि भारत के लिए एक नया स्वाभिमान का सवेरा उदित हो रहा है।
0: और प्रधानमंत्री ने यह भी कहा अजय उपाध्याय जी कि लंबे वक्त तक ऐसे नक्सली दिमाग वाले लोग देश की नीति को भी निर्धारित करते थे और उसका रूप हम लोगों को दिखता था। हालांकि आज सबसे पहले तो 80वां स्वतंत्रता दिवस है, इससे पहले कि हम लोग घोर बहस में और तमाम मुद्दों पर चर्चा करें, हम सबको शुभकामनाएं, जश्न का भी दिन है तो कुछ तो अच्छा भी होगा बोलने को, लेकिन पीएम ने जो ये कहा है उस पर भी आपकी टिप्पणी।
3: नमस्कार सभी साथियों को, आपके सभी दर्शकों को, और स्वतंत्रता दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, हमारे एक एक देश के उदारवादी लोकतांत्रिक चरित्र जीने वाले लोगों की तरफ से। सच पूछिए तो देश की ये आज़ादी जो मिली हमें और इस आज़ादी के 80 वर्ष तक जो हमने यात्राएं की है, इसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, और सच्चाई है उस उतार चढ़ाव के बीच भी हम जो है इस नैया को आगे लाने का काम किए, तो कहीं ना कहीं इसमें बहुलतावादी सोच हमारी जो है विविधता में एकता की सोच है, वसुधैव कुटुंबकम की सोच है, सर्वधर्म संभाव को एक साथ लेकर चलने की सोच है और विभिन्न विचारधाराओं को समन्वय बना करके वाद विवाद संवाद की प्रक्रिया को आगे ले जाने का सोच है। उसी सोच ने हमें आज यहां तक लाने का काम किया है और आने वाले समय में भी हम अपने लोकतांत्रिक बुनियादी मूल्यों को आगे बढ़ाएंगे तो देश और मजबूत होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो भी लंबी भाषण दी है, ठीक है, प्रधानमंत्री जी का भाषण तो होता ही है, अपने प्रधानमंत्री जी आज के प्रधानमंत्री जी का भाषण लंबा होता है, लंबा भाषण देने में कई बार चीजें बहक जाते हैं हम और भगते भगते हम जो है बुनियादी बातों से भटक जाते हैं। सच पूछिए तो आज इस देश को जो है जिस तरह से नफरती सोच वाले दंगाई नक्सली हैं उनसे मुक्ति की ज्यादा जरूरत है। जिस तरह से हिटलर और मुसोलिनी के विचार के लोग आज संस्थाओं में बैठने जा रहे हैं, शिक्षण संस्थाओं में स्पेशली बीसी से लेकर के और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन पर कब्जा करने की जो बात कर रहे हैं, मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी को सच्चाई में उस पर भी कुछ न कुछ टिप्पणी करनी चाहिए या उसके पुनः एक बार वहां शुद्धिकरण का अभियान चलाना चाहिए जिससे लोकतांत्रिक मूल्य की स्थापना में आगे देश बढ़े और सभी विचारों को एक जगह मिले, तभी देश मजबूत होगा। दूसरी बात, युवाओं को लेकर के प्रधानमंत्री जी ने जो भी बात कही है, लेकिन युवाओं के भविष्य को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के कहीं कोई चर्चा उस स्तर पर नहीं हो पाई है। उनके शिक्षा व्यवस्था में जो सुधार की बात ईमानदारी से होनी चाहिए, अभी कुछ ही दिन पहले जैन जी ने जिस तरह के निराशा उनमें थी, उन निराशा को सकारात्मक दिशा ले जाने का काम हम सबको करना है और हमें यह दिखाना है कि यह देश किसी एक वर्ग विशेष का नहीं, ये देश सभी का है और इस देश के मिट्टी को में सभी देश के लोगों का खून पसीना बहा तभी आज देश यहां तक आया है। आगे भी हम बढ़ेंगे सकारात्मकता के साथ। सच्चाई यह है कोरोना के समय जिस तरह से 1000 से ज्यादा लोगों की पैदल चलने में और दुर्घटनाओं में मौत हुई थी, सबने देखा था, लाशों के कई जगह अंबार लगे हुए थे, ऑक्सीजन की कमी थी, ठीक है, हम उससे उभर कर आए क्योंकि देशवासियों के अंदर ताकत थी, शासन व्यवस्था की अक्षमता के बाद भी हम जो है उस स्तर पर आए। जहां तक बात है, अभी आपने वेस्ट एशिया की बात प्रधानमंत्री जी ने की है क्राइसिस की, सच सबको पता है कि भाई कई चैनलों पर आपके माध्यम से हम लोग देखते थे लंबी लाइनें थी, ठीक है कि वो रिजोल्यूशन उसका रिजोल्व हुआ है। तीसरी बात, विदेश नीति के संदर्भ में जो बातें हो रही है क्वाड से लेकर के और बाकी चीजों पर, तो क्वाड में तो हमने देख लिया कि अब 2+2 की बात हो गई, चाइना और अमेरिका एक साथ हो गया है,
0: ठीक है,
3: उसी तरह से सऊदी अरबिया जैसे इस्लामिक एक नेटो बनाने की बात कर रहा है। हम विदेश नीति में क्या सिद्धांतिक तौर पर हमें काम करना है, हमें सीधा खड़ा रहना है और हमें सष्टांग नहीं होना है, हमें देश के प्रति समर्पित होना है, किसी व्यक्ति के प्रति समर्पित होकर के आगे नहीं बढ़ना है। ये संदेश आज देशवासियों को मिलना चाहिए और देशवासी इस बात को समझते हैं। पुनः स्वतंत्रता दिवस के हार्दिक
0: ठीक है। आशुतोष जी, दिमागी नक्सल प्रधानमंत्री ने कहा कि और ये लोग मौके की तलाश में रहते हैं, अराजकता देश में फैलाना चाहते हैं। उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि पेट्रोल डीजल एलपीजी पर हुआ कि सब खत्म हो जाएगा, मिलना बंद हो जाएगा, लाइनें लंबी होती चली गई दुकानों के बाहर।
4: देखिए, अभी सुधांशु जी ने अभी थोड़ी देर पहले कहा था ना कि यूनियन ऑफ स्टेट्स की बात की जाती है, मुझे लगता है कि अगर भारत के संविधान का आर्टिकल 1 अगर खाली पढ़ लिया जाए तो उसी से स्पष्ट हो जाएगा, इंडिया दैट इज भारत शैल बी
2: यूनियन ऑफ कंट्रीज लाइक द यूरोपियन।
4: मैंने आपको टोका ही नहीं, मेरे बोलते ही आप
2: स्टेट ऑफ कंट्री में जमीन आसमान
4: भाई आप सुन लीजिए,
2: स्टेट और कंट्री में जमीन आसमान।
4: मैंने तो ये नहीं कहा कि संविधान भी आपने नहीं पढ़ा, मैं नहीं कह रहा हूँ जब संविधान
2: मेरे को सुना नहीं।
4: अरे भाई, मैंने आपको सुना ना, बनाए दे रहे हैं, मैंने सुना ना आपको, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन
2: ऑफ। यही दिमाग में बैठा नक्सल है।
4: फिर देखिए देखिए,
2: जो वो चीज सुनता ही नहीं जो बोला गया, कोई डिजिटली जाके देख ले मैंने क्या बोला।
4: देखिए, अब मुझे बोलने भी नहीं देंगे।
2: बोलिए बोलिए
4: प्रधानमंत्री जी, इतनी देर तक मुझे बोलने तो दीजिए भाई। मुझे पता नहीं क्यों जब भी मैं कुछ बोलना शुरू करता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोग उछलने लगते हैं, जंप मारते
2: हैं।
4: मैं कह रहा हूँ कि अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा तो संविधान का आर्टिकल 1 पढ़ लेना चाहिए जो लिखा हुआ, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। सीधी सी बात, तो मिसकोट नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, अभी बाल्कनाइजेशन की बात कर रहे थे। अरे भाई, जब त्रावणकोर ने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित किया तो किसने उनको बधाई दी थी? आपको मालूम होगा ना, सावरकर जी ने बधाई दी थी। क्या वो बाल्कनाइजेशन का शुरुआत नहीं थी? छोड़ दीजिए, कल मैं
2: घोषित किया था,
4: मैं उस डिबेट में जाते ही
2: कोट करिए
4: मैं। अरे अब आप इतिहास कहेंगे कोट कर, बोले गांधी जी के
2: बताइए, जूनागढ़ ने किया था,
4: अब आप ये बोले गांधी जी पैदा ही नहीं हुए थे,
2: बताइए
4: सुधांशु जी, थोड़ा सब्र करिए
5: तो ग्रेट कोट पढ़ा लिखा हवा में भाई यू फेंक दिया कोई चीज।
4: मैं भाजपाइयों की तरह के से अनपढ़ नहीं, मैं पढ़ा लिखा हूं।
5: कोट करिए,
4: सुन लीजिए
5: कब किया था।
4: अरे सुन लीजिए महाराज, गूगल करिए अभी पता चल जाएगा आपको।
5: गूगल नहीं बताइए, आपको पता होना चाहिए।
4: बच्चों जैसी बातें मत करिए
5: होंगे
4: सुधांशु जी, प्लीज बच्चों जैसी बातें मत।
5: बच्चों जैसी बात आप दिखाई पड़
0: भाजपा की पर्सनल मत होइए। आप लोग दोनों प्लीज टॉपिक पर रहिए, टॉपिक पर रहिए।
4: मुझे बोलने,
0: आज 26 में रहे हैं,
4: मुझे बोलने नहीं दे रहे भाई।
5: बोलिए
4: प्रोटेक्ट मी,
0: I am protecting you, but I am protecting my audience also. और उनको चाहिए 26 की बात। ये सावरकर जब तक नहीं आते आपकी बात नहीं पूरी होती है, इनका नेहरू जी नहीं आते तब तक इनकी बात नहीं पूरी होती है। आपका भी तो ऑब्सेशन है ना 2026।
4: सुधांशु जी ने पूरा ज्ञान दे दिया, 10 मिनट बालकनाइजेशन में पहुंच गए, इसलिए मैंने उनको बताना जरूरी समझा। महत्वपूर्ण सवाल क्या देखिए आज की तारीख में, आप दिमागी नक्सल की बात कर रहे हैं। नक्सलिज्म किसी भी फॉर्म में उसका विरोध होना चाहिए, बट क्या ये जो दिमागी नक्सल की बात है, क्या जंतर मंतर की तरफ इशारा किया जा रहा? क्या जो हर इलाके में छात्र खड़े हो रहे हैं सड़कों के ऊपर, अपने अधिकार की बात कर रहे हैं, अपने स्कूलों की बात कर रहे हैं, क्या उनके ओर इशारा किया जा? मुझे लगता है आज हिंदुस्तान को, मुझे लगता है आज हिंदुस्तान को सबसे बड़ा खतरा दिमागी नक्सल का तो नहीं है, दिमागी दंगाइयों का सबसे बड़ा खतरा है, जो सड़क के हर कोने में खड़े होकर जो दंगा फैलाने की कोशिश करते हैं, जो किसी सांसद को बोलने नहीं देते, सर्किट हाउस में अगर सांसद वहां पे चले जाते हैं, उनसे सबसे बड़ा खतरा है। और जो हर जगह लोगों को पीट रहे हैं, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे पीट रहे हैं, ऐसे दिमागी दंगाइयों से देश को बचाने की जरूरत है। यह मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं,
0: डायरेक्ट है,
4: बिल्कुल दिमागी दंगाइयों से इस देश को बचाने की जरूरत है।
0: ठीक है, इसी पर एक रिस्पांस ले रहे हैं, आपने डायरेक्ट इस पर बोला है, डायरेक्ट इस पर,
5: बिल्कुल डायरेक्ट। ये सरतन से जुदा कहने वाले दिमागी दंगाई है या नहीं, और सरतन से जुदा उदयपुर में कर देने वाले दिमागी दंगाई है कि नहीं, बोलो।
4: उदयपुर के अंदर वो लोग कौन थे जो उदयपुर के कोर्ट के ऊपर चढ़ के झंडा फहरा रहे? कौन थे वो?
5: सर काटने वाले।
4: कौन थे वो?
5: देखिए
4: कौन थे जो उदयपुर में
5: है दिमागी नक्सल?
4: अफराजुल
5: ये है दिमागी
4: नक्सल। नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं, आप जवाब क्यों नहीं देते? जो उदयपुर को जिन्होंने घेर लिया कोर्ट के ऊपर, जिन्होंने जाके भगवा झंडा फहराया था, वो कौन लोग थे? क्या वो दिमागी दंगाई थे या नहीं थे?
0: ठीक है, अब उनको जवाब देने दीजिए।
5: सर काटने वाले दंगाई मुंह से नहीं निकलेगा।
4: आप अपने मुंह से क्यों नहीं बोलते भाई?
0: बारी बारी से।
5: बोलता हूँ, ये कश्मीर में हर जुमे की नमाज के बाद एक पत्थरबाजों वाली भीड़ निकलती थी नारा लगाते हुए, और किसी इंस्पेक्टर अयूब पंडित को मार दिया करती थी, वो दंगाई थे कि नहीं?
4: ये मस्जिदों के सामने जो जो नारेबाजी करे, कौन लोग
0: हैं? आशुतोष जी,
5: नहीं नहीं, वो हो ही नहीं सकते।
0: आप भी वही कर रहे
5: हैं। अब एक और बात बता रहा हूं,
4: आप उनको टोकिए।
5: अब सुनिए, अभी टोकने की जरूरत ही देखिए, अब ये खुद ये बहुत तेज रिएक्ट करेंगे। ये 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, हम दिखा देंगे क्या है दिमागी दंगाई है कि नहीं। 20% 20 करोड़ 100 करोड़ पे भारी पड़ेंगे, दिमागी दंगाई है कि नहीं। और दिमागी दंगाइयों के साथ सरकार कौन चला रहा था आंध्र प्रदेश में? MIM के साथ 2014 में कांग्रेस। वो दिमागी दंगाई थोड़ी है। अरे मारते काटते रहो। 2012
0: तो कांग्रेस पार्टी उनको अछूतों की तरह ट्रीट करती है, वो आ जाते हैं
4: चले
0: चले।
5: कैसा
4: जो किताब में लिखते हैं हिंदुस्तान के तीन दुश्मन है, नहीं दिमागी दंगाई है वो दिमागी दंगाई जो कहते हैं कि हिंदुस्तान के कौन
5: से हो रहे हैं भाई साहब। अभी और आइए, 2012 मुंबई का आजाद मैदान, क्या दंगा हुआ, अमर जवान ज्योति तोड़ दी गई और कम से कम एक दर्जन चैनल्स की ओबीवैन तोड़ी गई, वो दंगाई थे कि नहीं? वो तो दिमागी दंगाई नहीं होते हैं, जो ओपनली कहते हैं लेकर रहेंगे आजादी, बंदूक के दम पर आजादी, अरे वो दिमागी दंगाई नहीं होते। नक्सल क्या होते हैं? गांधीयंस विद गन। क्या तुलना है, गांधीयन गन सब मिला दिया, ये होता है दिमागी जहर जो गांधीयंस विद गन कहते हैं। इसीलिए मैंने कहा जिन और वो लोग जो कहते हैं, अभी उपाध्याय जी उंगली उठा रहे हैं, भाई साहब ये बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, और फिर ऐसा दंगा होता है कि 5,000 लोग मारे जाते हैं और 100% एक ही कम्युनिटी के दंगे में भी एक ही कम्युनिटी के लोग मरते हैं और पुलिस की गोली से एक ही कम्युनिटी के लोग मरते हैं, ये दिमागी दंगाई थोड़ी है? वो दिमागी दंगा है कि नहीं? इसलिए छोड़िए आज के दिन, कुछ सकारात्मक बात करते हैं।
0: तो
5: आप दंगाई की बात छोड़िए, आज के दिन देखिए कि दंगा से हटकर भारत चंगा होकर किस तरफ आगे बढ़ रहा है, उस सकारात्मक दिशा में
4: बहुत ज्ञान दे दिया भाई आप।
5: चलो एक ही चीज का आप काउंटर कर
0: दो। अच्छा तू तू मैं की लड़ाई मत बनाए, अपने से बात कीजिए। हां तर्क पे बात।
4: अभी इन्होंने मुझे चैलेंज किया, डेट बता दीजिए।
5: बता देते,
4: बताइए। एक मिनट सुनिए,
0: देख लिया
4: आज के AI का जमाना है,
6: हाँ बताइए,
4: विनायक दामोदर सावरकर सपोर्टेड द
5: ट्रावन कोर ने
4: कब सुनिए ना महाराज भाई, आपको दिक्कत क्या हो जाती
0: है? आप सावरकर और नेहरू पे ले जाएंगे? 26 में रहिए, पहले 26 में रहिए, अजय जी बोलिए, 2026 में
4: सावरकर ने सपोर्ट
0: किया हो रहा है
4: ट्रावन कोर के इंडिपेंडेंस को 1947 में,
0: साल 2026 पर आते हैं इंडिपेंडेंस
5: मोबाइल देखने की जरूरत पड़ी। 19 जुलाई 1947 महात्मा गांधी ने अपनी प्रार्थना सभा में कहा, जो गांधी कंप्लीट वर्ड्स ऑफ महात्मा गांधी फर्स्ट जो प्रिंट हुआ था उसके वॉल्यूम 88 में लिखा है।
4: आइए
0: पूरी
5: बात सुनिए, 26 पर आइए, आइए कि अपना 47 अब सुनो भाई, मैं बोलना चाह रहा हूँ,
0: 26 आज अंजना जी, आज आप अजय जी की जो राशि भी इंतजार कर रहे हैं।
5: 19 जुलाई 1947 को महात्मा गांधी ने अपनी सभा में बोला कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज में अभी आप 47 पे गए थे,
4: अरे भाई यार 26 पे आइए,
5: भागा भागा भागा भागा भागा भागा
4: भागा भागा भागा भागा
5: भागा भागा भागा भागा भागा भागा भागा भागा
4: भागा भागा
5: भागा भागा
4: भागा भागा भागा भागा भागा
5: भागा भागा भागा भागा भागा भागा भागा
4: भागा भागा
5: भागा भागा भागा भागा भागा भागा भागा भागा भागा भागा भागा भागा भागा भागा भागा भागा भागा भागा भागा भागा भागा भागा भागा भागा भागा भागा भागा भागा भागा भागा भागा भागा भागा भागा भागा भागा भागा भागा भागा भागा भागा भागा भागा भागा भागा भागा भागा भागा भागा भागा भागा भागा भागा भागा भागा भागा और अंग्रेजों के झंडे से नहीं थे, ब्रिटिशर्स से हमने बहुत कुछ सीखा है और वो वॉलेंटरली हमको छोड़कर जा रहे हैं।
0: अच्छा 26 पे आ जाए,
5: अब 26 पर आ जाए, मैं इनके तरह भागता नहीं हूँ,
0: मैंने आप दोनों को बोलने दिया, अब आप दोनों को मैंने बोलने दिया, अब एक सेकंड, अब हो गया, बाकी तीन लोग आपका चेहरा देखने नहीं आए हैं,
3: सुबह
0: बाकी तीन लोग चेहरा देखने
5: नहीं आए हैं।
0: भाई आज ही तो प्रधानमंत्री ने पहले महात्मा गांधी के सामने श्रद्धांजलि दी ना, श्रद्धांजलि दी तब तो वहां पर पहुंचे। और अब एक नियम, एक सेकंड, होता हमेशा है स्टूडियो में होने पर सब लोग बोलने लगते हैं एक साथ, थोड़ा सा नियम का पालन कीजिए।
3: एक छोटा कमेंट,
0: आ रहे हैं अजय जी आप ही के पास आ रहे हैं, थोड़ा बता तो दे इन लोगों को कम से कम कि आपस में लड़ने के लिए नहीं आए हैं आप लोग, लड़ना हो तो आप लोग कहीं भी लड़ सकते हैं, क्योंकि दर्शक कुछ सुनने के लिए आते हैं तो थोड़ा उसका भी सम्मान होना चाहिए। और कोशिश कीजिए कि 2026 पर सब रहे, ना आप उधर जाइए ना आप उधर जाइए। अजय उपाध्याय जी, सत्य प्रकाश जी और फिर संगीत रागी।
3: अंजना जी बहुत ही अच्छा, आज का जो एक ऐसा मौका भी है, आज राष्ट्रीय त्योहार है, मुझे लगता है आपस में तुतु मैं की कोई डिबेट होना उचित भी नहीं है, और कोई भी मानसिक तौर पे दंगाई प्रवृत्ति का है तो वो अपने तक ही सीमित रखे, कम से कम आज राष्ट्रीय चैनल पर इस तरह की बात न करे, क्योंकि जो देश का स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है हमारा विश्लेषण उस पर है, हो सकता है हम उनके उनसे सहमत हो असहमत हो, जो असहमति है वो विपक्ष का काम है उसको व्यक्त करना। किसानों के बारे में उन्होंने लंबी चर्चाएं की है, किसानों को आज भी 27 रुपये प्रतिदिन की आमदनी है और जिस तरह के हालात हैं उस पर कैसे डबल उनकी इनकम होनी थी उस पर लगातार हर भाषणों में उनकी चाहे हुई पर उस पर अभी तक कोई बात नहीं हो पाई। जिस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था लगातार खत्म हो रही है पब्लिक सेक्टर में उस पर हमें बात करनी थी। आयुष्मान भारत की चर्चा उन्होंने जरूर की है लेकिन उसमें जितनी गड़बड़ियां हुई हैं और जिस तरह के भ्रष्टाचार के आलम दिखे हैं लगातार हर मंच पर उस पर भी प्रधानमंत्री जी को जरूर ध्यान देना चाहिए था और उनका यह दायित्व बनता है। हर 12 साल की चर्चा हर साल करना जरूरी है लेकिन साथ में पिछले 1 साल में आपने क्या उपलब्धियां पाई हैं, जिस तरह की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समस्याएं थी उन समस्याओं के निदान में हमने कहां खड़ा रहा और हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय नीतियां थी उन नीतियों पर हम कहां जाकर के अपने आप को स्टैंड किए, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि उसमें हम कहीं ना कहीं विफल हुए, चाहे चाबहार से हमको बाहर आना पड़ा हो, चाहे हमें जो है क्वाड के लेवल पर स्थिति दयनीय हुई हो, चाहे हमें जो है मानकर चलिए आपकी इंडो पैसिफिक से इंडो को हटाने की जो प्रवृत्ति रही अमेरिका की और अमेरिका के साथ जिस तरह से सरेंडर वाली प्रवृत्ति रही, मुझे लगता है उस पर भी हमें ध्यान देने की जरूरत है।
0: ठीक है,
3: जो स्वतंत्रता आंदोलन के आज मुख्य किरदार हैं उन पर भी चर्चाएं होनी चाहिए, मुझे लगता है उस पर यदि कोई महात्मा गांधी पर प्रश्न लगाने का काम आज भी कर रहा है तो वो मानसिक दंगाई और मानसिक विकृति का शिकार उसको मैं मानता हूं। राष्ट्रपिता पर यदि आज के दिन भी बैठकर हम इस तरह की बात रखेंगे तो ये ठीक नहीं।
0: सत्य प्रकाश
6: चलिए आप
3: घोर आपत्ति,
0: इससे पहले कि आगे बढ़े एक बार आपको जो वर्ड क्लाउड है वो आज का बता दें। प्रधानमंत्री का जो संबोधन रहा है उसमें उन्होंने शक्ति शब्द का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया है, 24 बार उन्होंने शक्ति शब्द कहा है, सामर्थ्य का उन्होंने 22 बार जिक्र किया है, दिशा 21, 20-20 बार उन्होंने लक्ष्य और नौजवान कहा है। तो नौजवान शब्द एक तरह से आप समझ लीजिए चौथे स्थान पर रहा है, टाई है लक्ष्य शब्द के साथ, और युवा शब्द उन्होंने 15 बार कहा, इसी के साथ संकल्प 19 बार, सपना 18 बार, परिवार 17 बार और टेक्नोलॉजी 15 बार. तो ये वर्ड क्लाउड है जो आज प्रधानमंत्री के भाषण का रहा है. लेकिन जो वो कह रहे हैं सत्य प्रकाश जी, आपका रिस्पॉन्स उस पर.
6: उन्होंने गांधी पर अगर कोई बात कही है तो गांधी के समाधि पर ही जाकर वो फिर गए तिरंगा फहराने के लिए. तो गांधी के प्रति सबका सम्मान है. सवाल है जो आप कह रहे हैं कि अर्बन नक्सल और आप क्या कह रहे हैं दिमागी दंगाई. अर्बन नक्सल की जो परछाई है वही दिमागी दंगाई है. दोनों के साथ में देवर और भौजाई वाली रिश्ता है और दोनों साथ बैठे हैं.
4: देवर भौजाई.
6: हाँ अभी रुकिए ना, आ रहे हैं उसी पर. कैसे बताते हैं. भारत ने पोखरण परमाणु विस्फोट किया, किसने विरोध किया? वो सारे अर्बन नक्सल खड़े हो गए लेख लिखने के लिए. उसके साथ कांग्रेस भी कूद गई. क्यों? कांग्रेस को तो समर्थन देना चाहिए था उस समय. तो वो वाला रिश्ता है दिमागी वो नक्सल और दिमागी दंगाई में. दोनों एक दूसरे की परछाई है. देखिए आज स्वतंत्रता दिवस
0: देवर और भौजाई कहां से आ गए, नहीं समझे सत्य प्रकाश जी. देवर और भौजाई कहां से आ गए?
6: वो है कि दोनों का एक रिश्ता है.
0: कौन सा?
6: उसमें मेटाफर लिया है मैंने और कुछ नहीं लिया है. उससे ज्यादा मत समझिएगा कि कोई मजाक का रिश्ता है या कोई उनका आपस में
4: रिलेशनशिप तो नहीं है ना. ये
6: नहीं नहीं
4: पक्का सेक्सिस्ट भी नहीं है
6: ना. नो नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल. आई एम वेरी कंसर्न्ड अबाउट ऑल काइंड ऑफ जस्टिस टू ऑल. आई एम क्लैरिफाइंग दिस. क्या हिमाद्र तुंग सिंह से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती. आज वो जयशंकर प्रसाद की उस कविता का दिन है कि बढ़े चलो बढ़े चलो. उन्होंने नौजवान शक्ति सामर्थ्य विकसित भारत किसके लिए बात की है? अगर अर्बन नक्सल कहा है तो वो कोई डिस्टर्ब कर रहा है भारत को, लगातार डिस्टर्ब कर रहा है. कैसे? तरह तरह के षड्यंत्रों से, खड़यंत्रों से, अपवाह के बाजार को गर्म करके भारत को नीचा दिखाना, उसकी सांस्कृतिक विरासत को सीधा नकारना अर्बन नक्सल की पहली पहचान है और दिमागी दंगाई की भी वही पहचान है. दोनों गलबहिया करके साथ चलते हैं. तो मैंने वो जो देवर और भौजाई वाली बात कही है
0: फिर ला
6: लोगों
0: रहे.
6: ने नहीं मैं चाहता उस पर आना.
0: अरे कहे उस पर ला रहे हंसिएगा आप क्या बोले हमको नहीं समझ में आया. हमको नहीं समझ में आया व्हाट इज दिस देवर भौजाई.
6: मैं चाहता हूँ
0: तो कर दीजिए खत्म कीजिए. क्योंकि ये देवर भौजाई क्या होता है साहब?
4: पवित्र
0: क्या होता है?
6: मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ.
0: छोड़िए मत एक्सप्लेन कीजिए. आप क्या एक्सप्लेन कीजिएगा?
6: एक दूसरे के सभी कर्मों में मदद करके एक दूसरे के को पोषित और पालित करना, उस चीज को मैंने कहा है. ठीक मतलब है अगर आपको इनकार इन शब्द से. मैं शब्द वापस लेता हूं लेकिन मेरा कोई उस पे वो जो
0: प्लीज ले लीजिए वापस.
6: जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का कोई
0: मुझे घोर आपत्ति है सर. ठीक वापस
6: है, ओके, मैं ये लेता हूं वापस. मुझे इसमें आपत्ति है आपको निजी, मैं ले सकता हूं. उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है.
0: धन्यवाद.
6: क्योंकि मैं विचारों का उदार व्यक्ति
0: हूं.
6: जो दंगाई व्यक्ति है और अर्बन नक्सल है वो भारत की उदारवादी व्यवस्था को समाप्त करना चाहता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करना चाहता है. 62 में चीन भारत युद्ध हुआ, 4 साल बाद यहां से कुछ अर्बन नक्सल सो कॉल्ड नक्सल पहुंचे माउथ से तुम से मिलने के लिए. इतिहास में ये फैक्ट है. मैं नाम आज नहीं ले सकता उस व्यक्ति का, वो व्यक्ति है नहीं इस दुनिया में. और उन्हीं के सारे चट्टे बट्टे पूरे भारत में अर्बन नक्सल की तरह कांग्रेस पार्टी के पीछे चिपके रहे. इसलिए मैं फिर उन शब्द को कहूंगा आपको. वो चोर चोर मौसेरे भाई ये ले लेते हैं. चोर चोर मौसेरे भाई वो सारे चिपके रहे. अर्बन नक्सल दिमागी दंगाई के पीछे चिपके रहे, एक दूसरे की परछाई बने रहे. सांस्कृतिक विरासत वाली जो गांधीवादी पृष्ठभूमि के लोग थे उनसे अलग हुए. गांधी से किसी का इनकार नहीं है. गांधी का कैनवास बड़ा है, राष्ट्रपिता है, बहुत बड़ा योगदान इस भारत को स्वावलंबन और आत्मनिर्भर बनाने की संकल्पना को लेकर के जो प्रधानमंत्री जी ने कहा.
0: ठीक है संगीत रागी.
6: अगर इस देश की तकनीकी विकास होगा, अगर इस देश का युवा विकसित होगा और जिस क्रम में विकास का दर चल रहा है, चाहे वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सेमीकंडक्टर हो या फिर ग्रीन और ब्लू एनर्जी की बात जो सप्तधारा क्विक एक्शन प्लान उन्होंने कहा है, वो देश की मुख्य धारा है. उससे वो दिमागी दंगाई और अर्बन नक्सल का विरोध है.
0: दो बातें जो इस पर मुझे पता है कि आप भी इस पर जवाब देना चाहेंगे दीजिएगा प्रधानमंत्री. लेकिन कहा कि अब जो सेमीकंडक्टर्स और ये वाकई अगर हो जाता है तो ये भारत के लिए सबसे बड़ा गेम चेंजर होगा. उन्होंने फैक्ट्रीज की बात की, प्लांट्स की, और कहा कि हम ऑपरेशनलाइज भी करेंगे जल्द से जल्द. 1 साल 2 साल का उन्होंने टारगेट दिया. ऐसे न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट्स के लिए उन्होंने कहा है. ये भी अपने आप में बहुत ताकत दिखाता है. लेकिन जो जेंजी का एक आंदोलन हुआ जंतर मंतर पर, और उसके बाद जो उम्मीदें और एक तरह से जो आकांक्षाएं युवा पीढ़ी की हैं उसको आप कितना एड्रेस होते हुए देख रहे हैं?
7: देखिए, प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि हम सिर्फ उद्घाटन नहीं करते, कांग्रेस पार्टी बहुत सारे ट्रस्ट बनाती है। 1952 का जिक्र कर रहे थे आशुतोष जी सेमीकंडक्टर ट्रस्ट को लेकर के, लेकिन उसको ऑपरेशनलाइज नहीं करते। लेकिन प्रधानमंत्री जी का हमेशा ये रहा है कि नरेंद्र मोदी सिर्फ उद्घाटन जिसे शिलान्यास नहीं करते, उद्घाटन करने भी आते हैं, तो उस काम को वो ऑपरेशनलाइज भी करते हैं। रही बात अर्बन नक्सल की, तो अमित शाह जी ने और भारत सरकार ने जो फील्ड में नक्सल्स थे उनको तो खत्म कर दिया, लेकिन जो विश्वविद्यालयों में अर्बन नक्सल है, जो पत्रकारिता जगत में अर्बन नक्सल काम कर रहा था, जो बौद्धिक जगत में अर्बन नक्सल काम कर रहा था, वही मूल बीज है। जब तक आप उस बीज को नहीं खरेंगे तो रावण का जैसे 10 सिर होता है, वो निकल निकल करके कभी जंतर मंतर आएगा, कहीं और आएगा,
0: कैसे
7: कहीं
0: खत्म कर देंगे?
7: एक सेकंड, मुझे अपनी बात प्लीज देखिए, मैंने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया, नहीं मैंने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया, मुझे बोलने दीजिए प्लीज। और दूसरी बात, इस बार बार ये जिक्र करती है एक राष्ट्रपिता, स्वयं गांधी ने हिंदू स्वराज में लिखा है कि ये भारत एक एंशियंट सिविलाइजेशन है, एंशियंट राष्ट्र है। उन्होंने तर्क दिया, कहा कि ब्रिटिश एक साम्राज्य स्थापित कर पाए क्योंकि भारत पहले से एक राष्ट्र था। ये गांधी जी का 1909 में हिंदू स्वराज में लिखा हुआ है। दूसरी उन्होंने तर्क दिया कि हमारे पूर्वज जो है वो जानते थे कि घरों में भी पूजा की जा सकती है, उन्होंने सेतु बंदर रामेश्वरम से मठों की स्थापना की, ये हमारे राष्ट्र के होने की परिधि के बारे में वो जिक्र करते हैं। तीसरी
0: अच्छा,
7: बात उन्होंने
0: गांधी जी को कोट कर रहे हैं,
7: नहीं नहीं, तीसरी बात गांधी जी ने उसी में कहा कि बार बार हमारे यहाँ कहा जाता है ना विविधता में एकता, नहीं, गांधी ने कहा एकता से विविधता, जिसका सावरकर जी, जिसका गोलवरकर जी ने कहा, जैसे एक बीज से तना निकलता है, फल निकलता है, सुन लीजिए,
4: पुष्प
7: है सब चीज, प्लीज, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, मैंने सुना है,
0: नहीं सुना है आपने, लेकिन 2026 पे आई है ना, आज दिमागी नक्सलियों की बात हो रही है।
7: मूल मुद्दे पर हम आ रहे हैं, अर्बन नक्सल वही है जो कहता है कि वो ये भारत नेशनलिटीज का समुच्चय है और इस देश की लड़ाई नहीं लड़ना चाहता था, इस देश की लड़ाई जो नक्सल जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी था एमएन रॉय ने, फिर वही बात, फिर डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया आपने,
0: जल्दी पूरा कीजिए ना, खत्म नहीं,
7: नेशनलिटीज क्वेश्चन को हमेशा उन्होंने कहा कि ये देश एक राष्ट्र नहीं है, ये राष्ट्रों का समुच्चय है, ये अर्बन नक्सल की विचारधारा है, और ये अर्बन नक्सल की विचारधारा थी जो कहता था कि कश्मीर के अंदर जनमत संग्रह होना चाहिए, कश्मीर आजाद होना चाहिए। और वैसे प्रोफेसर जेएनयू में बैठे हुए थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बैठे हुए, जामिया में बैठे हुए,
0: आज कैसे प्रोफेसर बैठे हुए, फिर आज पहुंचते हैं, आप प्रोफेसर हैं, उस पर
7: देखिए अंजना जी, इसको गंभीरता से,
0: बहुत गंभीरता से बोल रही हूं मैं,
7: अर्बन नक्सल बगल में हमारा बैठा हुआ है, ये अर्बन बंगाई भी बैठा हुआ है, क्योंकि ऐसे ही लोग,
0: नाम लीजिए ना,
7: जो लोग इस देश में जिंजी के आंदोलन को जोड़ते हैं 370 से, जो लोग जिंजी के आंदोलन को सर्जिल इमाम के जेल में होने से जोड़ते हैं, जो लोग कहते हैं कि भारत के अंदर SIR नहीं होना चाहिए था, ये जिंजी आंदोलन में, यही अर्बन नक्सल है। और मैं ये आज नहीं कह रहा हूं, मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि ये अराजक आंदोलन है,
0: तो मेरा लिंग मेरी आजादी पर तो जो कुछ सरकार ने भी फैसला लिया है ना, सुधांशु जी, सुधांशु जी एक सेकंड, एक सेकंड,
7: जुड़े होने का कोई जरूरत नहीं है,
0: LGBTQ पर तो आपकी सरकार ने भी फैसला लिया है ना,
5: नहीं मैं कह रहा हूं इसका नीट से कनेक्शन बताइए ना, वो ठीक है, सरजील इमाम का मामला भी चल रहा है, उमर खालिद का भी चल रहा है, धारा 370 का भी चल रहा है, ये नीट से कनेक्शन बताइए ना,
0: मैं
5: ये जो बात है,
0: और एक और भी बात कर रहा हूं,
5: आप सुनिए,
0: यही तरह के लोग पहुंचते हैं,
5: नहीं तरह, वही तो कह रहे हैं, रहीमन इन संसार में भांति भांति के लोग, मगर ये भांति भांति के लोग है, एक ही प्रकार की, एक ही भांति के लोग हर आंदोलन में पहुंचते हैं। अब मैं एक और बात कहना चाहता हूं, ये बताइए, धारा 370 की बात ही किसमें आएगी, CNRC में भी आ जाएगी, वही किसान आंदोलन में आ जाएगी, मोदी की कब्र खुदने की बात ही पहलवान आंदोलन में भी आ जाएगी, और वही नौजवान आंदोलन में भी आ जाएगी। एक मिनट, एक लाइन, ये एक मिनट,
0: एक सवाल है,
5: एक लाइन अंजना जी, अंजना जी, ये बस नाम रहेगा अल्लाह का, ये गाना हर आंदोलन में क्यों गाया जाता है? बताइए इसका कृषि कानून से क्या कनेक्शन है, इसका
0: फैज की फैज की कविता है उसको हम गा रहे
5: हैं। ठीक है भाई, तो मैं कह रहा हूँ इसका कनेक्शन बताइए ना, कविता अरे साहब पूरा महाकाव्य पढ़ लीजिए, निराला का महाकाव्य पढ़िए, जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य पढ़िए, महादेवी वर्मा का महाकाव्य पढ़िए, ये फैज की ये लाइन काहे आ जाती है इसका एग्रीकल्चर कानून से मतलब बता दीजिए।
0: अच्छा सुधांशु जी मेरा सवाल, ये जो दिमागी नक्सल आप कह रहे हैं, दिमागी नक्सल, एक सेकंड, कभी अर्बन नक्सल का जिक्र होता है दिमागी नक्सल का, क्या ये दिमागी नक्सल अब हावी हो रहा है?
5: हाँ,
0: ये आपको बताना पड़ेगा ना, क्या जिसकी वजह से आज मतलब लाल किले से उनकी चर्चा हो रही है,
5: जो आज स्थिति आई है। हाँ। ये महात्मा गांधी ने बहुत पहले इस बात को प्रेडिक्ट किया था, उन्होंने अपनी किताब हिंद स्वराज में लिखा जिसमें स्वराज की पूरी व्याख्या की, भारत स्वतंत्र होगा तो उसका स्वरूप क्या होना चाहिए। उनसे वो प्रश्नोत्तर के फॉर्म में है, उसमें वो खुद ही एडिटर भी है, खुद ही जवाब भी दे रहे हैं। उन पर प्रश्न पूछा गया कि बापू क्या आपको भारत का एक गरीब किसान जिसके पास 2 जून की ढंग की रोटी नहीं, पहनने के कपड़े नहीं है, उसको देखकर भारत के भविष्य को लेकर चिंता नहीं उत्पन्न होती? तो जानते हैं महात्मा गांधी जी क्या जवाब था, ना उसे देख के चिंता नहीं उत्पन्न होती है, ये जो अंग्रेजी शिक्षा में पढ़ लिख के लोग निकल रहे हैं इन्हें देख के चिंता उत्पन्न होती है। उन्होंने आगे कहा कि हम ब्रिटेन से मुक्ति चाहेंगे और ब्रिटेन की नकल बनना चाहेंगे, यह स्वराज्य नहीं हो सकता, हम मूल विचारों से पूरी तरह अलग हो जाएंगे, यानी हम बाघ से मुक्ति होकर बाघ का स्वभाव खुद ले लेंगे। और उन्होंने आगे शब्द प्रयोग किया है महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में, उन्होंने कहा यह सभ्यता जिसकी नकल करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, ये 115 साल पहले लिखा हुआ है, यह सभ्यता शैतानी है, शैतानी सभ्यता वर्ड यूज किया है, और एक दिन यह स्वयं ही नहीं पूरी दुनिया के लिए चुनौती हो जाएगी।
0: महात्मा गांधी को कोट कर रहे हैं, अच्छी बात है, आप भी महात्मा गांधी को ही कोट कर रहे हैं, लेकिन ये दिमागी नक्सल कौन है? मुझे बस दो सवाल है सर, सिंपल, कौन है ये?
5: बात नहीं होने दी ना, आप तो महात्मा गांधी पे रुक गई, अब बता रहे दिमागी नक्सल कौन है। अब आते हैं 2012, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने खुद बोला कि कोडनाकुलम पावर प्रोजेक्ट में केवल कुछ लोगों ने जाकर रुकवा दिया, चूंकि जो नहीं चाहते थे भारत का पावर प्रोजेक्ट आगे बढ़े। हर जगह जहां पर भारत का कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होगा, और जब तक यूपीए की सरकार रही, चूंकि लेफ्टिस्टों कंट्रोल ज्यादा रहा, वो बढ़ा रहा। आज प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि हम थोरियम में हमने फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बना लिया, अब ये हमारी इतनी बड़ी पावर बन के उभरेगी, क्योंकि दुनिया का 35-40% थोरियम रिजर्व हमारा है। अगले 20 सालों में यदि हम इसको सक्सेसफुली डेवलप कर ले गए, तो अब उस कारण से भारत आत्मनिर्भर हो जाएगा, बोथ इन द न्यूक्लियर पावर एंड द न्यूक्लियर एनर्जी। पर आप देखिएगा बहुत सारे इस पे इन्वायरमेंटल के इश्यू निकाले जाएंगे, जिसका मूल उद्देश्य ये होगा कि भारत की न्यूक्लियर ग्रोथ रुक जाए, जिसका मूल उद्देश्य ये होगा कि डेवलपमेंटल ग्रोथ रुक जाए। मुझे लगता है इन चीजों को गहराई से समझने की,
0: ठीक है, अजय जी एक बार बोले, अभी रुक जाए, अजय जी एक बार बोले,
8: जितना समय उनको दिया, मुझे सिर्फ आधा समय अनइंटरप्टेड चाहिए।
9: नेशनल एडवाइजरी काउंसिल,
8: अरे डॉक्टर साहब आप बोल लीजिएगा, बस पूरा विनायक करने दीजिए, अनइंटरप्टेड चाह रहा हूं 10 सेकंड सर।
9: और आज भी नक्सली जो है वो राहुल गांधी को
8: सच्चाई है, मानसिक विकृति का कोई शिकार हो तो उसका तो कोई इलाज नहीं है, उसके लिए तो साइकेट्रिक चाहिए, बस आज स्टूडियो में ऐसी आवश्यकता नहीं है। आज देश का स्वतंत्रता दिवस राष्ट्रीय त्यौहार हम मना रहे हैं, अच्छा लगा कि जो लोग घोर विरोधी महात्मा गांधी के थे, आज वो भी महात्मा गांधी की शरण में ही जाकर के उनको ही, उन्हीं के कहे हुए रास्ते को लेकर के अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं। सच्चाई यह है कि सावरकर के नाम पे हम आप डिफेंड नहीं कर सकते देश के इस विविधता को, इस बहुलता को, इस लोकतांत्रिक चरित्र को। और लोकतंत्र की मजबूती तभी होगी जब हम सभी मूल्यों को एक साथ जोड़ करके एक बड़ा भारत का मूल्य बनाए, और भारत का मूल्य संस्कृतियों से जुड़ा हुआ है, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, हमारी संस्कृतियां विराट रही हैं, अलग अलग धर्मों के अलग अलग समुदायों के लोग यहां रहे हैं, विविधता में एकता, अलग अलग भाषा के लोग रहे हैं, और आज देश यदि इस मजबूती के हालत में है जिसमें विश्व में हमारी पहचान है, तो उसका कहीं ना कहीं कारण यही है। युवा शक्ति को यदि आप नक्सल कहते हैं कि जंतर मंतर पर जाना, आपके द्वारा नारे लिखे हुए ही वो पढ़ें गढ़ें, तो मुझे लगता है कि यही बात आ गई कि असहमतियों को आप सम्मान देना नहीं चाहते, जो लोकतंत्र के कोर में आपकी बारी नहीं की है। मैंने उन्होंने कहा है कि वही नारे क्यों लिखे जाते हैं, नारों के बीच में नहीं किसी में बोला, नारों का अपना एक स्वरूप होता है, जब भी आंदोलन होता है तो नारे, अंग्रेजों के समय भी वही नारे लगते थे, हमारे सरकारें थी तो हमारे सरकार के विरुद्ध भी वही नारे लगते थे, आपकी सरकार होगी तो वही नारे लगेंगे। नारों पर प्रतिबंध मत लगाइए, नारों के भाव को समझिए कि जो असहमति है उस असहमति को एड्रेस कैसे सरकार करे। यदि सरकार सही से एड्रेस की होती तो जैन जी को इतना लाठी डंडों से उन पर प्रहार नहीं होता, सड़क पर इस तरह से सुरक्षा का भाव नहीं पड़ता, साल के पूर्व संध्या पर जिस तरह से लाठी डंडे का प्रहार हुआ वो नहीं होता। मुझे लगता है कि अर्बन नक्सल से ज्यादा अब जरूरत हो गई है।
0: पूछ रहे हैं कि रांची में ऐसे नारे नहीं लग रहे, ये तो सच्चाई है।
5: रांची में पुलिस को लहूलुहान करते हुए फोटो
0: में रांची में तो ऐसे नारे नहीं लग रहे
5: हैं। पुलिस वालों को धकियाते हुए लोग क्यों नहीं दिखे? रांची में पुलिस पे पत्थर मारते हुए
8: पूरे देश
5: रांची में गालीबाजी वाली रील बाजी नहीं दिखी? रांची में वहां का सीएम को भी गाली बकते हुए लोग नहीं दिखे?
8: रांची से आपको प्रमाण पत्र चाहिए? आप देश के लेवल पर काम किए?
0: रांची जा रहे ना अजय जी, रांची
8: लिखो रहा है,
0: सोचिए ना। आज भी हम लोग ये जश्न मना रहे हैं अजय उपाध्याय जी, और आज भी रांची में वो बच्चे आंदोलन रखते हैं, भूखे प्यासे हैं, भूखे प्यासे हैं।
8: रांची में जो हुआ गलत हुआ, ये
0: एक सेकंड सर, कितना चलाते हैं आप रांची में?
8: रांची में जो हुआ वो गलत हुआ,
0: आज भी जब हम लोग यहाँ एयर कंडीशन स्टूडियो में बैठे हुए हैं और सज धज कर सब आए हैं, सब आज कुर्ता उर्ता पहन के साड़ी पहन के बैठे हैं, तब भी देवेंद्र नाथ महतो जो है वो आज भी अनशन पर है, आईसीयू में है। कई छात्र हैं जो अपना खाना पीना छोड़कर इस बारिश में, रांची में पता है आपको घनघोर बारिश होती है वहां, एक सेकंड रुक जाइए, वहां पर कोई नहीं जा रहा आपकी तरफ से अजय जी? अगर जा रहे हो या टिकट कटा लिया हो आप या आपके नेता ने, तो जरूर बताइएगा
8: हमारी तरफ से।
0: नहीं नहीं, हम बात कर रहे हैं, नहीं होता है, आप मना क्यों नहीं पा रहे
8: जी? अंजना जी
0: क्यों नहीं मना पा रहे
8: जी? अंजना जी बहुत अच्छा प्रश्न है।
5: जब अंजना जी जब हम कर रहे हैं
8: दिल्ली के जंतर मंतर पर नहीं गए थे, तब भी यही प्रश्न किया गया कि राहुल गांधी जी जंतर मंतर पर क्यों नहीं गए? जब चले जाते तो कहते कि देखिए जी, ये तो कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस के द्वारा मोटिवेटेड हैं, ये राजनीतिक कार्यक्रम है। हम लोग इसीलिए चाहते हैं कि समस्याएं समाधान हो, परीक्षा की व्यवस्था सुधरे।
0: साहब सरकार है वहाँ,
8: जो कर रहा है, जो गलत कर रहा है,
0: सरकार आप ही हैं,
8: सरकार हमारी है,
0: चार मंत्री हैं आपके।
8: सरकार से प्रश्न कर रहे हैं कि सरकार को जवाब देना पड़ेगा।
0: चार मंत्री आपके,
8: झारखंड के भी लोगों को न्याय मिलना चाहिए।
0: चार मंत्री हैं। यहाँ पर इस्तीफा चाहिए था, वहाँ इस्तीफा नहीं चाहिए। यहाँ इस्तीफा चाहिए था, वहाँ इस्तीफा नहीं चाहिए, क्योंकि सरकार चलाना है, सत्ता चलानी है, कुर्सी चलानी है। लेकिन वापस आते हैं, जंतर मंतर वर्सेज रांची नहीं होना चाहिए। एक सेकंड, जंतर मंतर वर्सेज रांची नहीं होना चाहिए, ये वर्सेज नहीं है
8: एकदम, मैं भी कह रहा हूं नहीं होना चाहिए।
0: लेकिन रांची में कई लोगों का जो डबल स्टैंडर्ड है वो भी एक्सपोज हुआ है।
8: वो तो,
0: लेकिन
8: वो तो देश में
0: जंतर मंतर में भी छात्र थे, वो भी देखा कि जब छात्र थे तब भी उसको, मतलब पहले सोचा गया कि अरे ऐसे ही है, आंदोलन खत्म हो जाएगा, जब स्थिति ऐसी आई 20 तारीख को, उसके बाद से बातचीत होकर हल निकाला गया। तो दोनों बातें हैं जिसका
8: बातचीत होकर हल निकला, बातचीत से होती तो 20 तारीख से पहले हल निकल जाती। आंदोलन हुआ 20 तारीख को, पायलट गन चलाए गए।
0: अजय जी, आंदोलन का अंत का जो अनाउंसमेंट किया गया वो बातचीत के बाद ही किया गया, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद किया गया। सत्य प्रकाश जी जल्दी से।
10: अजय जी, आप एक चीज अच्छा कह रहे थे कि मानसिक विकृति का इलाज है नहीं, थोड़ा गिरेबाज झांका करिए। लोकतंत्र में प्रधानमंत्री महोदय ने क्या कहा?
8: गिरमा में नहीं झांका जाता।
10: ये शेर तो आपको कह दूं मैं कि कांटों के दामन से बच के गुजर जाता हूं, मुझे तुम जैसे फूलों की सियासत की हकीकत मालूम है।
8: क्या बात, क्या बात, क्या बात।
10: अब दो चीज आप
8: फूलों की सियासत, मतलब
0: आप सुन तो लीजिए हुए हैं
10: इस देश में विपक्ष का नेता।
11: मैं एक मूल बात करता हूँ, देश में कांग्रेस का चरित्र में है भाई, नुआखाली में दंगा होता था तो वहाँ नहीं जाते, कलकत्ता में दंगा मुस्लिम मारे जाते थे तो वहाँ चले जाते थे कांग्रेस के नेता।
10: हिंदू मुस्लिम से ऊपर लोग उठे गए, देश में विपक्ष का नेता
8: यही लोग हैं।
10: पहुंचा जेएनयू, बोला मैं तुम्हारे कहने की बात का हमेशा समर्थन करूंगा। नारा क्या था?
8: जो
10: भारत तेरे टुकड़े होंगे, और उसके बाद जो भी था एक रिलीजियस नारा था।
11: ये भी तोड़ दिया था राहुल गांधी, उसके
10: राहुल गांधी बैठे थे वहां,
8: बहुत सारे मीडिया पर्सन
10: देश इस देश में। देखिए मोदी जी का विरोध अभी बताते हैं, अरबन नक्सलों ने कैसे कैसे
0: किया, सब नहीं करते थे। काहे आप तो अजय जी, आपसे
10: नहीं बोल रहा,
0: इस बात की मैं आपकी हमेशा प्रशंसा करती
8: हूं जी। मिश्रा जी हमारे
10: इस देश में जब मोदी जी की सरकार बनी तो अरबन नक्सल आ गए, कोई किस कैंपेन था सर जो आरएसएस के दफ्तर तक पहुंचा? ठीक है वो कहे कि नहीं नहीं, जब आप सड़क पर यूरिनेशन कर सकते तो हम ये क्यों नहीं कर सकते, उसकी व्यवस्था नहीं है। अरबन नक्सल ने उसको प्रमोट किया, वो बाद में क्या निकला सबको पता है। भारत के सामाजिक पृष्ठभूमि में और सार्वजनिक स्थिति में अरबन नक्सलों ने राष्ट्र की मुख्य धारा के खिलाफ हमेशा वकालत करी है। अगर भारत की एकता और अखंडता की बात अगर मुख्य धारा करे, अरबन नक्सल खड़ा हो जाएगा, नहीं नहीं अफजल गुरु की फांसी खराब है, अरबन नक्सल खड़ा हो जाएगा कि नहीं, यासीन मलिक को जेल से छोड़ दो, एक दो तीन अभी तिहाड़ जेल में पड़े हैं, भारत को टुकड़े करने वाले, चिकन ने काटने वाले, उनको छोड़ दो। अर्बन नक्सल का दिमाग पहले से फिरा हुआ है, कांग्रेस ने अपने पीठ पर पैरासाइट की तरह उनको पाला है, हमेशा पाला है, पोषित किया है। इसीलिए दिमागी दंगाई में पहले भी बोला, और अर्बन नक्सल की परछाई दोनों एक साथ चोर चोर मौसेरे भाई हैं। ये वाला ठीक रहेगा ना?
8: दस सेकंड से ले दीजिए मुझे।
0: चलिए बोलना, चलिए
10: एक उदाहरण देना चाहता
0: हूँ। भूल सुधार में तरह तरह के रिश्ते हम निकाल रहे हैं,
10: नक्सलवादियों के खिलाफ दिमागी नक्सलों को अपने पास पाते
0: हैं। अब आशुतोष
10: आखिरी लाइन है मेरे पास, बोलने बहुत डिस्टर्ब किया। किसी एक व्यक्ति ने कहा कि नहीं नहीं अब सदन से देश नहीं चलेगा, सड़क पर तय होगा, चुनाव से नहीं होगा, अब विरोध से होगा। ये अर्बन नक्सल का उदाहरण नहीं था तो क्या था?
11: वो दिमागी दंगाई
10: वो व्यक्ति क्या कह रहा है?
11: वो दिमागी दंगाई है,
10: दिमागी दंगाई अर्बन नक्सल दोनों है,
11: अर्बन नक्सल दोनों है, बिल्कुल सही कहा आपने।
10: थर्ड पॉइंट क्या, थर्ड पॉइंट क्या है कि जब आप हार जाएंगे, नकार दिए जाएंगे, तो राहुल जी कहेंगे हम स्टेट से ही लड़ेंगे, अराजकता की बात करेंगे,
11: दिमागी दंगाइयों के साथ ही
10: जिन लोगों ने नेपाल में बांग्लादेश बनाने की बात कांग्रेस पार्टी में उनके नेताओं ने की, वो अर्बन नक्सल, दिमागी दंगाई और राष्ट्र विरोधी तीनों एक साथ।
11: मैं
10: इधर सांस्कृतिक,
11: मैं सत्यप्रकाश जी की बातों को कभी गंभीरता से नहीं लेता, क्योंकि मुझे मालूम नहीं, आज पता चला बीजेपी के साथ हैं, कल आरजेडी के साथ चले जाएंगे, भाषण बदल जाएगी।
10: मेरी बात को गंभीरता से मत लीजिए,
11: आपको बीच में नहीं बोला ना।
10: मैं आप बिल्कुल मत लीजिए, मैं इसलिए चाहता हूँ आप मेरी बात को गंभीरता से मत लीजिए, आपकी मानसिक बीमारी बढ़ जाएगी।
11: नहीं देखिए,
10: अब देखिए इनकी जो इनकी तरह कोर्ट करेक्शन नहीं कर पाते हैं कि पहले पत्रकारिता में थे, फिर आप में गए, फिर लौट के पत्रकारिता में। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, लोकतांत्रिक पद्धति, संसदीय प्रणाली और भारत के तिरंगे को लेकर खड़े हैं। आप भले इधर उधर कर सकते हैं,
11: देखिए मैं
10: आप के समर्थक बता के जाइएगा।
11: मैं फिर दोहरा देता हूँ, मैं सत्यप्रकाश जी की बातों को गंभीरता से नहीं लेता, क्योंकि एक मिनट,
0: आप चाहते हैं कि लड़ाई हो यहाँ?
11: लड़ाई नहीं भाई,
0: मत लीजिए।
11: अरे भाई सुन लीजिए, मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। अब जो आदमी समाजवादी अपने को बोलता हो, राम मनोहर लोहिया के खिलाफ चले जाते हैं, राम मनोहर लोहिया सड़कें सुनी हो
10: कर रहे हैं आप,
11: सत्यप्रकाश जी देखिए आप गलत,
10: मैं बिल्कुल समझ में भी नहीं जा सकता राम मनोहर लोहिया के खिलाफ। क्या राम मनोहर लोहिया ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात नहीं करी? क्या राम मनोहर लोहिया ने राष्ट्रवाद और समाजवाद के बीच पुल बनाने की बात नहीं करी?
11: एक मिनट,
10: क्या बात कर रहे
11: हैं
10: आप? जो पार्टी की बात करी, उन्होंने कहा रामचरित मानस में बहुत चीज है, हीरे मोती है, उसको पकड़ लो।
11: मैं
10: सीधी बात करी उन्होंने,
11: सीधी बात करी। जो पार्टी राम
10: उन्होंने किताब लिखकर अर्बन नक्सल को कम्युनिस्टों को भारत का गुनहगार माना है, किताब को
0: हो गया।
11: फिर अब चुप हो गए ना? जो पार्टी
10: उन्होंने माना है कि भारत विभाजन का गुनहगार कौन है? आप ही के बगल में बैठा हुआ सब अर्बन नक्सल कम्युनिस्ट, पूरा का पूरा कम्युनिस्ट। उन्होंने उन्हीं को सर्टिफिकेट दिया है, आप लोग अर्बन नक्सल और कम्युनिस्ट भारत के विभाजन का गुनहगार
11: है। ऐसे नहीं बोलूंगा
10: डॉक्टर राम मनोहर लोहिया,
11: ऐसे नहीं बोलूंगा।
0: बोलिए,
11: सीधी सी बात है, जो पार्टी और जो नेता अपने राम मनोहर लोहिया ने कहा था सड़कें सूनी हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी, आज उन्हीं की पार्टी के नेता अपने राम मनोहर लोहिया को अर्बन नक्सल बोल रहा
10: है, बिल्कुल
11: नक्सल बोल रहे
10: हैं।
11: उन्होंने
10: असेंबली
11: में
10: भाई
11: राम मनोहर लोहिया राम मनोहर लोहिया राम मनोहर लोहिया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी
10: मैंने
11: आंदोलन था उसको तो अंबेडकर ने ग्रामर ऑफ एनआरकी बोला।
10: मैंने कह दी, मुझे मुझे तीस सेकंड
0: आरजेडी
11: के साथ चली जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को देश राष्ट्र विरोधी बोलेंगे, दंगाई बोलेंगे, तो मैं क्यों उनकी बातों को गंभीरता के साथ लूं? तीन बार तो पलट
0: चुके बोलने के लिए टॉपिक पे आप बोल रहे
11: हैं,
0: कभी उन पर आप क्या पूछना है आपसे? हो गया, आपका टाइम निकल गया ना।
11: सीधी सी बातें कहता हूँ,
0: क्या कुछ लोग मौका खोजकर देश में अफवाहें फैलाकर अराजकता फैलाने की कोशिश करते हैं? इस पर अगर आपके मन में कोई राय है तो टॉपिक पे बोलिए।
11: बिल्कुल मैं बोलूंगा, लेकिन
0: उसके बाद एक एक करके। हाँ,
11: इस देश को मालूम है कि दंगा फैलाने वाली पार्टी कौन है,
4: संगठन कौन है, अफवाह फैलाने की फैक्ट्री कौन है, वो कौन लोग हैं जो टीजी मोहनदास जिनका नाम है जो जंतर मंतर के छात्रों को कहते हैं कि मैं होता तो गोली चलवा देता, वहां बच्चियां किस लिए आती, बलात्कार शब्द का इस्तेमाल करते हैं। एक बार भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता उसको कंडेम करने के लिए नहीं आया। वो कौन था शिक्षा मंत्री जिसका नाम धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा दहशतगर्दों की बी टीम है, और ये कौन लोग थे जो कह रहे थे जन गटर है? क्या किसी किसी विपक्ष के नेता ने रांची के लोगों किस तरीके से सुशोभित किया, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया, गंदे शब्दों का इस्तेमाल? आरएसएस नंबर 3 अब्दुल लिमय कहते हैं ये कौन लोग हैं, ये एंटी नेशनल है। अरे शुक्र है कम से कम मेरी बात नहीं मानते, कम से कम मोहन भागवत की बात तो मान लीजिए, स्वीकार कर लीजिए।
0: और अब तो मोहन भागवत भी कह रहे हैं,
4: अब हो क्या गया
0: इस बीच
4: है,
0: खबर आ रही है
4: लोग मोहन भागवत की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। ये हालत
0: बाबा रामदेव ने कह दिया है कि वो एक आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं, देश में चारों तरफ हंगामा है, उनका कहना है बच्चे कह रहे हैं हमारे बाप रे आशुतोष जी डोंट बी सो ऑब्सेस्ड,
4: ये दरअसल जंजी को जोड़ के की जा रही है।
0: हमारे यहाँ टीचर नहीं है, लाइट नहीं है, शौचालय नहीं है, नकल होती है, पेपर लीक, सरकारी नौकरियों के इंटरव्यू में 99% घोटाला हो रहा है, और भी ऐसे आंदोलन हो सकते हैं। जल्दी से सुना दीजिए उन्होंने क्या कहा है, फिर सुधांशु जी जवाब देंगे।
12: चारों तरफ देश में हंगामा है, छोटे छोटे स्कूल कॉलेजों से बच्चे निकल रहे हैं कि हमारे यहाँ टीचर नहीं है, हमारे यहाँ लाइट नहीं है, हमारे यहाँ पानी नहीं है, हमारे यहाँ शौचालय नहीं है, हमारे यहाँ टीचर है तो किताबें नहीं है, किताबें हैं तो टीचर नहीं है, और टीचर है तो पढ़ाई में नकल हो जाती है, कहीं पेपर लीक हो जाता है, और पेपर पास भी कर लिया, दसवीं बारहवीं का बोर्ड एग्जाम भी दे लिया, तो दसवीं बारहवीं के जो एग्जाम के मार्क्स हैं वो कहीं जुड़ते ही नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के आधार पर ही आगे यूनिवर्सिटी में सेलेक्शन होता, और उसके बाद में फिर जो है जब कहीं नौकरी की बारी आए, खास करके गवर्नमेंट जॉब्स में इंटरव्यू के दौरान 90-99% घोटाला होता है, अपने विचार, अपने संस्कार, अपने संगठन, अपने ही जाति वर्ग समुदाय के लोगों को ठोक लेते हैं और बाकी को बाहर धक्का मार देते हैं। ये बहुत ही अपमानजनक है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है, ये न्याय के भी खिलाफ है। एक तरफ हम कह रहे हैं सत्य में जयते ये तो धर्म सतो जय, हमने शासकीय उद्घोष बना दिए, और वहां जब किसी को इंटरव्यू की बारी आती है तो 10 में से
13: पहले से तय करके रख,
12: पहले से तय करके और पैसे लेके 25-50 लाख 1-1 करोड़ रुपए की रिश्वत लेकर के फिर भर्ती करते हैं। अब ऐसे ही आंदोलन करना पड़ा तो देश कैसे चलेगा, इसलिए भाई सुधर जाओ, नहीं तो देश में आंदोलन और ज्यादा भी हो सकते हैं। आंदोलन के नाम पर मैं अराजकता अनार्की का समर्थक नहीं हूं, लेकिन भाई ये बात तो जरूर है देश में घपला भी बहुत है, ये घपले ठीक कर लो, मैं तो कहीं ऐसा ना हो कि बाबा रामदेव को दोबारा आंदोलन करना पड़े।
0: सुधांशु जी अब सबकी बातों का जवाब और इस पर भी आपकी प्रतिक्रिया।
5: बाबा रामदेव जी की बात पर प्रतिक्रिया दूंगा, और मैं आशुतोष जी को बहुत सीरियसली लेता हूं, क्योंकि ये जाने में अनजाने में उसी खतरनाक नक्सल आइडियोलॉजी के हिस्से हैं। और राम मनोहर लोहिया जी को कोट करता हूं, राम मनोहर लोहिया जी ने अपनी किताब गिल्टी मैन ऑफ पार्टीशन में क्लियर कट लिखा, सिंस कांग्रेस पार्टी वॉज हंग्री टू पावर सो दे एग्रीड फॉर पार्टीशन, सो पार्टीशन ऑफ इंडिया वॉज ज्वाइंट वर्क ऑफ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। राम मनोहर लोहिया गिल्टी मैन ऑफ पार्टीशन, पेज नंबर 36 से 40। और पता है कि मतलब उसके बाद, मगर उसके बाद कैसा छुपाया गया, अब आइए अर्बन, ये दिमागी दंगाई या अर्बन नक्सल क्या होता है, रांची के छात्रों की गूंज सुनाई नहीं पड़ती, वो छात्र जिन्होंने एक पुलिस वाले को दौड़ाते हुए फोटो नहीं है, जिसके जो एक पुलिस वाले को लहूलुहान करते फोटो नहीं है, किसी को गाली बकते हुए फोटो नहीं है, किसी के खिलाफ अपमानजनक अभद्र शब्द करते हुए फोटो नहीं है। जब पंजाब में हाईकोर्ट का जजमेंट आ जाता है कि ये पेपर लीक हुआ है और पंजाब की सरकार सदन के पटल पर झूठ बोलती हुई पकड़ी जाती है, ना पंजाब के छात्रों की कष्ट सुनाई पड़ता है और ना रांची के छात्रों का, और एक पक्षी छात्रों का नहीं, छात्रों में घुसे हुए उपद्रवी और विचित्र तत्वों का स्वर छात्रों के आड़ में छुपाने का प्रयास होता है। अब जो बाबा रामदेव ने बोला बिल्कुल सही बात है, उन्होंने कहा 25-25 लाख रुपए लेके नौकरी, इस बात का संघर्ष कहां है अंजना जी? रांची में नौकरी वाले विषय को लेकर है, पंजाब में नौकरी वाले विषय को लेकर है, नीट में तो एंट्रेंस एग्जाम की बात थी, वो लोग सीधे कह रहे हैं कि वहां पर पूरी सेटिंग हुई, और वो बच्चे सिर्फ यह मांग कर रहे हैं किसी का इस्तीफा नहीं चाहिए, वो जांच करा दो सीबीआई से, और वो नहीं की जा रही है। बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि लाखों लाखों रुपए लेकर पूरी सेटिंग करके और जो बच्चा एग्जाम नौकरी में जा रहा है,
0: कितने की इजाजत देता है सर, मुझे ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है, जल्दी से
5: सिर्फ आज का दिन एक सकारात्मक है, आज हम सिर्फ ये याद करें कि भारत एक नए स्वरूप के साथ आगे बढ़ रहा है, हम सब मिलकर इसको आगे बढ़ाएं कि भारत मां अंगड़ाई लेती, सुप्त चेतना जाग रही, ऋषि मुनियों की देवधरा फिर अपना रूप संवार रही, ये विचार करके हम सब आगे बढ़े, नए भारत का मार्ग प्रशस्त करें, सब अपना योगदान।
0: 80वें स्वतंत्रता दिवस पर ढेरों शुभकामनाएं। ब्रेक के लिए देखते रहिए।
13: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
14: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: मुल्तानी खू का कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी खू का कॉफ सिरप।
1: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
2: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
3: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए, सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी। वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
4: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
5: पापा

0: मुल्तानी घू का कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घू का कॉफ सिरप।
1: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं।
2: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
3: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए, सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
4: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
5: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
6: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
5: छक्का?
6: सब कैशलेस हो गया
5: है। ओला ला भाई मेरा बैट,
7: वो अभी तो ठीक हुआ। तू
8: बिलोटे चार्ज हुआ यार।
9: ओला बैट किसका है?
10: टाटा AIG है तो भरोसा है।
11: जिस मिट्टी में फसल उगती है उसी में भारत की स्वतंत्रता की खुशबू है। इस स्वतंत्रता दिवस आइए उन किसानों का सम्मान करें जो हर दिन देश को मजबूत बनाते हैं। मेरे और क्रिस्टल परिवार की ओर से आपके और आपके परिवार को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
12: इन एसोसिएशन विद
13: सेरा सैनिटरी वेयर, इट्स योर मोमेंट ऑफ सेरा। E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
14: जहां खबर वहां न्यूज तक, ग्राउंड रिपोर्ट से लेकर एक्सक्लूसिव कवरेज तक, खबरों का सच तथ्यों के साथ, जनता के सवालों से लेकर सत्ता के जवाबों तक, देश दुनिया की हर बड़ी खबर सिर्फ न्यूज।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

आजादी के 80वें साल पर लाल किले से तिरंगा फहराकर पीएम मोदी का प्रण, 2047 तक बनाकर रहेंगे विकसित भारत, देश को दिया शक्ति की सप्त धारा का मंत्र, कहा समय हमारा अवसर हमारा।

खत्म कर दिया, लेकिन अराजकता फैलाना चाहते हैं दिमागी नक्सली। लाल किले से बोले पीएम, दिमागी नक्सलियों की पहचान जरूरी, अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं है जंग। युवा शक्ति को समर्पित स्वतंत्रता दिवस पर पीएम का बड़ा ऐलान, 1 करोड़ युवाओं को मिलेगी एआई ट्रेनिंग, छात्रों के लिए खुलेंगी फ्री ऑनलाइन

40 साल से राजनीति का शिकार हो रहा है महिला आरक्षण बिल। सभी सियासी दलों से पीएम की अपील, महिलाओं को 33% आरक्षण दिलाने के लिए आगे आएं। 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का भी लक्ष्य। और क्या हुआ जब स्टेज पर आए एक साथ सनी देओल, प्रीति जिंटा और इंडियन कोस्ट गार्ड। दोपहर 12 बजे देखिए स्वतंत्रता दिवस पर हमारी खास पेशकश। जय हो।

नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। और देश आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। देश भर में जश्न मनाया जा रहा है। जगह जगह ध्वजारोहण किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया, तो देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग राज्यों में मुख्यमंत्रियों ने भी ध्वजारोहण किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने भी ध्वजारोहण किया। और इस दौरान कई वो तस्वीरें भी आई। दिल्ली की बात करें, लाल किले की बात करें, तो कई छात्र छात्राएं आज लाल किले पर एकजुट हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से देश को संबोधित भी किया गया। और सबसे पहले आपको वो 80 तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जो आज बहुत खास रही।

0: स्वतंत्र दिवस समारोह में करीब 5,000 विशेष अतिथि हुए शामिल। 100 एनसीसी कैडेट्स और 100 माय भारत वॉलंटियर्स ने भी लिया हिस्सा। लाल किले पर प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। स्वतंत्रता दिवस पर देशभक्ति के रंग में रंगा दिखा पूरा लाल किला परिसर। वंदे मातरम की 150 साल पूरे होने पर देश भर में होगा खास उत्सव। विकसित भारत 2047 में युवा शक्ति की भूमिका पर रहेगा विशेष फोकस। लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम का हुआ सामूहिक गायन। हेलीकॉप्टर से हुई फूलों की बारिश। देशभक्ति के रंग में रंगा माहौल। लाल रंग की पगड़ी बांधकर लाल किला पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया प्रधानमंत्री का स्वागत। लाल किले जाने से पहले राजघाट पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। आजादी के जश्न में दी गई 21 तोपों की सलामी। गूंजा भारत माता की जय का जय घोष। लाल किले पर देशभक्ति के रंग में रंगा माहौल। तिरंगे को दी गई सलामी। लाल किले पर आमंत्रित बच्चों से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम से हाथ मिलाने के लिए उत्साहित दिखे बच्चे। चेहरे पर दिखी खुशी। आजादी के लिए बलिदान देने वाले वीर सपूतों को किया गया याद। बच्चों ने मिलकर लगाए देशभक्ति के नारे। गूंज उठा पूरा माहौल। पीएम ने लाल किले की प्राचीर से देश को किया संबोधित। दोहराया 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य। युवाओं को साथ जोड़कर विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने पर जोर। पहली बार लाल किले पर वंदे मातरम के सामूहिक गान पर बोले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री ने इसे देश के लिए बेहद गर्व का पल बताया। पीएम मोदी ने कहा कि युवाओं को एआई से जोड़ने के लिए बड़ी योजना की तैयारी है। सरकार 1 करोड़ युवाओं को देगी एआई की ट्रेनिंग। पीएम मोदी ने छात्रों के लिए किया बड़ा ऐलान। बोले देश में जल्द खड़ा करने वाले हैं फ्री ऑनलाइन कोचिंग देने का नेटवर्क। पीएम मोदी ने ग्रीन एनर्जी के इस्तेमाल पर दिया जोर। बोले बीते कुछ सालों में सोलर ऊर्जा को भी काफी बढ़ावा दिया गया है जिसका फायदा सीधे लोगों को मिल रहा है। नागपुर आरएसएस मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह। मोहन भागवत ने किया ध्वजारोहण। पुलिस जवानों ने दी सलामी। संघ प्रमुख ने देश को विश्व गुरु बनाने का संकल्प दोहराया। नागपुर में आरएसएस मुख्यालय पर मोहन भागवत का संदेश। बोले भारत को विश्व गुरु राष्ट्र बनाने की राह में कई चुनौतियां हैं। तमिलनाडु के सीएम विजय ने स्वतंत्रता दिवस पर फहराया तिरंगा। स्वतंत्रता दिवस पर तमिलनाडु सीएम विजय ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। एलओसी पर दिखा देशभक्ति का जज्बा। हजारों लोगों ने पहाड़ों के बीच मनाया स्वतंत्रता दिवस। तिरंगे के साथ उमड़ा जनसैलाब। लोगों ने देशभक्ति के रंग में मनाया आजादी का पर्व। स्वतंत्रता दिवस पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे सीजेआई किया ध्वजारोहण। आजादी के जश्न के बीच देशवासियों को दी एकजुटता और लोकप्रिय लोकतांत्रिक मूल्यों का संदेश। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने भी स्वतंत्रता दिवस ध्वजारोहण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। परेड पर हेलीकॉप्टर से बरसाए गए फूल। रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में आजादी का जश्न। सीएम ने फहराया तिरंगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने ली परेड की सलामी। देशभक्ति के रंग का माहौल दिखा। बीकानेर में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम भजन लाल शर्मा। मुख्यमंत्री ने ली परेड की सलामी। फहराया तिरंगा। गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हुए 15 अगस्त के कार्यक्रम में शामिल। फहराया तिरंगा। देशभक्ति के रंग में रंगा वातावरण। दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने फहराया राष्ट्रीय ध्वज। स्वतंत्रता दिवस पर बीजेपी कार्यालय में आयोजित हुआ ध्वजारोहण समारोह। कांग्रेस मुख्यालय में मल्लिकार्जुन खड़गे ने फहराया तिरंगा। सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी स्वतंत्रता दिवस समारोह में रहे मौजूद। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस को लेकर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई कड़े इंतजाम किए गए। आईटी और डीएनडी इलाके में चप्पे चप्पे पर पुलिस। श्रीनगर के लाल चौक पर स्वतंत्रता दिवस को लेकर बड़ी सुरक्षा, सुरक्षा बलों ने संभाला मोर्चा, चप्पे चप्पे पर निगरानी। 15 अगस्त को लेकर बिजनौर पुलिस हाई अलर्ट पर, रेलवे स्टेशन और होटलों समेत प्रमुख जगहों पर चेकिंग अभियान। स्वतंत्रता दिवस से पहले बिजनौर में सुरक्षा व्यवस्था हुई सख्त, प्रमुख स्थानों पर पुलिस की पैनी नजर, लगातार चल रहा चेकिंग अभियान। देश में पहली बार ड्रोन से आर्मी वेटरन के घर पहुंचाया गया तिरंगा। मंडी के रेहड़दार में डाक विभाग ने किया अनोखी डिलीवरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया वीडियो कॉल से जुड़े। श्रीलंका दौरे पर टीम इंडिया ने भी बनाया आजादी का जश्न, गर्ल टेस्ट से पहले टीम ने फहराया तिरंगा, बीसीसीआई ने साझा किया वीडियो। स्वतंत्रता दिवस पर सीजीआई ने सीआरपीएफ की स्मारिका में लिखा संदेश, देश की सुरक्षा में सीआरपीएफ के योगदान और जवानों के बलिदान को नमन किया। हरिद्वार में बाबा रामदेव ने फहराया तिरंगा, फिर आंदोलन की दी चेतावनी, बोले सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार के घोटाले सुधरे, नहीं तो दोबारा आंदोलन करना पड़ सकता है। मुंबई के शिशुवन स्कूलों में बच्चों ने धूमधाम से मनाया स्वतंत्रता दिवस, देश भर की परंपराओं से हुए रूबरू, बच्चों में देशभक्ति की भावना जगाने पर जोर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया, बोले 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाना गर्व का फल है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया, सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने भी अपने आवास पर तिरंगा लहराया, स्वतंत्रता दिवस पर वीर स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं, सोशल मीडिया पर मां भारती की आजादी के लिए अपना सर्वस्व अर्पित करने वाले सभी वीर सेनानियों को कोटि कोटि नमन किया। पुरी में 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिखा शानदार नजारा, प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने पुरी के बीच पर रेत से कलाकृति बनाई। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में आजादी का जश्न मनाया गया, रामगढ़ ताल पर तिरंगा यात्रा आयोजन हुआ, राष्ट्रीय ध्वज के साथ नौकायन करते दिखे रोइंग खिलाड़ी। गुजरात के वडोदरा में भी धूमधाम से निकाली गई तिरंगा यात्रा, भारत माता की जय घोष, वंदे मातरम का उद्घोष सुनाई दिया। जम्मू कश्मीर के कठुआ में 80वें स्वतंत्रता दिवस की रौनक, हीरा नगर सेक्टर में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह की अगुवाई में निकाला तिरंगा यात्रा। नई दिल्ली के रेल भवन परिसर में निकाली गई भव्य तिरंगा रैली, केंद्रीय मंत्री रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की अगुवाई में देशभक्ति के रंग का माहौल दिखा। और उत्तर प्रदेश का कानपुर भी देशभक्ति के रंग में रंगा दिखा, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कोचिंग सेंटर्स के बाहर युवाओं को वितरित किए राष्ट्रीय ध्वज। आजादी के जश्न में देशभक्ति के रंग में सेना, भारतीय सेना के बैंड दे रहे शानदार प्रस्तुति, देश भर में गूंज रहा देशभक्ति संगीत। ताजमहल से इंडिया गेट तक सेना का संगीत, ऐतिहासिक स्थलों पर बैंड की शानदार प्रस्तुति, आजादी के जश्न में जुड़ा नया रंग। लेह से नीलगिरी तक सेना का देशभक्ति अभियान, इंडिया गेट पर आर्मी सिंफनी बैंड, शौर्य स्मारकों से वाटरफ्रंट तक सेना का संगीत। रक्षा मोर्चे से आई गुड न्यूज, 1577 करोड़ की रक्षा डील पर मोहर, लोइटर म्यूनिशन सिस्टम खरीदे जाएंगे, डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। भारत और मलेशिया की वायुसेना के युद्धाभ्यास उदारा शक्ति 2026 का भव्य समापन हुआ, दोनों देशों ने साझा किया ऑपरेशनल अनुभव, राफेल और सुखोई 30 एमकेएम की दिखी जुगलबंदी। हिमाचल प्रदेश के मशहूर शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर में दिखे आस्था के साथ देशभक्ति के रंग, खूबसूरत फूलों से तिरंगा थीम पर सजाया गया माता का मंदिर। महाराष्ट्र के नागपुर में राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस की भव्य रौनक, आकर्षक रोशनी से जगमग हुआ विधान भवन परिसर। महाराष्ट्र के अमरावती में पुलिस कांस्टेबल ने तिरंगे के साथ पानी के अंदर चलाई साइकिल, 1:16 तक 10 फीट गहरे पानी में रहे प्रवीण दादाराव। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में यूपी T20 लीग का धमाकेदार आगाज हुआ, सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में शंकर महादेवन और जैस्मिन सैंडलर्स ने समा बांध दिया। तिरंगे की रोशनी से नहाया जम्मू कश्मीर का श्रीनगर, प्रमुख सरकारी इमारतों के साथ तवी नदी रिवर फ्रंट का दिखा शानदार नजारा। हर घर तिरंगा के तहत श्रीनगर की डल झील का दिखा शानदार नजारा, देशभक्ति के रंग में रंगे नजर आए लोग। डल झील पर सैकड़ों शिकारों और नावों पर लहराता दिखा तिरंगा, सीआरपीएफ के 144वीं बटालियन के जवानों का दिखा जोश। सैकड़ों शिकारों और नावों पर तिरंगा लहराया गया, जबरदस्त उत्साह लोगों के अंदर देखा गया। देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव और एकता का संदेश यहां पर दिया गया और इस दौरान माहौल देशभक्ति वाला रहा। त्रिपुरा में स्वतंत्रता दिवस का जश्न तिरंगे की रोशनी में नहाई नजर आई राजधानी अगरतला। ठाणे में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने तिरंगा फहराया, हजारों लोगों ने एक साथ गाया राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत। उत्तराखंड की टिहरी झील में बोट पर तिरंगा यात्रा के दौरान दो दर्जन से ज्यादा नाव पर सवार हुए लोग, झील की लहरों पर लहराया तिरंगा। टिहरी झील में दिखा देशभक्ति का अनोखा नजारा, भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे गूंजे। लहरों के बीच एक साथ लहराए सैकड़ों तिरंगे, नाव में सवार लोगों का जोश देखते ही बना राष्ट्रप्रेम और एकता का संदेश दिया। पर्यटकों की झील देशभक्ति में रंगी, टिहरी झील के बीच अद्भुत नजारे ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। जम्मू के रियासी में भी देशभक्ति का भव्य नजारा दिखा, दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल पर वंदे मातरम की गूंज। सीआरपीएफ जवानों और बच्चों ने निकाली तिरंगा रैली, वंदे मातरम के नारों के बीच ट्रेन गुजरी, देखते ही जोश से गूंज उठा पुल। तिरंगे और वंदे भारत ट्रेन का शानदार संगम, सीआरपीएफ जवानों के साथ बच्चों ने लहराया तिरंगा। गिरिराज के आनंद में तिरंगे का महासैलाब, वल्लभ विद्यानगर में 25,000 से ज्यादा जुटे लोग, हाथों में तिरंगे के साथ गूंजे देशभक्ति के नारे। वंदे भारत से आनंद पहुंचे डिप्टी सीएम हर्ष संघवी, लोगों के साथ तिरंगा यात्रा में हुए शामिल, युवाओं के हाथों में दिखा तिरंगा। लखनऊ में तिरंगे के रंग में रंगा उत्तर प्रदेश विधानसभा, इमारत पर कई खास ट्राइकलर लाइटिंग, आजादी के जश्न की झलक दिखी। रांची में तिरंगे की रोशनी से जगमगाया झारखंड हाईकोर्ट, झारखंड विधानसभा पर दिखा तिरंगे का रंग, केसरिया सफेद और हरे रंग से रोशन हुआ भवन। जम्मू कश्मीर के रियासी में आजादी का जश्न, तिरंगे की भव्य रोशनी में नहाया सलाल बांध, डैम से गिरते पानी का विहंगम दृश्य। कोलकाता से गुवाहाटी तक तिरंगे की रोशनी देखने को मिली, कोलकाता लोक भवन तिरंगे की रोशनी से नहाया, असम विधानसभा और असम सचिवालय की ट्राई कलर लाइटिंग से भव्य सजावट। चेन्नई में रिपन बिल्डिंग तिरंगे की रोशनी में नहाई, आरबीआई बिल्डिंग पर दिखा तिरंगे का रंग, पोर्ट ट्रस्ट बिल्डिंग भी तिरंगे की रोशनी में सजी दिखी। पुंछ का ऐतिहासिक किला और प्रमुख स्थल तिरंगे की रोशनी से जगमगाते हुए दिखाई दिए, स्वतंत्रता दिवस पर खास तैयारी। गुजरात का कहाड़ा बांध रंग बिरंगी रोशनी से हुआ रोशन, स्वतंत्रता दिवस पर खास रोशनी से नजारा दिखा। अहमदाबाद शहर तिरंगे की रोशनी से जगमग हुआ, स्वतंत्रता दिवस पर शहर में देखी देशभक्ति का रंग। बठिंडा का ऐतिहासिक किला तिरंगे के रंग में जगमगाया, आजादी के जश्न में रोशनी से नहाया किला परिसर। स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगे की रोशनी से अगरतला भी जगमगाया, रंग बिरंगी लाइटिंग से पूरा शहर देशभक्ति के रंग में रंगा दिखा। और अब एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, कांग्रेस के प्रमुख यानी मल्लिकार्जुन खड़गे से जुड़ी हुई खबर है। उन्होंने पार्टी मुख्यालय पर तिरंगा फहराने के बाद सरकार के खिलाफ हमलों की बौछार की। उन्होंने कहा कि नेहरू जी ने आधुनिक, लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष भारत की नींव रखी, उन्होंने IIT, IIM, PSU की स्थापना की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार पिछली सरकारों के कामों का श्रेय ले रही है, बिना काम किए इतिहास में दर्ज होना चाहती है अभी की मोदी सरकार। मल्लिकार्जुन खड़गे ने छात्रों पर फायरिंग को लेकर भी फिर से गृह मंत्री अमित शाह को जमकर घेरा।
1: आज के सरकार ने कोई राइट टू किसी को हक नहीं दिया। खाने का हक हमने दिया, शिक्षण का हक हमने दिया, काम करने का हक हमने दिया, ये सारी चीजें हमने की। लेकिन फिर भी चंद लोगों को आदत है कि जो नहीं किए वो भी मैं किया ऐसा बोलने का आदत है। ठीक है, उनका कौन सुनेंगे, इतिहास तो गवाह है, इतिहास में लिखा है और लोग भी जानते हैं कौन सा कानून कब बना, किनके लिए बना। तो दोस्तों, आज जो कुछ भी देश में आपको जो डेवलपमेंट दिख रहा है, ये सब कांग्रेस की देन है और कांग्रेस ने ही बहुत कुछ किया। और आज 90% देन कांग्रेस की है। कहीं नाम बदलना हमने नहीं किया, हमने इंसान को उसके मासी हालत को बदलने की कोशिश की, नाम बदलने की कोशिश नहीं की। प्रधानमंत्री जी का सवालों का जवाब न देना पार्लियामेंट में, क्या ये लोकतंत्र का तरीका है? हमने क्या उठाया? लोकसभा में हो, राज्यसभा में हो, हमने जो सवाल उठाए वो विद्यार्थियों के सवाल थे। उनके ऊपर जो अन्याय हुआ, उनके ऊपर जो अत्याचार हुआ, उनको जो मारा गया, पीटा गया, उसके सवाल थे। उन सवालों का जवाब हमारे ये लोग साहब मांग रहे थे, हम भी मांग रहे थे, लेकिन उस भयस से वो भाग रहे थे, वो अंदर ही नहीं आ सके। ना होम मिनिस्टर अंदर आ सके, ना प्राइम मिनिस्टर अंदर आके अपने कमरे में छुप के बैठकर सुन रहे थे।
0: तो आजादी पर सियासी वार और क्रेडिट पर तकरार चल रहा है। रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
4: जिस मिट्टी में फसल उगती है उसी में भारत की स्वतंत्रता की खुशबू है। इस स्वतंत्रता दिवस आइए उन किसानों का सम्मान करें जो हर दिन देश को मजबूत बनाते हैं। मेरे और क्रिस्टल परिवार की ओर से आपके और आपके परिवार को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: पापा
3: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
4: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
3: छक्का
4: सब कैशलेस हो गया
3: है।
5: टाटा
6: AIG है तो भरोसा है।

0: इन एसोसिएशन विद हिंट, बड़े आराम से शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू?
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबां केसरी।
2: भिखारियों का मनोविज्ञान क्या है?
3: तैयारी तुम भी कर रहे हो क्या?
2: नहीं सर।
3: 12th किससे की हो?
2: 12th सर मेरा PCM से रहा।
3: कंपाउंड क्या होता है?
2: बेसिकली जो एक्युमुलेटेड चीजें रहती हैं उसके ऊपर।
3: यही है भीख मंगे वाली क्वालिटी। तुम पूछ रहे थे ना, यही है यही। एक मिनट,
2: ये जो आपका तरीका बहुत सर बहुत अच्छा नहीं है, इस तरीके से समझाने का स्टूडेंट्स को, इसे सर ह्यूमिलिएशन कहते हैं।
3: देख भाई, अपनी गारंटी पे छेड़ना।
4: सनी सर, अगर आपकी परमिशन हो तो आपके 2.5 किलो के हाथ का दमदम इस सभा के सामने आज स्वाद माना चाहेंगे।
5: क्यों मेरे साथ पंगा लेना चाहते हैं सब लोग?

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
3: हम इस समय हिंदुस्तान के हीरोज के साथ यहाँ पर मौजूद हैं,
4: भारतीय तटरक्षक की
3: स्वतंत्रता का पर्व हम इनके साथ आज मनाने वाले हैं।
5: हिंदुस्तान जिंदाबाद।

हमने आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मेट्रो का विस्तार किया, हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ताकत दी। जिस स्पीड से काम, जिस स्केल पर काम किया, ये सब, ये रफ्तार, ये विस्तार, ये अचीवमेंट आजादी के बाद पहली बार पिछले एक दशक ने देखा है। और जब इतनी सारी सिद्धियां हमारे सामने हो, इतनी तेज गति दिखाई देती हो, देशवासियों का सामर्थ्य पल पल प्रकट होता है, तब तो 2047 में विकसित भारत बनने का संकल्प कभी भी अधूरा नहीं रह सकता है। ये सारे आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि हम आगे बढ़ने वाले हैं, मेरे प्यारे देशवासियों। लेकिन उसके लिए आत्मविश्वास की जरूरत होती है, आत्मगौरव की जरूरत होती है, और साथ साथ आत्मनिर्भर भारत होना भी बहुत जरूरी होता है। और इसलिए बीते वर्षों में हमारा कन्विक्शन रहा है कि भारत को हमें अब दूसरे देशों पर निर्भर रह करके नहीं जीना, हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। दुनिया में बहुत कुछ मिलता है, सस्ता मिलता है, जल्दी मिल सकता है, लेकिन उससे हमारा सामर्थ्य तैयार नहीं होता, न हमारे सामर्थ्य की कसौटी होती है। और इसलिए हमें भी अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है, अपने हितों की सुरक्षा हमें खुद को करनी है। और इसलिए आत्मनिर्भर भारत का संकल्प बहुत दृढ़ता के साथ हम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित भारत का लिया संकल्प, शक्ति की सप्तधारा, युवा महिला शक्ति को जोड़ने का मंत्र, एआई स्क्रीन पर जोर। प्रधानमंत्री ने दिमागी नक्सलियों पर किया प्रहार, कहा देश को नुकसान पहुंचाने वालों की पहचान जरूरी है, सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं है जंग। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया पलटवार, कहा नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह सरकार ने किया काम, बिना काम श्रेय ले रही है मोदी सरकार। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने लोकतंत्र में विपक्ष को बताया जरूरी, तो बाबा रामदेव ने फिर से आंदोलन की दी चेतावनी, का भारी घपला, सड़कों पर आ रहे हैं बच्चे। और क्या हुआ जब स्टेज पर एक साथ आए सनी देओल, प्रीति जिंटा और इंडियन कोस्ट गार्ड्स। दोपहर 12 बजे देखिए स्वतंत्रता दिवस पर हमारी खास पेशकश, जय हो।

0: नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सामने एक विकसित भारत का विजन, युवाओं के लिए बड़े ऐलान और देश की सुरक्षा को लेकर कड़ा संदेश रखा। करीब 76 मिनट के संबोधन में पीएम मोदी ने एक तरफ 2047 तक विकसित भारत का संकल्प दोहरा दिया तो दूसरी तरफ आत्मनिर्भरता और शक्ति की सप्त धारा के जरिए विकास का रोड मैप सभी के सामने रखा। पीएम ने कहा कि भारत को दुनिया में आगे बढ़ाने के लिए कॉस्ट, क्वालिटी और स्केल, इन तीनों पर फोकस करना ही होगा। उन्होंने मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत को देश की ताकत बनाने का आह्वान किया है। युवाओं के लिए पीएम ने बड़े ऐलान किए। अगले एक साल में 1 करोड़ युवाओं को AI की ट्रेनिंग दी जाएगी, स्किल सिखाए जाएंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों युवाओं के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था की जाएगी और 5 साल से 15 साल तक के बच्चों की खेल प्रतिभा तलाशने के लिए कि वो कौन सा खेल खेल सकते हैं बेहतर, देशव्यापी टैलेंट हंट अभियान शुरू करने की बात कही गई है। लेकिन लाल किले से पीएम का एक बयान सियासी तौर पर बहुत अहम है। जंतर मंतर के प्रदर्शन का नाम लिए बिना दिमागी नक्सलियों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेताया और कहा कि देश को ऐसे लोगों से बचना होगा जो युवाओं को भटकाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। वही महिला आरक्षण को लेकर पीएम मोदी ने अपनी बात रखी और विपक्ष से साथ आने की अपील की है। महिला आरक्षण पर उन्होंने कहा कि देश की आधी आबादी को नेतृत्व में उचित भागीदारी देने के लिए जितने भी दल हैं उन सभी को आगे बढ़ना चाहिए, साथ में आना चाहिए। और इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह भी ऐतिहासिक रहा। लाल किले की प्राचीर से पहली बार वंदे मातरम की गूंज सुनाई दी। पीएम मोदी ने लगातार 13वीं बार तिरंगा फहराया और इसके बाद राष्ट्रगान और 21 तोपों की सलामी भी हुई।
1: पिछले 10-12 वर्ष में कितने संकटों का सामना करना पड़ा। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया था, सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई थी। कोरोना से बाहर निकले युद्ध की विभीषा की खबरें आने लगी, कहीं यूक्रेन तो कहीं पश्चिम एशिया, हर जगह पे तनाव का माहौल। और पता नहीं भविष्यवेत्ताओं ने तो न जाने क्या क्या घोषणाएं कर दी थी, देश को डराना, देश को भयभीत रखना, देश को चिंतित रखना। इसी में कुछ लोगों को आनंद आता है। वैक्सीन नहीं मिलेगी, कोविड में लोग बचेंगे नहीं, कुछ भी नहीं होने वाला। वेस्ट एशिया का क्राइसिस आया, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं मिलेगा, गैस नहीं मिलेगा, डीजल नहीं मिलेगा, फर्टिलाइजर नहीं मिलेगा। सारी दुनिया भर की अफवाहें फैला करके भारत के लोगों को भयभीत करने का, डराने का, चिंता के अंदर डुबो देने का कुछ लोगों को आनंद आ रहा था। लेकिन देश ने देख लिया कि पिछले 10-12 साल की सुविचारित योजनाएं रंग ला रही है और हम इतने बड़े संकट के बावजूद भी नागरिक देवो भव के मंत्र को लेकर के जीते हुए भारत ने जो तैयारियां की थी, एक के बाद एक कदम उठाया था। सोचा नहीं था कि संकट आएगा, लेकिन उस संकट के समय में ये सारी चीजें काम आ गई और आज देश में गैस भी है, पेट्रोल भी है, यूरिया भी है। हम अपनी ताकत के ऊपर खड़े हो रहे, चल रहे। जहां पर कभी नक्सलवादियों की गोलियां चलती थी, जहां पर कभी धरती रक्त रंजित रहा करती थी, आज उसी नक्सल क्षेत्रों में, उसी इलाकों में नक्सल मुक्त होने के कारण विकास, विश्वास और प्रयास का तिरंगा लहरा रहा है, मेरे प्यारे देशवासियों। लेकिन इस चुनौती को हमने कम नहीं आंकना है, इस चुनौती से हमें और भी सावधान रहने की जरूरत है। वर्षों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे, सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था। मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है, लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा।
0: छिहत्तर मिनट का संबोधन था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। देश को कैसे विकास की मुख्यधारा से जोड़ना है, किन सेक्टर्स पर फोकस करना है, महिलाओं को कैसे आगे बढ़ाना है, युवाओं को कैसे बढ़ाना है, इस पर बात की। अब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता क्या कह रही हैं वो सुनते हैं।
2: एक मॉडल के रूप में पूरे देश के सामने प्रस्तुत हो ताकि विकास की रफ्तार भी बढ़े और पर्यावरण की सुरक्षा भी, दोनों साथ साथ चले। दिल्ली में अभी तक देश की सबसे बड़ी ईवी बसेस की फ्लीट है, 4,500 बसें ईवी हैं, जो कि किसी भी बड़े से बड़े राज्य से भी ज्यादा है। ये है दिल्ली राज्य का मॉडल, जिसे अब बाकी राज्य भी फॉलो कर रहे हैं। हम दिल्ली सरकार में दिल्ली की मेट्रो को बढ़ाने के लिए भी काम कर रहे हैं, नए रूट पे भी पूरा फोकस है। हाल ही में प्रधानमंत्री जी द्वारा फेज 4 की प्रायोरिटी कॉरिडोर्स को जनता को समर्पित किया गया, जिसमें मजलिस पार्क से मौजपुर और दीपालिक चौक से मजलिस पार्क का उद्घाटन करा गया था। और इसी तरीके से फेज 4 के बैलेंस कॉरिडोर जी ब्लॉक साकेत से लाजपत नगर, कुंडली से रिठाला, इंदरलोक से इंद्रप्रस्थ का अप्रूवल भी कर दिया गया है। इन 3 कॉरिडोर के माध्यम से अब हमारा मेट्रो का नेटवर्क 47 किलोमीटर और बढ़ जाएगा। इसी तरीके से फेज 5A के लिए भी हमने 3 और कॉरिडोर सेंक्शन किए हैं, आरके आश्रम से इंद्रप्रस्थ, एरो सिटी से टर्मिनल 1 तक और तुगलकाबाद से कालंदी कुंज तक। ये केवल मेट्रो नहीं, ये हमारे लिए एक ऐसा नेटवर्क है जो समय की बचत भी कराता है, प्रदूषण में कमी भी करता है और बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ भी देता है। ये हम सब के लिए गर्व की बात है कि दिल्ली NCR का मेट्रो नेटवर्क पूरे देश में सबसे बड़ा है। मैं धन्यवाद देती हूँ केंद्र की सरकार को, जिन्होंने दिल्ली की जरूरतों को ध्यान करके हमारे लिए ये काम किया है। और ये भी कहना चाहती हूँ, दिल्ली आधुनिक होने के साथ साथ अपनी विरासत से भी जुड़ी है। विकास की नई ऊंचाइयां छूने के साथ साथ हम अपनी संस्कृति, अपनी आस्था और पहचान को भी पूरे गौरव के साथ आगे लेके जा रहे हैं। इसी सोच के साथ दिल्ली की समृद्ध विरासत के नए अवसर और दुनिया से जोड़ने का काम भी दिल्ली सरकार कर रही है। हम दिल्ली को मेडिकल टूरिज्म, एजुकेशन टूरिज्म के साथ साथ हेरिटेज टूरिज्म, कल्चरल टूरिज्म और स्पिरिचुअल टूरिज्म का भी केंद्र बनाना चाहते हैं। दिल्ली से पूरा भारत खुद को जोड़ता है। दिल्ली देश की राजधानी है, दुनिया के सामने भारत की पहली झलक यदि कोई राज्य है तो वो दिल्ली है। हमारी सड़कें, हमारी स्वच्छता, हमारी हवा, हमारी विरासत, महिलाओं की सुरक्षा, यातायात, अनुशासन, और बाहर से आने वाले लोगों के प्रति हमारा प्यार व्यवहार दुनिया के सामने एक ऐसी छवि बनाते हैं जो भारत की संस्कृति और परंपराओं की देन है। दिल्ली का वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और रिच कल्चरल आइडेंटिटी, हम ऐसी कॉन्सर्ट इकोनॉमी को दिल्ली में जोड़ना चाहते हैं जो दिल्ली देश के और साथ साथ दुनिया के बड़े बड़े कल्चरल और एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन में से एक दिखाई दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत का जो सपना देखते हैं, दिल्ली अपनी इसी विरासत और पहचान के साथ विकसित दिल्ली के सपने को आगे लेके चल रही है। हमारी इस शहर के सामने अनेकों चुनौतियां हैं साथियों, पर्यावरण और क्लाइमेट चेंज उसमें खास स्थान रखता है। इसलिए पहली बार दिल्ली राज्य के बजट को ग्रीन बजट घोषित कर हमने 21% बजट का हिस्सा यानी 22,000 करोड़ को ग्रीन बजट के रूप में।
0: तो दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से देश जो 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है उस पर अपनी बात रखी जा रही थी और दिल्ली की समृद्ध विरासत को संपन्न हम कर रहे हैं, ऐसा रेखा गुप्ता की तरफ से कहा गया। और यह भी बताया गया कि दिल्ली को आगे बढ़ाने के लिए क्या एक्शन प्लान पर इस वक्त दिल्ली सरकार काम कर रही है। दिल्ली NCR का नेटवर्क सबसे बड़ा है, संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं, तो ऐसे में कैसे दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी को आगे लिया जा सकता है। और यह दावा भी किया रेखा गुप्ता ने कि दिल्ली में जो विकास की रफ्तार है वो चरम पर है, दिल्ली में मेट्रो नेटवर्क में लगातार विस्तार किया जा रहा है ताकि हर वर्ग को सहूलियत मिल सके, दिल्ली की समृद्ध विरासत को संपन्न करने का प्रयास किया जा रहा है और मेट्रो इसमें बहुत अहम योगदान देती है क्योंकि ज्यादातर जो लोग हैं दिल्ली में वो मेट्रो पर डिपेंड रहते हैं, मेट्रो पर सफर करते हैं। और इसीलिए कोशिश यहां पर यह की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा दिल्ली में संभावनाओं को विकसित किया जा सके जिससे दिल्ली की जनता और जो बाहर से लोग दिल्ली में रहते हैं उनके लिए भी कई नए अवसर आ सके। अब कुछ ये तस्वीरें आप देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव तिरंगा ध्वज फहराया, ध्वजारोहण उन्होंने किया। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ध्वजारोहण किया। प्रमोद सावंत गोवा के मुख्यमंत्री हैं। सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के CM और कर्नाटक के मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ध्वजारोहण करते हुए, ये 6 अलग अलग राज्यों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां जश्न ए आजादी मनाया जा रहा है और 80वां स्वतंत्रता दिवस, देशभक्ति की गूंज वो जज्बा साफ दिखाई दे रहा है, तिरंगे को सलामी दी जा रही है, भारत माता की जय, वंदे मातरम का जय घोष हो रहा है, महात्मा गांधी को याद किया जा रहा है और देश को कैसे आगे बढ़ाना है इस पर भी चर्चा की जा रही है। तो बड़े सपनों की जरूरत, युवा ताकत, विकसित भारत, युवा ताकत पर यहां पर जोर दिया जा रहा है हर जगह। तो स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा फहराने के बाद योग गुरु बाबा रामदेव ने देश की मौजूदा जो शिक्षा व्यवस्था है और जो सरकारी भर्ती की प्रक्रिया है उसको लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। बाबा रामदेव कह रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं की कमी है, जगह जगह नकल हो रही है, पेपर लीक जैसी घटनाओं के साथ साथ सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया में कथित भ्रष्टाचार पर चिंता वो जता रहे हैं। बोले चिंता की बात है, बाबा रामदेव कह रहे हैं कि अगर शिक्षा और भर्ती व्यवस्था में जो गड़बड़ियां हैं उनमें जल्द सुधार नहीं किया गया तो युवाओं में असंतोष बढ़ेगा, देश हित में एक बार फिर अनशन पर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है उन्हें।
3: देश में हंगामा है, छोटे छोटे स्कूल कॉलेजों से बच्चे निकल रहे हैं कि हमारे यहाँ टीचर नहीं है, हमारे यहाँ लाइट नहीं है, हमारे यहाँ पानी नहीं है, हमारे यहाँ शौचालय नहीं है, हमारे यहाँ टीचर है तो किताबें नहीं है, किताबें हैं तो टीचर नहीं है, और टीचर है तो पढ़ाई में नकल हो जाती है, कहीं पेपर लीक हो जाता है, और पेपर पास भी कर लिया, 10वीं 12वीं का बोर्ड एग्जाम भी दे लिया तो 10वीं 12वीं के जो एग्जाम के मार्क्स हैं वो कहीं जुड़ते ही नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के आधार पर ही आगे यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन होता, और उसके बाद में फिर जो है जब कहीं नौकरी की बारी आए खास करके गवर्नमेंट जॉब्स में इंटरव्यू के दौरान 90-99% घोटाला होता है। अपने विचार, अपने संस्कार, अपने संगठन, अपने ही जाति वर्ग समुदाय के लोगों को ठोक लेते हैं और बाकी को बाहर धक्का मार देते हैं। ये बहुत ही अपमानजनक है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है, ये न्याय के भी खिलाफ है। एक तरफ हम कह रहे हैं सत्यमेव जयते, ये तो धर्म सतो जय, हमने शासकीय उद्घोष बना दिए, और वहां जब किसी को इंटरव्यू की बारी आती है तो 10 में से
4: पहले से तय करके
3: और पैसे लेके 25-50 लाख 1-1 करोड़ रुपए की रिश्वत लेकर के फिर भर्ती करते हैं। अब ऐसे ही आंदोलन करना पड़ा तो देश कैसे चलेगा? इसलिए भाई सुधर जाओ, नहीं तो देश में आंदोलन और ज्यादा भी हो सकते हैं। आंदोलन के नाम पर मैं अराजकता अनार्की का समर्थक नहीं हूं, लेकिन भाई ये बात तो जरूर है, देश में घपला भी बहुत है, ये घपले ठीक कर लो, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि बाबा रामदेव को दोबारा आंदोलन करना पड़ेगा।
0: रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
1: जब मैं विकसित भारत की बात कर रहा हूं, देश को तेज गति से आगे बढ़ाने की बात कर रहा हूं, उसका सबसे बड़ा लाभार्थी कौन है? इन सारे प्रयासों का सबसे बड़ा साधक कौन है? अगर साधक है तो मेरे देश का युवा है, मेरे देश की युवा शक्ति है। विकसित भारत की यात्रा में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। इतना ही नहीं, विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी मेरे देश का युवा है, और इसलिए हमें विकसित भारत के लक्ष्य को युवाओं के साथ जोड़ करके आगे बढ़ाना है। युवाओं हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ हमें आगे बढ़ना है। साथियों, पिछले 10-12 साल में उस दिशा में बहुत कुछ हुआ है। स्टार्टअप इंडिया अभियान, आज पूरे देश में 2.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप बन गए। देश के नौजवान खुद तो काम कर रहे हैं, अनेकों को रोजगार दे रहे हैं। 1 लाख करोड़ रुपया इनोवेशन फंड भारत सरकार ने घोषित किया है। मैं देश को नौजवानों को कहना चाहता हूं, आप अपने सपनों को लेकर के आइए, संसाधनों की कमी नहीं रहने देंगे। 1 लाख करोड़ रुपया आपके दिल दिमाग को सामर्थ्य देने का एक व्यवस्था हमने कर दी है। रिसर्च के नए अवसर मिले, डिजिटल इंडिया के नए सस्ते डेटा युवाओं को सशक्त किया। दुनिया में सस्ता डेटा कहीं है तो भारत की धरती पर है, और देश के नौजवानों को उसे नवी ताकत दी है। स्किल इंडिया हमने नेशनल प्रोग्राम बनाया है, स्पेस सेक्टर को हमने ओपन कर दिया, नेशनल ड्रोन पॉलिसी हमने बनाई है, खेलो इंडिया पॉलिसी बनाई है, 35 वर्षों तक एजुकेशन पॉलिसी नहीं थी, नई एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आए हैं, और इसका फायदा मिडिल क्लास के परिवारों को हुआ है। साथियों, 2004 से 14 आंकड़ा मुझे देना चाहिए आपको, 2004 से 14 हमारे देश में 350 से भी कम यूनिवर्सिटी थी, और आज 10-12 साल के भीतर भीतर करीब 650 नई यूनिवर्सिटी जुड़ चुकी है, करीब 1000 का आंकड़ा हम पहुंच रहे हैं। 2014 के पहले मेडिकल की सिर्फ 400 सीटें हुआ करती थी, आज करीब करीब 850 सीटें मेडिकल की हो रही है। इतना ही नहीं, अब विदेशी यूनिवर्सिटी भी भारत की धरती पर आ रही है। भारत के अंदर विदेशी यूनिवर्सिटी की डिग्री मेरे नौजवान को मिले, इसका प्रबंध भी हो चुका है। हमारे देश के युवा मन बचपन से ही टेक्नोलॉजी की तरफ आकर्षित हो, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं, और इसलिए हमने करीब 10,000 से अधिक अटल टिंकर की लैब छोटे छोटे बच्चों के हवाले कर दी है, ताकि उनका इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के अंदर उनका मन बने। 12 वर्ष युवा, हमने अनेक रास्ते खोले, हम स्टार्टअप ओपन कर दिया, आपने देखा होगा भारत के प्राइवेट स्टार्टअप 28 साल की एवरेज उम्र के बच्चों ने, नौजवानों ने दुनिया में पहले ही ट्रायल में अपना सैटेलाइट लॉन्च कर दिया, और रॉकेट लॉन्च कर दिया उन्होंने, बहुत बड़ा काम कर दिया है साथियों। आज करीब 2.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप है।
4: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

जब से पेपर लीक के खिलाफ कांग्रेस जनता पार्टी ने देश भर में आंदोलन किया है, तब से देश की सियासत से लेकर न्यायपालिका तक जेन जी इम्पैक्ट देखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने हैदराबाद की नासलर यानी नेशनल लॉ स्टडी एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी से जुड़े विवाद पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया को फटकार लगाई है। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा है कि भले ही छात्रों का फैसला गलत हो या उन्हें किसी ने गलत सलाह दी हो, फिर भी उन्हें अपनी बात रखने और विरोध करने का अधिकार है। जस्टिस सूर्यकांत ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के उस सर्कुलर पर भी नाराजगी जताई जिसमें नासलर के 2026 बैच के लॉ ग्रेजुएट्स का वकील के तौर पर एनरोलमेंट रोकने को कहा गया था। सीजेआई ने कहा कि ये मेरे और छात्रों के बीच का मामला है, इसे मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है। बार काउंसिल इसमें दखल देने वाला कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को नोटिस भी जारी किया और यूनिवर्सिटी के किसी छात्र या फैकल्टी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया। विरोध के बाद बार काउंसिल ने यूटर्न ले लिया है। छात्रों की नाराजगी सीजेआई की पिछले महीने की एक टिप्पणी को लेकर थी। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा था, कॉकरोच की तरह ऐसे युवा हैं जिन्हें इस पेशे में रोजगार नहीं मिल रहा है। इनमें से कुछ मीडिया, कुछ सोशल मीडिया और कुछ आरटीआई और दूसरे तरह के एक्टिविस्ट बन रहे हैं। ये हर किसी पर हमला करना शुरू कर देते हैं। ये टिप्पणी दिल्ली में नीट प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़ी याचिका की सुनवाई के दौरान की गई। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 13 अगस्त को सभी स्टेट बार काउंसिलों को निर्देश दिया था कि नासलर के 2026 बैच के किसी भी ग्रेजुएट को अगले आदेश तक वकील के तौर पर एनरोल न किया जाए। साथ ही यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से 3 दिन के भीतर रिपोर्ट मांगी गई थी। आदेश जारी होने के कुछ घंटे बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपना रुख बदल लिया

लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने विकसित भारत का लिया संकल्प। शक्ति की सप्तधारा, युवा महिला शक्ति को जोड़ने का मंत्र, एआई स्किलिंग पर जोर। प्रधानमंत्री ने दिमागी नक्सलियों पर किया प्रहार का देश को नुकसान पहुंचाने वालों की पहचान जरूरी, सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं है जंग। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने किया पलटवार, का नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह सरकार ने किया काम और बिना काम श्रेय ले रही है मोदी सरकार। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने लोकतंत्र में विपक्ष को बताया जरूरी, तो बाबा रामदेव ने फिर से आंदोलन की दी चेतावनी, का भारी घपला, सड़कों पर आ रहे बच्चे। और देश भर में मना आजादी का जश्न, राज्यों में मुख्यमंत्रियों ने फहराया तिरंगा, दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने राजधानी दिल्ली में विकास की रफ्तार बढ़ाने पर जोर दिया।

0: हम आज यहाँ पर एक उत्सव भी मना रहे हैं.
1: 15th August should be the foremost. बाकी सब फेस्टिवल बाद.
2: Don't ask what your country can do for you, but what you can do for your country.
3: Hindustan zindabad! Ha! Hey! Aur zindabad! Rahega!
4: दो टीमें बन चुकी है, एक टीम आपकी है, एक टीम आपकी है.
1: सर अगर आपकी परमिशन हो तो आपके 2.5 किलो के हाथ का दमकम इस सभा के सामने आपको आजमाना चाहेंगे.
5: क्यों मेरे साथ पंगा लेना चाहते हैं सब लोग?
6: आउट द जोश
2: हिंदी फॉरवर्ड जाओ.
7: कल होना हो, कल होना हो.
8: तुझे सलाम.
9: Everybody, in one voice.

भारत की जय हो, विजय हो, जीत हो, फतेह हो। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। आजादी के इस पर्व की, स्वतंत्रता दिवस की अनेकों शुभकामनाएं आपको। हम इस समय हिंदुस्तान के हीरोज के साथ यहां पर मौजूद हैं और स्वतंत्रता का पर्व हम इनके साथ आज मनाने वाले हैं। कोस्ट गार्ड के 50 साल पूरे हो रहे हैं, हम उनसे भी उनकी कुछ कहानियां सुनेंगे और साथ में देश की कहानियां जो सबको सुनाते हैं वो हमारे बीच आ रहे हैं। तालियों के साथ स्वागत कीजिए सनी देओल और प्रीति जिंटा का।

0: तरफ हमारे वो हीरोज जो देश की रक्षा करते हैं और एक तरफ हमारे वो हीरोज जो देश की कहानियां सुनाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका।
1: थैंक यू।
0: क्योंकि हमारे तटरक्षक हमारे सामने हैं, 50 साल उनके पूरे हो रहे हैं 2027 में। हमने इसीलिए 1977 से 2027 मुश्किल सरहद पर, जहां पर मतलब अभी दिल्ली की उमस में हम परेशान हैं, ये सक्रीक जैसे बॉर्डर्स की उमस को झेलते हैं, जिसको दुनिया का सबसे ह्यूमिड इलाका माना जाता है, वहां पर रह पाना मुश्किल है अपने आप में। तो मुझे लगता है अपनी कहानियां भी सुनाएंगे सारे हमारे जो जांबाज यहां पर हैं, आपकी कहानियां भी सुनेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं शुरुआत आप तीनों से इस बात से करना चाहती हूँ कि जब सामने उनको देख रहे हैं, हमारी फोर्सेस सामने होती हैं, आज़ादी का मतलब एक एहसास, एक फीलिंग, एक लाइफस्टाइल क्या हो जाता है? लेडीज फर्स्ट, प्रीति।
2: फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड इवनिंग एवरीवन। आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू बी हियर। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। जी, आई थिंक जीने का तरीका है, मैं तो एक खुद फौजी परिवार से हूँ, बहुत जब छोटे थे हमने सीखा, डोंट आस्क व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, बट व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री। सो इन बिगर वेज एंड स्मॉलर वेज, इन अ सिंपल लाइन, दैट्स व्हाट आई फील।
0: संजय,
1: आज़ादी हमारे बुजुर्गों ने, द फ्रीडम फाइटर्स ने हमें दिलाई है, और उसके बाद हमें अपने आप से पूछना चाहिए हम उस आज़ादी के साथ उसकी कितनी कदर करते हैं और किस तरह से लेके जा रहे हैं। और मेरा तो यही मानना है, आज़ादी हर चीज़ की होती है। इस वक्त हमें किसी से लड़ना नहीं है, अपने आप से अपने आप को एक अच्छा आदमी बनाना है। और आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ जातवाद को हटा देना चाहिए, उसकी आज़ादी होनी चाहिए। आज़ादी टू द वुमेन, इट शुड बी देयर। एंड एक इंसानियत की तरह से, एक इंसानियत को मजहब बना के रहना चाहिए, तो फिर हर चीज से आज़ादी मिल जाती है, फनाटिज्म चला जाता है। इन सब से हमको भी आज़ादी लेनी चाहिए, तभी जाके हमारा भारत, हमारा हिंदुस्तान फिर से वही होगा जो होना चाहिए।
3: आज़ादी फिजिकली तो मिल गई 1947 में, उसे बरकरार रखने के लिए हमारे बहादुर सारी सेना सब तैनात हैं। बट एट द सेम टाइम मैं समझता हूँ, सोच विचार उसकी भी आज़ादी होनी चाहिए, और खुल के जो ख्याल आए वो कहना चाहिए। आंखें मूंद के किसी के पीछे चलना भी एक तरह की गुलामी है, वो गुलामी से भी आज़ादी लेनी है।
0: गुलाम हो तो केवल अपने देश के, अपनी देश के प्रति अपने समर्पण के, और किसी चीज के नहीं। मुझे लगता है बहुत सुंदर ख्याल, बहुत सुंदर बात आपने कही है। 1947 का जिक्र आपने किया, फिल्म के नाम में भी वो शामिल है, और मुझे सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जिस तरह की ये टीम रही है, पहले आप लोग जो एक साथ आकर जो फिल्में दे चुके हैं, प्रीति और आप भी साथ में आए हैं कई बार, राजकुमार जी के साथ आपकी फिल्में, तो मुझे लगता है कि आज की जो सबसे हिट फिल्म है वो घायल और घातक के नाम को इस्तेमाल करके सबसे सुपर हिट डायलॉग उसका वही आया है। तो क्या एक बार फिर हम मैजिक देखने वाले हैं?
1: ये जो एक प्ले है जिसने लाहौर नहीं देखा और जमया नहीं, वहाँ से हम लोगों ने लिया है, और राज ने बहुत अच्छी तरह से इसे स्क्रीन प्ले के रूप में लाए हैं। एंड मैंने ये कहानी इससे सुनी थी, राज ने मुझे सुनाई थी 2010 को, और हमें बहुत वक्त लगा उसे यहाँ तक लाने के लिए। खैर, अब ले आए हैं, एंड जैसे हमने वो फिल्में बनाई हैं, ये फिल्म भी एक इस तरह की फिल्म है जिसे देखकर आप, हर आदमी इंसान को देखकर बोलेगा, यस, ह्यूमैनिटी शुड बी द रिलीजन, एंड माँ से बढ़कर कुछ नहीं होता।
0: आप दोनों ने इनफैक्ट, क्योंकि आपने भी बहुत सारी ऐसे फिल्में की हैं जिसमें ओवरट देशभक्ति हो ना हो, लेकिन देश का एक नागरिक कैसा होना चाहिए उसका एहसास हम लोगों को मिल जाता है। क्या इस तरह की फिल्में आपको एज ए ह्यूमन भी बदलती हैं?
2: एब्सोल्युटली, क्योंकि जब आप फिल्में करते हो, आप रिसर्च करते हो, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू आर नॉट अवेयर अबाउट, बट व्हेन यू वर्क ऑन अ सर्टेन टॉपिक और यू डू रिसर्च, यू फाइंड आउट अबाउट इट, आप उन चीज़ों से प्रभावित होते हैं, क्योंकि आपका किरदार कभी वो ऑनेस्टी नहीं दिखा सकता अनलेस यू फील इट। एंड a lot of times you just talk about things, but when you put yourself in the middle of those things aur aap dekhte ho, feel karte ho, samajhte ho, to definitely.
3: Aaj is manch pe main ek baat darsh karna chahunga. Meri dili khwahish hai, tamanna hai, hope hai ki 15th August 1947 mein jo azadi mili, 15th August is din ko Holi, Diwali, Eid, Christmas se bhi zyada utsah ke saath har Hindustani ko manani chahiye. उस दिन भारत माँ आजाद हुई है, हम सब उसके बच्चे हैं. एक दूसरे घरों में जाके मिठाई देने का जो रिवाज है, चाहे हिंदू मुसलमान के घर जाए, मुसलमान हिंदू घर आए, मिलकर इस डे को सबसे ज्यादा बड़ा सेलिब्रेशन 15 अगस्त को ही मिलना चाहिए.
0: नहीं, आपकी मेमोरीज क्या है 15 अगस्त को लेकर?
1: मेरी मेमोरीज क्या है
0: बचपन में, जैसे स्कूल में सबका होता है ना, किसी को अपनी लड्डू का डब्बा याद आता है स्कूल में. सुबह सुबह उठकर आप छोटे होते हैं तो आपको लगता है अरे सुबह उठना पड़ रहा है, लेकिन धीरे धीरे
1: आप... मैं जब छोटा था, शुरू से ही मेरे अंदर अपने देश के लिए कुछ अजीब ऐसा प्यार था. आई हैड टू कलेक्ट फोटोग्राफ्स ऑफ ऑल माय प्राइम मिनिस्टर्स एंड ऑल द पीपल हु द फ्रीडम फाइटर्स. पता नहीं अंदर एक खून सा दौड़ता था. दैट यूज टू बी द वे आई यूज टू बी जब मैं छोटा था, एंड दैट्स हाउ आई ग्रू अप. और देखते देखते हमारा मुल्क कितना बदल गया है, उसकी सादगी, उसकी प्योरिटी, उसकी जो एक ऑनेस्टी थी वो भी कहाँ से कहाँ चली गई है मुझे कुछ पता नहीं. लेकिन आई एम वेरी प्राउड दैट आवर सोल्जर्स, आवर एयरफोर्स, वो वैसे के वैसे ही हैं. उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कहाँ क्या हो रहा हो, उन्हें पता है कि उन्हें इस माँ की रक्षा करनी है. एंड सल्यूट यू ऑल, लव यू ऑल.
0: और हम आज यहाँ पर एक उत्सव भी मना रहे हैं, आज़ादी एक उत्सव है. मुझे लगता है कि होली, दिवाली, ईद से बढ़कर हमारा जो त्यौहार है, हमारा जो पर्व है, वो हमारा गणतंत्र दिवस, हमारा हमारी आज़ादी का ये त्यौहार वो हो जाता है, क्योंकि सब एक साथ मनाते हैं इसको. और जैसे ये फिल्म है ना बंटवारा, तो हम दो टीमों में बंटवारा कर रहे हैं यहाँ पर. एक टग ऑफ वॉर साइड में आप एक रोप देख रहे होंगे बड़ा सा, अब उससे टग ऑफ वॉर करना है, अब आपका चॉइस है, आप उसमें साथ में हाथ लगाना चाहते हैं या फिर आप सिर्फ अपनी टीम का हौसला बढ़ाना चाहते हैं, प्लीज उसको लेकर आए. दो टीमें बन चुकी है, एक टीम आपकी है, एक टीम आपकी
3: है. इरादा तो नहीं है, एतराज भी नहीं है.
0: कितने कितने लोग हैं टीम में? चार चार, चार से तो ज्यादा है. प्लीज
3: बिल्कुल
2: भी आ जाते हैं
3: भाई, आ जाते हैं.
0: सर आप किसकी टीम का की ताकत बढ़ाएंगे?
4: ढाई किलो का हाथ, ये 500 ग्राम का हाथ.
0: अपना वो डायलॉग मार दीजिए सर, अभी जो आपने कहा था.
3: मैंने तो क्या कहा अभी,
0: सर ने कहा उधर उधर 2.5 किलो का हाथ, इधर 500 ग्राम
3: का हाथ. जीत किसी की भी हो, भारत माँ की जय, भारत माँ की जीत.
0: इस साइड ज्यादा लोग तो नहीं थे,
1: पर इस तरफ से स्टोरी राइटर्स, डायरेक्टर्स थे, इस तरफ जिन्होंने करना था जोश वाले इधर थे.
0: पर आप हर कंपटीशन को एकदम सीरियसली लेते हैं.
1: नहीं मैं ऐसी बात नहीं, बट ये कंपटीशन है तो उसे सीरियसली लेना चाहिए.
2: ट्रू.
0: बहुत सारी चीजें मैं कहती हूँ सर कि कॉमन होती हैं जो हमारे दोनों तरह के, इसीलिए हीरो शब्द का इस्तेमाल भी, हीरो मतलब एक्टर एक्ट्रेस सबको मिलाकर हम कह रहे हैं एक्टर हीरो, उसका उसमें एक समानता सी रहती है, क्योंकि आपको भी, आप भी कुछ गलत करेंगे, लोग एक मिसाल के तौर पर देखते हैं, आपके ऊपर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है. आप भी कुछ गलत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस वर्दी की अहमियत आप समझते हैं, उसकी इज्जत आप समझते हैं. एक और चीज बड़ी दिलचस्प है जिसकी अहमियत है, वो है डायलॉग्स. एक्टर के लिए डायलॉग, आपकी तो खैर फिल्मों का हर एक डायलॉग मुझे लगता है कि हमेशा हमेशा से लोग दोहराते रहे, और हमारे सोल्जर्स के केस में वो हो जाते हैं वॉर क्राई. आइए सर प्लीज, थोड़ा हौसला बढ़ाइए तालियों के साथ.
5: हाउ इज द जोश? सनी सर इज ऑन स्टेज. इतना जोश काफी नहीं है. हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश? वेरी गुड. तो मैम नेक्स्ट आपके सवाल का जवाब. जंग की परिस्थिति कोई भी हो मैम, एक वॉर क्राय है जो हम सबका मनोबल जरूर बढ़ाती है. विद योर परमिशन आई विल से दैट.
6: भारत माता की
7: जय.
6: भारत माता की
7: जय.
6: भारत माता की
7: जय.
0: क्या बात है. ओवर टू यू. एक एक्टर का वॉक रहा है.
8: हिंदुस्तान जिंदाबाद. हिंदुस्तान जिंदाबाद था है और जिंदाबाद रहेगा.
0: जोश का लेवल और आए हो गया. और तटरक्षक का भी जयकारा हो जाए.
6: भारतीय तटरक्षक की. भारतीय तटरक्षक की.
0: माइक की जरूरत नहीं. थैंक यू सो मच. डायलॉग सुकृति आपकी भी बहुत याद रहते हैं सबको. तो मुझे लगता है यहाँ पर सिर्फ सनी जी के डायलॉग के साथ नहीं, प्रीति मैम भी डायलॉग.
2: थैंक यू राज जी फॉर गिविंग मी दिस डायलॉग. मैं जानती हूँ यहाँ खतरा है, लेकिन जान के लिए ईमान नहीं छोड़ा जाता. तो
0: हाँ सर, ये नब्ज कैसे पकड़ी जाती है? जो 2.5 किलो का हाथ दामिनी का, घायल घातक जिसके साथ मैंने शुरुआत ही की कि आज भी घायल हूँ इसीलिए घातक हूँ करके ही डायलॉग सबसे बड़ा हिट हो जा रहा है, ये कैसे नब्ज पकड़ते हैं?
3: कैरेक्टर्स बोल रहे हैं. जो भी कैरेक्टर, जब जैसे इनका सिचुएशन था, ये हाउसवाइफ है हमीदा पिक्चर में, एंड शी कम्स टू नो दैट दुश्मन घेर रहे हैं, कभी भी हमला कर सकते हैं. तो बेटा इनको एडवाइस देता है कि चलो निकल जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं. वो सिचुएशन में एक माँ क्या कहेगी, ये सोचते हुए हमको लगता है कि माँ बेटे से कहती है, जान के अच्छा लगा, तुम बड़े हो गए हो, हमारा ख्याल करने को तैयार हो, हमारी सेवा करने तैयार हो. जानते हुए यहाँ खतरा है, लेकिन जान के लिए ईमान नहीं छोड़ा जाता.
0: आज केवल एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात नहीं, हम अपनी सोल्जर्स की भी परफॉर्मेंस की बात करेंगे. ये बैंड तो हमारे साथ है. 26 जनवरी पर जब कोस्ट गार्ड्स गुजरते हैं ना, तो लगता है कि इस बार का तो इनको ही मिलना है, लगता है ना? आप लोग तो पार्शल होकर सोचेंगे, हम तो एक हिंदुस्तानी के तौर पर भी आपको बता रहे हैं कि वो गजब का रिदम, गजब की तालमेल, और कला में तालमेल की बड़ी जरूरत होती है.

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन।
1: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: मुल्तानी घू का कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घू का कॉफ सिरप,

0: in association with
1: Sera Sanitary Wear. It's your moment of Sera. E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
2: भिखारियों का मनोविज्ञान क्या है?
3: तैयारी तुम भी कर रहे हो क्या?
2: नहीं सर।
3: 12th किससे की हो?
2: 12th सर मेरा PCM से रहा।
3: कंपाउंड क्या होता
2: है? बेसिकली जो एक्युमुलेटेड चीजें रहती हैं उसके ऊपर।
3: यही है बिग मंगे वाली क्वालिटी। तुम पूछ रहे थे ना? यही है। एक मिनट,
2: ये जो आपका तरीका बहुत सर बहुत अच्छा नहीं है इस तरीके से समझाने का स्टूडेंट्स को। इसे सर ह्यूमिलिएशन कहते हैं।
3: देख भाई, अपनी गारंटी पे छेड़ना

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने विकसित भारत का लिया संकल्प, शक्ति की सप्तधारा, युवा महिला शक्ति को जोड़ने का मंत्र, एआई स्किलिंग पर जोर। प्रधानमंत्री ने दिमागी नक्सलियों पर किया प्रहार, कहा देश को नुकसान पहुंचाने वालों की पहचान जरूरी, सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं है जंग। कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम को रोके जाने के बीजेपी के आरोप पर बोले जयराम रमेश, पूरा बजा, सिर्फ सोनिया गांधी ने खड़गे जी के लिए कुर्सी लाने को कहा था। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने लोकतंत्र में विपक्ष को बताया जरूरी, तो बाबा रामदेव ने फिर से आंदोलन की दी चेतावनी, का भारी घपला, सड़कों पर आ रहे बच्चे। और देश भर में मना आजादी का जश्न, राज्यों में मुख्यमंत्रियों ने फहराया तिरंगा, दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने राजधानी दिल्ली में विकास की रफ्तार बढ़ाने पर दिया जोर।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

0: आजकल क्योंकि जोश की बात हो रही है, युवाओं के बीच ही हम बैठे हैं, जेन जी इन सैनिकों के बीच भी है, जेन जी इन कोस्ट गार्ड्स के बीच भी है, और पूरा देश इज प्राउड ऑफ द फैक्ट कि जेन जी आज अपनी आवाज उस तरीके से बुलंद करता है. क्या जेनरेशंस के साथ पेट्रियोटिज्म बदलता है? जैसे आपके बेटे भी मेरा ख्याल है इस फिल्म में है, क्या आपके बेटे का पेट्रियोटिज्म एक्सप्रेस कर, क्योंकि आपकी पूरी फैमिली ही सनीपा जी मुझे लगता है कि बहुत पेट्रियोटिक है, न सिर्फ फिल्मों के सिलेक्शन में बल्कि अपने विचारों में.
1: पेट्रियोटिज्म बदल तो नहीं सकता, बढ़ सकता है. बदल नहीं सकता और बढ़ता रहना चाहिए मेरे ख्याल से, बिकॉज हमारा देश हमारी माँ है, हमारी माँ जो घर पर है वो हमारी माँ है, उससे बढ़कर वो जो प्यार है, जो वो हमारी ताकत है, जिस तरह से वो हमारा ख्याल रखती है और जिस तरह से फिर हम उन्हें वापस उनकी इज्जत करते हैं, उनकी लुक आफ्टर करते हैं, उनको कुछ हमें कुछ चोट आए तो हमें गले से लगा लेते हैं, उसी तरह हमें भी वही करना चाहिए. एंड आई थिंक दैट्स व्हाट पेट्रियोटिज्म इज ऑल अबाउट. इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर मदर, बिकॉज मदर देश हमारा मदरलैंड है. एंड आई थिंक वो बढ़ता ही रहे. इसमें ग्रेट प्राइड होनी चाहिए, बिकॉज वाई शुड यू शाय ऑफ फ्रॉम लविंग योर मदरलैंड.
0: क्या बदलते देखते हैं आप?
2: नॉट रियली. आई थिंक ये आपकी अपनी इंडिविजुअल फैमिली पे भी डिपेंड करता है. माई फादर वॉज इन द आर्मी, माई ब्रदर इज इन द आर्मी, तो इट जस्ट फील्स राइट. जो आपके अपने वैल्यू सिस्टम है वही आप अपने बच्चों को सिखाएंगे. सो आई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने घर में क्या सीखते हो, क्योंकि अपनी एज ही सेड अपनी माँ की कदर, अपने देश की कदर, तो ये तो चीज़ें आप बचपन से ही सीखते हैं. एज डिफेंस किड्स दीज आर नॉट थिंग्स हम सोचते भी है. जब हम छोटे होते थे कहीं भी हम जाते थे, अगर कभी कोई पूछता था कि आप कहाँ से हैं, हमने कभी नहीं बोला मैं शिमला से हूँ या हिमाचल से. वी ऑलवेज से वी इंडियन, बिकॉज हर दो साल में आप एक अलग जगह जाते थे. सो बचपन से यही सीखा है तो यही फील होता है
0: सर. क्योंकि फिल्मों की भाषा भी थोड़ी थोड़ी बदलती दिखती है, लेकिन क्या आप देशभक्ति की भाषा बदलते देख रहे हैं?
3: देशभक्ति पैट्रियटिज्म बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए जैसे सांस जो है वो नजर नहीं आती, लेकिन सांस के बिना आदमी जिंदा नहीं है. उसी तरह से रगों में खून दौड़ता है, नजर नहीं आता है, तो पैट्रियटिज्म हर हिंदुस्तानी के रगों में दौड़ने चाहिए. ना कि कई लोग पैट्रियटिज्म का धंधा भी बनाते, बिजनेस भी करते हैं, वो नहीं होना चाहिए. दिल से जैसे सांस और रगों में दौड़ता खून. तो मेरी यही अपील है, मैं चाहूँगा जेन जी और मैं खुद भी सरकार से अपील करूँगा, इस 15 अगस्त को वो डिक्लेयर किया जाए कि नेशनल फेस्टिवल 15 अगस्त.
0: मुझे लगता है
3: नेशनल
0: अच्छा
3: फेस्टिवल होना चाहिए कि हर हिंदुस्तानी को गर्व होना चाहिए, हर फैमिली में गर्व होना चाहिए, मिठाई बांटना, सेलिब्रेट करना. 15 अगस्त शुड बी द फॉरमोस्ट, बाकी सब फेस्टिवल बाद में, इंडिविजुअल फेस्टिवल, ये सबका कलेक्टिव फेस्टिवल 15 अगस्त.
0: बदलाव की शुरुआत हो जाएगी उस दिन से.
3: चाहूंगा, यही चाहूंगा.
0: आपने अपनी अपनी शब्दों में अभी जो कविता गढ़ी है सांसों की, कभी यहाँ भी बैठे हैं.
4: पहन मुकुट हिमालय का, गंगा की खल खल से खिलता, सभ्यता और संस्कृति का अनुपम खजाना है यहाँ मिलता. अनगिनत भाषाओं और त्योहारों का ये देश, भारत है इसका नाम. है ये सब अपने देश में विशेष, ना शीश कभी झुकने दे इसका, इतिहास का इसके मान रखे, मातृभूमि के सबसे ऊपर हर पल इसका ध्यान रखे, ऐसा भारत निर्माण करें. थैंक यू.
0: मुझे लगता है आपकी फिल्म की सोच भी यही है.
5: सोचकर भी सोचता हूँ कुछ सोचूं, सोचकर भी सोचता हूँ कुछ सोचूं, इतना सोचा फिर सोचा, सोचा के कुछ ना सोचूं.
0: क्या बात, क्या बात.
5: सोच कर भी सोचता हूँ कुछ सोचूं, इतना सोचा फिर सोचा, सोचा कि कुछ ना सोचूं, सोचने से मंजिले मकसूद नहीं होती, चलने वालों की कभी हार नहीं होती, न समझो तो पत्थर सी पहाड़ है जिंदगी, समझो तो बहता दरिया, न पूछो जिंदगी से कभी इसने हमें क्या दिया और क्या लिया। धन्यवाद।
6: मेरे देश का गौरव बना रहे इसके आगे कोई चाह नहीं, मैं चाहे जहां से भी गुजरूं उसके आगे कोई राह नहीं। ये देश सभी से न्यारा है, संस्कृति भी इसकी न्यारी है, इसीलिए हमारी मातृभूमि हमें प्राणों से भी प्यारी है। ये धरती है ऋषि मुनियों की, जिनसे दुनिया को ज्ञान मिला, जीरो की खोज यहीं पे हुई, जिससे हर अंक का मान बढ़ा, जो ज्ञान आज दुनिया को हुआ मेरे भारत ने पहले खोजा, डंके की चोट पर कहती हूँ मेरे भारत सा न कोई दूजा, डंके की चोट पर कहती हूँ मेरे भारत सा न कोई दूजा।
0: अच्छा, अब एक कोलैबोरेशन कोस्ट गार्ड और हमारी टीम बंटवारा के साथ भी होगा, और ये कोलैबोरेशन होगा जिसमें एक्टिंग वहां से होगी, आप लोगों को नाम बताना है। वो खामोशी से बस एक्टिंग करेंगे, क्योंकि बिना डायलॉग्स की एक्टिंग सुनते हैं सबसे ज्यादा मुश्किल होती है। दमशराज कुछ बोल नहीं सकते, उधर उधर भी दिखा दीजिए।
7: फोर वर्ड्स, व्हाट इज डाउन, व्हाट डज फर्स्ट एक्सप्लेन टू मी कि ये क्या है। हिंदी एंड इंग्लिश, चार फॉरवर्ड। मैं, मेरा दिल, अरे इधर देखिए, मेरा दिल, मेरा दिल आपके पास,
0: दिल
7: कम ओके हमारी तो आप भाई उस साइड कर रहे थे। जस्ट FYI, दिल चाहता तीन शब्द है, दिल चाहता है फुल स्टॉप। चलो
8: डिस्क्वालीफाई,
7: नो नॉट डिस्क्वालीफाई, वन वर्ड हिंदी, आधा आधा, उस वर्ड पहला वर्ड का बॉर्डर बंटवारा, नहीं वो भी दो है, बंटवारा 1947। Yes. Oh, thank you. Hindi. Four words. Jao.
9: Par
7: har ne. Kalo na ho. Kalo na ho.
0: अच्छा, अब हम क्योंकि यहाँ पर हम एक बहुत ही ब्यूटीफुल थॉट के साथ, जो सर की तरफ से सजेशन के तौर पर दिया गया है कि 15 अगस्त को एक त्योहार के रूप में मनाया जाए, 14 को आप लोगों की फिल्म आ रही है,
3: नेशनल फेस्टिवल,
0: नेशनल फेस्टिवल के रूप में मनाया जाए, और उस समय यह भी होगा कि केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया में इतनी भारतीयों की आबादी है कि पता चला हर जगह ये उत्सव मनाया जा रहा हो, और उस समय आप लोगों की फिल्म आ रही है। एक बहुत सीरियस मैसेज है या फिर एक ऐसा मैसेज जिसे लोग उस त्योहार के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं?
3: बिल्कुल एंजॉय कर सकते हैं, और सोचने पर मजबूर करेगा, कोई सीरियस मैसेज नहीं है, सोचने पर मजबूर करेगा।
10: ये हिंदुओं का मुल्क है, हिंदुओं का।
11: खुदा के लिए यहां से निकलिए।

0: अब ये घर हमारा है, यहाँ की हर चीज हमारी है।
1: अम्मा यहाँ कोई है?
2: कौन है आप?
3: तुमको जी, तुम कौन हो जो मेरे कार्यज खुश है?
2: कस्टोडियन वालों ने ये मकान हमें अलॉट किया है, आप यहाँ नहीं रह सकती।
3: मैं कितने नहीं जाना, ये मेरा कार्य है।
4: पर मैनू लग रहा है कि तैनू मुसलमान से ज्यादा हिंदू की फिक्र है।
0: आप मुझे धमका रहे हैं?
4: पंगा लेना है?
0: इरादा तो नहीं है, पर एतराज भी नहीं है।
5: ये हिंदू बुढ़िया सब लोग हिंदू धर्म का पाठ पढ़ा रही है। मंदिर भी बना रखा है, मंदिर तोड़ दो।
2: मंदिर तोड़ना इस्लाम नहीं है।
6: हमारा खतरा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है।
7: क्रिश्चियन के लिए ईमान तो नहीं छोड़ा जाता।
6: कोई मजहब बुरा नहीं होता है, अच्छा बुरा आदमी होता है।
8: तू उस्ताद को नहीं जानता
6: और तू मेरे बाप को नहीं जानता। मैं घर देखूंगी मैं सरहद सीधा घुस के मारेंगे।
9: कैसा लगा? आज कोस्ट गार्ड्स के बीच में आके इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करके उनके साथ क्या यादें क्या बातें आप लेकर जा रहे हैं। और इनफैक्ट मैं उससे ठीक पहले उनियाल सर आपसे भी चाहूंगी कि आप थोड़ा सा बताएं कोस्ट गार्ड्स किस तरीके से अपने ऑपरेशंस को कितने जुझारू कितने जुनून के साथ करते हैं।
10: धन्यवाद श्वेता जी, आज हम सब आज़ादी के इस पर्व पर यहाँ सम्मिलित हैं और कोस्ट गार्ड अपने 50 वर्षों की गौरवशाली गाथा को याद कर रहा है। एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन मैम जो लगभग 7 छोटे जहाज़ों से 1977-78 में शुरू हुई थी, आज एक वर्ल्ड क्लास मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन बन गई है। लोग हमसे पूछते हैं आप समुद्र में क्या करते हैं, मैं उनसे बताना चाहूँगा कि हमारे लिए समुद्र में हर दिन एक ऐसा दिन है जहाँ हम किसी न किसी चीज़ से लड़ रहे होते हैं। तो हमारा जो मोटो है, जो वाक्य ध्येय वाक्य है वयम रक्षामः, उसकी पूर्ति करने के लिए हर दिन हमारे जहाज लगभग 50-55 जहाज और 10-12 एयरक्राफ्ट समुद्र की लहरों पे और आकाश की बुलंद ऊंचाइयों पे मैम निगरानी करते रहते हैं। और जहां तक ऑपरेशन की आप बात कर रहे हैं तो उसके लिए मुझे याद आता है 2004 की वो सुनामी मैम, मैं अंडमान में एक शिप पर पोस्टेड था और सुबह अर्ली मॉर्निंग में नींद में ही था। हम भूकंप के बहुत बड़े बड़े झटकों से हमारी नींद खुली तो हमने बाहर देखा कि समुंदर जो है वो बिल्कुल नीला से बिल्कुल ब्राउनिश हो चुका है और बहुत हैवी करंट सी के अंदर फ्लो कर रहा है। सारे कम्युनिकेशन नेटवर्क डाउन हो चुके थे। बिना देर करे हुए हम अपने जहाज के थ्रू कैंबल बे सारी रसद सामग्री और मेडिकल एड लेके पहुंचे। जब हम वहां पहुंचे तो वहां का मंजर जो था बिल्कुल दिल दहलाने वाला था। तो हमारा जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो दिन रात चला। तब मुझे इस बात में बहुत ही गौरव हुआ और बहुत ही इमोशनली सेटिस्फैक्शन मिला जब हमें एक ऐसी नज़र मिल जाती थी जो जिसके अंदर ये उम्मीद रहती थी कि भाई यस समबडी हैज कम, तटरक्षक हैव कम और अब हम जो है हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है और इसी ध्येय वाक्य को हम हमेशा पूरा करने में लगे रहते हैं, वयम रक्षामः का। थैंक यू मैडम, धन्यवाद।
9: तालियां आपने लिए।
11: सनी सर, अगर आपकी परमिशन हो तो आपके 2.5 किलो के हाथ का दमखम इस सभा के सामने आज थोड़ा आजमाना चाहेंगे।
0: क्यों मेरे साथ पंगा लेना चाहते हैं सब लोग?
11: मतलब हमारे सौभाग्य की बात होगी इस जोड़ आजमा।
0: चलिए हाथ मिला लेते हैं, पंगा नहीं लेते।
9: मुकाबला बराबरी पर खत्म हुआ और इसी के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए, आप सबका बहुत धन्यवाद। अच्छा वो तो आपकी देखिए शुरुआत से लेकर अभी तक की तस्वीरें लेकर आई हैं।

0: in association with
1: Sera Sanitaryware. It's your moment of Sera. E3 HDMR. Ye rishta lamba chalega.
2: जनता ने जिनको तीन तीन बार नकारा, अब वो गाली गलौज पर उतर आए हैं, ओछी राजनीति पर उतर आए हैं। राहुल गांधी जी की भाषा अमर्यादा और अहंकार से भरी नजर आती है। राजनीति में मतभेद लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन अशोभनीय टिप्पणी, संवैधानिक पदों का अपमान, ये एक आदत सी बन गई है राहुल गांधी जी की। अब तो लगता है राहुल गांधी जी का पालन पोषण और संस्कार, इस पे प्रश्न चिन्ह उठने लगे हैं। कांग्रेस की मानसिकता उजागर हो रही है, भारत की गौरवशाली राजनीतिक परंपरा रही है, और इस गौरवशाली राजनीतिक परंपरा का अपमान बार बार कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने किया, विशेष तौर पर राहुल गांधी जी ने किया है। आप कल्पना कीजिए, एक महिला विदेशी राष्ट्रीय अध्यक्ष पर अभद्र, अमर्यादित और ओछी टिप्पणी करना, ये राहुल गांधी जी और कांग्रेस की मानसिकता दिखाती है।
3: प्रधानमंत्री जी हमारे जहां जाते हैं, जिस ढंग से मिलते हैं, राहुल गांधी ने वही तो उठाया था। राहुल गांधी ने तो और कुछ कहा नहीं, किसी और ने कहा हो तो उसकी जिम्मेदारी राहुल गांधी की तो नहीं हो सकती। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, भारत की विदेश नीति इस समय सबसे कमजोर और भारत के हितों के सबसे ज्यादा खिलाफ।
0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
0: In association with
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: आज के सरकार ने कोई राइट टू किसी को हक नहीं दिया। खाने का हक हमने दिया, शिक्षण का हक हमने दिया, काम करने का हक हमने दिया, ये सारी चीजें हमने की। लेकिन फिर भी चंद लोगों को आदत है कि जो नहीं किए वो भी मैं किया ऐसा बोलने का आदत है। ठीक है, उनका कौन सुनेंगे, इतिहास तो गवाह है, इतिहास में लिखा है और लोग भी जानते हैं कौन सा कानून कब बना, किनके लिए बना। तो दोस्तों, आज जो कुछ भी देश में आपको जो डेवलपमेंट दिख रहा है, ये सब कांग्रेस की देन है और कांग्रेस ने ही बहुत कुछ किया और आज 90% देन कांग्रेस की है। कहीं नाम बदलना हमने नहीं किया, हमने इंसान को उसके मासी हालत को बदलने की कोशिश की है, नाम बदलने की कोशिश नहीं की। चुनाव आयोग, न्यायपालिका, विश्वविद्यालय, जांच एजेंसियां और मीडिया सरकार के हस्तक्षेप की चपेट में है, इसीलिए जनता का विश्वास डगमगाया है। इसरो, डीआरडीओ जैसी वैज्ञानिक संस्थाओं से बड़े वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों को रेसिग्नेशन भी देना पड़ रहा है और मैं आपको कहता हूं कि कईयों हमारे साइंटिस्ट इसरो डीआरडीओ छोड़ के भाग रहे, क्योंकि इनकी दबाव ऐसी है, अपने लोगों को भरना चाहते हैं, आरएसएस के लोगों को भरना चाहते हैं।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित भारत का लिया संकल्प। शक्ति की सप्त धारा, युवा महिला शक्ति को जोड़ने का मंत्र, एआई स्किलिंग पर जोर। प्रधानमंत्री ने दिमागी नक्सलियों पर किया प्रहार, कहा देश को नुकसान पहुंचाने वालों की पहचान जरूरी, सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं है जंग।

0: आरोप सोनिया गांधी ने बीच में रोका। कांग्रेस बोली कोई विवाद नहीं, खड़गे जी के लिए कुर्सी लाने को बोला। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने लोकतंत्र में विपक्ष को बताया जरूरी, जिम्मेदारी का भी ख्याल हो। तो बाबा रामदेव ने आंदोलन की दी चेतावनी, का भारी घपला, सड़कों पर आ रहे बच्चे। और देश भर में मना आजादी का जश्न, राज्यों में मुख्यमंत्रियों ने फहराया तिरंगा। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने राजधानी दिल्ली में विकास की रफ्तार बढ़ाने पर जोर दिया।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कहानी 2.0, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। आज कहानी सिर्फ तारीखों की नहीं, आज कहानी उन 80 सालों की है जिन्होंने भारत की तस्वीर बदल दी। 1947 में आजादी के साथ शुरू हुआ सफर, कभी विज्ञान में नई उड़ान बना, कभी खेतों में हरियाली लेकर आया, कभी अंतरिक्ष में तिरंगा पहुंचा, तो कभी खेल के मैदान में दुनिया को चौंकाया। लोकतंत्र से लेकर टेक्नोलॉजी तक, सड़क से लेकर सैटेलाइट तक, भारत ने 80 सालों में लंबा सफर तय किया है। तो आज कहानी में देखिए आजादी के बाद 80 साल और उन 80 कमालों की कहानी जिन्होंने भारत को दुनिया में अलग पहचान दिलाई है।
3: Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge.
4: आजादी मिली तो भारत आजाद जरूर था, लेकिन पूरा एक नहीं था। अंग्रेजों के जाने के बाद

था। ऐसे वक्त में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रियासतों के विलय का अभियान चलाया। कूटनीति, समझदारी और जरूरत पड़ने पर सख्त फैसलों के जरिए ज्यादातर रियासतें भारतीय संघ में शामिल हुई। आज भारत दुनिया की प्रमुख परमाणु शक्तियों में गिना जाता है, लेकिन इसकी नींव आजादी के तुरंत बाद रखी गई थी। 1948 में भारत ने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की शुरुआत की और इसके केंद्र में थे वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा। भाभा का मानना था कि विज्ञान और तकनीक आने वाले भारत की ताकत बनेंगे। परमाणु ऊर्जा को सिर्फ हथियारों तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि बिजली, शोध और वैज्ञानिक विकास से जोड़कर देखा गया। आज बैंकिंग हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन आजादी के शुरुआती सालों में भारत को बैंकिंग व्यवस्था को राष्ट्रीय जरूरतों के मुताबिक मजबूत करना था। 1948 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। बैंकिंग के विस्तार और राष्ट्रीयकरण की नीतियों ने गांवों, छोटे शहरों और आम लोगों तक बैंकिंग सेवाओं की पहुँच बढ़ाने का रास्ता तैयार किया। आजादी के बाद भी भारतीय हॉकी का स्वर्णिम दौर जारी रहा। 1948, 1952, 1956, 1964 और 1980 में भारत ने ओलंपिक गोल्ड जीता। इसके बाद 2021 टोक्यो और 2024 पेरिस में कांस्य पदक ने वापसी का संकेत दिया। वहीं हॉकी वर्ल्ड कप में 1971 में कांस्य, 1973 में रजत और 1975 में भारत ने पाकिस्तान को 2-1 से हराकर पहली बार खिताब जीता। आजादी के वक्त भारतीय सिनेमा अपनी शुरुआती पहचान बना चुका था, लेकिन असली बदलाव इसके बाद तेज हुआ। ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों के दौर में राज कपूर, गुरुदत्त और दिलीप कुमार जैसे कलाकारों ने आम आदमी की कहानियों को पर्दे पर उतारा। फिर रंगीन फिल्मों ने सिनेमा की दुनिया बदल दी। धीरे धीरे तकनीक बदली, कैमरे बदले, कहानी कहने का अंदाज बदला। आज थिएटर के साथ ओटीटी भी सिनेमा का बड़ा मंच है। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, लेकिन एक लोकतांत्रिक गणराज्य के तौर पर भारत को पहली व्यवस्था की जरूरत थी। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और भारत गणराज्य बना। संविधान ने नागरिकों के अधिकार तय किए, सरकार की शक्तियों की सीमाएं तय की और लोकतांत्रिक संस्थाओं की भूमिका स्पष्ट की। संविधान निर्माण में डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की केंद्रीय भूमिका रही। आज देश में बड़े बड़े हाईवे, बांध, बिजली परियोजनाएं और उद्योग दिखाई देते हैं, लेकिन आजादी के तुरंत बाद भारत के सामने गरीबी, बेरोजगारी और खाद्यान्न की कमी जैसी गंभीर चुनौतियां थी। देश को विकास की एक स्पष्ट दिशा चाहिए थी। इसी सोच के साथ 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई। इसमें खेती, सिंचाई और ग्रामीण विकास की परियोजना को प्राथमिकता दी गई। आज भारतीय इंजीनियर दुनिया की बड़ी कंपनियों से लेकर अंतरिक्ष और तकनीक तक हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना चुके हैं, लेकिन इस तकनीकी ताकत की शुरुआती बड़ी नींव 1951 में पड़ी, जब आईआईटी खड़गपुर अस्तित्व में आया। इसके बाद देश में आईआईटी जैसे संस्थानों का विस्तार हुआ और उच्च तकनीकी शिक्षा का एक मजबूत नेटवर्क तैयार हुआ। भारत में पहली बार आम चुनाव 1951-52 में हुआ। आजाद भारत के लोकतंत्र की ये पहली और बेहद बड़ी परीक्षा थी। करीब 17 करोड़ मतदाता इस चुनाव के लिए पात्र थे। देश के गांवों, कस्बों और शहरों में मतदान केंद्र बनाए गए और लोगों ने पहली बार अपने प्रतिनिधि चुनने के लिए वोट डाला। यहीं से भारत के लोकतांत्रिक सफर की मजबूत शुरुआत हुई। भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत 1920 के दशक में हुई, लेकिन 1936 में ऑल इंडिया रेडियो यानी AIR के रूप में इसकी औपचारिक शुरुआत हुई। आजादी के बाद आकाशवाणी ने देश को जोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई। 1956 में आकाशवाणी नाम आधिकारिक तौर पर अपनाया गया। 1957 में विविध भारती शुरू हुई, जिसने फिल्मी संगीत को घर घर पहुँचाया। आज भारत के हर राज्य की अपनी भाषा, संस्कृति और पहचान है।
लेकिन आज

0: आजादी के बाद राज्यों की सीमाएं तय करना एक बड़ी चुनौती थी। कई इलाकों में भाषा के आधार पर अलग राज्य की मांग उठ रही थी। आंदोलन हुए और सरकार पर दबाव बढ़ा। आखिरकार 1956 में राज्यों के पुनर्गठन की बड़ी प्रक्रिया शुरू हुई और भाषाई आधार पर राज्यों की सीमाओं को नया रूप दिया गया। 1956 में भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना था। आज कंप्यूटर के बिना जिंदगी की कल्पना मुश्किल है, लेकिन भारत में इसकी शुरुआत करीब 70 साल पहले हुई थी। 1956 में कोलकाता के इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट यानी ISI में HEC-2M नाम का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर लगाया गया। 1984 में C-DOT की स्थापना हुई, जिसने देश में स्वदेशी तकनीक विकसित करने का काम किया। आज भारत में एम्स का नाम देश की बेहतरीन चिकित्सा शिक्षा, इलाज और मेडिकल रिसर्च से जुड़ा है, लेकिन इसकी शुरुआत 1956 में हुई, जब नई दिल्ली में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स की स्थापना की गई। एम्स ने डॉक्टरों और मेडिकल विशेषज्ञों की नई पीढ़ी तैयार करने में बड़ी भूमिका निभाई। आगे चलकर देश के अलग अलग हिस्सों में एम्स जैसे संस्थानों का विस्तार हुआ। ১৯৫৮ में बनी DRDO ने भारत को रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भर बनाने की लंबी यात्रा शुरू की। शुरुआत में इसका फोकस देश की जरूरतों के मुताबिक हथियार और सैन्य तकनीक विकसित करने पर था। इसी कोशिश ने आगे चलकर अग्नि और पृथ्वी मिसाइल, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, पिराका रॉकेट सिस्टम, तेजस विमान, रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैसी तकनीकों को जन्म दिया। ১৯৫৯ आजादी के महज 12 साल बाद भारत ने एक नई दुनिया में कदम रखा, टेलीविजन की दुनिया में। 15 सितंबर 1959 को दिल्ली में भारत का पहला टीवी प्रसारण शुरू हुआ। 1965 में रोजाना टीवी सेवा शुरू हुई और धीरे धीरे इसका दायरा बढ़ता गया। 1972 में मुंबई और अमृतसर तक प्रसारण पहुंचा। यहीं से दूरदर्शन के राष्ट्रीय सफर की असली शुरुआत हुई। आजादी के 14 साल बाद भी गोवा पुर्तगाली शासन के अधीन था। बातचीत के तमाम प्रयासों के बाद दिसंबर 1961 में भारत ने सैन्य कार्रवाई का फैसला किया। ऑपरेशन विजय के तहत सेना, नौसेना और वायुसेना ने मिलकर गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराया। गोवा की मुक्ति ने दिखाया कि भारत अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सवाल पर निर्णायक कदम उठा सकता है। केरल के थुम्बा से पहला साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया गया। मकसद था वायुमंडल और अंतरिक्ष से जुड़ी वैज्ञानिक जानकारी जुटाना। सुविधाएं कम थी, लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों का हौसला बड़ा था। थुम्बा का ये छोटा प्रयोग आगे आने वाली बड़ी अंतरिक्ष उपलब्धियों का शुरुआती अध्याय बना। आजादी के बाद भारत को सिर्फ लोकतंत्र नहीं बल्कि विकास की मजबूत नींव भी चाहिए थी। इसी सोच का बड़ा प्रतीक बनी भाखड़ा नांगल परियोजना। सतलुज नदी पर बनी इस विशाल परियोजना का मकसद था सिंचाई के लिए पानी, बिजली का उत्पादन और खेती उद्योग को नई रफ्तार देना। 22 अक्टूबर 1963 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बांध राष्ट्र को समर्पित किया था। आज भारत दुनिया के बड़े खाद्यान्न उत्पादक देशों में है, लेकिन एक दौर ऐसा था जब देश को अनाज के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। उन्नत बीज, सिंचाई, उर्वरक और आधुनिक कृषि तकनीक के इस्तेमाल से उत्पादन बढ़ने लगा। M.S. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। इसके बाद पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उत्पादन तेजी से बढ़ा। 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर युद्ध छिड़ गया। इसकी शुरुआत पाकिस्तान की ओर से जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत घुसपैठ से हुई। भारत ने इसका जवाब दिया और संघर्ष कश्मीर से बढ़कर अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक पहुंच गया। दोनों देशों के बीच टैंक, तोप और वायुसेना के जरिए भीषण लड़ाई हुई। 1966 में भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ।
1: Herself, Rita Faria, the medical student from Bombay, the first Indian girl ever to wear a swimsuit in a beauty contest, and the first from her country to win this most coveted title.
0: 1966 में ही रीता फारिया ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीतकर इतिहास रचा था। इसके बाद भारतीय सुंदरियों ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लगातार अपनी जगह बनाई। 1994 में सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स बनी। उसी साल ऐश्वर्या राय ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता। इसके बाद 1997 में डायना हेडन, 1999 में युक्ता मुखी और 2000 में प्रियंका चोपड़ा ने मिस वर्ल्ड का ताज जीता। 2000 में लारा दत्ता मिस यूनिवर्स बनी। 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की स्थापना हुई। विक्रम साराभाई की सोच थी कि अंतरिक्ष तकनीक का फायदा आम भारतीय तक पहुंचना चाहिए। संचार, मौसम, शिक्षा और दूर दराज के इलाकों को जोड़ने के लिए सैटेलाइट तकनीक का इस्तेमाल इसी सोच का हिस्सा था। आगे चलकर यही संगठन भारत को चांद और मंगल तक ले गया। में ही 14 बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। मकसद था बैंकिंग को आम आदमी, किसानों, छोटे कारोबारियों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जोड़ना। इसके बाद बैंक शाखाओं का विस्तार गांवों और छोटे शहरों तक हुआ। बैंकिंग व्यवस्था देश के विकास कार्यक्रमों का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। एक दौर था जब भारत में दूध की कमी थी। देश को डेयरी उत्पादों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। इसी तस्वीर को बदलने के लिए 1970 में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत हुई। इसके पीछे अमूल के सहकारी मॉडल और वर्गीज कुरियन की अहम भूमिका रही। धीरे धीरे गांवों की अर्थव्यवस्था को नई ताकत मिली और दूध उत्पादन तेजी से बढ़ा। यही अभियान आगे चलकर श्वेत क्रांति कहलाया और इसके जनक वर्गीज कुरियन को माना गया। पूर्वी पाकिस्तान में हिंसा और मानवीय संकट के बीच लाखों शरणार्थी भारत पहुंचे। दिसंबर 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। भारतीय सेना ने पूर्वी मोर्चे पर निर्णायक अभियान चलाया और महज 13 दिनों में पाकिस्तानी सेना ने ढाका में आत्मसमर्पण कर दिया। बांग्लादेश का जन्म हुआ और दक्षिण एशिया का भूगोल बदल गया। एक वक्त था जब भारत के बाहर खड़ा स्कूटर सिर्फ गाड़ी नहीं पूरे परिवार की पहचान हुआ करता था। 1972 में बजाज ऑटो ने अपना मशहूर चेतक स्कूटर बाजार में उतारा। धीरे धीरे चेतक घर घर पहुंचा और हमारा बजाज सिर्फ विज्ञापन नहीं मिडिल क्लास की भावना बन गया। इसकी मांग इतनी बढ़ी कि लोगों को कई कई साल इंतजार करना पड़ता था। 1990 तक आते आते इसकी वेटिंग खत्म होने लगी। लेकिन फिर मोटरसाइकिलों का दौर आया और स्कूटर की बादशाहत खत्म होने लगी। 2005 में पुराने चेतक का सफर थम गया। आज स्कूटर की जगह स्कूटी ने ले ली है। शिकार और जंगलों के घटते क्षेत्र के कारण बाघों के अस्तित्व पर खतरा बढ़ रहा था। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया। बाघों के साथ उनके प्राकृतिक आवास को बचाने पर जोर दिया गया। इस अभियान ने भारत के वन्य जीव और पर्यावरण संरक्षण की सोच को नई ताकत दी। राजस्थान के पोखरण में 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। इसे शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट के तौर पर पेश किया गया, लेकिन इस परीक्षण ने दुनिया को भारत की वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमता का एहसास करा दिया। भारत ने साबित किया कि वो परमाणु तकनीक के क्षेत्र में अपने दम पर आगे बढ़ सकता है। 1975 में भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष में पहुंचा। इसका प्रक्षेपण सोवियत संघ की मदद से हुआ, लेकिन इसका डिजाइन और निर्माण भारत में हुआ था। आर्यभट्ट ने भारत को उपग्रह तकनीक और अंतरिक्ष विज्ञान का व्यावहारिक अनुभव दिया। यही अनुभव आगे की बड़ी अंतरिक्ष उपलब्धियों की नींव बना। एक दौर था जब देश में खबरें अखबार और रेडियो के जरिए लोगों तक पहुंचती थी, लेकिन 1975 में पत्रकारिता की दुनिया में एक नया नाम आया, इंडिया टुडे। एक मैगजीन से शुरू हुआ ये सफर धीरे धीरे एक बड़े मीडिया समूह में बदल गया। आज इंडिया टुडे को 50 साल पूरे हो गए। 50 साल में इंडिया टुडे ग्रुप के पास आज तक जैसा नंबर वन न्यूज चैनल है। इंडिया टुडे नाम का बेहतरीन इंग्लिश चैनल है। वक्त के साथ इंडिया टुडे मैगजीन से आगे बढ़कर टीवी, डिजिटल और कई दूसरे प्लेटफॉर्म तक पहुंचा। इंडिया टुडे ग्रुप के मुताबिक समूह की शुरुआत 1975 में एक मैगजीन से हुई थी। आज इंडिया टुडे सिर्फ एक मैगजीन का नाम नहीं बल्कि भारतीय मीडिया की करीब 5 दशक लंबी यात्रा की एक बड़ी पहचान है। आपातकाल के दौर में 1976 में 42वां संविधान संशोधन पारित हुआ। प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए। संविधान और संस्थाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए। बाद में इसके कई प्रावधानों में परिवर्तन भी हुआ, लेकिन 42वां संशोधन भारतीय संवैधानिक इतिहास का एक बेहद महत्वपूर्ण अध्याय बन गया।
2: 3, 2, 1, 0
0: भारत अब अपनी लॉन्चिंग क्षमता चाहता था। SLV-3 कार्यक्रम इसी लक्ष्य की दिशा में बड़ा कदम था। 1979 की शुरुआती असफलता के बाद वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी। आखिरकार 18 जुलाई 1980 को SLV-3 ने रोहिणी उपग्रह को सफलतापूर्वक कक्षा में पहुंचाया। ये वो पल था जब भारत ने अपने स्वदेशी रॉकेट से अपना उपग्रह अंतरिक्ष में पहुंचाया। यहीं से PSLV और GSLV जैसी भविष्य की सफलताओं की नींव मजबूत हुई। एक वक्त था जब कार खरीदना हर भारतीय के बस की बात नहीं थी, लेकिन फिर सड़कों पर एक ऐसी कार उतरी जिसने पूरे देश की तस्वीर बदल दी। मारुति ने भारत में कार को सिर्फ अमीरों की चीज नहीं रहने दिया, बल्कि मध्यम वर्ग के सपनों तक पहुंचाया। मारुति उद्योग की शुरुआत 1981 में हुई और 1983 में पहली मारुति 800 बाजार में आई। छोटी, किफायती और आसान रखरखाव वाली इस कार ने तेजी से लोगों के बीच जगह बनाई। 1982 में इनसेट सिस्टम की शुरुआत ने भारत की संचार व्यवस्था को नई ताकत दी। पहली बार बड़े पैमाने पर सैटेलाइट तकनीक को संचार, मौसम और टीवी प्रसारण से जोड़ा गया। दूरदर्शन के सिग्नल दूर दराज के गांवों तक पहुंचने लगे। मौसम की निगरानी बेहतर हुई और संचार के नए रास्ते खुले। इनसेट ने साबित किया कि अंतरिक्ष सिर्फ वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की जिंदगी बदलने का माध्यम भी हो सकता है। इंग्लैंड में कपिल देव की कप्तानी वाली भारतीय टीम से किसी को विश्व कप जीतने की उम्मीद नहीं थी। सामने दो बार की चैंपियन वेस्टइंडीज थी, लेकिन फाइनल में भारत ने वेस्टइंडीज को हराकर पहली बार विश्व कप अपने नाम किया। ये सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं थी, इस जीत ने भारत में क्रिकेट को जुनून बना दिया। करोड़ों युवाओं के लिए क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, सपना बन गया। उन्नीस में राकेश शर्मा भारत और सोवियत संघ के साझा अंतरिक्ष मिशन के तहत अंतरिक्ष में पहुंचे। करीब 8 दिन अंतरिक्ष में बिताकर वो पहले भारतीय नागरिक बने जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की। जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनसे पूछा कि अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है, तो उनका जवाब था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। उन्नीस सौ चौरासी में सियाचिन को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ रहा था। पाकिस्तान सियाचिन इलाके में अपनी मौजूदगी और दावे को मजबूत करने की कोशिश कर रहा था। 13 अप्रैल 1984 को भारत ने ऑपरेशन मेघदूत शुरू किया। भारतीय सेना और वायुसेना ने बेहद ऊंचाई पर सैनिकों को पहुंचाकर सियाचिन पर अपना कब्जा मजबूत किया। भारत में मेट्रो की शुरुआत कोलकाता से हुई। शहर में बढ़ती भीड़ और ट्रैफिक को देखते हुए 1972 में मेट्रो बनाने का काम शुरू किया गया। करीब 12 साल की मेहनत के बाद 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में पहली मेट्रो चली। इसके बाद धीरे धीरे इसका नेटवर्क बढ़ता गया। कोलकाता की ये मेट्रो देश के दूसरे शहरों के लिए मिसाल बनी। एक वक्त था जब भारत को लंबी दूरी की मिसाइल तकनीक के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। इसी तस्वीर को बदलने के लिए 1983 में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू हुआ। इस मिशन की अगुवाई वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और उनकी टीम ने की। कई साल के रिसर्च और परीक्षण के बाद 1989 में अग्नि का पहला परीक्षण हुआ। इसके बाद अग्नि परिवार में अलग अलग रेंज की मिसाइलें विकसित हुई। 1991 में भारत गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा था। विदेशी मुद्रा भंडार बेहद कम था और लाइसेंस परमिट की जटिल व्यवस्था ने अर्थव्यवस्था को जकड़ रखा था। इसी संकट के बीच प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आर्थिक सुधारों का रास्ता चुना। लाइसेंस व्यवस्था में बदलाव हुआ, निजी क्षेत्र के लिए रास्ते खुले और विदेशी निवेश को बढ़ावा मिला।
2: वक्त एक ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे आर्थिक सुधार ने कैसे बदल दी देश की तस्वीर।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: Papa.
1: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
2: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
1: छक्का?
2: सब कैशलेस हो गया है।
1: हाँ,
3: टाटा AIG है तो भरोसा है।
4: जिस मिट्टी में फसल उगती है उसी में भारत की स्वतंत्रता की खुशबू है। इस स्वतंत्रता दिवस आइए उन किसानों का सम्मान करें जो हर दिन देश को मजबूत बनाते हैं। मेरे और क्रिस्टल परिवार की ओर से आपके और आपके परिवार को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
5: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
6: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
7: इन एसोसिएशन विद हिंद, बड़े आराम से शारदा यूनिवर्सिटी। द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी। वेयर आर यू?
8: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
7: विमल, बोलो जुबा केसरी।
9: वेट, लाइफस्टाइल के लिए 10 अलग पेजेस क्यों फॉलो करना? हेल्थ, फिटनेस, योगा, मेंटल वेलनेस, सब कुछ एक ही जगह, फिट तक। सिंपल टिप्स, एक्सपर्ट इंसाइट्स, रियल कॉन्वर्सेशंस। लाइफ अपग्रेड करो इजी वे। वॉच ओनली ऑन फिट तक यूट्यूब।
10: भिखारियों का मनोविज्ञान क्या है?
11: तैयारी तुम भी कर रहे हो क्या?
10: नहीं सर।
11: 12th किससे की हो?
10: 12th सर मेरा PCM से रहा।
11: कंपाउंड क्या होता
10: है? बेसिकली जो एक्युमुलेटेड चीजें रहती हैं उसके ऊपर।
11: यही है भीख मंगे वाली क्वालिटी। तुम पूछ रहे थे ना, यही है, यही। एक मिनट,
10: ये जो आपका तरीका बहुत सर बहुत अच्छा नहीं है। इस तरीके से समझाने का स्टूडेंट्स को, इसे सर ह्यूमिलिएशन कहते हैं।
11: देख भाई, अपनी गारंटी पे छेड़ना

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: शादी का किचन महके जहाँ गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ
1: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
2: हमने आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मेट्रो का विस्तार किया, हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ताकत दी। जिस स्पीड से काम, जिस स्केल पर काम किया, ये सब, ये रफ्तार, ये विस्तार, ये अचीवमेंट आजादी के बाद पहली बार पिछले एक दशक ने देखा है। और जब इतनी सारी सिद्धियां हमारे सामने हो, इतनी तेज गति दिखाई देती हो, देशवासियों का सामर्थ्य पल पल प्रकट होता है, तब तो 2047 में विकसित भारत बनने का संकल्प कभी भी अधूरा नहीं रह सकता है। ये सारे आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि हम आगे बढ़ने वाले हैं, मेरे प्यारे देशवासियों। लेकिन उसके लिए आत्मविश्वास की जरूरत होती है, आत्मगौरव की जरूरत होती है, और साथ साथ आत्मनिर्भर भारत होना भी बहुत जरूरी होता है। और इसलिए बीते वर्षों में हमारा कन्विक्शन रहा है कि भारत को हमें अब दूसरे देशों पर निर्भर रह करके नहीं जीना, हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। दुनिया में बहुत कुछ मिलता है, सस्ता मिलता है, जल्दी मिल सकता है, लेकिन उससे हमारा सामर्थ्य तैयार नहीं होता, न हमारे सामर्थ्य की कसौटी होती है। और इसलिए हमें भी अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है, अपने हितों की सुरक्षा हमें खुद को करनी है। और इसलिए आत्मनिर्भर भारत का संकल्प बहुत दृढ़ता के साथ हम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: नई सदी में भारत ने विकास की रफ्तार को और ज्यादा तेज किया। 3 नए राज्यों के गठन से लेकर आईटी क्रांति तक देश ने अपनी नई पहचान बनाई। जीएसएलवी और चंद्रयान ने अंतरिक्ष में महत्वाकांक्षा बढ़ाई और सड़कों के जरिए देश को जोड़ने का काम शुरू हुआ। आरटीआई और मनरेगा ने आम आदमी को अधिकार और रोजगार का सहारा दिया। आधार और शिक्षा के अधिकार ने नई व्यवस्था की नींव रखी, यानी कि 21वीं सदी के पहले ही दशक में भारत तेजी से बदल रहा था और अब बारी थी उस भारत की जो दुनिया को अपनी नई ताकत दिखाने वाला था।
1: शुरुआत में निराशा, लेकिन बाद में सफलता। भारत ने 1994 में पीएसएलवी की सफल उड़ान हासिल की। यह भारत की भरोसेमंद उपग्रह प्रक्षेपण क्षमता की दिशा में बड़ा कदम था। आगे चलकर पीएसएलवी ने देश और विदेश के कई उपग्रह अंतरिक्ष में पहुंचाए। यही लॉन्च क्षमता आगे चलकर चंद्रयान और मंगलयान जैसे मिशनों की मजबूत नींव बनी। भारत में मोबाइल फोन सेवा की शुरुआत 31 जुलाई 1995 को हुई थी। उस वक्त पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने कोलकाता से दिल्ली में केंद्रीय संचार मंत्री सुखराम को पहली बार मोबाइल कॉल किया था। यही शुरुआत आगे चलकर मोबाइल क्रांति में बदल गई। में भारत में सार्वजनिक इंटरनेट सेवा शुरू हुई। शुरुआत में कनेक्शन महंगे और धीमे थे, लेकिन ईमेल और वेबसाइटों के साथ एक नई डिजिटल दुनिया खुलने लगी। धीरे धीरे इंटरनेट कारोबार शिक्षा, संचार और मनोरंजन का बड़ा माध्यम बन गया। कुछ लोगों तक सीमित ये तकनीक आगे चलकर करोड़ों भारतीयों की जिंदगी का हिस्सा बन गई। पश्चिमी तट के दुर्गम पहाड़ों, गहरी घाटियों और नदियों के बीच रेल लाइन बिछाना कभी लगभग असंभव माना जाता था, लेकिन 1988 में कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन की स्थापना के बाद इस चुनौती को मिशन की तरह लिया गया। ई श्रीधरन के नेतृत्व में इंजीनियरों ने महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक को जोड़ने वाली करीब 741 किलोमीटर लंबी रेल लाइन तैयार की। हजारों पुल और 91 सुरंगों से गुजरती ये परियोजना इंजीनियरिंग का शानदार उदाहरण बनी। मई 1998 में भारत ने पोखरण में कई परमाणु परीक्षण किए। बेहद गोपनीय तरीके से किए गए इन परीक्षणों ने दुनिया को भारत की रणनीतिक क्षमता का स्पष्ट संदेश दिया। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय दबाव और प्रतिबंध भी सामने आए, लेकिन भारत ने अपनी सुरक्षा और रणनीतिक जरूरतों को प्राथमिकता दी। पोखरण सेकंड ने भारत की रक्षा नीति और वैश्विक पहचान दोनों को प्रभावित किया। भारत और रूस ने 12 फरवरी 1998 को ब्रह्मोस के लिए समझौता किया। 12 जून 2001 को ओडिशा के चांदीपुर से पहली सफल टेस्ट फायरिंग हुई। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों में ये तैनात है। 2022 में फिलीपींस ने करीब $37.5 करोड़ का ब्रह्मोस सौदा किया। उन्नीस सौ 1999 में करगिल की ऊंची चोटियों पर घुसपैठ के बाद भारत ने ऑपरेशन विजय शुरू किया। करीब 60 दिनों तक भारतीय जवानों ने बेहद मुश्किल हालात में लड़ाई लड़ी। दुर्गम पहाड़, माइनस तापमान और करीब 16,000 से 18,000 फीट की ऊंचाई के बावजूद जवानों ने टोलोलिंग से टाइगर हिल तक एक एक मोर्चा वापस हासिल किया। 26 जुलाई 1999 को भारत ने करगिल युद्ध में जीत की घोषणा की। इस युद्ध में 527 भारतीय सैनिक शहीद हुए, जबकि 1,363 जवान घायल हुए। साल 2000 में भारत के नक्शे पर 3 नए राज्यों ने जन्म लिया, उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़। लंबे समय से अलग राज्य की मांग कर रहे लोगों को अपनी अलग पहचान और प्रशासन का नया ढांचा मिला। उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड बना, बिहार से झारखंड और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ। तीनों राज्यों का गठन भारतीय संघीय व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव था। भारत भारत ने लड़ाकू विमान के मामले में आत्मनिर्भर बनने का सपना 1983 में शुरू हुए लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी LCA कार्यक्रम के साथ देखा था, लेकिन सपना पूरा हुआ 2001 में, जब पहली बार हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और भारतीय वैज्ञानिकों की मेहनत की वजह से तेजस ने 2001 में पहली उड़ान भरी। 2016 में भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ। आज स्कूल जाना बच्चों के जीवन का सामान्य हिस्सा लगता है, लेकिन भारत में लंबे समय तक लाखों बच्चे स्कूल से बाहर रहे। इसी चुनौती से निपटने के लिए सर्व शिक्षा अभियान को बड़े राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में आगे बढ़ाया गया। मकसद था प्राथमिक शिक्षा की पहुंच बढ़ाना और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को स्कूल से जोड़ना।

0: दिल्ली की बढ़ती आबादी और ट्रैफिक के बीच एक ऐसे सार्वजनिक परिवहन की जरूरत थी जो तेज, सुरक्षित और भरोसेमंद हो। इसी सोच के साथ 1995 में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी DMRC की स्थापना हुई। केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार की साझेदारी में बनी इस परियोजना का नेतृत्व ई श्रीधरन ने किया। 25 दिसंबर 2002 को शाहदरा से 30,000 के बीच पहली मेट्रो चली। इसके बाद दिल्ली NCR में मेट्रो का नेटवर्क लगातार बढ़ता गया। लोकतंत्र में सरकार जनता के लिए काम करती है, लेकिन सरकार क्या कर रही है, पैसा कहां खर्च हो रहा है और फैसले कैसे लिए जा रहे हैं, ये जानना भी नागरिक का अधिकार है। इसी सोच ने सूचना के अधिकार की मांग को मजबूत किया। सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की कोशिश शुरू हुई। इसका असर आगे चलकर 2005 के सूचना का अधिकार कानून के रूप में सामने आया। गांव में अगर रोजगार नहीं है तो परिवार के सामने सबसे बड़ा सवाल होता है, कमाई कहां से होगी। इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए 2005 में मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम आया। इसके तहत ग्रामीण परिवारों को एक साल में कम से कम 100 दिनों के अकुशल मजदूरी वाले रोजगार की कानूनी गारंटी दी गई। साल 2007 में भारतीय क्रिकेट के लिए एक नए युग की शुरुआत हुई। दक्षिण अफ्रीका में पहली बार T20 वर्ल्ड कप खेला गया और युवा खिलाड़ियों से सजी महेंद्र सिंह धोनी की टीम ने इतिहास रच दिया। फाइनल में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से हुआ। भारत ने 5 रन से जीत दर्ज कर पहली बार T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम की। भारत ने अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजे, रॉकेट बनाए और लॉन्चिंग की क्षमता विकसित की, लेकिन अगला सपना था धरती से करोड़ों किलोमीटर दूर चांद तक पहुंचना। 2008 में भारत ने चंद्रयान 1 लॉन्च किया। ये भारत का पहला चंद्र मिशन था। मिशन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में चांद पर पानी के अणुओं से जुड़े महत्वपूर्ण संकेतों की खोज शामिल थी। भारत जैसे विशाल देश में हर व्यक्ति की एक ऐसी पहचान हो जिसे अलग अलग सरकारी और सार्वजनिक सेवाओं से जोड़ा जा सके, ये काम आसान नहीं था। लेकिन 2009 में आधार परियोजना की शुरुआत हुई। इसका उद्देश्य देश के निवासियों को एक विशिष्ट पहचान संख्या देना था। आगे चलकर आधार दुनिया की सबसे बड़ी बायोमेट्रिक पहचान प्रणालियों में शामिल हुआ। उंगलियों के निशान और आंखों की पुतली जैसी बायोमेट्रिक जानकारी के आधार पर पहचान सत्यापन की व्यवस्था विकसित की गई। देश में स्कूलों की संख्या बढ़ रही थी, लेकिन सवाल था क्या हर बच्चे को शिक्षा की गारंटी मिल रही है। इसी सवाल का जवाब बना शिक्षा का अधिकार कानून। 2009 में कानून पारित हुआ और 2010 से लागू हुआ। इसके तहत 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को कानूनी अधिकार बनाया गया।
1: ऐसा लग रहा है जैसे भीम की ध्वनि।
0: 2010 में दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन हुआ। भारत के लिए ये सिर्फ खेल प्रतियोगिता नहीं थी, बल्कि दुनिया के सामने अपनी आयोजन क्षमता दिखाने का बड़ा मौका था। भारतीय खिलाड़ियों ने भी खेलों में शानदार प्रदर्शन किया और पदक तालिका में 2रा स्थान हासिल किया। इस आयोजन ने भारत की अंतर्राष्ट्रीय खेल मेजबानी की क्षमता को चर्चा में ला लिया। कभी रुपए के लिए RSRE या अलग अलग भाषाओं में अलग अलग संक्षिप्त रूप इस्तेमाल होते थे। फिर भारत ने अपनी मुद्रा को डॉलर, पाउंड और येन जैसी अलग पहचान देने का फैसला किया। 2010 में रुपए के नए प्रतीक को मंजूरी मिली। इसे डी उदय कुमार ने डिजाइन किया था। ये डिजाइन देवनागरी के र और रोमन आर का मेल है। 15 जुलाई 2010 को इसे मंजूरी दी गई और बाद में इसे यूनिकोड में भी जगह मिली। '83 के बाद भारत को वनडे विश्व कप जीतने के लिए 28 साल इंतजार करना पड़ा। 2011 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारतीय टीम ने ये इंतजार खत्म किया। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए फाइनल में भारत ने श्रीलंका को हरा दिया। गंभीर की शानदार 97 रन की पारी और कप्तान धोनी के नाबाद 91 रन की बदौलत जीत मिली।
2: चौबीस सितंबर 2014 वो तारीख जब भारत ने अंतरिक्ष की दुनिया में इतिहास रच दिया। मंगलयान सफलतापूर्वक मंगल की कक्षा में पहुंच गया। खास बात ये थी कि भारत अपने पहले ही प्रयास में मंगल की कक्षा तक पहुंचने वाला पहला देश बना। इस कामयाबी ने पूरी दुनिया का ध्यान भारत की अंतरिक्ष क्षमता पर खींचा। एक वक्त था जब पोलियो भारत के लाखों बच्चों के लिए बड़ा खतरा था। इस बीमारी को खत्म करने की लड़ाई में 1994 में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हुई। नारा बना दो बूंद जिंदगी की। हर बच्चे तक पोलियो की दो बूंद पहुंचाने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों और स्वयं सेवकों ने घर घर और दूर दराज के इलाकों तक पहुँच बनाई। 13 जनवरी 2011 को भारत में पोलियो का आखिरी केस सामने आया। 27 मार्च 2014 को WHO ने भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया। एक वक्त था जब देश में खुले में शौच और गंदगी बड़ी चुनौती थी। फिर 2014 में शुरू हुआ स्वच्छ भारत मिशन, जिसने सफाई को सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी बनाने की कोशिश की। 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की। गांवों से लेकर शहरों तक स्वच्छता अभियान चलाए गए। इस अभियान ने स्वच्छता को देशव्यापी चर्चा का हिस्सा बना दिया। एक वक्त था जब सरकारी काम के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे। फॉर्म, फाइल और लंबी कतारें आम बात थी। 2015 में डिजिटल इंडिया अभियान ने सरकारी सेवाओं को डिजिटल माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया। धीरे धीरे सरकारी दस्तावेज, आवेदन, भुगतान और कई तरह की सेवाएं ऑनलाइन होने लगी। डिजिटल इंडिया ने उस बदलाव को बड़ी रफ्तार दी। एक समय पैसे भेजने के लिए बैंक जाना पड़ता था, फिर ATM और कार्ड आए। लेकिन 2016 के बाद भारत ने डिजिटल भुगतान की दुनिया में एक और बड़ी छलांग लगाई, UPI यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। इस व्यवस्था ने अलग अलग बैंक खातों के बीच तुरंत डिजिटल भुगतान को आसान बना दिया। QR कोड ने इस बदलाव को और आसान बना दिया। सितंबर 2016 में उरी आतंकी हमले के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी रणनीति में बड़ा संदेश देने वाला कदम उठाया। भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा के पार जाकर आतंकवादी लॉन्च पैड्स के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की। इस कार्रवाई के बाद भारत ने साफ संदेश दिया कि सीमा पार से होने वाले आतंकवादी हमलों का जवाब सिर्फ कूटनीतिक स्तर पर नहीं बल्कि जरूरत पड़ने पर सैन्य तरीके से भी दिया जा सकता है। गरीब परिवार के सामने सबसे बड़ी मुश्किलों में एक है बीमारी और इलाज का खर्च। इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए 2018 में आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बड़े अस्पतालों में इलाज के लिए स्वास्थ्य कवरेज उपलब्ध कराना था। सरकारी और कुछ निजी अस्पतालों को भी इस व्यवस्था से जोड़ा गया। गुजरात के केवड़िया में बनी सरदार पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आज दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसकी ऊंचाई 182 मीटर है। इसे बनाने का काम 2013 में शुरू हुआ और करीब 4 साल में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तैयार हो गई। इसे मशहूर मूर्तिकार राम विसुतार ने डिजाइन किया और L&T ने इसका निर्माण किया। करीब 3,000 करोड़ रुपए की लागत से बनी इस प्रतिमा का उद्घाटन 31 अक्टूबर 2018 को हुआ। चौदह फरवरी 2019 पुलवामा में आतंकी हमले में CRPF के 40 जवान शहीद हुए। इसके बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ा फैसला लिया। 26 जनवरी 2019 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के प्रशिक्षण शिविर को निशाना बनाया। ये घटना इसलिए भी अहम थी क्योंकि पहली बार भारत ने पाकिस्तान की सीमा के भीतर जाकर आतंकी ठिकाने को निशाना बनाने की बात सार्वजनिक रूप से कही थी। 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर की संवैधानिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने का फैसला किया। संसद में प्रस्ताव और कानूनों के जरिए अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को मिले विशेष प्रावधानों को प्रभावी रूप से समाप्त किया गया और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पुनर्गठित किया गया। 2019 का ये फैसला आजाद भारत के संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास के सबसे बड़े बदलावों में गिना जाता है। 2020 में कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को हिला दिया। अस्पतालों में मरीज बढ़ रहे थे, अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा था और सबसे बड़ा सवाल था कि इस वायरस से बचाव कब मिलेगा। इसी दौरान देश में वैक्सीन विकसित करने और बड़े पैमाने पर उसका उत्पादन करने की कोशिश तेज हुई। कोवैक्सीन जैसी स्वदेशी वैक्सीन भारत की वैज्ञानिक क्षमता का उदाहरण बनी। एक वक्त था जब भारत के जंगलों से चीता पूरी तरह गायब हो चुके थे। करीब 70 साल बाद प्रोजेक्ट चीता के तहत चीते को भारत वापस लाने की शुरुआत हुई। 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 चीते कुनो नेशनल पार्क लाए गए। इसके बाद फरवरी 2023 में दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते और आए। मार्च 2026 तक भारत में चीते की संख्या 53 तक पहुंच गई, जिनमें 33 भारत में जन्मे हैं। 23 अगस्त 2023 वो तारीख जब भारत ने अंतरिक्ष इतिहास में अपना नाम हमेशा के लिए दर्ज कर दिया। चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम चांद की सतह पर सफलतापूर्वक उतर गया और भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में सफल सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बना। रोवर प्रज्ञान ने चांद की सतह पर कई वैज्ञानिक प्रयोग किए। चांद और मंगल के बाद भारत की नजर उस सितारे पर गई जिसके बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, सूरज। सितंबर 2023 में इसरो ने आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया। इसका मकसद सूर्य की बाहरी परतों, सौर हवाओं और अंतरिक्ष मौसम से जुड़ी घटनाओं का अध्ययन करना था। जनवरी 2024 में आदित्य L1 अपने निर्धारित हेलो ऑर्बिट में पहुंचा। 2023 में भारत के पास दुनिया के सबसे बड़े कूटनीतिक मंचों में से एक की मेजबानी थी। G20 की अध्यक्षता के दौरान देश के अलग अलग शहरों में बैठकें हुई और सितंबर में नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के नेता भारत पहुंचे। शिखर सम्मेलन में नई दिल्ली घोषणा पत्र पर सहमति बनी, जिसे भारत की कूटनीतिक उपलब्धि के तौर पर देखा गया। आजादी के बाद लंबे समय तक पुरानी संसद ही भारत के लोकतांत्रिक सफर की गवाह रही, लेकिन सांसदों की बढ़ती संख्या और आधुनिक जरूरतों को देखते हुए नए संसद भवन की जरूरत महसूस हुई। 28 मई 2023 को नए संसद भवन को राष्ट्र को समर्पित किया गया। नए संसद में लोकसभा कक्ष में 1272 सांसद तक बैठ सकते हैं। नए संसद को बनाने में 971 करोड़ रूपए खर्च हुए। अयोध्या में राम मंदिर का सपना सिर्फ एक इमारत बनाने का नहीं था, इसके पीछे सदियों की आस्था और लंबी कानूनी लड़ाई की कहानी थी। सुप्रीम कोर्ट के 2019 के फैसले के बाद मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हुआ और 2020 में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बनाया गया। 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन हुआ और मंदिर का निर्माण तेजी से आगे बढ़ा। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी के ऊपर बना चिनाब रेल ब्रिज आज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। नदी से करीब 359 मीटर ऊपर बना ये पुल 1.3 किलोमीटर लंबा है। पहाड़ों और गहरी खाई के बीच पुल बनाना आसान नहीं था। स्टील के बड़े बड़े हिस्सों को खास केबल क्रेन से ऊपर पहुंचाकर जोड़ा गया। करीब 1486 करोड़ रुपए की लागत से बना ये पुल 6 जून 2025 को शुरू हुआ। क्रिकेट में लंबे वक्त तक भारत की पहचान पुरुष टीम से रही, लेकिन भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी 50 ओवर के मैच में आखिरकार वो मुकाम हासिल कर लिया जिसका इंतजार दशकों से था। 2025 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार वनडे महिला वर्ल्ड कप का खिताब जीता। फाइनल में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हरा कर इतिहास रच दिया। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ जिसमें 26 लोगों की जान गई। इसके बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का फैसला किया।
0: 7 मई 2025 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मौजूद आतंकी ढांचे से जुड़े 9 ठिकानों को निशाना बनाया गया। ये सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ भारत के कड़े रुख का एक और बड़ा संदेश था।
3: फिलहाल कहानी मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक देश और दुनिया की तमाम खबरों के देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
6: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
7: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
4: इन एसोसिएशन विद हिंद बड़े आराम से शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
5: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
4: विमल बोलो जुबां केसरी।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
1: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।

0: ईएमआई में राहत का इंतजार करने वालों को आरबीआई की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक के बाद मायूसी हाथ लगी है। दरअसल उम्मीद के अनुसार ही सेंट्रल बैंक ने रेपो रेट में कोई बदलाव न करते हुए इसे 5.25% पर स्थिर रखा है। रेपो रेट स्थिर रहने से एफडी और बचत खातों की ब्याज दरों पर तत्काल असर की संभावना कम है। वहीं आरबीआई ने अपना रुख न्यूट्रल रखा है, यानी आगे हालात देखकर फैसला होगा।
1: After a detailed assessment of the evolving macroeconomic conditions and the economic outlook, the MPC voted unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 5.25%. Consequently, the STF rate remains at 5% and the MSF rate and the bank rate at 5.5%.
0: लेकिन रसोई के बजट पर महंगाई का असर देखने को मिल सकता है। दुनिया भर में चल रहे तनाव और कच्चे तेल के दामों में उतार चढ़ाव की वजह से आने वाले दिनों में खाने पीने का सामान थोड़ा महंगा हो सकता है। आशंका है कि सब्जी और तेल के दाम बढ़ने से महंगाई पर दबाव बढ़ सकता है। वहीं अल नीनो और मानसून को लेकर बनी अनिश्चितता का असर खेती और खाद्य कीमतों पर पड़ सकता है। खास बात है कि खाद्य और ईंधन कीमतों को छोड़ दिया जाए तो कोर इन्फ्लेशन फिलहाल काबू में है। राहत की बात यह है कि ग्लोबल मार्केट में भारी उथल पुथल के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है।
1: बॉन्ड मार्केट सेंटिमेंट्स रिमेन बेयरिश, रिफ्लेक्टिंग फिस्कल सस्टेनेबिलिटी कंसर्न्स। हाउएवर, इक्विटी मार्केट्स ड्रिवन बाय टेक स्टॉक्स रिमेन अपबीट।
0: कुल मिलाकर आरबीआई ने फिलहाल ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। ऐसे में ईएमआई में राहत का इंतजार थोड़ा और लंबा हो सकता है। हालांकि केंद्रीय बैंक का मानना है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है और महंगाई पर नजर बनाए रखते हुए ग्रोथ को समर्थन दिया जा सकता है। आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: शादी का किचन महके जहां गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
4: जब से पेपर लीक के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी ने देश भर में आंदोलन किया है तब से देश की सियासत से लेकर न्यायपालिका तक जेंजी इम्पैक्ट देखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने हैदराबाद की नासलर यानी नेशनल लॉ स्टडी एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी से जुड़े विवाद पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया को फटकार लगाई है। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा है कि भले ही छात्रों का फैसला गलत हो या उन्हें किसी ने गलत सलाह दी हो फिर भी उन्हें अपनी बात रखने और विरोध करने का अधिकार है। जस्टिस सूर्यकांत ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के उस सर्कुलर पर भी नाराजगी जताई जिसमें नासलर के 2026 बैच के लॉ ग्रेजुएट्स का वकील के तौर पर एनरोलमेंट रोकने को कहा गया था। सीजेआई ने कहा कि ये मेरे और छात्रों के बीच का मामला है इसे मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है बार काउंसिल इसमें दखल देने वाला कौन होता है। सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को नोटिस भी जारी किया और यूनिवर्सिटी के किसी छात्र या फैकल्टी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया। विरोध के बाद बार काउंसिल ने यूटर्न ले लिया है। छात्रों की नाराजगी सीजीआई की पिछले महीने की एक टिप्पणी को लेकर थी। सीजीआई सूर्यकांत ने कहा था कॉकरोच की तरह ऐसे युवा हैं जिन्हें इस पेशे में रोजगार नहीं मिल रहा है। इनमें से कुछ मीडिया कुछ सोशल मीडिया और कुछ आरटीआई और दूसरे तरह के एक्टिविस्ट बन रहे हैं ये हर किसी पर हमला करना शुरू कर देते हैं। ये टिप्पणी दिल्ली में नीट प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़ी याचिका की सुनवाई के दौरान की गई थी। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 13 अगस्त को सभी स्टेट बार काउंसिलों को निर्देश दिया था कि नासलर के 2026 बैच के किसी भी ग्रेजुएट को अगले आदेश तक वकील के तौर पर एनरोल ना किया जाए। साथ ही यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से 3 दिन के भीतर रिपोर्ट मांगी गई थी। आदेश जारी होने के कुछ घंटे बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपना रुख बदल लिया। काउंसिल ने कहा कि नासलर के 2026 बैच के ज्यादातर छात्र निर्दोष हैं और वो सीजीआई के अनादर वाले किसी भी अभियान में शामिल होने के इच्छुक नहीं थे।
5: कुछ गलत रिपोर्टिंग हो गई कुछ गलत इन्फॉर्मेशन मिल गए तो एक लेटर भेज दिया गया नालसर को, लेकिन 30 मिनट के अंदर जैसे ही सही बातों का पता चला स्टूडेंट्स के इनोसेंस का पता चला तुरंत उस लेटर को वापस ले लिया गया। आधी रात को बार काउंसिल की मीटिंग हुई सभी मेंबर्स ने डिस्कस किया पूरा डिलीबरेशन हुआ उस पर और उसके बाद पूरा का पूरा मामला जो है सो क्लोज कर दिया गया। तो मैटर स्टैंड्स फुल्ली क्लोज्ड नाउ। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को ये बात नहीं बताई गई शायद कि मामला जो है सो उसको क्लोज कर दिया गया वो लेटर पूरी तरह वापस ले लिया गया कोई ऑर्डर नहीं है स्टूडेंट्स जैसे चाहें वो जहां चाहें अपने को एनरोल कराएं। अब सुप्रीम कोर्ट को हम एक्सप्लेन करेंगे।
4: सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन

0: ఎలక్ట్రిక్ సవారీ సోకుడు.
1: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां.
2: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश.
3: जब से पेपर लीक के खिलाफ कांग्रेस जनता पार्टी ने देश भर में आंदोलन किया है, तब से देश की सियासत से लेकर न्यायपालिका तक जेंजी इम्पैक्ट देखा जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने हैदराबाद की नासलर यानी नेशनल लॉ स्टडी एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी से जुड़े विवाद पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया को फटकार लगाई है. सीजेआई सूर्यकांत ने कहा है कि भले ही छात्रों का फैसला गलत हो या उन्हें किसी ने गलत सलाह दी हो, फिर भी उन्हें अपनी बात रखने और विरोध करने का अधिकार है. जस्टिस सूर्यकांत ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के उस सर्कुलर पर भी नाराजगी जताई जिसमें नासलर के 2026 बैच के लॉ ग्रेजुएट्स का वकील के तौर पर एनरोलमेंट रोकने को कहा गया था. सीजेआई ने कहा कि ये मेरे और छात्रों के बीच का मामला है, इसे मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है. बार काउंसिल इसमें दखल देने वाला कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को नोटिस भी जारी किया और यूनिवर्सिटी के किसी छात्र या फैकल्टी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया. विरोध के बाद बार काउंसिल ने यूटर्न ले लिया है. छात्रों की नाराजगी सीजेआई की पिछले महीने की एक टिप्पणी को लेकर थी. सीजेआई सूर्यकांत ने कहा था, कॉकरोच की तरह ऐसे युवा हैं जिन्हें इस पेशे में रोजगार नहीं मिल रहा है. इनमें से कुछ मीडिया, कुछ सोशल मीडिया और कुछ आरटीआई और दूसरे तरह के एक्टिविस्ट बन रहे हैं. ये हर किसी पर हमला करना शुरू कर देते हैं. ये टिप्पणी दिल्ली में नीट प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़ी याचिका की सुनवाई के दौरान की गई. बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 13 अगस्त को सभी स्टेट बार काउंसिलों को निर्देश दिया था कि नासलर के 2026 बैच के किसी भी ग्रेजुएट को अगले आदेश तक वकील के तौर पर एनरोल ना किया जाए. साथ ही यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से 3 दिन के भीतर रिपोर्ट मांगी गई थी. आदेश जारी होने के कुछ घंटे बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपना रुख बदल लिया. काउंसिल ने कहा कि नासलर के 2026 बैच के ज्यादातर छात्र निर्दोष हैं और वो सीजीआई के अनादर वाले किसी भी अभियान में शामिल होने के इच्छुक नहीं थे.
4: कुछ गलत रिपोर्टिंग हो गई, कुछ गलत इन्फॉर्मेशन मिल गए तो एक लेटर भेज दिया गया नालसर को. लेकिन 30 मिनट के अंदर जैसे ही सही बातों का पता चला, स्टूडेंट्स के इनोसेंस का पता चला, तुरंत उस लेटर को वापस ले लिया गया. आधी रात को बार काउंसिल की मीटिंग हुई, सभी मेंबर्स ने डिस्कस किया, पूरा डेलिबरेशन हुआ उस पर और उसके बाद पूरा का पूरा मामला जो है सो क्लोज कर दिया गया. तो मैटर स्टैंड्स फुल्ली क्लोज्ड नाउ. मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को ये बात नहीं बताई गई शायद कि मामला जो है सो उसको क्लोज कर दिया गया, वो लेटर पूरी तरह वापस ले लिया गया, कोई ऑर्डर नहीं है, स्टूडेंट्स जैसे चाहें वो जहां चाहें अपने को एनरोल कराएं. अब सुप्रीम कोर्ट को हम एक्सप्लेन करेंगे.
3: सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी बार काउंसिल के एक्शन पर सवाल उठाए थे. आज तक ब्यूरो.
5: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर. पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक. एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

प्रधानमंत्री ने दिमागी नक्सलियों पर किया प्रहार, कहा देश को नुकसान पहुंचाने वालों की पहचान जरूरी, सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं है जंग। वंदे मातरम को लेकर नया संग्राम, बीजेपी का आरोप, सोनिया गांधी ने बीच में रोका, कांग्रेस बोली कोई विवाद नहीं, खड़गे जी के लिए कुर्सी लाने को बोला। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने लोकतंत्र में विपक्ष को बताया जरूरी, जिम्मेदारी का भी ख्याल हो तो। बाबा रामदेव ने आंदोलन की दी चेतावनी, का भारी घपला, सड़कों पर आ रहे बच्चे। और देश भर में मना आजादी का जश्न, राज्यों में मुख्यमंत्रियों ने फहराया तिरंगा, दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने राजधानी दिल्ली में विकास की रफ्तार बढ़ाने पर जोर दिया।

लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित भारत का लिया संकल्प, शक्ति की सप्तधारा, युवा महिला शक्ति को जोड़ने का मंत्र, AI स्किलिंग पर जोर।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। सबसे पहले टीम आज तक की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब आपको सीधे हम लिए चलते हैं चंडीगढ़। कोच को लेकर कौमी आवाम मोर्चा इस वक्त जुटा हुआ है और उनको रोकने के लिए देखिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। बैरिकेटिंग तोड़ने की कोशिश प्रदर्शनकारियों की तरफ से की जा रही है और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और ये महज कुछ पल पहले की तस्वीरें हैं जहां पर आप देख रहे हैं कि प्रदर्शनकारियों की तरफ से बैरिकेटिंग को तोड़ने की कोशिश की गई और उसके बाद वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। 1, 2, 3 अलग अलग वाटर कैनन का इस्तेमाल करते हुए प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा गया। ये बड़ी और खबर आपको बता रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये दरअसल प्रदर्शन की तस्वीरें। आपको याद होगा कुछ वक्त पहले जोरदार प्रदर्शन हुआ था अंबाला में भी, वो तस्वीरें आपको देखने को मिली थी। और अब जो आपकी तस्वीरें देख रहे हैं यहां पर जमकर प्रदर्शन हुआ है। मोहाली में सिखों की रिहाई को लेकर ये प्रदर्शन हो रहा है और ये मांग है कि जल्द से जल्द सिखों को रिहा किया जाए जिनको पहले हिरासत में लिया गया था। और अब यह हंगामा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। असीम बसी हमारे साथ जुड़े हुए। असीम, बताइए आखिर क्यों इतना उग्र आंदोलन यहां पर हो रहा है कि वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए।
1: जी हाँ, मैं आपको बता दूं, यह कौमी इंसाफ मोर्चा का जो मोर्चा लगा हुआ है पिछले 3 साल से लगा हुआ है और वो डिमांड कर रहे हैं कि जो सिख प्रिजनर्स है जिन्होंने अपनी सजा पूरी कर चुके हैं उनको रिहा किया जाए। और वो आज गवर्नर हाउस की तरफ कूच करना चाहते थे। एक बार फिर आप देख सकते हैं कि उनको कूच करने से रोकने के लिए पुलिस ने यहाँ बल यूज किया, क्योंकि ये लोग जो है 2023 जनवरी से यहाँ पर बैठे हैं और ये डिमांड करते हैं कि बंदी सिखों को छोड़ा जाए। और एक बार फिर आप देख सकते हैं वाटर कैनन यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, टीयर गैस यहाँ पर चल चुकी है और बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए थे। वो कूच करना चाहते थे आज इंडिपेंडेंस डे वाले दिन गवर्नर हाउस चंडीगढ़ की तरफ, लेकिन मोहाली चंडीगढ़ बॉर्डर के ऊपर पुख्ता इंतजाम जो है चंडीगढ़ पुलिस ने किया है। पैरामिलिट्री लगाई और जब लोगों ने बैरिकेड तोड़ना शुरू किया तो कोशिश किया तो आप ये देख सकते हैं दोबारा यहाँ पे टीयर गैस जो है फायर किया जा रहा है, वाटर कैनन से इसके इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह इनको आगे आने ना दिया जाए। तो इनकी मांग है कि जितने भी सिख प्रिजन है उनको छोड़ा जाए। हालांकि हमने देखा था एक वीडियो मैसेज भी आया था जगतार सिंह खवारा की तरफ से और उन्होंने कहा था कि शांति बनानी है, लेकिन कुछ लोगों ने फिर आगे आके जो बैरिकेड जब तोड़ने की शुरू कोशिश की तो पुलिस ने बल का प्रयोग किया। एसएसपी चंडीगढ़ कंवरदीप कौर ने लगातार जो अपील की, यहां तक कहा कि हम टॉक्स के लिए तैयार हैं, लेकिन हालांकि आश्वासन दिया गया था कि शांतिमय रहेगा लेकिन शांतिमय नहीं रहा। और उसके बाद लगातार ये स्थिति यहां पर जो है हिंसक जो है बनी हुई है। और अभी भी आप देख सकते हैं कि वाटर कैनन का इस्तेमाल जो हुआ और उसके बाद टीयर गैस शेल्स यहां पर सीआरपीएफ पंजाब पुलिस चंडीगढ़ पुलिस बड़ी गिनती में चंडीगढ़ पुलिस और सीआरपीएफ यहां पर तैनात की गई थी। हेफ्टी बैरिकेडिंग और लगातार जो टीयर गैस शेल आप सुन सकते हैं कि रुक नहीं रही है यहां पर, इतनी हैवी डिप्लॉयमेंट है। लेकिन उसके बावजूद जो लोग इकट्ठे हुए, कम से कम कहा जा रहा है 1000 से ऊपर लोग यहां इकट्ठे हुए, उन्होंने ये बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की और उसके बाद जो है प्रॉब्लम यहां पर शुरू हुई। वो लगातार मांग कर रहे हैं कि उनको जो है गवर्नर हाउस जाना है, बंदी सिंहों का जो रिहाई के लिए अपनी डिमांड को लेकर उन्होंने जाना है। तो उसके बाद से ये जो डिमांड यहां करने के लिए आगे गए, दोबारा गवर्नर हाउस जाना चाहते थे, तो यहां पर जब बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की बॉर्डर के ऊपर चंडीगढ़ मोहाली बॉर्डर के ऊपर, तो तब से लगातार यहां पर सिचुएशन जो है इस तरह की जो है वो बनी हुई है कि आप देख सकते हैं कि वाटर कैनन
0: तस्वीरें आप असीम दिखाते रहिए, तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। लेकिन ये भी बताइएगा क्या कोई बातचीत का रास्ता निकल पा रहा है, क्या प्रदर्शनकारियों से पुलिस के आला अधिकारियों के किसी भी लेवल पर कोई बातचीत हो पाई है?
1: जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि जब आपसे 25 मिनट पहले जब ये शुरू हुआ 20-25 मिनट पहले, तब एसएसपी चंडीगढ़ जो कंवरदीप कौर है वो वहां पर बैरिकेड पे गए थे। उन्होंने लाउडस्पीकर में अनाउंसमेंट की, उन्होंने कहा कि हम आपकी मांगों की रिस्पेक्ट करते हैं, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। और उधर से ये आश्वासन दिया गया था कि शांति में रखा जाएगा, लेकिन शांति में जो है वो नहीं रख।
0: असीम, लग रहा है कि आंसू गैस के जो गोले वहां पर फायर किए जा रहे हैं उसका असर आप पर भी हुआ है।
1: जी हाँ, यहाँ पर कंडीशन जो है इस तरह की है कि भारी गिट्टी ने यहाँ पर
0: असीम, आप थोड़ा आराम कीजिए, आप थोड़ा गीला रूमाल से आप अपने चेहरे पर कोशिश कीजिए सांस लेने की, क्योंकि ऐसे में हालात बहुत बिगड़ जाते हैं। लेकिन ये हम आपको एक बार फिर से बता दें, देखिए मुख्य मांग क्या है, बंदी सिक्कों की रिहाई की मांग है यहाँ पर। मोर्चा, ये जो मोर्चा आप देख यहाँ पर रहे हैं, कौमी इंसाफ मोर्चा इसका नाम है, 15 अगस्त यानी आज जमकर प्रदर्शन किया, गवर्नर हाउस के घेराव का ऐलान किया और ऐसे में हालात नियंत्रण करने के लिए आंसू गैस के गोले और उसके बाद वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। और मौजूदा स्थिति आप देख रहे हैं, आपके सामने तस्वीरें हैं, बंदी सिखों की रिहाई की मांग की जा रही है और यह मोर्चा लंबे समय से जेलों में बंद सजा पूरी कर चुके सिख कैदियों की तुरंत रिहाई की मांग भी कर रहा है। और अब यह भी खबर सामने आई है कि बातचीत की कोशिश की गई, समझाने की कोशिश की गई, लेकिन बेनतीजा रही। और उसके बाद की तस्वीरें आप यहां पर देख रहे हैं, प्रदर्शनकारी पुलिस से भिड़ गए और जो बैरिकेटिंग लगाई गई थी कि प्रदर्शनकारी आगे ना बढ़ पाए, कुछ प्रदर्शनकारी उस बैरिकेटिंग के ऊपर चढ़ते हैं। और वो तस्वीरें आपने देखी अभी कुछ देर पहले आज तक पर, कि बैरिकेटिंग के ऊपर चढ़कर जो कटीले तार जो लगाए गए हैं उनको तोड़ने का प्रयास किया जाता है, बैरिकेटिंग को तोड़ा जाता है, गिराया जाता है, ट्रैक्टर से बैरिकेटिंग को टक्कर मारी जाती है। असीम हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। असीम, अगर आप बोलने की स्थिति में हैं तो बताइए कि अब क्या रास्ता निकालने की कोशिश सरकार प्रशासन की तरफ से की जा रही है और कैसे काबू पाया जाएगा इन पर?
1: देखिए, अभी से तो थोड़ी स्थिति सुधरी है क्योंकि लोग पीछे चले गए हैं। अगर आप तस्वीरों में देखें, अगर हम दिखाएंगे कि लोग थोड़े बैरिकेड से पीछे जा चुके हैं। एसएसपी भी यहाँ थी, डिप्टी कमिश्नर यहाँ थे, एसडीएम यहाँ थे, टॉप के अधिकारी ये सब यहीं थे। उन्होंने कहा था कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, आप इसको शांतमय रखिए। लेकिन वो जो पैक था वो लग रहा था कि वो वर्क नहीं किया जो ऑफर था। और अब लगता है कि तभी पुलिस जो है अग्रेसिव हुई और पुलिस ने तभी ये सब चलाया जब उनके पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि उनको ये था 15 अगस्त का दिन है और बैरिकेड तोड़ के आगे ना आ जाए और स्थिति जो है चंडीगढ़ शहर में खराब ना हो जाए, इसीलिए उन्होंने वो सब किया। और अभी तो मुझे लगता है कि इस हालात में बातचीत तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि तो पुलिस का ये फोकस है कि किस तरह क्राउड कंट्रोल किया जाए
0: और कोशिश यही की जा रही है कि कोई समस्या का समाधान निकाला जा सके। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कांग्रेस दफ्तर पर जो वंदे मातरम गान हुआ था उसको लेकर जो विवाद हुआ, बीजेपी आक्रामक है। सुधांशु त्रिवेदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए चलते हैं।
2: मिडनाइट ऑफ 14th एंड 15th अगस्त व्हेन द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया स्टार्टेड, इट इज स्टार्टेड with the singing of Vande Mataram, because till then national anthem Jan Gan Man was not adopted by the constitution. So this is the voice in which lakhs and lakhs of freedom fighters faced the bullets and lathis of British government, and thousands of Krantikari and the freedom fighters have laid down their life, and this is the voice by singing which independent India came into existence, but which is being sacrificed for the sake of hardliner fundamentalist forces just for the sake of convenience of politics by Congress party. But now with the effort of Prime Minister Shri Narendra Modi, for the first time our national song Vande Mataram has been sung at full length on this Independence Day. So this is a historical moment in the Kurban karke ek chauthai kar diya tha, parantu Pradhan Mantri Shri Narendra Modi ji ke sankalp se karodon karodon Bharat vasiyon ki bhavnaon ke anurup yah pahla swatantra divas hai jab Vande Mataram sampurn aur sangopang roop mein gaya gaya. Parantu usi ke saath ek bahut vichitra, विडंबनापूर्ण और दुर्भाग्यपूर्ण दृश्य देखने को मिला जब कांग्रेस कार्यालय में वंदे मातरम गीत गाया जा रहा था। उस समय कांग्रेस की सुप्रीम लीडर सोनिया गांधी जी, सुपर अध्यक्ष राहुल गांधी जी और सिटिंग अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी बहुत ही विचित्र और आपत्तिजनक तरीके से असम्मान व्यक्त करते हुए एक दूसरे से बातचीत करते हुए नजर आए, किसी को बुलाते हुए नजर आए, और कोई व्यक्ति आकर उनसे कुछ बता भी रहा था और एक दूसरे को इशारे कर रहे थे यह राष्ट्रगीत वंदे मातरम के प्रति उनका अपमान है, जिससे करोड़ों करोड़ों भारतवासी बहुत आघात महसूस कर रहे हैं। और यह दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी अभी भी संभवतः राष्ट्रगीत वंदे मातरम को संपूर्ण रूप से स्वीकार नहीं कर पाई। अतः हम कांग्रेस की सर्वोच्च नेतृत्व, क्योंकि इसमें तीनों शामिल हैं, सर्वोच्च नेतृत्व के इस आचरण की निंदा करते हैं और यह अपेक्षा करते हैं कि कांग्रेस पार्टी इसके लिए देश से माफी मांगे और यह स्पष्टीकरण दे कि उन्होंने ऐसा आचरण क्यों किया। और यदि कांग्रेस ऐसा नहीं करती है तो संविधान के प्रति उनकी सच्ची निष्ठा और स्वतंत्रता संग्राम के प्रति उनकी श्रद्धा और करोड़ों भारतवासियों के मान और सम्मान के प्रति उनके विश्वास पर गहरा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है।
0: देखिए, बीजेपी की तरफ से जो वीडियो जारी किया उसमें यह बताने की कोशिश की गई है कि सोनिया गांधी बीच में रोकती है, मल्लिकार्जुन खड़गे से वो बात करती हैं। अब इस पर कांग्रेस का भी रिएक्शन आया, जयराम रमेश की तरफ से इस पर सफाई भी दी गई है, बात अपनी रखी गई है कांग्रेस की तरफ से।
3: देखिए, वंदे मातरम को लेकर अक्टूबर 1937 में कोलकाता में 28 अक्टूबर 1937 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। गांधी जी मौजूद थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, सरदार पटेल थे, मौलाना अब्दुल कलाम थे, आजाद थे, जवाहरलाल नेहरू थे, गोविंद वल्लभ पंत जी थे, राजगोपालाचारी जी थे। और उन्होंने निर्णय किया कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के सलाह पर वंदे मातरम कांग्रेस अधिवेशनों में गाया जाएगा। पहले कुछ पंक्तियां ली जाएंगी और वही गाना गाया जाएगा। ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई अक्टूबर 1937 में। रविंद्रनाथ टैगोर ने सलाह दी पंडित जवाहरलाल नेहरू को और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को कि पहले पंक्तियों का इस्तेमाल कीजिए, और तब से हर एक कांग्रेस अधिवेशन में वही पंक्तियां लोग गा रहे हैं, हमारे सेवा दल गाता है, हमारे कार्यकर्ताएं गाते हैं। इसमें कोई वाद विवाद
4: सर, पूरा वर्जन गाया गया,
3: पूरा वर्जन गाया गया क्योंकि संसद में इस पर चर्चा हुई, संसद में इस पर बहस हुई, 16 घंटे की बहस हुई, हमने अपनी राय रखी, मैंने खुद सारा इतिहास बताया जो प्रधानमंत्री और गृहमंत्री को जानकारी थी नहीं, सारे सांसदों को मैंने अवगत कराया कि किस संदर्भ में वो वंदे मातरम का निर्णय लिया गया है।
0: पीयूष हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। पीयूष, स्वतंत्रता दिवस पूरा देश मना रहा है लेकिन आज जमकर सियासत भी हो रही है। एक वीडियो बीजेपी की तरफ से पोस्ट किया गया वंदे मातरम को, बीच में सोनिया गांधी कुछ कहती हुई दिखाई दे रही हैं और बीजेपी की तरफ से कई गंभीर आरोप भी लगाए जा रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से सफाई भी आई। क्या अपडेट अब इस पूरे मामले में अभी तक आ रहा है?
5: देखिए मानशु, अगर अपडेट की बात करें तो बीजेपी साफ कह रही है कि कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है वो देश के स्वतंत्रता दिवस मनाने के दौरान ये कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें सोनिया गांधी ने वंदे मातरम के बीच में ही इंटरप्ट करते हुए कहा कि इसको रोक दिया जाए, ऐसा आरोप बीजेपी का है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से क्लेरिफिकेशन भी आया है, जिसमें जयराम रमेश, अशोक गहलोत जैसे नेताओं का ये कहना है कि मल्लिकार्जुन खड़गे काफी देर से खड़े थे और उनके लिए कुर्सी लाने की बात सोनिया गांधी ने कही, जिसके बाद जो है उसको रोका गया। लेकिन ये भी बहुत महत्वपूर्ण है समझना कि जो पूरा वंदे मातरम है वो महज 5 से 7 मिनट का है, और जिस वंदे मातरम की बात अभी हमने जनरल रमेश जी के मुंह से सुनी, जिसमें वो कह रहे थे कि पहले हम शुरू के 2 स्टैंजा गाते हैं, वो सिर्फ 1 से 1.5 मिनट का है। लेकिन अब संसद में बहस के बाद ये कह दिया गया है, सरकार ने कानून बना दिया है कि वंदे मातरम अगर कोई पूरा नहीं गाता है या उसको डिसरिस्पेक्ट करता है तो उनके खिलाफ वैसी ही कार्रवाई की जाएगी जैसी देश के जो नेशनल एंथम है जनगणमन उसको लेकर कार्रवाई होती है। उसके बावजूद अब जब वंदे मातरम का अपमान हुआ है तो फिर कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए, इस तरह की बातें बीजेपी कह रही है। अब देखना ये होगा कि इसमें पूरी सियासत आगे किस तरह से बढ़ती है, लेकिन हाँ, सोनिया गांधी का बीच में रुक जाना, मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए कुर्सी की बात करना, ये जरूर कहीं ना कहीं बीजेपी को नहीं खटक रहा है और इसीलिए आप माफी की मांग बीजेपी की तरफ से की जा रही है।
0: नहीं, बीजेपी की तरफ से इस मुद्दे को उठाया जा रहा है, लेकिन क्या अब कांग्रेस की तरफ से भी इस पर कुछ और, क्योंकि जयराम रमेश ने कह दिया कि कुर्सी की मांग की जा रही थी कि किसी के पैर में दर्द है, किसी के घुटने में तकलीफ है, तो इसीलिए कुर्सी की बात की जा रही थी, लेकिन ये जो मुद्दा इतना खींचा जा रहा है, इतना उठाया जा रहा है, क्या आपको लगता है आज इसकी इतनी जरूरत थी?
5: ये देखिए, जहां तक राष्ट्र की बात होती है, राष्ट्रभक्ति और इस तरह के मुद्दे होते हैं, उसमें जरूर बीजेपी कहीं ना कहीं अपना मत रखती है, और इसीलिए बीजेपी ने सोनिया गांधी के रवैये पर सवाल खड़े किए हैं। कुछ नेताओं से हमारी बात हो रही थी मानसू, उन्होंने ये तक कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो पिछले काफी देर से खड़े थे, वो महज 2-3 मिनट और रुक जाते और खड़े हो जाते तो कौन सा उनकी तबीयत और खराब हो जाती, ऐसा कुछ नेताओं का भी मानना है। अगर हम पूरे स्टैंजे की, पूरे वंदे मातरम की बात करें तो वो लगभग 5 से 7 मिनट का है, और जो वंदे मातरम जो पहले गाया जाता था 2 स्टैंजे का, वो 1 से 1.5 मिनट का है, तो वो 5 से 7 मिनट आराम से मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े हो सकते थे, ऐसा कुछ नेताओं का मानना है। लेकिन सियासत इस पर जमकर हो रही है। आज पूरे देश में 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन ये वीडियो जब आया,
0: लगता है बीजेपी इसको बहुत जल्दी छोड़ेगी नहीं, इस मुद्दे को अभी और लंबा खींचा जाएगा।
5: बिल्कुल खींचा जाएगा, और देश भर में ये बात लेकर जाएगी कि कैसे वंदे मातरम के खिलाफ कांग्रेस पार्टी है, और शुरुआत से ही कांग्रेस इसका विरोध करती रही है। वंदे मातरम पूरा जो है वो पहले जब पूरा था उसका सिर्फ एक पैराग्राफ, 1 से 2 पैराग्राफ ही कांग्रेस की सरकार ने ही उसको ऑफिशियल किया, तो पहले ही पर कतर दिए गए थे वंदे मातरम के।
0: और अभी अब मतलब पीयूष, कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अभी इस मुद्दे में बहुत नया अपडेट आना बाकी है, और भी कई बयान भी देखे जाएंगे, सुने जाएंगे। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रांची की बात करते हैं। रांची में छात्र आंदोलन का आज 22वां दिन है, गिनते जाइए ये बढ़ते जा रहे हैं दिन। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देवेंद्र महतो और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हो गई। देवेंद्र महतो जो छात्रों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी ओर से आज निकाली गई तिरंगा यात्रा में शामिल होना वो चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें अस्पताल से बाहर नहीं निकलने दिया। देवेंद्र महतो और उनके साथ मौजूद छात्रों के साथ धक्का मुक्की की तस्वीरें सामने आई है, ये आपके सामने देखिए तस्वीरें, देखिए तस्वीरें हैं सामने। देवेंद्र महतो का यह आरोप है कि पुलिस ने बिना किसी लिखित आदेश के उन्हें अस्पताल में बंद करके रखा है। छात्रों की मांगों को लेकर युवा नेता देवेंद्रनाथ महतो पिछले कई दिनों से भूख हड़ताल पर है। अब ये तस्वीरें आप देखिए, देवेंद्र महतो तबीयत खराब है। डॉक्टर्स ने खुद ने कहा था कि उनको आईसीयू में रहना चाहिए, लेकिन अगर वो छात्रों के साथ तिरंगा रैली में शामिल होना चाहते हैं तो उसके बाद ये जो व्यवहार किया जा रहा है ये आपके सामने देखिए।
6: लड़ाई इसके बावजूद जो है कि हमको रोका जा रहा है, झंडा फहराने से रोका जा रहा है। ये क्या, यही आजादी है क्या? आज हमको इस आजादी को आजाद पूर्वक जीने का अधिकार नहीं है? वहाँ तैयारी किया हुआ है झंडा फहराने के लिए, हमको झंडा फहराने नहीं दिया जा रहा।
0: वक्त चला है बहुत छोटे से ब्रेक, आप देखते रहिए आज तक।
7: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो। In association with
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: मुल्तानी घो का कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घो का कॉफ सिरप।
3: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
4: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
5: जिस मिट्टी में फसल उगती है उसी में भारत की स्वतंत्रता की खुशबू है। इस स्वतंत्रता दिवस आइए उन किसानों का सम्मान करें जो हर दिन देश को मजबूत बनाते हैं। मेरे और क्रिस्टल परिवार की ओर से आपके और आपके परिवार को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
6: In association with
7: Sera Sanitary Wear, it's your moment of Sera. E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
8: भिखारियों का मनोविज्ञान क्या है?
9: तैयारी तुम भी कर रहे हो क्या?
8: नहीं सर।
9: 12th किससे की हो?
8: 12th सर मेरा PCM से रहा।
9: कंपाउंड क्या होता
8: है? बेसिकली जो एक्युमुलेटेड चीजें रहती हैं उसके ऊपर।
9: यही है भीख मंगे वाली क्वालिटी। तुम पूछ रहे थे ना, यही है यही। एक मिनट,
8: ये जो आपका तरीका बहुत सर बहुत अच्छा नहीं है। इस तरीके से समझाने का स्टूडेंट्स को, इसे सर ह्यूमिलिएशन कहते हैं।
9: देख भाई, अपनी गारंटी पे छेड़ना

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।

0: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
1: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

वंदे मातरम को लेकर नया संग्राम, बीजेपी का आरोप, सोनिया गांधी ने बीच में रोका। कांग्रेस बोली कोई विवाद नहीं, खड़गे जी के लिए कुर्सी लाने को बोला। प्रधानमंत्री ने दिमागी नक्सलियों पर किया प्रहार, का देश को नुकसान पहुंचाने वालों की पहचान जरूरी। कांग्रेस ने कहा सियासी विरोधियों को अर्बन नक्सल करते रहे हैं, अब दिमागी नक्सल बोल रहे हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने लोकतंत्र में विपक्ष को बताया जरूरी, जिम्मेदारी का भी ख्याल हो। तो बाबा रामदेव ने आंदोलन की दी चेतावनी, कहा भारी घपला, सड़कों पर आ रहे बच्चे। देश भर में मना आजादी का जश्न, राज्यों में मुख्यमंत्रियों ने फहराया तिरंगा। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने राजधानी दिल्ली में विकास की रफ्तार बढ़ाने पर जोर दिया। और चंडीगढ़ में सिख युवकों की रिहाई की मांग को लेकर कौमी इंसाफ मोर्चा ने खोला मोर्चा। राजभवन के घेराव रोकने के लिए पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले, पानी की बौछार।

की सप्त धारा का आवाहन करना है। समय हमारा है, अवसर हमारा है, संकल्प हमारा है। '47 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे।

एक दीप से जले दीप हजारों, आओ मिलकर विकसित भारत बनाएं।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। टीम आज तक की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज पूरा देश आजादी का महोत्सव मना रहा है। लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया, विकसित भारत के लक्ष्यों को दोहराया, सप्त सिंधु से सप्त धरा मंत्र प्रधानमंत्री ने दिया। युवाओं के लिए पीएम ने बड़े ऐलान किए, अगले एक साल में 1 करोड़ युवाओं को एआई की ट्रेनिंग, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग और 5 से 15 साल के बच्चों की खेल प्रतिभा तलाशने के लिए देशव्यापी टैलेंट हंट अभियान शुरू करने की बात कही।

0: मेरे प्यारे देशवासियों, डिफेंस में आत्मनिर्भर होना अब भारत ने अनुभव कर लिया, दुनिया ने अनुभव कर लिया है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे। हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है।
1: ये आजादी का महोत्सव है, हिंदुस्तान की स्वतंत्रता का उत्सव। स्वतंत्रता के जिस महायज्ञ में राष्ट्र के वीर सपूतों ने प्राणों की आहुति दी, अब वो आजादी अपने 80वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी है। आजादी के इस महापर्व की शुरुआत भारत के प्रेरणा पुंज महात्मा गांधी के आशीर्वाद से होती है। पीएम मोदी सबसे पहले राजघाट पहुंचे और बापू को नमन किया।
2: सीताराम भज प्यारे तू सीताराम।
1: राजघाट के बाद पीएम मोदी सीधे लाल किला पहुंचे। लाहौरी गेट से पीएम का कारवां ऐतिहासिक लाल किला परिसर में प्रवेश किया। इस बार का स्वतंत्रता दिवस उत्सव इसलिए भी खास रहा क्योंकि लाल किले की प्राचीर से पहली बार वंदे मातरम का पूरा गायन हुआ। 12 साल में 13वीं बार लाल किले से पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया।
0: समय हमारा है, मैं सभी देशवासियों से कहूंगा, समय हमारा है, अवसर हमारा है, संकल्प हमारा है, आइए सपनों को संकल्प बनाए।
1: लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने देश के सामने विकसित भारत का विजन रखा और युवाओं के लिए बड़े ऐलान किए। करीब 76 मिनट के संबोधन में पीएम मोदी ने एक तरफ 2047 तक विकसित भारत का संकल्प दोहराया तो दूसरी तरफ आत्मनिर्भरता और शक्ति की सप्तधारा के जरिए विकास का रोडमैप सामने रखा।
0: आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्तधारा का आवाहन करता हूं। आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ, वो सप्तधारा के सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे।
1: पीएम मोदी के सप्तधारा विजन का मतलब मैन्युफैक्चरिंग, कृषि और खाद्य, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, गति शक्ति, रक्षा शक्ति, ग्रीन और ब्लू इकोनॉमी और सॉफ्ट पावर है। पीएम ने कहा कि दुनिया के कुछ देश संसाधनों का शस्त्रीकरण कर रहे हैं, अब भारत दूसरों पर निर्भर नहीं रह सकता, हमें आत्मनिर्भर बनना होगा।
0: अरे, रक्षा शक्ति का महत्व हर प्रकार से है मेरे प्यारे देशवासियों, डिफेंस में आत्मनिर्भर होना अब भारत ने अनुभव कर लिया, दुनिया ने अनुभव कर लिया है, इसके बिना कोई चारा नहीं है। विश्व जब अपनी अपनी ही सोच रहा है तब भारत विश्व के लिए बाजार बन करके नहीं रह सकता है, हमें डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना होगा।
1: इनोवेशन, प्रोडक्शन, बैंकिंग, किसान, नौजवान, हर मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने अपनी बात रखी। करीब 76 मिनट के भाषण में पीएम मोदी ने 24 बार शक्ति शब्द का इस्तेमाल किया। विकसित भारत के संकल्पों के साथ पीएम ने देश की युवा पीढ़ी का आह्वान किया और राष्ट्र निर्माण में जुट जाने को कहा। हर बार की तरह इस बार भी भाषण खत्म करने के बाद पीएम मोदी युवाओं के बीच पहुंचे और चलते चलते उनसे संवाद भी किया। आज तक ब्यूरो।
3: प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश की आंतरिक सुरक्षा, नक्सलवाद का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि नक्सलियों ने देश के जंगलों को रक्त रंजित किया। जंगल वाले नक्सलियों का तो सफाया हो गया, लेकिन दिमागी नक्सलियों से सावधान रहना होगा। ये जो दिमागी नक्सली हैं, ये लोगों को बरगला रहे हैं।
0: जहां पर कभी धरती रक्त रंजित रहा करती थी, आज उसी नक्सल क्षेत्रों में, उसी इलाकों में नक्सल मुक्त होने के कारण विकास, विश्वास और प्रयास का तिरंगा लहरा रहा है मेरे प्यारे देशवासियों। लेकिन इस चुनौती को हमने कम नहीं आंकना है, इस चुनौती से हमें और भी सावधान रहने की जरूरत है। वर्षों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे, सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था। मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है, लेकिन हथियारी नक्सल तो गए लेकिन दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा।
3: ये तो दिमागी नक्सलियों की बात हुई, लेकिन हर बार होता तो इस बार भी बता देते हैं, पीएम मोदी ने करीब 76 मिनट का भाषण दिया और इस दौरान उनका फोकस जो था वो युवा शक्ति, जेंजी और इनोवेशन पर रहा। पीएम ने अपने भाषण के दौरान कौन सा शब्द कितनी बार इस्तेमाल किया, चलिए बता देते हैं आपको ऐसी जानकारी के लिए। शक्ति शब्द की बात करें, क्योंकि उन्होंने कहा कि शक्ति मजबूती के साथ आगे बढ़ना 24 बार, सामर्थ्य की उन्होंने बात की 22 बार, दिशा दिखानी है किस दिशा में हमें आगे बढ़ना है 21 बार, उसका लक्ष्य को हासिल करना और लक्ष्य को भी उन्होंने 20 बार, नौजवानों की बात की। देखिए अब हर कोई जेंजी की बात कर रहा है, हर कोई युवाओं की बात कर रहा है, नौजवानों की बात कर रहा है, तो 20 बार 76 मिनट के अपने भाषण में 20 बार उन्होंने नौजवानों का जिक्र किया। संकल्प लेना है हमें, संकल्प से सिद्धि की बात कर चुके हैं 19 बार, सपने की बात उन्होंने की, एक सपना तो देखना पड़ता है ना उसको पाने के लिए, तो 18 बार, परिवार को 17 बार और युवा 15 बार, और टेक्नोलॉजी उन्होंने 15 बार इस्तेमाल किया टेक्नोलॉजी शब्द, और टेक्नोलॉजी पर इससे पहले भी ध्यान प्रधानमंत्री की तरफ से दिया गया है।
0: आज ही विल बी ग्रीटेड उस युग को भी याद करना चाहूंगा जब देश भारत का सामर्थ्य सप्त सिंधु के रूप में हम जानते थे, हम समझते थे, हम सुनते थे। अब विकसित भारत बनाने के लिए हमें नई धारा चाहिए। आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्त धारा का आह्वान करता हूं। आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ, वो सप्त धारा के सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे। और इसके साथ साथ देश की युवा शक्ति का सामर्थ्य का भरपूर राष्ट्र निर्माण में उपयोग होगा, उनकी शक्ति जोड़ी जाएगी। आने वाले दिनों में जब मैं सप्त धारा की बात करता हूं, सप्त धारा की पहली शक्ति है मैन्युफैक्चरिंग पावर। हमारे मध्यम वर्ग के परिवारों के सामने एक बहुत बड़ा बोझ बन चुका है कोचिंग क्लासेस की स्पर्धा। हर मां बाप को लग रहा है कि कोचिंग क्लास में बच्चे को नहीं भेजा तो हम प्रतिष्ठित परिवार नहीं है। इन गरीब और मिडिल क्लास परिवारों की हम चिंता करते हुए, हजारों करोड़ रुपए का उनका खर्च है वो भी बचे, बेटे भी अपने आसपास रह सके, उनकी देखभाल हो सके, परिवार पर आर्थिक बोझ ना आए, और इसलिए हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
3: ऐसे ही कई शब्दों का पीएम मोदी की तरफ से जिक्र किया गया। और अब आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 10 बड़ी बातें हम आपको बताते हैं। युवाओं के लिए मुफ्त कोचिंग शुरू करेंगे, ये बात उन्होंने कही। देखिए दिमागी नक्सलियों की बात तो की उन्होंने, दशकों तक सत्ता में माओवादी सोच के लोग थे, ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया। नक्सलवाद माओवाद ने युवाओं को बर्बाद किया, हम देखते रहे हैं छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में था, लेकिन अब नहीं है। युवाओं के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग मिलेगी आने वाले वक्त में, यह भी प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया। और युवाओं के लिए संसाधनों की कहीं कोई कमी नहीं है, युवा शक्ति पर प्रधानमंत्री की तरफ से बात किया गया। ओलंपिक के लिए हम अच्छा प्रदर्शन करें इसलिए टैलेंट हंट अभियान होगा कि छात्रों को पता लग सके, स्टूडेंट्स को पता लग सके कि वो किस खेल में अच्छे हैं। विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी कौन है? युवा है, इसका भी जिक्र किया गया। महिला आरक्षण को लेकर उन्होंने कहा कि नारी शक्ति की राजनीति का शिकार हुई, नारी शक्ति बिल जो है, सभी दल महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बने, यह महिला आरक्षण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया। और सबसे अपील की कि महिलाओं को 33% भागीदारी मिले। रक्षा क्षेत्र को लेकर पीएम मोदी ने क्या कहा? रक्षा क्षेत्र में सरकार पूरा फोकस कर रही है, नेक्स्ट जेन डिफेंस टेक्नोलॉजी पर सरकार की तरफ से जोर दिया जा रहा है, और ड्रोन सुपरसोनिक टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता की ओर हम हैं। और हम देख रहे हैं कि अब आने वाले वक्त में ड्रोन सुपरसोनिक मिसाइल यही सब जगह लेगी। 2047 में हम विकसित भारत बनकर रहेंगे, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया।
0: अरे रक्षा शक्ति का महत्व हर प्रकार से है मेरे प्यारे देशवासियों, डिफेंस में आत्मनिर्भर होना अब भारत ने अनुभव कर लिया, दुनिया ने अनुभव कर लिया है, इसके बिना कोई चारा नहीं है। विश्व जब अपनी अपनी ही सोच रहा है तब भारत विश्व के लिए बाजार बन करके नहीं रह सकता है। हमें डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना हुआ, नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस टेक्नोलॉजी डेवलप करके हमें ग्लोबल सप्लायर बनने की दिशा में हमें लक्ष्य लेकर के चलना है। हमें ड्रोन काउंटर ड्रोन सिस्टम को विकसित करना होगा और हाइपरसोनिक डिफेंस टेक्नोलॉजीज उस पर हमें लीडरशिप लेनी होगी। साथियों साइबर सुरक्षा भी आज हर घर के लिए एक समस्या बन रही है, वो भी एक रक्षा का क्षेत्र है जिसमें हमारे युवाओं की जो सामर्थ्य है उस सामर्थ्य का उपयोग हम देश के और दुनिया के लिए कर सकते हैं। हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत आगे बढ़ाना होगा और प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ साथ हमें छोटे छोटे पुर्जे भी बनाने हैं और बड़े बड़े प्रोडक्ट भी बनाने हैं। पूरा वैल्यू चेन हमारा होना चाहिए और उसे लेकर के चलना। हमें कंपोनेंट भी चाहिए और हमें कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग भी चाहिए, कंप्लीट प्रोडक्ट भी चाहिए। डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन का भरोसामंद केंद्र बनना होगा। इसके लिए मैं तीन चीजों पर विशेष जोर देना चाहता हूं। मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में जो मेरे भाई बहन हैं, ये समय का ये अवसर है, इस अवसर को जाने मत दें। और इसके लिए हमें कॉस्ट क्वालिटी और स्केल इसके विषय में वैश्विक मानदंडों से खरा उतरना पड़ेगा।
3: और यहां रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
3: चंडीगढ़ में आज सिख युवकों की रिहाई की मांग को लेकर बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। कौमी इंसाफ मोर्चा ने इस मुद्दे पर राजभवन की ओर कूच किया। चंडीगढ़ मोहाली रोड पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की जिसे तोड़ दिया गया। प्रदर्शनकारी सिखों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस चलाई, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इस दौरान चंडीगढ़ मोहाली रोड पर घंटों ट्रैफिक ठप रहा।
4: आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल पावर्ड बाय वेक्टर्स, भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाले वाटर टैंक्स, टंकी मतलब वेक्टर्स।
6: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
7: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
8: सोने में निवेश करने का तरीका तेजी से बदल रहा है। पहले लोग ज्वेलरी शॉप या बैंक का रुख करते थे, लेकिन अब मोबाइल ऐप पर कुछ क्लिक करके 10 रुपए से भी गोल्ड खरीदा जा सकता है। डिजिटल गोल्ड की इसी बढ़ती लोकप्रियता ने सरकार का ध्यान खींचा है। ऐसे में निवेशकों की सुरक्षा और पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए डिजिटल गोल्ड सेक्टर के लिए नए नियमों की तैयारी शुरू हो गई है, जिसके तहत डिजिटल गोल्ड के लिए अगले साल नया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आ सकता है। इसमें निवेशकों की सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ाने पर फोकस होगा। इसके लिए DPMACI ने वित्त मंत्रालय, RBI और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालयों के साथ चर्चा की है। दरअसल भारत में डिजिटल गोल्ड का बाजार तेजी से बढ़ रहा है। बड़ी संख्या में लोग छोटी रकम से भी सोने में निवेश कर रहे हैं और यही वजह है कि इस सेक्टर के लिए औपचारिक नियमों की मांग भी तेज हुई है। आंकड़ों के मुताबिक 2025 से 26 में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए करीब 10 टन सोना खरीदा गया। वहीं डिजिटल गोल्ड सेक्टर में भरोसा बढ़ाने के लिए ही DPMACI का गठन किया गया है, जिससे सेफ गोल्ड, MMTC, PAMP, ऑगमॉन्ट, फोन पे और गुल्लक जैसे प्लेटफॉर्म जुड़े हुए हैं। डिजिटल गोल्ड की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें बहुत छोटी रकम से भी निवेश शुरू किया जा सकता है। युवाओं और छोटे निवेशकों के बीच इसकी लोकप्रियता की बड़ी वजह यही है कि बिना ज्वेलरी खरीदे भी सोने में निवेश किया जा सकता है। निवेशक अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से खरीदारी कर सकते हैं। यहाँ तक कि 10 या 100 रुपए जैसी छोटी रकम से भी डिजिटल गोल्ड खरीदा जा सकता है। ये कंपनियाँ खरीदी गई मात्रा के बराबर सोना सुरक्षित वॉल्ट में रखने का दावा करती हैं और जरूरत पड़ने पर निवेशक इसे बेच सकते हैं या फिजिकल डिलीवरी भी ले सकते हैं। दुनिया के कई देशों में डिजिटल गोल्ड के लिए नियम और निगरानी व्यवस्था पहले से मौजूद है। इस पहल के बाद भारत भी इसी दिशा में कदम बढ़ाता दिख रहा है। साफ है कि डिजिटल गोल्ड निवेश का लोकप्रिय माध्यम बन चुका है। ऐसे में अगर नया रेगुलेटरी ढांचा लागू होता है तो इस बाजार में ट्रांसपेरेंसी बढ़ सकती है और निवेशकों का भरोसा भी मजबूत हो सकता है। आज तक ब्यूरो।

0: We are with you, friends.
1: शादी का किचन महके जहाँ गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ
2: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

सियासी विरोधियों को अर्बन नक्सल कहते रहे हैं, अब दिमागी नक्सल बोल रहे हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने लोकतंत्र में विपक्ष को बताया जरूरी, जिम्मेदारी का भी ख्याल हो। तो बाबा रामदेव ने आंदोलन की दी चेतावनी, कहा भारी घपला, सड़कों पर आ रहे बच्चे। देश भर में मना आजादी का जश्न, राज्यों में मुख्यमंत्रियों ने फहराया तिरंगा। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने राजधानी दिल्ली में विकास की रफ्तार बढ़ाने पर जोर दिया। और चंडीगढ़ में सिख युवकों की रिहाई की मांग को लेकर कौमी इंसाफ मोर्चा ने खोला मोर्चा। राजभवन के घेराव रोकने के लिए पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले, पानी की हुई बौछार।

आज पूरा देश मना रहा आजादी का जश्न। लाल किले की प्राचीर से पीएम ने 13वीं बार फहराया तिरंगा। स्वतंत्रता दिवस पर देश को संबोधित कर प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को दिया एकता और विकास का संदेश। स्वतंत्रता दिवस समारोह में करीब 5,000 विशेष अतिथि हुए शामिल। 100 एनसीसी कैडेट्स और 100 माय भारत वॉलंटियर्स ने भी लिया हिस्सा। लाल किले पर पीएम मोदी को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। स्वतंत्रता दिवस पर देशभक्ति के रंग में रंगा दिखा पूरा लाल किला परिसर। वंदे मातरम में 150 साल पूरे होने पर देश भर में होगा खास उत्सव। विकसित भारत 2047 में युवा शक्ति की भूमिका पर रहेगा विशेष फोकस। लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम का सामूहिक गायन हुआ। हेलीकॉप्टर से हुई फूलों की बारिश। देशभक्ति के रंग में रंगा माहौल। रांची में देवेंद्र महतो ने आरोप लगाया कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झंडा फहराने से पुलिस ने उन्हें रोक दिया। महतो का यह भी दावा है कि इस दौरान पुलिस कर्मियों के साथ धक्का मुक्की हुई जिससे उनके सीने में चोट लगी है। देवेंद्र महतो ने घटना को लेकर पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए। महतो ने कहा कि झंडा फहराना उनका अधिकार है और उन्हें इस तरह रोकना लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन है। राज्यों में मुख्यमंत्रियों ने फहराया तिरंगा। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने राजधानी दिल्ली में विकास की रफ्तार बढ़ाने पर जोर दिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के बुनियादी ढांचे, सड़कों, साफ सफाई, यातायात व्यवस्था और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार तेजी से काम कर रही है। लाल रंग की पगड़ी बांधकर लाल किला पहुंचे पीएम मोदी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वागत किया। लाल किले जाने से पहले राजघाट पहुंचे पीएम मोदी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। आजादी के जश्न में दी गई 21 तोपों की सलामी। गूंजा भारत माता की जय का जय घोष। लाल किले में देशभक्ति का रंग दिखाई दिया। लाल किले पर आमंत्रित बच्चों से मिले पीएम मोदी। पीएम से हाथ मिलाने के लिए उत्साहित दिखे बच्चे। चेहरों पर खुशी दिखी। आजादी के लिए बलिदान देने वाले वीर सपूतों को याद किया गया। बच्चों ने मिलकर देशभक्ति के नारे लगाए। पीएम ने लाल किले की प्राचीर से देश को किया संबोधित। दोहराया 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य। युवाओं को साथ जोड़कर विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने पर जोर। पहली बार लाल किले पर वंदे मातरम के सामूहिक गान पर बोले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री ने इसे देश के लिए बेहद गर्व का पल बताया। पीएम ने कहा कि युवाओं को एआई से जोड़ने के लिए बड़ी योजना की तैयारी। सरकार 1 करोड़ युवाओं को देगी एआई की ट्रेनिंग। पीएम ने छात्रों के लिए किया बड़ा ऐलान। बोले देश में जल्द खड़ा करने वाले हैं फ्री ऑनलाइन कोचिंग देने का नेटवर्क। पीएम मोदी ने ग्रीन एनर्जी के इस्तेमाल पर जोर दिया। बोले बीते कुछ सालों में सोलर ऊर्जा को भी काफी बढ़ावा दिया गया है जिसका फायदा सीधे लोगों को मिल रहा है। नागपुर आरएसएस मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह। मोहन भागवत ने ध्वजारोहण किया। पुलिस जवानों ने सलामी दी। नागपुर में आरएसएस मुख्यालय पर मोहन भागवत का संदेश। बोले भारत को विश्वगुरु राष्ट्र बनाने की राह में कई चुनौतियां। तमिलनाडु के सीएम विजय ने स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराया। सरकार की उपलब्धियां गिनाई। एलओसी पर दिखा देशभक्ति का जज्बा। हजारों लोगों ने पहाड़ों के बीच मनाया स्वतंत्रता दिवस। तिरंगे के साथ उमड़ा चंचला। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे सीजेआई। ध्वजारोहण किया। आजादी के जश्न के बीच देशवासियों को एकजुटता का संदेश दिया। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी ध्वजारोहण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। परेड पर हेलीकॉप्टर से बरसाए गए फूल। रायपुर में पुलिस परेड ग्राउंड में आजादी का जश्न। सीएम ने फहराया तिरंगा। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री ने ली परेड की सलामी। देशभक्ति का रंग।

बीकानेर में कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम मदन लाल शर्मा, मुख्यमंत्री ने ली परेड की सलामी, तिरंगा फहराया। गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा हुए 15 अगस्त के कार्यक्रम में शामिल, तिरंगा फहराया। दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने फहराया राष्ट्रीय ध्वज, स्वतंत्रता दिवस पर बीजेपी कार्यालय में आयोजित हुआ ध्वजारोहण समारोह। कांग्रेस मुख्यालय में मल्लिकार्जुन खड़गे ने तिरंगा फहराया, सोनिया गांधी राहुल गांधी भी मौजूद रहे। खड़गे ने कहा लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल नहीं हुए राहुल गांधी। कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम को रोके जाने के वायरल वीडियो पर बोले जयराम रमेश, बीच में नहीं रोका गया, सोनिया गांधी ने खड़गे जी के लिए कुर्सी लाने को कहा था। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, आईटीओ डीएनडी इलाके में चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर। श्रीनगर के लाल चौक पर स्वतंत्रता दिवस को लेकर बड़ी सुरक्षा, सुरक्षा बलों ने संभाला मोर्चा, चप्पे चप्पे पर निगरानी। 15 अगस्त को लेकर बिजनौर पुलिस हाई अलर्ट पर, रेलवे स्टेशन और होटलों समेत प्रमुख जगहों पर सघन चेकिंग। स्वतंत्रता दिवस से पहले बिजनौर में सुरक्षा व्यवस्था हुई सख्त, मुख्य स्थानों पर पुलिस की पैनी नजर, लगातार चेकिंग अभियान चल रहा है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शहीदों को याद किया, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचकर पुष्प चक्र अर्पित किया। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ मौजूद रहे, देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले अमर जवानों को नमन किया। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने निजी आवास पर फहराया ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज, देशवासियों को शुभकामनाएं दी। देश में पहली बार ड्रोन से आर्मी वेटरन के घर पहुंचाया गया तिरंगा, मंडी के रेहड़धार में डाक विभाग ने किया अनोखी डिलीवरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया वीडियो कॉल से जुड़े। श्रीलंका के दौरे पर टीम इंडिया ने भी मनाया आजादी का जश्न, गोल टेस्ट से पहले टीम ने फहराया तिरंगा, बीसीसीआई ने वीडियो साझा किया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सीआरपीएफ की स्मारिका के पर संदेश लिखा, देश की सुरक्षा में सीआरपीएफ के योगदान और जवानों के बलिदान को याद किया। हरिद्वार में बाबा रामदेव ने फहराया तिरंगा, फिर आंदोलन की दी चेतावनी, बोले सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार के घोटाले सुधरे नहीं तो दोबारा आंदोलन करना पड़ सकता है। मुंबई के शिशुवन स्कूल में बच्चों ने धूमधाम से मनाया स्वतंत्रता दिवस, देशभर की परंपराओं से हुए रूबरू, बच्चों में देशभक्ति की भावना जगाने पर जोर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया, बोले 80वें स्वतंत्रता दिवस मनाना गर्व का पल। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया, सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने भी अपने आवास पर तिरंगा लहराया, वीर स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं, सोशल मीडिया पर मां भारती की आजादी के लिए अपना सर्वस्व अर्पित करने वाले वीर सेनानियों को कोटि कोटि नमन किया। पुरी में शानदार नजारा दिखा, प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने पुरी बीच पर रेत कलाकृति बनाई। यूपी के गोरखपुर में आजादी का जश्न, रंग बड़ताल पर तिरंगा यात्रा आयोजन, राष्ट्रीय ध्वज के साथ नौकायन करते दिखे रोइंग खिलाड़ी। गुजरात के वडोदरा में भी धूमधाम से निकाली गई तिरंगा यात्रा, भारत माता के जयकारों के साथ वंदे मातरम का उद्घोष। जम्मू कश्मीर के कठुआ में स्वतंत्रता दिवस की रौनक, हीरानगर सेक्टर में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह की अगुवाई में तिरंगा यात्रा निकली। नई दिल्ली के रेल भवन परिसर में निकाली गई भव्य तिरंगा यात्रा, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की अगुवाई। देशभक्ति के रंग में रंगा यूपी का कानपुर, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कोचिंग सेंटर्स के बाहर तिरंगे झंडे वितरित किए। आजादी के जश्न में देशभक्ति के रंग में सेना, भारतीय सेना ने बैंड दे रहे हैं शानदार प्रस्तुति, देशभर में गूंज रहा देशभक्ति संगीत। ताजमहल से इंडिया गेट तक सेना का संगीत, ऐतिहासिक स्थलों पर बैंड की शानदार प्रस्तुति, आजादी के जश्न में नया रंग। लेह से नीलगिरी तक सेना का देशभक्ति अभियान, इंडिया गेट पर आर्मी सिम्फनी बैंड, शौर्य स्मारकों से वाटरफ्रंट तक सेना का संगीत। रक्षा मोर्चे से आई गुड न्यूज, 1577 करोड़ की रक्षा डील पर मोहर, लाइटर म्यूनिशन सिस्टम खरीदे जाएंगे, डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता को जोर मिलेगा। भारत और मलेशिया की वायुसेना के युद्धाभ्यास, उदारा शक्ति 2026 का भव्य समापन, दोनों देशों ने साझा किया ऑपरेशनल अनुभव, राफेल और सुखोई 30 एमकेएम की दिखी जुगलबंदी। हिमाचल प्रदेश के मशहूर शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर में दिखे आस्था के साथ देशभक्ति के रंग, खूबसूरत फूलों से तिरंगा थीम पर सजाया गया माता के दरबार। महाराष्ट्र के नागपुर में राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस की भव्य रौनक, आकर्षक रोशनी से जगमग हुआ विधान भवन परिसर।
महाराष्ट्र के अमरावती में पुलिस कांस्टेबल ने तिरंगे के साथ पानी के अंदर चलाई साइकिल, 1 मिनट 16 सेकंड तक पानी में रहे। लखनऊ के कनॉट स्टेडियम में यूपी T20 लीग का धमाकेदार आगाज, सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में शंकर महादेवन और जैस्मिन ने समा बांधा। तिरंगे की रोशनी से नहाए जम्मू कश्मीर का श्रीनगर, प्रमुख सरकारी इमारतों पर सत्तवी नदी रिवर फ्रंट पर शानदार नजारा देखा। हर घर तिरंगा के तहत श्रीनगर की डल झील का दिखा शानदार नजारा, देशभक्ति के रंग में नजर आए लोग। डल झील पर सैकड़ों शिकारों और नावों पर लहराता दिखा तिरंगा, सीआरपीएफ की 144 बटालियन के जवानों का जोश दिखा। तिरंगा रैली में जवानों ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर देशभक्ति, राष्ट्रीय गौरव दिवस और एकता का संदेश दिया, आम लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। त्रिपुरा में स्वतंत्रता दिवस का जश्न, तिरंगे की रोशनी में नहाई नजर आई राजधानी अगरतला। ठाणे में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने फहराया तिरंगा, हजारों लोगों ने एक साथ गाया राष्ट्रगान राष्ट्रगीत। उत्तराखंड की टिहरी झील में बोट पर भव्य तिरंगा यात्रा, 150 से ज्यादा लोग तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। तिरंगा यात्रा के दौरान 2 दर्जन से अधिक नावों पर सवार हुए लोग झील की लहरों पर तिरंगा लहराया। टिहरी झील में दिखा देशभक्ति का अनोखा नजारा, भारत माता की जय, वंदे मातरम की गूंज। नाव में सवार लोगों का जोश देखते ही बना राष्ट्रप्रेम और एकता का संदेश दिया। पर्यटकों की झील देशभक्ति में दिखी रंगी दिखी और टिहरी झील के बीच अद्भुत नजारे से लोगों का मंत्रमुग्ध कर दिया। जम्मू के रियासी में दिखा देशभक्ति का नजारा, दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल पर गूंजा वंदे मातरम। सीआरपीएफ जवानों और बच्चों ने निकाली तिरंगा रैली, वंदे मातरम के नारों के बीच गुजरी ट्रेन, देखते ही देखते जोश से गूंज उठा पुल। तिरंगे और वंदे भारत ट्रेन का शानदार संगम, सीआरपीएफ जवानों के साथ बच्चों ने तिरंगा लहराया। गुजरात के आणंद में तिरंगे का महासैलाब, वल्लभ विद्यानगर में 25,000 से ज्यादा जुटे लोग। वंदे भारत से आणंद पहुंचे डिप्टी सीएम हर्ष संघवी लोगों के साथ तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। लखनऊ में तिरंगे के रंग में रंगी यूपी विधानसभा इमारत पर खास ट्राईकलर लाइटिंग हुई। रांची में तिरंगे रोशनी से जगमगाया झारखंड हाई कोर्ट, झारखंड विधानसभा पर दिखा तिरंगे का रंग। जम्मू कश्मीर के रियासी में आजादी का जश्न, तिरंगे की भव्य रोशनी में नहाया सलाल बांध। कोलकाता से गुवाहाटी तक तिरंगे की रोशनी, कोलकाता लोक भवन तिरंगे की रोशनी से नहाया, असम विधानसभा और असम सचिवालय की ट्राईकलर लाइटिंग। चेन्नई में रिपन बिल्डिंग तिरंगे की रोशनी में नहाई, आरबीआई बिल्डिंग पर दिखा तिरंगे का रंग, पोर्ट ट्रस्ट बिल्डिंग भी तिरंगे में सजी दिखी। पुंछ का ऐतिहासिक किला और प्रमुख स्थल तिरंगे की रोशनी से जगमगाया, स्वतंत्रता दिवस पर दिखी साज सज्जा। गुजरात का कडाड़ा बांध रंग बिरंगी रोशनी से हुआ रोशन, स्वतंत्रता दिवस पर बांध पर दिखा शानदार नजारा। अहमदाबाद शहर तिरंगे की रोशनी में जगमग हुआ, स्वतंत्रता दिवस पर शहर में दिखा देशभक्ति का रंग। बठिंडा का ऐतिहासिक किला तिरंगे के रंग में जगमगाया, आजादी का जश्न मनाया गया। तिरंगे की रोशनी से जगमगाया अगरतला, रंग बिरंगी लाइटिंग से पूरा शहर सजा दिया गया। बीजेपी सांसद ब्रजलाल का बड़ा बयान, नक्सलवाद खत्म, अब दिमागी नक्सलियों से लड़ने की जरूरत। चंडीगढ़ में कौमी इंसाफ मोर्चा का पंजाब गवर्नर हाउस की ओर मार्च, प्रदर्शनकारियों ने कूच किया। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने फहराया तिरंगा, तस्वीरें आईं। संबल में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम के दौरान स्कूल का छज्जा गिरा, एक बच्चे की मौत हो गई। छज्जा गिरने पर अचानक मलबे में दबे 3 बच्चे, डीएम, एसपी और तहसीलदार सहित शिक्षा विभाग की टीम मौके पर।

0: बात अब देश के अलग अलग राज्यों की करेंगे। आज देश भर में राज्यों की राजधानियों में तिरंगा फहराया गया। लखनऊ में योगी आदित्यनाथ, कोलकाता में शुभेंदु अधिकारी, देहरादून में पुष्कर सिंह धामी, दिल्ली में रेखा गुप्ता, भोपाल में मोहन यादव, रांची में हेमंत सोरेन, पटना में सम्राट चौधरी, चेन्नई में जोसेफ विजय ने तिरंगा फहराया। ये तस्वीरें आप देखिए। आठ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री, बिहार, तमिलनाडु और झारखंड के मुख्यमंत्रियों ने अपने राज्य में राजधानी में तिरंगा फहराया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ में ध्वजारोहण किया। इसके बाद अपने संबोधन में मुख्यमंत्री का युवा शक्ति पर खासा फोकस रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं को उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत बताया। साथ ही कहा, युवाओं को रोजगार के लिए प्रदेश सरकार ने कई अहम क्षेत्रों पर फोकस किया है।
1: स्वाधीनता दिवस के अवसर पर मैं प्रदेश के युवाओं से कहना चाहता हूं, आपकी प्रतिभा से ही यूपी की शक्ति निहित है। हमारी सरकार ने नकल माफिया, भर्ती माफिया के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की है। हम अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को डेवलपमेंट इंजन के रूप में बदल रहे हैं। जेन जी और जेन अल्फा के लिए एआई, मशीन लर्निंग, सेमीकंडक्टर, स्टार्टअप इकोसिस्टम, डेटा सेंटर, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, साइबर, रोबोटिक, इलेक्ट्रिक व्हीकल, एग्रीटेक, फिनटेक, डीपटेक, मेडटेक जैसे क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश ने तेजी के साथ जो कार्य आगे बढ़ाया है, उसमें निवेश, नवाचार और एम्प्लॉयमेंट के नए द्वार खुल रहे हैं।
0: और इसी मौके पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की समृद्ध विरासत को लगातार संपन्न करने की कोशिश जारी है। सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली के लोगों से विकसित भारत के निर्माण के प्रयास में शामिल होने का आह्वान किया।
2: साथियों, विकसित भारत की इस यात्रा में दिल्ली की जिम्मेदारी सामान्य नहीं है। दिल्ली देश की राजधानी है, इसलिए यहाँ लिए गए निर्णय पूरे देश को दिशा देते हैं। यहाँ बनने वाला डेवलपमेंट का मॉडल पूरे दूसरे शहरों के लिए बेंचमार्क बन सकते हैं। मैं पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ कि विकसित भारत की दहलीज पर पहला कदम दिल्ली राज्य रखेगा, क्योंकि दिल्ली एक्टिव भी है, दिल्ली अटेंटिव भी है और दिल्ली अट्रैक्टिव भी है।
0: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वतंत्रता दिवस पर प्रदेश के लोगों को शुभकामनाएं दी और स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार उत्तराखंड को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास में जुटी है।
3: आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश तेज गति से आगे बढ़ रहा है, विकसित भारत का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है और इस विकसित भारत की यात्रा में उत्तराखंड भी तेज गति से कदम मिलाते हुए अपना जो योगदान है वो योगदान करने के लिए कृत संकल्पित हो। ये दिन हमको इस बात का स्मरण भी कराता है कि इस दिन हम उन सभी भारत माता के सपूतों को जिन्होंने हमको आज़ादी दिलाने के लिए कठिन संघर्ष किया, अपने जीवन को लगाया, उन सभी को हम नमन करते हुए देश और प्रदेश के विकास में अपना योगदान दें।
0: रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
6: पापा। सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
7: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा,
6: छक्का
7: सब कैशलेस हो गया है।
6: हाँ ला भाई मेरा बैट,
7: वो अभी तो ठीक हुआ तू।
8: चार्ज हुआ यार।
9: बैट किसका है?
10: टाटा AIG है तो भरोसा है।
11: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: in association with Hind, bade aaram se.
1: Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
2: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
0: विमल बोलो जुबां केसरी.
3: 19 इयर्स की थी तब मैंने जिम ज्वाइन किया था, तो मैंने जिम में क्रश बनाया था.
4: उसी से रिलेशनशिप था क्या?
3: यही मोटिवेशन था मेरा जिम जाने का कि
4: जब जिम जाओ आशी तो वहाँ वर्कआउट करो, वहाँ पे रिलेशनशिप नहीं करना है.
3: 19 साल की थी ना, फिर जब मेरा ब्रेकअप हुआ तो मैंने जिम भी छोड़ दिया था. मेरी मम्मी चाहती थी कि मैं सिर्फ जॉब ही करूँ. मेडिकल स्टूडेंट थी तो डॉक्टर, ये तो टीचर, ऐसा. She was like, कैमरा के आगे क्या कर रही हो, क्या है ये, टाइम पास ही रहना चाहिए, इसको प्रोफेशन नहीं बनाना है वो. फिर जब मॉम ने देखा कि अच्छा पैसे भी मिलते हैं इसमें, तो
4: You lost your mom also.
3: I lost my dad when I was in second standard and then I lost her. तो मेरी शादी नहीं देख पाएंगे.
5: भिखारियों का मनोविज्ञान क्या है?
6: तैयारी तुम भी कर रहे हो क्या?
5: नहीं सर.
6: ट्वेल्थ किससे की हो?
5: ट्वेल्थ सर मेरा PCM से रहा.
6: कंपाउंड क्या होता है?
5: बेसिकली जो एक्युमुलेटेड चीजें रहती हैं उसके ऊपर.
6: यही है भीख मंगे वाली क्वालिटी. तुम पूछ रहे थे ना, यही है, यही. एक मिनट,
5: ये जो आपका तरीका बहुत सर बहुत अच्छा नहीं है. इस तरीके से समझाने का स्टूडेंट्स को, इसे सर ह्यूमिलिएशन कहते.
6: देख भाई, अपनी गारंटी पे छेड़ना

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।

0: in association with Hind, bade aaram se. Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
1: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
0: विमल बोलो जुबा केसरी.
2: चारों तरफ देश में हंगामा है. छोटे छोटे स्कूल कॉलेजों से बच्चे निकल रहे हैं कि हमारे यहाँ टीचर नहीं है, हमारे यहाँ लाइट नहीं है, हमारे यहाँ पानी नहीं है, हमारे यहाँ शौचालय नहीं है. हमारे यहाँ टीचर है तो किताबें नहीं है, किताबें हैं तो टीचर नहीं है, और टीचर है तो पढ़ाई में नकल हो जाती है, कहीं पेपर लीक हो जाता है. और पेपर पास भी कर लिया, दसवीं बारहवीं का बोर्ड एग्जाम भी दे लिया, तो दसवीं बारहवीं के जो एग्जाम के मार्क्स हैं वो कहीं जुड़ते ही नहीं है. कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के आधार पर ही आगे यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन होता है, और उसके बाद में फिर जो है जब कहीं नौकरी की बारी आए, खास करके गवर्नमेंट जॉब्स में, इंटरव्यू के दौरान 90-99% घोटाला होता है. अपने विचार, अपने संस्कार, अपने संगठन, अपने ही जाति वर्ग समुदाय के लोगों को ठोक लेते हैं और बाकी को बाहर धक्का मार देते हैं. ये बहुत ही अपमानजनक है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है, ये न्याय के भी खिलाफ है. एक तरफ हम कह रहे सत्य में जयते, ये तो धर्म सतो जय, हमने शासकीय उद्घोष बना दिए, और वहां जब किसी को इंटरव्यू की बारी आती है तो 10 में से
3: पहले से तय करके
2: और पैसे लेके 25-50 लाख 1-1 करोड़ रुपए की रिश्वत लेकर के फिर भर्ती करते हैं. अब ऐसे ही आंदोलन करना पड़ा तो देश कैसे चलेगा? इसलिए भाई सुधर जाओ, नहीं तो देश में आंदोलन और ज्यादा भी हो सकते हैं. आंदोलन के नाम पर मैं अराजकता अनार्की का समर्थक नहीं हूं, लेकिन भाई ये बात तो जरूर है, देश में घपला भी बहुत है, ये घपले ठीक कर लो. मैं तो कहीं ऐसा ना हो कि बाबा रामदेव को दोबारा आंदोलन करना पड़े.
0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर. पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक. एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com.

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

वंदे मातरम को लेकर नया संग्राम, बीजेपी का आरोप, सोनिया गांधी ने बीच में रोका, कांग्रेस बोली कोई विवाद नहीं, खड़गे जी के लिए कुर्सी लाने को बोला। प्रधानमंत्री ने दिमागी नक्सलियों पर किया प्रहार, कहा देश को नुकसान पहुंचाने वालों की पहचान जरूरी। कांग्रेस ने कहा सियासी विरोधियों को अर्बन नक्सल कहते रहे हैं, अब दिमागी नक्सली बोल रहे। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने लोकतंत्र में विपक्ष को बताया जरूरी, जिम्मेदारी का भी ख्याल हो तो। बाबा रामदेव ने आंदोलन की दी चेतावनी, कहा भारी कपला, सड़कों पर आ रहे बच्चे। देश भर में मना आजादी का जश्न, राज्यों में मुख्यमंत्रियों ने फहराया तिरंगा, दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने राजधानी दिल्ली में विकास की रफ्तार बढ़ाने पर दिया जोर। और चंडीगढ़ में सिख युवकों की रिहाई की मांग को लेकर कौमी इंसाफ मोर्चा ने खोला मोर्चा, राजभवन के घेराव रोकने के लिए पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले, पानी की बौछार।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। आज देश आजादी का अस्सीवां उत्सव मना रहा है। प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से हुंकार भरी, युवा शक्ति को सैल्यूट किया, विकसित भारत के संकल्प की रूपरेखा तय की, तो दूसरी तरफ देश के युवा अपने तरीके से अधिकार मांगते दिखे। जैन अल्फा की तनी मुट्ठी और नारे लोकतंत्र की मजबूती का संदेश देते हैं। सरकारी व्यवस्था को इस बात का एहसास कराते हैं कि आवाज अनसुनी नहीं की जा सकती।
1: अस्सीवें स्वतंत्रता दिवस से पहले गूंजते नारे लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। ২০২৬ में आजादी का जश्न मनाते भारत के बच्चे हक मांगने से नहीं डरते हैं।
2: क्या हो गया? टीचर है कोई यहाँ पे? पहला काम करो, सुनो, तुरंत साइड में आओ, अंदर चलो, बात करते हैं, ट्रैफिक खोलो, ठीक है? तुरंत मेरे साथ आओ, चलो।
1: 15 अगस्त 2026 ऐतिहासिक है, जहां बच्चे अधिकारियों की आंख से आंख मिलाकर अधिकार मांगते हैं।
3: 4 साल हो गई सीनियर स्कूल बने हुए, मात्र 5 टीचर है
4: जो भी थायर ग्रेड की,
3: कोई सुनवाई नहीं की गई। 4 साल हो गए खाते में, कलेक्टर को मैंने खुद अपने लिखित में कागज दिया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई।
5: सही बात।
3: अगर आपके बन जाते तभी आप यही सुविधा रखते क्या?
1: एक तरफ लगता है कि आजादी के 80 साल बाद भी स्कूल व्यवस्था राज्यों में ढुलमुल है, दूसरी तरफ अच्छा लगता है कि लोकतांत्रिक रूप से विरोध करना बच्चे जानते हैं।
6: हमारे खाने के लिए थाने में सुड़ी निकलती है, मेढक निकलता है, छिपकली निकलती है, प्रिंसिपल पास लेकर जाओ। इनका ये होता है कि इस मौसम में निकलता है, मैं क्या कर सकता हूँ। दूसरी बात, तुमने खुद डाला होगा और कहे भी दें तो कहते दूसरा रखवा लो। ऐसा कि हम लोग मतलब जानवर से बेबत्तर है ये करते हैं हमारे लिए।
1: बच्चों के नारे इस बात का एहसास कराते हैं कि आजादी का असली मतलब अपनी आवाज को बुलंद करना है।
7: हम हमारा अधिकार मांगते
3: हैं, जोर जोर में के चक्कर में
7: हमारा नारा।
1: स्वतंत्रता का सीवा महोत्सव खास है क्योंकि अब की जेन जी और जेन अल्फा की बुलंद आवाज है।
8: कल जो आपने प्रदर्शन किया था उसमें कितने रुपए किराया लिया जा रहा था पहले आपसे?
9: पहले 25।
8: और आज कितने रुपए किराया लिया जा रहा है?
9: 10 रुपए।
8: आपसे भी 10 रुपए? सभी का किराया मान के चलने तो कम हुआ सभी से, ठीक है।
1: लाल किले पर लहराता तिरंगा, वो पल जब देश हमेशा गर्व से भर जाता है, याद करता है स्वतंत्रता की सेनानियों को। भारत और भारतीयता के विश्वास से उत्प्रोत हर नागरिक के लिए आजादी का दिन बहुत विशेष महत्व रखता है। लेकिन इस बार ये उत्सव और भी विशेष है, जहां भारत के भविष्य की बुलंद होती आवाजें, लोकतांत्रिक रूप से रखी जाती मांगे, अड़ने की जगह बिना डरे हक के लिए लड़ने वाली आदत इस भरोसे को मजबूत करती है कि भारत का बच्चा बच्चा अपने अधिकार और कर्तव्य दोनों को समझ रहा है। आज इसीलिए एक एक करके हम आपको ऐसी तस्वीरों से खबरदार करेंगे। अधिकार और कर्तव्य को समझते भारत के जैन अल्फा की पहली गवाही लखनऊ से आई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मोहान रोड पर जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय है। प्रदेश के समाज कल्याण विभाग के अधीन आने वाले इस स्कूल में छात्र संभव है कि देश में जंतर मंतर आंदोलन से शुरू हुए प्रदर्शन के बाद अपना हक मांगने वाली लकीर पर चलते हुए आगे बढ़े। जहां हॉस्टल में खराब खाना, खाने में बार बार कीड़ा निकलना, बीमार होने पर इलाज की व्यवस्था न होना और शिक्षकों की कमी को लेकर छात्रों का दावा है कि स्कूल प्रशासन ने उनकी शिकायत पर कान नहीं दिया तो ये सड़क जाम करने निकल पड़े। लखनऊ में छात्रों की तरफ से सड़क जाम की खबर आते ही पहले जहां छात्रों को हटाने के लिए पुलिस दिखती रही थी, वहां अब की बार शायद पहली बार ऐसा देखा सुना जा रहा है जब कोई मंत्री तुरंत समस्या सुनने पहुंच गया जैसे असीम अरुण उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री हैं, प्रदर्शन करते छात्रों के बीच पहुंचकर सीधे कहते हैं चलो तुम्हारी बातें सुनते हैं, शिकायत दूर करते हैं,
2: अंदर चलो बात करते हैं, ट्रैफिक खोलो, ठीक है, तुरंत मेरे साथ आओ।
1: इसके बाद तुरंत मंत्री असीम अरुण के साथ छात्र भीतर आते हैं। यहीं आज हम आपको दिखा रहे हैं कि छात्र संविधान से मिले अधिकार और कर्तव्य दोनों को समझ रहे हैं, जो अपने अधिकार के लिए प्रदर्शन करने का अधिकार भी जानते हैं और मंत्री की तरफ से समस्या सुने जाने की बात आते ही तुरंत रास्ता भी छोड़ देते हैं और फिर समाधान की बात आती है।
2: जो कमियां हैं उनको दूर काफी हद तक किया हम लोग ने, लेकिन मैं स्वयं अभी संतुष्ट नहीं हूँ। हम लोग को कमियों को और दूर करना है। पहली चीज, जितने स्टाफ सारे हमारे क्वार्टर बन गए, हमारे ट्रांजिट हॉस्पिटल बन गए, टीचर्स 24 घंटे यहाँ पे रहेंगे, कोई हाँ फार्मासिस्ट भी और भी नॉन टीचिंग स्टाफ जिसके लिए आवास अवेलेबल है। ये आवासीय विद्यालय है, केवल बच्चों का नहीं स्टाफ का, और जिसको रहने में समस्या आ रही है वो अपना इस्तीफा देते घर।
1: लोकतंत्र की यही ताकत है जो इस स्वतंत्रता दिवस को विशेष बनाती है, जहाँ स्कूली शिक्षा का बुनियादी ढांचा लचर है उसे मजबूत करने की मांग खुद बच्चे कर रहे हैं। अधिकार और कर्तव्य को समझते भारत के जेन अल्फा की दूसरी गवाही भी उत्तर प्रदेश से आई है। इसके लिए अब कन्नौज चलते हैं।
4: कई दिनों से समस्याएं थी जिनको लेकर हम झेल रहे थे, सह रहे थे, लेकिन अब कुछ ज्यादा ही ओवर हो गया था
2: जी।
4: तो उसके लिए हमने ये किया क्योंकि परेशान हो चुके थे, और एक नहीं क्लास 6 के जूनियर से लेकर क्लास 12 के बच्चे सभी परेशान हैं।
1: कन्नौज के जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ने वाले ये वो जैन अल्फा हैं जो अपनी समस्याओं के निदान के लिए सड़क पर नहीं उतरे, बल्कि खुद को ही एक कमरे में बंद कर लिया। इनका वीडियो वायरल हुआ, मीडिया पहुंचा, इन छात्रों ने अपनी पहचान छिपाने के लिए मुंह ढक लिया। ये इनका अधिकार है, लेकिन अपने दूसरे अधिकारों के लिए इन्होंने खुद को क्लास में लॉक करने का ऐसा तरीका लगाया कि प्रशासन को जागना पड़ा। पहले शिकायत सुनिए, फिर समाधान देने पहुंचे जिलाधिकारी को।
4: मैं इसमें खाने की सही व्यवस्था नहीं होती, हाउस में लाते हैं। खाने की व्यवस्था इसलिए नहीं क्योंकि 550 बच्चे हैं वहाँ पर, ना तो फैन लगा है, ना कोई फैन, वैसे क्या नाम, गैस फैन नहीं लगे हैं, तो सबोगेशन होती है। खाते हैं वहाँ पर, बच्चे भी नहीं बैठ पाते, 550 बच्चे हैं, इतनी जगह नहीं है। तो हम लोग हाथ में ले आते हैं तो ये कहते हैं कि तुम लेटरिन में खाते हो, उसी का सूंघते हो, उसी में खाते हो, उसी में बैठ कर खाते हो, गंदे गंदे सब खाना। ऐसा कच्चे चावल रखे हैं, हम दिखाते हैं चावल कच्चे बिल्कुल, जो गले से नीचे ना होते। हम लोग करीब 100 से 100 बच्चे हैं।
2: कितनी देर से बंद है
4: सर? हम कल
2: 4 बजे से,
4: और कल शाम से हम लोगों ने खाना नहीं खाया।
2: स्कूल प्रशासन को सूचना दी थी इस बात की आप लोग बंद है अंदर?
4: आए विद्यालय, हमारी डिमांड है कि डीएम सर आए और हमसे बात करें आकर।
5: इस विद्यालय में बच्चों को कुछ अपनी कठिनाइयां थीं, जिसमें हम लोग आज गए और उनके बीच वार्ता की। जहां वो रह रहे थे उनके हॉस्टल में, उन्हीं के बीच में हम लोग बैठे। सभी बच्चे अनुशासित हैं, अच्छे बच्चे हैं, और मेरिट में ये लोग सेलेक्ट होकर यहाँ आए हैं। विधिवत रूप से उनको सुना गया है, जो उनकी कठिनाइयां थीं उनके बारे में हम लोग दूर करेंगे उनको, और सरकार हर तरीके से विद्यार्थियों के साथ है और मेधावी विद्यार्थियों के साथ भी है। किसी प्रकार की कोई कठिनाई इन लोगों को नहीं होने देंगे।
0: कहीं नारा लग रहा है कि कलेक्टर साहब को आना होगा, कहीं नारे लगाए जाते हैं कि बागी हमारी सुननी होगी। देखिए, ये वो बच्चे हैं जिन्हें नागरिक शास्त्र का पाठ पढ़ाया जाता है, लेकिन ये पहली बार उन पाठों का प्रयोग भी कर रहे हैं। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने आंदोलन के बारे में पढ़ा है, लेकिन पहली बार खुद आंदोलन कर रहे हैं। अब दो चीजों की जरूरत है। पहली, ऐसे हर आंदोलन में छात्रों की मांग सुनी जाए, उनकी बातें पूरी की जाए, और दूसरी जरूरत यह है कि सरकारें देखें कि आखिर क्यों अब भी स्कूलों की हालत खराब है, क्यों टीचरों की कमी है। इन लापरवाही के जवाबदेहों पर कार्रवाई भी हो।
1: अधिकार और कर्तव्य को समझते भारत के जैन अल्फा की तीसरी गवाही राजस्थान के अलवर से आई है।
3: 4 साल हो गए सीनियर स्कूल बने हुए, मात्र 5 टीचर है,
9: जो भी थर्ड ग्रेड के,
10: जो भी थर्ड ग्रेड के,
3: प्रिंसिपल सीटें भी खाली है। खेल मैदान, जिस मैदान में बच्चे स्टेट लेवल खेलने गए फुटबॉल, जिस मैदान बैठ गए चेस नहीं खेल सकते, ऐसा यही है क्या?
1: अधिकारियों के सामने मर्दानी बनकर अपने हक को बुलंद करती एक छात्रा बोलती, और तभी
3: मजाक बना रखा है स्कूल को, ना इसमें बैठने लायक एक भी कमरा है, इतने कमरे मैदान है।
1: ये बच्चे चीख नहीं रहे, बस उन अधिकारियों के कानून सामने खड़े होकर अपनी आवाज पहुंचा रहे, जो एसी कमरों से अब तक बहुत कम निकलते रहे, जो फाइलों में ऑल इज वेल लिखते रहे, उन्हें अब सुनना भी पड़ रहा है, बदलाव करना भी पड़ रहा है।

0: पुलिस की गाड़ी भी आ चुकी है और पुलिस की गाड़ी आ चुकी है और
1: जिस मानसून सत्र में हंगामे की वजह से संसद का कामकाज भूल गया, वहाँ इस मानसून में राजस्थान के अलवर में होता यह हंगामा कामकाज भूलने का नहीं, कामकाज को सुधारने का। ये बच्चे अलवर जिले के थाना गाजी में जोधावास गांव की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के हैं, जो कुछ बड़ा या अलग नहीं मांग रहे, बस ये चाहते हैं स्कूल दिया है तो सुरक्षित क्लासरूम हो, टीचर हो, स्कूल आने का रास्ता साफ हो, सड़क बने।
2: हमारी स्कूल को सीनियर हुए 4 साल हो गई, मात्र 5 टीचर है, जो थर्ड ग्रेड के जो बड़ी सीनियर क्लासों में पढ़ाते हैं, सेकंड ग्रेड में बस मात्र 1 टीचर है और जिसको भी कुछ भी होगा जो 400 रखा है और
3: हमारे विद्यालय में विद्यार्थियों को पहुंचने के लिए अच्छा रास्ता है, पुलिस हमारे जो सहपाठी है वो नदी क्रॉस करके आते हैं, तो हम चाहते हैं कि उनको नदी क्रॉस करने के लिए पुलिया का निर्माण किया जाए।
1: प्रदर्शन के बाद अधिकारियों ने पहले यहां तुरंत 7 टीचर और लगाकर शिक्षकों की कमी को पूरा किया, लेकिन इसके बाद भी धरना खत्म नहीं होता।
4: सभी से वार्ता की गई, 4 घंटे वो रुके, तो पहले तो ये है कि वो एक सीनियर स्कूल है, 5-6 अध्यापक थे, तो उसकी वजह 7 अध्यापक वहाँ और लगा दिए मौके पर ही, और 13 अध्यापक अब वहाँ 170 बच्चों के ऊपर हो गए।
1: बच्चे पूरा हिसाब चाहते हैं, इनके स्कूल के क्लासरूम की हालत देखिए, जहाँ पढ़ना खतरे से खाली नहीं, यहाँ बच्चे बाल बाल बचते हैं जब एक क्लासरूम में हादसा हो जाता है, इसीलिए धरना देना जारी रखते हैं। अधिकार और कर्तव्य को समझते भारत के जैन अल्फा की चौथी गवाही मध्य प्रदेश के उज्जैन से आई। छात्राओं के नारों की गूंज उज्जैन में गूंज रही, 700 से ज्यादा बच्चियां उज्जैन के सर्राफा कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हैं, जो अभी महाकाल मंदिर के पास जयसिंहपुरा में चलता है। अब इनके स्कूल को संदीपन विद्यालय में मर्ज किया जा रहा है, दलील ये कि स्कूलों की गुणवत्ता और शिक्षा में सुधार लाया जाएगा। छात्राओं का कहना है कि अब जिस स्कूल के साथ मर्ज किया जा रहा है वहां की दूरी ज्यादा है, रास्ते में इन्हें दिक्कत होगी, इसीलिए कलेक्टर दफ्तर के बाहर आकर धरना दे दिया। कलेक्टर शिकायत सुनने आए नहीं, जिला शिक्षा अधिकारी को भेज दिया।
5: स्कूल जयसिंहपुरा में और हमारा स्कूल शिफ्ट हो रहा है, हम इतनी दूर नहीं जा सकते, हमारे मम्मी पापा हमको परमिशन नहीं देंगे, वो बहुत दूर है और उधर का इलाका भी बहुत मतलब बहुत खराब है, हम कैसे जाएंगे।
6: लड़कियां गांव से आती है 10-10 किलोमीटर दूर से यहां तक, और छोटे और इतनी दूर से अगर वो दाऊद खेड़ी जाएंगे तो कब पहुंचेंगी, रात को 10 बजे, अगर बीच में अगर कोई दुर्घटना हो गई उनके साथ तो जिम्मेदार क्या, कलेक्टर रहेगा या कोई और रहेगा।
5: हमारे मम्मी पापा ने बोल दिया अगर सराफा स्कूल में दावत खेड़ी जाएगा तो हमें पढ़ाएंगे ही नहीं वो बिल्कुल भी।
7: अभी एकदम निर्णय नहीं होगा कि वहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, शासन के भी निर्देश है कि जिला स्तरीय मॉनिटरिंग समिति निर्णय ले, तो जिला स्तरीय मॉनिटरिंग समिति की बैठक शीघ्र होने वाली है, जिसमें पालकों के प्रतिनिधि को सूचित किया जाएगा, वो भी आएंगे और वो भी अपना पक्ष रखेंगे, उसके बाद जो निर्णय होगा वो मॉनिटरिंग समिति लेगी।
1: देश के तमाम राज्यों में होते ये प्रदर्शन इस बात को साबित करते हैं, सरकारों की तमाम कोशिश के बाद व्यवस्था बुनियादी जरूरतों को स्कूली ढांचे में पूरा करने में नाकाम है, जिसकी वजह से अब बच्चों को मैदान में उतरना पड़ रहा है।
8: इंजन अल्फा बच्चों को क्यों आंदोलन करना पड़ रहा है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण उत्तर प्रदेश की एक जगह के 2 स्कूलों से हम आपको दिखाते हैं। राजधानी लखनऊ से सटा हुआ इलाका है मोहनलालगंज, जहां के 2 प्राइमरी स्कूल में आज तक संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव पहुंचते हैं। इन 2 स्कूलों के बीच बहुत दूरी नहीं है, लेकिन स्कूल में मौजूद संसाधनों में जमीन आसमान का अंतर है। एक स्कूल में एलईडी प्रोजेक्टर पर पढ़ाई हो रही है, दूसरे स्कूल का ब्लैकबोर्ड तक घिस चुका है। एक स्कूल में साफ सफाई से मिड डे मील आता है और दूसरे स्कूल में टॉयलेट तक में पानी नहीं है, यानी कमी कहीं ना कहीं ऐसी है जहां सारे स्कूल एक जैसे नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चे परेशान होते हैं। अब सवाल है कि एक स्कूल में सब सुविधा पहुंच रही है तो दूसरे में क्यों नहीं।
9: आप तस्वीरों में देखें, ये है प्राथमिक विद्यालय कुशमौरा, और हम यहां जब दाखिल होते हैं तो यहां साफ सफाई देखने को मिलती है, और शायद ही आपने किसी बेसिक शिक्षा स्कूल में टाइल्स लगे देखे होंगे, आपको यहाँ पर टाइल्स लगे नजर आएंगे। यहाँ कोई खुदरी जमीन, मिट्टी या खड़ंजा, ईंट पत्थर नहीं है। यहाँ पर प्रॉपर आप देखें तो एक तरीके से ये पूरे टाइल्स यहाँ लगे हुए हैं। इसके अलावा ये प्रिंसिपल रूम है। इसके अलावा आपको मैं क्लासरूम में ले जाऊंगा और आप खुद चौंकेंगे कि क्या ये सरकारी स्कूल है। आइए मेरे साथ, ये देख सकते, आप अंदर आते हैं तो यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर एक क्लासरूम चल रही है। तमाम छोटे छोटे बच्चे हैं, अपने क्लास पढ़ रहे हैं, साइंस का ये सब्जेक्ट है, इनके पास किताबें हैं। और अगली तस्वीर है इस प्रोजेक्टर की। ये प्रोजेक्टर है ये प्रोजेक्टर है और ये एलईडी
10: स्मार्ट
9: स्मार्ट बोर्ड है। तो ये एलईडी स्मार्ट बोर्ड है। आप समझे कि कितना आगे बढ़ सकते हैं अगर चाह लें। अब आपको हम यहाँ ला रहे हैं, यहाँ पर भी क्लासरूम चल रही है और ये देखेंगे तो एक प्रोजेक्टर के माध्यम से ये जो टीचर है वो पढ़ा रही हैं। ये एक सब्जेक्ट है जिसको वो पढ़ा रही हैं। आकार के आधार पर वर्गीकरण कैसे किया जाता है इस प्रोजेक्टर के माध्यम से। ये बड़ी बड़ी मशीन्स आप देखिए यहाँ पर, ये प्रोजेक्टर है, यहाँ पर ये मशीन्स लगी हुई हैं। मैं क्योंकि बीच में आ गई तो मेरी भी तस्वीर इसमें पीछे से आ गई। प्रोजेक्टर्स का ये काम होता है और ये कोई कॉन्वेंट स्कूल नहीं है। हम इस वक्त मोहनलालगंज के मीरानपुर प्राइमरी स्कूल आए और जब हम यहाँ पहुँचते हैं तो यहाँ आपको गंदगी का अंबार दिखाई पड़ेगा। पहले आपको ये दिखा देता हूँ, ये एंट्री पॉइंट है मीरानपुर सरकारी स्कूल का, आप देखें। और आप बाहर की तरफ देखेंगे, ये स्कूल का एंट्री पॉइंट है। सामने दो गाड़ियां लगी हुई हैं और ये देखिए सामने एक बड़ा सा नाला, तालाब, इसको क्या कहें। यहाँ घूमते जानवर, ये गंदगी, कितनी बीमारियों का जड़ जो है, ये पूरा का पूरा तालाब नुमा नाला है। आप वॉशरूम कैसे आते हैं, वॉशरूम आने का रास्ता ये है। इतनी बड़ी बड़ी घासें हैं, इतने पुराने दरवाजे हैं और काफ़ी ज़्यादा बदबू है। इस इमारत की आप देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये हालत सरकारी स्कूल के वॉशरूम की है। ये कब गिर जाएगा, ईंट तक अंदर की दिखने लगी है, जाले यहाँ लटके हुए हैं। मैं पानी अगर पीना चाहूँ तो इसमें पानी नहीं निकल रहा है, कोई पानी नहीं है। सफाई के नाम पर ये चींटियाँ हैं जो छोटे छोटे बच्चों को कैसे काटेंगी, कितना काटेंगी, कोई नहीं जानता। यहाँ पर एक नल लगा है जहाँ पर टैप नहीं है, यानी कि इस पर जो नली होती है वो नहीं है। यहाँ पर तो टोटियाँ ही गायब हैं, एक दो तीन। ये गर्मी का मौसम है फिलहाल, यहाँ पर एक क्लास चल रही है। यहाँ की ज़मीन किस तरह की है, क्या किस तरह की इमारत पुरानी है, नीचे देखिए आप, सारी जो नीचे की ईंट हैं वो सब दिखाई पड़ रहे हैं। ऊपर दिखा दें क्लासरूम की हालत इस वक्त क्या है। टीचर्स जो हैं, टीचर्स दिन रात मेहनत कर रहे हैं, टीचर्स दिन रात अपना एक करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जिसे छोटे छोटे बच्चों का भविष्य संवरे। ये जितनी लोग हैं ये भी दिन रात एक करके पढ़ाते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन इनकी मेहनत का क्या जब इंफ्रास्ट्रक्चर ही।
8: रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
12: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

हमने आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मेट्रो का विस्तार किया, हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ताकत दी। जिस स्पीड से काम, जिस स्केल पर काम किया, ये सब, ये रफ्तार, ये विस्तार, ये अचीवमेंट आजादी के बाद पहली बार पिछले एक दशक ने देखा है। और जब इतनी सारी सिद्धियां हमारे सामने हो, इतनी तेज गति दिखाई देती हो, देशवासियों का सामर्थ्य पल पल प्रकट होता है, तब तो 2047 में विकसित भारत बनने का संकल्प कभी भी अधूरा नहीं रह सकता है। ये सारे आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि हम आगे बढ़ने वाले हैं, मेरे प्यारे देशवासियों। लेकिन उसके लिए आत्मविश्वास की जरूरत होती है, आत्मगौरव की जरूरत होती है, और साथ साथ आत्मनिर्भर भारत होना भी बहुत जरूरी होता है। और इसलिए बीते वर्षों में हमारा कन्विक्शन रहा है कि भारत को हमें अब दूसरे देशों पर निर्भर रह करके नहीं जीना, हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। दुनिया में बहुत कुछ मिलता है, सस्ता मिलता है, जल्दी मिल सकता है, लेकिन उससे हमारा सामर्थ्य तैयार नहीं होता, न हमारे सामर्थ्य की कसौटी होती है। और इसलिए हमें भी अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है, अपने हितों की सुरक्षा हमें खुद को करनी है। और इसलिए आत्मनिर्भर भारत का संकल्प बहुत दृढ़ता के साथ हम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं।

0: presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
2: सो सॉरी।

0: We are with you, friends.
1: जहां पर कभी नक्सलवादियों की गोलियां चलती थी, जहां पर कभी धरती रक्त रंजित रहा करती थी, आज उसी नक्सल क्षेत्रों में, उसी इलाकों में नक्सल मुक्त होने के कारण विकास, विश्वास और प्रयास का तिरंगा लहरा रहा है, मेरे प्यारे देशवासियों। लेकिन इस चुनौती को हमने कम नहीं आंकना है, इस चुनौती से हमें और भी सावधान रहने की जरूरत है। वर्षों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे, सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था। मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है। लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

वंदे मातरम पर को लेकर नया संग्राम, बीजेपी का आरोप, सोनिया गांधी ने बीच में रोका, कांग्रेस बोली कोई विवाद नहीं, खड़गे जी के लिए कुर्सी लाने को बोला। प्रधानमंत्री ने दिमागी नक्सलियों पर किया प्रहार, कहा देश को नुकसान पहुंचाने वालों की पहचान जरूरी, कांग्रेस ने कहा सियासी विरोधियों को अर्बन नक्सल कहा करते थे, अब दिमागी नक्सल बोल रहे हैं।

बाबा रामदेव ने आंदोलन की दी चेतावनी, कहा भारी घपला, सड़कों पर आ रहे हैं बच्चे। देश भर में मना आजादी का जश्न, राज्यों में मुख्यमंत्रियों ने फहराया तिरंगा। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने राजधानी दिल्ली में विकास की रफ्तार बढ़ाने पर दिया जोर। चंडीगढ़ में सिख

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

भारत आज स्वतंत्रता की अपनी 80वीं सालगिरह मना रहा है। पूरे देश में के साथ साथ सरहद पर भी जोश, जज्बा और जुनून अपने चरम पर है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी और आज जश्न आजादी के इस महापर्व में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमृतसर से 30 किलोमीटर दूर अटारी वाघा बॉर्डर पर इस वक्त हजारों की तादाद में लोग जुट रहे हैं, जहां बीएसएफ के जवान अब से कुछ ही देर में बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी की शुरुआत करेंगे। भारत माता की जय के नारों के साथ पूरा अटारी वाघा बॉर्डर गूंज उठेगा। वैसे तो यहां हर दिन शाम को ध्वज उतारने की प्रक्रिया या फिर सेरेमनी का आयोजन किया जाता है, लेकिन आज बीएसएफ के जवानों का उत्साह अपने चरम पर होगा और दशकों की देशभक्ति और उनकी अभिव्यक्ति की अद्भुतता भी हम आज देखेंगे। हमारे साथ इस शो में हमारे दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ एस के सूद सर होंगे, पूर्व एडीजी हैं बीएसएफ से, और पी के मिश्रा सर जो एसपीजी अधिकारी भी रहे और पूर्व एडीजी बीएसएफ भी रहे। साथ ही हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव ढोंडियाल भी हमारे साथ अटारी बॉर्डर से जुड़े होंगे, उनका रुख भी करेंगे और आपको तस्वीरें दिखाएंगे राजीव के साथ कि आखिरकार वहां पर लोगों का जोश कितना हाई है। लेकिन सबसे पहले बॉर्डर पर जय हिंद की रिपोर्ट एक आपको दिखाते हैं।

अटारी बॉर्डर पर भारतीय जवानों का जोश हाई, सीमा पर फिर पराक्रम दिखाने की बारी आई। अटारी बॉर्डर पर कल शाम से ही देशभक्ति के तराने गूंज रहे हैं। सीमा सुरक्षा बल के जवान हमेशा की तरह मुस्तैद हैं और आजादी का जश्न मना रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद स्वतंत्रता दिवस का ये दूसरा मौका है जब अटारी वाघा बॉर्डर पर भारतीय जवान बीटिंग द रिट्रीट की हर परंपरा को निभाएंगे, लेकिन उन बदलावों के साथ जो पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए किए गए हैं।

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अटारी बॉर्डर पर कई दिनों के लिए बीटिंग द रिट्रीट समारोह बंद कर दिया गया था। फिर भारत पाकिस्तान के बीच 10 मई 2025 को हुए सीज फायर के बाद जब सीमा पर तनाव में कमी आई तो इसे फिर शुरू कर दिया गया। लेकिन भारत की ओर से दरवाजे खोलने और पाकिस्तान की सेना से हाथ मिलाने की प्रक्रिया को खत्म कर दिया गया था।

सरहद पर बंद दरवाजों के इस पार अदम्य साहस और गर्व की ये गूंज उस पार तक कई सख्त संदेश लेकर जाती है। भारतीय जवानों का अनुशासन, साहस और समर्पण अटारी की फिजा में ऐसे घुल मिल गया है कि देश भर से यहाँ आया हर एक भारतवासी राष्ट्रभक्ति के रंग में रंगा दिखता है। अटारी बॉर्डर से राजीव ढोंडियाल और अमित शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो

अटारी बॉर्डर से देश के दुश्मनों को हद में रहने की चेतावनी वैसे तो हर शाम दी जाती है, लेकिन स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इसके रंग कुछ ज्यादा ही चटक हो जाते हैं। भारतीय जवानों के बूटों की गूंज दुश्मन की धरती हिला देती है और भारत माता की जय के नारे आसमान तक गूंजते हैं।

0: और ये तस्वीरें आपने देखी, अद्भुत तस्वीरें, लगातार हर साल यहाँ पर इसी तरीके के साहस और गर्व से भर देने वाली तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं। और हमारे साथ कुछ नई तस्वीरों के साथ हमारे सहयोगी राजीव डोंडियाल भी अटारी बॉर्डर से जुड़ गए। राजीव, इस समय किस तरीके का जोश वहां पर है, और खास तौर पर क्योंकि आप जब यहां जा रहे थे बहुत उत्सुक थे चीजों को जानने के लिए, समझने के लिए, अभी जो तस्वीरें आपको दिख रही है कैसा लगता है आपको वहां पर पहुंचकर?
1: कमाल का, अद्भुत, बिल्कुल अलग यहाँ पर एक्सपीरियंस है। सुमित, सरहद पर मैं हूँ जहाँ पर एक लकीर दो देशों को अलग करती है, लेकिन इस तरफ जो तिरंगा है वो सबको एकजुट कर देता है, एक साथ जोड़ देता है, देशभक्ति का माहौल है। मैं चाहता हूँ कि एक बार संजय आपको तस्वीरें भी दिखा दें कि यहाँ पैर रखने की जगह नहीं है। मैक्सिमम कैपेसिटी यहाँ के 50,000 है और पैर रखने की जगह नहीं। छोटे छोटे बच्चे जिनके अभी परफॉर्मेंस होनी है वो अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके वो प्रैक्टिस करें। DGBSF कुछ देर बाद आएंगे, गार्ड ऑफ ऑनर होगा, सारी चीजें होंगे, लेकिन कई घंटे पहले आ गए। यहाँ पर फील्स लाइक टेम्परेचर 48 डिग्री के आसपास है, बेहिसाब गर्मी है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग कई घंटों पहले से आकर यहाँ पर देशभक्ति के इस रंग में रंगे हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर बहुत बहुत मुश्किल, बहुत ज्यादा उमस है, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग आए हैं। सैनिकों के कदमों की यहाँ पर ताल कुछ देर के बाद सुनाई देगी, और उसको सुनने के लिए जो पूरे देश को एक भरोसा देता है, सिक्योरिटी का, सेफ्टी का भरोसा। और ठीक इस जगह से, मतलब यहाँ पर चीजें इसलिए ज्यादा बढ़ जाती हैं क्योंकि सामने की तरफ एक वो देश आ जाता है जो नापाक है, जिसका नाम लेना भी अभी उचित नहीं है, और पूरे विश्व में खैर उसकी हर तरफ थूत ही होती है, उसकी बात भी क्या ही की जाए। लेकिन इस तरफ लोग उस तरफ देखकर थोड़ा सा उनकी आंखों में एक खून भी आ जाता है। गालिब का शेर भी है ना कि जब आंखी से ने टपका तो लहू क्या है। यहाँ पर आते वो जो लहू है ना, जो रक्त में प्रवाहित हो रहा होता है, धमनियों में प्रवाहित हो रहा होता है, वो एकाएक आंखों से आ जाता है। और जो देशभक्ति, जैसे आप जो दिल्ली में हैं या देश के जो दूसरे हिस्सों में, और जो इस समय अटारी पर होता है, वो बिल्कुल एक अलग अलग पल, अलग क्षण होता है। सैनिकों की वीरता, सैनिकों का पराक्रम, सैनिकों का बलिदान, सब कुछ याद आता है आज के दिन, और यहाँ पर महसूस करने के लिए कि कितना कितना बलिदान हमने दिया और हर पल कितना सहते हैं।
0: बिल्कुल,
1: देश की सुरक्षा करने के लिए ये हमारे जवान, चाहे धूप हो, बारिश हो, सब कुछ हो। लेकिन ये तस्वीर एक बार सुमिता फिर से देख लीजिए, देखिए आप, देखिए कि इस जगह को और इसका विस्तार किया गया बैठने के लिए, क्योंकि दिन प्रतिदिन यहाँ पर लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। और 26 जनवरी और 15 अगस्त तो वो मौका है जब लोग यहाँ पर पहुंचना ही चाहते हैं, किसी भी तरह पहुंचना चाहते हैं। जिनको बैठने की जगह मिल गई वो बैठ गए, जिनको बैठने की जगह नहीं मिली वो खड़े हो गए, और अब लोगों को मना भी नहीं किया जाता है, तो जो आना चाहता है उसको आने दिया जाता है। देखिए लोग खड़े हैं।
0: राजीव, ये वो आपने जैसा बताया कि मौसम में गर्मी है, लेकिन गर्मजोशी लोगों के दिल में भी है, और वो वही गर्मजोशी संख्या बल में भी तैनात वह दिखा रही है। एक और बात राजीव, क्योंकि आप अगर किसी वहां पे लोग जो मौजूद हैं उनसे बातचीत कर सके, क्योंकि कैसा अनुभव करते हैं, क्योंकि कई ऐसे लोग होंगे, बच्चे होंगे खासतौर पर, जो पहली बार वहां पर आते हैं, किस तरीके का अनुभव उनका रहता है, अगर आप हमें, हमारे दर्शकों तक वो भी पहुंचा सके तो?
1: हाँ सुमित, चूंकि इस बार हम थोड़ा सा दूरी पर हैं तो यहाँ से लोगों के बीच में जाना संभव नहीं है, लेकिन हाँ वो जो आप बात कर रहे हैं कि बच्चे, बूढ़े, युवा, वो क्या महसूस कर पा रहे हैं, मुझे उसके लिए उनके पास जाने की आवश्यकता नहीं। आप दूर से ही कैमरे से देख सकते हैं कि वो जोश से भरे हुए, जोश से लबरेज हैं, मतलब जोश उनका हाई है। अब आपको यकीन मानो कि अगर मुझे एंकरिंग ना करनी होती तो आप मुझ में और उनमें ज़्यादा फर्क नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत मुश्किल मेरे लिए भी हो रहा है यहाँ से रिपोर्टिंग करना, क्योंकि इस माहौल में घुल मिल जाना और इस माहौल से अलग रिपोर्टिंग करना भी आसान नहीं है, क्योंकि इन गीतों पर हम थर थिर रखना चाहते हैं, इस सब की धड़कने एक ही सुर में वही बात सुमित बोल रहे हैं। अब आप इन तस्वीरों को देखिए, मतलब इसमें सब हर वर्ग के लोग आपको दिखाई दे रहे हैं और देश के अलग अलग हिस्सों से आए हैं। अब चूंकि अटारी, चूंकि पंजाब में, तो ऐसा नहीं कि पंजाब के बगल से लोग, नहीं, अलग अलग हिस्सों से। मैं जिस फ्लाइट से आया उस फ्लाइट में लोग आए थे अलग अलग स्टेट से, बिल्कुल दूर दूर से आए थे। वो कह रहे थे कि हमें अटारी जाना है, हम इन पलों को जीना चाहते हैं, हम सैनिकों को, जीवन को बड़े नजदीक से देखना चाहते हैं क्या उन्होंने जिया है। और यहाँ से हम 15 अगस्त हर साल हम मनाते हैं, लेकिन कैसे यह आज़ादी मिली है, उस आज़ादी को जीना चाहते हैं कि बहुत बलिदान हुआ, बहुत कुर्बानियाँ हुई, बहुत सारे वीर सपूतों का तो नाम सामने आता है, बहुत अनगिनत ऐसे थे जिनका नाम ही नहीं आता है, उन सबको याद करके हम हंस के खेल के खुश होकर नाच के गा कर ही उनको श्रद्धांजलि कुछ इस तरह से लोग देते हैं। थोड़ी देर बाद अधिकारी भी सुमित यहाँ पर पहुंच जाएंगे।
0: बिल्कुल, आप तस्वीरें दिखाते रहिए, लेकिन हमारे साथ हमारे दो खास मेहमान भी राजीव जुड़े हुए हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूंगा, क्योंकि मैंने आपसे पहली बार ही पूछा कि आपका भी पहला मौका है, वो उत्साह वो गर्मजोशी आपके चेहरे पर आपकी रिपोर्टिंग में भी दिख रही है। सूज सर, जब इस तरीके की सेरेमनीज होती हैं तो एक तरीके का उत्साह होता है खास तौर पर वहां मौजूद लोगों में, लेकिन जवानों का मनोबल कैसे हाई होता है, क्योंकि आपने तो उस चीजों को बहुत करीब से देखा है।
2: जवानों का मनोबल यहाँ पर बहुत हाई रहता है, और वैसे भी बीएसएफ के जवान इंस्पाइट के इतनी कठिन ड्यूटी है, उनका मनोबल हमेशा ऊंचा रहता है। यहाँ पर खास तौर पे ये सेरेमनी रोज होती है, और इसके लिए सिलेक्टेड जवान होते हैं जो के लगातार प्रैक्टिस करते, 2-3 सेट्स होते हैं जवानों के, और उनको लगातार इस चीज की प्रैक्टिस कराई जाती है। अगर प्रैक्टिस नहीं कराई जाए तो जो सिंक्रोनाइजेशन होता है रेंजर्स के बीच में और बीएसएफ के बीच में, वो नहीं हो पाएगा। तो मोराल हाई रखने के लिए ये एक तो जवान प्रॉपर अच्छी कद काठी वाले सेलेक्ट किए जाते हैं, दूसरा इनके लिए स्पेशल डाइट और स्पेशल तरह के इक्विपमेंट का बंदोबस्त किया जाता है, रेस्ट रिलीफ का अच्छी तरह से ध्यान रखा जाता है, एक्सक्लूसिवली इसी के लिए इनको डिप्लॉय किया जाता है, और ये अन्य ड्यूटियां इनको नहीं दी जाती हैं। तो इस प्रकार इनका इनको जो बैकअप लॉजिस्टिक्स सपोर्ट है वो अच्छी तरह से दिया जाता है, और इस तरह से इनका मोराल मेंटेन रखा।
0: सर हमारे साथ मिश्रा सर भी, देखिए मिश्रा सर खास तौर पे क्योंकि सर बता रहे थे कि देखिए इनको स्पेशल बूट्स होते हैं, इनके बहुत चीजें होती है। मैं अगर इस जगह की बात करूं, सेरेमनीज बेसिकली पीस टाइम के लिए ज्यादा होती हैं, और ये इसलिए भी होती हैं कि देखिए जो हमारे युवा हैं, जो बच्चे हैं, वो इन सेरेमनीज से वो चीजों को महसूस करें, अपने देश की सुरक्षा में तैनात हो, बच्चों का बहुत ज्यादा जुड़ाव होता है। लेकिन जब इस सेरेमनी को कंडक्ट किया जाता है एक अजीब ही उत्साह होता है वहां पर लोगों में, एक चार्जिंग पॉइंट आ जाता है। आपने भी कई बार विजिट किया होगा, किस तरीके का माहौल आपने अपने एक्सपीरियंस किया है?
3: बिल्कुल, मैं क्लियरली बताना चाहता हूँ, ये तो कम से कम मैं 15-20 बार इसको देखा हुआ है, और वहाँ काफ़ी बार मैं गया भी हूँ, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद पर्टिकुलरली 15 अगस्त को और 26 जनवरी को पहुँचना और दूसरे दिन पहुँचना, इसके बीच में बहुत फर्क है। इसमें आप देखें जो जोश जज्बा और जुनून, इसको अगर देखना चाहिए तो आज जाना चाहिए या रिपब्लिक डे पर जाना चाहिए, क्योंकि ये 1959 से शुरू हुआ, 1959 से शुरू हुआ, बस 2-3 बार बंद हुआ था। 2014 जब उन्होंने टीटीपी ने अटैक किया था पाकिस्तान साइड पे, तब उसमें 60% उनका डेथ हुआ था, 200 तकरीबन इंजोर्ड हो गए थे, तब बंद हुआ था। 2019 में जब अभिनंदन वापिस आ रहा था, मैं तो इस गेट को अभिनंदन गेट बोलता हूँ, काफी बार आपके चैनल में भी बोल चुका हूँ कि ये मेरा अभिनंदन गेट है, तब ये बंद हुआ था। तीसरी बार बंद हुआ था हमारा जब ये वार हुआ, हमारा पहलगाम इंसिडेंट के बाद जो अब सिंदूर हुआ तब बंद हुआ था। लेकिन ये जो सिंक्रोनाइजेशन हुई, ये जो बीटिंग रिट्रीट है, इस पर देखना चाहिए। ये हमारे ट्रूफ जो है, अभी जैसे बता रहे थे सूर्य जी, जो ट्रूफ्स है पर्टिकुलरली आज प्राइम मिनिस्टर रेड फोर्ट से बोल रहे थे नारी शक्ति, आप इस नारी शक्ति को आज देखेंगे, आप देखेंगे नारी शक्ति को, कि बीएसएफ का नारी शक्ति और उस पार में पाकिस्तान रेंजर का नारी शक्ति, उसमें प्रभेद आप देखेंगे।
0: सर ये बात हम क्यों ना राजीव से पूछ लें, क्योंकि राजीव वहां पर मौजूद है, राजीव उन तस्वीरों को भी दिखा सकता है। राजीव, नारी शक्ति की बात हो रही है और हम देखते हैं कि कैसे हमारे फोर्सेस के अंदर महिलाओं का योगदान, उनका इन्वॉल्वमेंट लगातार बढ़ता जा रहा है, वहां पर आपको क्या रिएक्शन मिल रहा है? कई महिलाएं भी मौजूद होंगी, कई ऐसी बच्चियां भी मौजूद होंगी जो वहां पर आकर इसको विजिट कर रही
1: है। बिल्कुल सुमित, मैं देख रहा था जब मैं यहाँ पर पहुंच रहा था तब से लेकर यहाँ पर भी, मतलब महिलाओं की तादाद बहुत ज्यादा है, छोटी छोटी बच्चियों की तादाद बहुत ज्यादा है। मेरे ठीक पीछे भी आप इस समय देख रहे होंगे एक परफॉर्मेंस चल भी रही है, यहाँ पर गिद्दा परफॉर्म किया जा रहा है, अभी ये प्रैक्टिस है, क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा डीजी बीएसएफ को, उससे पहले ये छोटी छोटी बच्चियां प्रैक्टिस कर रही है, अपनी अभ्यास कर रही है। लेकिन ठीक, अगर आप सैंड्स में देखेंगे, सैंड्स में भी आप देखेंगे छोटी छोटी बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, और 50% से कम तो आप नहीं कह सकते कि यहां पर महिलाएं, 50% के बराबरी का यहां पर नजर आ रहा है। जितनी संख्या में पुरुष हैं उतनी ही संख्या में महिलाएं भी यहां पर हैं, और उतने ही उत्साह के साथ, उतना ही जोश उनका भी आया। आप ये परफॉर्मेंस देखिए, ये जो भांगड़ा है, जो पंजाब की जान है, पंजाब की शान है, वो भांगड़ा इसे मैं परफॉर्म किया जा रहा हूँ। छोटी छोटी बच्चियाँ मुस्कुराते हुए इसे प्रस्तुत करती हुई दिखाई दे रही हैं। ये दृश्य है, थोड़ी देर बाद बीएसएफ डीजी भी आने वाले। ये रंग हैं इस समय अटारी बॉर्डर के। अच्छा, अटारी बॉर्डर भारतीय है और वाघा बॉर्डर दूसरी तरफ है। भारत में भी कई लोग इसे वाघा बॉर्डर बोल देते हैं, लेकिन ये अटारी बॉर्डर है। बिल्कुल
0: बिल्कुल।
1: अब अटारी बॉर्डर का इस समय का ये दृश्य है जी, सुमित।
0: बिल्कुल, और देखिए आप, यही बात है कि आधी आबादी और पूरी हिस्सेदारी स्वतंत्रता संग्राम के साथ साथ, आजादी की लड़ाई के साथ साथ, किसी भी जंग को आप उठा लीजिए, महिलाओं का योगदान, उनका इन्वॉल्वमेंट हर जंग में बहुत सर्वोपरि है, बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। और शायद इसी वजह से हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर, आर्मी के अंदर, हमारी सभी डिफेंस फोर्सेस के अंदर महिलाओं की भागीदारी, उनकी हिस्सेदारी लगातार बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। पीके मिश्रा सर, हम देखते हैं कि महिलाओं का योगदान, पहले जब हम देखते थे कुछ दशकों पहले कि उनका योगदान एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उनकी अलग अलग ब्रांच, लेकिन अब एक्टिव कॉम्बैट फोर्सेस में भी उनका इन्वॉल्वमेंट होता जा रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं?
3: मैं इसी के ऊपर अभी बता रहा था आपको, मैं इसमें ऐड करना चाहता हूं, महिलाओं का योगदान बहुत दिन से बीएसएफ में, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में है। आप देखिए बीएसएफ में, आप अभी आप देखेंगे, मैं जो बात कह रहा था, महिलाओं का जो मार्च, जो कलम, जो दस्ता अभी आएंगे, महिलाओं ने जो वेपन ड्रिल करेंगे और जो फिजिकल ट्रेनिंग का भी शो करेंगे और उनका जो मार्चिंग दस्ता और वो जो परेड अभी करेंगे, वो अभी देखने लायक है। पर्टिकुलर दो चीज और मैं बताना चाहता हूं कि बॉर्डर आउटपोस्ट में, ऑब्जर्वेशन पोस्ट में जो हमारा महिला कमांडो है, उनका जो कार्य है वो देखने लायक है। इसमें मैं दो चीज और बताना चाहता हूँ। पंजाब बॉर्डर में, यही पंजाब बॉर्डर में,
0: तो खुद विजिट किया,
3: ड्रोन आता है, वो ड्रोन में वेपन और गांजा आता है, अफीम आता है, लेकिन उसको गिराने में सक्षम है हमारे महिला दस्ता। एक और चीज जो हमारा ऑपरेशन हुआ अभी पाकिस्तान के साथ, ऑपरेशन सिंदूर, उसमें जो है आप देखेंगे जो हमारा जम्मू बॉर्डर,
0: क्योंकि राजीव वहां पर मौजूद है आपके साथ, आपको सूसर का भी रुख करूंगा। राजीव, एक बार फिर से राजीव का रुख कर लेते हैं। राजीव, तस्वीरें दिखाई और बताइए इस समय का माहौल क्या है और कितनी देर में सेरेमनी का जो फॉर्मल बिगनिंग होगी वो कितनी देर में होने वाली है?
1: चार 15 का सुमित समय था, बस कुछ देर बाद शुरू होने वाली है और अनाउंसमेंट होने लग गई है। अनाउंसमेंट शुरू हो गई है और आप पूछ रहे हैं कि यहाँ पर कैसा माहौल है। यहाँ पर जोश हाई है, उत्साह का माहौल है, देशभक्ति यहाँ पर महसूस की जा सकती है आराम से। और अब DGBSF कुछ ही क्षणों में यहाँ पर आने वाले हैं, गार्ड ऑफ ऑनर की यहाँ पर शुरुआत होने वाली है। हलचल यहाँ पर बहुत तेज हो गई, आपसे थोड़ी देर पहले यहाँ पर अभ्यास चल रहा था, वो अभ्यास भी अब रोक दिया गया। बस कुछ ही क्षणों में यहाँ पर गार्ड ऑफ ऑनर की शुरुआत होगी और उसके बाद यहाँ पर रंगारंग कार्यक्रम होंगे, अलग अलग कार्यक्रम, देश के अलग अलग क्षेत्रों के आए जो कलाकार है वो यहाँ पर परफॉर्मेंस देने वाले हैं। और ये समय की जो है तस्वीरें, जो यहाँ के जो एक चिर परिचित अंदाज है कि जो अधिकारी हैं वो माइक से अनाउंस करते हैं और जैसे वो अनाउंस करते हैं, जिस तरफ वो अनाउंस करते हैं, उस तरफ के जो युवा हैं, उस तरफ के जो लोग हैं, वो खड़े हो जाते हैं, वो चीखने चिल्लाने लगते हैं और गला बैठ जाता है, मेरा खुद का गला बैठ गया, क्योंकि मैं इससे पहले खुद ही इन्वॉल्व होकर उनके साथ जो है भारत माता की जय और यहाँ जो देशभक्ति के गीत गाए जा रहे हैं, देशभक्ति के गीतों को गा रहा था। अब आप इस समय देखिए कि गेट की तरफ बिल्कुल हलचल तेज है, गार्ड ऑफ ऑनर की बिल्कुल तैयारियां हैं। ये इस समय की आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं अटारी बॉर्डर की, जहां पर 15 अगस्त का ये जश्न मनाया जा रहा है। 15 अगस्त बड़ी ये जो दिन है, इसके लिए बहुत बहुत मेहनत हुई है भाई, बहुत खून बहा है, बहुत बलिदान हुए हैं, बहुत कष्ट, बहुत पीड़ा सही गई है और उसके बाद आज इस दिन को सेलिब्रेट करने का दिन है। तो कैसे सेलिब्रेट किया जाए, भारतीयों से बेहतर कोई और नहीं जान सकता।
0: बिल्कुल, और राजीव
1: कोई हमसे सीखें, इतने त्योहार हमारे देश में हैं। जी
0: बिल्कुल, आपने त्योहारों की बात की, त्योहार हम बनाते हैं लेकिन ये देश का त्योहार है, एक ऐसा त्योहार जब आपने अपनी आजादी के साथ अपने आने वाले भविष्य को भी आप सेलिब्रेट करते हैं, आप तैयार करते हैं। सुसर, मैं इसलिए आपसे आपको इन्वॉल्व करना चाह रहा था, राजीव ये तस्वीरें दिखा रहे हैं हमें, हम जब बीटिंग रिट्रीट की बात करते हैं, कहते हैं कि ब्रिटिश एरा का ये पूरा सेरेमनी थी, इनको फॉलो किया गया, आज भी इनको मनाने के पीछे का मकसद क्या है?
2: देखिए, ब्रिटिश एरा हो या हमारे अगर इतिहास में देखें तो हमारे महाभारत में भी प्रभात फेरी और संध्या फेरी, या जो मुझे एक्चुअल वर्ड नहीं याद आ रहा, उसमें ट्रूप्स रात के समय में रेस्ट करते थे, लड़ाई रात के समय में नहीं होती। वही इम्प्लिकेशन है इसका कि दोनों देश के जो अगल बगल के देश हैं वो लोग आपस में मिलके अपने झंडे को उतार लेते हैं, विच मीन्स पुराने जमाने की सिंबोलिज्म को देखें तो युद्ध विराम की स्थिति होती है। तो वही इसका तात्पर्य है कि हम एक तरह से युद्ध विराम कर रहे हैं। और यहाँ पर जो सिग्निफिकेंस है, यहाँ पर फिर आवाजाही बंद हो जाती है, दोनों तरफ के गेट बंद हो जाते हैं, ट्रेड जो होता है वो रात के समय में नहीं होता है। तो ये सब है। मैं एक चीज आपका टिकर में देख रहा था, उसमें एक चीज करेक्शन, 1959 में तो पुलिस थी, तो पुलिस ने ये शुरू की थी, बीएसएफ तो 1965
0: में आई है,
2: रेज हुई है, तो बीएसएफ ने 1965 में। और जहां तक महिलाओं का सवाल है, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि महिलाएं सिर्फ इस सेरेमोनियल काम के लिए हैं। महिलाएं हमारे फोर्स में 2008-09 से, मैं पंजाब में ही उस समय पीएस होता जब ये आनी शुरू हुई थी, वहीं पे पहले बैचेस आए थे, तो उसके बाद से अब इनका धीरे धीरे काफ़ी इवॉल्व हुआ है काम, और ये लगभग सभी प्रकार की ड्यूटीज़।
0: अब इससे मैंने मारो, शायद मुझे लगता है कि सर क्योंकि हमने भी खुद बॉर्डर्स पे जाके इनका सर्वेलेंस, इनकी पेट्रोलिंग हमने खुद विजिट की, अपने दर्शकों को भी दिखाया, और शायद यही बात है कि देखिए आज के समय पर चाहे बड़ा हो, बच्चा हो, महिलाएं हो, पुरुष हो, हर कोई देश की सुरक्षा का इस उत्सव में पूरी तरीके से किस तरह के भावीन है और खासतौर पर किस तरीके से इन्वॉल्व है। ये तस्वीरें राजीव आपको वाघा बॉर्डर से लगातार दिखा रहे हैं, अटारी वाघा बॉर्डर से, और ये तस्वीरें हम आपको दिखाते भी रहेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ये बड़ी कवरेज, ये महत्वपूर्ण कवरेज हमारी जारी रहेगी।
4: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा, इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोको।
6: जिस मिट्टी में फसल उगती है उसी में भारत की स्वतंत्रता की खुशबू है। इस स्वतंत्रता दिवस आइए उन किसानों का सम्मान करें जो हर दिन देश को मजबूत बनाते हैं। मेरे और क्रिस्टल परिवार की ओर से आपके और आपके परिवार को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।

0: मुल्तानी खू का कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी खू का कॉफ सिरप।
1: In association with
2: Sera Sanitaryware, it's your moment of Sera. E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: भिखारियों का मनोविज्ञान क्या है?
4: तैयारी तुम भी कर रहे हो क्या?
3: नहीं सर।
4: 12th किससे की हो?
3: 12th सर मेरा PCM से रहा।
4: कंपाउंड क्या होता
3: है? बेसिकली जो एक्युमुलेटेड चीजें रहती हैं उसके ऊपर।
4: यही है भीख मंगे वाली क्वालिटी। तुम पूछ रहे थे ना, यही है यही। एक मिनट,
3: ये जो आपका तरीका बहुत सर बहुत अच्छा नहीं है। इस तरीके से समझाने का स्टूडेंट्स को, इसे सर ह्यूमिलिएशन कहते हैं।
4: देख भाई, अपनी गारंटी पे छेड़ना

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।

जम्मू कश्मीर में बारिश आफत बनकर आई। पहाड़ों पर मूसलाधार प्रहार से कई इलाकों में फ्लैश फ्लड आ गया, तो कहीं मलबे के साथ पानी की तेज धारा घरों और गलियों तक पहुंच गई। ये जम्मू कश्मीर की भद्रवाह की तस्वीरें हैं। बाजार पर पानी का कब्जा हो गया है, चौक चौराहों पर बहाव इतना तेज है कि मानो यहाँ सड़क नहीं नहर बह रही है। भारी बारिश के बाद भद्रवाह के कई इलाकों से इसी तरह की तस्वीरें आईं। रिहायशी इलाकों में भी बारिश का पानी घुस गया। जिन गलियों में बच्चे खेलते थे वहां पानी की तेज धारा बह रही है। ये तस्वीर भी भद्रवाह की है। जामिया मस्जिद चौक पर अचानक फ्लैश फ्लड जैसे हालात हो गए, लोग अपनी जान बचाकर भागने लगे। इस दौरान कुछ लोग एक बाइक को भी इस पानी से बचाने की कोशिश करते दिखे। कड़ी मशक्कत के बाद एक बाइक तो बच गई, लेकिन सड़क किनारे खड़ी दूसरी गाड़ी पानी में बह गई। जो जिला सुरंग के पास ऊंचाई वाले इलाके में अचानक बादल फटने की घटना हुई, जिसके बाद वहां भी फ्लैश फ्लड आ गया। पानी के साथ मलबा और बड़े पत्थर भी बहने लगे। भारी मलबे की वजह से जोजिला का रंगा मोड़ ब्लॉक हो गया। हालांकि बीआरओ ने अपनी टीमों को तैनात कर दिया है, स्थिति पर नजर रखी जा रही है। अब जरा शिमला की भी तस्वीरें देखिए। भारी बारिश के चलते जगह जगह लैंडस्लाइड की खबरें सामने आ रही हैं। शिमला के ढली इलाके में सब्जी मंडी के पास अचानक पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे। गनीमत रही कि ये पत्थर जिन वाहनों पर गिरे उसमें लोग नहीं थे। पत्थरों की वजह से 12 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। भारी बारिश की वजह से चित्तौड़गढ़ के मेनाल प्रपात में भी जलस्तर बढ़ा हुआ है। यहाँ पिकनिक मनाने गया एक शख्स पानी में बहने लगा। अचानक हुई इस घटना से वहाँ अफरा तफरी मच गई। आसपास खड़े लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद युवक को निकाल लिया। आज तक ब्यूरो

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: ब्रेक के बाद हमारी इस खास पेशकश में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी और आपको सबसे पहले लिए चलते हैं अटारी बॉर्डर पर, जहां पर हमारे सहयोगी राजीव ढोंडियाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, क्योंकि ब्रेक के बाद हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से वो तस्वीरें दिखाना चाहते हैं, वो उत्साह, वो गर्म जोशी दिखाना चाहते हैं जो इस समय अटारी बॉर्डर पर आप तस्वीरें दिखाई, और बताइए इस समय का माहौल वहां पर कैसा है।
1: मैं बिना देर किए सुमित आपको सीधा तस्वीरें ही दिखाना चाहता हूं, क्योंकि मैं जो मैम महसूस कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि यहां से हमारे कैमरे के जरिए सभी महसूस करें, और पूरा पैन करके मैं चाहूंगा कि एक बार आपको तस्वीरें दिखाए जाएं। आप ये दोनों तरफ के स्टैंड्स की तस्वीरें देखिए, सिर्फ लोग हैं और अब बेसब्री से सबकी निगाह एक और है यहाँ ठीक बीच में, जहां पर अब से कुछ ही देर बाद गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाने वाला है, जहां पर अब से कुछ ही देर बाद कार्यक्रमों की शुरुआत होने वाली है। जो सबका हाय है और बड़ी संख्या में यहां पर सभी लोग पहुंचे हुए हैं। ये स्टैंड्स आप देखिए खचाखच भरे हुए हैं। इस गर्मी में लोगों की प्रायोरिटी सिर्फ देशभक्ति है, उनके भीतर इस समय सिर्फ और सिर्फ देशभक्ति है, और यहाँ पर आकर यकीन मानिए आप भी आदमी सब कुछ भूल जाता है। कितनी तेज धूप लगती है, अब तो समय वो आ गया ना कि अब व्यक्ति समझता है कि उसे टैनिंग हो जाएगी अगर धूप में जाएगा, तो यहाँ पर वो भावना ही नहीं है कि हमें टैनिंग हो जाएगी, हमारी स्किन जल जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर सब लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, क्या वो आर्मी के फैमिलीज हों, क्या वो सामान्य परिवारों के लोग हों, हर कोई यहाँ पर पहुंचा हुआ। अब आप देखिए हर स्टैंड की तस्वीर देखिए, हर स्टैंड पर आप लोगों को देखिए। यहाँ पर आपको बीएसएफ की भी तारीफ करनी पड़ेगी, इतनी गर्मी में जहाँ हर 2 मिनट बाद आपको पानी की आवश्यकता होगी, यहाँ पर पानी है, यहाँ पर पंखे लगाए गए हैं, उन पंखों से पानी भी जा रहा है, तो इस गर्मी में लोगों को राहत दिलाने के ये प्रयास हैं। अधिकारियों के आपको हलचल यहाँ पर दिखाई देगी, कुछ ही देर बाद यहाँ पर कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है, इस कार्यक्रम का आगाज होने जा रहा है। और सर्दियों में टाइमिंग थोड़ी बदलती है और गर्मियों के इस समय में टाइमिंग बदल जाती है, और आज कार्यक्रम का जो समापन और जिसके आप बात करते हैं वो 7 बजे होना है। ये आप तस्वीरें देखिए, ये भारतीय छोर की जात तिरंगा शान से लहरा रहा है, वो तिरंगा जिसे बनाने के लिए इन लोगों ने, इनके पीढ़ियों ने बड़ी मेहनत की, यहाँ के लोगों ने बड़ी मेहनत की, तो आज उसका जश्न मनाने के लिए इससे बेहतर जगह और क्या हो सकती थी। और भारत तो परंपराओं को मानने वाला देश है, यहाँ पर एक बार कोई रवायत शुरू होती है तो फिर हम उस रवायत का पालन करते हैं और उसको उसमें चीज़ें ऐड करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं। बहुत छोटे से इसकी शुरुआत हुई, और सुमित आप जानते हैं आज ये कितना बड़ा हो चुका है कि 10,000, 20,000, 50,000 और शायद ये बहुत जल्दी 1,00,000 भी हो जाए। तो ये इसी तरह से भारत है, हम ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं। ये दृश्य है इस समय भारत का, ये सिर्फ पंजाब नहीं है, यहाँ पर पूरा भारत आया हुआ है, और पूरा तिरंगे को सेलिब्रेट करने के लिए, पूरे तिरंगे का सम्मान करने के लिए, हमारे सैनिकों का सम्मान करने के लिए, उनके जज्बे का सम्मान करने के लिए यहाँ पर आया हुआ है।
0: बिल्कुल राजीव, देखिए आपने क्योंकि 50,000, 1,00,000 लोग बताए, लेकिन लाखों करोड़ों लोग जो यहाँ पर नहीं पहुंच पाए उनके लिए सीधी तस्वीरें आज तक अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा, उन लोगों को दिखा रहा है कि इस समय यहाँ पर बॉर्डर इलाके के अंदर कैसा जोश हाई है। लेकिन आपने टैनिंग की बात की राजीव, बॉर्डर एरियाज में कई बीएसएफ की पोस्ट ऐसी हैं जहां पर 50 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है, पानी की कमी होती है, चाहे जैसलमेर हो, पंजाब के कई इलाके हैं, और वहां पर कई जगह ऐसी भी है, मैं आपको बताऊं, फ्लोटिंग पोस्ट होती हैं, वहां पर 12 महीने 24 घंटे हमारी चाहे बीएसएफ की महिलाएं हो, पुरुष हो, पेट्रोलिंग करते हैं, सर्विलेंस करते हैं, और शायद यही सबसे बड़ी चुनौती है कि अब अपनी देश की सरहद की सुरक्षा के लिए कैसे तत्पर रहते हैं, कैसे लगातार हर सेक्रीफाइस करते हैं। मिश्रा सर, अगर इन सेक्रीफाइसेस की बात की जाए, क्योंकि राजीव भी देखे कह रहे थे कि हमारे कितने जवानों ने अपने आप को शहीद कर दिया, न्योछावर कर दिया, आज का दिन उन शहीदों को रिमेम्बर करने का भी, उनको याद करने का भी है, उन्होंने जिस तरीके से अपनी अपने देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान न्योछावर कर दी, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है।
2: बिल्कुल, मैं सुमित बताना चाहता हूं कि ये फोर्स जो है 1971 वार में भी ऑपरेशन में भी गया था, और हमारा जो है कार्य में काफी जो जवान से वो शहीद हुए हैं। अभी अब सिंदूर में देखे, मैं बता ही रहा था हमारा वुमेन सोल्जर का कैसा कार्य रहा, जब हमारा मोटर मैन जब सियालकोट सेक्टर हेडक्वार्टर के ऊपर मोटर दाग रहा था तो वो एक ड्रोन उसके ऊपर गिरा था जिसमें वो शहीद हो गया था। लेकिन हमारे जो वुमेन दस्ता थे वहां पर डिप्लॉयड थे, उन्होंने उसी मोटर के साथ उन्होंने मोटर का गोला दागते रहे, एंड थैंक्स टू दोज लेडी कमांडोज। तो इसलिए मैं काफी हमारे सोल्जर्स जो है 71 ऑपरेशन में देखिए उसके बाद में, क्योंकि आप देखिए ये एक बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है, थ्रू आउट द ईयर बॉर्डर में अगर कोई इंसिडेंट होता है और कोई फायरिंग होता है तो पहले तो बीएसएफ के ऊपर ही होगा, क्योंकि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस तो बीएसएफ ही रहता है। तो इसमें काफी जो है हमारा सोल्जर्स जो है शहीद हो चुके हैं और इनको जो है आज ये आज नहीं एवरी डे हमारा ये जो वहां पर फंक्शन होता है उसमें हम शहीदों को सलाम करते हैं और पर्टिकुलरली आज जो है और रिपब्लिक डे के ऊपर हम इन शहीदों को बिल्कुल सलाम करना चाहिए और वो हमारे जो है आज जैसे प्रधानमंत्री जब रेड फोर्ट को गए वो भी हमारे जो शहीद थे उनको भी सलाम किए थे।
0: बीच में हमको शायद राजीव का रुख भी करते रहना चाहिए क्योंकि राजीव वहां पर मौजूद है और राजीव हमको वो तस्वीरें भी दिखा रहा है। राजीव मैं बार बार आपके पास इसलिए जा रहा हूं क्योंकि मैं देख रहा हूं कि हर कुछ सेकंड में वहां पर उत्साह वहां पर जोश लगातार बढ़ता जा रहा है और आप उन तस्वीरों को महसूस भी कर रहे हैं और आप उन तस्वीरों को दिखा भी रहे हैं। अभी क्या तस्वीरें हैं वहां की?
1: इस समय की तस्वीर बड़ी खास है क्योंकि इस कार्यक्रम का आगाज हो गया है। मेरे ठीक दाहिने तरफ आप इस समय लाइव तस्वीरें देख रहे हैं और DGPSF है जिनको इस समय गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है और हमारे जवान उनको उनका सम्मान कर रहे हैं। ये तस्वीरें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है DGPSF को जो कि चीफ गेस्ट हैं मुख्य अतिथि यहाँ पर है। उसके बाद गार्ड ऑफ ऑनर के बाद वो अपनी सीट पर विराजमान होंगे और फिर कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ पर होगी जो सांस्कृतिक कार्यक्रम पर शुरू होंगे। जो अधिकारी हैं वो आ गए हैं, आपने वो विशेष धुन सुनी है यहाँ पर जो बजाई गई उनके सम्मान में और शायद वो दो शब्द भी कहने वाले हैं। आप आपकी भी निगाह इस पर होगी
0: जी।
1: जो तमाम हलचल है दूसरी तरफ आप देखेंगे सुमित वो शुरू भी हो गई है और जो आपके साथ इस समय कैसे वो ज्यादा अच्छे से इसे एक्सप्लेन कर पाएंगे इस गार्ड ऑफ ऑनर इसके मायने
0: बिल्कुल आपने क्योंकि राजीव हमारे गेस्ट की बात की हमारी मेहमानों की बात की सूसब इस सेरेमनीज को आपने भी कई बार देखा होगा एक्सपीरियंस किया होगा। अभी क्या होगा क्योंकि DGPSF वहां पहुंच चुके हैं, वहां पे लगातार गार्ड ऑफ ऑनर देंगे, वहां पे लगातार मौजूद लोगों के साथ वो बातचीत भी करेंगे, फिर उस सेरेमनी का आगाज किया जाएगा। क्या होती है प्रक्रिया पूरी और कितने देर का ये सेरेमनी होती है पूरी?
3: देखिए आमतौर पे तो ये सेरेमनी लगभग 20 मिनट की होती है।
0: अच्छा।
3: पर आज के दिन और 26 जनवरी के दिन ये काफ़ी एक्सटेंडेड सेरेमनी होती है क्योंकि इनमें कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम डाल दिए जाते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी ये कोई 4:30-4:40 टाइम हो रहा होगा तो ये आज की पूरी बीटिंग रिट्रीट मेरे को लगता है 6 बजे तक ख़त्म होगी क्योंकि आधे पौने घंटे या उससे भी ज़्यादा के कार्यक्रम होंगे और उसके बाद एक्चुअल रिट्रीट सेरेमनी होगी। कार्यक्रम होने के बाद में फिर जब संतरी आपस में मिलते हैं और बिगुलर जाते हैं वहाँ पर स्टेशन होते हैं वहाँ पर और झंडे उतारने के बाद में वो झंडों को फिर गार्ड को दिया जाता है और वो गार्ड उनको वापस ले जाकर अपनी BOP में सेफली रखते हैं। तो जनरली जो अन्य दिनों में होती है उसमें असेंबली हुई, असेंबली होने के बाद में बिगलर्स वहाँ पहुँचते हैं, बिगलर्स पहुँचने के बाद में झंडा उतारा जाता है, झंडा उतार के उसको सम्मान पूर्वक ले जाया जाता है अपनी पोस्ट के ऊपर अराउंड 20-25 मिनट्स की।
0: सर मिश्रा सर क्योंकि वहाँ पर गाने हम सुन रहे हैं लगातार कई चीज़ें ऐसी हम सुन रहे हैं, वहाँ पर संगीत का भी एक बहुत महत्व होता है, वहाँ पर ऐसे गाने सुनाए जाते हैं, ऐसी धुनें बजाई जाती हैं जो खासतौर पर देशों में लोगों में उत्साह भर सके, उनमें वो जज्बा भर सके कि देखिए देश की सुरक्षा के लिए आपको भी एक दिन निछावर होना पड़ेगा, आपके लिए भी वो देश अपना सर्वोपरि रहना चाहिए।
2: बिल्कुल इस गाने के साथ गाने के बारे में आप सुमित मेरे को पूछा है, मैं इसके ऊपर एक गाना मैंने भी लिखा था जिसको हमारा रहमान जी ने उसका म्यूजिक दिए हैं BSF के ऊपर गाना जो है तकरीबन यहाँ भी बजाते रहते हैं। सर ऊंचा सीना ताने हम ही डटे सीमा पर, गांव शहर छोड़ आया हम ही डटे सीमा पर, ये गाना हमने लिखे थे जिसको हमारा रहमान साहब ने उसको म्यूजिक कंपोज किए हैं और ये भी कभी कभी बजाते रहते हैं। और यहाँ पर गाना आप देखेंगे अभी सुध साहब बता रहे थे अभी सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, उसमें देखेंगे इंडिया के सभी जगह से आपको सांस्कृतिक कार्यक्रम देखा जाएगा, डांस परफॉर्मेंस दिखा जाएगा और परेड भी दिखाए जाएंगे और पंजाब का भांगड़ा भी दिखाया जाएगा और जम्मू का भी जो डोगरी डांस भी दिखाया जाएगा, हर एक जगह से जो है वहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम दिखाया जाएगा। साथ में उसके साथ साथ आप देखेंगे मैं पहले बताया था तो हमारा जो वुमेन दस्ता है उनका भी जो है राइफल ड्रिल ये भी उसमें शामिल किया गया है, उसको भी दिखाया जाएगा वुमेन दस्ता का राइफल ड्रिल। उसके बाद BSF का जो डॉग स्क्वाड है उनका भी परेड भी दिखाया जाएगा और ये सब जो है तकरीबन 40 मिनट 45 मिनट का कार्यक्रम इसमें रहेगा।
0: बिल्कुल 40-45 मिनट का कार्यक्रम रहेगा और हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव भी हमारे साथ वहां से जुड़े हुए। राजीव देखिए, आपने बताया था कि डीजी पीएसएफ वहां पर प्रवीण कुमार वहां पहुंच चुके हैं, लगातार सेरेमनी गार्ड ऑफ ऑनर हो चुका है। अभी क्या मौजूदा हालात और किस तरीके से सेरेमनी आगे बढ़ रही है?
1: आप इस समय जो लाइव तस्वीरें सुमित देख रहे हैं, आप इस तस्वीर में सबको खड़े हुए देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रीय गीत बजाया जा रहा है। वंदे मातरम के सम्मान में सब इस समय खड़े हैं और राष्ट्रीय गीत सब गा रहे हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ी एलईडी स्क्रीन लगी हुई है, वहाँ पर पूरा का पूरा वंदे मातरम लिखा हुआ है और सब एक सुर में। स्पीकर जो सैनिक हैं और जो आम लोग हैं सब इस समय राष्ट्रीय गीत का सम्मान कर रहे हैं। आज आपने लाल किले से एक विशेष तस्वीर देखी, अलग अलग दलों के कार्यालयों से बड़ी तस्वीर देखी और इस समय अटारी बॉर्डर पर भी आप वही तस्वीर देख रहे हैं जहां पर वंदे मातरम गूंज रहा है। वो वंदे मातरम जिसे गाते गाते हमारे देश के बलिदानियों ने बलिदान दे दिया, अपनी जान न्यौछावर कर दी इस गीत को खुले में गुनगुनाने के लिए, क्योंकि आसान नहीं था इस गीत को गुनगुनाना, आसान नहीं था पहले क्योंकि इस गीत को गुनगुनाना एक अपराध था। इस गीत को गुनगुनाने पर आपको जेल भेज दिया जाता था, आप डंडे खाते थे, आप जुल्म और सितम झेलते थे, लेकिन आज आप शान से उस वंदे मातरम को गा रहे हैं। सुमित, एक और बड़ी खास बात है, भारत के बॉर्डर कई देशों से लगते हैं लेकिन वो क्या बात है जो अटारी बॉर्डर को सबसे अलग बनाती है? वो बात है इस जगह की एक अलग पहचान है और इस जगह का सामने पाकिस्तान का होना। पाकिस्तान ने हमें ऐसे ऐसे जख्म दिए हैं कि उन जख्मों के बाद से यहाँ पर आने के बाद देशभक्ति और ज्यादा बढ़ जाती है। एक गुस्सा सामने की तरफ देखने पर आ जाता है क्योंकि उसने हमारे देश के बेकसूरों का कत्लेआम किया, लगातार करता रहा है, ब्रेन वॉश करता रहा है यहाँ की एक बड़ी आबादी को, हालांकि अब उसमें वो नाकाम होता और अब एक्सपोज हो गया है। इसलिए कई उसने हमें पीछे से आघात, पीठ में खंजर घोंपने का काम किया। आप कारगिल वॉर की ही बात करें, हमने विजय दिवस कुछ समय पहले ही मनाया तो सब इसने पीठ पर छुरा घोंपा। अब आप देखेंगे कि समय लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, डीजी है बीएसएफ वो इस समय अपने कुर्सी पर जा रहे हैं और वो इस समय आसन ग्रहण करेंगे और जो तमाम आला अधिकारी हैं उनको सल्यूट कर रहे हैं, वो सबका अभिवादन कर रहे हैं और उसके बाद वो अपनी सीट पर बैठकर जैसे ही वो बैठेंगे उसके मिनट के बाद ही वो सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। सुमित,
0: बिल्कुल बिल्कुल, और हमारे साथ हमारे दोनों खास मेहमान भी जुड़े हैं। सर देखिए, राजीव ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि क्या महत्वता है, खासतौर पे अभी अगर मिश्रा सर मैं आपसे पूछूं कि हर साल कुछ ना कुछ बदलाव किए गए हैं सेरेमनी के लिए, बदलते वक्त के साथ क्या कुछ नया अपन हम देखते हैं हर साल की तरह, और इस बार क्योंकि राजीव ने बताया कि देखिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी दूसरा ऐसा मौका है जब इस तरीके की सेरेमनी अरेंज की गई, तो इस बार वो जोश वो खासतौर पे वो सारी चीजें यहाँ दिखाई भी देंगी?
2: बिल्कुल, अब सिंदूर के बाद जो जोश था ये जोश और बढ़ चुका है। अब देखिए रेड फोर्ट में आज क्या हुआ, हम जो है 7 नवंबर 1875 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो लिखे थे वंदे मातरम, अभी उन्होंने बता रहे थे वंदे मातरम का गाना जो है, अब पहले तो हम दो ही स्टांजा जानते थे, अभी जो है आज जो रेड फोर्ट के ऊपर जो मोदी जी ने जो गाए और सब लोगों ने जो गाए वो 6 के 6 स्टांजा सुनाया गया और वही चीज अभी आप अटारी बॉर्डर में भी देखें। ये एक नया चीज है जो उसमें शामिल किया गया बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय।
0: सर क्योंकि बदलते वक्त के साथ जंग का दायरा बढ़ा, उसके तौर तरीके बदले, लेकिन अटारी बॉर्डर का जिस तरीके से राजीव भी बता रहे थे महत्वता बहुत है, खासतौर पर आप इसको ट्रेड के लिए कह लीजिए, सेरेमनी के लिए कह लीजिए, लेकिन इंटरनेशनल बॉर्डर की सिक्योरिटी भी एक मेजर कंसर्न था क्योंकि युद्ध के अंदर पाकिस्तान ने कोई भी रूल रेगुलेशन माना नहीं है कभी भी।
3: जी, इंटरनेशनल युद्ध के दौरान तो रूल रेगुलेशन कोई ही मानता है, जेनेवा कन्वेंशंस के रूल्स लागू होते हैं, लड़ाई के रूल्स तो अपने होते हैं। तो अटारी बॉर्डर इम्पॉर्टेंट है ना केवल अपने ट्रेड रूट के लिए, ये सेरेमनी से तो बहुत ही फेमस हो गया है, और इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सिस पे
0: जी
3: है। दो मेजर शहर पूर्वी इंडिपेंडेंस से पहले लाहौर और पंजाब को के बीचों बीच ये तकरीबन पड़ता था और अभी भी वो दोनों शहरों के बीच में, तो इस जगह का महत्व इंडिपेंडेंस के बाद बढ़ गया क्योंकि यहाँ से बॉर्डर निकला, उससे पहले तो ये एक छोटा सा गांव उधर पाकिस्तान की तरफ आगा, हमारी तरफ अटारी था। तो ट्रेड रूट सबसे पहले यहाँ पर जिस जो कहते हैं जॉइंट चेक पोस्ट, इज इट कॉल्ड
0: इंटेग्रेटेड
3: इंटेग्रेटेड चेक पोस्ट यहाँ पर बनी और ट्रेड बढ़ा गया। अभी उस जगह को थोड़ा सा ट्रेडिंग पॉइंट को थोड़ा सा साउथ की तरफ शिफ्ट किया।
0: बिल्कुल सर, ये जश्न आजादी की तस्वीरें लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं हमारी इस खास कवरेज में। इतना ही, लेकिन जाते जाते अपने दर्शकों को एक बार बता दें कि एक्टर अमिताभ बच्चन ने भी आजादी के इस पर्व पर एक संदेश दिया है, वो भी अपने दर्शकों को जाते जाते जरूर सुना देते हैं।
4: दिवस स्वतंत्रता का शुभ दिन, बधाई, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद। दिवस स्वतंत्रता का शुभ दिन, बधाई, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद।

0: देखिए, वंदे मातरम को लेकर अक्टूबर 1937 में कोलकाता में 28 अक्टूबर 1937 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। गांधी जी मौजूद थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, सरदार पटेल थे, मौलाना अब्दुल कलाम थे, आजाद थे, जवाहरलाल नेहरू थे, गोविंद वल्लभ पंत जी थे, राजगोपाल आचार्य जी थे। और उन्होंने निर्णय किया कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के सलाह पर वंदे मातरम कांग्रेस अधिवेशनों में गाया जाएगा। पहले कुछ पंक्तियां ली जाएंगी और वही गाना गाया जाएगा। ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई अक्टूबर 1937 में। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सलाह दी पंडित जवाहरलाल नेहरू को और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को कि पहले पंक्तियों का इस्तेमाल कीजिए, और तब से हर एक कांग्रेस अधिवेशन में वही पंक्तियां लोग गा रहे हैं। हमारे सेवा दल गाता है, हमारे कार्यकर्ताएं गाते हैं, इसमें कोई वाद विवाद का
1: सर, लेकिन पूरा वर्जन गाया गया।
0: हाँ, पूरा वर्जन गाया गया क्योंकि संसद में इस पर चर्चा हुई, संसद में इस पर बहस हुई, 16 घंटे की बहस हुई, हमने अपनी राय रखी, मैंने खुद सारा इतिहास बताया जो प्रधानमंत्री और गृहमंत्री को जानकारी थी नहीं, सारे सांसदों को मैंने अवगत कराया कि किस संदर्भ में वो वंदे मातरम का निर्णय लिया गया है। आज यहाँ इंदिरा भवन में पूरा वंदे मातरम गाया गया, इसमें कोई वाद विवाद का सवाल नहीं उठता, कोई रोकने का कोई प्रयास नहीं था, कोई रोकने का प्रयास नहीं था, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस अध्यक्ष खड़े हुए थे, सोनिया जी कह रही थी उनके लिए कुर्सी लाके रख दो, बस
2: कोई नहीं था।
3: वो सभ्यता संपूर्ण उन्होंने भूल गया है, क्योंकि वो सभ्यता ही नहीं है उनके पास। तो अपने आप को समझते हैं ही इज बॉर्न टू रूल, ये इनके मन में अहंकार है। जब ये पूरा नहीं हो रहा है, हताश होके अत्यंत लो लैंग्वेज, फिल्दी लैंग्वेज उपयोग कर रहे हैं।
4: जो आदमी मानसिक दिवालियेपन में हो, राहुल गांधी उसी श्रेणी में आते हैं। उन्हें संसद के बदले आगरा जैसे संस्थान में रहना चाहिए, और जिसका कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, नीचता की हद है।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: मेरे प्यारे देशवासियों, डिफेंस में आत्मनिर्भर होना अब भारत ने अनुभव कर लिया, दुनिया ने अनुभव कर लिया है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे। हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है।
1: ये आजादी का महोत्सव है, हिंदुस्तान की स्वतंत्रता का उत्सव। स्वतंत्रता के जिस महायज्ञ में राष्ट्र के वीर सपूतों ने प्राणों की आहुति दी, अब वो आजादी अपने 80वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी है। आजादी के इस महापर्व की शुरुआत भारत के प्रेरणा पुंज महात्मा गांधी के आशीर्वाद से होती है। पीएम मोदी सबसे पहले राजघाट पहुंचे और बापू को नमन किया।
2: सीताराम भज प्यारे तू सीताराम।
1: राजघाट के बाद पीएम मोदी सीधे लाल किला पहुंचे। लाहौरी गेट से पीएम का कारवां ऐतिहासिक लाल किला परिसर में प्रवेश किया। इस बार का स्वतंत्रता दिवस उत्सव इसलिए भी खास रहा क्योंकि लाल किले की प्राचीर से पहली बार वंदे मातरम का पूरा गायन हुआ। 12 साल में 13वीं बार लाल किले से पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया।
0: समय हमारा है, मैं सभी देशवासियों को कहूंगा, समय हमारा है, अवसर हमारा है, संकल्प हमारा है, आइए सपनों को संकल्प बनाए।
1: लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने देश के सामने विकसित भारत का विजन रखा और युवाओं के लिए बड़े ऐलान किए। करीब 76 मिनट के संबोधन में पीएम मोदी ने एक तरफ 2047 तक विकसित भारत का संकल्प दोहराया तो दूसरी तरफ आत्मनिर्भरता और शक्ति की सप्तधारा के जरिए विकास का रोड मैप सामने रखा। पीएम मोदी के सप्तधारा विजन का मतलब मैन्युफैक्चरिंग, कृषि और खाद्य, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, गति शक्ति, रक्षा शक्ति, ग्रीन और ब्लू इकोनॉमी और सॉफ्ट पावर है। पीएम ने कहा कि दुनिया के कुछ देश संसाधनों का शस्त्रीकरण कर रहे हैं, अब भारत दूसरों पर निर्भर नहीं रह सकता, हमें आत्मनिर्भर बनना होगा। इनोवेशन, प्रोडक्शन, बैंकिंग, किसान, नौजवान, हर मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने अपनी बात रखी। करीब 76 मिनट के भाषण में पीएम मोदी ने 24 बार शक्ति शब्द का इस्तेमाल किया। विकसित भारत के संकल्पों के साथ पीएम ने देश की युवा पीढ़ी का आह्वान किया और राष्ट्र निर्माण में जुट जाने को कहा। हर बार की तरह इस बार भी भाषण खत्म करने के बाद पीएम मोदी युवाओं के बीच पहुंचे और चलते चलते उनसे संवाद भी किया। आज तक ब्यूरो,

0: presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

किया जिक्र, कहा देश को नुकसान पहुंचाने वालों की पहचान जरूरी। कांग्रेस बोली सियासी विरोधियों को कह रहे हैं अब दिमागी नक्सल। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने लोकतंत्र में विपक्ष को बताया जरूरी, कहा जिम्मेदारी का भी ख्याल हो। तो बाबा रामदेव ने आंदोलन को दी चेतावनी, कहा भारी खपला, सड़कों पर आ रहे हैं बच्चे। देश भर में मना आजादी का जश्न, राज्यों में मुख्यमंत्रियों ने फहराया तिरंगा। सीएम रेखा गुप्ता ने राजधानी दिल्ली में विकास की रफ्तार बढ़ाने पर दिया जोर।

0: के किश्तवाड़ में भीषण हादसा, सैकड़ों फीट गहरी खाई में बोलेरो गिरने से 5 लोगों की मौत, गाड़ी ने ड्राइवर ने खोया नियंत्रण।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

नमस्कार, मैं हूँ साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो 80वें स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी को आज तक की तरफ से और मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो बात अब लाल किले के भाषण की होगी, क्योंकि लाल किले की प्राचीर से आज देश ने सिर्फ एक भाषण नहीं सुना, एक विजन भी सुना और एक चेतावनी भी सुनी है और एक राजनीतिक बहस की नई शुरुआत भी देखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 के विकसित भारत का एक नया विजन रखा है। युवा शक्ति, आत्मनिर्भरता, AI, सेमीकंडक्टर, परमाणु ऊर्जा और नक्सलवाद पर एक नई बहस। साथ ही उन्होंने दिमागी नक्सल से सावधान रहने को भी कहा है। लेकिन इस भाषण में आया दिमागी नक्सल वाला बयान अब सबसे बड़ा सियासी सवाल भी बन गया है। विपक्ष पूछ रहा है कि दिमागी नक्सल की परिभाषा आखिरकार क्या है, क्या वैचारिक असहमति को नक्सलवाद कहा जाएगा? आखिर प्रधानमंत्री ने यह शब्द क्यों चुना? किस सोच को वो देश के लिए खतरा मान रहे हैं? और विपक्ष का सवाल है कि असहमति और नक्सली विचारधारा के बीच फर्क की रेखा कहां खींची जाएगी? यानी आज की बहस सिर्फ सत्ता पक्ष बनाम विपक्ष की सोच की नहीं है, बहस है राष्ट्र की सुरक्षा और नागरिक की असहमति के बीच संतुलन बनाने की भी बहस है। विकसित भारत के जो सपने दिखाए जा रहे हैं, उस सपने पर उठते सवालों पर भी बहस है। और सवाल यह भी है कि क्या लोकतंत्र की ताकत इस बात में है कि सत्ता अपनी बात कहे, विपक्ष सवाल पूछे, जनता भी उसमें अपने सवाल पूछे, आखिर में देश का हित सबसे ऊपर रहे। आज इन्हीं मुद्दों पर हम बड़ी बहस करेंगे, लेकिन उससे पहले यह हमारी खास रिपोर्ट।

0: मेरे प्यारे देशवासियों, डिफेंस में आत्मनिर्भर होना अब भारत ने अनुभव कर लिया, दुनिया ने अनुभव कर लिया है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे। हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है।
1: लाल किले की प्राचीर से आज तिरंगा सिर्फ आसमान में नहीं लहरा रहा था, भारत के भविष्य की तस्वीर भी सामने रखी जा रही थी और उस तस्वीर के केंद्र में था भारत का युवा। प्रधानमंत्री ने साफ संदेश दिया, भारत की अगली उड़ान का इंजन युवा होगा।
0: जब मैं विकसित भारत की बात कर रहा हूँ, देश को तेज गति से आगे बढ़ाने की बात कर रहा हूँ, उसका सबसे बड़ा लाभार्थी कौन है?

0: विकसित भारत की यात्रा में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। इतना ही नहीं, विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी मेरे देश का युवा है और इसलिए हमें विकसित भारत के लक्ष्य को युवाओं के साथ जोड़ करके आगे बढ़ाना है। जब मैं विकसित भारत की बात,
1: स्वतंत्रता दिवस के 80वें साल के मौके पर अपने 77 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 के विकसित भारत की नींव आज की युवा पीढ़ी को बताया।
0: 2047 का लक्ष्य इन मजबूत नींव पर खड़ा है। 2047 विकसित भारत का लक्ष्य हमने पिछले 10-12 साल में देशवासियों ने जो सामर्थ्य दिखाया है उस सामर्थ्य का हिस्सा है। और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सदी का एक चौथाई हिस्सा बीत चुका है और अगला एक चौथाई हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब हम रुक नहीं सकते हैं, हमारी गति नहीं रुक सकती है, हमारी दिशा तय हो चुकी है, हमें प्राप्त करके रहना है। और इसके लिए हमें अपना वर्क कल्चर बदलना होगा, हमारे वर्क कल्चर को बदलते हुए हमें हमारी सोच को भी बदलना होगा, हमें हमारे काम की गति को भी बदलना होगा। ऊंचे होने
1: जेन जी हो या जेन अल्फा, संदेश साफ था, भारत का भविष्य सिर्फ युवाओं के लिए नहीं, युवाओं के हाथों से बनेगा। आत्मनिर्भर भारत, युवा शक्ति, तकनीक, राष्ट्रीय सुरक्षा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की ताकत और भविष्य का खाका खींचा। 1 करोड़ युवाओं को AI ट्रेनिंग, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग, 5 से 15 साल के बच्चों के लिए स्पोर्ट्स टैलेंट हंट, स्टार्टअप और इनोवेशन को बढ़ावा, मैन्युफैक्चरिंग में रोजगार के नए अवसर, सेमीकंडक्टर से लेकर डिफेंस तक आत्मनिर्भर युवा शक्ति,
2: ये है।
1: यानी प्रधानमंत्री का विजन सिर्फ नौकरी पाने वाले युवा का नहीं, नौकरी देने वाले युवा का है।
0: साथियों, पिछले 10-12 साल में उस दिशा में बहुत कुछ हुआ है। स्टार्टअप इंडिया अभियान, आज पूरे देश में 2.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप बन गए। देश के नौजवान खुद तो काम कर रहे हैं, अनेकों को रोजगार दे रहे हैं। 1 लाख करोड़ रुपया इनोवेशन फंड भारत सरकार ने घोषित किया है। मैं देश को नौजवानों को कहना चाहता हूं, आप अपने सपने को लेकर के आइए, संसाधनों की कमी नहीं रहने देंगे। 1 लाख करोड़ रुपया आपके दिल दिमाग को सामर्थ्य देने का एक व्यवस्था हमने कर दी है।
1: यही PM मोदी के विजन की खासियत है, वो 2047 को कैलेंडर की कोई दूर की तारीख नहीं मानते। हालांकि विपक्ष पूछता है, AI की ट्रेनिंग के साथ रोजगार कितना बढ़ेगा, फ्री कोचिंग के साथ परीक्षा व्यवस्था कितनी पारदर्शी होगी, टैलेंट हंट के साथ खेलों में अवसर कितने बढ़ेंगे, और क्या युवा की आवाज सिर्फ चुनाव के समय सुनी जाएगी।
3: प्रधानमंत्री जी का सवालों का जवाब न देना पार्लियामेंट में, क्या ये लोकतंत्र का तरीका है? हमने क्या उठाया? लोकसभा में हो, राज्यसभा में हो, हमने जो सवाल उठाए वो विद्यार्थियों के सवाल थे। मैं पूछता हूं मेरे दोस्त, अगर तुम पार्लियामेंट में आते, क्या तुम्हारा उम्र कम होने वाली थी? क्या तुम्हारी पार्टी घटने वाली थी?
0: हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा।
4: पहले भी जिनको जमीनी नक्सल कहा, फिर उन्हीं किसानों की बात माननी पड़ी, नौजवानों को नक्सल कहा, फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ा। तो पहले तो ये हाथ पांव मारते हैं, नक्सल नक्सल नक्सल, और उसके बाद उनकी बात मानी।
1: इसी बेचैनी के बीच बाबा रामदेव ने भी सरकारी भर्तियों में भ्रष्टाचार और युवाओं के असंतोष का मुद्दा उठाया। उन्होंने चेतावनी दी कि व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो युवाओं का आंदोलन फिर तेज हो सकता है।
5: चारों तरफ देश में हंगामा है, छोटे छोटे स्कूल कॉलेजों से बच्चे निकल रहे हैं कि हमारे यहाँ टीचर नहीं है, हमारे यहाँ लाइट नहीं है, हमारे यहाँ पानी नहीं है, हमारे यहाँ शौचालय नहीं है, हमारे यहाँ टीचर है तो किताबें नहीं है, किताबें हैं तो टीचर नहीं है, और टीचर है तो

0: पढ़ाई में नकल हो जाती है, कहीं पेपर लीक हो जाता है, ऐसे ही आंदोलन करना पड़ा तो देश कैसे चलेगा। इसलिए भाई सुधर जाओ, नहीं तो देश में आंदोलन और ज्यादा भी हो सकते हैं। आंदोलन के नाम पर मैं अराजकता अनार्की का समर्थक नहीं हूं, लेकिन भाई ये बात तो जरूर है देश में घपला भी बहुत है, ये घपले ठीक कर लो। मैं तो कहीं ऐसा ना हो कि बाबा रामदेव को दोबारा आंदोलन करना पड़े।
1: प्रधानमंत्री का भाषण सिर्फ उपलब्धियों की सूची नहीं था, उसमें एक दर्शन भी था। लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने शक्ति की सप्त धारा का आह्वान किया।
2: मैं आज उस युग को भी याद करना चाहूंगा जब देश भारत का सामर्थ्य सप्त सिंधु के रूप में हम जानते थे, हम समझते थे, हम सुनते थे। अब विकसित भारत बनाने के लिए हमें नई धारा चाहिए। आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्त धारा का आवाहन करता हूं। आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ, वो सप्त धारा के सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे। और इसके साथ साथ देश की युवा शक्ति का सामर्थ्य का भरपूर राष्ट्र निर्माण में उपयोग होगा, उनकी शक्ति जोड़ी जाएगी। आने वाले दिनों में जब मैं सप्त धारा की बात करता हूं, सप्त धारा की पहली शक्ति है मैन्युफैक्चरिंग पावर।
1: प्रधानमंत्री ने युवाओं से 2047 का निर्माता बनने का आह्वान किया है, क्योंकि आज का युवा कल का नागरिक नहीं, आज के भारत का सबसे बड़ा निर्माता है। इतिहास गवाह है कि जिन राष्ट्रों ने अपने युवाओं पर भरोसा किया, उन्होंने भविष्य को अपने पक्ष में किया। आज लाल किले से उसी भरोसे की आवाज सुनाई दी है। आज तक ब्यूरो।
3: तो प्रधानमंत्री का लाल किले की प्राचीर से यह भाषण, हर साल इस भाषण को लेकर तमाम पहलू चर्चा में आते हैं और विपक्ष अपने मुद्दे भी रखता है। तीन मुद्दे इस भाषण से साफ नजर आए। पहला, विकास का विजन, जिसको लेकर विकसित भारत की बात की गई, मैन्युफैक्चरिंग की बात की गई, सेमीकंडक्टर्स की बात की गई, एनर्जी की बात की गई। दूसरा, जन केंद्रित योजनाएं, गरीब महिला, युवा और किसानों को लेकर नई योजनाओं की बात की गई। और सबसे बड़ी बात, राष्ट्रवाद और गर्व यानी सांस्कृतिक विरासत की भी बात प्रधानमंत्री मोदी के इस भाषण में कही गई। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष इस मुद्दे को लेकर कह रहा है कि घोषणाएं और क्रियान्वयन में कहीं ना कहीं फर्क नजर आ रहा है। पिछली बार की घोषणाओं की कुछ याद दिलाने की भी कोशिश रही। दूसरा, इस पूरे भाषण को एक राजनीतिक टोन की तरफ भी विपक्ष की तरफ से देखा गया। उनका कहना है कि दिमागी नक्सल कहना कहीं ना कहीं युवाओं के आंदोलन पर तो निशाना नहीं है। और तीसरी बड़ी बात, जो जमीनी मुद्दे हैं, खास करके किसान आंदोलन हो या युवाओं का आंदोलन, उस बात को लेकर भी जिक्र इस भाषण में नजर नहीं आया। तो विपक्ष की तरफ से भी कई मुद्दे उठाए गए, हम भी इस बारे में चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी सांसद है, राज्यसभा के, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, वो इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। घनश्याम तिवारी समाजवादी पार्टी की तरफ से यानी विपक्ष की तरफ से इस चर्चा में शामिल होंगे। रजत सेठी पॉलिटिकल एनालिस्ट और रशीद किरवई वरिष्ठ पत्रकार भी इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। तीन सवाल इस पैनल के सामने, जो भाषण हुआ है उसके आधार पर। पहला सवाल, युवाओं के लिए बड़ी घोषणा यानी एआई ट्रेनिंग की बात की गई है और उसके साथ साथ परीक्षाओं के लिए भी ट्रेनिंग की बात की घोषणा की गई है। करीब 1 करोड़ युवाओं को 1 लाख करोड़ की घोषणा आज की गई है। लेकिन युवाओं के लिए योजना और घोषणाओं से क्या प्रधानमंत्री दिल जीत पाएंगे, क्योंकि पिछले साल भी इसी तरीके से अप्रेंटिसशिप की घोषणा की गई थी। 3.75 करोड़ युवाओं के लिए इसका फायदा होगा, यह भी दावा सरकार की तरफ से किया गया था। दूसरा सवाल, पीएम मोदी ने दिमागी नक्सल किसे और क्यों कहा है? विपक्ष का कहना है कि युवाओं के लिए इस टर्म का, टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, कहीं ना कहीं राजनीतिक विरोधियों के लिए इसका इस्तेमाल किया गया है। तीसरा सवाल, लोकतंत्र में विरोधी विचारों की जगह होनी चाहिए, मोहन भागवत ये कह रहे हैं, इस बयान के क्या मायने निकाले जाए। 15 अगस्त के दिन मोहन भागवत का यह बयान क्या कहता है? तमाम मुद्दों पर बहस होगी। शुरुआत करते हैं, सुधांशु जी आपने भी भाषण सुना है, मैंने भी भाषण सुना है, कुछ पहलू इस कार्यक्रम के पहले मैंने रखने की कोशिश की है। घोषणाएं और क्रियान्वयन को लेकर विपक्ष खास करके कुछ सवाल उठा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ युवाओं का दिल जीतने की भी कोशिश यहां पर नजर आती है, लेकिन एक राजनीतिक टोन भी नजर आ रहा है।
4: देखिए सर्वप्रथम तो मैं आप सभी लोगों को और आपके लाखों दर्शकों से कहना चाहूंगा, आज देश का स्वतंत्रता दिवस है हम 80वें वर्ष में प्रवेश किए हैं। 21st सेंचुरी के सेकेंड क्वार्टर का यह पहला स्वतंत्रता दिवस है और वंदे मातरम जो कि कट्टरपंथी ताकतों के आगे सत्ता लोलुपता में समर्पण करके कुर्बान कर दिया गया था, अब पूरे सांगोपांग संपूर्ण वंदे मातरम गाने जाने वाले बात का यह पहला स्वतंत्रता दिवस है और हमें इस बात का गर्व होना चाहिए। हम विश्व के एकमात्र देश हैं जो प्राचीनतम प्रागैतिहासिक जीवंत सभ्यता है। हम विश्व के सबसे बड़े देश, सबसे यंग देश और इस समय विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ते हुए अर्थव्यवस्था है। तो मैं एक पंक्ति में कहना चाहूंगा, अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, अरुण यह मधुमय देश हमारा। अब मैं आपके विषय के ऊपर आता हूं जो आपने यह प्रश्न किया। सबसे बड़ी बात है योजनाओं और क्रियान्वयन के संदर्भ में, तो यह मैं प्रामाणिकता के साथ, सारे लोगों ने देखा है कि अगर योजनाओं को सर्वाधिक प्रभावकता के साथ क्रियान्वयन किया है, यदि 15 अगस्त 2014 को जनधन अकाउंट्स की घोषणा की गई थी, लोगों ने कहा था खुल ही नहीं सकते, खुलेंगे तो पैसा कहां से आएगा। आज 55 करोड़ जनधन अकाउंट हैं और उन जनधन अकाउंटों में 3 लाख करोड़ से अधिक का फंड है। फिर वो जितना भी हो, चाहे 16 करोड़ घरों को नल से जल मिला हो, फिर चाहे 12 करोड़ घरों को शौचालय मिला हो, चाहे उज्ज्वला योजना मिली हो, अथवा भारत की जो ग्रोथ रेट हुई है, एयरपोर्ट्स बढ़े, वो सारा विषय हम लोग हमेशा बोलते रहते हैं और उल्टा हमारे ऊपर आरोप ही लगता है साहिल जी कि ये बीजेपी वाले तो अपना एजेंडा लागू करने के चक्कर में रहते हैं। उदाहरण 370 राम मंदिर सबके ऊपर, तो एक तरफ हम पे ये आरोप है कि हम साहब वो क्रियान्वयन कर देते हैं जो कहते हैं और दूसरी तरफ क्रियान्वयन नहीं करते हैं, तो एक साथ दोनों आरोप नहीं हो सकते, पहले विपक्ष को तय कर लेना चाहिए। दूसरा, आपने जो प्रश्न किया दिमागी नक्सल, बहुत गंभीरता की बात है साहिल जी, जो ये कहे कि नक्सली जो है वो गांधीयंस विद गन है, अब उसके दिमाग की हालात समझ लीजिए। यानी माओ ने कहा था पावर कम्स फ्रॉम द बैरल ऑफ गन और गांधी ने कहा कि दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, और वो कहे कि गांधीयंस विद गन है नक्सल, तो वो दिमागी नक्सल है। जो कहे सरदार सरोवर से कभी पानी आ ही नहीं सकता है, और सरदार सरोवर से पानी आ गया और गुजरात का एक बहुत बड़ा इलाका आज वो सही नजर आ रहा। स्वतंत्रता दिवस है, 10 लाख लोग लगभग मारे गए विभाजन की विभीषिका में और 2.25 करोड़ लोग बेघरबार होकर इधर से उधर शिफ्ट हुए, विच इज द बिगेस्ट एक्सोडस इन द डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, और मात्र 6 महीने में इतने लाख लोग बड़ी से बड़ी क्रांतियों में भी नहीं मारे गए। खून की इस धारा के बीच खड़े होकर जो कहे बगैर खून की एक बूंद बहाए हमें आजादी मिल गई, उसकी दिमागी हालात को समझना चाहिए। जिसको 1.8 और 2% ग्रोथ रेट, जिसे हिंदू ग्रोथ रेट कहा जाता था, उसमें देश बड़ा सुंदर और सामंजस्यपूर्ण लगता था। 7.4% की वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोथ रेट में उसे सामंजस्य नजर नहीं आता है, उसको दिमागी नक्सल कहा जाता है। CAA में जिसको यह नजर आता था कि यह नागरिकता लेने का कानून है, आज 5 साल लागू हो गए, किसी मुस्लिम की नागरिकता नहीं गई, उसमें नक्सल, उसके दिमाग को दिमागी नक्सल कहा जा सकता है। और अंत में कहूंगा साहिल जी, जिसको जय श्री राम में वॉर क्राई नजर आता हो मगर सर तन से जुदा हो जाने के बाद भी उसमें सेकुलर संगीत नजर आता हो, तो उसको दिमागी नक्सल कहा जाता है। इसीलिए जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, और ये नक्सल कितने खतरनाक होते हैं समझिए, इन्होंने कहते हम अमीरों के शोषण के विरुद्ध गरीबों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, पर साहिल जी आप वरिष्ठ पत्रकार बताइए, एक अमीर के ऊपर कभी अटैक किया हो नक्सलों ने तो बताइए? क्यों? अमीरों से तो पैसा लेना है, टैक्स वसूल करना है, और अटैक किस पे करना है? CRPF के जवानों पे, जो गरीब और ग्रामीण परिवार के किसानों के परिवार के बच्चे होते हैं, उनको मारना है, कॉर्पोरेट हाउस से पैसा लेना है और विकास के कार्य को अवरुद्ध करना है। तो इसलिए उसकी बहुत लंबी व्याख्या है, मैंने 5-6 पॉइंट गिनाने का प्रयास किया। इसमें कोई गलत पॉइंट हो तो मेरे पॉइंट को तथ्यात्मक आधार पर काटना चाहे तो मेरे विरोधी प्रवक्ता काट सकते हैं।
5: नहीं, घनश्याम तिवारी उसका जवाब दे देंगे कि वो दिमागी नक्सल की इस टिप्पणी को किस तरीके से लेते हैं, लेकिन एक बात उसमें जोड़ना चाहूंगा, हो सकता है कि उसका हिडन बिल्डिंग जो अराजकता की बात कही गई थी वो जंतर मंतर से तो जुड़ी नहीं है, क्योंकि कई लोग उसको जंतर मंतर से भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका जिक्र हालांकि इस पूरे भाषण में कहीं नहीं हुआ है। विपक्ष उस बात का भी जिक्र करने की कोशिश कर रहा है, कहीं उससे जोड़ने की तो बात नहीं है। सुधांशु जी,
4: हाँ साहिल जी, आपने सही कहा, आपने ऐड कर दिया, जिनको जंतर मंतर में छात्रों का कष्ट दिखाई पड़ता है मगर रांची में छात्रों की गूंज सुनाई नहीं पड़ती, जबकि रांची के छात्र आंदोलन में एक वीडियो नहीं अवेलेबल है जिसमें पुलिस वाले को दौड़ा के मार रहे हो, एक वीडियो नहीं जिसमें पुलिस वाला लहूलुहान हो, एक वीडियो में गालीबाजी नहीं है, एक वीडियो में रीलबाजी नहीं है, किसी नेता के प्रति आपत्तिजनक नहीं है, मगर वो सुनाई नहीं पड़ता। और पंजाब हाईकोर्ट के जजमेंट के बाद भी कि पंजाब की विधानसभा में झूठ बोला गया, उसके बाद भी वो झूठ दिखाई नहीं पड़ता। केजरीवाल जी के मुंह में दही जम जाता है पंजाब को, और राहुल गांधी जी के कान में तेल डाल के बैठ जाते हैं रांची पे, मगर जंतर मंतर में हमें भी कष्ट है, मगर जंतर मंतर के छात्र आंदोलन में घुसपैठ किए हुए नक्सलों को, क्योंकि आईसा और एसएफआई के ओरिजिनल वो लगे हुए थे, और ये ढपली वाले ढपली बजाते हुए आ जाते हैं आजादी आजादी लगाते हुए। साहिल जी, छात्रों को बहुत सावधान रहना चाहिए, ये ढपली वाले आजादी आजादी करते हुए कब आपको फसादी और जिहादी के चंगुल में फंसा के बर्बादी की तरफ ले जाएंगे, उससे सावधान रहना चाहिए। इसलिए इन दिमागी नक्सलों की दिमागी चालों को बहुत दिमाग से समझने की जरूरत है।
5: ठीक है, तो उन पर लाठियां बरसाई जाएगी अगली बार अगर वो सड़क पर उतर आए तो, यही इशारा है ना उनके लिए कि दिमागी नक्सलों का भी खात्मा होना चाहिए, यही तो इशारा दिया गया है आज की स्थिति में। क्या हम यह मान के चले सुधांशु जी कि उनके लिए इशारा है कि अगली बार अगर सड़क पर दिखे तो कार्रवाई की जाएगी उस तरीके से?
4: दिमागी लोगों पे दिमागी ढंग से टैकल करना है। वो तो ये चाहते हैं कि लाठी चले, वो तो चाहते हैं। रांची में चली हुई लाठियां उन्हें दिखाई नहीं पड़ती हैं, जबकि मैंने कहा एक छात्र का ऐसा कोई वीडियो नहीं है जिसमें वो अटैक कर रहा हो। इसीलिए दिमाग को दिमाग से टैकल करना है, दिमागी लड़ाई की बात कही। और मैं पुनः एक बात कह रहा हूं साहिल जी,
5: ये नैरेटिव को नैरेटिव से काटा जाएगा।
4: मैं एक लाइन में और कह दूं, ये आजादी से बड़ी लड़ाई साहिल जी, ये जो लड़ाई है ना दिमागी नक्सलों के खिलाफ, ये आजादी से बड़ी लड़ाई है। क्योंकि आजादी की लड़ाई वो थी कि हम जेल में हैं और जेल से बाहर निकलना है, और जेल से बाहर आके कोई व्यक्ति दोबारा जेल में जाना चाहता, मगर ये वो लड़ाई है जिसमें मैकाले और मास्क की ड्रग भरी हुई है, और ड्रग एडिक्ट तो ड्रग से बाहर ही नहीं आना चाहता। तो जेल से छुड़ाना आसान है, ड्रग एडिक्ट से ड्रग छुड़ाना मुश्किल है। इसलिए यह दिमागी लड़ाई है और इसमें बहुत दिमाग लगाकर समझकर लड़ने की आवश्यकता है।
5: बड़ी दिलचस्प बात है कि आज ही के दिन मोहन भागवत का भी बयान आता है कि विरोधी विचारों की भी जगह होनी चाहिए लोकतंत्र के भीतर, और दूसरी तरफ अर्बन नक्सल को लेकर भी या दिमागी नक्सल को लेकर भी कहीं ना कहीं डिबेट छिड़ी हुई है। घनश्याम तिवारी, जो सुधांशु त्रिवेदी यहां पर कहने की कोशिश कर रहे थे, आपके नेता को लगता है कि प्रधानमंत्री कॉन्फिडेंट नजर नहीं आ रहे थे, अखिलेश यादव का बयान मैंने सुना यहां पर, यानी विपक्ष को लगता है कि कॉन्फिडेंट नजर नहीं आ रहे, लेकिन एक नई बहस यहां पर छिड़ चुकी है, आपके नेता भी वहां पर गए थे, सुना आपने सुधांशु जी ने क्या कहा?
6: नमस्कार साहिल, आपको को पैनलिस्ट को और सभी दर्शकों को, इस उम्मीद के साथ कि हमारे सार्थक प्रयासों से देश की वर्तमान पीढ़ी और अगली पीढ़ी देश को आगे ले जाएगी और हम सब एक समृद्ध भारत, एक ऐसा भारत जिसमें हर कोई स्वतंत्रता को महसूस कर सके, उसके निर्माण में कारगर होंगे। तीन बातें अहम हैं। मैं प्रधानमंत्री जी को पहले तो इस बात की शुभकामनाएं देता हूँ कि उन्होंने 13वीं बार लाल किले से राष्ट्रध्वज फहराया और वो अपनी बात रखी। मैं उन 13 स्पीच की इसका संकलन किसी के कोई आपका कोई भी दर्शक किसी भी टूल को इस्तेमाल करके देख सकता है कि उसमें कितनी बातें आज तक सही हुई और कितनी बातें झूठ हुई। अगर वो आज तक के जितने भी प्रधानमंत्री हमारे रहे हैं उन्होंने लाल किले की प्राचीर से जब अपने भाषण दिए हैं उसमें कितने प्रधानमंत्री ने कितने झूठ बोले हैं उसका संकलन करें तो नरेंद्र मोदी जी पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें नंबर पर वही रहेंगे और तो कोई रहेगा नहीं। दूसरी बात कि मुझे दुख है कि सुधांशु जी जो कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे प्रकांड प्रवक्ता हैं वो भी आज ऐसी बातें कर रहे हैं जो शायद 15 अगस्त को शोभा नहीं देता। इस तरह की बातें कहीं कोई मौलिक सोच नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी का पतन है जहां पर इतने प्रकांड प्रवक्ता भी इस तरह की बातें कर रहे हैं, जहां पर कोई भी व्यक्ति अगर इस बात को सुन रहा होगा तो उसके अंदर थोड़ी भी प्रेरणा नहीं जागृत होगी। क्या कहना चाहते हैं कि जिन बच्चों के साथ बर्बरता हुई, जनरल शाह जो वहां दिखाई नहीं दिए, पार्लियामेंट में भी दिखाई नहीं दिए, उन बच्चों की गलती थी, जनरल शाह की कोई गलती नहीं थी? क्या कहना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी ने नया कीर्तिमान स्थापित किया कि वो संसद में नहीं गए, या जनरल शाह ने नया कीर्तिमान स्थापित किया कि वो संसद में नहीं गए? क्या कहना चाहते हैं कि जो 13 में प्रधानमंत्री ने भाषण दिए सब लागू हो गए? क्या कहना चाहते हैं कि जो झूठ परोसा गया आज भी कि हमारी देश की महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा, क्या ये सरकार वाकई चाहती है? इस सरकार ने उसके आगे अपने राजनीतिक और कूटनीतिक तरीके से अलग अलग अड़चने पैदा की हैं कि देश की बेटियों को महिलाओं को कभी आरक्षण न मिले। क्या ये सरकार वाकई चाहती है कि देश में जो समाजवाद की धारा उत्पन्न हुई, जिसके जिसके बाद हजारों साल का अन्याय समाप्त होने की कगार पे आया, जिसको ये पलटने की कोशिश कर रहे हैं आरक्षण हटा करके या उसकी सोच ला करके, अब की बार 400 पार करके, क्या देश को दिखाई नहीं देता? क्या देश को दिखाई नहीं देता कि इस सरकार ने 400 पार का नारा दिया था, 240 पे जो भारतीय जनता पार्टी समट गई, उसने संसद को देश के इस पावन दिवस पे भी शॉपिंग मॉल बना दिया, जहां पर दो तिहाई बहुमत का दावा करते हैं पूरे देश की पार्टियों को तोड़ करके? तो भारतीय जनता पार्टी, जिसके लगभग 2000 एमपी और एमएलए हैं, आपका कोई भी दर्शक रिसर्च करेगा तो देखेगा उसमें से 800 एमपी और एमएलए ऐसे हैं जिनकी आपराधिक पृष्ठभूमि है। अगर आप अपराधी हैं,
5: आज तो विपक्ष से गुहार लगाई है प्रधानमंत्री ने कि महिला आरक्षण के लिए साथ में आई है, वो तोड़ मरोड़ का मामला अब खत्म हो गया है, उसके बावजूद भी वो बिल तो आ नहीं पाया इस बार, तो अभी विपक्ष से गुहार लगाई है, तो क्या अभी आप समर्थन देंगे?
6: देश प्रधानमंत्री के धोखे से थक गया है, उनके झूठों से थक गया है, उनके खोखले वादों से थक गया है, उनकी खोखली इंस्टाग्राम से थक गया है। देश सत्यमेव जयते पे चलता है। अगर आप देश की आजादी के आंदोलन के बारे में देखें तो सिर्फ ये नहीं कि महात्मा गांधी का अहिंसा था, सत्य और अहिंसा था। जिस महात्मा गांधी जी को मारने के लिए जो साजिश रची गई, उसमें आरएसएस का नाम आया, आरएसएस ने मिठाई बांटी, 50 साल तक अपने अपने कार्यालय में झंडा नहीं फहराया, हम आज मोहन भागवत की बात कर रहे हैं, जिसकी तमाम पीढ़ियां, जिस संस्था की तमाम पीढ़ियां अंग्रेजों के साथ काम करती थी। तो आज हम उन सकारात्मक बातों की चर्चा करें जो वाकई देश की अगली पीढ़ी के लिए महत्वपूर्ण है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री का मैं स्पीच देख रहा था, अन्य राज्यों का देखा, तमाम मुख्यमंत्रियों ने कहा है कि हम एआई को मुख्य धारा में लाएंगे। मैं स्टार्टअप भी चला चुका हूं, मैंने एआई का इस्तेमाल करके लगभग 80,000 लाइन ऑफ कोड लिखा है, तरह तरह की चीजें बनाई हैं, तो ये अच्छी बात है। प्रधानमंत्री जी ने कहा, अनेक मुख्यमंत्रियों ने कहा कि देश की मुख्य धारा में स्टूडेंट्स के लिए एआई लाएंगे, ये अच्छी बात है। देश के सामने बहुत बड़ा संकट है एआई के चलते, जो देश, भारत देश, जिसने दुनिया में अपना परचम लहराया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, आज एआई उसको उस चीज को खत्म करने के कगार पे लेके आ रहा है। तो अगर भारत को अपने भविष्य
5: तो उसके लिए तो स्वागत करेंगे ना प्रधानमंत्री का, उसके लिए तो स्वागत करेंगे ना प्रधानमंत्री का। एआई ट्रेनिंग की बात की है,
6: चाहे वो प्रधानमंत्री हो या फिर अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री, मैंने उदाहरण देकर कहा, सबने आज इस बात को कहा है, तो ये अच्छा लगता है कि हमारे देश के जो मुख्यमंत्री हैं और प्रधानमंत्री हैं एआई की बात करें। लेकिन इस बात का दुख जरूर होता है कि ये कहते हुए भी प्रधानमंत्री की जुबान लड़खड़ाई नहीं कि आज हमारे देश में एक ढंग का काबिल शिक्षा मंत्री नहीं है। जो शिक्षा मंत्री है, टेम्परेरी शिक्षा मंत्री, वो बिल्किस बानो के रेपिस का समर्थन करता है। तो अगर हमारे देश में आप केवल खोखली बातें कह रहे हैं, उससे दुख होता है, लेकिन आज के दिन मैं प्रधानमंत्री की किसी के स्पीच की किसी बात का की आलोचना नहीं करूंगा। मैं उनकी सब सकारात्मक बातों का स्वागत करता हूं, और जिस तरह की बात उन्होंने कही, नक्सल ये वो, ये बकवास है, देश थक गया है इस बकवास से। आप राम मंदिर की बात करते हैं, 45 करोड़ श्रद्धालुओं का पैसा लूटा गया आपके आदमियों द्वारा, आज तक एक इंसान ने इस्तीफा नहीं दिया, आज तक प्रधानमंत्री जी वहां पे गए नहीं, आज तक प्रधानमंत्री जी ने जिम्मेदारी नहीं ली, तो हम कितनी बातों
5: के बाद
6: उसके लिए बाकी
5: ये बहस एक तरीके से आम हो जाती है, और इसीलिए हर भाषण के बाद ये बहस एक तरीके से आम हो जाती है। लेकिन रजत सेठी, दो मुद्दों पर राय जानना बहुत जरूरी है, और उस पर बहस भी होना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री ने पिछले साल भी जब भाषण किया था, तब भी युवाओं की बात कही थी, ऐसा नहीं है कि इसी भाषण में आज का कॉन्टेक्स्ट पूरी तरीके से बदल जाएगा, क्योंकि आज हर कोई जेंजी या युवाओं की बात करने की कोशिश कर रहा है। रोजगार की बात भी कहीं ना कहीं करने की उन्होंने कोशिश की है, और उसके साथ साथ एक नई योजना की भी घोषणा उसमें की गई है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जब चर्चा में आता है, तब अचानक हमें दिखता है कि बाबा रामदेव ये कह रहे हैं कि पूरे देश में माहौल बिगड़ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें भी आंदोलन में उतरना पड़े। मोहन भागवत यहां पर याद दिलाने की कोशिश करें कि अलग अलग विचारधाराएं होती है, अलग अलग विचार होते हैं, अपोजिशन व्यू पॉइंट भी होता है, उसे भी डेमोक्रेसी में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और उसी वक्त लाल किले से प्रधानमंत्री दिमागी नक्सल की भी बात वहां पर कर लेते हैं। क्या ये पॉलिटिकल डिसेंट के खिलाफ ये टर्म इस्तेमाल किया गया है, या जो हाल में देश के भीतर जो पूरा माहौल दिखाई दिया, उस बात को लेकर यह टर्म इस्तेमाल किया गया, और उसके साथ साथ बाबा रामदेव या मोहन भागवत भी जो कह रहे हैं उस बात को लेकर?
7: साहिल जी, पहले तो सबको जय हिंद और स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। देखिए, विचारों की जब बात आती है तो एक डेमोक्रेटिक सेटअप में सबको अपने विचार रखने की आज़ादी होनी चाहिए, और जितने बिना डर के अगर अपने विचार नहीं रख पाएंगे तो उस आज़ादी के कोई मायने नहीं है। लेकिन विचार रखना और विध्वंसक विचार रखने में भी अंतर है। कई सारे ऐसे भी एलिमेंट्स हैं हमारे ही सोसाइटी के अंदर में जो कि भड़काना, अलग अलग तरीके से बातें करके देश की ही जो छवि है उसको नुकसान पहुंचाना, ऐसे भी हमने देखे हैं पार्लियामेंट में ही किस किस तरह की हमने ड्रामा के एलिमेंट्स देखे हैं जो कि देश की गरिमा को ठोस तो लगती है, चोट भी लगती है, गहरी चोट लगती है। बट ये मैं उनकी विजडम पे छोड़ता हूं कि विपक्ष किस तरह से सोचता है, कैसे उसको अपना राजनीतिक कंडक्ट करना है। बट देखिए, बिग पिक्चर की बात यही है, देश एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पर है। देश की जो इतनी बड़ी जो टाइटैनिक शिप है उसकी अगर दिशा मोड़नी है उसमें मुश्किल होती है, इतना आसान नहीं है। इसीलिए आपको प्रधानमंत्री की स्पीचेस, कोई एक रिसर्च पेपर तो है नहीं जिनको हर साल नया कुछ लिख के पब्लिश करना है, उनको अपनी पॉलिसीज को नए नए तरीके से जनमानस तक पहुंचाना है। और ये जो प्रक्रिया है, मैन्युफैक्चरिंग कैसे बढ़े जीडीपी के शेयर में, कैसे नए वर्गों में नौकरियों का संरचना की जा सके, ये सब काम एकदम चुटकी बजा के तो नहीं होते हैं। आपको एक ही पॉलिसी को लेके साल दर साल पुश करना पड़ता है। मैं आपको बताऊं, अगर मैं अगर एक छोटा स्टार्टअप चलाता हूं, क्वांटम टेक्नोलॉजी में चलाता हूं, जिसकी जो कि संभव ही नहीं था, अगर प्रधानमंत्री मोदी जी एक बार बेल्जियम जाकर उन्होंने समझा कि क्वांटम टेक्नोलॉजी में कितना कुछ होना बाकी है इस देश में, उन्होंने 6,000 करोड़ रुपए डेडिकेटेड किए। आज मैं 100 से 150 लोगों को नौकरी दे पा रहा हूं सिर्फ इसीलिए। आप आज डिफेंस में देखिए, स्काई रूट मेरे जूनियर्स IIT खड़गपुर से, जो कि आज अपना खुद का रॉकेट लॉन्च करके उन्होंने स्पेस तक पहुंचाया, ये सब संभव नहीं था 2020 से पहले, जब ये पूरी सेक्टर्स ही बंद थे। तो ये पूरी जो होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग बनी है, और मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी की ये चीज जो सकारात्मक सोच है इसके अराउंड, इसमें विपक्ष को भी आकर इसको हर चीज को क्रिटिसाइज करने के लिए क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। जिस तरह से वो कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम नए सनराइज सेक्टर्स में भारत अग्रणी भूमिका रख सके, उसके लिए टाइम लगेगा, सौहार्दपूर्वक माहौल होना चाहिए। अगर हम सभी लोग सड़कों पे उतर आएंगे जैसा कि रामदेव जी बोल रहे हैं, तो फिर बचेगा क्या? कौन इन्वेस्टर आना चाहेगा इस देश में? अगर इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना है, नए तकनीक बनानी है, तो कम से कम एक ऐसा तो माहौल बने देश में जो कि क्रिएटिव जूसेस को ढंग
5: लेकिन
7: से
5: रजत
7: मैनेज कर
5: फर्क ये हो
7: सके।
5: गया है पिछले साल के मुकाबले इस साल, अब लोग जवाब मांगने के लिए सड़क पर उतर आ रहे हैं। बाबा रामदेव कह रहे हैं कि बच्चे सड़क पर उतर कर हालत दिखा रहे हैं कि सड़क की हालत क्या हो रही है। स्कूल के बच्चे सड़क पर उतर कर कह रहे हैं कि हमारे स्कूल की हालत यहां पर क्या हो रही है, और वो खुद ही एक सिटीजन जर्नलिस्ट के तौर पर उतर कर इस बात को रखने की कोशिश कर रहे हैं। 2025 के भाषण में भी प्रधानमंत्री ने जो बातें कही थी, सेमीकंडक्टर हो, एनर्जी की बात कही और युवाओं के इंटर्नशिप स्कीम की भी बात कही हो, तब भी 1 लाख करोड़ की इस स्कीम की घोषणा की गई थी। उसका कितना फायदा हुआ यह भी सवाल पूछने की
7: देखिए,
5: कोशिश
7: अब 1 लाख करोड़
5: और
7: अगर RDI की बात
5: कॉन्टेक्स्ट उसका यह
7: करिए,
5: बदला है कि आज की स्थिति में युवा, फिर वो झारखंड में हो, जंतर मंतर में हो, या पंजाब के भीतर हो, या देश के किसी भी हिस्से में हो, वो ये कह रहा है कि भाई आज एम्प्लॉयमेंट का क्या होगा इस बारे में सरकार को अपना प्रगति पुस्तक रखना होगा सामने, उसी के आधार पर हम जज करेंगे। ये भी तो बदलाव यहां पर हुआ
7: जी,
5: है,
7: यही तो
5: और
7: मैं बोल रहा
5: इसीलिए
7: हूं। अगर आप
5: लाल किले के भाषण से वही भी उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं।
7: नहीं, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं, भाषण को अगर आप सिर्फ राजनीतिक चश्मों से देखेंगे तो आपको फिर राजनीति ही दिखेगी, लेकिन अगर उसमें सच में जो मूलभूत बातें की गई हैं, जब वो सप्त सिंधु की बात करते हैं कि इसमें 7 स्ट्रीम्स हैं जिसमें कि हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट जनरेशन की नौकरियां बना सकते हैं, लेकिन सबका ध्यान किस पे है? मैं रामदेव जी से ये नहीं एक्सपेक्ट करता हूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में चर्चा कर सकेंगे। उनको जो अपने सीमित अंडरस्टैंडिंग से समझ में आया उन्होंने बोला, मैं उस पर बिल्कुल दो राय नहीं है, बट मैं ये जानना चाह मैं ये चाह मैं मुझे ये पता है कि अगर आगे की नौकरियां बननी हैं वो मुश्किल प्रक्रिया होती है। अब हमारे सेमीकंडक्टर के प्लांट तैयार हो रहे हैं, एक एक प्लांट में 1 लाख 2 लाख नौकरियां इमीडिएट लगेंगी, और उसके जो स्पिल ओवर होंगे वो कितनी गुने की नौकरियां लग सकती हैं वो तो भविष्य बताएगा, लेकिन कम से कम दिशा जो पकड़ी है प्रधानमंत्री जी के विजन के थ्रू, उसी उसी के अंतर्गत आज जो संभव है वो अन्यथा संभव नहीं होता। और मैं इसीलिए बोलता हूं, पॉजिटिव एलिमेंट्स को लीजिए,
5: ठीक
7: राजनीति
5: है
7: को थोड़ी देर
5: रशीद
7: किनारे
5: तिवारी,
7: करिए और आगे बढ़िए।
5: राजनीतिक चश्मे से देखा जा रहा है इस पूरे भाषण को, क्या यह बात सही है?
8: जी साहिल, देखिए जब देश के प्रधानमंत्री लाल किले से संबोधित करते हैं देश को स्वतंत्रता दिवस के ऊपर, तो पूरा देश सुनता है, पूरा देश उनका एक तरीके का टारगेट ऑडियंस होता है, और उन्होंने बहुत सी महत्वपूर्ण बातें करी। लेकिन प्रधानमंत्री भी एक राजनीतिक पार्टी का, एक राजनीतिक सोच का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्होंने उस सेंस में ये बात कही और उस बात को लेकर के चर्चा होनी है। देखिए साहिल, हमें समझना चाहिए कि हमारे देश में बहुत सी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हैं, कुछ उग्र समझी जाती हैं, कुछ नरम समझी जाती हैं, और पूरा एक उसका लंबा इतिहास है। मुझसे ज़्यादा हमारे जो साथ में साथ साथ है सुधांशु त्रिवेदी जी, वो जानते हैं कि कैसे हमने नागालैंड में 600 से ज़्यादा छोटे बड़े मतलब राउंड ऑफ टॉक्स हो चुके हैं, और वहाँ के ऊपर हमने शांति स्थापित करने की कोशिश करी। तकरीबन यही स्थिति जो थी मिजोरम में थी, जहां मिजो अकॉर्ड हुआ था। इस तरीके से हमने पंजाब में देखा, असम में देखा, बहुत से ऐसे उग्र ग्रुप थे और जो लोग भारत के संविधान पर भी यकीन नहीं रखते थे, संविधान की प्रतियां जलाते थे, और उन्होंने राष्ट्रीय धारा में शामिल हुए और उन्होंने उसके बाद में भाजपा की सरकार में उन्होंने साथ में सरकार का प्रतिनिधित्व किया, केंद्र में उनके साथ सरकारें बनी, उसका एक लंबा इतिहास है। तो हम ये सोचे कि सिर्फ एक आइडियोलॉजी हमारे यहाँ पनप रही है, देखिए उसकी परिभाषा साहिल ये होनी चाहिए कि जो हमारी जो एक लक्ष्मण रेखा है, जो भारतीय संविधान की, भारतीय संविधान में विश्वास होना चाहिए, लोकतंत्र में विश्वास होना चाहिए। 1959 में पहली बार कम्युनिस्ट गवर्नमेंट दुनिया में जो थी हमारे यहाँ केरल में बनी थी। तो ये हमारा एक बड़ा स्वर्णिम इतिहास है, इसको हम एक आइडियोलॉजी से क्यों देख रहे हैं? जिनसे हम नहीं इत्तेफाक रखते, जिनको हम नहीं मानते, उनको भी हमें, उनका भी हमें सम्मान करना पड़ेगा। तो इस तरह से कहना ये बात कि एक दिमागी तौर से नक्सल है या ये है, देखिए कानून के दायरे में वो आते हैं या नहीं आते हैं। राजनीतिक सोच किसी की भी, किसी भी तरीके की हो सकती है। हो सकता है मैं समाजवाद में विश्वास तो रखता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि समाजवाद या सीपीआई एमएल की जो आइडियोलॉजी है,
5: कौन है, एग्री ना करूं। उसके पैरामीटर्स तो सुधांशु त्रिवेदी थोड़ी देर पहले गिनवा रहे थे जब शुरुआत की इस पूरे बहस की। उसी वक्त सुधांशु त्रिवेदी जी ने वो पूरा जो उसके पैरामीटर से वो गिनवाए हैं। तो आप इससे इत्तेफाक रखते हैं, आपको लगता है कि ये पैरामीटर सही है या इसे पॉलिटिकल डिसेंट के खिलाफ इस टर्म का इस्तेमाल किया गया है?
8: साहिल देखिए, अगर वो कोई गैरकानूनी हरकत करते, प्रधानमंत्री ने कहा कि सलाहकार थे पिछली सरकारों में और उन्होंने इस तरह की दिया, तो उनके खिलाफ संविधान में प्रावधान है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अगर कार्रवाई नहीं हो रही है तो केवल ये एक इल्जाम लगाने की बात है, या तो हम ये कह दें कि एक विचारधारा ही इस देश में चलेगी। देश में अलग अलग विचारधाराएं, तो उसमें दिक्कत क्या है? जनता उनको रिजेक्ट करती है, सीपीआई एमएल को कुछ सीटें मिलती हैं, कभी नहीं मिलती हैं। आज इस समय कम्युनिस्ट पार्टी की कहीं किसी भी प्रदेश में सरकार नहीं है, तो ये तो एक राजनीति का उतार चढ़ाव है। मुझे लगता है कि जो जेन जी के जो प्रश्न उठाए गए हैं, उससे ध्यान हटाने का ये प्रयास है।
5: सुधांशु जी जवाब दीजिए।
4: देखिए, मैं सबकी बात का जवाब देता हूं। पहले घनश्याम तिवारी जी ने जो बोला, उन्होंने बड़े अद्भुत तर्क दिए। उन्होंने कहा देश में शॉपिंग हो रही है और ये सब। भाई साहब, शॉपिंग तो वो होती थी कि हॉविट्जर को बेच दो, चेक पिस्टल को बेच दो, अगस्ता वेस्टलैंड को बेच दो, बोफोर्स को बेच दो, उसके बाद बहुत सारी कंपनियों को बिकवाते रहो देश को, और भारत की चाहे प्राइवेट सेक्टर की कंपनी हो या पब्लिक सेक्टर की, उसको कमजोर करते रहो। अपराध की बात अगर समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता कहे तो अपने आप में बहुत विचित्र बात लगती है। और देखिए, घनश्याम जी बहुत पढ़े लिखे, हार्वर्ड एजुकेटेड है, मगर 15 अगस्त के संदर्भ में कुछ भी नहीं बोला। ऐसा लगा जैसे उनका एक एआई मॉड्यूल रख दिया जाए, तो जो वो नॉर्मल डिबेट से बोलते थे वही सारी बातें उन्होंने यहां बोली। अब राशिद जी बहुत वरिष्ठ हैं, राशिद जी को तो कोई समझने में समस्या नहीं होनी चाहिए। नक्सल जो बंदूक को लेकर कहते थे सशस्त्र संघर्ष से बदलेंगे, आज उनको लगभग वो समाप्त हो गए, जनता का सपोर्ट समाप्त हो गया, कानून के दायरे में नहीं रहे, सरकार ने कठोरता से काम किया। जो ये कहते थे लेकर रहेंगे आजादी बंदूक के दम पर आजादी, वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। जो ये कहते थे कश्मीर हमारा छोड़ दो, जबरी नाता तोड़ दो और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान और आईएसआईएस के झंडे अब नहीं दिखते हैं। मगर उसमें भी जिसको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नजर आती थी, जिसको नीट के लिए होने वाले छात्र आंदोलन में मेरा लिंग मेरी आजादी का कोई संदर्भ नजर आता हो, तो मुझे लगता है ऐसे लोगों की दिमागी हालत दुरुस्त करने की आवश्यकता रहती है। अब यह मैं ये भी एक बात कहना चाहता हूं कि आज के समय में हमें देखना चाहिए सकारात्मक दिशा में देश कहां आगे बढ़ रहा है। मैं उदाहरण के लिए बताना चाहता हूं, हमने थोरियम के द्वारा फास्ट ब्रीडर रिएक्टर सक्सेसफुली बनाने में सफलता हासिल कर ली, जो करने वाले हम प्रैक्टिकली व्यावसायिक आधार पर दूसरे देश हैं। थोरियम का रिजर्व भारत में 35-40% है, यानी अगले 20-22 साल में हम ऊर्जा आवश्यकता में लगभग लगभग आत्मनिर्भर हो सकते हैं। मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं, जब हम लोग बच्चे
5: साल भी स्टूडेंट प्रधानमंत्री ने
4: तब भी एक बहुत बड़ा पेट्रोलियम क्राइसिस आई थी वेस्ट एशिया में, इराक में एक बात कर, इराक की लड़ाई हुई थी 91 में, उस समय आधी ट्रेनें कैंसिल हो गई थी और प्रधानमंत्री जी ने आज कहा कि केवल 30% इलेक्ट्रिफिकेशन था, अब 100%। सोचिए अगर ट्रेनें डीजल से चल रही होती तो क्या हालत होती। और अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो आगे बढ़े, और उन्होंने जो कहा प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, मुफ्त बिजली 50 लाख को मिल रही है, न खजाने पे जोर है यानी कोई निगेटिव इफेक्ट, और न इन्वायरमेंट पे कोई निगेटिव इफेक्ट। तो ये पॉजिटिव चीज है। और मैं एक बात साहिल जी, एक बस 30 सेकंड का समय और दीजिए तो मैं कह दूं, इस समय जरा दुनिया को देखिए, दो बड़ी महाशक्तियां अमेरिका अंदर पॉलिटिकल टर्मोइल में झूल रहा है, चाइना के अंदर एक अलग टर्मोइल है, वहां के दो डिफेंस मिनिस्टर गायब हो चुके हैं, फॉरेन मिनिस्टर गायब हो चुका है, पिछले ही साल 3 आर्मी चीफ रैंक के लोग डिसमिस किए जा चुके हैं। अब पता नहीं अंदर क्या हो रहा, किसी को पता नहीं है। यूरोप एक अलग प्रॉब्लम में है, उसने अपनी एनर्जी सिक्योरिटी आउटसोर्स कर रखी थी रशिया को, वो प्रॉब्लम में है, फैक्ट्री आउटसोर्स कर सकती थी चाइना को, वो प्रॉब्लम में है, सिक्योरिटी आउटसोर्स कर रखी थी अमेरिका को, तो प्रॉब्लम में है। तो बाई प्रोसेस ऑफ डिफॉल्ट भारत उभरता हुआ ताकत है। अब तमाम दुनिया की ताकतों को लगता है कि साम दाम दंड तीन तो काम नहीं किए, अब भेद लगाकर भारत में करो तो उत्तर दक्षिण में लड़ा दो, प्रांत पे लड़ा दो, भाषा पे लड़ा दो, जात पे लड़ा दो, नहीं तो अब जनसंख्या में भेद क्रिएट कर दो कि जेन जी अलग है और बाकी अलग हैं, जेन अल्फा अलग है, इनके सरोकार अलग हैं, एक वर्ग तुम्हारे खिलाफ खड़ा हुआ है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं हम उभरते हुए भारत, उभरते हुए विश्व में सबसे ब्राइटेस्ट स्टार हैं, बस उसे ईमानदारी सकारात्मकता से देखने की आवश्यकता है। सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों को इसमें सकारात्मक
5: ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ जैसे बाबा रामदेव, जैसे बाबा रामदेव आज की स्थिति में आकर जो कह रहे हैं उससे तो नजर आता है कि इस देश में दो अलग अलग आबादियां रह रही है। एक आबादी जो इस सकारात्मक सोच के जरिए अपना फायदा देख सकती है, और दूसरी एक आबादी जो आज भी सड़क पर उतर कर ये कहने की कोशिश कर रही है कि बुनियादी सुविधाएं अभी भी वहीं के वहीं हैं। 40 साल में बदला बहुत कुछ है, लेकिन ऐसा भी बहुत कुछ है कि जो अभी तक बदला नहीं है, और इसी बात को लेकर लड़ाई अभी भी जारी है। रचित किडवई कुछ कहना चाह रहे हैं।
8: जी, मैं बस सुधांशु जी से एक बात कहना चाहता हूं। देखिए, जो छात्र आंदोलन के बारे में हम बहुत सारे प्रश्न कर सकते हैं, हो सकता है इसमें एक कोई साजिश हो, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हो जो हम हमारे देश को मजबूत नहीं देखना चाहते हैं, तमाम चीजें, लेकिन छात्र आंदोलन का एक पूरा एक इतिहास रहा है। 1973-74-75 से लेकर 77 तक एक युवा आंदोलन है, जिसमें जेपी ने यहां तक कहा था कि पुलिस और फौज को कहा था कि वो अपनी सरकार की जो है वो सरकार का आदेश न माने, यहां तक कहा। उसके बाद में वो पूरा जो बेचैनी थी उसको राजनीतिक रूप से जो भारतीय जनसंघ थी और दूसरे भारतीय लोकदल और तमाम राजनीतिक दलों को जो जनता पार्टी बनी उसका फायदा हुआ। यही हमने देखा कि जब राजीव गांधी जब राजनीतिक रूप से ढलान में गए 87 से लेकर 89 के बीच में, बोफोर्स, शाबानों और बहुत सारे मामलों में, उस समय भी युवाओं ने काफी बेचैनी थी और उसका राजनीतिक लाभ हुआ जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की गवर्नमेंट भाजपा और लेफ्ट के सपोर्ट से बनी। और तीसरा जो आपने हमने देखा इंडिया अगेंस्ट करप्शन के टाइम पे, उस समय भी जो मनमोहन सिंह की सरकार के बारे में जो आलोचना थी या तथाकथित करप्शन के मामले थे, तो युवाओं का राजनीति में एक बड़ा इन्वॉल्वमेंट रहा है और उसका हमेशा विपक्ष को फायदा हुआ है। तो अगर आज का विपक्ष ऐसे कोई प्रयास कर रहा है तो इसमें आपत्ति किस बात की है साहिल?
5: सुधांशु जी जवाब।
4: हाँ, राशिद जी ने बहुत अच्छी बात कही। छात्र आंदोलन दो प्रकार के होते हैं, जैसे जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन था तो उस समय नेतृत्व जेपी कर रहे थे, छात्रों को विश्वास था उस समय के नेतृत्व पे, चरण सिंह जी थे, मोरारजी देसाई थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, और ये लोग छात्रों के मुद्दे लेके आगे बढ़े। वीपी सिंह का नेतृत्व आया तो उस समय भी वीपी सिंह उसका नेतृत्व कर रहे थे। फिर आप आइए मंडल और मंदिर दो आए, मंडल में कोई नेता नहीं था तो वो आंदोलन आया और बिखर गया, मगर मंदिर के अंदर भी युवा ही थे, जो कार सेवक थे सब युवा थे, मगर वहां पर भी एक स्थापित वैचारिक नेतृत्व था उस ऊर्जा को सही दिशा देने के लिए, वो एक सकारात्मक दिशा में गया। अब यहां पर भी अन्ना आंदोलन था, ठीक है, उसमें लाभ उठा लिया, किसी ने भांजी मार दी जाके, केजरीवाल जी ने उसका लाभ उठा लिया और वो आगे आ गए। इसलिए दो प्रकार के आंदोलन है, एक है जहां नेतृत्व में विश्वास है। आज आप देखें कि भाई ये जो छात्र थे इनको अगर नेतृत्व में विश्वास होता तो राहुल गांधी जी के पास जाते, अखिलेश जी के पास जाते, जैसे कि 73 में लोग गए थे जेपी के पास, लोग वीपी सिंह के पास गए थे।
5: नया नेतृत्व मगर ऐसा तो तैयार हो सकता है ना सुधांशु जी,
4: अपने आप में अगर भारतीय जनता पार्टी
5: हर आंदोलन से
4: एक लाइन पूरा
5: हर आंदोलन से नए नेतृत्व का जन्म तो हुआ ही है ना। नहीं, हर नेतृत्व से, हर आंदोलन से एक नया नेतृत्व तो जन्मा है ही ना कहीं ना कहीं। आपने राम मंदिर के आंदोलन का जिक्र किया, मंडल के आंदोलन का आपने जिक्र किया, देश की राजनीति को नए नेता उसी आंदोलन से मिले हुए हैं, भले वो दोनों आंदोलन अलग अलग विचारधारा के रहे होंगे।
4: साहिल जी मैं संशोधन करूंगा, स्थापित नेतृत्व परिपक्व नेता दे सकता है ना, जेपी आंदोलन से निकले नेता नहीं थे, आंदोलन का नेतृत्व करने वाले थे ना, मोरारजी आंदोलन से निकले थे, राम मंदिर आंदोलन में अडवाणी जी पहले से नेता थे, उमा भारती जी पहले से नेता थी, और एक मात्र आंदोलन है भारत के इतिहास का जिसमें आंदोलन शुरू करने वाला कोई राजनीति में नहीं आया। बाकी सब जो आप कह रहे हैं ना, आंदोलन से राजनीति में आने की जो छटपटाहट होती है, जो केजरीवाल जी ने दिखाई साफ हो गया, किसान आंदोलन वाले चुनाव लड़ लिए, जमानत जब्त करवा लिए, पहलवान आंदोलन में एक विधायक बन ही गई,
9: तो ये दिखाता है, आपने बिल्कुल सही कहा, आंदोलन के पीछे हिडन मोटिव ये होता है कि मैं अपनी राजनीति चमका ले जाऊं, और वो कितनी चमकती है ये जनता कुछ समय के बाद समझ जाती है।
6: मैं कुछ आलोचनाएं करूंगा एक वाक्य में,
5: वो तिवारी उसके बाद रजत सेठी जी।
6: मैं कुछ आलोचना करना चाहता हूं एक एक वाक्य में, लेकिन वो मेरा मूल पॉइंट नहीं है। ये कहना कि ये जो अभी लड़ाई है दिमागी नक्सल वाली, ये स्वतंत्रता संग्राम से बड़ी लड़ाई है, ये वही लोग कह सकते हैं आरएसएस वाले जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में नाखून भी नहीं कटाए। तो ये कहना मुझे बड़ा दुख होता है ये सुनकर के, कि आज के दिन हम ये कह रहे हैं कि कोई ऐसी दिमागी नक्सल की लड़ाई स्वतंत्रता संग्राम से बड़ी लड़ाई है। ये हम आंदोलनों का विश्लेषण कर रहे हैं, हम इस बात को वैल्यू नहीं कर रहे कि आज संसद शॉपिंग मॉल बना हुआ है कि नहीं, इस बात का विश्लेषण नहीं कर रहे कि ये तथ्य है कि नहीं कि 800 एक दो नहीं 800 ऐसे क्रिमिनल ट्रैक रिकॉर्ड के लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के एमपी एमएलए बने हुए हैं कि नहीं, इस बात का जिक्र नहीं कर रहे कि आज के देश में
5: आखिर
6: हमारे यहाँ मर्डरर
5: रजत सेठी
6: क्राइम किए हुए लोग मंत्री बन सकते हैं।
5: आपने सकारात्मक सोच की बात की, पूरे चर्चा में इस बात का भी जिक्र हुआ है, लेकिन क्या महज सकारात्मक सोच से चलेगा या विरोधी विचारधारा और विरोधी विचारों को भी अब इस पूरे देश के नैरेटिव में ध्यान देना होगा, उसी से देश आगे बढ़ पाएगा।
7: नहीं बट आप साहिल जी मुझे ये बताइए, सकारात्मक सोच की अगर मैं बात रखूं, पिछले 10-12 साल से जब से प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री हैं, तब से ऐसा कौन सा मॉडल है जो कि विपक्ष के नेताओं ने सामने रखा हो? कुछ तो एक ऐसी सकारात्मक सोच, अगर ये सप्त सिंधु अगर प्रधानमंत्री जी बता रहे हैं, आप बोलिए, आप एक सिरे से नकार दीजिए कि ये बहुत रेपिटेटिव हो गया है, इससे देश का कोई भला नहीं हो सकता, हम लोग सुनेंगे, लेकिन आप ये तो साथ में बोलिए कि नहीं हमारे पास सप्त सिंधु की जगह सप्त ऋषि का ये अलग मॉडल है। मॉडल की कोई बात नहीं करता, राजनीतिक लक्ष्य नहीं किया, इस सब की चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन यह मूलभूत बात नहीं हो रही है कि आप करोगे क्या। अगर आपको बागडोर दे दी जाए आपके हाथ में देश का, तो आपके पास ऐसा कौन सा सकारात्मक मॉडल है कि अचानक से भर भर की नौकरी आने लग जाएंगी इस देश में? ऐसा तो कुछ दिखता नहीं है मुझे। तो इसलिए देखिए, राजनीति तो चलती रहेगी, कोई पैसा थोड़ी ना लगता है राजनीतिक बातें करने का, तो वो चलता रहेगा, लेकिन बात जो होती है पॉलिसी मेकिंग की, वो गहरी बातें इन सब मंचों पर नहीं हो सकती है। मंचों पे थोड़ी बहुत बातें होंगी और पॉलिसी मेकर्स आज से एक्टिव हो जाएंगे कि अब क्या क्या नई स्कीमें बनानी प्रधानमंत्री।
5: ये बात तो मैं भी मानता हूँ कि देश को आगे बढ़ाना है तो पॉलिसी पर बात करनी पड़ेगी, देश को आगे बढ़ाना है तो मुद्दों पर बात करनी होगी, और ये मुद्दे जमीन पर कैसे तब्दील हो, योजना जमीन पर कैसे तब्दील हो, उस पर भी कहीं ना कहीं बात करनी होगी। तो प्रधानमंत्री मोदी का ये 13वां भाषण था रेड फोर्ट के प्राचीर से, और उसी पर हम चर्चा कर रहे थे। फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद ही आज तक पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप देखते रहिए आज तक।

आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: पापा
2: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
3: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
2: छक्का
3: सब कैशलेस हो गया
2: है।
4: ला भाई मेरा बैट,
5: वो अभी तो ठीक हुआ। तो
4: चार्ज हुआ यार।
6: बैट किसका है?
7: टाटा AIG है तो भरोसा है।
8: जिस मिट्टी में फसल उगती है उसी में भारत की स्वतंत्रता की खुशबू है। इस स्वतंत्रता दिवस आइए उन किसानों का सम्मान करें जो हर दिन देश को मजबूत बनाते हैं। मेरे और क्रिस्टल परिवार की ओर से आपके और आपके परिवार को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।

0: मुल्तानी खू का कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय।
1: इन एसोसिएशन विद हिंद, बड़े आराम से शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
2: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
1: विमल बोलो जुबा केसरी।
3: जहां जुर्म वहीं कहानी, जहां कहानी वहीं साजिश, जहां साजिश वहां क्राइम। जुर्म चाहे कितना ही उलझा हो, उसकी परतें हम सुलझाते हैं। देखिए क्राइम तक यूट्यूब पर और बचिए हर क्राइम से।
4: भिखारियों का मनोविज्ञान क्या है?
5: तैयारी तुम भी कर रहे हो क्या?
4: नहीं सर।
5: 12th किससे की हो?
4: 12th सर मेरा PCM से रहा।
5: कंपाउंड क्या होता है?
4: बेसिकली जो एक्युमुलेटेड चीजें रहती हैं उसके ऊपर।
5: यही है भीख मंगे वाली क्वालिटी। तुम पूछ रहे थे ना, यही है यही। एक मिनट,
4: ये जो आपका तरीका बहुत सर बहुत अच्छा नहीं है। इस तरीके से समझाने का स्टूडेंट्स को, इसे सर ह्यूमिलिएशन कहते हैं।
5: देख भाई, अपनी गारंटी पे छेड़ना

जब मैं विकसित भारत की बात कर रहा हूं, देश को तेज गति से आगे बढ़ाने की बात कर रहा हूं, उसका सबसे बड़ा लाभार्थी कौन है? इन सारे प्रयासों का सबसे बड़ा साधक कौन है? अगर साधक है तो मेरे देश का युवा है, मेरे देश की युवा शक्ति है। विकसित भारत की यात्रा में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। इतना ही नहीं, विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी मेरे देश का युवा है, और इसलिए हमें विकसित भारत के लक्ष्य को युवाओं के साथ जोड़ करके आगे बढ़ाना है। युवाओं हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ हमें आगे बढ़ना है। साथियों, पिछले 10-12 साल में उस दिशा में बहुत कुछ हुआ है। स्टार्टअप इंडिया अभियान, आज पूरे देश में 2.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप बन गए। देश के नौजवान खुद तो काम कर रहे हैं, अनेकों को रोजगार दे रहे हैं। 1 लाख करोड़ रुपया इनोवेशन फंड भारत सरकार ने घोषित किया है। मैं देश को नौजवानों को कहना चाहता हूं, आप अपने सपने को लेकर के आइए, संसाधनों की कमी नहीं रहने देंगे। 1 लाख करोड़ रुपया आपके दिल दिमाग को सामर्थ्य देने का एक व्यवस्था हमने कर दी है। रिसर्च के नए अवसर मिले, डिजिटल इंडिया के नए सस्ते डेटा युवाओं को सशक्त किया। दुनिया में सस्ता डेटा कहीं है तो भारत की धरती पर है, और देश के नौजवानों ने नौजवानों को नई ताकत दी है। स्किल इंडिया हमने नेशनल प्रोग्राम बनाया है, स्पेस सेक्टर को हमने ओपन कर दिया, नेशनल ड्रोन पॉलिसी हमने बनाई है, खेलो इंडिया पॉलिसी बनाई है, 35 वर्षों तक एजुकेशन पॉलिसी नहीं थी, नई एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आए हैं, और इसका फायदा मिडिल क्लास के परिवारों को हुआ है। साथियों, 2004 से 14 आंकड़े मुझे देना चाहिए आपको, 2004 से 14 हमारे देश में 350 से भी कम यूनिवर्सिटी थी, और आज 10-12 साल के भीतर भीतर करीब 650 नई यूनिवर्सिटी जुड़ चुकी है, करीब 1000 का आंकड़ा हम पहुंच रहे हैं। 2014 के पहले मेडिकल की सिर्फ 400 सीटें हुआ करती थी, आज करीब करीब 850 सीटें मेडिकल की हो रही है। इतना ही नहीं, अब विदेशी यूनिवर्सिटी भी भारत की धरती पर आ रही है। भारत के अंदर विदेशी यूनिवर्सिटी की डिग्री मेरे नौजवान को मिले, इसका प्रबंध भी हो चुका है। हमारे देश के युवा मन बचपन से ही टेक्नोलॉजी की तरफ आकर्षित हो, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं, और इसलिए हमने करीब 10,000 से अधिक अटल टिंकर की लैब छोटे छोटे बच्चों के हवाले कर दी है, ताकि उनका इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के अंदर उनका मन बने। 12 वर्ष युवा, हमने अनेक रास्ते खोले, हम स्टार्टअप ओपन कर दिया। आपने देखा होगा भारत के प्राइवेट स्टार्टअप 28 साल की एवरेज उम्र के बच्चों ने, नौजवानों ने दुनिया में पहले ही ट्रायल में अपना सैटेलाइट लॉन्च कर दिया और रॉकेट लॉन्च कर दिया उन्होंने, बहुत बड़ा काम कर दिया। साथियों, आज करीब 2.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप है।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: तो दंगल में मेरे साथ बस इतना ही, अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार अल्लाह देखते रहिए।

0: आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल पावर्ड बाय विक्टर्स, भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाले वाटर टैंक्स, टंकी मतलब विक्टर्स।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

वंदे मातरम पर छिड़ी नई जंग, बीजेपी का आरोप। सोनिया गांधी ने बीच में रोका राष्ट्रगीत। कांग्रेस का जवाब, खड़गे जी के लिए कुर्सी लाने को बोला। लाल किले से संबोधन में पीएम ने दिमागी नक्सलियों का किया उल्लेख। बोले, देश को नुकसान पहुंचाने वालों की पहचान जरूरी।

0: कांग्रेस बोली राजनीतिक विरोधियों को कह रहे हैं दिमागी नक्सल। संघ प्रमुख ने लोकतंत्र में विपक्ष को बताया जरूरी, बोले जिम्मेदारी का भी हो ख्याल। तो बाबा रामदेव ने आंदोलन की दी चेतावनी, कहा भारी घपला, सड़कों पर आ रहे हैं बच्चे। देशभर में मना आजादी का जश्न, राज्यों में मुख्यमंत्रियों ने फहराया तिरंगा। सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली में विकास की रफ्तार बढ़ाने पर जोर दिया। और जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भीषण हादसा, सैकड़ों फीट गहरी खाई में बेलोरी गिरने से 5 की मौत, ड्राइवर ने खोया नियंत्रण।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

की सप्त धारा का आवाहन करना है। समय हमारा है, अवसर हमारा है, संकल्प हमारा है। '47 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे।

एक दीप से जले दीप हजारों, आओ मिलकर विकसित भारत बनाएं।

80वें स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं आप सभी दर्शकों को। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान यहां पर जुड़ गए हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी सांसद भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ सत्य प्रकाश मिश्रा जी राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर जुड़े हैं। हमारे साथ संगीत रागी जी जुड़े हुए हैं और हमारे साथ आशुतोष जी लगातार जुड़े हुए हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। इन सबके साथ चर्चा करेंगे। बड़ा दिन है और हमें उम्मीद है कि ये जश्न आप भी अपने तरीके से मना रहे होंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लाल किले के प्राचीर से बहुत सारी बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि एक महाशक्ति बनने की राह में जो सप्त धारा पर हमें आगे बढ़ना है, उसमें देश में हम कैसे मैन्युफैक्चरिंग निर्माण से लेकर हम कैसे भारत के सॉफ्ट पावर यानी योगा आयुर्वेद अपना जो पर्यटन है, इन सब पर हम कैसे आने वाले वक्त में जोर दे सकते हैं, हम कैसे युवा शक्ति युवा ऊर्जा को आगे ले जा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि ऐसे तमाम क्षेत्र जहां पर हम पहले काम नहीं करते थे, हमें वहां भी बहुत तेजी से बढ़ना होगा। हमें कैसे अपने देश को सशक्त बनाना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि समय हमारा है, अवसर हमारा है, संकल्प भी हमारा है, 2047 में विकसित भारत बनाना है। तो सप्त धारा की उन्होंने बात की, उस पर भी बड़ी चर्चा हो रही है। लेकिन प्रधानमंत्री ने आज इस मंच से यह भी कहा कि भारत ने सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल की है नक्सलवाद का अंत करके इस देश में, और उन तमाम क्षेत्रों में जहां पर नक्सलवाद का बोलबाला रहता था वहां पर परिस्थिति बिल्कुल बदल गई है। वहां विकास आज लोगों तक पहुंच रहा है, लोगों को हम मुख्य धारा में शामिल कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि कुछ लोग दिमागी नक्सल है जो देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि कई बार अफवाहें देश में फैलाई गई, पेट्रोल डीजल अब नहीं मिलेगा, इस तरह की अफवाहें फैलाकर लोगों के मन में एक डर और भय पैदा किया गया। आज इस मंच से प्रधानमंत्री ने अनेकों बातें कही। इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, ये देखिए।

आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्त धारा का आवाहन करता हूं। आने वाले 5-7 साल में, जो पिछले 5-7 दशक में

0: सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे।
1: लाल किले से, शक्ति की सप्त धारा से 2047 के विकसित भारत का मंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फूंका। शक्ति की ये सप्त धारा है मैन्युफैक्चरिंग पावर, कृषि और फूड प्रोसेसिंग, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, गति शक्ति, रक्षा शक्ति, ग्रीन इकोनॉमी और ब्लू इकोनॉमी और सॉफ्ट पावर। इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने देश के कुछ खतरों की बात की। सशस्त्र नक्सलवादियों के खात्मे के बाद पीएम मोदी ने दिमागी नक्सलियों के खिलाफ सीधी लड़ाई का बिगुल फूंका।
0: जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है, लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा।
1: 15 अगस्त पर प्रधानमंत्री मोदी की स्पीच में आत्मनिर्भर और विकसित भारत का रोड मैप था। 2036 के ओलंपिक खेलों के मद्देनजर 5 से 15 साल के बच्चों के टैलेंट हंट, 1 करोड़ युवाओं की AI ट्रेनिंग, परीक्षाओं की तैयारी के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग, सिविल डिफेंस के लिए आधुनिक ट्रेनिंग, 7 से 8 नए सेमीकंडक्टर्स प्लांट और 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा के लक्ष्य प्रधानमंत्री के भाषण का हिस्सा बना। प्रधानमंत्री के भाषण में युवा शक्ति और नारी शक्ति के लिए अपील थी। 33% महिला आरक्षण को लागू करने के लिए उन्होंने राजनीतिक दलों से मदद मांगी।
0: मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, आप भी यस लीजिए, आप भी क्रेडिट लीजिए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।
1: विकसित भारत संकल्प को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री ने बड़े सपनों की बात की। आज तक ब्यूरो। मुख्य धारा से देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा और जो नक्सल, दिमागी नक्सल देश की गलियों में छिपे हुए हैं, जो पहले नीतियों को प्रभावित करते थे, वो अब किस तरह से देश में अपना पैर, मतलब फिराक में, उन्होंने कहा मौके की फिराक में है, इसको किस तरह से समझे? सुधांशु जी, आपका परिचय एक बार करा देते हैं। अजय उपाध्याय जी भी कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं स्टूडियो में, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। बोलिए सुधांशु जी।
2: देखिए सर्वप्रथम तो आज के स्वतंत्रता दिवस पे हर देशवासी को एक चीज की अनुभूति होनी चाहिए कि हम उस देश के नागरिक हैं जिसके बारे में दुनिया क्या कहती थी और आज क्या कह रही है। एंशियंट चाइनीज में इंडिया का नाम है टियानजू, सेंटर ऑफ हेवन। एंशियंट जैपनीज में है टेनजिक, यानी हेवन की प्लेस। तो वहीं जर्मनी का आर्थर शोपेनहावर कहता है कि अगर विश्व का सबसे उन्नत विकसित मस्तिष्क देखना है तो भारत का आकाश के नीचे आना पड़ेगा। तो अरेबिक ट्रेवलर्स चाहे जितने भी रहे हों, इब्न अल खल्दूम चाहे इब्न अल तबरी, उन्होंने कहा व्हेनेवर आई लुक टूवर्ड्स इंडिया आई फाउंड ए कूल ब्रीज ऑफ नॉलेज इज कमिंग। तो मुझे लगता है वो देश जिसने कभी दुनिया पे जाके इन्वेजन नहीं किया, जिस देश ने कभी कन्वर्जन की नहीं सोची, जिसने कभी दुनिया पे आधिपत्य जमाने की नहीं सोची, दुनिया को प्रेरणा देने की सोची, आज विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में फास्टेस्ट ग्रोइंग है, आज 177 देश जिसमें योग के द्वारा सीधे प्रभावित होते हैं, वो देश जो आज ब्रिक्स का भी मेंबर है जो चाइनीज ब्लॉक माना जाता है, और क्वाड का भी मेंबर है जो अमेरिकन ब्लॉक माना जाता है। तो हमें पहली बात तो ऐसे देश के नागरिक होने पर गर्व का अनुभव होना चाहिए, परंतु कुछ विचारधाराएं ऐसी हैं जिनको भारत में कोई भी अच्छी चीज जो प्रत्यक्ष भी दिख रही हो उसमें भी बुराई देखने की एक आदत हो जाती है, और ये उनमें कोई गलती भी नहीं है क्योंकि सारी विचारधाराएं ये विदेश से प्रेरित हैं, ये फॉरेन फोर्सेस के द्वारा गवर्न होती, इनका इंसेप्शन एंड इंस्पिरेशन यानी इनकी उत्पत्ति और प्रेरणा दोनों मूलतः विदेश से है, और उस कारण से भारत के अंदर अनेक प्रकार के अवरोध उत्पन्न करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप ये कहें तो जिसको आप नक्सली विचारधारा कहते हो, तो भारत तो कभी एक देश है ही नहीं, यहाँ तो सब अलग अलग हैं, वहाँ तो ये मानता है कि साहब भाषा अलग है तो देश अलग है, प्रांत अलग है तो देश अलग है, बोली अलग है तो देश अलग है, और ये वही

0: लोग हैं जिन्होंने 60-70 सालों में आज स्वतंत्रता दिवस पर हमें याद करना चाहिए 80 साल होने का रहे, अनेक बार इंडिया की मर्सिया पढ़ दिया, आजादी की बात कहा गया भारत तो एक रह नहीं सकता, ये तो डेमोक्रेसियां सर्वाइव नहीं करेगी। 1967 में एक बड़े अमेरिकी पत्रकार थे, उनका नाम भूल रहा हूं, उन्होंने कहा नेहरू जी के टाइम में कि नेहरू के बाद बल्कनाइजेशन ऑफ इंडिया हो जाएगा। 67 में एक पत्रकार ने कहा दिस विल बी द लास्ट इलेक्शन ऑफ इंडिया, आज हमारे लगातार इलेक्शन हो रहे। कहा 70 के दशक में भुखमरी से देश मर जाएगा, ग्रीन रिवोल्यूशन हुई, हम उस समय की सरकारों को भी क्रेडिट देते हैं और हम देखिए आत्मनिर्भर हुए। उसके बाद याद करिए 91 में जिस समय हम फाइनेंशियल क्राइसिस में आए, डूब जाएगा देश बर्बाद हो गया। 98 में अटल जी ने पोखरण एक्सप्लोजन किया, बर्बाद कर दिया देश को। उसके बाद जब मोदी जी की सरकार आई फ्रेजाइल फाइव में थे, आज कहां से कहां आए। तो मुझे लगता है ये वही विचारधारा है जो चंद सालों के बाद भारत, ऐसा लगता है भारत की बर्बादी के ख्वाब देखते हैं। उन्हीं के बारे में प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि तेल का हाहाकार हो जाएगा, गैस नहीं मिलेगी। मैंने हम लोगों ने ऐसे सांसदों को बोलते सुना जो ये कह रहे थे भाई पता नहीं गैस मिले ना मिले तो खरीद के रख लो, जो लोग 4 दिन 5 दिन 6 दिन पहले बुकिंग कराए थे वो लोग भी बुकिंग करा रहे थे, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं मिलेगा। यानी किसी भी प्रकार से एक ऐसा वातावरण उत्पन्न करो जिससे देश निराशा और ग्लानि में डूब जाए। मैं स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी का 30 साल पहले का 1996 का 13 दिन की अटल जी की सरकार के समय का एक वाक्य है जो सदन में उन्होंने बोला था, कोई जाके चेक कर ले। उन्होंने कहा कि इस देश में आप तब तक इंटेलेक्चुअल नहीं माने जा सकते थे, दिमागी की बात कर रहा हूं, जब तक आप अपने भारतीय होने पर ग्लानि का अनुभव और हिंदू होने पर शर्म का अनुभव ना करें, तब तक इंटेलेक्चुअल एस्टेब्लिशमेंट में आपको दिमागी आदमी माना ही नहीं जाता था। पर अब यह दिमागी बुखार उतरना शुरू हो गया है 2014 के बाद, और इसलिए मैं कह सकता हूं कि भारत के लिए एक नया स्वाभिमान का सवेरा उदित हो रहा है।
1: और प्रधानमंत्री ने यह भी कहा अजय उपाध्याय जी कि लंबे वक्त तक ऐसे नक्सली दिमाग वाले लोग देश की नीति को भी निर्धारित करते थे और उसका रूप हम लोगों को दिखता था। हालांकि आज सबसे पहले तो 80वां स्वतंत्रता दिवस है, इससे पहले कि हम लोग घोर बहस में और तमाम मुद्दों पर चर्चा करें, हम सबको शुभकामनाएं। जश्न का भी दिन है तो कुछ तो अच्छा भी होगा बोलने को, लेकिन पीएम ने जो ये कहा है उस पर भी आपकी टिप्पणी।
2: नमस्कार सभी साथियों को, आपके सभी दर्शकों को, और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से, हमारे एक एक देश के उदारवादी लोकतांत्रिक चरित्र जीने वाले लोगों की तरफ से, सच पूछिए तो देश की ये आज़ादी जो मिली हमें और इस आज़ादी के 80 वर्ष तक जो हमने यात्राएं की है, इसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे और सच्चाई है उस उतार चढ़ाव के बीच भी हम जो है इस नैया को आगे लाने का काम किए, तो कहीं ना कहीं इसमें बहुलतावादी सोच हमारी जो है, विविधता में एकता की सोच है, वसुधैव कुटुंबकम की सोच है, सर्वधर्म संभाव को एक साथ लेकर चलने की सोच है, और विभिन्न विचारधाराओं को समन्वय बना करके वाद विवाद संवाद की प्रक्रिया को आगे ले जाने का सोच है, उसी सोच ने हमें आज यहां तक लाने का काम किया है। और आने वाले समय में भी हम अपने लोकतांत्रिक बुनियादी मूल्यों को आगे बढ़ाएंगे तो देश और मजबूत होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो भी लंबी भाषण दी है, ठीक है, प्रधानमंत्री जी का भाषण तो होता ही है, अपने प्रधानमंत्री जी, आज के प्रधानमंत्री जी का भाषण लंबा होता है, लंबा भाषण देने में कई बार चीजें भाग जाते हैं हम, और भागते भागते हम जो है बुनियादी बातों से भटक जाते हैं। सच पूछिए तो आज इस देश को जो है जिस तरह से नफरती सोच वाले दंगाई नक्सली हैं उनसे मुक्ति की ज्यादा जरूरत है। जिस तरह से हिटलर और मुसोलिनी के विचार के लोग आज संस्थाओं में बैठने जा रहे हैं, शिक्षण संस्थाओं में स्पेशली बीसी से लेकर के और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन पर कब्जा करने की जो बात कर रहे हैं, मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी को सच्चाई में उस पर भी कुछ न कुछ टिप्पणी करनी चाहिए या उसके पुनः एक बार वहां शुद्धिकरण का अभियान चलाना चाहिए जिससे लोकतांत्रिक मूल्य की स्थापना में आगे देश बढ़े और सभी विचारों को एक जगह मिले, तभी देश मजबूत होगा। दूसरी बात, युवाओं को लेकर के प्रधानमंत्री जी ने जो भी बात कही है, लेकिन युवाओं के भविष्य को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के कहीं कोई चर्चा उस स्तर पर नहीं हो पाई है। उनके शिक्षा व्यवस्था में जो सुधार की बात ईमानदारी से होनी चाहिए, अभी कुछ ही दिन पहले जैन जी ने जिस तरह के निराशा उनमें थी, उन निराशा को सकारात्मक दिशा ले जाने का काम हम सबको करना है, और हमें यह दिखाना है कि यह देश किसी एक वर्ग विशेष का नहीं, ये देश सभी का है, और इस देश के मिट्टी को में सभी देश के लोगों का खून पसीना बहा, तभी आज देश यहां तक आया है। आगे भी हम बढ़ेंगे सकारात्मकता के साथ। सच्चाई यह है, कोरोना के समय जिस तरह से 1000 से ज्यादा लोगों की पैदल चलने में और दुर्घटनाओं में मौत हुई थी, सबने देखा था, लाशों के कई जगह अंबार लगे हुए थे, ऑक्सीजन की कमी थी, ठीक है, हम उससे उभर कर आए क्योंकि देशवासियों के अंदर ताकत थी, शासन व्यवस्था की अक्षमता के बाद भी हम जो है उस स्तर पर आए। जहां तक बात है, अभी आपने वेस्ट एशिया की बात प्रधानमंत्री जी ने की है, क्राइसिस की, सच सबको पता है कि भाई कई चैनलों पर आपके माध्यम से हम लोग देखते थे, लंबी लाइनें थी, ठीक है कि वो रिजोल्यूशन उसका रिजोल्व हुआ है। तीसरी बात, विदेश नीति के संदर्भ में जो बातें हो रही है क्वाड से लेकर के और बाकी चीजों पर, तो क्वाड में तो हमने देख लिया कि अब 2+2 की बात हो गई, चाइना और अमेरिका एक साथ हो गया है,
1: ठीक है।
2: उसी तरह से सऊदी अरबिया जैसे इस्लामिक एक नेटो बनाने की बात कर रहा है। हम विदेश नीति में क्या सिद्धांतिक तौर पे हमें काम करना है, हमें सीधा खड़ा रहना है और हमें सष्टांग नहीं होना है, हमें देश के प्रति समर्पित होना है, किसी व्यक्ति के प्रति समर्पित होकर के आगे नहीं बढ़ना है। ये संदेश आज देशवासियों को मिलना चाहिए और देशवासी इस बात को समझते हैं। पुनः स्वतंत्रता दिवस के हार्दिक
1: शुभकामनाएं। आशुतोष जी, दिमागी नक्सल प्रधानमंत्री ने कहा कि और ये लोग मौके की तलाश में रहते हैं, अराजकता देश में फैलाना चाहते हैं। उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि पेट्रोल डीजल एलपीजी पर हुआ कि सब खत्म हो जाएगा, मिलना बंद हो जाएगा, लाइनें लंबी होती चली गई।
3: आप दिमागी नक्सल की बात कर रहे हैं, नक्सलिज्म किसी भी फॉर्म में उसका विरोध होना चाहिए, बट क्या ये जो दिमागी नक्सल की बात है, क्या जंतर मंतर की तरफ इशारा किया जा रहा? क्या जो हर इलाके में छात्र खड़े हो रहे हैं सड़कों के ऊपर, अपने अधिकार की बात कर रहे हैं, अपने स्कूलों की बात कर रहे हैं, क्या उनके ओर इशारा किया जा? मुझे लगता है आज हिंदुस्तान को, मुझे लगता है आज हिंदुस्तान को सबसे बड़ा खतरा दिमागी नक्सल का तो नहीं है, दिमागी दंगाइयों का सबसे बड़ा खतरा है, जो सड़क के हर कोने में खड़े होकर जो दंगा फैलाने की कोशिश करते हैं, जो किसी सांसद को बोलने नहीं देते, सर्किट हाउस में अगर सांसद वहां पे चले जाते हैं, उनसे सबसे बड़ा खतरा है। और जो हर जगह लोगों को पीट रहे हैं, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे पीट रहे हैं, ऐसे दिमागी दंगाइयों से देश को बचाने की जरूरत है। यह मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं,
1: डायरेक्ट है,
3: बिल्कुल दिमागी दंगाइयों से इस देश को बचाने की जरूरत है।
1: ठीक है, इसी पर एक रिस्पांस ले रहे हैं, आपने डायरेक्ट इस पर बोला है, डायरेक्ट इस पर,
0: बिल्कुल डायरेक्ट, ये सर्तन से जुदा कहने वाले दिमागी दंगाई है या नहीं, और सर्तन से जुदा उदयपुर में कर देने वाले दिमागी दंगाई है कि नहीं, बोलो।
3: उदयपुर के अंदर वो लोग कौन थे जो उदयपुर के कोर्ट के ऊपर चढ़ के झंडा फहरा रहे? कौन थे वो?
0: सर काटने
3: कौन
0: वाले
3: थे वो?
0: देखिए
3: कौन थे जो उदयपुर में
0: है दिमागी नक्सल?
3: अफराजुल
0: ये है दिमागी नक्सल।
3: मैं आपसे कह रहा हूं, आप जवाब क्यों नहीं देते? जो उदयपुर को जिन्होंने घेर लिया कोर्ट के ऊपर, जिन्होंने जाके भगवा झंडा फहराया था, वो कौन लोग थे? क्या वो दिमागी दंगाई थे या नहीं थे?
1: ठीक है, अब उनको जवाब देने दीजिए।
0: सर काटने वाले दंगाई मुंह से नहीं निकलेगा।
3: आप अपने मुंह से क्यों नहीं बोलते भाई?
0: ये कश्मीर में हर जुमे की नमाज के बाद एक पत्थरबाजों वाली भीड़ निकलती थी नारा लगाते हुए, और किसी इंस्पेक्टर अयूब पंडित को मार दिया करती थी, वो दंगाई थे कि नहीं?
3: ये मस्जिदों के सामने जो नारेबाजी करे, कौन लोग
1: हैं? आशुतोष जी,
0: नहीं
1: आप भी वही कर रहे
0: हैं। एक और बात बता रहा हूँ,
3: आप उनको टोकिए,
0: सुनिए, आप सुनिए, अभी टोकने की जरूरत ही देखिए, अब ये खुद ये बहुत तेज रिएक्ट करेंगे। ये 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, हम दिखा देंगे क्या है दिमागी दंगाई है कि नहीं। 20% 20 करोड़ 100 करोड़ पे भारी पड़ेंगे, दिमागी दंगाई है कि नहीं। और दिमागी दंगाइयों के साथ सरकार कौन चला रहा था आंध्र प्रदेश में? MIM के साथ 2014 में कांग्रेस, वो दिमागी दंगाई थोड़ी है। अरे मारते काटते रहो। 2012
1: तो कांग्रेस पार्टी उनको अछूतों की तरह ट्रीट करती है, वो आ जाते हैं कुर्सी लेकर
3: जो किताब में लिखते हैं हिंदुस्तान के तीन दुश्मन है, नहीं दिमागी दंगाई है वो दिमागी दंगाई कहते हैं कि हिंदुस्तान के कौन तीन दुश्मन
0: है भाई साहब। अभी और आइए 2012 मुंबई का आजाद मैदान, क्या दंगा हुआ, अमर जवान ज्योति तोड़ दी गई और कम से कम एक दर्जन चैनल्स की ओबीवैन तोड़ी गई, वो दंगाई थे कि नहीं? वो तो दिमागी दंगाई नहीं होते हैं, जो ओपनली कहते हैं लेकर रहेंगे आजादी बंदूक के दम पर आजादी, अरे वो दिमागी दंगाई नहीं होते। नक्सल क्या होते हैं? गांधीयंस विद गन, क्या तुलना है, गांधीयन गन सब मिला दिया, ये होता है दिमागी जहर जो गांधीयंस विद गन कहते हैं। इसीलिए मैंने कहा जिन और वो लोग जो कहते हैं, अभी उपाध्याय जी उंगली उठा रहे हैं, भाई साहब ये बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, और फिर ऐसा दंगा होता है कि 5,000 लोग मारे जाते हैं और 100% एक ही कम्युनिटी के दंगे में भी एक ही कम्युनिटी के लोग मरते हैं और पुलिस की गोली से एक ही कम्युनिटी के लोग मरते हैं, ये दिमागी दंगाई थोड़ी है? वो दिमागी दंगा है कि नहीं? इसलिए छोड़िए आज के दिन, कुछ सकारात्मक बात करते हैं।
1: आप
0: दंगाई की बात छोड़िए, आज के दिन देखिए कि दंगा से हटकर भारत चंगा होकर किस तरफ आगे बढ़ रहा है, उस सकारात्मक दिशा में
3: बहुत ज्ञान दे दिया भैया।
1: अजय उपाध्याय जी, सत्यप्रकाश जी और फिर संगीत रागे।
2: अंजना जी बहुत ही अच्छा, आज का जो एक ऐसा मौका भी है आज राष्ट्रीय त्यौहार है, मुझे लगता है आपस में तुतु मैं की कोई डिबेट होना उचित भी नहीं है। और कोई भी मानसिक तौर पे दंगाई प्रवृत्ति का है तो वो अपने तक ही सीमित रखे, कम से कम आज राष्ट्रीय चैनल पर इस तरह की बात न करे, क्योंकि जो देश का स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, हमारा विश्लेषण उस पर है, हो सकता है हम उनसे सहमत हो असहमत हो, जो असहमति है वो विपक्ष का काम है उसको व्यक्त करना। किसानों के बारे में उन्होंने लंबी चर्चाएं की है, किसानों को आज भी 27 रुपये प्रतिदिन की आमदनी है और जिस तरह के हालात हैं उस पर कैसे डबल उनकी इनकम होनी थी उस पर लगातार हर भाषणों में उनकी चर्चा हुई पर उस पर अभी तक कोई बात नहीं हो पाई। जिस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था लगातार खत्म हो रही है पब्लिक सेक्टर में उस पर हमें बात करनी थी। आयुष्मान भारत की चर्चा उन्होंने जरूर की है लेकिन उसमें जितनी गड़बड़ियां हुई हैं और जिस तरह के भ्रष्टाचार के आलम दिखे हैं लगातार हर मंच पर, उस पर भी प्रधानमंत्री जी को जरूर ध्यान देना चाहिए था और उनका यह दायित्व तो बनता है। हर 12 साल की चर्चा हर साल करना जरूरी है लेकिन साथ में पिछले 1 साल में आपने क्या उपलब्धियां पाई है, जिस तरह की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समस्याएं थी उन समस्याओं के निदान में हमने कहां खड़ा रहा और हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय नीतियां थी उन नीतियों पर हम कहां जाकर के अपने आप को स्टैंड किए, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि उसमें हम कहीं ना कहीं विफल हुए, चाहे चाबहार से हमको बाहर आना पड़ा हो, चाहे हमें जो है क्वाड के लेवल पर स्थिति दयनीय हुई हो, चाहे हमें जो है मानकर चलिए आपकी इंडो पैसिफिक से इंडो को हटाने की जो प्रवृत्ति रही अमेरिका की और अमेरिका के साथ जिस तरह से सरेंडर वाली प्रवृत्ति रही, मुझे लगता है उस पर भी हमें ध्यान देने की जरूरत है।
1: ठीक है,
2: जो स्वतंत्रता आंदोलन के आज मुख्य किरदार हैं उन पर भी चर्चाएं होनी चाहिए। मुझे लगता है उस पर यदि कोई महात्मा गांधी पर प्रश्न लगाने का काम आज भी कर रहा है तो वो मानसिक दंगाई और मानसिक विकृति का शिकार उसको मैं मानता हूं। राष्ट्रपिता पर यदि आज के दिन भी बैठकर हम इस तरह की बात रखेंगे तो यह ठीक नहीं।
1: सत्य प्रकाश,
4: चलिए
2: मैं घोर आपत्ति।
1: इससे पहले कि आगे बढ़े, एक बार आपको जो वर्ड क्लाउड है वो आज का बता दें। प्रधानमंत्री का जो संबोधन रहा है उसमें उन्होंने शक्ति शब्द का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया है, 24 बार उन्होंने शक्ति शब्द कहा है, सामर्थ्य का उन्होंने 22 बार जिक्र किया है, दिशा 21, 20-20 बार उन्होंने लक्ष्य और नौजवान कहा है। तो नौजवान शब्द एक तरह से आप समझ लीजिए चौथे स्थान पर रहा है, टाई है लक्ष्य शब्द के साथ, और युवा शब्द उन्होंने 15 बार कहा, इसी के साथ संकल्प 19 बार, सपना 18 बार, परिवार 17 बार और टेक्नोलॉजी 15 बार। तो ये वर्ड क्लाउड है जो आज प्रधानमंत्री के भाषण का रहा है, लेकिन जो वो कह रहे हैं सत्य प्रकाश जी, आपका रिस्पॉन्स उस पर।
4: उन्होंने गांधी पर अगर कोई बात कही है तो गांधी के समाधि पर ही जाकर वो फिर गए तिरंगा फहराने के लिए, तो गांधी के प्रति सबका सम्मान है। सवाल है जो आप कह रहे हैं कि अर्बन नक्सल, और आप क्या कह रहे हैं दिमागी दंगाई, अर्बन नक्सल की जो परछाई है वही दिमागी दंगाई है, दोनों के साथ में देवर और भौजाई वाली रिश्ता है और दोनों साथ बैठे हैं।
3: देवर भौजाई,
4: हाँ अभी रुकिए ना, आ रहे हैं उसी पर। कैसे बताते हैं, भारत ने पोखरण परमाणु विस्फोट किया, किसने विरोध किया, वो सारे अर्बन नक्सल खड़े हो गए लेख लिखने के लिए, उसके साथ कांग्रेस भी कूद गई, क्यों, कांग्रेस को तो समर्थन देना चाहिए था उस समय। तो वो वाला रिश्ता है दिमागी वो नक्सल और दिमागी दंगाई में, दोनों एक दूसरे की परछाई है। देखिए स्वतंत्रता दिवस
1: देवर और भौजाई कहां से आ गए, हम नहीं समझे सत्य प्रकाश जी, देवर और भौजाई कहां से आ
4: गए। वो है कि दोनों का एक रिश्ता है,
1: कौन सा,
4: उसमें मेटाफर लिया है मैंने और कुछ नहीं लिया है, उससे ज्यादा मत समझिएगा कि कोई मजाक का रिश्ता है या कोई उनका आपस में
3: रिलेशनशिप तो नहीं है ना, ये
4: नहीं नहीं
3: पक्का सेक्सिस्ट भी नहीं है
4: ना, नो नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, आई एम वेरी कंसर्न्ड अबाउट ऑल काइंड ऑफ जस्टिस टू ऑल, आई एम क्लैरिफाइंग दिस। क्या हिमाद्र तुंग सिंह से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, आज वो जयशंकर प्रसाद की उस कविता का दिन है कि बढ़े चलो बढ़े चलो, उन्होंने नौजवान शक्ति सामर्थ्य विकसित भारत किसके लिए बात की है। अगर अर्बन नक्सल कहा है तो वो कोई डिस्टर्ब कर रहा है भारत को, लगातार डिस्टर्ब कर रहा है, कैसे, तरह तरह के षड्यंत्रों से खड़यंत्रों से अपवाह के बाजार को गर्म करके भारत को नीचा दिखाना, उसकी सांस्कृतिक विरासत को सीधा नकारना अर्बन नक्सल की पहली पहचान है और दिमागी दंगाई की भी वही पहचान है, दोनों गलबहिया करके साथ चलते हैं। तो मैंने वो जो देवर और भौजाई वाली बात कही है
1: फिर ला
4: रहे लोगों ने, नहीं मैं चाहता उस पर आना,
1: अरे कहे उस पर ला रहे हैं, हंसिएगा आप क्या बोले हमको नहीं समझ में आया है, हमको नहीं समझ में आया, व्हाट इज दिस देवर भौजाई,
4: मैं चाहता हूं
1: देवर
2: भौजाई
1: कर दीजिए खत्म कीजिए, देवर भौजाई क्या होता है साहब, क्या होता है,
4: मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं,
1: छोड़िए मत एक्सप्लेन कीजिए, आप क्या एक्सप्लेन कीजिएगा,
4: एक दूसरे के सभी कर्मों में मदद करके एक दूसरे के को पोषित और पालित करना, उस चीज को मैंने कहा है। ठीक है, अगर आपको इनकार इन शब्द से, मैं शब्द वापस लेता हूं, लेकिन मेरा कोई उस पे वो जो
1: प्लीज ले लीजिए वापस,
4: जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का कोई
1: मुझे घोर आपत्ति है सर, ठीक वापस है, ओके
4: मैं ये लेता हूं वापस, मुझे इसमें आपत्ति है आपको निजी, मैं ले सकता हूं, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है,
1: धन्यवाद,
4: क्योंकि मैं विचारों का उदार व्यक्ति हूं,
1: मैं मानती हूं,
4: जो दंगाई व्यक्ति है और अर्बन नक्सल है वो भारत की उदारवादी व्यवस्था को समाप्त करना चाहता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करना चाहता है। 62 में चीन भारत युद्ध हुआ, 4 साल बाद यहां से कुछ अर्बन नक्सल, सो कॉल्ड नक्सल पहुंचे माउथ से तुमसे मिलने के लिए, इतिहास में ये फैक्ट है, मैं नाम आज नहीं ले सकता उस व्यक्ति का, वो व्यक्ति है नहीं इस दुनिया में, और उन्हीं के सारे चट्टे बट्टे पूरे भारत में अर्बन नक्सल की तरह कांग्रेस पार्टी के पीछे चिपके रहे। इसलिए मैं फिर उन शब्द को कहूंगा आपको, वो चोर चोर मौसेरे भाई ये ले लेते हैं, चोर चोर मौसेरे भाई, वो सारे चिपके रहे, अर्बन नक्सल दिमागी दंगाई के पीछे चिपके रहे, एक दूसरे की परछाई बने रहे। सांस्कृतिक विरासत वाली जो गांधीवादी पृष्ठभूमि के लोग थे उनसे अलग हुए, गांधी से किसी का इनकार नहीं है, गांधी का कैनवास बड़ा है, राष्ट्रपिता है, बहुत बड़ा योगदान इस भारत को स्वावलंबन और आत्मनिर्भर बनाने की संकल्पना को लेकर के जो प्रधानमंत्री जी ने कहा,
1: ठीक है, संगीत रागी,
4: अगर इस देश की तकनीकी विकास होगा, अगर इस देश का युवा विकसित होगा और जिस क्रम में विकास का दर चल रहा है, चाहे वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सेमीकंडक्टर हो या फिर ग्रीन और ब्लू एनर्जी की बात, जो सप्तधारा क्विक एक्शन प्लान उन्होंने कहा है, वो देश की मुख्य धारा है, उससे वो दिमागी दंगाई और अर्बन नक्सल का विरोध है।
1: दो बातें जो इस पर मुझे पता है कि आप भी इस पर जवाब देना चाहेंगे, दीजिएगा प्रधानमंत्री, लेकिन कहा कि अब जो सेमीकंडक्टर्स और ये वाकई अगर हो जाता है तो ये भारत के लिए सबसे बड़ा गेम चेंजर होगा, उन्होंने फैक्ट्रीज की बात की, प्लांट्स की, और कहा कि हम ऑपरेशनलाइज भी करेंगे जल्द से जल्द, 1 साल 2 साल का उन्होंने टारगेट दिया, ऐसे न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट्स के लिए उन्होंने कहा है, ये भी अपने आप में बहुत ताकत दिखाता है। लेकिन जो जेंजी का एक आंदोलन हुआ जंतर मंतर पर, और उसके बाद जो उम्मीदें और एक तरह से जो आकांक्षाएं युवा पीढ़ी की हैं, उसको आप कितना एड्रेस होते हुए देख रहे हैं?
5: देखिए, प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि हम सिर्फ उद्घाटन नहीं करते, कांग्रेस पार्टी बहुत सारे ट्रस्ट बनाती है, 1952 का जिक्र कर रहे थे आशुतोष जी सेमी कंडक्टर ट्रस्ट को लेकर के, लेकिन उसको ऑपरेशनलाइज नहीं करते। लेकिन प्रधानमंत्री जी का हमेशा ये रहा है कि नरेंद्र मोदी सिर्फ उद्घाटन जिसे शिलान्यास नहीं करते, उद्घाटन करने भी आते हैं, तो जो उस काम को वो ऑपरेशनलाइज भी करते हैं। रही बात अर्बन नक्सल की, तो अमित शाह जी ने और भारत सरकार ने जो फील्ड में नक्सल्स थे उनको तो खत्म कर दिया, लेकिन जो विश्वविद्यालयों में अर्बन नक्सल है, जो पत्रकारिता जगत में अर्बन नक्सल काम कर रहा था, जो बौद्धिक जगत में अर्बन नक्सल काम कर रहा था, वही मूल बीज है। जब तक आप उस बीज को नहीं खरेंगे तो रावण का जैसे 10 सिर होता है, वो निकल निकल करके कभी जंतर मंतर आएगा, कहीं और आएगा, कहीं
1: और खत्म कर देंगे।
5: एक सेकंड, मुझे अपनी बात
1: प्लीज
5: देखिए, मैंने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया, मैंने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया, मुझे बोलने दीजिए प्लीज। और दूसरी बात, इस बार बार ये जिक्र करती है कि राष्ट्रपिता स्वयं गांधी ने हिंदू स्वराज में लिखा है कि ये भारत एक एंशियंट सिविलाइजेशन है, एंशियंट राष्ट्र है। उन्होंने तर्क दिया, कहा कि ब्रिटिश एक साम्राज्य स्थापित कर पाए क्योंकि भारत पहले से एक राष्ट्र था। ये गांधी जी का 1909 में हिंदू स्वराज में लिखा हुआ है। दूसरी, उन्होंने तर्क दिया कि हमारे पूर्वज जो है वो जानते थे कि घरों में भी पूजा की जा सकती है। उन्होंने सेतु बंदर रामेश्वरम से मठों की स्थापना की, ये हमारे राष्ट्र के होने की परिधि के बारे में वो जिक्र करते हैं। तीसरी
1: अच्छा,
5: बात
1: गांधी जी को कोट कर रहे हैं।
5: नहीं, तीसरी बात गांधी जी ने उसी में कहा कि बार बार हमारे यहाँ कहा जाता है विविधता में एकता, नहीं, गांधी ने कहा एकता से विविधता, जिसका सावरकर जी, जिसका गोलवरकर जी ने कहा, जैसे एक बीज से तना निकलता है, फल निकलता है, सुन लीजिए,
6: पुष्प
5: है, सब चीज, प्लीज, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, मैंने सुना है,
1: नहीं सुना है आपने, लेकिन 2026 पे आइए ना, आज दिमागी नक्सलियों की बात हो रही है।
5: मूल मुद्दे पर हम आ रहे हैं, अर्बन नक्सल वही है जो कहता है कि वो ये भारत नेशनलिटीज का समुच्चय है और इस देश की लड़ाई नहीं लड़ना चाहता था। इस देश की लड़ाई जो नक्सल और ये अर्बन नक्सल की विचारधारा थी, जो कहता था कि कश्मीर के अंदर जनमत संग्रह होना चाहिए, कश्मीर आजाद होना चाहिए, और वैसे प्रोफेसर जेएनयू में बैठे हुए थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बैठे हुए, जामिया में बैठे हुए,
1: आज कैसे प्रोफेसर बैठे हुए, फिर आज पहुंचते हैं, आज तो आप हैं प्रोफेसर वहां पर, तो आज कैसे प्रोफेसर हैं उस पर चर्चा होनी है।
5: अंजना जी इसको गंभीरता से,
1: बहुत गंभीरता से बोल रही हूं मैं।
5: अर्बन नक्सल बगल में हमारा बैठा हुआ है, ये अर्बन दंगाई भी बैठा हुआ है, क्योंकि ऐसे ही लोग,
1: नाम लीजिए ना,
5: जो लोग इस देश में जिंजी के आंदोलन को जोड़ते हैं 370 से, जो लोग जिंजी के आंदोलन को सर्जिल इमाम के जेल में होने से जोड़ते हैं, जो लोग कहते हैं कि भारत के अंदर SIR नहीं होना चाहिए था, ये जिंजी आंदोलन में यही अर्बन नक्सल है। और मैं ये आज नहीं कह रहा हूं, मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि ये अराजक आंदोलन है।
1: LGBT के ऊपर तो आपकी सरकार ने भी फैसला लिया है ना?
0: नहीं, मैं कह रहा हूं इसका नीट से कनेक्शन बताइए ना। वो ठीक है, सर्जिल इमाम का मामला भी चल रहा है, उमर खालिद का भी चल रहा है, धारा 370 का भी चल रहा है, ये नीट से कनेक्शन बताइए ना।
1: मैं
0: ये जो बात है,
1: और एक और भी बात कर रहा हूं,
5: आप सुनिए,
1: यही तरह तरह के लोग पहुंचते हैं,
0: नहीं तरह, वही तो कह रहे हैं रहीमन, इस संसार में भांति भांति के लोग, मगर ये भांति भांति के लोग है, एक ही प्रकार की एक ही भांति के लोग हर आंदोलन में पहुंचते हैं। अब मैं एक और बात कहना चाहता हूं, ये बताइए धारा 370 की बात ही किसमें आएगी, CNRC में भी आ जाएगी, वही किसान आंदोलन में आ जाएगी, मोदी की कब्र खुदने की बात ही पहलवान आंदोलन में भी आ जाएगी, और वही नौजवान आंदोलन में भी आ जाएगी। एक मिनट, एक लाइन, ये एक मिनट,
1: एक सवाल है,
0: एक सवाल है, अंजना जी ये बस नाम रहेगा अल्लाह का, ये गाना हर आंदोलन में क्यों गाया जाता है? मतलब इसका कृषि कानून से क्या कनेक्शन है? इसका
1: फैंस की कविता है, उसको हम गाएं,
0: वो डफली वाला, वही तो मैं कह रहा हूं, इसका कनेक्शन बताइए ना, कविता
5: डफली वाला,
0: अरे साहब पूरा महाकाव्य पढ़ लीजिए, निराला का महाकाव्य पढ़िए, जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य पढ़िए, महादेवी वर्मा का महाकाव्य पढ़िए, ये फैज की ये लाइन काहे आ जाती है इसका एग्रीकल्चर कानून से मतलब बता दीजिए।
1: अच्छा भूदानचो जी, मेरा सवाल, ये जो दिमागी नक्सल आप कह रहे हैं, क्या ये दिमागी नक्सल, एक सेकंड, कभी अर्बन नक्सल का जिक्र होता है, दिमागी नक्सल का, क्या ये दिमागी नक्सल अब हावी हो रहा है?
0: हाँ,
1: ये आपको बताना पड़ेगा ना, क्या जिसकी वजह से आज मतलब लाल किले से उनकी चर्चा हो रही है,
0: जो आज स्थिति आई है। हाँ। ये महात्मा गांधी ने बहुत पहले इस बात को प्रेडिक्ट किया था, उन्होंने अपनी किताब हिंद स्वराज में लिखा, जिसमें स्वराज की पूरी व्याख्या की, भारत स्वतंत्र होगा तो उसका स्वरूप क्या होना चाहिए। उनसे वो प्रश्नोत्तर के फॉर्म में है, उसमें वो खुद ही एडिटर भी है, खुद ही जवाब भी दे रहे हैं। उन पर प्रश्न पूछा गया कि बापू क्या आपको भारत का एक गरीब किसान जिसके पास 2 जून की ढंग की रोटी नहीं, पहनने के कपड़े नहीं है, उसको देखकर भारत के भविष्य को लेकर चिंता नहीं उत्पन्न होती? तो जानते हैं महात्मा गांधी जी क्या जवाब था? ना, उसे देख के चिंता नहीं उत्पन्न होती है, ये जो अंग्रेजी शिक्षा में पढ़ लिख के लोग निकल रहे हैं, इन्हें देख के चिंता उत्पन्न होती है। उन्होंने आगे कहा कि हम ब्रिटेन से मुक्ति चाहेंगे और ब्रिटेन की नकल बनना चाहेंगे, या स्वराज्य नहीं हो सकता, हम मूल विचारों से पूरी तरह अलग हो जाएंगे, यानी हम बाघ से मुक्ति होकर बाघ का स्वभाव खुद ले लेंगे। और उन्होंने आगे शब्द प्रयोग किया है महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में, उन्होंने कहा यह सभ्यता जिसकी नकल करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, यह 115 साल पहले लिखा हुआ है, यह सभ्यता शैतानी है, शैतानी सभ्यता वर्ड यूज किया है, और एक दिन यह स्वयं ही नहीं पूरी दुनिया के लिए चुनौती हो जाएगी।
1: महात्मा गांधी को कोट कर रहे हैं, अच्छी बात है, आप भी महात्मा गांधी को कोट कर रहे हैं, लेकिन दिमागी नक्सल कौन है? मुझे बस दो सवाल है सिंपल, कौन है ये?
0: बात नहीं होने दी ना, आपको महात्मा गांधी पे रुक गई, अब बता रहा हूं दिमागी नक्सल कौन है। अब आते हैं 2012, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने खुद बोला कि कोडनाकुलम पावर प्रोजेक्ट में केवल कुछ लोगों ने जाकर रुकवा दिया, चूंकि जो नहीं चाहते थे भारत का पावर प्रोजेक्ट आगे बढ़े। हर जगह जहां पर भारत का कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होगा, और जब तक यूपीए की सरकार रही, चूंकि लेफ्टिस्टों का कंट्रोल ज्यादा रहा, वो बढ़ा रहा। आज प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि हम थोरियम में हमने फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बना लिया, अब ये हमारी इतनी बड़ी पावर बन के उभरेगी, क्योंकि दुनिया का 35-40% थोरियम रिजर्व हमारा है। अगले 20 सालों में यदि हम इसको सक्सेसफुली डेवलप कर ले गए, तो अब उस कारण से भारत आत्मनिर्भर हो जाएगा, बोथ इन द न्यूक्लियर पावर एंड द न्यूक्लियर एनर्जी। पर आप देखिएगा बहुत सारे इस पे इन्वायरमेंटल के इशू निकाले जाएंगे, जिसका मूल उद्देश्य यह होगा कि भारत की न्यूक्लियर ग्रोथ रुक जाए, जिसका मूल उद्देश्य यह होगा कि डेवलपमेंटल ग्रोथ रुक जाए। मुझे लगता है इन चीजों को गहराई से समझने की,
1: ठीक है, अजय जी रुक जाए,
2: जितना समय उनको दिया, मुझे सिर्फ आधा समय अनइंटरप्टेड चाहिए।
5: नेशनल एडवाइजरी काउंसिल,
2: डॉक्टर साहब आप बोल लीजिएगा, बस पूरा कर लीजिए, अनइंटरप्टेड चाह रहा हूं 10 सेकंड सर।
5: और आज भी नक्सली जो है वो राहुल गांधी को
2: सच्चाई है, मानसिक विकृति का कोई शिकार हो तो उसका तो कोई इलाज नहीं है, उसके लिए तो साइकेट्रिक चाहिए, बस आज स्टूडियो में ऐसी आवश्यकता नहीं है। आज देश का स्वतंत्रता दिवस राष्ट्रीय त्यौहार हम मना रहे हैं। अच्छा लगा कि जो लोग घोर विरोधी महात्मा गांधी के थे, आज वो भी महात्मा गांधी की शरण में ही जाकर के उनको ही उन्हीं के कहे हुए रास्ते को लेकर के अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं। सच्चाई यह है कि सावरकर के नाम पर हम आप डिफेंड नहीं कर सकते देश के इस विविधता को, इस बहुलता को, इस लोकतांत्रिक चरित्र को। और लोकतंत्र की मजबूती तभी होगी जब हम सभी मूल्यों को एक साथ जोड़ करके एक बड़ा भारत का मूल्य बनाए। और भारत का मूल्य संस्कृतियों से जुड़ा हुआ है, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। हमारी संस्कृतियां विराट रही हैं, अलग अलग धर्मों के अलग अलग समुदायों के लोग यहां रहे हैं, विविधता में एकता, अलग अलग भाषा के लोग रहे हैं। और आज देश यदि इस मजबूती के हालत में है जिसमें विश्व में हमारी पहचान है, तो उसका कहीं ना कहीं कारण यही है। युवा शक्ति को यदि आप नक्सल कहते हैं कि जंतर मंतर पर जाना, आपके द्वारा नारे लिखे हुए ही वो पढ़ें गढ़ें, तो मुझे लगता है कि यही बात आ गई कि असहमतियों को आप सम्मान देना नहीं चाहते जो लोकतंत्र के कोर में। आपकी बारी नहीं की है, मैंने उन्होंने कहा है कि वही नारे क्यों लिखे जाते हैं। नारों के बीच में नहीं किसी में बोला, नारों का अपना एक स्वरूप होता है। जब भी आंदोलन होता है तो नारे अंग्रेजों के समय भी वही नारे लगते थे, हमारे सरकारें थी तो हमारे सरकार के विरुद्ध भी वही नारे लगते थे, आपकी सरकार होगी तो वही नारे लगेंगे। नारों पर प्रतिबंध मत लगाइए, नारों के भाव को समझिए कि जो असहमति है उस असहमति को एड्रेस कैसे सरकार करे। यदि सरकार सही से एड्रेस की होती तो जैन जी को इतना लाठी डंडों से उन पर प्रहार नहीं होता, सड़क पर इस तरह से सुरक्षा का भाव नहीं साल के पूर्व संध्या पर जिस तरह से लाठी डंडे का प्रहार हुआ वो नहीं होता। मुझे लगता है कि अर्बन नक्सल से ज्यादा अब जरूरत हो गई है।
1: पूछ रहे हैं कि रांची में ऐसे नारे नहीं लगे, बात तो सच्चाई है।
6: रांची में पुलिस को लहूलुहान करते हुए वोट हुआ है,
1: रांची में तो ऐसे नारे नहीं लगे ना,
6: जो भी पुलिस वालों को धकियाते हुए लोग जो नहीं दिखे हुआ है, रांची में पुलिस पे पत्थर मारते हुए
2: पूरे देश
6: रांची में गालीबाजी वाली रीलबाजी नहीं दिखी, रांची में वहां का सीएम को भी गाली बकते हुए लोग नहीं दिखे।
2: रांची से आपको प्रमाण पत्र चाहिए, आप देश के लेवल पर काम किए।
1: रांची जा रहे ना अजय जी, रांची सोचिए ना, आज भी हम लोग ये जश्न मना रहे हैं अजय उपाध्याय जी, और आज भी रांची में वो बच्चे आंदोलन रत हैं, भूखे प्यासे हैं, भूखे प्यासे हैं
2: रांची में। नहीं नहीं,
1: ये एक सेकंड सर, कितना चलाते हैं आप रांची में,
2: रांची में जो हुआ वो गलत हुआ।
1: जो हुआ आज भी हुआ, जब हम लोग यहाँ एयर कंडीशन स्टूडियो में बैठे हुए हैं और सज धज कर सब आए हैं, सब आज कुर्ता उर्ता पहन के साड़ी पहन के बैठे हैं, तब भी देवेंद्रनाथ महतो जो है वो आज भी अनशन पर है, आईसीयू में है। कई छात्र हैं जो अपना खाना पीना छोड़कर इस बारिश में, रांची में पता है आपको घनघोर बारिश होती है वहाँ, एक सेकेंड रुक जाइए, वहां पर कोई नहीं जा रहा आपकी तरफ से अजय जी, अगर जा रहे हो या टिकट कटा लिया हो आप या आपके नेता ने तो जरूर बताइएगा।
2: हमारी तरफ से
1: नहीं, हम बात कर रहे हैं, नहीं होता है, आप मना क्यों नहीं पा रहे
2: अंजना जी,
1: क्यों नहीं मना पा रहे
2: अंजना जी? बहुत अच्छा प्रश्न है।
0: जब अंजना जी जब हम
2: दिल्ली के जंतर मंतर पर नहीं गए थे तब भी यही प्रश्न किया गया कि राहुल गांधी जी जंतर मंतर पर क्यों नहीं गए, जब चले जाते तो कहते कि देखिए जी ये तो कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस के द्वारा मोटिवेटेड है, ये राजनीतिक कार्यक्रम है। हम लोग इसीलिए चाहते हैं कि समस्याएं समाधान हो, परीक्षा की व्यवस्था सुधरे।
1: साहब सरकार है वहाँ,
2: जो कर रहा है जो गलत कर रहा है,
1: सरकार आप ही हैं,
2: सरकार हमारी है,
1: चार मंत्री हैं आपके।
2: सरकार से प्रश्न कर रहे हैं कि सरकार को जवाब देना पड़ेगा।
1: चार मंत्री आपके,
2: झारखंड के भी लोगों को न्याय मिलना चाहिए।
1: चार मंत्री हैं यहाँ पर इस्तीफा चाहिए था, वहाँ इस्तीफा नहीं चाहिए, यहाँ इस्तीफा चाहिए था, वहाँ इस्तीफा नहीं चाहिए, क्योंकि सरकार चलाना है, सत्ता चलानी है, कुर्सी चलानी है। लेकिन वापस आते हैं,
2: जंतर मंतर
1: जंतर मंतर वर्सेज रांची नहीं होना चाहिए। एक सेकंड
2: ठीक हुआ,
1: जंतर मंतर वर्सेज रांची नहीं होना चाहिए, ये वर्सेज नहीं है
2: एकदम, मैं भी कह रहा हूं लेकिन नहीं होना चाहिए।
1: लेकिन रांची में कई लोगों का जो डबल स्टैंडर्ड है वो भी एक्सपोज हुआ है,
2: वो तो,
1: लेकिन
2: वो तो देश में
1: जंतर मंतर में भी छात्र थे,
2: भी
1: वो भी देखा कि जब छात्र थे तब भी उसको, मतलब पहले सोचा गया कि अरे ऐसे ही है, आंदोलन खत्म हो जाएगा, जब स्थिति ऐसी आई 20 तारीख को उसके बाद से बातचीत होकर हल निकाला गया। तो दोनों बातें हैं जिसका
2: बातचीत से होती तो 20 तारीख से पहले हल निकल जाता।
1: आंदोलन हुआ
2: 20 तारीख को, पायलट गन चलाए गए,
1: अजय जी, आंदोलन आंदोलन का अंत का जो अनाउंसमेंट किया गया वो बातचीत के बाद ही किया गया, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद किया गया। सत्य प्रकाश जी जल्दी जल्दी से जल्दी
4: जी, आप एक चीज अच्छा कह रहे थे कि मानसिक विकृति का इलाज है नहीं, थोड़ा गिरेबा झांका करिए। लोकतंत्र में प्रधानमंत्री
2: लेते हैं तलाश, गिरेबा में नहीं झांका।
4: ये शेर तो आपको कह दूं मैं कि कांटों के दामन से बच के गुजर जाता हूं, मुझे तुम जैसे फूलों की सियासत की हकीकत मालूम है।
5: क्या बात, क्या बात, क्या बात।
4: अब दो चीज आप
2: फूलों की सियासत मतलब आप सुन तो
5: लीजिए, चरित्र में है भाई, नोआखाली में दंगा होता था, दंगा मुस्लिम मारे जाते थे, वहां चले जाते
4: थे। विपक्ष का नेता
2: यही लोग हैं,
4: पहुंचा जेएनयू, बोला मैं तुम्हारे कहने की बात का हमेशा समर्थन करूंगा। नारा क्या था,
2: जो
4: भारत तेरे टुकड़े होंगे, और उसके बाद जो भी था एक रिलीजियस नारा था।
5: ये भी तोड़ दीजिए, लेकिन
4: राहुल गांधी बैठे थे वहां,
2: बहुत सारे मीडिया पर्सन
4: इस देश में। देखिए मोदी जी का विरोध अभी बताते हैं, अर्बन नक्सलों ने कैसे कैसे
1: किया, सब नहीं करते थे। काहे आप तो अजय जी, आपसे
4: नहीं बोल रहा,
1: इस बात की मैं आपकी हमेशा प्रशंसा करती हूं
2: जी। हां मिश्रा जी, हमारे
4: इस देश में जब मोदी जी की सरकार बनी तो अर्बन नक्सल आगे कोई किस कैंपेन था सर, जो आरएसएस के दफ्तर तक पहुंचा। ठीक है वो कहे कि नहीं नहीं, जब आप सड़क पर यूरिनेशन कर सकते तो हम ये क्यों नहीं कर सकते, उसकी व्यवस्था नहीं है। अर्बन नक्सल ने उसको प्रमोट किया, वो बाद में क्या निकला सबको पता है। भारत के सामाजिक पृष्ठभूमि में और सार्वजनिक स्थिति में अर्बन नक्सलों ने राष्ट्र की मुख्य धारा के खिलाफ हमेशा वकालत करी है। अगर भारत की एकता और अखंडता की बात अगर मुख्य धारा करे, अर्बन नक्सल खड़ा हो जाएगा, नहीं नहीं अफजल गुरु की फांसी खराब है, अर्बन नक्सल खड़ा हो जाएगा कि नहीं यासिन मलिक को जेल से छोड़ दो, वो एक दो तीन अभी तिहाड़ जेल में पड़े हैं, भारत को टुकड़े करने वाले, चिकन ने काटने वाले, उनको छोड़ दो। अर्बन नक्सल का दिमाग पहले से फिरा हुआ है, कांग्रेस ने अपने पीठ पर पैरासाइट की तरह उनको पाला है, हमेशा पाला है, पोषित किया है। इसीलिए दिमागी दंगाई में पहले भी बोला, और अर्बन नक्सल की परछाई दोनों एक साथ चोर चोर मौसेरे भाई हैं। ये वाला ठीक रहेगा ना,
2: दस सेकंड से
1: चलिए
4: एक उदाहरण देना चाहता था।
1: भूल सुधार में तरह तरह के रिश्ते हम निकाल रहे हैं,
4: नक्सलवादियों के खिलाफ दिमागी नक्सलों को अपने पास पाते
1: हैं।
4: किसी एक व्यक्ति ने कहा कि नहीं नहीं अब सदन से देश नहीं चलेगा, सड़क पर तय होगा, चुनाव से नहीं होगा, अब विरोध से होगा। ये अर्बन नक्सल का उदाहरण नहीं था तो क्या था,
5: वो दिमागी दंगा।
4: वो व्यक्ति क्या कह रहा है,
5: वो दिमागी दंगा है।
4: दिमागी दंगा है, अर्बन नक्सल दोनों है,
5: अर्बन नक्सल दोनों है, बिल्कुल सही कहा आपने।
4: थर्ड पॉइंट क्या है कि जब आप हार जाएंगे, नकार दिए जाएंगे, तो राहुल जी कहेंगे हम स्टेट से ही लड़ेंगे,
2: कुछ
5: दंगाइयों के साथ ही
4: जिन लोगों ने नेपाल बांग्लादेश बनाने की बात कांग्रेस पार्टी में उनके नेताओं ने की, वो अर्बन नक्सल, दिमागी दंगाई और राष्ट्र विरोधी तीनों एक साथ।
3: मैं सत्य प्रकाश जी की बातों को कभी गंभीरता से नहीं लेता, क्योंकि मुझे मालूम नहीं, आज पता चला बीजेपी के साथ हैं, कल आरजेडी के साथ चले जाएंगे, भाषण बदल जाएगी।
4: मेरी बात को गंभीरता से मत लीजिए,
3: आपको बीच में नहीं बोला ना।
4: मैं आप बिल्कुल मत लीजिए, मैं इसलिए चाहता हूँ आप मेरी बात को गंभीरता से मत लीजिए, आपकी मानसिक बीमारी बढ़ जाएगी।
3: मैं फिर दोहरा देता हूँ, मैं सत्यप्रकाश जी की बातों को गंभीरता से नहीं लेता, क्योंकि एक मिनट,
1: आप चाहते हैं कि लड़ाई हो यहाँ पे,
3: लड़ाई नहीं भाई, मत लीजिए। अरे भाई सुन लीजिए ना मेरी बात, सुन तो लीजिए,
4: आप लीजिए गंभीरता से,
3: मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। अब जो आदमी समाजवादी अपने को बोलता हो, राम मनोहर लोहिया के खिलाफ चले जाते हैं, राम मनोहर
4: लोहिया
3: के
4: खिलाफ
3: सत्यप्रकाश जी, देखिए आप गलत,
4: मैं बिल्कुल सपने में भी नहीं जा सकता राम मनोहर लोहिया के खिलाफ। क्या राम मनोहर लोहिया ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात नहीं करी, क्या राम मनोहर लोहिया ने राष्ट्रवाद और समाजवाद के बीच पुल बनाने की बात नहीं करी?
3: एक मिनट,
4: क्या बात कर रहे हैं आप? बात करी उन्होंने, कहा रामचरितमानस में बहुत अच्छे चीज है, हीरे मोती है, उसको पकड़ लो।
3: मैं
4: सीधी बात करी उन्होंने,
3: सीधी
2: चुप रही है।
3: जो पार्टी राम
4: उन्होंने
3: फिर अब चुप हो गए ना आप, जो पार्टी
6: उन्होंने माना है कि भारत विभाजन का गुनहगार कौन है? आप ही के बगल में बैठा हुआ सब अरबन नक्सल कॉम्युनिस्ट पूरा का पूरा कॉम्युनिस्ट उन्होंने को
7: रंगे हाथों पकड़े गए हैं।
6: आप लोग अरबन नक्सल और भारत विभाजन का गुनहगार
3: ऐसे नहीं बोलूंगा।
6: डॉक्टर राम मनोहर लोहिया
3: ऐसे नहीं बोलूंगा।
1: बोलिए,
3: सीधी सी बात है, जो पार्टी और जो जो नेता अपने राम मनोहर लोहिया ने कहा था सड़कें सूनी हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी, आज उन्हीं की पार्टी के नेता अपने राम मनोहर लोहिया को अरबन नक्सल बोल रहे हैं।
6: बिल्कुल
3: नक्सल बोल रहे
6: हैं, बिल्कुल
3: नहीं। इसको ग्रामर ऑफ एनआरसी में ये हालत
1: बाबा रामदेव ने कह दिया है कि वो एक आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं, देश में चारों तरफ हंगामा है, उनका कहना है बच्चे कह रहे हैं हमारे यहाँ टीचर नहीं है, लाइट नहीं है, शौचालय नहीं है, नकल होती है, पेपर लीक, सरकारी नौकरियों के इंटरव्यू में 99% घोटाला हो रहा है, और भी ऐसे आंदोलन हो सकते हैं। जल्दी से सुना दीजिए उन्होंने क्या कहा है, फिर सुधांशु जी जवाब देंगे।
8: चारों तरफ देश में हंगामा है, छोटे छोटे स्कूल कॉलेजों से बच्चे निकल रहे हैं कि हमारे यहाँ टीचर नहीं है, हमारे यहाँ लाइट नहीं है, हमारे यहाँ पानी नहीं है, हमारे यहाँ शौचालय नहीं है, हमारे यहाँ टीचर है तो किताबें नहीं है, किताबें हैं तो टीचर नहीं है, और टीचर है तो पढ़ाई में नकल हो जाती है, कहीं पेपर लीक हो जाता है, और पेपर पास भी कर लिया, दसवीं बारहवीं का बोर्ड एग्जाम भी दे लिया, तो दसवीं बारहवीं के जो एग्जाम के मार्क्स हैं वो कहीं जुड़ते ही नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के आधार पर ही आगे यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन होता है, और उसके बाद में
9: बॉर्डर की ये परेड भारत के अमृतसर में एकमात्र सड़क मार्ग जहां सूर्यास्त से पहले होने वाला ये प्रतिष्ठित सैन्य समारोह से लगातार भारतीय सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ और पाकिस्तान के रेंजर्स द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। देशभक्ति की भावना पूरे चरम पर होती है, जोश उत्साह हम आपको सीधे अडारी वाघा बॉर्डर लिए चलते हैं। हमारे साथी हमारे संवाददाता राजीव जोंडियाल वहीं से मौजूद है। राजीव, जय हिंद। और भारतीय न सिर्फ सैनिकों बल्कि वहां मौजूद लोगों की देशभक्ति, उनकी ऊर्जा और उनका जोश और जुनून कैसे देख रहे हैं आप राजीव?
10: सईद, इस समय वो फेमस बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी चल रही है ठीक मेरे सामने, और हर निगाह इस समय सिर्फ और सिर्फ इन जवानों की ओर है, इनकी आंखों की ओर है, इनके अंदाज की ओर। आप देखिए हमारे जवानों का वो चिर परिचित अंदाज, उनके आंखों में वो गुस्सा, उनके चेहरे पर वो रौब, और यहाँ पर मौजूद हर एक शख्स के पूरे शरीर में ऐसे जैसे वीर रस की कविता का प्रभाव होता है, बिल्कुल उसी तरह रक्त का प्रभाव है, सारे चरम पर पहुंच जाता है, और उसी चिर परिचित अंदाज में उस बॉर्डर की तरफ, उस लाइन की तरफ हमारे जवान जाते हुए, और एक एक कदम यहाँ पर मौजूद हजारों हजारों की भीड़ उनके एक एक कदम की सराहना अपनी चीखों से करती है और उनको और हौसला बढ़ाती है। एक एक करके अब हमारे जवान उसी तरफ, उसी दिशा में जो एक परंपरा बनाई जा रही है उसे, उसका निर्वहन हो रहा है। और दूसरी तरफ से भी आज तो ऐसा लग रहा है 15 अगस्त के दिन दूसरी तरफ की भी सारी की सारी निगाहें इसी ओर है, सारी की सारी निगाहें इस ओर है जो कि भारत की शक्ति को देख रहे हैं, बढ़ते हुए भारत को देख रहे हैं, बदलते हुए भारत को देख रहे हैं। उस तरफ बदलाव ज्यादा है नहीं, वहां कुछ है नहीं, जो कुछ भी है वो इस तरफ है, और उस उधर की निगाह भी आज इधर ही है, और उधर की फ्लैश लाइट भी इधर ही चलती हुई दिख रही है। लेकिन हमारे जवान एक कदम चलते हैं और इधर, मतलब आप मेरे इर्द गिर्द वो महसूस कर पा रहे होंगे जो मैं ऊर्जा यहाँ पर महसूस कर पा रहा हूँ। मेरे बोलना बहुत कठिन है इस समय, इतनी ऊर्जा इस समय यहाँ पर है सही। और एक एक करके हमारे जवान एक बार फिर से ये रौबदार उनका अंदाज, उनकी आंखों से निकलती ये ज्वाला, ये 140 करोड़ से ज्यादा भारतीयों की ऊर्जा है जो उनके एक एक जवान के भीतर इस समय है। अब आप ये सीधी इस समय लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, यूं तो आप देख रहे हैं दोनों ही तरफ से जो जवान है वो ऐसा करते हैं, लेकिन भारतीय जवानों का इनका कदकाठ, इनका रहन सहन वो बिल्कुल डिफरेंट है। अब आप देखिए ये जब ये और आप दिखता है तो आप खामोश हो जाते हैं, आप खामोश हो जाते हैं, उनकी आंखें आपको खामोश कर देती हैं, मतलब 100 शब्द एक तरफ और उनकी एक दहाड़ एक तरफ, उनकी आंखों का एक इशारा एक तरफ, उनके मूंछों की फनावट एक तरफ, आप देखिए उनके पलके एक तरफ, उनका एक एक स्टाइल एक तरफ, आप एक लेख लिख दीजिए और उनका एक हाथों की मूवमेंट एक तरफ है, वो पूरे का पूरा लेख समान है, एक किताब समान है। हमारे इन्हीं जवानों को देखने के लिए ये हजारों की आबादी अब हर रोज आ रही है, मतलब 26 जनवरी और 15 अगस्त बड़ा खास होता है तो हर दिन हमारे जवानों को देखने के लिए पहुंचते रहते। देखिए फिर से हमारे जवान उस तरफ कदम ताल करते हुए आगे बढ़ते हुए, आज सभी भारतीय हर्षोल्लास में हैं, खुश हैं, आजादी का जश्न मना रहे हैं। यह आजादी बड़ी मेहनत से मिली है और उस आजादी का जश्न आज हम अलग तरीके से मनाएंगे और मनाते हैं, और इस समय अटारी वाघा बॉर्डर पर बिल्कुल उसी तरह से जश्न मनाया जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए क्या बात है, हमारे लिए भी एक पत्रकार के रूप में भी अपने इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हमारी निगाह भी एक तक उनकी तरफ ही रहती है कि बस उन्हीं को देखते रहे, और यहां पर मौजूद एक निगाह उनकी तरफ, देखिए कुछ तो बात है इस जगह में कि जब उनकी आंखें दूसरी तरफ सीमा के उस पार जाती हैं। सईद आप सुन रहे हैं भारत
11: जी जी जी, जी, जी राजी भारत माता की जय के जयकार उद्घोष। राजीव कमल भी हमारे साथ है, कमल जी संधू उन्हें भी जोड़ लेते हैं। कमल आप भी अपना अनुभव हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए।
12: देखिए दो दशक से तो मैं यहाँ पर आ रही हूँ लेकिन हर बार उत्साह और बढ़ जाता है, और आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये साल काफी अहम हो जाता है क्योंकि यहाँ पे कोई हैंडशेक नहीं, कोई एक्सचेंज ऑफ स्वीट्स नहीं। और आपको बता दें कि जंतर मंतर में जिस तरह से जेन जी और जेन अल्फा निकले थे, आपको यहाँ पे भी जो तादाद है यंगस्टर्स की वो ज्यादा नजर आएगी, और खास तौर पे ये पूरा नजारा देखने के लिए। आप ये देखिए जहाँ आपकी निगाहें जाएंगी आपको यहाँ पे लोगों का समूह नजर आएगा, 35,000 लोग हैं जो कि इस समय इस पूरे स्टेडियम में बैठे हैं, और बाहर भी इतनी ही भीड़ है। दूसरी ओर पाकिस्तान की तरफ दिखाएं, ये गेट बंद है, आपको बता दें सही, ये गेट खोले नहीं जा रहे हैं।
11: जी जी कमल,
12: पहलगाम हमले के बाद लिया गया था। और आपको बता दें दूसरी ओर देखें, जहां आपको मिस्ट नजर आएगी, बहुत गर्मी के बीच में यहां पर भारत में आके भारत माता की जय की और बच्चों से बात करते हैं, क्योंकि इन्होंने पार्टिसिपेट किया। आज आप लोग यहां पर हैं, क्या जोश, बहुत ज्यादा हाई जोश, तो जोश बहुत ज्यादा हाई है, और आप ये जो गड़गड़ाहट है वो सुन सकते हैं यहाँ।
11: बिल्कुल कमल, कमल राजीव और आप दोनों वहाँ अटारी बॉर्डर से मौजूद हैं। राजीव, आप हमारे सैनिकों का और इस समारोह में जो जवान हमारे लंबे चौड़े ऊंचे खत के, और किस तरह से उनका जोश देखते हैं, इनकी ऊंची ऊंची जाती लातें, पैरों की थपथपाहट, नृत्य मुद्राओं की एक श्रृंखला, ये विहंगम दृश्य होता है। और जो वहां मौजूद राजीव और कमल, हमारे भारतीयों के मन में एक जोश, देशभक्ति की भावना भरता है। बताइए राजीव।
10: बिल्कुल, जब इनको देखते हैं, हम इन जवानों को यहां पर देखते हैं, तो बस यही लगता है कि बस अब रुकना नहीं है। ये है हमारी सुरक्षा के लिए, ये है बॉर्डर पर हमारे साथ, ये है, हमें तो बस अब भारत के लिए लगातार काम करना है। मैं चाहता हूँ कि आप लगातार संजय तस्वीरें दिखाते रहें, बस भारत को झुकना नहीं है, भारत को थकना नहीं है, भारत को आगे बढ़ना है, क्योंकि भारत ने बहुत सहा है, बहुत देखा है, गुलामी देखी है, राजशाहियां देखी हैं, बहुत प्रताड़ना झेली है, लेकिन अब सिर्फ हमें आगे बढ़ना है, आगे बढ़ते चले जाना। अब AI की दुनिया में भी हमें कारनामे करने हैं, क्योंकि हमारे साथ हमारी सुरक्षा के लिए जवान है ना, और जिनको ये आंखें दिखा रहे हैं, जिनको ये रौब दिखा रहे हैं, उसकी तो कोशिश यही है, वो खुद तो आगे बढ़ नहीं पाया, उसका प्रयास रहता है कि ये लोग पीछे ना जाए, ये लोग पीछे रह जाएं, ये लोग आगे ना जाएं, लेकिन अब तो बराबरी का कोई सवाल ही नहीं है, अब तो डिफरेंस इतना बड़ा हो गया है, और उस डिफरेंस के पीछे की वजह यही जवान, जो इस समय अपने मूछों को इस समय ताऊ दे रहे हैं, ये जवान है उसके पीछे, ये जवान बॉर्डर पर हैं, सबसे पहले सामने से आती गोली ये अपने सीने पर ले लेते हैं, और कोई शिकायत नहीं, किसी से कोई शिकवा नहीं, कहीं कोई प्रदर्शन नहीं है।
11: हम आपको ये तस्वीरें बॉर्डर से दिखाते रहेंगे। राजीव ढौंडियाल और कमलजीत संधू हमारे दो संवाददाता वहां पर मौजूद हैं। कुछ ही क्षणों के लिए हम रुक रहे हैं, दोबारा आपके साथ होंगे। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिए, देखते रहिए आज तक।
13: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
14: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
15: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए, सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स, और अब लाइन लाइना डेट्स, इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
16: लायन लाइना प्रीमियम डेट्स।
17: जिस मिट्टी में फसल उगती है उसी में भारत की स्वतंत्रता की खुशबू है। इस स्वतंत्रता दिवस आइए उन किसानों का सम्मान करें जो हर दिन देश को मजबूत बनाते हैं। मेरे और क्रिस्टल परिवार की ओर से आपके और आपके परिवार को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।

0: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
1: मुल्तानी खू का कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी खू का कॉफ सिरप।
2: पापा
3: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
4: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
3: छक्का?
4: सब कैशलेस हो गया है।
5: टाटा AIG है तो भरोसा है।
6: इन एसोसिएशन विद
7: सेरा सैनिटरी वेयर, इट्स योर मोमेंट ऑफ सेरा। E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
8: तक डिजिटल फर्स्ट चैनल्स, 11 बिलियन व्यूज, 85 मिलियन यूनिक व्यूअर्स, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर ब्रांड, रीजनल और हाइपर लोकल रीच। हर शहर हर कस्बे तक एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल करें।
9: भिखारियों का मनोविज्ञान क्या है?
10: तैयारी तुम भी कर रहे हो क्या?
9: नहीं सर।
10: 12th किससे की हो?
9: 12th सर मेरा PCM से रहा।
10: कंपाउंड क्या होता
9: है? बेसिकली जो एक्युमुलेटेड चीजें रहती हैं उसके ऊपर।
10: यही है भिख मंगे वाली क्वालिटी। तुम पूछ रहे थे ना, यही है यही। एक मिनट,
9: ये जो आपका तरीका बहुत सर बहुत अच्छा नहीं है, इस तरीके से समझाने का स्टूडेंट्स को। इसे सर ह्यूमिलिएशन कहते हैं।
10: देख भाई, अपनी गारंटी पे छेड़ना।

0: पूरे आज तक परिवार की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 80वें स्वतंत्रता दिवस की आज तक की तरफ से ये शुभकामनाएं आप स्वीकार कीजिए। शाम के 7 बजने वाले हैं और आज तक के इस शो में अगले आधे घंटे दिन भर की सभी बड़ी खबरें होंगी, लेकिन खबरों की शुरुआत हम करें उससे पहले एक नजर लाइव्स पर। लाल किले से पीएम मोदी के दिमागी नक्सल के उल्लेख पर सुलगी राजनीति, कहा अफसर की तलाश में ऐसे लोग, कांग्रेस का पलटवार, पहले किसानों और युवाओं को कहा था नक्सल। वंदे मातरम पर नया युद्ध, बीजेपी का आरोप, कांग्रेस मुख्यालय में सोनिया और खड़गे ने किया राष्ट्रीय गीत का अपमान, कांग्रेस का जवाब ऐसी कोई कोशिश नहीं। अटारी बॉर्डर पर जोश जुनून जज्बे का रंग, बीएसएफ ने भरी जश्न आजादी की हुंकार, अलग अलग राज्यों में लहराया तिरंगा। उत्तर प्रदेश में एनालॉग डेयरी प्रोडक्ट्स पर योगी सरकार का बड़ा एक्शन, पनीर घी समेत सभी उत्पादों की निर्माण डिग्री पर रोक, निरीक्षण में मिली थी मिलावट। और आज से देखिए वंदे मातरम का सीजन 14, जिसमें भविष्य के महायोद्धाओं से कराएंगे मुलाकात और बताएंगे फ्यूचर वॉर के लिए कितना तैयार है भारत। रात 10 बजे श्वेता सिंह के साथ। और आइए हम आपको इस समय सीधे अटारी वाघा बॉर्डर लिए चलते हैं, वहां पर जोश और जुनून हमारे जवानों का है, जज्बा है, और हमारे साथी संवाददाता राजीव वहां पर मौजूद हैं। ओवर टू यू राजीव, बताइए।
1: थैंक यू सो मच साइड। इस समय वो जो फ्लैग लोअरिंग सेरेमनी है उसका उसकी शुरुआत हो गई। मैं चाहता हूँ संजय आप तस्वीरें भी दिखाएं, उसी और तस्वीरें दिखाएं। आज 35,000 से ज्यादा की इस समय आबादी आई हुई है, देश के अलग अलग कोनों से आबादी आई हुई है, लोग आए हैं इस सेरेमनी को देखने के लिए, और इस समय आप उसी फ्लैग लोअरिंग सेरेमनी का हिस्सा बन रहे हैं। आज तक पर दोनों ही देशों की तरफ से जो फ्लैग है उसके लोअरिंग की सेरेमनी शुरू हो गई है, कुछ ही सेकेंड्स में जो सेरेमनी है वो समाप्त भी होने वाली, लेकिन भारत के लिए बहुत बड़ा दिन है। और अब दर्शक दीर्घा में हो गया है, एक एक शख्स खड़े हो गया है और सबकी निगाह उसी तरफ है। दरवाजे भले ही बंद हैं लेकिन जो सेरेमनी है भी चल रही है। आज भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्ला खान, अनगिनत नाम याद आ रहे हैं, कुछ नाम इतिहास की किताबों में हैं, कुछ को किताबों में जगह भी नहीं मिली, लेकिन भारत की आजादी में योगदान देने वाला हर व्यक्ति, हर बलिदानी को आज याद किया जा रहा है, क्योंकि आज हम इस दिन को मना रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से, उनके बलिदान की वजह से। तो ये उनके बलिदान को याद करने का सबसे उपयुक्त समय है कि इस आजादी का हम जश्न मनाएं, लेकिन ये आजादी किस कीमत पर हमें मिली ये आप कभी ना भूलें, कभी ना भूलें कि जितनी मेहनत उन्होंने इस देश को आजाद कराने में लगाए, अब इस देश को बड़ा बनाने में आपको लगानी है। जिंदाबाद के नारों के बीच में फ्लैग लोअरिंग सेरेमनी चल रही है, आप इस समय सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, और हमारे कैमरे की निगाह इस वक्त वाघा बॉर्डर की तरफ है, अटारी हमारी तरफ और वाघा उस तरफ, और उधर की निगाह भी इस तरफ है, और फ्लैग लोअरिंग सेरेमनी शुरू हो गई है। कई वर्षों पहले से इसकी शुरुआत हुई, और हम जब परंपरा कोई शुरू करते हैं तो हम फिर उस परंपरा का पालन करते रहते हैं, उसको आगे बढ़ाते रहते हैं, और ये परंपरा यूं ही कड़वाहट भी देखी हमने, जख्म झेले, दाग भी खाए बहुत, मतलब हम बहुत पछताए हैं सामने वाले से बात करके भी, लेकिन हमने परंपरा छोड़ी नहीं है, ये परंपरा भी चल रही है। दरवाजे बंद हैं क्योंकि सामने वाला नापाक इरादे रखता है, लेकिन अभी उसकी नकारात्मकता

मेरा राइट, कोई राइड करने लगा वही करा दूंगा।

ब्लैक होल करके भी

0: जश्न आजादी अटारी बॉर्डर से आप देख रहे हैं, जोश देशभक्ति का जश्न। आज हमारा पूरा देश स्वतंत्रता का महोत्सव मना रहा है। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे देश को संबोधित किया, विकसित भारत के लक्ष्यों को दोहराया। सप्त सिंधु से सप्त धरा मंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। आज 15 अगस्त का कार्यक्रम एक और मायने में विशेष था। पहली बार लाल किले में वंदे मातरम की धुन सुनाई दी, लेकिन इस पर दिल्ली में राजनीति भी जोरदार देखने को मिली।
1: कांग्रेस दफ्तर में वंदे मातरम के दौरान सोनिया गांधी के इशारा करने की इन तस्वीरों पर बीजेपी सवाल पूछ रही है। बीजेपी इसे वंदे मातरम का अपमान बता रही है।
2: एक बहुत विचित्र, विडंबनापूर्ण और दुर्भाग्यपूर्ण दृश्य देखने को मिला, जब कांग्रेस कार्यालय में वंदे मातरम गीत गाया जा रहा था, उस समय कांग्रेस की सुप्रीम लीडर सोनिया गांधी जी, सुपर अध्यक्ष राहुल गांधी जी और सिटिंग अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी बहुत ही विचित्र और आपत्तिजनक तरीके से असम्मान व्यक्त करते हुए एक दूसरे से बातचीत करते हुए नजर आए, किसी को बुलाते हुए नजर आए, और कोई व्यक्ति आकर उनसे कुछ बता भी रहा था और एक दूसरे को इशारे कर रहे थे। यह राष्ट्रगीत वंदे मातरम के प्रति उनका अपमान है।
1: बीजेपी के सवालों पर कांग्रेस का जवाब आया, इशारों के पीछे की वजह बताई गई।
3: आज यहाँ इंदिरा भवन में पूरा वंदे मातरम गाया गया, इसमें कोई वाद विवाद का सवाल नहीं उठता, कोई रोकने का प्रयास नहीं था, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस अध्यक्ष खड़े हुए थे, सोनिया जी कह रही थी उनके लिए कुर्सी लाके रख दो, बस कोई नहीं था।
1: वंदे मातरम पर यह घमासान

0: उस वक्त शुरू हुआ है जब वंदे मातरम के पूर्ण संस्करण को हाल ही में राष्ट्रगान के समान कानूनी संरक्षण दिया गया है। 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्र के नाम संबोधन से पहले और उसके समापन पर भी वंदे मातरम बजाया गया था। वहीं आज पहली बार लाल किले में भी राष्ट्रगान से पहले वंदे मातरम गाया गया। संसद में वंदे मातरम बिल पारित के बाद अब 15 अगस्त पर इसके घमासान की पहली सियासी किश्त सामने आई है।
1: आजादी के बाद 15 अगस्त को लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं तो इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
0: आज तक ब्यूरो।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में दिमागी नक्सल और महिला आरक्षण जैसे मुद्दों का उल्लेख किया जिस पर अब विपक्ष प्रश्न खड़े कर रहा है।

0: लाल किले की प्राचीर से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्वजारोहण किया तो साथ में महिला सैन्य अधिकारी नजर आईं और पीएम ने भाषण में महिला आरक्षण पर विपक्ष से साथ आने की अपील की।
1: मैं देश के सभी राजनीतिक दलों से आज लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे की छाया में खड़े होकर के प्रार्थना करता आग्रह करता आइए उन महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनिए, उन महिलाओं के सम्मान में आगे आइए और जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, वे भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है।
0: पीएम की महिला आरक्षण को लेकर इस अपील पर कांग्रेस सरकार से सवाल पूछ रही है।
2: कानून बन चुका है, राहुल गांधी जी बाबा ही तो कहते हैं जब कानून बन चुका है लागू क्यों नहीं करो आप लोग। अब वो सपना देख रहे हैं, हम तो 800 संख्या बढ़ाएंगे पहले पार्लियामेंट के अंदर, असेंबली में बढ़ाएंगे, इसके मायने की परिसमन अपने हाथ में ले लेंगे।
3: महिला आरक्षण को लगातार दोयम दर्जा देने के लिए, पीछे धकेलने के लिए यदि कोई जिम्मेदार है तो स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2023 में जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया तो उसको दो शर्तों की बैसाखी पर खड़ा करने वाला कौन था? परिसीमन और जनगणना से जोड़ने वाला कौन था? वो प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार थी।
0: उधर पीएम मोदी ने नक्सल के सफाए का जिक्र किया तो वहीं दिमागी नक्सल से लड़ाई की बात कही।
1: हथियारी नक्सल तो गए लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा।
4: पहले भी जिनको जमीनी नक्सल कहा फिर उन्हीं किसानों की बात माननी पड़ी, नौजवानों को नक्सल कहा फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ा। तो पहले तो ये हाथ पांव मारते हैं नक्सल नक्सल नक्सल और उसके बाद उनकी बात मान लेते हैं।
5: पहले तो दिमागी नक्सल की परिभाषा बताओ, क्या दिमागी नक्सल की क्या परिभाषा होती, किसे आप दिमागी नक्सल करेंगे? ये तो एक आपने मुहावरा बना दिया, हर व्यक्ति दिमागी नक्सल हो सकता, तो ये कहना अपने आप में मुझे लगता है तमाम उन युवाओं का अपमान है।
0: इस बीच एक सियासत, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के लाल किले के कार्यक्रम में ना शामिल होने को लेकर भी हो रही है। लगातार दूसरे साल कांग्रेस के बड़े नेताओं ने इस अहम सरकारी कार्यक्रम से दूरी बनाए रखी। राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समारोह में नहीं पहुंचे। 2024 को 15 अगस्त के कार्यक्रम में राहुल गांधी की सीट को लेकर विवाद हुआ था, जहां राहुल गांधी पीछे की सीट पर बैठे थे। ऐसे में राहुल के नदारद होने को एक बार फिर सीट अरेंजमेंट के विवाद से जोड़ा जा रहा है। आज तक ब्यूरो।
6: लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेन जी हो या जेन अल्फा सबके लिए सौगात का ऐलान किया। वहीं एआई ट्रेनिंग को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान किया।

0: मेरे प्यारे देशवासियों, डिफेंस में आत्मनिर्भर होना अब भारत ने अनुभव कर लिया, दुनिया ने अनुभव कर लिया है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे। हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है।
1: लाल किले की प्राचीर से आज तिरंगा सिर्फ आसमान में नहीं लहरा रहा था, भारत के भविष्य की तस्वीर भी सामने रखी जा रही थी और उस तस्वीर के केंद्र में था भारत का युवा। प्रधानमंत्री ने साफ संदेश दिया, भारत की अगली उड़ान का इंजन युवा होगा।
0: जब मैं विकसित भारत की बात कर रहा हूँ, देश को तेज गति से आगे बढ़ाने की बात कर रहा हूँ, उसका सबसे बड़ा लाभार्थी कौन है? इन सारे प्रयासों का सबसे बड़ा साधक कौन है? अगर साधक है तो मेरे देश का युवा है, मेरे देश की युवा शक्ति है। विकसित भारत की यात्रा में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। इतना ही नहीं, विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी मेरे देश का युवा है और इसलिए हमें विकसित भारत के लक्ष्य को युवाओं के साथ जोड़ करके आगे बढ़ाना है। ऊंचे होने
1: जेन जी हो या जेन अल्फा, संदेश साफ था, भारत का भविष्य सिर्फ युवाओं के लिए नहीं, युवाओं के हाथों से बनेगा। आत्मनिर्भर भारत, युवा शक्ति, तकनीक, राष्ट्रीय सुरक्षा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की ताकत और भविष्य का खाका खींचा। 1 करोड़ युवाओं को AI ट्रेनिंग, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग, 5 से 15 साल के बच्चों के लिए स्पोर्ट्स टैलेंट हंट, स्टार्टअप और इनोवेशन को बढ़ावा, मैन्युफैक्चरिंग में रोजगार के नए अवसर, सेमीकंडक्टर से लेकर डिफेंस तक आत्मनिर्भर युवा शक्ति। हालांकि विपक्ष पूछता है AI की ट्रेनिंग के साथ रोजगार कितना बढ़ेगा, फ्री कोचिंग के साथ परीक्षा व्यवस्था कितनी पारदर्शी होगी, टैलेंट हंट के साथ खेलों में अवसर कितने बढ़ेंगे और क्या युवा की आवाज सिर्फ चुनाव के समय सुनी जाएगी?
2: प्रधानमंत्री जी का सवालों का जवाब न देना पार्लियामेंट में क्या ये लोकतंत्र का तरीका है? हमने क्या उठाया? लोकसभा में हो, राज्यसभा में हो, हमने जो सवाल उठाए वो विद्यार्थियों के सवाल थे। मैं पूछता हूं मेरे दोस्त, अगर तुम पार्लियामेंट में आते क्या तुम्हारा उम्र कम होने वाली थी? क्या तुम्हारी पार्टी घटने वाली थी?
1: इसी बेचैनी के बीच बाबा रामदेव ने भी सरकारी भर्तियों में भ्रष्टाचार और युवाओं के असंतोष का मुद्दा उठाया। उन्होंने चेतावनी दी कि व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो युवाओं का आंदोलन फिर तेज हो सकता है।
3: चारों तरफ देश में हंगामा है, छोटे छोटे स्कूल कॉलेजों से बच्चे निकल रहे हैं कि हमारे यहाँ टीचर नहीं है, हमारे यहाँ लाइट नहीं है, हमारे यहाँ पानी नहीं है, हमारे यहाँ शौचालय नहीं है, हमारे यहाँ टीचर है तो किताबें नहीं है, किताबें हैं तो टीचर नहीं है, और टीचर है तो पढ़ाई में नकल हो जाती है, कहीं पेपर लीक हो जाता है। ऐसे ही आंदोलन करना पड़ा तो देश कैसे चलेगा? इसलिए भाई सुधर जाओ, नहीं तो देश में आंदोलन और ज्यादा भी हो सकते हैं। आंदोलन के नाम पर मैं अराजकता अनार्की का समर्थक नहीं हूं, लेकिन भाई ये बात तो जरूर है देश में घपला भी बहुत है, ये घपले ठीक कर लो, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि बाबा रामदेव को दोबारा आंदोलन करना पड़े।
1: प्रधानमंत्री ने युवाओं से 2047 का निर्माता बनने का आह्वान किया है, क्योंकि आज का युवा कल का नागरिक नहीं, आज के भारत का सबसे बड़ा निर्माता है। आज तक ब्यूरो।
4: रांची में छात्र आंदोलन का आज 22वां दिन है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देवेंद्र महतो और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई। देवेंद्र महतो छात्रों की ओर से आज निकाली गई तिरंगा यात्रा में शामिल होना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें अस्पताल से बाहर नहीं निकलने दिया। महतो और उनके साथ मौजूद छात्रों के साथ धक्का मुक्की की तस्वीरें सामने आई हैं। महतो का आरोप है कि पुलिस ने बिना किसी लिखित आदेश के उन्हें अस्पताल में बंद करके रखा है। छात्रों की मांगों को लेकर युवा नेता देवेंद्र नाथ महतो पिछले कई दिनों से भूख हड़ताल पर।
5: इसके बावजूद जो है कि हमको रोका जा रहा है, झंडा फहराने से रोका जा रहा है, ये क्या यही आजादी है? क्या आज हमको इस आजादी को आजाद पूर्वक जीने का अधिकार नहीं है? वहाँ तैयारी किया हुआ है झंडा फहराने के लिए, हमको झंडा फहराने ले दिया जा रहा है।
4: रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से आज हजारों छात्रों ने तिरंगा यात्रा निकाली। जेपीएससी, जेएसएससी और सीजीएल परीक्षाओं में अनियमितताओं के विरोध में छात्र पिछले 22 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। करीब 500 मीटर लंबे तिरंगे के साथ छात्र रांची के प्रमुख चौक चौराहों से होकर गुजरे।
6: ये देख सकते हैं हर हाथ में आपको तिरंगा दिख रहा है, बड़ा तिरंगा, छोटा तिरंगा, पूरा माहौल जो है वो तिरंगामय है। हर जगह आपको ऊपर से लेकर नीचे तक हर जगह तिरंगा दिखेगा। और ये देखिए, एक ये 500 मीटर लंबा से भी ज्यादा जो है तिरंगा है, और इसको लेकर छात्र सड़कों पे उतर चुके हैं। इनका साफ तौर से कहना है कि सरकार उनकी मांगे नहीं मान रही है, इसके वजह से वो सड़कों पे है। ये लंबा तिरंगा देख सकते हैं बिल्कुल एकदम अंदर तक है, और 500 मीटर से ज्यादा लंबा तिरंगा है ये, इसको लेकर छात्र निकल चुके हैं सड़कों पे। रांची के सड़कों पे रूट जो है पहले से ही मार्क है, कहाँ जाना है, किधर से जाना है, और इसका जो है कल्मिनेशन अलवर टिक्का चौक में होगा। ये देख सकते हैं, अब आपको दिखाते हैं यहाँ झंडा कितना लंबा है। ये बहुत लंबा झंडा है, बहुत लंबा जो है राष्ट्रीय ध्वज है जिसको लेकर छात्र चल रहे हैं। ये कहा जा रहा है 500 मीटर से भी ज्यादा लंबा है। कितना लंबा होगा ये?
7: बहुत लंबा, अभी पीछे
8: पीछे कम आधा किलोमीटर होगा, आधा किलोमीटर से ज्यादा होगा।
6: 500 मीटर से ज्यादा लंबा ये तिरंगा है जिसको लेकर छात्र जो है ये दिखा रहे हैं कि राष्ट्र भावना उनमें भरी हुई है, लेकिन सड़कों पे इसलिए हैं कि उनकी बातें नहीं सुनी जा रही है, इनका साफ तौर से कहना है। और जहां तक देखेंगे माहौल आपको बिल्कुल तिरंगामय और राष्ट्रभक्ति से ओत प्रोत दिखाई देगा।
4: इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।
9: हम इस समय हिंदुस्तान के हीरोज के साथ यहाँ पर मौजूद हैं।
10: भारतीय तटरक्षक की
9: स्वतंत्रता का पर्व हम इनके साथ आज मनाने वाले हैं।
10: हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद रहेगा।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस। इन एसोसिएशन विद
12: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
13: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
14: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा,
13: छक्का
14: सब कैशलेस हो गया है।
13: हाँ
14: मेरा
13: बैट,
14: वो अभी तो ठीक हुआ।
15: टाटा AIG है तो भरोसा है।

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
0: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
2: मुल्तानी को का कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी को का कॉफ सिरप।
3: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए, सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी। वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
4: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
5: जिस मिट्टी में फसल उगती है उसी में भारत की स्वतंत्रता की खुशबू है। इस स्वतंत्रता दिवस आइए उन किसानों का सम्मान करें जो हर दिन देश को मजबूत बनाते हैं। मेरे और क्रिस्टल परिवार की ओर से आपके और आपके परिवार को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।

0: मैनकाइंड फार्मा, दिल से स्वदेशी, जान हिंदुस्तान।
1: इन एसोसिएशन विद हिंद, बड़े आराम से
2: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू?
3: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
1: विमल, बोलो जुबां केसरी।
4: भिखारियों का मनोविज्ञान क्या है?
5: तैयारी तुम भी कर रहे हो क्या?
4: नहीं सर।
5: ट्वेल्थ किससे की हो?
4: ट्वेल्थ सर मेरा PCM से रहा।
5: कंपाउंड क्या होता है?
4: बेसिकली जो एक्युमुलेटेड चीजें रहती हैं उसके ऊपर।
5: यही है भीख मंगे वाली क्वालिटी। तुम पूछ रहे थे ना, यही है, यही। एक मिनट,
4: ये जो आपका तरीका बहुत सर बहुत अच्छा नहीं है, इस तरीके से समझाने का स्टूडेंट्स को, इसे सर ह्यूमिलिएशन कहते हैं।
5: देख भाई, अपनी गारंटी पे छेड़ना

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: लाल किले से पीएम मोदी के दिमागी नक्सल के उल्लेख पर सुलगी राजनीति, कहा अफसर की तलाश में ऐसे लोग कांग्रेस का पलटवार, पहले किसानों और युवाओं को कहा था इन्होंने नक्सली। वंदे मातरम पर छिड़ा नया युद्ध, बीजेपी का आरोप, कांग्रेस मुख्यालय में सोनिया, खड़गे ने किया राष्ट्रगीत का अपमान, कांग्रेस का जवाब, ऐसी कोई कोशिश नहीं। अटारी बॉर्डर पर जोश जुनून जज्बे का रंग, बीएसएफ ने जश्न ए आजादी की हुंकार भरी, अलग अलग राज्यों में लहराया तिरंगा। यूपी में एनालॉग डेयरी प्रोडक्ट्स पर योगी सरकार का बड़ा एक्शन, पनीर घी समेत सभी उत्पादों के निर्माण बिक्री पर रोक, निरीक्षण में मिली थी मिलावट। क्या हुआ था जब स्टेज पर एक साथ आए सनी, प्रीति जिंटा और इंडियन कोस्ट गार्ड, रात 8 बजे देखिए स्वतंत्रता दिवस पर हमारी विशेष पेशकश, जय हो, अब से कुछ ही देर में श्वेता सिंह के साथ।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी, स्वागत है आपका विशेष विशेष में। आज बात जेंजी वोटर्स की, जिन पर अचानक से हर पार्टी का फोकस बढ़ गया। जंतर मंतर में प्रदर्शन के बाद उत्तर प्रदेश चुनाव जेंजी की पहली प्रयोगशाला बनने जा रहा है और इसीलिए युवाओं को अपने पाले में करने के लिए पार्टियां हर तरह के और तरह तरह के हथकंडे अपना रही।
3: जंतर मंतर आंदोलन की इन तस्वीरों ने देश की सियासत की रणनीति को और नए सिरे से गढ़ने पर हर पार्टी को मजबूर कर दिया है। धर्म और जाति के समीकरण पर अब जेंजी की इक्वेशन भारी नजर आ रही है। जेंजी पर जारी घमासान के बाद अब पहली बड़ी परीक्षा यूपी का विधानसभा चुनाव है, जहां सबकी नजरें इस बात पर है कि क्या रील और सोशल मीडिया पर दिख रही तस्वीर मतदान में तब्दील होगी। लेकिन इसे लेकर कोई पार्टी जोखिम नहीं लेना चाहती और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जेंजी की इस ताकत को समझ रहे हैं, जिसकी एक तस्वीर उनके आज 15 अगस्त के भाषण में भी देखने को मिली।
4: जेंजी और जेन अल्फा के लिए एआई, मशीन लर्निंग, सेमीकंडक्टर, स्टार्टअप इकोसिस्टम, डेटा सेंटर, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, साइबर, रोबोटिक, इलेक्ट्रिक व्हीकल, एग्रीटेक, फिनटेक, डीपटेक, मेडटेक जैसे क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश ने तेजी के साथ जो कार्य आगे बढ़ाया है, उसमें निवेश, नवाचार और एम्प्लॉयमेंट के नए द्वार खुल रहे हैं।
3: योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में पेपर लीक जैसे मुद्दों का जिक्र किया और छात्रों का भरोसा जीतने की कोशिश की।
4: स्वाधीनता दिवस के अवसर पर मैं प्रदेश के युवाओं से कहना चाहता हूं, आपकी प्रतिभा से ही यूपी की शक्ति निहित है। हमारी सरकार ने नकल माफिया, भर्ती माफिया के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की है। हम अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को डेवलपमेंट इंजन के रूप में बदल रहे हैं।
5: यूपी के अंदर बहुत शीघ्र युवा नीति लेकर के आ रहे हैं।
3: यूपी चुनाव के लिए फोकस पूरी तरह से युवा मतदाताओं पर केंद्रित हो चुका है, जिसकी तस्वीरें ग्राउंड से भी नजर आ रही हैं। यूपी सरकार के तमाम बड़े मंत्री ऐसे ही स्कूल कॉलेजों में पहुंचकर सीधा युवाओं से संवाद कर रहे हैं। बीजेपी की सरकार सीधे युवाओं के मन की बात टटोल रही है, इसीलिए मंत्री अपने अपने क्षेत्रों में जेंजी चौपाले लगा रहे हैं। इस अभियान के तहत विधानसभा बार 10-10 युवाओं की टीमें तैयार की जा रही है। टीम के सदस्य स्कूल कॉलेजों के युवाओं से बातचीत कर उनकी समस्याओं, अपेक्षाओं और सरकार को लेकर उनकी राय जानेंगे। टीम उन्हें सरकार की ओर से युवाओं के लिए शुरू की गई योजनाओं, रोजगार कार्यक्रम की जानकारी देगी। विधानसभा स्तर पर गठित होने वाले कार्यक्रमों और संवाद की जिम्मेदारी दी जाएगी। ये अभियान शुरू भी हो चुका है। कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे ने रायबरेली में बड़े स्तर पर युवाओं से संपर्क साधा, उनसे बातचीत की, उनकी समस्याएं सुनी।
6: आपके क्षेत्र में कार्यक्रम था तिरंगा यात्रा से लेकर युवा संवाद?
7: जी, आप देख रहे हैं जिस तरीके से आज युवा संवाद कार्यक्रम यहाँ रखा गया, कई हजार यूथ आज इस युवा संवाद में शामिल हुए और ये उनसे सीधे संवाद हुआ। उन्होंने अपनी भावनाएं भी बताई, अपनी दिक्कतों को भी बताई और उन्होंने सराहना भी किया भारत के प्रधानमंत्री जी के कार्यों के और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के। ये यूथ हमारा भविष्य है, ये हमारे कल है और इन यूथ के साथ संवाद होना जरूरी है। इनसे जब कम्युनिकेशन गैप रहता है तो बहुत सारी चीजें रह जाती हैं। इनसे लगातार हम सबका संवाद रहेगा और इनकी बहुत महत्वपूर्ण चीजें भी हम सबको जानकारी में आई है, जिसको हम लोग आगे धीरे धीरे करके उसे भी ठीक करने का भी काम करेंगे।
3: बीजेपी का टारगेट यही लगता है कि 2027 के चुनाव में युवाओं के तमाम वोट्स पर कब्जा हो, इसीलिए सीधे मुख्यमंत्री भी सक्रिय हैं, लगातार युवाओं की बात कर रहे हैं।
8: हमारा युवा प्रतिभाशाली है, हमारा युवा ऊर्जा का प्रतीक है, हमारा युवा देश की हर चुनौती का सामना करने की सामर्थ्य रखता है और उस सामर्थ्य के प्रतीक इस युवा ऊर्जा को आगे बढ़ने के लिए एक उचित प्लेटफॉर्म प्राप्त हो, वो अपने परंपरागत पाठ्यक्रम के साथ साथ देश और समाज की उन चुनौतियों का भी सामना करने के लिए अपने आप को तैयार कर सके।
3: यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ युवाओं से हवा हवाई बातें नहीं कर रहे, बल्कि उनके लिए पूरी युवा नीति तैयार की जा रही है, लंबी चौड़ी रणनीति है। सरकारी कोचिंग में आईएएस और पीएससी की तैयारी करने वालों की कलेक्टर और कप्तान की क्लास होगी। नीट की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए मुफ्त में डॉक्टरों की क्लास होगी। आईटी की तैयारी करने वालों को आईटीएन अफसर पढ़ाएंगे। बैंक पीओ की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए सरकारी बैंक के मैनेजर मार्गदर्शन करेंगे।
5: यूपी के अंदर बहुत शीघ्र युवा नीति लेकर के आ रहे हैं। हर जिले के अंदर, हर महाविद्यालय के अंदर, हर विश्वविद्यालय के अंदर युवा के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था। आपको प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करनी हो, आपको आपके महाविद्यालय विश्वविद्यालय में हम वर्चुअल भी और फिजिकल भी वहां क्लास की व्यवस्था रहेगी। और पढ़ाने वाले कौन होंगे? पढ़ाने वाला होगा वहां का डीएम भी एक घंटा देगा, एसपी एक घंटा देगा, क्योंकि उन्होंने यूपीएससी क्लियर किया।
3: बीजेपी के अलावा समाजवादी पार्टी की भी युवाओं को लेकर अपनी तैयारी है। समाजवादी पार्टी ने भी चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। सबसे पहला काम सर्वे से शुरू हो रहा है, वहाँ भी जीताऊ प्रत्याशी खोजे जा रहे हैं।
9: यूपी चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने बूथ स्तर से लेकर विधानसभा सीट तक अपनी तैयारी शुरू कर दी और इसी के चलते कुल मिलाकर पार्टी 3 सर्वे करा रही है। सूत्रों के मुताबिक 2 सर्वे एक प्राइवेट एजेंसीज के द्वारा किए जा रहे हैं तो तीसरा सर्वे संगठन के द्वारा किया जा रहा है। आकलन ये करना है हर बूथ पर, हर विधानसभा पर कौन उम्मीदवार है जो जिताऊ हो सकता है, कौन उम्मीदवार है जो जातीय समीकरणों को साध सकता है। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी को लगता है कि सर्वे के जरिए हर बूथ के, हर विधानसभा के एक फ्रेश जातीय आंकड़े सामने आ सकते हैं। यूं तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से या डेटा के जरिए जातीय आंकड़े मिल जाते हैं, लेकिन सपा को ऐसा लगता है कि अपने स्तर पर भी जातीय आंकड़े निकालने चाहिए, क्योंकि कई ऐसे विधानसभा सीट्स हैं जहां पर सपा को कुछ चौंकाने वाले जातीय आंकड़े मिले हैं जो पेपर्स पर कुछ और थे लेकिन जमीन पर सर्वे में कुछ और सामने आए हैं। और इसी के चलते 2 एजेंसीज और संगठनात्मक तौर पर समाजवादी पार्टी के यूथ विंग्स मिलकर ये सर्वे कर रहे हैं। सर्वे अलग है लेकिन एक तरीके से माहौल एक है कि विधानसभा में जिताऊ कैंडिडेट हो जिससे सही उम्मीदवार चुना जा सके और चुनाव जीता जा सके।
3: समाजवादी पार्टी तो इसी दावे पर है कि उनके पास तो युवाओं के सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव मौजूद हैं, जिनकी युवाओं में पहुंच भी है और पकड़ भी।
9: बीजेपी एक प्लानिंग के तहत अब जो है उनकी जो यूथ विंग है उनको जिम्मेदारी दे रही है कि स्कूल कॉलेजेस में जाएं। यूपी सरकार के तमाम मंत्री भी अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में ये काम करने वाले हैं, जैसे कि मनोज पांडे आज रायबरेली से कर रहे हैं, वो युवाओं का सम्मेलन कर रहे हैं, युवाओं से मिलेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे, तमाम अन्य मंत्री भी प्लान आउट कर रहे हैं। तो ये जेन जी कितना बड़ा वोटर एकदम से यूपी में हो गया है?
10: देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी अब कर रही है, समाजवादी पार्टी तो नौजवानों की पार्टी रही है और सबसे ज्यादा यंग मिनिस्टर्स और यंग लोगों को चुनाव लड़ने का मौका या यंग लोगों की बात अगर किसी ने सबसे ज्यादा की है तो वो समाजवादी पार्टी के संस्थापक आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, श्रद्धेय नेता जी ने की थी और अब उसी मशाल को आगे लेकर के आदरणीय अखिलेश यादव जी चल रहे हैं और लगातार जिन जेंजीज की बात आज सरकार जागी है इन आंदोलन के बाद, समाजवादी पार्टी ने सबसे कम उम्र के लोगों को चुनाव लड़ा करके सदन में भेजा। कर मुझे अपना मैं अगर बात करूं तो मैं जब 25 साल 4 दिन की थी तब मैंने नॉमिनेशन किया था, तो मैं भी एक जेंजी ही हूं। और साथ ही साथ अब मैं देखूं तो हमारी पार्टी में सबसे ज्यादा युवा विधायक हैं जो 25 साल के हैं, 25 साल के हमने सांसद बनाए।
3: लेकिन खबरें तो ये भी हैं कि जेन जी को मिल रहे इस समर्थन से तमाम राजनीतिक पार्टियों के बड़े बड़े और पुराने नेता बहुत परेशान हैं, उन्हें अपनी सीट खिसकने का डर सता रहा है।
9: खबर ये भी है कि जेन जी फोर्स को देखते हुए यूपी के तमाम वरिष्ठ और दिग्गज नेताओं की जमीन खिसकी हुई है। कई राजनीतिक दलों के वरिष्ठ विधायक ऐसे भी हैं जिन्हें लगता है कि कहीं उनका इस बार विधानसभा चुनाव में टिकट ही ना कट जाए, क्योंकि एक बात तो साफ है, सभी राजनीतिक दल इस बार जेन जी को उम्मीदवारी में उतारने वाले हैं, यानी कि इस बार जो उम्मीदवारों की एक लिस्ट आएगी, चाहे विपक्ष की हो चाहे सरकार की हो, उसमें जेन जी को तवज्जो मिलनी तय है। ऐसे में एक दिलचस्प बात की चर्चा यह भी है, जो विधायक पहले अपनी पत्नी या पति के नाम से जाने जाते थे, जिनको टिकट मिलता था, वो अब जेन जी के पिता के नाम से, यानी कि जेन जी विधायक के पिता के नाम से भी जाने जाएंगे।
3: समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
0: हमारी देश की राजनीतिक पार्टीज को अचानक से अब युवा वोटर्स की याद आने लगी है, लेकिन सवाल यह है कि युवाओं का वोट तो हर पार्टी को चाहिए, लेकिन युवाओं की भागीदारी कितनी है और क्या युवा वोटर सरकारों को गिराने और बनाने का दम भी रखते हैं? इसका पहला टेस्ट उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में होने जा रहा है।
11: जेन जी के इस फोर्स की राजनीतिक ताकत पूरे देश ने देखी और सरकारों ने महसूस की। दिल्ली से लेकर झारखंड तक युवाओं की ताकत का अनुमान इस देश के हुक्मरानों को हो चुका है, इसीलिए अब राजनीतिक पार्टियों के एजेंडे पर यही जेन जी। और जेन जी की ताकत का पहला इम्तिहान होने वाला है उत्तर प्रदेश में, जहां सबसे पहले चुनाव होंगे। वैसे तो राजनीतिक दलों के एजेंडे पर हमेशा से ही युवा रहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान की राजनीतिक पार्टियों में युवाओं की भूमिका एक वोटर से ज्यादा कुछ नहीं रहती। लेकिन अब ऐसा लगता है कि मौजूदा आंदोलन के बाद इन पार्टियों में जेन जी को बड़ी जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं, इसीलिए सारी पार्टियों का फोकस इस वक्त इसी युवा वोटर पर है।
9: उत्तर प्रदेश की सभी राजनीतिक पार्टियों को यह समझ में आ गया है कि आखिर जेन जी की ताकत क्या है। खासकर दिल्ली के जंतर मंतर में हुए प्रोटेस्ट के बाद ये बात साफ हो गई है कि जेन जी को खुश रखना जरूरी है। जिस पार्टी के नेता ये कहते थे कि कितना भी बड़ी बात हो जाए हम अपने मंत्री का इस्तीफा नहीं कराते हैं, उसी पार्टी के नेताओं को धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कराना पड़ा है। अगला चुनाव उत्तर प्रदेश का है, इसलिए सभी राजनीतिक दल जानते हैं कि जेन जी एक बेहद अहम वोट है और इसीलिए उसको महत्व देना भी जरूरी है। नतीजा जेन जी चौपाल, जेन जी तिरंगा यात्रा और जेन जी के बीच जाकर बातें करना, परेशानियां समझना।
11: उत्तर प्रदेश में हर पार्टी जेन जी पर जोर लगा रही है। बीजेपी ने मंत्रियों की जेन जी चौपाल लगाई है। समाजवादी पार्टी चुनावों के लिए युवाओं का सर्वे करवा रही है। बीएसपी ने ऐलान किया है कि वो युवाओं को प्रत्याशी बनाएंगे। कांग्रेस के राहुल गांधी तो लगातार छात्रों के मुद्दों को उठा ही रहे हैं और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि यूपी में जेन जी एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल फोर्स है। जेन जी का मतलब हुआ 1997 से 2012 के बीच पैदा हुई जनरेशन। इस हिसाब से 14 से 29 साल के लोग जेन जी हुए, लेकिन भारत में मतदान की उम्र 18 साल है, तो उत्तर प्रदेश में 18 से 29 साल के युवा वोटर्स की संख्या करीब 21.19% है, जो बनते हैं करीब 3,27,00,000। अब अगर इतनी बड़ी संख्या में जेंजी वोटर होंगे तो राजनीतिक दल तो जोर लगाएंगे ही। मतलब कि अगर जेंजी किसी एक पार्टी को तय कर ले तो उसका चुनाव जीतना तय है, और इसी फोर्स को उत्तर प्रदेश की पार्टियां अच्छे से समझ रही हैं। इसीलिए आज बीएसपी ने भी युवाओं के लिए बड़े बड़े ऐलान किए हैं। बीएसपी का कहना है कि आने वाले चुनावों में वो प्रत्याशियों के चयन में युवाओं को प्राथमिकता देगी। जालौन की माधोगढ़ सीट से बसपा ने आशीष पांडे को अपना पहला प्रत्याशी घोषित किया है, जो पार्टी के युवा चेहरों में शामिल है। बीएसपी की रणनीति, संगठन, सोशल मीडिया और चुनावी मैदान, तीनों स्तरों पर युवा नेतृत्व को आगे लाने की है। पार्टी को उम्मीद है कि जेंजी और युवा मतदाताओं के बीच सक्रियता बढ़ाकर वो 2027 के विधानसभा चुनाव में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत कर सकती है। मायावती ने अपने भतीजे और राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद को जेंजी की नब्ज टटोलने की जिम्मेदारी दी है। हालांकि आकाश खुद जेंजी नहीं है, 32 साल के हैं, युवा हैं। युवाओं की तासीर और उनके मुद्दों को कितना समझते हैं ये पता नहीं, लेकिन बीएसपी को सोशल मीडिया पर सक्रिय रखने की जिम्मेदारी भी आकाश आनंद की टीम संभाल रही है। हाथरस के सादाबाद में आकाश ने अपनी चुनावी तैयारियां भी दिखा दी और यहां से युवाओं को संदेश भी दिया।
12: हमारे समाज के बच्चे अगर पढ़ गए तो अपने अधिकारों के लिए लड़ना खड़े हो जाएंगे, लड़ेंगे अपने अधिकारों के लिए। तो जैसे आपने देखा था अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में, हमारी जनरेशन के बच्चे अपने अधिकारों के लिए लड़े, वैसे ही हमारे समाज के बच्चे प्रदेश के कोने कोने में चौराहे चौराहे पर इनसे सवाल करेंगे, आरक्षण के लिए, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए और लॉ एंड ऑर्डर के लिए, रोजगार के लिए, तब इनके लिए जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। साथियों, जो सरकार स्कूल बंद कर दे, जो सरकार आपके स्कूलों में पढ़ने वाले टीचरों की भर्ती ना करे, क्या वो सरकार लायक है आपके प्रदेश में सत्ता में रहने के लिए?
13: ये भी उठता है कि आखिर एकदम से उत्तर प्रदेश की राजनीतिक पार्टियों को जेंजी की याद क्यों आई? क्या अगर दिल्ली में या रांची में ये प्रदर्शन ना हुए होते तो राजनीतिक दल यूपी के जेंजीज को इतना महत्व दे रहे होते? क्या यही मंत्री जगह जगह जाकर चौपाले कर रहे होते, या फिर यूपी सरकार नई युवा नीति की बात भी कर रही होती है, ऐसा कोई ऑर्डर भी आने वाला होता? बड़ी बात तो ये है, यूपी में जेंजी एक बड़ा वोटर है जो चुनाव के नतीजों में बदलाव भी कर सकता है, लेकिन कभी भी विधानसभा चुनावों में उनके हक के मुताबिक उन्हें टिकट नहीं मिले। अब दिलचस्प होगा देखना इस यूपी चुनाव में क्या सियासी गणित बदलती है और जेंजी को उनका हक मिलता है।
11: आंकड़े तो यही बता रहे हैं कि राजनीतिक दलों को युवाओं के वोट तो चाहिए, लेकिन उन्हें हिस्सेदारी नहीं देनी है। कुल 543 लोकसभा सांसदों में से सिर्फ 6 सांसद ही जेंजी हैं। पूरे देश में कुल 4,131 विधायक हैं और पूरे देश भर में सिर्फ 20 जेंजी विधायक हैं। हालांकि ये भी एक फैक्ट है कि 2022 के बाद ही जेंजी चुनाव लड़ने की उम्र में आए, लेकिन 2022 से भी इस देश में बहुत से चुनाव हुए हैं। सबसे ज्यादा जेंजी विधायक तमिलनाडु में है 4, इनमें से 3 टीवीके के हैं और 1 एडीएमके के। पश्चिम बंगाल में 3 जेंजी विधायक हैं, तीनों बीजेपी के हैं। इसके अलावा बिहार, मेघालय और तेलंगाना में 2-2 जेंजी विधायक हैं। इन सभी राज्यों में 2023 से 2026 के बीच चुनाव हुआ। ये आंकड़े बता रहे हैं कि राजनीतिक दलों ने युवाओं को वोटर तो समझा, लेकिन उन्हें भागीदारी नहीं दी। हालांकि यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि भारत में सांसद या विधायक बनने के लिए आपको 25 साल का होना जरूरी है। इस हिसाब से जेंजी सिर्फ 4 साल पहले ही चुनाव लड़ने के लायक बने हैं, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि आने वाले चुनावों में तमाम पार्टियां अपने टिकटों में जेंजी उम्मीदवारों की संख्या बढ़ाकर रखेंगी। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।
0: विशेष में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
0: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जाओ।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: हम इस समय हिंदुस्तान के हीरोज के साथ यहाँ पर मौजूद हैं।
2: भारतीय तटरक्षक की
1: स्वतंत्रता का पर्व हम इनके साथ आज मनाने वाले हैं।
2: हिंदुस्तान जिंदाबाद।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जब मैं विकसित भारत की बात कर रहा हूं, देश को तेज गति से आगे बढ़ाने की बात कर रहा हूं, उसका सबसे बड़ा लाभार्थी कौन है? इन सारे प्रयासों का सबसे बड़ा साधक कौन है? अगर साधक है तो मेरे देश का युवा है, मेरे देश की युवा शक्ति है। विकसित भारत की यात्रा में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। इतना ही नहीं, विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी मेरे देश का युवा है, और इसलिए हमें विकसित भारत के लक्ष्य को युवाओं के साथ जोड़ करके आगे बढ़ाना है। युवाओं हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ हमें आगे बढ़ना है। साथियों, पिछले 10-12 साल में उस दिशा में बहुत कुछ हुआ है। स्टार्टअप इंडिया अभियान, आज पूरे देश में 2.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप बन गए। देश के नौजवान खुद तो काम कर रहे हैं, अनेकों को रोजगार दे रहे हैं। 1 लाख करोड़ रुपया इनोवेशन फंड भारत सरकार ने घोषित किया है। मैं देश को नौजवानों को कहना चाहता हूं, आप अपने सपने को लेकर के आइए, संसाधनों की कमी नहीं रहने देंगे। 1 लाख करोड़ रुपया आपके दिल दिमाग को सामर्थ्य देने का एक व्यवस्था हमने कर दी है। रिसर्च के नए अवसर मिले, डिजिटल इंडिया के नए सस्ते डेटा युवाओं को सशक्त किया। दुनिया में सस्ता डेटा कहीं है तो भारत की धरती पर है, और देश के नौजवानों ने नौजवानों को नवी ताकत दी है। स्किल इंडिया हमने नेशनल प्रोग्राम बनाया है, स्पेस सेक्टर को हमने ओपन कर दिया, नेशनल ड्रोन पॉलिसी हमने बनाई है, खेलो इंडिया पॉलिसी बनाई है, 35 वर्षों तक एजुकेशन पॉलिसी नहीं थी, नई एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आए हैं, और इसका फायदा मिडिल क्लास के परिवारों को हुआ है। साथियों, 2004 से 14 आंकड़े मुझे देना चाहिए आपको, 2004 से 14 हमारे देश में 350 से भी कम यूनिवर्सिटी थी, और आज 10-12 साल के भीतर भीतर करीब 650 नई यूनिवर्सिटी जुड़ चुकी हैं, करीब 1000 का आंकड़ा हम पहुंच रहे हैं। 2014 के पहले मेडिकल की सिर्फ 400 सीटें हुआ करती थी, आज करीब करीब 850 सीटें मेडिकल की हो रही है। इतना ही नहीं, अब विदेशी यूनिवर्सिटी भी भारत की धरती पर आ रही है। भारत के अंदर विदेशी यूनिवर्सिटी की डिग्री मेरे नौजवान को मिले, इसका प्रबंध भी हो चुका है। हमारे देश के युवा मन बचपन से ही टेक्नोलॉजी की तरफ आकर्षित हो, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं, और इसलिए हमने करीब 10,000 से अधिक अटल टिंकर की लैब छोटे छोटे बच्चों के हवाले कर दी है, ताकि उनका इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के अंदर उनका मन बने। 12 वर्ष युवा, हमने अनेक रास्ते खोले, हम स्टार्टअप ओपन कर दिया। आपने देखा होगा भारत के प्राइवेट स्टार्टअप 28 साल की एवरेज उम्र के बच्चों ने, नौजवानों ने दुनिया में पहले ही ट्रायल में अपना सैटेलाइट लॉन्च कर दिया और रॉकेट लॉन्च कर दिया उन्होंने, बहुत बड़ा काम कर दिया। साथियों, आज करीब 2.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप है,

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. In association with
1: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
2: आज तक भर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है. अब से कुछ ही क्षणों में जय हो लेकर हाजिर होंगी हमारी साथी श्वेता. आप देखते रहिए आज तक.
0: आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल पावर्ड बाय वेक्टर्स. भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाले वाटर टैंक्स, टंकी मतलब वेक्टर्स.
1: प्रेजेंटेड बाय
0: पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच. In association with
1: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.

0: लाल किले से पीएम मोदी के दिमागी नक्सल के उल्लेख पर सुलगी राजनीति, कहा अफसर की तलाश में ऐसे लोग कांग्रेस का पलटवार, पहले किसानों और युवाओं को भी इन्होंने कहा था नक्सल। वंदे मातरम पर छिड़ी नई जंग, बीजेपी का आरोप, कांग्रेस मुख्यालय में सोनिया खरगे ने किया राष्ट्रगीत का अपमान, कांग्रेस का जवाब ऐसी कोई कोशिश नहीं। अटारी बॉर्डर पर जोश जुनून जज्बे का रंग, बीएसएफ ने भरी आजादी की हुंकार, अलग अलग राज्यों में लहराया तिरंगा। यूपी में एनालॉग डेयरी प्रोडक्ट्स पर योगी सरकार का बड़ा एक्शन, पनीर घी समेत सभी उत्पादों के निर्माण बिक्री पर रोक, निरीक्षण में मिली थी मिलावट। और आज से देखिए वंदे मातरम का सीजन 14, जिसमें भविष्य के महायोद्धाओं से कराएंगे मुलाकात और बताएंगे फ्यूचर वॉर के लिए कितना तैयार है भारत। आज रात 10 बजे श्वेता सिंह के साथ।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हम आज यहाँ पर एक उत्सव भी मना रहे हैं.
1: 15th August should be the foremost. बाकी सब फेस्टिवल बात.
0: Don't ask what your country can do for you, but what you can do for your country.
2: Hindustan zindabad! Ha! Hey! Aur zindabad! Rahega!
3: दो टीमें बन चुकी है, एक टीम आपकी है, एक टीम आपकी है.
1: सर अगर आपकी फॉर्मेशन हो तो आपके 2.5 किलो के हाथ का दमकम इस सभा के सामने आप थोड़ा आजमाना चाहेंगे.
4: क्यों मेरे साथ पंगा लेना चाहते हैं सब लोग?
0: हिंदी जाओ कल होना हो
5: तुझे सलाम.
6: Everyone, you're one point.

भारत की जय हो, विजय हो, जीत हो, फतेह हो। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। आजादी के इस पर्व की, स्वतंत्रता दिवस की अनेकों शुभकामनाएं आपको। हम इस समय हिंदुस्तान के हीरोज के साथ यहां पर मौजूद हैं और स्वतंत्रता का पर्व हम इनके साथ आज मनाने वाले हैं। कोस्ट गार्ड के 50 साल पूरे हो रहे हैं, हम उनसे भी उनकी कुछ कहानियां सुनेंगे और साथ में देश की कहानियां जो सबको सुनाते हैं वो हमारे बीच आ रहे हैं। तालियों के साथ स्वागत कीजिए सनी देओल और प्रीति जिंटा का।

0: वो हीरोज जो देश की रक्षा करते हैं और एक तरफ हमारे वो हीरोज जो देश की कहानियां सुनाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका।
1: थैंक यू।
0: क्योंकि हमारे तटरक्षक हमारे सामने हैं, 50 साल उनके पूरे हो रहे हैं 2027 में। हमने इसीलिए 1977 से 2027 मुश्किल सरहद पर, जहां पर मतलब अभी दिल्ली की उमस में हम परेशान हैं, ये सक्रीक जैसे बॉर्डर्स की उमस को झेलते हैं, जिसको दुनिया का सबसे ह्यूमिड इलाका माना जाता है, वहां पर रह पाना मुश्किल है अपने आप में। तो मुझे लगता है अपनी कहानियां भी सुनाएंगे सारे हमारे जो जांबाज यहां पर हैं, आपकी कहानियां भी सुनेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं शुरुआत आप तीनों से इस बात से करना चाहती हूं कि जब सामने उनको देख रहे हैं, हमारी फोर्सेस सामने होती हैं, आजादी का मतलब एक एहसास, एक फीलिंग, एक लाइफस्टाइल क्या हो जाता है? लेडीज फर्स्ट, प्रीति।
2: फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड इवनिंग एवरीवन। आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू बी हियर। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। जी, आई थिंक जीने का तरीका है, मैं तो एक खुद फौजी परिवार से हूँ, बहुत जब छोटे थे हमने सीखा, डोंट आस्क व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, बट व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री। सो इन बिगर वेज एंड स्मॉलर वेज, इन अ सिंपल लाइन, दैट्स व्हाट आई फील।
0: सनी जी,
1: आजादी हमारे बुजुर्गों ने, द फ्रीडम फाइटर्स ने हमें दिलाई है, और उसके बाद हमें अपने आप से पूछना चाहिए हम उस आज़ादी के साथ उसकी कितनी कदर करते हैं और किस तरह से लेके जा रहे हैं। और मेरा तो यही मानना है, आज़ादी हर चीज़ की होती है। इस वक्त हमें किसी से लड़ना नहीं है, अपने आप से अपने आप को एक अच्छा आदमी बनाना है। और आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ जातवाद को हटा देना चाहिए, उसकी आज़ादी होनी चाहिए। आज़ादी टू द वुमेन, इट शुड बी देयर। एंड एक इंसानियत की तरह से, एक इंसानियत को मजहब बना के रहना चाहिए, तो फिर हर चीज़ से आज़ादी मिल जाती है, फनाटिज्म चला जाता है। इन सब से हमको भी आज़ादी लेनी चाहिए, तभी जाके हमारा भारत, हमारा हिंदुस्तान फिर से वही होगा जो होना चाहिए।
0: राजकुमार सर,
3: आज़ादी फिजिकली तो मिल गई 1947 में, उसे बरकरार रखने के लिए हमारे बहादुर सारी सेना सब तैनात हैं। बट एट द सेम टाइम मैं समझता हूँ, सोच विचार उसकी भी आज़ादी होनी चाहिए, और खुल के जो ख्याल आए वो कहना चाहिए। आंखें मूंद के किसी के पीछे चलना भी एक तरह की गुलामी है, वो गुलामी से भी आज़ादी लेनी है। एवरी इंडिविजुअल शुड थिंक फॉर हिज कंट्री एंड डू अकॉर्डिंगली, तभी आज़ादी बरकरार रहेगी।
0: गुलाम हो तो केवल अपने देश के, अपने देश के प्रति, अपने समर्पण के, और किसी चीज के नहीं। मुझे लगता है बहुत सुंदर ख्याल, बहुत सुंदर बात आपने कही है। 1947 का जिक्र आपने किया, फिल्म के नाम में भी वो शामिल है, और मुझे सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जिस तरह की ये टीम रही है, पहले आप लोग जो एक साथ आकर जो फिल्में दे चुके हैं, प्रीति और आप भी साथ में आए हैं कई बार, राजकुमार जी के साथ आपकी फिल्में, तो मुझे लगता है कि आज की जो सबसे हिट फिल्म है वो घायल और घातक के नाम को इस्तेमाल करके सबसे सुपरहिट डायलॉग उसका वही आया है, तो क्या एक बार फिर हम मैजिक देखने वाले हैं?
1: देखिए, राज और हम दोनों ने हमेशा यही कोशिश की है कि हमेशा सब्जेक्ट नया हो, और हम अपने आप को रिपीट नहीं करना चाहते थे। घायल थी वो उस समय की एक यूथ के ऊपर थी फिल्म। उसके बाद फिर हम लोगों ने दामनी की, जहाँ मेरा छोटा सा रोल था लेकिन बहुत ही अहम रोल रहा, जहाँ एक लॉयर जिसने ही इज़ गिवन अप ऑन एवरीथिंग एंड फिर से एक और एक वुमेन के लिए, एक औरत के लिए लड़ता है और कैसे जीतता है। उसी तरह से हमारी जो घातक थी वो एक छोटी सी बनारस से कहानी थी, फैमिली है जहाँ, वहाँ से वो आते हैं, शहर आते हैं फादर के इलाज के लिए, और कैसे सब चीज़ें बदल जाती हैं। ऑल ऑफ फिल्म्स हैव बीन ऑन ह्यूमैनिटी, ऑन द फैमिली वैल्यूज़, और जो हमारी ये फिल्म है, ये जो एक प्ले है, जिसने लाहौर नहीं देखा वो जमया नहीं, वहाँ से हम लोगों ने लिया है। और राज ने बहुत अच्छी तरह से इसे स्क्रीन प्ले के रूप में लाए हैं। एंड मैंने ये कहानी इससे सुनी थी, राज ने मुझे सुनाई थी 2010 को, और हमें बहुत वक्त

0: उसे यहाँ तक लाने के लिए। खैर अब ले आए हैं, जैसे हमने वो फिल्में बनाई हैं, ये फिल्म भी एक इस तरह की फिल्म है जिसे देखकर आप हर आदमी इंसान को देखकर बोलेगा यस ह्यूमैनिटी शुड बी द रिलीजन एंड माँ से बढ़कर कुछ नहीं होता।
1: आप दोनों ने इनफैक्ट, क्योंकि आपने भी बहुत सारी ऐसे फिल्में की हैं जिसमें ओवर देशभक्ति हो ना हो, लेकिन देश का एक नागरिक कैसा होना चाहिए उसका एहसास हम लोगों को मिल जाता है। क्या इस तरह की फिल्में आपको एज ए ह्यूमन भी बदलती हैं?
2: एब्सोल्युटली, क्योंकि जब आप फिल्में करते हो, आप रिसर्च करते हो, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू आर नॉट अवेयर अबाउट, बट व्हेन यू वर्क ऑन अ सर्टेन टॉपिक और यू डू रिसर्च, यू फाइंड आउट अबाउट इट, आप उन चीज़ों से प्रभावित होते हैं, क्योंकि आपका किरदार कभी वो ऑनेस्टी नहीं दिखा सकता अनलेस यू फील इट। एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स यू जस्ट टॉक अबाउट थिंग्स, बट व्हेन यू पुट योरसेल्फ इन द मिडल ऑफ दोज थिंग्स और आप देखते हो, फील करते हो, समझते हो, तो डेफिनेटली।
1: सर, क्यों लगा आपको कि आज की जेनरेशन को 1947 की वो कहानी फिर से सुनने की जरूरत है या फिर एक नए रूप में सुनने की जरूरत है?
3: किसी भी जनरेशन, आज के जनरेशन क्यों, किसी भी जनरेशन को ये कहानी जानना बहुत जरूरी है कि किसी महापुरुष ने कहा है, दोज हु फॉरगेट हिस्ट्री और डूम टू रिपीट इट अगेन एंड अगेन, इतिहास को याद रखना बहुत जरूरी है। When you are building a future, never to forget the past. पास्ट से सीखना बहुत ज़रूरी है, और हमने बहुत बड़ी गलतियाँ की है आज़ादी के पार्टीशन के वक्त, दोबारा वो घटनाएं ना हो। जैसे हमारे रिस्पेक्टेड प्रधानमंत्री ने भी 14 अगस्त को ये उसी मेमोरी के लिए डिवोट किया, उन्होंने पार्टीशन डे, उन्होंने कहा कि जो तकलीफें, जो कत्लेआम, जो लोग लिटो एपिटे, जो भी हुए उसको याद करते हुए 14 अगस्त दिन को हमेशा याद किया जाए। इसीलिए हम ये फिल्म भी 14 अगस्त को रिलीज कर रहे हैं ताकि इस घटना को भूले नहीं, याद रखें इस चीज को।
2: या आई वांट टू से, इतना बड़ा इवेंट था ये पार्टीशन, एक्चुअली इसके बारे में बहुत कम फिल्में बनी हैं, क्योंकि आप एक ही लेंस से उसे नहीं देख सकते, अलग अलग नजरिए से देखना जरूरी है टू अंडरस्टैंड द पॉइंट ऑफ व्यू, यू नो। एंड तब इंफॉर्मेशन भी बहुत कम थी, बहुत लोग किताबें होती थी जिन्होंने लिखी, आर्टिकल्स भी बहुत कम थे, इतनी देयर वाज वेरी लिटिल मीडिया, बहुत कम इंफॉर्मेशन। अब जाके भी मुझे लगता है फिल्में भी बहुत कम ही बनी हैं, मैंने एक या दो फिल्म देखी होगी,
1: कुछ सीरियल्स में जिक्र होता था उसका कहीं, जो मतलब हम बचपन में जब दूरदर्शन पर सीरियल आते थे उसमें हम बुनियाद में उसका जिक्र देखे, लेकिन इसीलिए मुझे लगा कि 1947 बंटवारा आखिर मतलब उसका कौन सा पहलू है, और मुझे लगता है सर आपने जो कहा कि जो गलतियां हैं उनसे सीखना ज़रूरी है, वो इसको देखने का एक अच्छा आईना है। पर हम आज यहाँ पर एक उत्सव भी मना रहे हैं, आज़ादी एक उत्सव है, मुझे लगता है कि होली, दिवाली, ईद से बढ़कर हमारा जो त्यौहार है, हमारा जो पर्व है, वो हमारा गणतंत्र दिवस, हमारी आज़ादी का ये त्यौहार वो हो जाता है, क्योंकि सब एक साथ मनाते हैं इसको। और जैसे ये फिल्म है ना बंटवारा, तो हम दो टीमों में बंटवारा कर रहे हैं यहाँ पर, और वैसे तो प्रीति को अच्छा खासा एक्सपीरियंस है टीम को कैसे बूस्ट करना है। आपको बहुत सालों तक फिल्मी पर्दे पर नहीं देखा, लेकिन लोगों ने मिस इसलिए नहीं किया क्योंकि आपको आईपीएल में देख ले रहे थे हम, लेकिन वो 8 साल बाद वापस आकर, 8 साल हो गए मुझे लगता है
2: जी
1: सेट्स पे वापस आकर।
2: हाँ जी, वेल थैंक्स टू हिम, इनकी बड़ी फैन हूँ मैं, मेरी बहुत इच्छा थी इनके साथ फिल्म करने की, तो जब मुझे आमिर ने फोन किया और बोला कि एक फिल्म,
1: आमिर खान प्रोडक्शन है
2: जी, दिस इज एन आमिर खान
1: का कोलैब है,
2: एग्जैक्टली, and when I found out that he was making this film and when I heard the subject, I really felt ki mujhe ye karni chahiye, aur mujhe period film bhi karni thi, and more than anything else mujhe lagta hai this is a film about hope and standing up for what you believe. To bahut logo ne sangharsh kiya hai and they've paid various different prices on the border, inside, families. So in some ways, it's honoring all of them.
3: आज इस मंच पे मैं एक बात दर्ज करना चाहूँगा, मेरी दिली ख्वाहिश है, तमन्ना है, होप है कि 15 अगस्त 1947 में जो आज़ादी मिली, 15 अगस्त इस दिन को होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस से भी ज़्यादा उत्साह के साथ हर हिंदुस्तानी को मनानी चाहिए। उस दिन भारत माँ आज़ाद हुई है, हम सब उसके बच्चे हैं। एक दूसरे घरों में जाके मिठाई देने का जो रिवाज है, चाहे हिंदू मुसलमान के घर जाए, मुसलमान हिंदू घर आए, मिलकर इस डे को सबसे ज़्यादा बड़ा सेलिब्रेशन 15 अगस्त को ही मिलना चाहिए।
1: नहीं, आपकी मेमोरीज क्या हैं 15 अगस्त को लेकर?
0: मेरी मेमोरीज क्या हैं
1: बचपन में, जैसे स्कूल में सबका होता है ना, किसी को अपनी लड्डू का डब्बा याद आता है स्कूल में, सुबह सुबह उठकर, आप छोटे होते हैं तो आपको लगता है अरे सुबह उठना पड़ रहा है, लेकिन धीरे धीरे
0: आप... मैं जब छोटा था, शुरू से ही मेरे अंदर अपने देश के लिए कुछ अजीब ऐसा प्यार था। आई टू कलेक्ट फोटोग्राफ्स ऑफ ऑल माई प्राइम मिनिस्टर्स एंड ऑल द पीपल हु द फ्रीडम फाइटर्स, पता नहीं अंदर एक खून सा दौड़ता था। दैट यूज टू बी द वे आई यूज टू बी जब मैं छोटा था, एंड दैट्स हाउ आई ग्रू अप। और देखते देखते हमारा मुल्क कितना बदल गया है, उसकी सादगी, उसकी प्योरिटी, उसकी जो एक ऑनेस्टी थी वो भी कहाँ से कहाँ चली गई है मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन आई एम वेरी प्राउड दैट आर सोल्जर्स, आर एयरफोर्स, वो वैसे के वैसे ही हैं। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कहाँ क्या हो रहा हो, उन्हें पता है कि उन्हें इस माँ की रक्षा करनी है। एंड सल्यूट टू यू ऑल, लव यू ऑल।
1: अच्छा, जितनी भी एक्टिविटीज आज हमने यहाँ पर प्लान की है, वो सजेशन हमें हमारे कोस्ट गार्ड से ही मिली है। तो पहला तो है एक टग ऑफ वॉर साइड में आप एक रोप देख रहे होंगे बड़ा सा, अब उससे टग ऑफ वॉर करना है, अब आपका चॉइस है, आप उसमें साथ में हाथ लगाना चाहते हैं या फिर आप सिर्फ अपनी टीम का हौसला बढ़ाना चाहते हैं, प्लीज उसको लेकर आए। दो टीमें बन चुकी है, एक टीम आपकी है, एक टीम आपकी
3: है। इरादा तो नहीं है, एतराज भी नहीं है।
1: कितने कितने लोग हैं टीम में? चार चार, चार से तो ज्यादा है। प्लीज
3: बिल्कुल
2: भी आ जाते हैं भाई,
3: आ जाते हैं।
1: सर, आप किसकी टीम का की ताकत बढ़ाएंगे?
4: ढाई किलो का हाथ, ये 500 ग्राम का हाथ।
1: अपना वो डायलॉग मार दीजिए सर, अभी जो आपने कहा था।
3: मैंने जो क्या कहा अभी?
1: सर ने कहा उधर उधर 2.5 किलो का हाथ, इधर
3: 500 ग्राम का हाथ। जीत किसी की भी हो, भारत माँ की जय, भारत माँ की जीत।
1: इस साइड ज्यादा लोग तो नहीं थे?
0: इस तरफ सब स्टोरी राइटर्स, डायरेक्टर्स थे, इस तरफ जिन्होंने करना था जोश वाले इधर थे।
1: पर आप हर कंपटीशन को एकदम सीरियसली लेते हैं।
0: नहीं, मैं ऐसी बात नहीं, बट ये कंपटीशन है तो उसे सीरियसली लेना चाहिए।
1: बहुत सारी चीजें मैं कहती हूँ सर कि कॉमन होती हैं जो हमारे दोनों तरह के, इसीलिए हीरो शब्द का इस्तेमाल भी, हीरो मतलब एक्टर एक्ट्रेस सबको मिलाकर हम कह रहे हैं एक्टर हीरो, उसका उसमें एक समानता सी रहती है, क्योंकि आपको भी, आप भी कुछ गलत करेंगे लोग एक मिसाल के तौर पर देखते हैं, आपके ऊपर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप भी कुछ गलत नहीं कर सकते हैं क्योंकि उस वर्दी की अहमियत आप समझते हैं, उसकी इज्जत आप समझते हैं। एक और चीज बड़ी दिलचस्प है जिसकी अहमियत है, वो है डायलॉग्स। एक्टर के लिए डायलॉग, आपकी तो खैर फिल्मों का हर एक डायलॉग मुझे लगता है कि हमेशा हमेशा से लोग दोहराते रहे, और हमारे सोल्जर्स के केस में वो हो जाते हैं वॉर क्राई। आइए सर प्लीज, थोड़ा हौसला बढ़ाइए तालियों के साथ।
5: हाउ इज द जोश? सनी सर इज ऑन स्टेज, इतना जोश काफी नहीं है। हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश? वेरी गुड। तो मैम नेक्स्ट आपके सवाल का जवाब, जंग की परिस्थिति कोई भी हो मैम, एक वॉर क्राय है जो हम सबका मनोबल जरूर बढ़ाती है। With your permission, I'll say that.
6: भारत माता की,
5: भारत माता की
6: जय,
5: भारत माता की
6: जय।
1: क्या बात है, ओवर टू यू। एक एक्टर का वॉक रहा है।
0: हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद था है, और जिंदाबाद रहेगा।
1: जोश का लेवल और आए हो गया, और तटरक्षक का भी जयकारा हो जाए।
5: भारतीय तटरक्षक की, भारतीय तटरक्षक की।
1: माइक की जरूरत नहीं। थैंक यू सो मच। डायलॉग सुकृति आपकी भी बहुत याद रहते हैं सबको, मतलब कम होता है कि एक्ट्रेसेस के डायलॉग्स का रिकॉल बहुत ज्यादा हो, जनरली वो एक चीजें हो गई, लेकिन आपके जो कैरेक्टर्स आप प्ले करती हैं, आप जो रोल्स करती रही हैं, और जिस तरीके से आप रोल मॉडल बनी हैं, तो मुझे लगता है यहाँ पर सिर्फ सनी जी के डायलॉग के साथ नहीं, प्रीति मैम भी डायलॉग।
2: थैंक यू राज जी फॉर गिविंग मी दिस डायलॉग। मैं जानती हूँ यहाँ खतरा है, लेकिन जान के लिए ईमान नहीं छोड़ा जाता। तो
1: हाँ सर, ये नब्ज कैसे पकड़ी जाती है, जो 2.5 किलो का हाथ दामिनी का, घायल घातक जिसके साथ मैंने शुरुआत ही की कि आज भी घायल हूं इसीलिए घातक हूं करके ही डायलॉग सबसे बड़ा हिट हो जा रहा है, ये कैसे नब्ज पकड़ते हैं?
3: कैरेक्टर्स बोल रहे हैं, जो भी कैरेक्टर, जब जैसे इनका सिचुएशन था, हाउसवाइफ है हमीदा पिक्चर में, एंड शी कम्स टू नो दैट दुश्मन घेर रहे हैं, कभी भी हमला कर सकते हैं, तो बेटा इनको एडवाइस देता है कि चलो निकल जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं। वो सिचुएशन में एक माँ क्या कहेगी, ये सोचते हुए हमको लगता है कि माँ बेटे से कहती है, जान के अच्छा लगा, तुम बड़े हो गए हो, हमारा ख्याल करने को तैयार हो, हमारी सेवा करने तैयार हो, जानते हुए यहाँ खतरा है, लेकिन जान के लिए ईमान नहीं छोड़ा जाता। वो दैट कम्स फ्रॉम द कैरेक्टर। तो सनी के भी जितने भी डायलॉग हैं, ये नहीं सोचते कि सनी बोलेगा तालियां पड़ेंगी, वो तो बाद की बात है, रिएक्शन लोग करेंगे बाद में, लिखते वक्त हम यही सोचते हैं ये कैरेक्टर क्यों कह रहा है, क्या कह रहा है। लाइक जो अमरीश पुरी था दामिनी में, उनके सामने था, बदमाश था वो, कोर्ट में कोई ना कोई पंतरा करता था, तो वहाँ भी सनी साहब का लाइन लिख दिया था हमने कि कोर्ट में कल तुमने कोई बदतमीजी की, वहीं पीटूंगा, जज ऑर्डर ऑर्डर करता रहेगा तो पिटता रहेगा। तो वो नेचुरल वो कैरेक्टर बोल देता है वो,
1: क्योंकि क्या होता है ना, समय बदलते हैं लेकिन वो परिस्थितियां सेम रिपीट होती रहती हैं, और इसीलिए जो डायलॉग चाहे जो फिल्म, और दामिनी तो मैं सोशली बोलूंगी कि वो मेरे जैसी भी कई सारी लड़कियों को इंस्पायर कर गया कि एक लड़की किस तरीके से खड़ी होकर अकेले लड़ रही है। आज इसीलिए इन फिल्मों की जरूरत की हम बात भी करते हैं। हम अपनी आज केवल एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात नहीं, हम अपनी सोल्जर्स की भी परफॉर्मेंस की बात करेंगे। ये बैंड तो हमारे साथ है, 26 जनवरी पर जब कोस्ट गार्ड्स गुजरते हैं ना, तो लगता है कि इस बार का तो इनको ही मिलना है, लगता है ना? आप लोग तो पार्शल होकर सोचेंगे, हम तो एक हिंदुस्तानी के तौर पर भी आपको बता रहे हैं कि वो गजब का रिदम, गजब की तालमेल, और कला में तालमेल की बड़ी जरूरत होती है। One day, mom.

0: aquí.
1: आजकल क्योंकि जोश की बात हो रही है, युवा युवाओं के बीच ही हम बैठे हैं, जेंजी इन सैनिकों के बीच भी है, जेंजी इन कोस्ट गार्ड्स के बीच भी है, और पूरा देश इज प्राउड ऑफ द फैक्ट कि जेंजी आज अपनी आवाज उस तरीके से बुलंद करता है. क्या जेनरेशंस के साथ पेट्रियोटिज्म बदलता है? जैसे आपके बेटे भी मेरा ख्याल है इस फिल्म में है, क्या आपके बेटे का पेट्रियोटिज्म एक्सप्रेस कर, क्योंकि आपकी पूरी फैमिली ही सनीपा जी मुझे लगता है कि बहुत पेट्रियोटिक है, न सिर्फ फिल्मों के सिलेक्शन में बल्कि अपने विचारों में.
2: पेट्रियोटिज्म बदल तो नहीं सकता, बढ़ सकता है. बदल नहीं सकता और बढ़ता रहना चाहिए मेरे ख्याल से, बिकॉज हमारा देश हमारी माँ है. हमारी माँ जो घर पर है वो हमारी माँ है. उससे बढ़कर वो जो प्यार है, जो वो हमारी ताकत है, जिस तरह से वो हमारा ख्याल रखती है और जिस तरह से फिर हम उन्हें वापस उनकी इज्जत करते हैं, उनकी लुक आफ्टर करते हैं, उनको कुछ हमें कुछ चोट आए तो हमें गले से लगा लेते हैं, उसी तरह हमें भी वही करना चाहिए. एंड आई थिंक दैट्स व्हाट पेट्रियोटिज्म इज ऑल अबाउट. इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर मदर, बिकॉज योर मदर, देश हमारा मदरलैंड है. एंड आई थिंक वो बढ़ता ही रहे. इसमें ग्रेट प्राइड होनी चाहिए, बिकॉज व्हाई शुड यू शाय ऑफ फ्रॉम लविंग योर मदरलैंड.
1: क्या बदलते देखते हैं आप?
3: नॉट रियली. आई थिंक ये आपकी अपनी इंडिविजुअल फैमिली पे भी डिपेंड करता है. माई फादर वॉज इन द आर्मी, माई ब्रदर इज इन द आर्मी, तो इट जस्ट फील्स राइट. जो आपके अपने वैल्यू सिस्टम है वही आप अपने बच्चों को सिखाएंगे. सो आई, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने घर में क्या सीखते हो, क्योंकि अपनी, एज ही सेड, अपनी माँ की कदर, अपने देश की कदर, तो ये तो चीज़ें आप बचपन से ही सीखते हैं. एज डिफेंस किड्स, दीज आर नॉट थिंग्स हम सोचते भी हैं. जब हम छोटे होते थे, कहीं भी हम जाते थे, अगर कभी कोई पूछता था कि आप कहाँ से हैं, हमने कभी नहीं बोला मैं शिमला से हूँ या हिमाचल से. वी ऑलवेज से वी आर इंडियन, बिकॉज हर दो साल में आप एक अलग जगह जाते थे. सो बचपन से यही सीखा है तो यही फील होता है
1: सर. क्योंकि फिल्मों की भाषा भी थोड़ी थोड़ी बदलती दिखती है, लेकिन क्या आप देशभक्ति की भाषा बदलते देख रहे हैं?
4: देशभक्ति, पैट्रियटिज्म बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए जैसे सांस जो है वो नजर नहीं आती, लेकिन सांस के बिना आदमी जिंदा नहीं है. उसी तरह से रगों में खून दौड़ता है, नजर नहीं आता है. तो पैट्रियटिज्म हर हिंदुस्तानी के रगों में दौड़ने चाहिए, ना कि कई लोग पैट्रियटिज्म का धंधा भी बनाते, बिजनेस भी करते हैं, वो नहीं होना चाहिए. दिल से जैसे सांस और रगों में दौड़ता खून. तो मेरी यही अपील है, मैं चाहूँगा जेन ज़ी और मैं खुद भी सरकार से अपील करूँगा, इस 15 अगस्त को वो डिक्लेयर किया जाए कि नेशनल फेस्टिवल 15 अगस्त.
1: मुझे लगता है
4: नेशनल फेस्टिवल होना चाहिए कि हर हिंदुस्तानी को गर्व होना चाहिए, हर फैमिली में गर्व होना चाहिए, मिठाई बांटना, सेलिब्रेट करना. 15 अगस्त शुड बी द फॉरमोस्ट, बाकी सब फेस्टिवल बाद में, इंडिविजुअल फेस्टिवल, ये सबका कलेक्टिव फेस्टिवल 15 अगस्त.
1: बदलाव की शुरुआत हो जाएगी उस दिन से.
4: चाहूंगा, यही चाहूंगा.
1: आपने अपनी अपनी शब्दों में अभी जो कविता गढ़ी है सांसों की, कवि यहाँ भी बैठे हैं.
5: पहन मुकुट हिमालय का, गंगा की खल खल से खिलता, सभ्यता और संस्कृति का अनुपम खजाना है यहाँ मिलता. अनगिनत भाषाओं और त्योहारों का ये देश, भारत है इसका नाम. है ये सब अपने देश में विशेष, ना शीश कभी झुकने दे इसका, इतिहास का इसके मान रखे, मातृभूमि के सबसे ऊपर हर पल इसका ध्यान रखे, ऐसा भारत निर्माण करे.
1: थैंक यू. मुझे लगता है आपकी फिल्म की सोच भी यही है.
6: सोचकर भी सोचता हूँ कुछ सोचूं, सोचकर भी सोचता हूँ कुछ सोचूं, इतना सोचा फिर सोचा, सोचा के कुछ ना सोचूं.
1: क्या बात, क्या बात.
6: सोच कर भी सोचता हूँ कुछ सोचूं, इतना सोचा फिर सोचा, सोचा कि कुछ ना सोचूं, सोचने से मंजिले मकसूद नहीं होती, चलने वालों की कभी हार नहीं होती, न समझो तो पत्थर सी पहाड़ है जिंदगी, समझो तो बहता दरिया, न पूछो जिंदगी से कभी इसने हमें क्या दिया और क्या लिया। धन्यवाद।
0: मेरे देश का गौरव बना रहे इसके आगे कोई चाह नहीं, मैं चाहे जहां से भी गुजरूं उसके आगे कोई राह नहीं। ये देश सभी से न्यारा है, संस्कृति भी इसकी न्यारी है, इसीलिए हमारी मातृभूमि हमें प्राणों से भी प्यारी है। ये धरती है ऋषि मुनियों की, जिनसे दुनिया को ज्ञान मिला, जीरो की खोज यहीं पे हुई, जिससे हर अंक का मान बढ़ा, जो ज्ञान आज दुनिया को हुआ मेरे भारत ने पहले खोजा, डंके की चोट पर कहती हूँ मेरे भारत सा न कोई दूजा, डंके की चोट पर कहती हूँ मेरे भारत सा न कोई दूजा।
1: अच्छा, अब एक कोलैबोरेशन कोस्ट गार्ड और हमारी टीम बंटवारा के साथ भी होगा, और ये कोलैबोरेशन होगा जिसमें एक्टिंग वहां से होगी, आप लोगों को नाम बताना है। वो खामोशी से बस एक्टिंग करेंगे, क्योंकि बिना डायलॉग्स की एक्टिंग सुनते हैं सबसे ज्यादा मुश्किल होती है। दमशराज कुछ बोल नहीं सकते, उधर उधर भी, उधर भी दिखा दीजिए।
7: फोर वर्ड्स, व्हाट इज डाउन, व्हाट इज फर्स्ट, एक्सप्लेन टू मी कि ये क्या है। हिंदी एंड इंग्लिश, चार फोर वर्ड्स। मैं, मेरा दिल, अरे इधर देखिए, मेरा दिल, मेरा दिल आपके पास,
1: दिल
7: तो आप भाई उस साइड कर रहे थे। जस्ट FYI, दिल चाहता तीन शब्द है, दिल चाहता है फुल स्टॉप। चलो,
8: ओके, डिस्क्वालीफाइड,
1: ओके,
7: नो, नॉट डिस्क्वालीफाइड। वन वर्ड हिंदी, आधा आधा, उस वर्ड, पहला वर्ड का बॉर्डर, बंटवारा, नहीं वो भी दो है, बंटवारा 1947, यस, थैंक यू। हिंदी फोर वर्ड्स, जाओ, पर हर नहीं, कल होना हो, कल होना हो, कल
1: होना। अच्छा, अब हम क्योंकि यहाँ पर हम एक बहुत ही ब्यूटीफुल थॉट के साथ, जो सर की तरफ से सजेशन के तौर पर दिया गया है कि 15 अगस्त को एक त्योहार के रूप में मनाया जाए, 14 को आप लोगों की फिल्म आ रही है,
4: नेशनल फेस्टिवल,
1: नेशनल फेस्टिवल के रूप में मनाया जाए, और उस समय यह भी होगा कि केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया में इतनी भारतीयों की आबादी है कि पता चला हर जगह ये उत्सव मनाया जा रहा हो, और उस समय आप लोगों की फिल्म आ रही है। एक बहुत सीरियस मैसेज है या फिर एक ऐसा मैसेज जिसे लोग उस त्योहार के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं?
4: बिल्कुल एंजॉय कर सकते हैं, और सोचने पर मजबूर करेगा, कोई सीरियस मैसेज नहीं है, सोचने पर मजबूर करेगा।
9: ये हिंदुओं का मुल्क है, हिंदुओं का।

0: घर और नया सफर मुबारक।
1: अब ये घर हमारा है, यहाँ की हर चीज हमारी है।
2: अम्मा यहाँ कोई है?
3: कौन है आप?
2: तुम कौन हो जो मेरे कार में घुस आए?
3: कस्टोडियन वालों ने ये मकान हमें अलॉट किया है, आप यहाँ नहीं रह सकती।
2: मैं कितने नहीं जाना, ये मेरा घर है।
4: पर मैंनु लग रहा है कि तैनु मुसलमान से ज्यादा हिंदू की फिक्र है।
1: आप मुझे धमका रहे हैं?
4: पंगा लेना है?
1: इरादा तो नहीं पर एतराज भी नहीं है।
5: ये हिंदू बुढ़िया सबनों हिंदू धर्म का पाठ पढ़ा रही है। मंदिर भी बना रखा है, मंदिर तोड़ दो।
3: मंदिर तोड़ना इस्लाम नहीं है।
0: हमारा खतरा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है।
6: जान के लिए ईमान तो नहीं छोड़ा जाता।
0: कोई मजहब बुरा नहीं होता है, अच्छा बुरा आदमी होता है।
3: तू उस्ताद को नहीं जानता
0: और तू मेरे बाप को नहीं जानता। मैं घर देखूंगी ना सरहद, सीधा घुस के मारेंगे।
7: कैसा लगा आज कोस्ट गार्ड्स के बीच में आके इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करके उनके साथ? क्या यादें, क्या बातें आप लेकर जा रहे हैं? और इनफैक्ट मैं उससे ठीक पहले उनियाल सर आपसे भी चाहूंगी कि आप थोड़ा सा बताएं कोस्ट गार्ड्स किस तरीके से अपने ऑपरेशंस को कितने जुझारू कितने जुनून के साथ करते हैं।
8: धन्यवाद श्वेता जी, आज हम सब आज़ादी के इस पर्व पर यहाँ सम्मिलित हैं और कोस्ट गार्ड अपने 50 वर्षों की गौरवशाली गाथा को याद कर रहा है। एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन मैम जो लगभग 7 छोटे जहाज़ों से 1977-78 में शुरू हुई थी, आज एक वर्ल्ड क्लास मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन बन गई है। लोग हमसे पूछते हैं आप समुद्र में क्या करते हैं, मैं उनसे बताना चाहूँगा कि हमारे लिए समुद्र में हर दिन एक ऐसा दिन है जहाँ हम किसी न किसी चीज़ से लड़ रहे होते हैं। तो हमारा जो मोटो है, जो वाक्य ध्येय वाक्य है वयम रक्षामा, उसकी पूर्ति करने के लिए हर दिन हमारे जहाज लगभग 50-55 जहाज और 10-12 एयरक्राफ्ट समुद्र की लहरों पे और आकाश की बुलंद ऊंचाइयों पे मैम निगरानी करते रहते हैं। और जहां तक ऑपरेशन की आप बात कर रहे हैं तो उसके लिए मुझे याद आता है 2004 की वो सुनामी मैम, मैं अंडमान में एक शिप पर पोस्टेड था और सुबह अर्ली मॉर्निंग में नींद में ही था, हम भूकंप के बहुत बड़े बड़े झटकों से हमारी नींद खुली तो हमने बाहर देखा कि समुंदर जो है वो बिल्कुल नीला से बिल्कुल ब्राउनिश हो चुका है और बहुत हैवी करंट सी के अंदर फ्लो कर रहा है। सारे कम्युनिकेशन नेटवर्क डाउन हो चुके थे। बिना देर करे हुए हम अपने जहाज के थ्रू कैम्बल बे सारी रसद सामग्री और मेडिकल एड लेके पहुंचे। जब हम वहां पहुंचे तो वहां का मंजर जो था बिल्कुल दिल दहलाने वाला था। तो हमारा जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो दिन रात चला, तब मुझे इस बात में बहुत ही गौरव हुआ और बहुत ही इमोशनली सेटिस्फैक्शन मिला जब हमें एक ऐसी नज़र मिल जाती थी जो जिसके अंदर ये उम्मीद रहती थी कि भाई यस समबडी हैज कम, तटरक्षक हैव कम और अब हम जो है हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है और इसी ध्येय वाक्य को हम हमेशा पूरा करने में लगे रहते हैं, वयम रक्षामः का। थैंक यू मैडम, धन्यवाद,
7: तालियां आपने लिए।
9: गुड इवनिंग एवरीवन। सनी सर, अगर आपकी परमिशन हो तो आपके 2.5 किलो के हाथ का दमकम इस सभा के सामने आज थोड़ा आजमाना चाहेंगे।
1: क्यों मेरे साथ पंगा लेना चाहते हैं सब लोग?
9: हमारे सौभाग्य की बात होगी इस जोर आजमाइश।
1: चलिए हाथ मिला लेते हैं, पंगा नहीं लेते।
7: ये मुकाबला बराबरी पर खत्म हुआ और इसी के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए, आप सबका बहुत धन्यवाद। अच्छा वो तो आपके देखिए शुरुआत से लेकर अभी तक की तस्वीरें लेकर आई हैं।

0: आज हमारा पूरा देश स्वतंत्रता का महोत्सव मना रहा है। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया, विकसित भारत के लक्ष्यों को दोहराया, सप्त सिंधु से सप्त धरा तक पीएम ने मंत्र दिया। आज 15 अगस्त का कार्यक्रम एक और मायने में विशेष था। पहली बार लाल किले में वंदे मातरम की धुन सुनाई दी, लेकिन इस पर दिल्ली में राजनीति भी जोरदार दिखी।
1: कांग्रेस दफ्तर में वंदे मातरम के दौरान सोनिया गांधी के इशारा करने की इन तस्वीरों पर बीजेपी सवाल पूछ रही है। बीजेपी इसे वंदे मातरम का अपमान बता रही है।
2: एक बहुत विचित्र, विडंबनापूर्ण और दुर्भाग्यपूर्ण दृश्य देखने को मिला जब कांग्रेस कार्यालय में वंदे मातरम गीत गाया जा रहा था। उस समय कांग्रेस की सुप्रीम लीडर सोनिया गांधी जी, सुपर अध्यक्ष राहुल गांधी जी और सिटिंग अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी बहुत ही विचित्र और आपत्तिजनक तरीके से असम्मान व्यक्त करते हुए एक दूसरे से बातचीत करते हुए नजर आए, किसी को बुलाते हुए नजर आए, और कोई व्यक्ति आकर उनसे कुछ बता भी रहा था और एक दूसरे को इशारे कर रहे थे। यह राष्ट्रगीत वंदे मातरम के प्रति उनका अपमान है।
1: बीजेपी के सवालों पर कांग्रेस का जवाब आया, इशारों के पीछे की वजह बताई गई।
3: आज यहाँ इंदिरा भवन में पूरा वंदे मातरम गाया गया, इसमें कोई वाद विवाद का सवाल नहीं उठता, कोई रोकने का प्रयास नहीं था, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस अध्यक्ष खड़े हुए थे, सोनिया जी कह रही थी उनके लिए कुर्सी लाके रख दो बस।
1: वंदे मातरम पर यह घमासान उस वक्त शुरू हुआ है जब वंदे मातरम के पूर्ण संस्करण को हाल ही में राष्ट्रगान के समान कानूनी संरक्षण दिया गया है। 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्र के नाम संबोधन से पहले और उसके समापन पर भी वंदे मातरम बजाया गया था। वहीं आज पहली बार लाल किले में भी राष्ट्रगान से पहले वंदे मातरम गाया गया। संसद में वंदे मातरम बिल पारित के बाद अब 15 अगस्त पर इसके घमासान की पहली सियासी किश्त सामने आई है।
4: आजादी के बाद 15 अगस्त को लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, तो इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
1: आज तक ब्यूरो।
0: पीएम मोदी ने अपने भाषण में दिमागी नक्सल, महिला आरक्षण जैसे मुद्दों का उल्लेख किया, जिस पर अब विपक्ष प्रश्न खड़े कर रहा है।
1: लाल किले की प्राचीर से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्वजारोहण किया तो साथ में महिला सैन्य अधिकारी नजर आईं और पीएम ने भाषण में महिला आरक्षण पर विपक्ष से साथ आने की अपील की।
4: मैं देश के सभी राजनीतिक दलों से आज लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे की छाया में खड़े होकर के प्रार्थना करता हूं, आग्रह करता हूं, आइए उन महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनिए, उन महिलाओं के सम्मान में आगे आइए और जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, वे भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है।
1: पीएम की महिला आरक्षण को लेकर इस अपील पर कांग्रेस सरकार से सवाल पूछ रही है।
5: कानून बन चुका है, राहुल गांधी जी बाबा ही तो कहते हैं जब कानून बन चुका है लागू क्यों नहीं कर रहे आप लोग, अब वो सपना देख रहे हैं, हम तो 800 संख्या बढ़ाएंगे पहले पार्लियामेंट के अंदर, असेंबली में बढ़ाएंगे, इसके मायने की परिसमन अपने हाथ में ले लेंगे।
6: महिला आरक्षण को लगातार दोयम दर्जा देने के लिए, पीछे धकेलने के लिए यदि कोई जिम्मेदार है तो स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2023 में जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया तो उसको दो शर्तों की बैसाखी पर खड़ा करने वाला कौन था? परिसीमन और जनगणना से जोड़ने वाला कौन था? वो प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार थी।
1: उधर पीएम मोदी ने नक्सल के सफाई का जिक्र किया तो वहीं दिमागी नक्सल से लड़ाई की बात कही।
4: हथियारी नक्सल तो गए लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा।
7: पहले भी जिनको जमीनी नक्सल कहा फिर उन्हीं किसानों की बात माननी पड़ी, नौजवानों को नक्सल कहा फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ा। तो पहले तो ये हाथ पांव मारते हैं नक्सल नक्सल नक्सल और उसके बाद उनकी बात मान लेते हैं।
8: पहले तो दिमागी नक्सल की परिभाषा बताओ क्या है, दिमागी नक्सल की क्या परिभाषा होती, किसे आप दिमागी नक्सल करेंगे? ये तो एक आपने मुहावरा बना दिया।
0: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: आगे आगे
2: अरे उधर
1: उधर करेक्ट करेक्ट
3: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: ये मजबूर हैं पर आप नहीं, बीटेक्स मलहम, दांत खाज खुजली से छुटकारा।
2: अब वही बीटेक्स मलहम ट्यूब में भी उपलब्ध।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: मुल्तानी घो का कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घो का कॉफ सिरप।
3: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
4: पापा
5: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
4: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
5: छक्का?
4: सब कैशलेस हो गया है।
6: ला भाई मेरा बैट।
7: वो अभी तो ठीक हुआ। तू
6: चार्ज हुआ यार।
8: बैट किसका है?
9: टाटा AIG है तो भरोसा है।
10: जिस मिट्टी में फसल उगती है उसी में भारत की स्वतंत्रता की खुशबू है। इस स्वतंत्रता दिवस आइए उन किसानों का सम्मान करें जो हर दिन देश को मजबूत बनाते हैं। मेरे और क्रिस्टल परिवार की ओर से आपके और आपके परिवार को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।

0: आगे आगे उधर गया।
1: करेक्ट करेक्ट
2: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
0: आगे आगे उधर गया। करेक्ट करेक्ट
2: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: in association with
1: Cera Sanitary Wear. It's your moment of Cera. E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा.
2: देखिए, वंदे मातरम को लेकर अक्टूबर 1937 में कोलकाता में 28 अक्टूबर 1937 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई. गांधी जी मौजूद थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, सरदार पटेल थे, मौलाना अब्दुल कलाम थे, आजाद थे, जवाहरलाल नेहरू थे, गोविंद वल्लभ पंत जी थे, राजगोपाल आचार्य जी थे. और उन्होंने निर्णय किया कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के सलाह पर वंदे मातरम कांग्रेस अधिवेशनों में गाया जाएगा. पहले कुछ पंक्तियां ली जाएंगी और वही गाना गाया जाएगा. ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई अक्टूबर 1937 में. रविंद्रनाथ टैगोर ने सलाह दी पंडित जवाहरलाल नेहरू को और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को कि पहले पंक्तियों का इस्तेमाल कीजिए, और तब से हर एक कांग्रेस अधिवेशन में वही पंक्तियां लोग गा रहे हैं. हमारे सेवा दल गाता है, हमारे कार्यकर्ताएं गाते हैं. इसमें कोई वाद विवाद
3: नहीं. लेकिन पूरा वर्जन गाया गया.
2: हाँ, पूरा वर्जन गाया गया क्योंकि संसद में इस पर चर्चा हुई, संसद में इस पर बहस हुई, 16 घंटे की बहस हुई. हमने अपनी राय रखी. मैंने खुद सारा इतिहास बताया जो प्रधानमंत्री और गृहमंत्री को जानकारी थी नहीं. सारे सांसदों को मैंने अवगत कराया कि किस संदर्भ में वो वंदे मातरम का निर्णय लिया गया है. आज यहाँ इंदिरा भवन में पूरा वंदे मातरम गाया गया. इसमें कोई वाद विवाद का सवाल नहीं होता. कोई रोकने का प्रयास नहीं था क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस अध्यक्ष खड़े हुए थे. सोनिया जी कह रही थी उनके लिए कुर्सी लाके रख दो, बस
3: कोई नहीं था.

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

जय हिंद, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले हमारे सभी दर्शकों को 80वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तिरंगा सिर्फ एक कपड़ा नहीं, करोड़ों भारतीयों की धड़कन है, उन वीरों के लहू की अमिट स्याही है जिन्होंने अपनी जवानी हंसते हंसते भारत माता के चरणों में अर्पित कर दी। आज इतिहास के पन्नों से महकती हवाएं कुछ अलग ही पैगाम ला रही हैं। आज वो पावन दिन है जब गगनचुंबी इमारतों से लेकर बर्फीली चोटियों और रेगिस्तानों की रेत तक, समंदर की लहरों से असीम आसमान तक, सुदूर दुर्गम और आदिवासी आंचलों से लेकर हर चौक, हर चौराहा, हर नुक्कड़ तक बस एक ही स्वर गूंज रहा है, भारत माता की जय। देश अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस का महापर्व मना रहा है। आज का दिन उस अटूट संकल्प का प्रतीक है जिसे हमारे अमर शहीदों ने अपने खून से सींचा था। सोचिए, कोई माँ हंसते हंसते अपने बेटे को भेज देती थी क्योंकि वो भारत माँ को आजाद करने के लिए लड़ रहा था। सोचिए, कोई पिता अपने जवान बेटे को तिलक लगाकर भेजता था खुशी से कि जा तू देश पर मर मिट, ये देश तुमसे तुम्हारा जो जिम्मेदारी है वो पूरा करने की बात कर रहा है। आज लाल किले की प्राचीर से जब तिरंगा पूरे शान से लहराया तो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। आज के इस ऐतिहासिक समारोह में वंदे मातरम के 150 गौरवशाली वर्ष पूरे होने पर उसकी गूंज ने पूरे वायुमंडल को राष्ट्रभक्ति के रस से सराबोर कर दिया। ये जश्न उन रणबांकुरों के बलिदान को समर्पित है जिनकी बदौलत आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। ये देश अब रुकने वाला नहीं है। आज आजादी के मायने बदल चुके हैं। अब ये सिर्फ गुलामी की जंजीरों से मुक्ति नहीं बल्कि विकसित भारत का महासंकल्प है जिसको हकीकत में बदलने की जिजीविषा पूरे देश के 140 करोड़ लोगों में है। लाल किले से प्रधानमंत्री

नरेंद्र मोदी ने देश की युवा शक्ति, माताओं, बहनों और किसानों के असीम सामर्थ्य को ललकारते हुए एक नया इतिहास लिखने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि अब भारत छोटे छोटे सपनों में बंधने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री के संबोधन में बहुत कुछ साफ था। फॉर्चून 500 कंपनीज में भारत का परचम, दुनिया के टॉप बैंक्स और फार्मा दिग्गजों में भारतीय कंपनीज का दबदबा, यानी अब दुनिया भारत की चाल से चलेगी। डिफेंस प्रोडक्शन जिसमें 4 गुना हम बढ़े, मोबाइल उत्पादन जिसमें 33 गुना, डिजिटल ट्रांजैक्शन जिसमें 100 गुना की छलांग, ये आज जोर शोर से कह रही है कि भारत अब ग्लोबल सप्लाई चेन का सिरमौर बन रहा है। आने वाले 1 साल में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल्स की ट्रेनिंग और ऑनलाइन कोचिंग का कवच देकर देश की युवा फौज को भविष्य के युद्ध के लिए तैयार किया जा रहा है। दुनिया चाहे संसाधनों को वेपनाइज्ड बनाए, भारत अपने आत्मनिर्भरता के मंत्र और वोकल फॉर लोकल, इसकी ताकत से हर चुनौती को धूल चटाने को तैयार है। एक तरफ जहां कभी हिंसा खौफ की छांव हुआ करती थी, आज वहां विकास का तिरंगा शान से लहरा रहा है। प्रधानमंत्री ने आगाह किया कि हथियारबंद नक्सल तो धराशायी हो चुके हैं, लेकिन अब उन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा जो देश की प्रगति में रोड़े अटकाना चाहते हैं, जो मौके की फिराक में है, गलियों में है। देश अब इन संकीर्ण सोचों से बहुत आगे निकल चुका है, ऐसा उन्होंने कहा। आज अब सुदूर और दुर्गम इलाकों में गर्व से जो तिरंगा लहरा है, क्योंकि हमने लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री ने जो झंडा रोहण किया, अपना संबोधन दिया, वो तो दिखाया ही आपको, लेकिन आज हम आपको भारत के दुर्गम ऐसे इलाकों में ले चलेंगे। जबरदस्त तस्वीरें आ रही हैं स्वतंत्रता दिवस के जश्न की वहां से। तो ब्लैक एंड व्हाइट के स्पेशल एडिशन में देशभक्ति के रंग बिरंगे विश्लेषण की शुरुआत करते हैं, लेकिन आज सबसे पहले हम उस ऐतिहासिक कदम की बात करेंगे जिसकी चर्चा सदियों तक होगी। आजाद भारत और उसके इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब लाल किले से देश के राष्ट्रगीत वंदे मातरम की धुन गुनगुनाई गई। अभी तक परंपरागत रूप से स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस पर जनगणमन जो है, जनगणमन का राष्ट्रगान जो है, उससे गौरवान्वित होता था, लेकिन अब देश के लोग राष्ट्रगान के साथ साथ वंदे मातरम से मातृभूमि को भी नमन कर सकेंगे। साल 1950 के बाद से स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम की परंपरा यही थी कि झंडारोहण के बाद राष्ट्रगान की धुन बजाई जाती थी, लेकिन इसमें नया अपडेट जुड़ गया है। अब से हर साल झंडारोहण से पहले राष्ट्रगीत वंदे मातरम की धुन बजेगी, और उसी से शुरुआत भी आज हुई। उसके बाद फिर प्रधानमंत्री झंडारोहण करेंगे और उसके बाद राष्ट्रगान की धुन बजाई जाएगी, जनगण जनगणमन। यानी पहले मातृभूमि को नमन होगा, फिर स्वतंत्रता भारत के जो गौरव की पहचान है वो तिरंगे का आरोहण होगा, और फिर इसके बाद देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की पहचान, राष्ट्रगान गाया जाएगा। देश का 80वां स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम वंदे मातरम को समर्पित था। देशवासियों के दिलों में इसकी अमिट छाप बनी रहे, इसके लिए वंदे मातरम को विशेष रूप से प्रदर्शित किया गया था। आज देश के 2500 एनसीसी कैडेट्स एक विशेष टी शर्ट पहनकर इस कार्यक्रम में पहुंचे थे, उनमें से कुछ सफेद, कुछ ऑरेंज। उनकी फॉर्मेशन इस तरह से बनाई गई थी कि टॉप एंगल से देखने पर दुनिया को एक विशाल वंदे मातरम शब्द दिखाई दे रहा था। बच्चों के ठीक सामने थल सेना, नौसेना, वायुसेना के जवान मौजूद थे, जो इस बात का प्रतीक था कि मातृभूमि पर मंडराने वाले हर खतरे को धूल में मिलाने के लिए ये जवान हर समय तैयार रहते हैं। आज की ये तस्वीर हमेशा हमेशा के लिए देशवासियों के दिमाग में रहेगी, क्योंकि देश में ऐसा पहली बार हुआ है। वंदे मातरम को समर्पित इस स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में पहली बार लाल किले की प्राचीर पर फूलों से वंदे मातरम लिखा गया था। लाल किले की जिस प्राचीर पर झंडारोहण होता है और जहां से प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं, उसके दोनों तरफ रंग बिरंगे फूल, इस बार उस फूलों से वंदे मातरम लिखा गया था। फूलों से लिखे गए वंदे मातरम के बीच खूबसूरत तिरंगा भी बनाया गया था। आज वायुसेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टर्स ने देश के राष्ट्रगीत को अपनी सलामी आसमान से फूलों की बारिश करके दी। लाल किले पर मौजूद लोगों पर फूलों की बारिश करने के अलावा इन हेलीकॉप्टर्स में से एक पर तिरंगा और दूसरे वंदे मातरम का बैनर था। पिछले साल नवंबर में वंदे मातरम के 150 साल पूरे हुए हैं। पहली बार वंदे मातरम को साहित्यिक पत्रिका बंग दर्शन में 7 नवंबर 1875 को प्रकाशित किया गया था। वंदे मातरम को देश के प्रसिद्ध

प्रसिद्ध साहित्यकार और विचारक बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने स्वतंत्रता के प्रति राष्ट्रीय चेतना को जगाने के लिए इसकी रचना की थी। शुरुआत में इसे बंग दर्शन में छापा गया, लेकिन इसके बाद साल 1882 इसे आनंद मठ नाम के उपन्यास में शामिल किया गया था। ये उपन्यास भी बंकिम चंद्र चटर्जी की ही रचना थी। वंदे मातरम को पहली बार साल

0: ये उपन्यास भी बंकिम चंद्र चैटर्जी की ही रचना थी। वंदे मातरम को पहली बार साल 1896 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। इसे तब रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था, जिन्होंने हमारे राष्ट्रगान की रचना भी की है। स्वतंत्रता के लिए राजनीतिक नारे के तौर पर वंदे मातरम का इस्तेमाल 7 अगस्त 1905 को किया गया था। इसके बाद साल 1907 में भीकाजी कामा ने पहली बार भारत के बाहर बर्लिन में तिरंगा झंडा फहराया था। उस झंडे पर तब वंदे मातरम लिखा हुआ था। आजादी के बाद साल 1950 में संविधान सभा के द्वारा इसे भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया। रचना के 150 वर्षों के बाद इसी साल मानसून सत्र में वंदे मातरम को राष्ट्रगान जैसा सम्मान दिलवाया गया है। इसके लिए प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 में संशोधन किया गया। परंपरागत रूप से सरकारी कार्यक्रमों में हमेशा से राष्ट्रगान गाया जाता था और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाया जाता था, लेकिन इस संबोधन के बाद अब से सरकारी कार्यक्रमों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया गया है। यानी जहां भी राष्ट्रगान गाया जाता रहा है वहां अब से राष्ट्रगीत भी गाया जाएगा।
1: आजादी के बाद 15 अगस्त लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है।

0: ¡Vande! ¡Vande!
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 13वीं बार देश को लाल किले से संबोधित किया है और अपने संबोधन के जरिए उन्होंने देश के हर वर्ग को कुछ ना कुछ तरीके से संबोधित किया। इस बार पीएम मोदी का भाषण 76 मिनट चला और ये उनके कार्यकाल में तीसरा सबसे छोटा संबोधन था, लेकिन 76 मिनट के इस संबोधन में उन्होंने देश को आगे बढ़ाने वाली शक्ति की 7 धाराओं के बारे में मंत्र दिया। देशवासियों से इन सप्तधारा से जुड़ने की अपील की, जिससे देश 2047 से पहले ही विकसित भारत के सपने को, संकल्प को पूरा कर सके। सप्तधारा के मंत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने युवा शक्ति, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, कनेक्टिविटी, डिफेंस, एनर्जी और सॉफ्ट पावर जैसे टूरिज्म है, योग है, आयुर्वेद है, इन सब को उन्होंने शामिल किया। आज हम प्रधानमंत्री मोदी के शक्ति के सप्तधाराओं का ही विश्लेषण करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर हम वैश्विक रूप से देखें तो भारत आज कहां पर मौजूद है, कहां खड़ा है और इन सप्तधारा की शक्तियां अगले कुछ वर्षों में भारत को कहां तक पहुंचा सकती हैं। सबसे पहले हम युवा शक्ति की बात करेंगे, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास कुछ विशेष प्लान है, जिसके बारे में आज उन्होंने बताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपील की है कि अगर देश के युवा देश की इन सप्तधाराओं से जुड़कर काम करें तो अगले कुछ वर्षों में ऐसा चमत्कार होगा जो विश्व ने कभी नहीं देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से अपील की है कि वो अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल विकसित भारत की दिशा में लगाएं और अपनी युवा ऊर्जा से अगर 5 से 6 वर्षों में ऐसा करके दिखाएं जो पिछले कई दशकों में नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि वो 1 करोड़ युवाओं को अगले 1 वर्ष में AI स्किल ट्रेनिंग दिलवाएंगे। ये जरूरी भी है क्योंकि AI आने वाले वक्त में एक बड़े चैलेंज की तरह होगा और जो फ्यूचर रेडी नहीं होगा, AI के तकनीक को समझेगा नहीं, उससे अभ्यस्त नहीं होगा, उसको मुश्किलें आएंगी। उन्होंने अपने भाषण में AI के महत्व की बात की और माना कि आने वाले वक्त में AI की ट्रेनिंग ही भारतीय युवाओं को रोजगार दिलवाएगी। प्रधानमंत्री मोदी मानते हैं कि आने वाले AI स्किल को ही भारतीय युवाओं की सबसे बड़ी ताकत बनेगी और इसीलिए उनका पूरा का पूरा, एक तरह से आप समझिए, जो फोकस था वो AI स्किल डेवलप।

उन पर आज उन्होंने रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक ऐसे मुद्दे को भी छुआ जो गरीब मिडिल क्लास के लिए चिंता का विषय था। वो चिंता थी प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग। गरीब और मिडिल क्लास युवा पैसे की कमी या कारणों से चूक जाते हैं, तो प्रधानमंत्री ने आज ऐलान किया कि फ्री ऑनलाइन कोचिंग, जिसकी उन्होंने बात कही, उन्होंने गरीब मिडिल क्लास युवाओं को भरोसा दिलाया है कि सरकार कोचिंग का एक ऐसे डिजिटल नेटवर्क पर काम करेगी, तैयार करेगी, जिसमें अच्छे शिक्षक, प्रतिभाशाली युवा परीक्षाओं के लिए बच्चों को मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं की शक्ति को देश के निर्माण से जोड़ा और इसके लिए हर तरह की मदद का भरोसा दिलाया। हालांकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के खास खतरे से भी उनको सावधान किया। उन्होंने देश के युवाओं को दिमागी नक्सलियों से सावधान रहने के लिए कहा है। प्रधानमंत्री ने देश के नक्सल मुक्त होने की चर्चा की और ये करते हुए उन्होंने युवाओं को ऐसे लोगों से सावधान किया है जो दिमाग से नक्सलवाद के समर्थक हैं, दिमागी नक्सल जिसे उन्होंने कहा। उन्होंने युवाओं के भटकाव से बचने के लिए युवाओं को अपील की और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे तमाम दिमागी नक्सली हैं जो देश में मौके के फिराक में रहते हैं कि कहीं पर उनको कोई मौका लगे वो देश में अराजकता फैलाएं। वो अलग अलग जगहों पर होते हैं। उन्होंने कहा कि कैसे ऐसे ही लोग पहले दिमागी नक्सली जो है वो देश की नीतियों को प्रभावित करते थे, अब आज की पीढ़ी को उनसे संभलने की जरूरत है। देखिए,

0: संदेश है, मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा कर रहा हूं, हमने तय किया है कि आने वाले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
1: भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। देश की करीब 65% आबादी की उम्र 35 वर्ष से कम है। हमारे यहाँ दुनिया के सबसे ज्यादा स्कूल के बच्चे हैं। देश में दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल सिस्टम है, जिनकी संख्या 14,67,000 है और इनमें 24,72,00,000 बच्चे पढ़ते हैं। यानी इस वक्त हमारे पास मौजूदा समय में देश की तस्वीर बदलने वाली युवा शक्ति भी है और आने वाले भविष्य के तैयार हो रहे युवाओं की एक पूरी फौज है जो विकसित भारत के सपने को पूरा करें।
0: हमारे मध्यम वर्ग के परिवारों के सामने एक बहुत बड़ा बोझ बन चुका है कोचिंग क्लासेस की स्पर्धा। हर माँ बाप को लग रहा है कि कोचिंग क्लास में बच्चे को नहीं भेजा तो हम प्रतिष्ठित परिवार नहीं है। इन गरीब और मिडिल क्लास परिवारों की हम चिंता करते हुए हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये बात अच्छी तरह से जानते हैं और शायद इसीलिए उन्होंने युवाओं की आकांक्षाओं को समझते हुए उन्हें वो सब देने की बात कही जो आज का युवा चाहता है। 2014-15 में 3.4 करोड़ छात्र उच्च शिक्षा हासिल कर रहे थे, जिनकी संख्या साल 2023-24 में 4.5 करोड़ हो गई। यानी उच्च शिक्षा के लिए ज्यादा बच्चे अपना नामांकन करवा रहे हैं। इसमें खास बात यह है कि छात्राओं का नामांकन साल 2014-15 के मुकाबले साल 2023-24 में करीब 42.2% बढ़ा है। 2023-24 में 2.2 करोड़ छात्राओं ने उच्च शिक्षा में नामांकन करवाया है। इसके अलावा बेरोजगारी दर भी 2014 में 7.71% थी, जो 2025 में घटकर 4.2% हो गई। स्टार्टअप इंडिया के तहत स्टार्टअप्स की संख्या 2014 से पहले लगभग 350 थी, जो अगस्त 2026 तक बढ़कर 2,47,000 हो गई है।
2: इसके अलावा साल 2014 और 2025 के बीच ITI की संख्या 9,977 से बढ़कर 14,688 हो गई है और इनमें छात्रों का नामांकन 9,50,000 से बढ़कर 14,70,000 हो गया है।
1: राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान भी 25 से बढ़कर 33 हो गए हैं। यानी पीएम मोदी चाहते हैं कि युवा अपनी ऊर्जा को देश के विकास पर लगाए और इसके लिए सरकार की ओर से जो संभव मदद होगी वो की जाएगी। हालांकि पीएम मोदी की नजर केवल जेन जी पर नहीं थी, बल्कि उनकी नजर जेन अल्फा पर भी थी। उन्होंने जेन अल्फा की ऊर्जा को पढ़ाई ही नहीं बल्कि खेलों में भी इस्तेमाल करने की बात कही। उन्होंने 5 से 15 वर्ष तक के बच्चों को 2036 ओलंपिक का टारगेट दिया है। उनका कहना है कि आज से ही ये तैयारी शुरू करनी होगी और उसके लिए सरकार भी उनके साथ है।
0: हमने तय किया है कि 2036 में जो ओलंपिक होगा, जिन विधाओं में आज भारत खेलता नहीं है, जिन विधाओं में भारत क्वालिफाई नहीं करता है, जिन स्पर्धाओं में भारत ने छोड़ के रखा है, 3/4 हिस्सा हमारे इंतजार कर रहा है, भारत उस पर बल देगा। और इसके लिए हम टैलेंट हंट का एक अभियान भी चलाना चाहते हैं। हमें अगर 2036 के लिए खिलाड़ी चाहिए तो आज जो 5 साल 10 साल 15 साल की उम्र के नौजवान हैं, बेटे हैं, उनके तरफ ध्यान देना होगा, उन बेटियों पर ध्यान देना होगा। और इसलिए 5 से 15 उम्र के बच्चों में खेल प्रतिभा ढूंढने के लिए गांव गांव शहर शहर स्कूल स्कूल एक टैलेंट हंट का अभियान चलाया जाएगा।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में देश को एक नए खतरे से भी आगाह किया और वो है साइबर अटैक। उनका मानना था कि जिस तरह से सेना के जवान सीमा पर देश की सुरक्षा करते हैं, ठीक वैसे ही देश के युवाओं को देश की साइबर सुरक्षा की मजबूती पर काम करना चाहिए और इसके अलावा नई टेक्नोलॉजी को सीखना और उसे देश के विकास के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, इस पर भी जोर दिया। आज तक ब्यूरो।
3: आज प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से एक ऐसा आर्थिक शंखनाद किया है जो आने वाले कल में भारत की तस्वीर ही नहीं तकदीर भी बदल सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित भारत के अपने विजन की सप्तधारा में मैन्युफैक्चरिंग पावर को इसकी चमचमाती हुई धुरी बनाया और ये जरूरी भी था। लंबे वक्त से इस बात पर चर्चा हो रही थी देश में कि हम अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ सर्विस सेक्टर या अन्य क्षेत्रों में अगर हम सीमित रह जाएंगे और मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बनेंगे तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है और यही सब भारत में अर्थव्यवस्था की शायद सबसे कमजोर कड़ी बन रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री ने हमारे देश के निर्माताओं को एकदम साफ और दो टूक शब्दों में गुरु मंत्र दिया है, क्वालिटी क्वालिटी क्वालिटी। अब वक्त आ गया है भारत सिर्फ छोटे मोटे कलपुर्जे जोड़ने तक सीमित ना रहे, दुनिया के बाजार में छा जाने वाले फिनिश प्रोडक्ट्स, उन्होंने कहा कॉस्ट क्वालिटी और इन सब पर जोर हो, लागत हो गुणवत्ता हो या फिर बड़े पैमाने पर स्केल की उन्होंने बात की, कॉस्ट क्वालिटी एंड स्केल, बड़े पैमाने पर उत्पादन पर ध्यान जरूरी है जिसके जरिए भारत अब ग्लोबल सप्लाई चेन का एक सेंटर बनने के लिए तैयारी करेगा। और ये सिर्फ दावे नहीं है, आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं कि कैसे मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में देश की फिजा बदल रही है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में 33 गुना की जबरदस्त वृद्धि हुई है, वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनों के डिब्बों का निर्माण 21 गुना बढ़ा है, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन में 7 गुना का उछाल आया है और तो और रक्षा उत्पादन में भी मेक इन इंडिया का डंका बजते हुए 4 गुना की छलांग भारत ने लगाई है। साफ है कि भारतीय उत्पादों की पैकेजिंग प्रिसिशन ऐसी होगी जो दुनिया को अपनी तरफ खींचेगी। आइए सुनते हैं मैन्युफैक्चरिंग के महाअभियान पर प्रधानमंत्री ने आज लाल किले से क्या कहा।
0: मेरे प्यारे देशवासियों, हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत आगे बढ़ाना होगा और प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ साथ हमें छोटे छोटे पुर्जे भी बनाने हैं और बड़े बड़े प्रोडक्ट भी बनाने हैं। पूरा वैल्यू चेन हमारा होना चाहिए और उसे लेकर के चलना। हमें कंपोनेंट भी चाहिए और हमें कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग भी चाहिए, कंप्लीट प्रोडक्ट भी चाहिए। डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन का भरोसामंद केंद्र बनना होगा। इसके लिए मैं 3 चीजों पर विशेष जोर देना चाहता हूं। मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में जो मेरे भाई बहन हैं, यह समय का यह अवसर है, इस अवसर को जाने मत दें और इसके लिए हमें कॉस्ट क्वालिटी और स्केल इसके विषय में वैश्विक मानदंडों से खरा उतरना पड़ेगा। हमारी फैक्ट्रीज कॉम्पिटिटिव हो, हमारे प्रोडक्ट्स यूजर फ्रेंडली हो, हमारा पैकेजिंग दुनिया के लोगों को लुभाने वाला हो, आकर्षित करने वाला हो, हमारा जीरो डिफेक्ट प्रिसिशन मैन्युफैक्चरिंग ये हमारी पहचान बनना चाहिए।
3: अक्सर कहा जाता है कि 21वीं सदी की जो जियोपॉलिटिक्स है, जो अर्थव्यवस्था इकोनॉमी है, जियोपॉलिटिक्स और इकोनॉमी, इनकी धुरी सिर्फ एक छोटी सी चीज पर टिकी है और वो है चिप सेमीकंडक्टर। जब दुनिया के बाकी देश भविष्य की इस जंग में अपनी मजबूत पकड़ तलाश रहे हैं और दुनिया में अपनी बार्गेनिंग पावर को अपने मैन्युफैक्चरिंग, अपने रेयर अर्थ मिनरल्स, अपने सेमीकंडक्टर कैपेसिटी, इन सब से वो मजबूत कर रहे हैं, तब आज लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के इरादे दुनिया के सामने बिल्कुल साफ कर दिए हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने देश के तकनीकी भविष्य का एक ऐसा विजन रखा है जो हर भारतीय को गर्व से भर देगा। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में ऐलान किया है कि आने वाले 7 से 8 वर्षों के भीतर भारत में 5 से 8 नए सेमीकंडक्टर प्लांट्स स्थापित किए जाएंगे। यानी साफ है कि भारत अब सिर्फ तकनीक का उपभोक्ता नहीं, दुनिया का बड़ा निर्माता बनने की राह पर बढ़ेगा और ये जरूरी भी है और इसमें जल्दबाजी होनी चाहिए, तेजी आनी चाहिए। प्रधानमंत्री इसके पीछे जमीन पर वो कह रहे हैं कि जल्द से जल्द हम सिर्फ प्लांट्स नहीं बनाएंगे, उनको शुरू भी करेंगे। इसके पीछे जमीन पर उतर चुका है एक पूरा खाका, एक मजबूत इकोसिस्टम है। भारत ने सेमिकॉन 1.0 के जरिए इस सफर की शुरुआत 76,000 करोड़ के बजट से की थी। आज स्थिति यह है कि सरकार के इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत देश भर में कुल 12 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को मंजूरी मिल चुकी है, जिसमें 1,64,000 करोड़ रुपए से अधिक का विशाल निवेश शामिल है। अब सबसे बड़ी और गर्व की बात यह है कि महज बातों से आगे बढ़कर भारत अब धरातल पर मैन्युफैक्चरिंग के फेज में प्रवेश कर रहा है। गुजरात के सानंद में स्थित माइक्रॉन केन्स और सीजी सेमी, ये तीनों संयंत्र जो हैं वो आज सफलतापूर्वक अपना कमर्शियल प्रोडक्शंस शुरू कर चुके हैं। फरवरी से जुलाई 2026 तक इन प्लांट्स ने ये साबित कर दिया है कि भारत का जो सिलिकॉन सपना है वो अब हकीकत बनने की राह पर तेजी से बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, जुलाई 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 1,27,500 करोड़ के भारी भरकम बजट के साथ सेमिकॉन 2.0 की मंजूरी ने इस क्रांति को पंख दिए हैं। चिप डिजाइन से लेकर एडवांस पैकेजिंग, R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टैलेंट डेवलपमेंट तक भारत के 6 रणनीतिक स्तंभ अब ग्लोबल सप्लाई चेन को एक नई दिशा देंगे। चाहे अमेरिका हो, जापान हो, यूरोपियन यूनियन हो, दुनिया के तमाम दिग्गज देश भारत को एक भरोसेमंद मजबूत तकनीकी साझेदार के रूप में आज देख रहे हैं। और लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह हुंकार इस बात का संकेत भी है कि आने वाले कल में भारत मजबूत बनेगा और आने वाला कल भारत का होगा, तब इस तकनीकी आत्मनिर्भरता को अब कोई रोक नहीं सकता। देखिए
0: मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं सेमीकंडक्टर का। देश आजाद होने के बाद विश्व में तो सेमीकंडक्टर की चर्चा हो चुकी थी, हमारे यहां भी बातें होती थी, लेकिन सेमीकंडक्टर का कोई बड़ा प्लान हम आगे नहीं बढ़ा पाए। और आज स्थिति क्या है? आज की डिजिटल दुनिया में, आज की टेक्नोलॉजी में चीप का महात्म्य हम समझते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होगा, हमारे मेडिकल इक्विपमेंट होंगे, हमारे ट्रांसपोर्ट के रास्ते होंगे, हर किसी में चीप अनिवार्य है। और इसे, इस चीप के बिना दुनिया थम जाए ऐसी स्थिति पैदा हो जाए। और इसलिए भारत ने आत्मनिर्भर होने की दिशा में अपना सेमीकंडक्टर प्लांट, बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट, 3 सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हो चुके। और मुझे बताया गया है कि वहां जो प्रोडक्शन हो रहा है वह एक्सपोर्ट होना शुरू हो चुका है। और मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, आने वाले 7-8 वर्ष में और 5, 7 या 8 सेमीकंडक्टर प्लांट बहुत ही जल्द शुरू होने वाले। ये आत्मनिर्भर भारत हमें विकसित भारत की दिशा में जाने का महामार्ग देता।
3: देश की रफ्तार अब नई पहचान बनने वाली है। लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा विजन रखा है जो भारत को ग्लोबल स्टेज पर सुपर फास्ट ट्रैक पर लाने वाला है। आज देश रुकने वाला नहीं है, बल्कि गति शक्ति के सहारे उड़ान भरने को तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया है कि अब दूरियां कम होंगी, विकास की रफ्तार को बढ़ाएंगे। विकास की सप्तधारा का जिक्र करते हुए चौथी शक्ति यानी गति शक्ति पर सबसे बड़ा उनका फोकस था। उनका मंत्र है सीमलेस, फास्ट एंड कंटिन्यूअस कनेक्टिविटी, यानी कोई बाधाएं ना हो और लगातार निरंतर रूप से ये कनेक्टिविटी रहे। और इसके लिए शहरों में हाई स्पीड रेल से अब शहर जुड़ेंगे, देश में आधुनिक हाईवे का जाल बिछेगा और अब आसमान छूते एयरपोर्ट्स और इनलैंड वाटरवेज क्रांति लाएंगे। खास बात यह है कि अब हमारे बंदरगाह सिर्फ जहाजों के लंगर डालने की जगह नहीं, बल्कि ये पोर्ट लेड डेवलपमेंट की आज उन्होंने बात की, यानी समंदर के रास्ते देश की आर्थिक समृद्धि का नया द्वार बनेंगे। शिप्स के जरिए हम कैसे व्यापार बढ़ा सकते हैं, इन सब पर उन्होंने फोकस की बात की। आइए सुनते हैं खुद प्रधानमंत्री मोदी ने देश की इस रफ्तार और गति शक्ति को लेकर लाल किले से क्या क्या कहा।
0: गति शक्ति, यह गति शक्ति देश के अंदर सीमलेस फास्ट कनेक्टिविटी पर हमें बल देना होगा, शहरों को हाई स्पीड रेल से हमें जोड़ना होगा, मॉडर्न हाईवे चाहिए, इनलाइन वाटरवेज चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक की व्यवस्था चाहिए। हमें पोर्ट को सिर्फ सामान उतारना चढ़ाने की जगह नहीं, दुनिया के शिप्स आकर के लंगर हो जाए इतना नहीं, हमें हमारे पोर्ट को पोर्ट लेड डेवलपमेंट ग्रोथ की दिशा में हमें आगे बढ़ना होगा।
3: प्रधानमंत्री मोदी जब आज लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के संकल्प को स्वर दे रहे थे, तब रक्षा का क्षेत्र जो उनकी सरकार की प्राथमिकताओं में हमेशा रहा है उसका खास जिक्र हुआ। बीते एक दशक में रक्षा क्षेत्र में भारत सिर्फ खरीदार होने से आगे बढ़कर अब डिफेंस सप्लायर या विक्रेता के रूप में एक बड़ी पहचान बनाता जा रहा है। 80वें स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में डिफेंस प्रोडक्शन में चौगुना बढ़ोतरी की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को बताई। भारत के रक्षा निर्यात की सबसे खास बात है भारत की विश्वसनीयता, देश की संप्रभुता की हर कीमत पर रक्षा की राष्ट्र की नीति और हमारे डिफेंस प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता की कसौटी दोनों भारत के रक्षा क्षेत्र को दुनिया में एक नई पहचान देते हैं। हमारे रक्षा क्षेत्र का बढ़ा हुआ आत्मविश्वास 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सामने आया। ऑपरेशन सिंदूर की शक्ति ने भारत के रक्षा क्षेत्र के प्रति दुनिया का उत्साह बढ़ाया। आज लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन में भारत के रक्षा क्षेत्र का आत्मगौरव भी दिखा। देखिए,
0: पिछले 12 साल में भारत ने एक नई रफ्तार पकड़ी, तेज गति से हम आगे बढ़ रहे हैं और देशवासियों का संकल्प है कि अब 140 करोड़ देशवासियों के संकल्प को सामर्थ्य को रोकना नामुमकिन है। प्यारे देशवासियों, पिछले 12 वर्षों में डिफेंस प्रोडक्शन करीब 4 गुना,
1: भारत का रक्षा उत्पादन 4 गुना बढ़ना सिर्फ एक आंकड़ा भर नहीं, रक्षा शक्ति में ये चौगुनी बढ़ोतरी भारत के बढ़े आत्मविश्वास की दीन दुनी रात चौगुनी तरक्की है। 2014 से 16 में भारत का रक्षा उत्पादन 46,429 करोड़ रुपए था, जो 2025-26 में बढ़कर 1,78,000 करोड़ रुपए पहुंच गया। हर साल भारत का रक्षा उत्पादन बेहद तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। 2024-25 के मुकाबले 2025-26 में रक्षा उत्पादन में 15.6% की बढ़ोतरी हुई। रक्षा उत्पादन ने निर्यात की संभावनाओं को भी पंख लगा दिए। 2013-14 में सिर्फ 686 करोड़ का रक्षा निर्यात करने वाला भारत 2025-26 में 38,424 करोड़ का रक्षा निर्यात करने वाला देश बना। अब भारत 80 से ज्यादा देशों को रक्षा उत्पाद बेचता है।
0: मेरे प्यारे देशवासियों, डिफेंस में आत्मनिर्भर होना अब भारत ने अनुभव कर लिया, दुनिया ने अनुभव कर लिया है, इसके बिना कोई चारा नहीं है। विश्व जब अपनी अपनी ही सोच रहा है तब भारत विश्व के लिए बाजार बन करके नहीं रह सकता है। हमें डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना हुआ, नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस टेक्नोलॉजी डेवलप करके हमें ग्लोबल सप्लायर बनने की दिशा में हमें लक्ष्य लेकर के चलना है। हमें ड्रोन काउंटर ड्रोन सिस्टम को विकसित करना होगा और हाइपरसोनिक डिफेंस टेक्नोलॉजीज उस पर हमें लीडरशिप लेनी होगी। साथियों, साइबर सुरक्षा भी आज हर घर के लिए एक समस्या बन रही है, वो भी एक रक्षा का क्षेत्र है जिसमें हमारे युवाओं की जो सामर्थ्य है उस सामर्थ्य का उपयोग हम देश के और दुनिया के लिए कर सकते हैं।
3: 140 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाला भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है और 2047 तक विकसित भारत का महान लक्ष्य हमारे सामने है। इस लक्ष्य को ऊर्जा आत्मनिर्भरता के बिना हासिल नहीं किया जा सकता। लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रीन इकोनॉमी और ब्लू इकोनॉमी की बात की है। इसके लिए उन्होंने देश में उठाए जा रहे कदमों का जिक्र किया। भारत की पहली हाइड्रोजन शक्ति वाली जो ट्रेन है वहां से लेकर न्यूक्लियर एनर्जी के लिए संसद से पास किए गए शांति एक्ट की बात प्रधानमंत्री ने लाल किले से की है। लाल किले से प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत का जो 99% कोस्टल एरिया एक्सप्लोरेशन के लिए नो गो एरिया था उसे अब गो अहेड एरिया के तौर पर विकसित करने की मंजूरी दे दी गई है। यानी कच्चे तेल के क्षेत्र में अपनी ताकत बढ़ाना भारत की प्राथमिकताओं में शामिल हो गया है। और हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा जिस तरह से अलग अलग ऐसे जो तेल वाले देश हैं जिनसे हम तेल खरीदते थे वहां पर युद्ध की स्थिति पैदा होने की वजह से कैसे पूरे विश्व में और भारत में भी कीमतों पर असर पड़ा, तो ऐसे में तेल के मामले में कैसे भारत को समृद्ध बनाना है इस पर एक बड़ा कदम ये माना जाएगा। पहले के 90 वर्षों में सिर्फ 30% रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन से आगे बढ़कर बीते एक दशक में 100% रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का लक्ष्य पा लेना प्रधानमंत्री मोदी के लाल किले की स्पीच का भी हिस्सा बना। चिप, AI, डेटा सेंटर्स के लिए बहुत बड़ी मात्रा में बिजली की जरूरतों के मद्देनजर एनर्जी सिक्योरिटी की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के अपने भाषण में कही है। देखिए,
0: ग्रीन इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी जो ग्रीन जॉब को भी जन्म देती है, हमें ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी स्टोरेज, ग्रीन मोबिलिटी, ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग, इन ग्लोबल स्केल हमें पा करके रहना है। हमें दुनिया में, दुनिया जब ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा करती रहती है, हम रास्ते खोजते रहते हैं, हम समस्याओं का समाधान दे रहे हैं, और भारत ये ग्रीन मूवमेंट का बहुत बड़ा सामर्थ्य लेकर के चलिए।
1: आज लाल किले से ऊर्जा के क्षेत्र में भारत के विस्तार का विजन और मिशन था। ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की हाल की उपलब्धियों का दस्तावेज आज लाल किले पर रखा गया।
0: जैसे सेमीकंडक्टर की बात हो, क्रिटिकल मिनरल की बात हो, वैसे ही जिस टेक्नोलॉजी की दिशा में हम जा रहे हैं, दुनिया जा रही है, उसमें एनर्जी का महत्व और बढ़ता चला जा रहा है। आपको जानकर के हैरानी होगी, ये जो हमारी रेलवे है, उसका इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हमारे देश में 1925 में शुरू हुआ था। 1925 में इलेक्ट्रिफिकेशन का काम शुरू हुआ, लेकिन 90 साल में, 1925 से लेकर के 90 साल में सिर्फ 30% रेल का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था। यानी 90 साल में 30%। हमारी रफ्तार देखिए, लक्ष्य को पाने के लिए हमारी दौड़ देख लीजिए। हमने इन एक दशक के अंदर 100% काम पूरा कर दिया। अब एनर्जी के बिना भी नई दुनिया को चलाना मुश्किल है, और इसलिए हमें चीप हो, एआई हो, डेटा सेंटर हो, हमें बहुत बड़ी मात्रा में बिजली की जरूरत होगी। एनर्जी सिक्योरिटी ये हमारे समय की मांग है, और इसलिए हमने पहले से ही उस दिशा में एक के बाद एक मजबूत कदम उठाए हैं।
3: आज पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा है, लेकिन आज की सबसे भव्य, सबसे अलौकिक और दिल को छू लेने वाली तस्वीरें आ रही हैं धरती के स्वर्ग यानी हमारे अपने कश्मीर से। आज लाल चौक से लेकर डल झील तक, गुलमर्ग की बर्फीली चोटियों से लेकर आतंकवाद के साए से बाहर निकले शोपियां और पुलवामा तक, चारों तरफ बस एक ही झलक है, तिरंगा। कल तक जहां गोलियों की गूंज सुनाई देती थी, आज वहां वंदे मातरम और भारत माता की जय के उद्घोष से फिजा गूंज रही है। कश्मीर में बदलाव की एक ऐसी शक्तिशाली बयार बह रही है जिससे पाकिस्तान और उसके पाले गए आतंकवादियों के सीने पर समझिए सांप लौट रहा है। स्वतंत्रता दिवस के इस माहौल में श्रीनगर की मशहूर डल झील का नजारा कुछ ऐसा है कि हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाए। झील के नीले पानी में तिरंगे से पटे शिकारे की कतारें एक अद्भुत छटा बिखेर रही हैं। सिर्फ श्रीनगर ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के चप्पे चप्पे पर आज देशभक्ति का ज्वार है। ये तस्वीरें आज सिर्फ आज नहीं बल्कि समझिए कि पिछले कई दिनों से आ रही हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, जहां बच्चों से लेकर युवाओं तक सब तिरंगे के रंग में रंगे। रामबन में छात्रों ने करीब 1300 मीटर लंबा विशाल ध्वज लेकर जब मार्च पास किया तो देखने वालों की आंखें नम हो गई। वहीं गुलमर्ग जहां पर 14,500 फीट ऊंची अपर्वत पहाड़ियां हैं, उन पर घोड़ों पर सवार होकर युवाओं ने ये तिरंगा यात्रा निकाली है। अपने आप में ये एक मिसाल ही कहिएगा। सबसे खूबसूरत तस्वीर आई है पुंछ, डोडा और बारामूला से, जहां मदरसों के बच्चों ने हाथों में तिरंगा थामकर हिंदुस्तान जिंदाबाद और इंडिया इंडिया के ऐसे नारे लगाए जिन्हें सुनकर हर देशवासी का दिल गर्व से झूम उठा है। कभी आतंकवाद का गढ़ रहे शोपियां, कुलगांव, अनंतनाग, पुलवामा, त्राल, पंपोर जैसे जो इलाके हैं उनमें भारी जनसैलाब के साथ बाइक और पैदल तिरंगा रैलियां निकाली गई हैं। आज कश्मीर फिर से संवर रहा है। कश्मीरी पंडित अपनी जमीनों पर गर्व से लौट रहे हैं, अपनी जड़ों को फिर से पा रहे हैं। घाटी में बहती विकास और शांति की इस बयार ने उन आतंकियों और उनके आकाओं की नींद उड़ा दी है जो कश्मीर को हमेशा अंधेरे में रखना चाहते थे। लाल चौक पर तिरंगे को शान से लहराते देख पाकिस्तान परस्तों के सीने में कटार चुभ रही है। वो इस नए और शक्तिशाली भारत की तस्वीर देखकर बौखलाए हुए हैं। लेकिन आप बदलते भारत के बदलते जम्मू कश्मीर से ये जबरदस्त रिपोर्ट देखिए जो आपको गर्व से भर देगी।

जन्नत कहे जाने वाले हमारे जम्मू कश्मीर में इस बार 80वें स्वतंत्रता दिवस पर बदलाव की एक ऐसी ऐतिहासिक बयार बह रही है जो हर देशवासी का सीना गर्व से चौड़ा कर दे। श्रीनगर के ऐतिहासिक लाल चौक से लेकर भारत चीन सीमा से सटे न्योमा और उधमपुर तक सड़कों पर उमड़ा जनसैलाब और हाथ में तिरंगा आजादी के इस पावन पर्व पर नए और बदलते भारत की सबसे खूबसूरत तस्वीर पेश कर रहा है। स्वतंत्रता दिवस के उल्लास में डूबे गुजरात के एक नौजवान ने अपने पूरे शरीर पर तिरंगे के रंग पेंट किए और श्रीनगर के ऐतिहासिक लाल चौक पर राष्ट्रीय ध्वज लहराकर सबका दिल जीत लिया। अलग अलग जिलों में निकाली गई मेगा तिरंगा रैलियों में स्थानीय नागरिकों, युवाओं और स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया।

0: स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सलाल डैम को तिरंगे के रंगों से सजाया गया। केसरिया, सफेद और हरे प्रकाश के बीच डैम से बहता पानी स्वतंत्रता दिवस के इस पर्व पर अद्भुत नजारा पेश कर रहा है।
1: आजादी के इस पावन पर्व पर छत्तीसगढ़ से आई ये तस्वीरें भी आपको देखनी चाहिए। ये वो तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर हर देशवासी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। ये वो तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी, दिल भी गर्व से भर जाएगा। जरा इन चेहरों को देखिए और इन कदमों की ताल को अपने सीने में महसूस कीजिए। कल तक जिन हाथों में खौफ की बंदूकें हुआ करती थी, आज उन्हीं हाथों ने स्वदेशी का दामन थामा है। हथकरघा के वस्त्र हैं और उन्हीं वस्त्रों को सवारा है। और रायपुर के इस मंच पर जब ये महिलाएं उतरी तो ये सिर्फ एक फैशन शो नहीं था, ये बदलते हुए बस्तर की नई और सुनहरी तस्वीर थी। ये मौका था बुनकर सम्मेलन का, सरकार की बेहद संवेदनशील पुनर्वास नीति और सकारात्मक जो पहल है उनका एक सुखद परिणाम इसे आप कह सकते हैं। नक्सलवाद छोड़कर हथियार डाल चुकी सुकमा जिले की 9 महिलाओं ने जब पेशेवर मॉडल्स के साथ रैंप वॉक किया, पूरा ऑडिटोरियम तालियों की गड़गड़ाहट से समझिए गूंज उठा। और मुख्यमंत्री भी वहां विष्णुदेव साय थे और एक उनका आत्मीय संवाद भी इन बेटियों से हुआ और नए सफर के लिए उन्हें ढेरों शुभकामनाएं दी गई। ये दृश्य सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश को ये संदेश दे रहा है कि मुख्यधारा से जुड़ने की चाह, सही मार्गदर्शन हो तो अंधेरे से निकलकर जिंदगी के उजाले में कदम रखना नामुमकिन नहीं है। बंदूक की डरावनी गूंज पीछे छूट चुकी है और अब बस्तर के हाथों में विकास का धागा है, आत्मनिर्भरता का कोसा सिल्क है और गर्व से भरा एक नया सवेरा। आप आजादी के पर्व पर गर्व से भर देने वाली ये रिपोर्ट देखिए।

0: कभी जहां हिंसा का काला साया था, आज वहां छत्तीसगढ़ की समृद्ध हथकरघा विरासत का नूर है। बस्तर की उन गलियों से जहां गोलियों की आवाज गूंजती थी, वहां की बेटियां आज आत्मविश्वास की नई कहानी लिख रही हैं। ये तस्वीरें महज एक रैंप वॉक नहीं, बल्कि हिंसा के अंधेरे को चीरकर विकास और विश्वास की मुख्य धारा में लौटने का जीवंत सबूत है। देखिए कैसे बस्तर की ये अग्निपुत्रियां अब बंदूक छोड़कर हुनर की माला पहन रही हैं। ये सुकमा की वो बेटियां हैं जिन्होंने लाल आतंक का रास्ता छोड़कर सफेद और सुनहरी उम्मीदों का दामन थामा है। कभी जंगलों की ओट में छिपने वाली ये महिलाएं आज रैंप पर किसी प्रोफेशनल मॉडल की तरह आत्मविश्वास से भरी नजर आईं।
1: और रैंप वॉक किए तो कैसा लगा?
2: अच्छा
1: लगा।
2: नक्सली में थी उस समय, जंगल के लिए वहां रहती थी। वहां से आने के बाद बारूद जैसे कई घटना हो जाएगा तो मर भी जाऊंगी बोल के सोच के सिलेंडर की है। सिलेंडर करने के बाद यहाँ आने के बाद पुनर्वास में कदम लेने के बाद इधर रायपुर जाने से इनको जैसे पहले जंगल में कुछ नहीं देखी थी, रायपुर जाने के बाद देखने का मिला है बोल के बता रही।
0: ये सिर्फ फैशन नहीं, बस्तर का नया पैशन है, जहाँ बंदूक नहीं कोसा का धागा भविष्य बुनता है। बस्तर अब अपनी पहचान हिंसा से नहीं बल्कि अपने हुनर और सम्मान से तय कर रहा है। आपको बस्तर के अबूझ माड़ की ये तस्वीरें भी देखनी चाहिए। ये तस्वीरें उस बदलाव की हैं जिसकी कल्पना कभी बेहद मुश्किल मानी जाती थी। ये वही अबूझ माड़ है जहां कभी नक्सलवाद का साया था, आज उसी धरती पर तिरंगा शान से लहरा रहा है। आज तक ब्यूरो।
3: 15 अगस्त सिर्फ एक तारीख भर नहीं है, एक इमोशन है। 1947 का वो दिन नया इतिहास लिख रहा था। विभाजन की त्रासदी की वजह से नया भूगोल भी बना था, लेकिन 15 अगस्त 1947 का सूरज अपने साथ उम्मीदों का उजाला लेकर आया था, क्योंकि उस वक्त 34 करोड़ आबादी वाला ये हिंदुस्तान, उसको अपना स्वतंत्रता का वो अनुभव हुआ था जिसे उस समय के हिंदुस्तान की पुरानी पीढ़ियों ने, बीती सदियों ने पहले महसूस नहीं किया था। एक नया सवेरा। लेकिन 15 अगस्त की तारीख ही क्यों आजादी की तारीख बनी? आज हम इसे पर आपको जरा कुछ बताने वाले हैं। क्या ब्रिटिश हुकूमत की योजना में भारत के स्वतंत्रता की कोई और तारीख थी? 15 अगस्त की ही तारीख को भारत की स्वतंत्रता घोषित करने में लॉर्ड माउंटबेटन की भूमिका क्यों अहम है? क्या 15 अगस्त की इस तारीख का कोई कनेक्शन वर्ल्ड वॉर टू में जापान के सरेंडर की तारीख से भी है? 15 अगस्त 1947 को जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो इस तारीख ने कैसे भारत को एक नई पहचान दी? स्वतंत्रता के इस 80वें वर्ष में आज इस तारीख को इस नजरिए से भी देखने की जरूरत है। 15 अगस्त को मिली स्वतंत्रता के बाद भारत ने अपना संविधान, अपना विधान, अपनी नीति, अपना भविष्य खुद तय किया। इन 80 वर्षों की यात्रा में भारत कई चुनौतियों से जूझा है, कई जगहों पर चूका है, लेकिन उपलब्धियों के ढेरों अफसाने भी हैं। हम आज जो कुछ भी हैं, आज हम 2047 के विकसित भारत की जो कल्पना कर रहे हैं, जिसे आत्मनिर्भर भारत की सोच को लेकर हम एक सपना साकार करना चाहते हैं, उन सब की एक धुरी है 15 अगस्त 1947 की तारीख।

आज अंजना 2.0 भी हमारे साथ हैं, तो स्वतंत्रता दिवस की आपको भी ढेरों शुभकामनाएं। बहुत खास मौका है और देश भर से अलग अलग तस्वीरें और भव्य खबरें आ रही हैं। आज आपके पास बेहद खास मौके पर क्या खबर है बताइए अंजना। आज मैं देश भर से आई आजादी के जश्न की शानदार तस्वीरें दिखाऊंगी। समंदर की लहरों से लेकर आसमान तक तिरंगा लहरा रहा है। दुर्गम इलाकों से लेकर देश के हर कोने में आजादी का जश्न है। हर कोई तिरंगे के रंग में रंगा हुआ है। ये तस्वीरें सबको गर्व से भर देंगी।

0: presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: क्रिकेट में हर खिलाड़ी का अलग रोल होता है, कोई विकेट कीपर, कोई फील्डर, कोई बॉलर, तो कोई बैट्समैन होता है। और जब सब एक साथ मिलकर खेलते हैं तब बनती है कंप्लीट टीम। जैसे पीएनबी वन ऐप, जिसमें फंड ट्रांसफर्स हो या अकाउंट ओपनिंग, लोन हो या एफडी, सब कुछ है जो बनाता है इसे कंप्लीट बैंकिंग ऐप।
3: पीएनबी वन ऐप, बैंकिंग का कैप्टन।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: आगे आगे,
2: अरे उधर
1: उधर किधर?
2: करेक्ट करेक्ट,
3: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: finding myself. That's my moment of Sarah. No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: ये मजबूर हैं पर आप नहीं, बीटेक्स मलहम, दांत खाज खुजली से छुटकारा।
2: अब वही बीटेक्स मलहम ट्यूब में भी उपलब्ध।
3: जिस मिट्टी में फसल उगती है उसी में भारत की स्वतंत्रता की खुशबू है। इस स्वतंत्रता दिवस आइए उन किसानों का सम्मान करें जो हर दिन देश को मजबूत बनाते हैं। मेरे और क्रिस्टल परिवार की ओर से आपके और आपके परिवार को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जिस मिट्टी में फसल उगती है उसी में भारत की स्वतंत्रता की खुशबू है। इस स्वतंत्रता दिवस आइए उन किसानों का सम्मान करें जो हर दिन देश को मजबूत बनाते हैं। मेरे और क्रिस्टल परिवार की ओर से आपके और आपके परिवार को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।

जहां पर कभी नक्सलवादियों की गोलियां चलती थी, जहां पर कभी धरती रक्त रंजित रहा करती थी, आज उसी नक्सल क्षेत्रों में, उसी इलाकों में नक्सल मुक्त होने के कारण विकास, विश्वास और प्रयास का तिरंगा लहरा रहा है, मेरे प्यारे देशवासियों। लेकिन इस चुनौती को हमने कम नहीं आंकना है, इस चुनौती से हमें और भी सावधान रहने की जरूरत है। वर्षों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे, सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था। मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है। लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा।

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
1: तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही. अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे. तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और अंधकार को कोसने से बेहतर है एक दिया जलाना, और स्वतंत्रता उसी उजाले की शाश्वत मशाल है. जय हिंद.
0: आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल पावर्ड बाय वेक्टर्स, भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाले वाटर टैंक्स, टंकी मतलब वेक्टर्स.
2: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.

0: लाल किले से पीएम मोदी के दिमागी नक्सल के उल्लेख पर सुलगी राजनीति, कहा अवसर की तलाश में ऐसे लोग, कांग्रेस का पलटवार, पहले किसानों और युवाओं को पीएम ने कहा था नक्सल। वंदे मातरम पर छिड़ी नई युद्ध, बीजेपी का आरोप, कांग्रेस मुख्यालय में सोनिया खरगे ने किया राष्ट्रगीत का अपमान, कांग्रेस का जवाब, ऐसी कोई कोशिश नहीं। अटारी बॉर्डर पर जोश जुनून जज्बे का रंग, बीएसएफ ने जश्न आजादी की हुंकार भरी, अलग अलग राज्यों में लहराया तिरंगा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन मिश्रा ने लॉ छात्रों से मांगी माफी, कहा अगर भावनाएं आहत हुई तो मुझे खेद, नलसार विवाद में बढ़ा था विवाद। और यूपी में एनालॉग डेयरी प्रोडक्ट्स पर योगी सरकार का बड़ा एक्शन, पनीर घी समेत सभी उत्पादों के निर्माण बिक्री पर रोक, निरीक्षण में मिली थी मिलावट।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: किस मतलब का, जिसमें उबाल का नाम नहीं। भारत माता की जय,
1: भारत माता की जय।
2: देश के लिए कुछ भी कर गुजरने का जज्बा ही देश की सेना को मजबूत बनाता है।
0: वह खून कहो किस मतलब का,

0: पिछले युद्धों से मिले अनुभवों से हमारी रणनीति और तकनीकी में लगातार बदलाव हो रहा है।
1: न्यू जनरेशन वेपन्स एंड इक्विपमेंट्स जो हमारी भारतीय सेना में अभी इस्तेमाल हो रहे हैं, उससे युद्ध प्रणाली में जो गति है और इफेक्ट है, दोनों में बदलाव आ गया है। ये कॉम्बैट वेपन ट्रेनिंग सिमुलेटर है जो रियलिस्टिक ट्रेनिंग को सिमुलेट करता है।
2: यहाँ पर हमने बेसिक ड्रोन फ्लाइंग के लिए हमने यहाँ पर दो प्रकार का ऑब्स्टिकल कोर्स बनाया हुआ है।
3: एक सैनिक को देश के प्रति मर मिटने की भावना, साहस, नेतृत्व और फाइटिंग स्पिरिट उसके सबसे बड़े हथियार हैं।

बदल रहा है और बदल रहे हैं उस युद्ध को जीतने वाले हमारे महायोद्धा। नमस्कार, वंदे मातरम, मैं हूँ श्वेता सिंह। वंदे मातरम के 34 साल पूरे हो गए और ऐसे हम आपको आगे के लिए बदल देंगे, अलग अलग योद्धाओं से परिचय कराएंगे। आज हमारी भारत की पैदल सेना आर्मी की इंफेंट्री, क्योंकि चाहे कितनी भी बदल जाए, जब तक हमारे इंफेंट्री सोल्जर, हमारे पैदल सैनिक तिरंगा नहीं चाहते हैं, तब तक जीत पूरी नहीं हो सकती।

0: रणभूमि का एक शाश्वत नियम है, युद्ध चाहे मिसाइलों से शुरू हो या आसमान से गिरते बमों से, अंतिम विजय का तिरंगा हमेशा वही सैनिक गाड़ता है जिसके कदम जमीन पर पड़ते हैं।
1: वॉर इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, वॉरफेयर कीप्स चेंजिंग, कि वॉर हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगी, लेकिन हमें नए वॉरफेयर की तरफ समझना चाहिए और जो दुश्मन या हमारे में चेंजेस आते हैं उसको समझना बहुत जरूरी है।
0: भारतीय इन्फेंट्री वो अजेय ढाल है जिसने हर दौर में अपने पराक्रम से इतिहास के पन्नों को स्वर्णिम बनाया है, जान की बाजी लगा दी है पर देश की सीमाओं पर आंच नहीं आने दी है।
2: देश की रक्षा के लिए कर्तव्य, सम्मान और सर्वोच्च बलिदान देने की भावना और अपने आप में एक अलग पहचान देता है।
0: लेकिन 21वीं सदी का युद्ध क्षेत्र पूरी तरह बदल चुका है। आज की जंग केवल बारूद और गोलियों की नहीं रही बल्कि तकनीक, नेटवर्क, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा ड्रिवन वॉरफेयर की बन चुकी है।
3: न्यू जनरेशन वेपन्स एंड इक्विपमेंट्स जो हमारी भारतीय सेना में अभी इस्तेमाल हो रहे हैं, उससे युद्ध प्रणाली में जो गति है और इफेक्ट है दोनों में बदलाव आ गया है।
0: वंदे मातरम के 14वें सीजन में हम आपको दिखाएंगे कि हमारी सेना भविष्य के युद्ध के लिए खुद को किस तरह तैयार कर रही है। आज का भारतीय सैनिक केवल अपनी पारंपरिक वीरता पर निर्भर नहीं है बल्कि आधुनिक तकनीकों, घातक हथियारों और डिजिटल संचार प्रणाली से पूरी तरह लैस है।

भारतीय थल सेना ने अपनी पारंपरिक रणनीतियों को भावी युद्ध की जरूरतों के हिसाब से पूरी तरह रीडिजाइन किया है। अब हमारे पैदल सैनिक केवल सैनिक नहीं बल्कि एक पूरा कॉम्बैट नेटवर्क है। ये पराक्रम और आधुनिकता का एक ऐसा बेजोड़ संगम है जिसने भारत की इन्फेंट्री को दुनिया की सबसे खूंखार और मारक पैदल सेना में तब्दील कर दिया। हम आपको देश के हर मोर्चे पर तैनात सैनिकों के हाथों को मजबूत करते हथियार और शक्तिशाली बनाते प्रशिक्षण से रूबरू कराएंगे और इसे एक सूत्र में पिरोने के लिए हम पहुंचे देश की सबसे पुरानी राइफल रेजिमेंट राजपुताना राइफल्स में, क्योंकि जब हम इस रेजिमेंट के 1775 से 2026 का सफर दिखाएंगे तो 3 सदियों के फासले में सशक्त भारतीय सैनिकों की झलक आप खुद ब खुद देख पाएंगे।

0: युद्ध के मैदान में जब एक भारतीय सैनिक उतरता है तो उसकी मारक क्षमता ही जीत और हार के उस अंतर को तय करती है। आज भारतीय सेना का एक जवान केवल एक बंदूकधारी जवान नहीं है, बल्कि वो अपने आप में एक पूरी की पूरी युद्ध प्रणाली है। जहां तक हथियारों का सवाल है, भारतीय इन्फेंट्री के एक सैनिक के पास आज अत्याधुनिक हथियार मौजूद है।
1: युद्ध में विजय हासिल करने के लिए जवानों के जज्बे के साथ साथ उनकी उंगलियों के नीचे मौजूद ट्रिगर की ताकत भी मायने रखती है। भारत ने अपनी इन्फेंट्री को आधुनिक तकनीक से लैस करने के साथ साथ उसके हथियारों के पूरे बेड़े का कायाकल्प कर दिया है। भारतीय सेना ने दुनिया की सबसे घातक असॉल्ट राइफल्स और सपोर्ट वेपन्स को अपनी पंक्तियों में शामिल कर लिया है। आज हमारे जवानों के हाथों में सिग सॉयर से लेके AK-203 असॉल्ट राइफल्स सुशोभित हैं।
2: AK-203 ये एक इंडिजिनस वेपन है जो भारत में ही इसका मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। ये भी एक लॉन्ग रेंज वेपन है जो काफी कारगर साबित होता है। 7.62 mm 6 और ये भी लंबी दूरी का हथियार है, काफ़ी एक्यूरेट और काफ़ी प्रभावशाली है, जो हमने पिछले विभिन्न एक्सरसाइजों में हमने इसका आंकलन किया है, तो ये भी काफ़ी बढ़िया हथियार शामिल हुआ है।
3: इसका नाम है AK-203 असॉल्ट राइफल। ये पहले सेना के अंदर AK-47 का इस्तेमाल किया जाता था, अभी इसका लेटेस्ट वर्जन AK-203 को सेना के अंदर शामिल किया गया है। AK-47 के बनिस्पत इसका रिकॉयल कम और एक्यूरेसी ज़्यादा होने के कारण हम लंबे रेंज पर निकलने वाले टारगेट को बर्बाद कर सकते हैं। इसके साथ बैस 5 मैगजीन आते हैं, उससे हम लड़ाई में ज़्यादा एमिनेशन कैरी कर सकते हैं और इसका फायर पावर भी बढ़ जाता है।
1: AK-203 असॉल्ट राइफल्स भारत में स्वदेशी रूप से निर्मित है। ये रूस के सहयोग से बन रही है। भारतीय जवानों को क्लोज क्वार्टर बैटल यानी आमने सामने की लड़ाई में अचूक बढ़त दिला रही है। AK-203 अपनी अनुकूलता, अटूट मजबूती और सटीक मारक क्षमता के लिए जानी जाती है, जो उत्तर पूर्व के घने जंगलों से लेकर लद्दाख के बर्फीले मैदानों तक हर परिस्थिति में बिना रुके फायर कर सकती है। इसके अलावा भारतीय सेना फ्रंटलाइन ट्रूप्स, स्पेशल फोर्सेस, घातक प्लाटून के लिए उनकी जरूरतों के हिसाब की राइफलें इस्तेमाल करती है। अब जो LMG इस्तेमाल में है उसका रेट ऑफ फायर पहले के मुकाबले कहीं अधिक है।
2: नेगेव LMG जो कि एक लाइट मशीन गन है, ये लंबी दूरी का हथियार है और काफी कारगर और एक्यूरेट वेपन साबित होता है युद्ध प्रणाली में।
1: साथ ही जो नाइट विजन और थर्मल वेपन साइट्स हैं, वो बेहद कारगर है।
4: ये एक स्पोटोस्कोप है, आप लोगों ने बाइनोकुलर के बारे में सुना होगा, जिसमें संतरी कंटिन्यूसली बाइनोकुलर से देखते हुए सर्वेलेंस करता है। दिन के समय सर्वेलेंस करने के लिए एक संतरी को कंटिन्यूसली इसके ऊपर खड़े रहने की जरूरत नहीं है। संतरी बंकर के अंदर हो सकता है, बाहर बर्फ गिर रही है, एकदम हार्श वेदर है और टेम्परेचर बिल्कुल लो है, इसको हम बाहर लगा सकते हैं ओपन के अंदर, किसी छुपाव वाले इलाके के अंदर। संतरी टैब के सहारे बंकर में बैठ के पूरी सर्वेलेंस कर सकता है। अच्छा। और दुश्मन की एक एक एक्टिविटी को नोटिस कर सकता है।
1: इसके अलावा स्नाइपर्स के क्षेत्र में भी भारतीय सेना ने एक बड़ी छलांग लगाई है। नए उपकरणों ने भारतीय सेना की काउंटर स्नाइपिंग क्षमता को कई गुना बढ़ा दिया है, जिससे मीलों दूर छिपा दुश्मन भी अब सुरक्षित नहीं है। सिर्फ व्यक्तिगत हथियार ही नहीं, बल्कि इन्फेंट्री को सपोर्ट देने वाले हथियारों को भी पूरी तरीके से अपग्रेड किया गया है।

0: ये एक स्नैपर है जिसका नाम है 8.6 mm साको स्नैपर राइफल। अभी इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर बाइपॉड की सुविधा दी गई है, इसके अलावा इसके अंदर बोल्ट एक्शन है जिसके वजह से क्या है इसके अंदर पुर्जे की मोमेंट नहीं होती, जिसके अंदर वजह से क्या है इसके अंदर एक्यूरेसी ज़्यादा मिलती है। दूसरी बात है इसके अंदर पिकातनी रेल की सुविधा दी गई है जिसके वजह से दिन के समय जिस प्रकार से हम साइट लगा के फायर करते हैं उसी हिसाब से क्या है इसके अंदर नाइट के समय भी हम TI साइट लगा के उसको हम फायर के अंदर शामिल कर सकते हैं, जिसके वजह से दिन और रात के समय हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: नए जमाने के ये हथियार साफ संदेश देते हैं कि भारत ने अपनी पैदल सेना को इतना लीथल और घातक बना दिया है कि अब दुश्मन के पास बच निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा।
2: इन्फेंट्री यानी पैदल सेना को क्वीन ऑफ द बैटलफील्ड माना जाता है। क्वीन क्यों? क्योंकि जिस तरीके से चेस के खेल में जो रानी होती है वो चुस्त शक्तिशाली निर्णायक चालें चल सकती है, उसी तरीके से होती है इन्फेंट्री। अब भारतीय इन्फेंट्री को लेकर, उनके बल को लेकर, उनकी ताकत को लेकर किसी तरह का संशय नहीं, लेकिन युद्ध के बदले स्वरूप में किस तरीके से ये खुद को ढाल चुके हैं वो भी अपने आप में अनोखा है।
1: हथियार चाहे कितने भी आधुनिक क्यों न हो, उनकी असली ताकत इस बात पर निर्भर करती है कि उन्हें इस्तेमाल करने वाले हाथ कितने प्रशिक्षित हैं। आधुनिक समय के युद्ध अब केवल मैदानों या पहाड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये जंग अब शहरों की तंग गलियों, ऊंची इमारतों और साइबर स्पेस तक फैल चुकी है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय सेना ने अपनी इन्फेंट्री के प्रशिक्षण में भी कई बदलाव किए हैं। अब पारंपरिक शारीरिक अभ्यास के साथ साथ जवानों को सिम्युलेटेड एनवायरनमेंट, ऑगमेंटेड रियलिटी और हाइब्रिड वॉरफेयर ड्रिल्स का कड़ा अभ्यास कराया जा रहा है।
2: तकनीक के साथ एक सबसे बड़ी चीज ये होती है कि वो बहुत तेजी से बदलती है, और तेजी से बदलती हुई तकनीक के लिए आपको प्रशिक्षित भी उतनी ही तेजी से होना है। तो इस तरह से जब ड्रोन्स होते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप केवल सामान्य रूप से जो लोग इस्तेमाल करते हैं, यानी कि एक कैमरे के रूप में, उसको केवल एक कैमरे के रूप में इस्तेमाल नहीं होता है, बल्कि आज के युद्ध में ये एक हथियार के रूप में इस्तेमाल होता है। अब अगर हम उन सोफिस्टिकेटेड ड्रोन्स को देखें, उस सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी को देखें, तो वो उतनी ही महंगी टेक्नोलॉजी भी है, महंगी तकनीक भी है, और अगर आप सीधे फील्ड में जाकर उसका इस्तेमाल करने लगते हैं तो उसका सीधा मतलब हो जाता है कि कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रह जाता। तो अब कॉस्ट इफेक्टिव रखने का एक बहुत बड़ा तरीका है कि आप इस तरह के सिम्युलेटर्स पे ट्रेनिंग लें, और खासकर जब हम अटैक ड्रोन्स की बात करते हैं तो वो सिंगल यूज होते हैं। तो एक सैनिक इस कुर्सी पर बैठकर एक सिम्युलेटर पर इस तरह की ट्रेनिंग लेकर उस असली युद्ध भूमि के लिए तैयार हो जाता है।
1: वर्चुअल रियलिटी हेडसेट पहनकर ये सैनिक इस कमरे में होते हुए भी एक ऑपरेशन का अनुभव हासिल कर रहे हैं। असली गोलियों के बिना ही वास्तविक युद्ध जैसा अभ्यास कर रहे हैं। आज की ट्रेनिंग सैनिकों की मानसिक और तकनीकी क्षमता को निखारने पर केंद्रित है। जवानों को दुश्मन के डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक हमलों को समझने, अपने संचार चैनलों को सुरक्षित रखने और युद्ध के दौरान मिलने वाले बड़े डेटा में से काम की जानकारी तुरंत चुनने का प्रशिक्षण दिया जाता है।
3: भविष्य के योद्धा को फिजिकल रूप से फिट नहीं बल्कि मानसिक रूप से स्वस्थ और तकनीकी रूप से सक्षम होना भी जरूरी है। उसको आधुनिक बैटलफील्ड में ड्रोन्स, सेंसर और कम्युनिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल करना आना जरूरी है।
1: भारतीय सेना का ये नया ट्रेनिंग मॉडल ये सुनिश्चित करता है कि हमारा सैनिक मानसिक, शारीरिक और रणनीतिक रूप से हर तरह के आधुनिक युद्ध को जीतने के लिए हमेशा तैयार रहे।
2: आधुनिक युद्ध भूमि का एक फलसफा है, जो पहले देखेगा वो जीतेगा। और इसी को आत्मसात करते हुए भारतीय सेना ने ड्रोन को अपनी ट्रेनिंग में, अपने ऑपरेशंस में पूरी तरीके से शामिल किया है। आपको हमने बैटल ऑब्स्टिकल कोर्स तो कई बार दिखाया, जहां पर सैनिक अलग अलग तरह के अवरोध से गुजरते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये अपने आप में अनूठा एक ड्रोन ऑब्स्टिकल कोर्स है। यानी कोई भी दीवार, कोई भी छत, कोई भी इलाका भारतीय सैनिकों को इन ड्रोन्स को आगे बढ़ाने से रोक नहीं सकता। आज के युद्ध में ये बहुत निर्णायक है।
1: भारतीय सेना की छोटी इन्फेंट्री टुकड़ियों से लेकर बड़ी बटालियनों तक हर स्तर पर ड्रोन्स का इस्तेमाल अब सामान्य हो चुका है। इसने हमारे सैनिकों को बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी आंखों से न दिखने वाले इलाकों में भी पूरी तरह हावी होने की ताकत दी है।
3: ड्रोन ऑब्स्टिकल कोर्स मतलब होता है, यहाँ पे हमने बेसिक ड्रोन फ्लाइंग के लिए हमने यहाँ पे दो प्रकार का ऑब्स्टिकल कोर्स बनाया हुआ है, फेज वन और फेज टू। फेज वन में हमारे पास में यहाँ पे चार ऑब्स्टिकल हैं, जैसे कि सबसे पहले रूप टॉप ऑब्स्टिकल, नंबर दो पे हमारा टनल ऑब्स्टिकल, नंबर तीन पे लूप होल ऑब्स्टिकल, नंबर चार पे हमारा होम एंट्रेंस ऑब्स्टिकल।
2: मतलब ये रूफ टॉप ऑब्स्टिकल है तो उसमें ऊपर से एंटर कर जाएगा, जैसे टनल में बीच से जाएगा आपका ड्रोन।
3: अच्छा, यस मैम। और फेज टू में हमारे यहाँ पे इंटरमीडिएट ड्रोन ऑब्स्टिकल है, जिसमें फर्स्ट में हमारे पास में है लॉबी एंट्रेंस ऑब्स्टिकल। अगर हमें किसी भी रूम एंट्रेंस में घुसने के बाद में अगर हमें लॉबी एंट्रेंस करना है तो यहाँ पे किस प्रकार से करना है, हम यहाँ पे ड्रोन की ट्रेनिंग करवाते हैं। उसके बाद में हमारे पास में यहाँ पे रूम एंट्रेंस ऑब्स्टिकल है और राउंड सर्कल ऑब्स्टिकल है।
1: इन्फेंट्री जवान अब अपनी हथेली, जेब या छोटे बैग में आ सकने वाले माइक्रो और नैनो ड्रोन्स का इस्तेमाल भी करते हैं।
4: मैं ऑफिसर टीम में ड्रोन ऑपरेटर की भूमिका को निभाता हूँ, और यहाँ ये ड्रोन ब्लैक हॉर्नेट नैनो है, जिसको कि हम क्लोज टारगेट रेकी और डॉग क्लेंस और रूम इंटरवेंशन में यूज करते हैं। यहाँ बहुत ही हल्का और लो नॉइस प्रोड्यूस करता है, और यहाँ इतना छोटा है कि हम इसको छोटी सी छोटी जगह में ले जाके सर्वेलेंस कर सकते हैं।
1: ये तकनीक सैनिक को बिना अपनी जान जोखिम में डाले किसी भी जगह छिपे दुश्मन की सही संख्या, उसके पास मौजूद हथियारों और उसकी लोकेशन की लाइव वीडियो हासिल करने की सुविधा देता है। भारतीय सेना द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे ड्रोन्स किसी भी मौसम में और शून्य से नीचे के तापमान में भी लगातार निगरानी कर सकते हैं।
5: ये एक हमारा सर्विलेंस ड्रोन है, जिसकी डे और नाइट कैपेबिलिटी है। ये आत्मनिर्भर भारत मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया है, और इस ड्रोन ने हमें ऑफ सिंदूर में काफ़ी हद तक हेल्प की है, ताकि हम अपने टारगेट्स और अपने दुश्मनों को नेस्तनाबूद कर सकें।
1: इन्फेंट्री के ड्रोन्स सिर्फ निगरानी तक सीमित नहीं है, वो हमला करने में भी सक्षम है। भारतीय सेना ने कामिकाजी ड्रोन्स को भी अपनी इन्फेंट्री का हिस्सा बनाया है। ये लॉयटरिंग म्यूनिशन हवा में लंबे समय तक मंडरा सकते हैं, और जैसे ही दुश्मन का कोई टैंक, बंकर या गाड़ी दिखता है, ये मिसाइल की तरह सीधे उससे टकरा कर उसे नष्ट कर सकते हैं। इस तकनीक ने भारतीय इन्फेंट्री को दुश्मन पर दूर से ही सटीक और विनाशकारी हमला करने की वो शक्ति दे दी है, जिसने पारंपरिक पैदल युद्ध के तौर तरीकों को बदल कर रख दिया। ये एक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग ड्रोन है, जो कि एक्सट्रीम परिस्थितियों में बहुत कारगर है। एक्सट्रीम परिस्थितियां यानी पहाड़ी क्षेत्र, हाई ऑल्टीट्यूड, जहां पर तापमान बहुत अधिक ठंडा हो सकता है, वहां भी ये ड्रोन सर्वोच्च क्षमता पर काम करते हैं।
6: हमारी भारतीय सेना में पिछले कुछ सालों से भिन्न भिन्न प्रकार के ड्रोनों को बड़ी संख्या में शामिल किया गया है।
2: और ये मेड इन इंडिया भी है?
6: जी जी, जो सब ड्रोन है मेड इन इंडिया, सभी हमारे भारतीय कंपनी द्वारा बनाए गए हैं।
2: अच्छा, तो ये किस किस तरह की ड्यूटीज के लिए ये काम आते हैं, क्या इनके फीचर्स हैं?
6: जी, सभी ड्रोन जो है दिन और रात के समय सर्वेलेंस करने की ड्यूटी में काम आते हैं। इन सभी ड्रोनों में दिन और रात के समय में लगने वाले कैमरे लगे हुए हैं। जैसे ये ड्रोन है, इसमें दो प्रकार के पेलोड लगे हुए हैं, डे पेलोड और नाइट थर्मल पेलोड। डे पेलोड की 20 गुना तक की जूमिंग कैपेसिटी है, जिससे हम दुश्मन की एक्टिविटी पर नजर रख सकते हैं और अपने एआर की रिस्पॉन्सिबल एरिया की निगरानी कर सकते हैं।
1: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के ड्रोन्स ने दुश्मन के क्षेत्र में विध्वंस किया था और दुश्मन के इरादों को भांप कर अपने क्षेत्र की रक्षा भी की थी।
2: जितना जरूरी है एक मशीन के आधुनिकीकरण को देखना, उतना ही जरूरी है मशीन के पीछे के उस व्यक्ति के शौर्य को पहचानना। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, देखते रहिए वंदे मातरम।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो। इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: मुल्तानी खू का कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाए और खांसी को कहे गुड बाय। मुल्तानी खू का कॉफ सिरप।
3: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।

0: 爸，
1: सॉरी यार, गलती हो गई है। ये चोट खर्चा वर्चा।
2: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
1: छक्का
2: सब कैशलेस हो गया
1: है। हाँ, ला भाई मेरा बैट।
3: वो अभी तो ठीक हुआ तू।
4: बिलोटे चार्ज हुआ यार।
5: बैट किसका है?
6: टाटा AIG है तो भरोसा है।
7: जिस मिट्टी में फसल उगती है उसी में भारत की स्वतंत्रता की खुशबू है। इस स्वतंत्रता दिवस आइए उन किसानों का सम्मान करें जो हर दिन देश को मजबूत बनाते हैं। मेरे और क्रिस्टल परिवार की ओर से आपके और आपके परिवार को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।

0: मैनकाइंड फार्मा, दिल से स्वदेशी, जान हिंदुस्तान।
1: In association with
2: Sera Sanitary Wear, it's your moment of Sera. E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: इतिहास गवाह है और वर्तमान में चल रहे युद्ध गवाह हैं कि मिसाइलें आसमान से वार कर सकती हैं, टैंक जमीन को थर्रा सकते हैं, लेकिन जब तक एक इन्फेंट्री का जवान जमीन पर अपने देश का झंडा नहीं गाड़ता है, तब तक एक युद्ध का निर्णय नहीं आता है। ये सही है कि इन्फेंट्री मतलब पैदल सेना, यानी कि पैदल चलने वाली सेना, लेकिन आज के युद्ध में तेजी की भी जरूरत है और इसीलिए क्रांतिकारी बदलाव हमारी इन्फेंट्री के व्हीकल्स यानी उनके वाहनों में भी किए गए हैं।
2: कॉल वन, स्टैंड बाय।

0: जो सेना दुश्मन के हमला करने से पहले या उसके जवाब में जितनी तेजी से अपनी सेना को सही जगह पर तैनात कर सकती है, जीत उसी की होती है। भारतीय इन्फेंट्री ने अपनी मोबिलिटी, अपनी गतिशीलता को कई गुना बढ़ाने के लिए अत्याधुनिक वाहनों का अभेद्य बेड़ा तैयार किया है।
1: आजकल इंडियन आर्मी का फोकस है, क्योंकि ये टेरेन काफी हार्श है और ट्रेचरस है, तो नए न्यू जनरेशन इक्विपमेंट इंडक्ट करने पे काफी फोकस है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये QRFV व्हीकल है, ये स्पेशल पर्पज व्हीकल है जो कि माइन प्रोटेक्टेड और बुलेट प्रूफ व्हीकल है। जब भी कोई ऑपरेशन के लिए सेना को निकलना होता है तो इसमें से हमारे जवान तैनात होते हैं, और इसके बाद इससे इनको एक प्रोटेक्शन मिलता है और ये आड़ के पीछे फिर सपोर्ट लेते हुए निकलते हैं और अपनी कार्रवाई करते हैं आगे की।
2: मतलब एक चलता फिरता बंकर के तौर पर मैं इसे देख सकता।
1: बिल्कुल।
0: सीमा पर सुपर हाई ऑल्टीट्यूड वाले इलाकों में तेजी से पहुंचने के लिए सेना ने ऑल टेरेन व्हीकल्स और विशेष लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल्स को बड़ी संख्या में तैनात किया है। सैनिकों को दुर्गम पहाड़ों पर भारी भरकम वजन उठाकर पैदल लंबी दूरी तय न करनी पड़े, इसके लिए भी कई तरह के बदलाव किए जा रहे हैं, जैसे ये रोबोटिक म्यूल्स। आज हमारी इन्फेंट्री मैकेनाइज्ड मोबिलिटी के एक नए युग में प्रवेश कर चुकी है, जहां अत्याधुनिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स स्वदेशी रूप से विकसित किए गए हैं। ये वाहन नदियों, दलदल, बर्फीले मैदानों को बिना किसी रुकावट के पार कर सकते हैं।
3: ये एक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है जिसमें लड़ाई के दौरान स्टिक्स, जो कि इन्फेंट्री है, अपने क्रू, तीन क्रू के अलावा 7 की स्टिक, जो कि लड़ाई में नीचे उतर के दुश्मन के बंकरों पे अटैक करते हैं या असॉल्ट करते हैं, उनको अंदर बिठाया जाता है। आप देख सकते हैं कि लाइनअप हो रखा है। इस BMP की खासियत ये है कि ये एक तो हल्की है, 14 टन की है, और यहाँ पहाड़ी इलाकों में पासेस में आराम से ऊपर जा सकती है। उसके अलावा इसमें टैंकों को बर्बाद करने के लिए ATGM दिया गया है।
2: सब इस व्हीकल के बारे में बताएं, क्योंकि ज्यादातर समय तो यहाँ पर स्नो रहता है पूरे इलाके में।
4: जी, ये मैम, ये पोलारिस 550, हाँ। ये पोलारिस कंपनी से बना हुआ है। ये सेना में इसीलिए दिया गया है कि मोबिलिटी बढ़ाने के लिए,
2: हाँ।
4: जहाँ पे 4-व्हील व्हीकल जा नहीं पाता है, वहाँ पे ये ले जाके हम आराम से ट्रूप्स को एक जगह से दूसरे जगह आसानी से ले जा सकते हैं।
2: अच्छा, मतलब जब पूरा बर्फ रहती है
4: जी,
2: तो उसमें बहुत,
4: जी जी, और स्टार्टिंग में जो -डिग्री है, हाँ। उसमें भी आसानी से स्टार्ट हो जाता है,
2: हाँ।
4: जो एविएशन का फ्यूल इसमें डालते हैं, इसीलिए
2: अच्छा
4: -डिग्री में भी वो आसानी से स्टार्ट हो सकता है।
0: मोबिलिटी के इस बेजोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे बड़ा फायदा ये है कि हमारे पैदल सैनिक बिना थके पूरी ऊर्जा और पूरे गोला बारूद के साथ सीधे युद्ध के क्षेत्र में पहुंच सकते हैं। भारतीय इन्फेंट्री की ये सुपर फास्ट मोबिलिटी सुनिश्चित करती है कि देश की सीमाओं पर किसी भी आपात स्थिति में हमारी प्रतिक्रिया तुरंत, घातक और निर्णायक होगी।
2: भारतीय सेना का स्वर्णिम इतिहास रहा है। हमने कठिन से कठिन परिस्थितियों में युद्ध लड़े हैं, जीते हैं, लेकिन बदलते समय के साथ पारंपरिक रणनीतियां काफी नहीं होती हैं, और तब जन्म लेती हैं वो विशेष रणनीतियां और वो खास दस्ते जिनके सामने दुश्मन थर्रा उठता है।

0: और एसिमेट्रिक वॉरफेयर के इस दौर में भारतीय सेना ने एक ऐसी विशेष स्ट्राइक फोर्स का गठन किया है जो पारंपरिक इन्फेंट्री और एलीट पैरा स्पेशल फोर्सेस के बीच के अंतर को पाटती है। नाम है भैरव और नाम के अनुसार ही ये बटालियन दुश्मन के मन में भय पैदा करने और उसका सर्वनाश करने के लिए पूरी तरह समर्पित है। भगवान शिव का शक्तिशाली और उग्र रूप है भैरव, काल के स्वामी, अधर्म के संहारक, और उन्हीं से प्रेरित है भैरव के ये योद्धा।
1: क्रिटिकल रिक्वायरमेंट थी और एज पर द डिकेड ऑफ मॉडर्नाइजेशन, जिसके अंदर की एक बहुत ही क्रिटिकल गैप, ऑपरेशनल गैप को ब्रिज किया जा रहा है, जो कि पैरा एसएफ और नॉर्मल इन्फेंट्री बटालियन के बीच में स्थित रहेगी। टास्क के मुताबिक इसका आकार नॉर्मल इन्फेंट्री बटालियन से छोटा रखा गया है, बट इनके पास काफ़ी ज़्यादा न्यू जनरेशन वेपन्स और इक्विपमेंट दिया गया है, जिससे कि हम इफेक्टिव ऑपरेशन और टारगेट एरिया पर डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं।
0: इन सैनिकों को कमांडो ट्रेनिंग हासिल होती है, इन्हें अत्याधुनिक उपकरणों में दक्षता हासिल है, ये ड्रोन्स के इस्तेमाल में पारंगत हैं, इनका गठन सबसे कठिन इलाकों में तैनाती के लिए है। भैरव बटालियन तकनीकी रूप से समृद्ध है, इन्हें मल्टी डोमेन ऑपरेशन और एयर डिफेंस जैसी आधुनिक वॉर टेक्निक में ट्रेनिंग दी जाती है। हर सैनिक को ड्रोन ऑपरेट करने की ट्रेनिंग है, ये नाइट ऑपरेशंस में खास महारत रखते हैं। भारतीय सेना में फिलहाल भैरों की 15 बटालियन रेज की गई है, लेकिन जरूरत को देखते हुए इस संख्या को 25 तक बढ़ाने की योजना है। भैरों बटालियन की सबसे बड़ी खासियत इसका लीन एंड लीथल, यानी छोटा लेकिन बेहद घातक और फुर्तीला स्वरूप है। इस यूनिट में चुने गए जवानों को बहुत ही कठिन शारीरिक, मानसिक और तकनीकी प्रशिक्षण से गुजरना होता है। ये सैनिक न केवल हैंड टू हैंड कॉम्बैट और सर्जिकल ऑपरेशंस में माहिर होते हैं, बल्कि ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, साइबर ऑपरेशंस और एडवांस ड्रोन पायलटिंग में भी एक्सपर्ट होते हैं। ये फोर्स भारतीय सेना के उस नए विचार का प्रतीक है, जहां युद्ध केवल सैनिकों की संख्या से नहीं बल्कि तकनीकी श्रेष्ठता, गति और अचूक प्रहार से जीता जाता है। एक शक्तिशाली देश वो होता है जो अपनी सुरक्षा के लिए दूसरों के कंधों का सहारा नहीं लेता। हम बात आत्मनिर्भरता की कर रहे हैं, मेक इन इंडिया की कर रहे हैं। भारतीय इन्फेंट्री के कायाकल्प को हम देखें तो उसके मूल में भारत की आत्मनिर्भरता भी है। आपने देखा इन सैनिकों को शूटिंग रेंज पर फायरिंग में यही दक्षता दिखाते हुए, लेकिन उसकी नींव इस मेड इन इंडिया। भारतीय रक्षा क्षेत्र में आई स्वदेशी क्रांति हमारी सेना को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बहुत तेजी से बढ़ रही है। आज हमारे सैनिकों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले बख्तरबंद आर्मर, नाइट विजन गॉगल्स, आधुनिक संचार उपकरण, ड्रोन्स और असॉल्ट राइफल्स का एक बड़ा हिस्सा भारत अपने रक्षा उद्योग DRDO और प्राइवेट डिफेंस स्टार्टअप्स द्वारा बना रहा है। मेक इन इंडिया की इस मुहिम ने भारतीय सेना को न केवल आधुनिक बनाया है, बल्कि इसे रणनीतिक रूप से अधिक स्वायत्त और आत्मविश्वासी भी बनाया है। भारत की मेक इन इंडिया मुहिम में केवल सरकारी कंपनियां नहीं है, बल्कि प्राइवेट कंपनियों की भूमिका भी बहुत बड़ी है।
2: हम स्वागत करना चाहेंगे सैमटल एवियोनिक्स के MD और CEO का, और आपसे मैं सबसे पहले आज ये पूछना चाहती हूँ कि जब हम आत्मनिर्भरता देखते हैं, इतने सालों से बहुत चीज़ों के हिसाब से हम आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं, डिफेंस के क्षेत्र में जब सेल्फ रिलायंस, सेल्फ डिपेंडेंस की बात होती है, तो प्राइवेट क्षेत्र की भूमिका क्या होती है?
3: श्वेता जी, पहली बार आज हमारे सारे दर्शकों को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई थिंक इससे बेटर डे नहीं हो सकता था इस कॉन्वर्सेशन को करने के लिए। जहां तक कि प्राइवेट सेक्टर का सवाल है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि 2001 में प्राइवेट सेक्टर की एंट्री हुई इस क्षेत्र में, जब प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ने इसको, ऐसे बोलना चाहिए, दरवाजे खोले प्राइवेट सेक्टर के लिए. और देखा जाए तो ये जर्नी 25 साल में काफी दूर तक आई है, और स्पेशली पिछले 12 साल में जब से मोदी जी ने इसको एक मेक इन इंडिया के रूप में पुश करना शुरू किया और आत्मनिर्भरता की इंपॉर्टेंस समझनी शुरू करी, तो बहुत आगे तक ये हम पहुंच गए फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कि जो प्रोडक्ट्स अब बनते हैं वो रियली में इंडिजिनस प्रोडक्ट्स, कई क्षेत्रों में इस डिफेंस सेक्टर में इंडिजिनस प्रोडक्ट्स हैं. उसका मैं थोड़ा सा समझाना चाहूंगा दर्शकों को. असली इंडिजिनाइजेशन जिसे बोलते हैं लोकल प्रोडक्ट, वो तभी बनता है जब उसकी डेवलपमेंट भी देश में ही होती है. अगर हम लोग टेक्नोलॉजी कहीं बाहर से लेके यहाँ पे उत्पादन कर रहे हैं तो वो इंडियन प्रोडक्ट नहीं कहलाएगा. तो जो इनोवेशन का रोल है वो एक बहुत उभर कर आया है, और जितने भी प्रोडक्ट हम सेंट्रल में बनाते हैं कम से कम वो सारे के सारे हिंदुस्तान में डेवलप हुए हैं. उसकी टेक्नोलॉजी पूरी, आईपीआर पूरा हिंदुस्तान में है. वो ही असली तरीके से देखा जाए तो हिंदुस्तानी प्रोडक्ट कहलाएगा. खासकर पिछले 1.5 साल में ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो पूरे दुनिया हमारे प्रोडक्ट्स की चर्चा कर रही है, क्योंकि जो क्वालिटी का डेमोन्स्ट्रेशन उस टाइम पे इंडियन प्रोडक्ट्स ने दिया, उससे जो एक पूरे दुनिया ने देखा कि किस, अभी तक शायद सुनते थे, बिलीव नहीं करते थे, पर उसके बाद सबको विश्वास हो गया.
2: जब भी कोई चीज बनती है तो जरूरी नहीं कि वो 100% मेड इन इंडिया है, पर आप लोगों का टारगेट है कि वो 100% मेड इन इंडिया हो, और इसके लिए बहुत मुश्किल है. मतलब एफर्ट्स को हैट्स ऑफ कि हमारे युवा, आपके जैसे युवा बिजनेसमैन वो सब किस तरीके से लगकर ये कर रहे हैं. पर एवियोनिक्स में अगर मैं उस 100% मेड इन इंडिया की बात करूं तो वो कब तक अचीवेबल है?
3: हम लोग ऑलरेडी 70-80% पे खेल रहे हैं.
2: अच्छा.
3: हाँ, और ज्यादातर प्रोडक्ट अब उसको इंडियन ही बोला जाता है. कुछ पार्ट्स बाहर से अमेरिका भी खरीदता है, तो ऐसा नहीं है कि वो इंडियन नहीं बोला जाता. और हमारी डेफिनेशन भी 70% के करीब पहुंच जाए तो फिर वो पूरी तरह से हिंदुस्तानी बन गया. हाँ. तो हम वहां पहुंच चुके हैं. एवियोनिक प्रोडक्ट्स हमारे सारे उसी क्षेत्र में है.
2: मैं अगर ईमानदारी से आपसे कहूं कि इंटरनेशनली जो बाकी चीजें अवेलेबल हैं, क्योंकि ये आप लोगों का हाथ जिन चीजों पर लग रहा है उनमें फेलियर की गुंजाइश है ही नहीं. देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, अगर एक फेलियर होगा तो पूरे देश की सुरक्षा पर सवाल हो जाते हैं. ईमानदारी से अगर मैं कहूं कि आप इंटरनेशनली इनको कंपेयर कीजिए तो आप कहां पर रखेंगे?
3: देखिए, जो प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं वो बेंचमार्किंग हमारी बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से ही होती है. अभी पीछे हमें हाल फिलहाल में यूएस आर्मी का एक प्रोजेक्ट मिला जिसमें हमने उनके लिए एक प्रोडक्ट डेवलप किया, डेवलपमेंट फंडिंग भी मिली हमको.
2: अच्छा.
3: और वो प्रोडक्ट यूएस आर्मी में यूज होगा. वो अब इंडिया में भी हम बात कर रहे हैं और उसके कई और कंट्रीज में भी इंपॉर्टेंस है. तो हमारे जो अब इवॉल्व हो गए हैं सिस्टम्स कि जो क्वालिटी निकल कर आएगी वो ग्लोबल क्वालिटी निकल कर, हनीवेल को हम बहुत प्रोडक्ट्स देते हैं, उनके साथ जब काम करते हैं, बेस्ट कंपनियों के साथ जब हिंदुस्तानी कंपनियां जुड़ती हैं वो एक बेस्ट प्रैक्टिसेस लेकर आती हैं.
2: देश में जो इनोवेटर्स हैं, जो उद्यमी हैं, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस का मौका है, आप एक तो उनको क्या कहना चाहेंगे? दूसरी चीज, मुझे लगता है कि एक जो पूरा शिफ्ट हो रहा है कि अगर जो अभी तक सिर्फ सरकारी कंपनियां बनाती थी, अगर प्राइवेट सेक्टर उसमें आ रहा है तो वो सीधा जॉब शिफ्ट भी दिखाता है. जो नए हैं इनोवेटर्स, जो यंग इनोवेटर्स हैं जिन्हें लगता है हमारे पास ब्रिलियंट आइडियाज हैं, उनके पास भी मौका होता है आप तक पहुंच पाने की?
3: बिल्कुल, बहुत सारी कंपनियां हमारे साथ जुड़ी. हमारे साथ प्रयास रहा है कि जो सप्लाई चेन में हम लोग कंपनियां जोड़े उनमें एक पेशेंस का एटीट्यूड बहुत जरूरी है. अच्छा. ये जो इंडस्ट्री है इसमें सबर के साथ काम करना पड़ता है, जेस्टेशन पीरियड लंबे हैं. मेरा एक मैसेज ये है जो इस इंडस्ट्री को देख रहे हैं, जो जुड़ना चाहते हैं और जो जुड़े भी हुए हैं, वो भी इस बात को रोज रियलाइज भी करते होंगे कि यू हैव टू बी वेरी पेशेंट. पेशेंस इज अ वर्च्यू बिकॉज इसमें टाइम लगता है, आपको पेशेंटली डेवलप करना है. इसमें कोई ऐसा नहीं है आज आप घुसे 2 साल बाद आपका टर्नओवर आ जाएगा. और अगर आपको देश के प्रस्पेक्टिव से लेकर चलें कि भाई आप लॉन्ग टर्म गेम खेल रहे हैं और उसका पर्पस कितना बड़ा है, उस पर्पस के साथ अगर आप जुड़ते हैं तो पेशेंस, जब आप घुसो टाइम लगेगा, सबर रखो, पर टेक्नोलॉजी ऐसी बनाओ जो देश को विदेश में लेकर जाए और हमारे झंडे को बहुत ही बहुत सारी कंट्रीज में फहराए.
2: जब एक सैनिक एक ट्रेनिंग कर रहा होता है, ट्रेनिंग ले रहा होता है, तो वो युद्ध के लिए ट्रेन हो रहा है, लेकिन इस कोशिश के साथ कि शांति बनी रहे, कुछ वैसा ही इस इंडस्ट्री का काम है. और आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, लेकिन देश की ताकत ऐसे ही हाथों से बनती.
4: सर,
0: जैसे जैसे हम भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं, भारतीय सेना का आधुनिक और स्वदेशी रूपांतरण केवल एक सैन्य सुधार नहीं बल्कि भारत के एक वैश्विक महाशक्ति बनने का स्पष्ट प्रतीक है। वीरता, परंपरा और आधुनिक तकनीक का ये अद्भुत त्रिवेणी भारत माता के हर उस सपूत को अभेद्य बनाता है जो सीमा पर मुस्तैद खड़ा है।
4: अभी क्या रहा?
5: जी सर।
4: दो सर।
5: जी सर।
4: दिखाओगे सर?
5: जी सर।
2: तकनीक चाहे कितनी ही बदल जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाहे रियल इंटेलिजेंस पर भारी पड़ जाए, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में सीना तान कर खड़े रहने का जज्बा किसी मशीन से नहीं मिल सकता, वो धड़कता है केवल एक भारतीय सैनिक के दिल में। अभी के लिए इतना ही। अभिषेक सिंह, कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन और हितेश कुमार के साथ मुझे दीजिए इजाजत। वंदे मातरम।

0: in association with
1: Cera Sanitaryware. It's your moment of Cera. E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा.
2: वो सभ्यता संपूर्ण उन्होंने भूल गया है, क्योंकि वो सभ्यता ही नहीं है उनके पास. तो अपने आप को समझते हैं ही इज बॉर्न टू रूल. ये इनके मन में अहंकार है. जब ये पूरा नहीं हो रहा है, हताश होके अत्यंत लो लैंग्वेज, फिल्दी लैंग्वेज उपयोग कर रहे हैं.
3: जो आदमी मानसिक दिवालियेपन में हो, राहुल गांधी उसी श्रेणी में आते हैं. उन्हें संसद के बदले आगरा जैसे संस्थान में रहना चाहिए. और जिसका कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, नीचता की हद है.

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: एक बड़ी खबर इस समय आ रही है, झारखंड में आंदोलन कर रहे छात्रों ने एक ऐलान किया है, 20 तारीख को मुख्यमंत्री के घर का घेराव करने का आंदोलनकारी छात्रों ने यह ऐलान किया है, चेतावनी दी है और ये कहा है कि हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री के घर का हम घेराव करेंगे, हमारी मांगे नहीं मानी जा रही हैं और सीबीआई की जांच की हम मांग कर रहे हैं, जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द करने की हमारी मांग है वो नहीं सुनी जा रही है, सरकार हमारी किसी तरह की मांग को नहीं मान रही है, नाम से बात कर रही है और जो बातचीत हुई भी वो बातचीत किसी भी परिणाम पर नहीं निकली है। तो रांची में अब छात्रों ने ये चेतावनी दी है कि 20 अगस्त को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के घर का घेराव किया जाएगा। सत्यजीत हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं और ये भी कह दिया कि 18 अगस्त तक अगर आपने मांग पूरी नहीं की तो हम ये घेराव करेंगे। सत्यजीत, इस चेतावनी का सरकार पर क्या असर हो सकता है और इस चेतावनी का अर्थ क्या है?
4: देखिए, स्टूडेंट जो है वो एजुटेशन कर रहे हैं, इंटेंसिफाई किया अपना एजुटेशन आज तिरंगा मार्च के बाद। उनका ये कहना था कि गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर लिया, अब भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस के आदर्शों पर चलने का समय आ गया है, उनका साफ तौर से कहना था। और अब उनका ये कहना है कि 11वां से 13वां जेपीएससी को भी रद्द कीजिए, सीजीएल जो है वो उसको भी रद्द कीजिए और सीबीआई जांच बिठाइए। तो पहले जो डिमांड था उससे इनका डिमांड अब जो है उसमें सीधा अब इनका जो है क्लैरिटी आ गया है कि सीबीआई जांच हो तभी ये मानेंगे, यानी 100% डिमांड इनका कंसीड किया जाए। सरकार के तरफ से पैनल ऑफ मिनिस्टर बना था, यहाँ जेएमएम के तरफ से जो प्रवक्ता है
3: सत्यजीत, एक मिनट हम आपको रोक रहे हैं यहाँ पर, आंदोलनकारी छात्रों की बात सुनवा देते हैं, उन्होंने क्या कहा।
5: हमारी जो मांग है जेएसएससी सीजीएल को लेकर के और 11-13 जेपीएससी को लेकर के, रद्द मतलब रद्द, जेपीएससी 11-13 जेएसएससी सीजीएल रद्द और साथ में सीबीआई जांच, और अगर नहीं हो पा रहा है तो माननीय मुख्यमंत्री इस्तीफा दें, माननीय मुख्यमंत्री इस्तीफा दे। यह मंच पहली बार यह मांग कर रहा है कि अगर आपसे सीजीएल और 11-13 जेपीएससी रद्द नहीं हो रहा है तो आप इस्तीफा दें। दूसरा, कल हम लोग महापुतला दहन करने वाले हैं सरकार बहादुर का, झारखंड के 24 जिलों के हर मुख्यालय में, और मुख्य पुतला अल्बर्ट एक्का चौक पे दहन किया जाएगा। पूरे झारखंड के 24 जिलों के छात्र सरकार बहादुर का पुतला दहन करने वाले हैं और रांची में भी पुतला दहन होने जा रहा है। तीसरा, अगर तब भी हमारी मांगे नहीं मानी गई तो मैं झारखंड के तमाम छात्रों से आह्वान करता हूं, 10 तारीख को विधानसभा का घेराव झाकी था, सीएम आवास बाकी है, 20 तारीख को हम सीएम आवास घेरेंगे और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती हम वहीं बैठे रहेंगे।
3: सत्यजीत, छात्रों की मांग जो आप बता रहे थे वो भी हमने सुनवा दिया, सरकार का रुख अभी तक क्या रहा है, क्यों ये आंदोलन लगातार चल रहा है? सत्यजीत
4: शहीद, अब इसको समझाते हैं हम लोग इस तरह से कि अब 11 से 13वां जेपीएससी को भी रद्द करने की मांग कर रहे हैं, उसमें जिसकी बहालियां हुई ऑलरेडी नौकरी कर रहा है, तो अगर उसको कैंसिल करने का मतलब कि उन लोगों को भी नौकरी से निकालना, तो अब ये जो मांगे हैं ये टकराहट को बढ़ाएगी। सीबीआई जांच की जो मांग कर रही है, अगर देख अगर गतिरोध दूर करना है तो दोनों को ही एक दूसरे का के साथ एक टेबल पे बैठ के डायलॉग करना होगा
3: जी।
4: क्योंकि आप अगर सीआईडी जांच कर रही है, जो विनोद पांडे हैं या मनोज पांडे हैं जेएमएम के प्रवक्ता, उन लोगों से हमारी बातचीत हुई फोन पे, तो उनका ये कहना है कि अगर कहीं त्रुटि हो जांच में, जिस तरह से जांच तेजी से बढ़ रहा है, 22-23 लोगों को गिरफ्तार किया गया, ख्यांगते का डे 1 को इस्तीफा ले लिया गया, उस वक्त आंदोलन शुरू भी नहीं हुआ था, उस वक्त जो है इस्तीफा लिया गया। तो ये सारी चीजें हो रही है, इस बीच में सीबीआई जांच क्यों करवाया जाए ये भी छात्रों को बताना चाहिए। अगर स्टेट एजेंसी है तो केंद्र की भी एजेंसी पे क्यों भरोसा।
3: बहुत धन्यवाद सत्यजीत आपका, सत्यजीत हमारे संवाददाता। और आंदोलनकारी छात्रों को लेकर राहुल गांधी पर क्या बात हुई ये भी हम आपको सुनवाते हैं।
6: उड़ला धान झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का होने वाला है और जो उनको समर्थन दे रहे कांग्रेस सरकार राहुल गांधी का भी 2400 जिला में हम लोग दान करने वाले, इसलिए कि राहुल गांधी जी ने ऑडियो कॉल पर हम लोग से बात किए कि हम आपके साथ है। ये ऑडियो कॉल और वीडियो कॉल खेलना बंद करें, अगर आप छात्रों के साथ है तो छात्रों के साथ रहिए। आपकी कोशिश करने के बावजूद भी अगर झारखंड सरकार आपके बात नहीं मान रही है तो सत्ता से आप रिजाइन दीजिए, समर्थन वापस लीजिए, नहीं तो हम तमाम छात्र जितनी मजबूती के साथ हेमंत सोरेन का विरोध कर रहे हैं उससे ज्यादा मजबूती के साथ आपका विरोध करेंगे, ये हम आज बता रहे हैं।
3: हेमंत सोरेन राहुल गांधी का एक साथ उतनी ही शिद्दत के साथ हम विरोध करेंगे, आंदोलनकारी छात्रों ने साफ कह दिया। और अगर मांगे नहीं मानी गई तो 20 को सीएम के घर का घेराव। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: मेरे प्यारे देशवासियों, डिफेंस में आत्मनिर्भर होना अब भारत ने अनुभव कर लिया, दुनिया ने अनुभव कर लिया है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे। हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है।
1: ये आजादी का महोत्सव है, हिंदुस्तान की स्वतंत्रता का उत्सव। स्वतंत्रता के जिस महायज्ञ में राष्ट्र के वीर सपूतों ने प्राणों की आहुति दी, अब वो आजादी अपने 80वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी है। आजादी के इस महापर्व की शुरुआत भारत के प्रेरणा पुंज महात्मा गांधी के आशीर्वाद से होती है। पीएम मोदी सबसे पहले राजघाट पहुंचे और बापू को नमन किया।
2: सीताराम भज प्यारे तू सीताराम।
1: राजघाट के बाद पीएम मोदी सीधे लाल किला पहुंचे। लाहौरी गेट से पीएम का कारवां ऐतिहासिक लाल किला परिसर में प्रवेश किया। इस बार का स्वतंत्रता दिवस उत्सव इसलिए भी खास रहा क्योंकि लाल किले की प्राचीर से पहली बार वंदे मातरम का पूरा गायन हुआ। 12 साल में 13वीं बार लाल किले से पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया।
0: समय हमारा है, मैं सभी देशवासियों से कहूंगा, समय हमारा है, अवसर हमारा है, संकल्प हमारा है, आइए सपनों को संकल्प बनाए।
1: लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने देश के सामने विकसित भारत का विजन रखा और युवाओं के लिए बड़े ऐलान किए। करीब 76 मिनट के संबोधन में पीएम मोदी ने एक तरफ 2047 तक विकसित भारत का संकल्प दोहराया तो दूसरी तरफ आत्मनिर्भरता और शक्ति की सप्तधारा के जरिए विकास का रोड मैप सामने रखा। पीएम मोदी के सप्तधारा विजन का मतलब मैन्युफैक्चरिंग, कृषि और खाद्य, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, गति शक्ति, रक्षा शक्ति, ग्रीन और ब्लू इकोनॉमी और सॉफ्ट पावर है। पीएम ने कहा कि दुनिया के कुछ देश संसाधनों का शस्त्रीकरण कर रहे हैं, अब भारत दूसरों पर निर्भर नहीं रह सकता, हमें आत्मनिर्भर बनना होगा। इनोवेशन, प्रोडक्शन, बैंकिंग, किसान, नौजवान, हर मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने अपनी बात रखी। करीब 76 मिनट के भाषण में पीएम मोदी ने 24 बार शक्ति शब्द का इस्तेमाल किया। विकसित भारत के संकल्पों के साथ पीएम ने देश की युवा पीढ़ी का आह्वान किया और राष्ट्र निर्माण में जुट जाने को कहा। हर बार की तरह इस बार भी भाषण खत्म करने के बाद पीएम मोदी युवाओं के बीच पहुंचे और चलते चलते उनसे संवाद भी किया। आज तक ब्यूरो,

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

बागी नक्सल के उल्लेख पर सुलगी राजनीति, कहा अफसर की तलाश में है ऐसे लोग कांग्रेस का पलटवार, पहले किसानों और युवाओं को भी पीएम ने कहा था नक्सल। वंदे मातरम पर छिड़ी नई जंग, बीजेपी का आरोप, कांग्रेस मुख्यालय में सोनिया खरगे ने किया राष्ट्रगीत का अपमान, कांग्रेस का जवाब ऐसी कोई कोशिश नहीं। अटारी बॉर्डर पर जोश जुनून जज्बे का रंग, बीएसएफ ने भरी हुंकार, तिरंगे में रंगी दुनिया, सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा। रांची में आंदोलनकारी छात्रों की सोरेन सरकार को चेतावनी, 18 अगस्त तक मांगे पूरी नहीं तो 20 को करेंगे सीएम के घर का घेराव, परीक्षा में गड़बड़ी की सीबीआई जांच पर अड़े, सीएम का मांगा इस्तीफा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन मिश्रा ने लॉ छात्रों से मांगी माफी, कहा अगर भावनाएं आहत हुई तो मुझे खेद, नलसार विवाद में बड़ा था विवाद।

नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कहानी 2.0। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। आज कहानी सिर्फ तारीखों की नहीं, आज कहानी उन 80 सालों की है जिन्होंने भारत की तस्वीर बदल दी। 1947 में आजादी के साथ शुरू हुआ सफर कभी विज्ञान में नई उड़ान बना, कभी खेतों में हरियाली लेकर आया, कभी अंतरिक्ष में तिरंगा पहुंचा, तो कभी खेल के मैदान में दुनिया को चौंकाया। लोकतंत्र से लेकर टेक्नोलॉजी तक, सड़क से लेकर सैटेलाइट तक, भारत ने 80 सालों में लंबा सफर तय किया है। तो आज कहानी में देखिए आजादी के बाद 80 साल और उन 80 कमालों की कहानी जिन्होंने भारत को दुनिया में अलग पहचान दिलाई है।

0: आजादी के बाद भारत के सामने सिर्फ देश चलाने की चुनौती नहीं थी, चुनौती थी एक ऐसे भारत को बनाने की जो मजबूत भी हो और लोकतांत्रिक भी। रियासतों का एकीकरण हुआ, संविधान ने देश को दिशा दी, पंचवर्षीय योजनाओं ने विकास का खाका तैयार किया और IIT जैसी संस्थानों ने नई पीढ़ी को विज्ञान और तकनीक से जोड़ा। फिर पहली बार करोड़ों भारतीयों ने अपने वोट से सरकार चुनी और भाषाई पहचान को जगह देते हुए राज्यों का पुनर्गठन किया गया। यानी आजादी के शुरुआती सालों में भारत ने सिर्फ देश नहीं बनाया बल्कि उस भारत की नींव रखी जिसकी कहानी अगले दशकों में और बड़ी होने वाली थी।
1: Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge.
2: आजादी मिली तो भारत आजाद जरूर था, लेकिन पूरा एक नहीं था। अंग्रेजों के जाने के बाद देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी सैकड़ों रियासतों को एक भारत का हिस्सा बनाना। करीब 565 देसी रियासतों के सामने अपने भविष्य का सवाल था। ऐसे वक्त में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रियासतों के विलय का अभियान चलाया। कूटनीति, समझदारी और जरूरत पड़ने पर सख्त फैसलों के जरिए ज्यादातर रियासतें भारतीय संघ में शामिल हुई। आज भारत दुनिया की प्रमुख परमाणु शक्तियों में गिना जाता है, लेकिन इसकी नींव आजादी के तुरंत बाद रखी गई थी। 1948 में भारत ने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की शुरुआत की और इसके केंद्र में थे वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा। भाभा का मानना था कि विज्ञान और तकनीक आने वाले भारत की ताकत बनेंगे। परमाणु ऊर्जा को सिर्फ हथियारों तक सीमित नहीं रखा गया बल्कि बिजली, शोध और वैज्ञानिक विकास से जोड़कर देखा गया। आज बैंकिंग हमारी

आज बैंकिंग हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन आजादी के शुरुआती सालों में भारत को बैंकिंग व्यवस्था को राष्ट्रीय जरूरतों के मुताबिक मजबूत करना था। 1948 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। बैंकिंग के विस्तार और राष्ट्रीयकरण की नीतियों ने गांवों, छोटे शहरों और आम लोगों तक बैंकिंग सेवाओं की पहुंच बढ़ाने का रास्ता तैयार किया। आजादी के बाद भी भारतीय हॉकी का स्वर्णिम दौर जारी रहा। 1948, 1952, 1956, 1964 और 1980 में भारत ने ओलंपिक गोल्ड जीता। इसके बाद 2021 टोक्यो और 2024 पेरिस में कांस्य पदक ने वापसी का संकेत दिया। वहीं हॉकी वर्ल्ड कप में 1971 में कांस्य, 1973 में रजत और 1975 में भारत ने पाकिस्तान को 2-1 से हराकर पहली बार खिताब जीता। आजादी के वक्त भारतीय सिनेमा अपनी शुरुआती पहचान बना चुका था, लेकिन असली बदलाव इसके बाद तेज हुआ। ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों के दौर में राज कपूर, गुरुदत्त और दिलीप कुमार जैसे कलाकारों ने आम आदमी की कहानियों को पर्दे पर उतारा। फिर रंगीन फिल्मों ने सिनेमा की दुनिया बदल दी। धीरे धीरे तकनीक बदली, कैमरे बदले, कहानी कहने का अंदाज बदला। आज थिएटर के साथ ओटीटी भी सिनेमा का बड़ा मंच है। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, लेकिन एक लोकतांत्रिक गणराज्य के तौर पर भारत को पहली व्यवस्था की जरूरत थी। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और भारत गणराज्य बना। संविधान ने नागरिकों के अधिकार तय किए, सरकार की शक्तियों की सीमाएं तय की और लोकतांत्रिक संस्थाओं की भूमिका स्पष्ट की। संविधान निर्माण में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की केंद्रीय भूमिका रही। आज देश में बड़े बड़े हाईवे, बांध, बिजली परियोजनाएं और उद्योग दिखाई देते हैं, लेकिन आजादी के तुरंत बाद भारत के सामने गरीबी, बेरोजगारी और खाद्यान्न की कमी जैसी गंभीर चुनौतियां थी। देश को विकास की एक स्पष्ट दिशा चाहिए थी। इसी सोच के साथ 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई। इसमें खेती, सिंचाई और ग्रामीण विकास की परियोजना को प्राथमिकता दी गई। आज भारतीय इंजीनियर दुनिया की बड़ी कंपनियों से लेकर अंतरिक्ष और तकनीक तक हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना चुके हैं, लेकिन इस तकनीकी ताकत की शुरुआती बड़ी नींव 1951 में पड़ी, जब आईआईटी खड़गपुर अस्तित्व में आया। इसके बाद देश में आईआईटी जैसे संस्थानों का विस्तार हुआ और उच्च तकनीकी शिक्षा का एक मजबूत नेटवर्क तैयार हुआ। भारत में पहली बार आम चुनाव 1951-52 में हुआ। आजाद भारत के लोकतंत्र की ये पहली और बेहद बड़ी परीक्षा थी। करीब 17 करोड़ मतदाता इस चुनाव के लिए पात्र थे। देश के गांवों, कस्बों और शहरों में मतदान केंद्र बनाए गए और लोगों ने पहली बार अपने प्रतिनिधि चुनने के लिए वोट डाला। यहीं से भारत के लोकतांत्रिक सफर की मजबूत शुरुआत हुई। भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत 1920 के दशक में हुई, लेकिन 1936 में ऑल इंडिया रेडियो यानी AIR के रूप में इसकी औपचारिक शुरुआत हुई। आजादी के बाद आकाशवाणी ने देश को जोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई। 1956 में आकाशवाणी नाम आधिकारिक तौर पर अपनाया गया। 1957 में विविध भारती शुरू हुई, जिसने फिल्मी संगीत को घर घर पहुँचाया। आज भारत के हर राज्य की अपनी भाषा, संस्कृति और पहचान है, लेकिन आजादी के बाद राज्यों की सीमाएं तय करना एक बड़ी चुनौती थी। कई इलाकों में भाषा के आधार पर अलग राज्य की मांग उठ रही थी। आंदोलन हुए और सरकार पर दबाव बढ़ा। आखिरकार 1956 में राज्यों के पुनर्गठन की बड़ी प्रक्रिया शुरू हुई और भाषाई आधार पर राज्यों की सीमाओं को नया रूप दिया गया। 1956 में भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना था। आज कंप्यूटर के बिना जिंदगी की कल्पना मुश्किल है, लेकिन भारत में इसकी शुरुआत करीब 70 साल पहले हुई थी। 1956 में कोलकाता के इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट यानी ISI में HEC-2M नाम का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर लगाया गया। 1984 में C-DOT की स्थापना हुई, जिसने देश में स्वदेशी तकनीक विकसित करने का काम किया।

0: आज भारत में एम्स का नाम देश की बेहतरीन चिकित्सा शिक्षा, इलाज और मेडिकल रिसर्च से जुड़ा है, लेकिन इसकी शुरुआत 1956 में हुई, जब नई दिल्ली में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स की स्थापना की गई। एम्स ने डॉक्टरों और मेडिकल विशेषज्ञों की नई पीढ़ी तैयार करने में बड़ी भूमिका निभाई। आगे चलकर देश के अलग अलग हिस्सों में एम्स जैसे संस्थानों का विस्तार हुआ। उन्नीस में बनी डीआरडीओ ने भारत को रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भर बनाने की लंबी यात्रा शुरू की। शुरुआत में इसका फोकस देश की जरूरतों के मुताबिक हथियार और सैन्य तकनीक विकसित करने पर था। इसी कोशिश ने आगे चलकर अग्नि और पृथ्वी मिसाइल, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, पिराका रॉकेट सिस्टम, तेजस विमान, रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैसी तकनीकों को जन्म दिया। आजादी के महज 12 साल बाद भारत ने एक नई दुनिया में कदम रखा, टेलीविजन की दुनिया में। 15 सितंबर 1959 को दिल्ली में भारत का पहला टीवी प्रसारण शुरू हुआ। 1965 में रोजाना टीवी सेवा शुरू हुई और धीरे धीरे इसका दायरा बढ़ता गया। 1972 में मुंबई और अमृतसर तक प्रसारण पहुंचा। यहीं से दूरदर्शन के राष्ट्रीय सफर की असली शुरुआत हुई। आजादी के 14 साल बाद भी गोवा पुर्तगाली शासन के अधीन था। बातचीत के तमाम प्रयासों के बाद दिसंबर 1961 में भारत ने सैन्य कार्रवाई का फैसला किया। ऑपरेशन विजय के तहत सेना, नौसेना और वायुसेना ने मिलकर गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराया। गोवा की मुक्ति ने दिखाया कि भारत अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सवाल पर निर्णायक कदम उठा सकता है। केरल के थुम्बा से पहला साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया गया। मकसद था वायुमंडल और अंतरिक्ष से जुड़ी वैज्ञानिक जानकारी जुटाना। सुविधाएं कम थी, लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों का हौसला बड़ा था। थुम्बा का ये छोटा प्रयोग आगे आने वाली बड़ी अंतरिक्ष उपलब्धियों का शुरुआती अध्याय बना। आजादी के बाद भारत को सिर्फ लोकतंत्र नहीं बल्कि विकास की मजबूत नींव भी चाहिए थी। इसी सोच का बड़ा प्रतीक बनी भाखड़ा नांगल परियोजना। सतलुज नदी पर बनी इस विशाल परियोजना का मकसद था सिंचाई के लिए पानी, बिजली का उत्पादन और खेती उद्योग को नई रफ्तार देना। 22 अक्टूबर 1963 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बांध राष्ट्र को समर्पित किया था। आज भारत दुनिया के बड़े खाद्यान्न उत्पादक देशों में है, लेकिन एक दौर ऐसा था जब देश को अनाज के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। उन्नत बीज, सिंचाई, उर्वरक और आधुनिक कृषि तकनीक के इस्तेमाल से उत्पादन बढ़ने लगा। एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। इसके बाद पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उत्पादन तेजी से बढ़ा। 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर युद्ध छिड़ गया। इसकी शुरुआत पाकिस्तान की ओर से जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत घुसपैठ से हुई। भारत ने इसका जवाब दिया और संघर्ष कश्मीर से बढ़कर अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक पहुंच गया। दोनों देशों के बीच टैंक, तोप और वायुसेना के जरिए भीषण लड़ाई हुई। 1966 में भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ।
1: आजादी के बाद भारत ने अपनी बुनियादी जरूरत से आगे बढ़कर विज्ञान, खेती, बैंकिंग, खेल और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी थी। 1960 और 70 के दशक में भारत ने एक के बाद एक ऐसी उपलब्धियां हासिल की जिन्होंने देश की दशा और दिशा बदल दी। अंतरिक्ष में पहुंचने की तैयारी हो या फिर दूध और अनाज में आत्मनिर्भर बनने की कोशिश, परमाणु क्षमता हो या फिर मीडिया और सिनेमा का विस्तार, हर क्षेत्र में एक नया भारत आकार ले रहा था। अब कहानी उस दौर की जब भारत ने आत्मनिर्भरता की तरफ अपने कदम और तेज किए।
2: Herself, Rita Faria, the medical student from Bombay, the first Indian girl ever to wear a swimsuit in a beauty contest, and the first from her country to win this most coveted title.
0: 1966 में ही रीता फारिया ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीतकर इतिहास रचा था। इसके बाद भारतीय सुंदरियों ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लगातार अपनी जगह बनाई। 1994 में सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स बनी। उसी साल ऐश्वर्या राय ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता। इसके बाद 1997 में डायना हेडन, 1999 में युक्ता मुखी और 2000 में प्रियंका चोपड़ा ने मिस वर्ल्ड का ताज जीता। 2000 में लारा दत्ता मिस यूनिवर्स बनी। 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की स्थापना हुई। विक्रम साराभाई की सोच थी कि अंतरिक्ष तकनीक का फायदा आम भारतीय तक पहुंचना चाहिए। संचार, मौसम, शिक्षा और दूर दराज के इलाकों को जोड़ने के लिए सैटेलाइट तकनीक का इस्तेमाल इसी सोच का हिस्सा था। आगे चलकर यही संगठन भारत को चांद और मंगल तक ले गया। में ही 14 बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। मकसद था बैंकिंग को आम आदमी, किसानों, छोटे कारोबारियों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जोड़ना। इसके बाद बैंक शाखाओं का विस्तार गांवों और छोटे शहरों तक हुआ। बैंकिंग व्यवस्था देश के विकास कार्यक्रमों का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। एक दौर था जब भारत में दूध की कमी थी। देश को डेयरी उत्पादों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। इसी तस्वीर को बदलने के लिए 1970 में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत हुई। इसके पीछे अमूल के सहकारी मॉडल और वर्गीज कुरियन की अहम भूमिका रही। धीरे धीरे गांवों की अर्थव्यवस्था को नई ताकत मिली और दूध उत्पादन तेजी से बढ़ा। यही अभियान आगे चलकर श्वेत क्रांति कहलाया और इसके जनक वर्गीज कुरियन को माना गया। पूर्वी पाकिस्तान में हिंसा और मानवीय संकट के बीच लाखों शरणार्थी भारत पहुंचे। दिसंबर 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। भारतीय सेना ने पूर्वी मोर्चे पर निर्णायक अभियान चलाया और महज 13 दिनों में पाकिस्तानी सेना ने ढाका में आत्मसमर्पण कर दिया। बांग्लादेश का जन्म हुआ और दक्षिण एशिया का भूगोल बदल गया। एक वक्त था जब भारत के बाहर खड़ा स्कूटर सिर्फ गाड़ी नहीं पूरे परिवार की पहचान हुआ करता था। 1972 में बजाज ऑटो ने अपना मशहूर चेतक स्कूटर बाजार में उतारा। धीरे धीरे चेतक घर घर पहुंचा और हमारा बजाज सिर्फ विज्ञापन नहीं मिडिल क्लास की भावना बन गया। इसकी मांग इतनी बढ़ी कि लोगों को कई कई साल इंतजार करना पड़ता था। 1990 तक आते आते इसकी वेटिंग खत्म होने लगी। लेकिन फिर मोटरसाइकिलों का दौर आया और स्कूटर की बादशाहत खत्म होने लगी। 2005 में पुराने चेतक का सफर थम गया। आज स्कूटर की जगह स्कूटी ने ले ली है। शिकार और जंगलों के घटते क्षेत्र के कारण बाघों के अस्तित्व पर खतरा बढ़ रहा था। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया। बाघों के साथ उनके प्राकृतिक आवास को बचाने पर जोर दिया गया। इस अभियान ने भारत के वन्य जीव और पर्यावरण संरक्षण की सोच को नई ताकत दी। राजस्थान के पोखरण में 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। इसे शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट के तौर पर पेश किया गया, लेकिन इस परीक्षण ने दुनिया को भारत की वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमता का एहसास करा दिया। भारत ने साबित किया कि वो परमाणु तकनीक के क्षेत्र में अपने दम पर आगे बढ़ सकता है। 1975 में भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष में पहुंचा। इसका प्रक्षेपण सोवियत संघ की मदद से हुआ, लेकिन इसका डिजाइन और निर्माण भारत में हुआ था। आर्यभट्ट ने भारत को उपग्रह तकनीक और अंतरिक्ष विज्ञान का व्यवहारिक अनुभव दिया। यही अनुभव आगे की बड़ी अंतरिक्ष उपलब्धियों की नींव बना। एक दौर था जब देश में खबरें अखबार और रेडियो के जरिए लोगों तक पहुंचती थी, लेकिन 1975 में पत्रकारिता की दुनिया में एक नया नाम आया, इंडिया टुडे। एक मैगजीन से शुरू हुआ ये सफर धीरे धीरे एक बड़े मीडिया समूह में बदल गया। आज इंडिया टुडे को 50 साल पूरे हो गए। 50 साल में इंडिया टुडे ग्रुप के पास आज तक जैसा नंबर वन न्यूज चैनल है। इंडिया टुडे नाम का बेहतरीन इंग्लिश चैनल है। वक्त के साथ इंडिया टुडे मैगजीन से आगे बढ़कर टीवी, डिजिटल और कई दूसरे प्लेटफॉर्म तक पहुंचा। इंडिया टुडे ग्रुप के मुताबिक समूह की शुरुआत 1975 में एक मैगजीन से हुई थी। आज इंडिया टुडे सिर्फ एक मैगजीन का नाम नहीं बल्कि भारतीय मीडिया की करीब 5 दशक लंबी यात्रा की एक बड़ी पहचान है। आपातकाल के दौर में 1976 में 42वां संविधान संशोधन पारित हुआ। प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए। संविधान और संस्थाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए। बाद में इसके कई प्रावधानों में परिवर्तन भी हुआ, लेकिन 42वां संशोधन भारतीय संवैधानिक इतिहास का एक बेहद महत्वपूर्ण अध्याय बन गया।
3: 3, 2, 1, 0
0: भारत अब अपनी लॉन्चिंग क्षमता चाहता था। SLV-3 कार्यक्रम इसी लक्ष्य की दिशा में बड़ा कदम था। 1979 की शुरुआती असफलता के बाद वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी। आखिरकार 18 जुलाई 1980 को SLV-3 ने रोहिणी उपग्रह को सफलतापूर्वक कक्षा में पहुंचाया। ये वो पल था जब भारत ने अपने स्वदेशी रॉकेट से अपना उपग्रह अंतरिक्ष में पहुंचाया। यहीं से PSLV और GSLV जैसी भविष्य की सफलताओं की नींव मजबूत हुई। एक वक्त था जब कार खरीदना हर भारतीय के बस की बात नहीं थी, लेकिन फिर सड़कों पर एक ऐसी कार उतरी जिसने पूरे देश की तस्वीर बदल दी। मारुति ने भारत में कार को सिर्फ अमीरों की चीज नहीं रहने दिया, बल्कि मध्यम वर्ग के सपनों तक पहुंचाया। मारुति उद्योग की शुरुआत 1981 में हुई और 1983 में पहली मारुति 800 बाजार में आई। छोटी, किफायती और आसान रखरखाव वाली इस कार ने तेजी से लोगों के बीच जगह बनाई। 1982 में इनसेट सिस्टम की शुरुआत ने भारत की संचार व्यवस्था को नई ताकत दी। पहली बार बड़े पैमाने पर सैटेलाइट तकनीक को संचार, मौसम और टीवी प्रसारण से जोड़ा गया। दूरदर्शन के सिग्नल दूर दराज के गांवों तक पहुंचने लगे। मौसम की निगरानी बेहतर हुई और संचार के नए रास्ते खुले। इनसेट ने साबित किया कि अंतरिक्ष सिर्फ वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की जिंदगी बदलने का माध्यम भी हो सकता है। इंग्लैंड में कपिल देव की कप्तानी वाली भारतीय टीम से किसी को विश्व कप जीतने की उम्मीद नहीं थी। सामने दो बार की चैंपियन वेस्टइंडीज थी, लेकिन फाइनल में भारत ने वेस्टइंडीज को हराकर पहली बार विश्व कप अपने नाम किया। ये सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं थी, इस जीत ने भारत में क्रिकेट को जुनून बना दिया। करोड़ों युवाओं के लिए क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, सपना बन गया। उन्नीस में राकेश शर्मा भारत और सोवियत संघ के साझा अंतरिक्ष मिशन के तहत अंतरिक्ष में पहुंचे। करीब 8 दिन अंतरिक्ष में बिताकर वो पहले भारतीय नागरिक बने जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की। जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनसे पूछा कि अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है, तो उनका जवाब था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। उन्नीस सौ चौरासी में सियाचिन को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ रहा था। पाकिस्तान सियाचिन इलाके में अपनी मौजूदगी और दावे को मजबूत करने की कोशिश कर रहा था। 13 अप्रैल 1984 को भारत ने ऑपरेशन मेघदूत शुरू किया। भारतीय सेना और वायुसेना ने बेहद ऊंचाई पर सैनिकों को पहुंचाकर सियाचिन पर अपना कब्जा मजबूत किया। भारत में मेट्रो की शुरुआत कोलकाता से हुई। शहर में बढ़ती भीड़ और ट्रैफिक को देखते हुए 1972 में मेट्रो बनाने का काम शुरू किया गया। करीब 12 साल की मेहनत के बाद 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में पहली मेट्रो चली। इसके बाद धीरे धीरे इसका नेटवर्क बढ़ता गया। कोलकाता की ये मेट्रो देश के दूसरे शहरों के लिए मिसाल बनी। एक वक्त था जब भारत को लंबी दूरी की मिसाइल तकनीक के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। इसी तस्वीर को बदलने के लिए 1983 में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू हुआ। इस मिशन की अगुवाई वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और उनकी टीम ने की। कई साल के रिसर्च और परीक्षण के बाद 1989 में अग्नि का पहला परीक्षण हुआ। इसके बाद अग्नि परिवार में अलग अलग रेंज की मिसाइलें विकसित हुई। 1991 में भारत गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा था। विदेशी मुद्रा भंडार बेहद कम था और लाइसेंस परमिट की जटिल व्यवस्था ने अर्थव्यवस्था को जकड़ रखा था। इसी संकट के बीच प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आर्थिक सुधारों का रास्ता चुना। लाइसेंस व्यवस्था में बदलाव हुआ, निजी क्षेत्र के लिए रास्ते खुले और विदेशी निवेश को बढ़ावा मिला।
1: वक्त एक ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे आर्थिक सुधार ने कैसे बदल दी देश की तस्वीर।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: लाल किले से पीएम मोदी के दिमागी नक्सल के उल्लेख पर सुलगी राजनीति, कहा अफसर की तलाश में हैं ऐसे लोग, कांग्रेस का पलटवार, पहले किसानों और युवाओं को प्रधानमंत्री ने कहा था नक्सल। वंदे मातरम पर छिड़ी नई जंग, बीजेपी का आरोप, कांग्रेस मुख्यालय में सोनिया खरगे ने किया राष्ट्रगीत का अपमान, कांग्रेस का जवाब, ऐसी कोई कोशिश नहीं। अटारी बॉर्डर पर जोश जुनून जज्बे का दिखा रंग, बीएसएफ ने भरी जश्न आजादी की हुंकार, तिरंगे में रगी दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा। रांची में आंदोलनकारी छात्रों की सोरेन सरकार को चेतावनी, 18 अगस्त तक मांगे पूरी नहीं तो 20 को करेंगे सीएम के घर का घेराव, परीक्षा में गड़बड़ी की सीबीआई जांच पर अड़े, सीएम का इस्तीफा मांगा। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन मिश्रा ने लॉ छात्रों से मांगी माफी, कहा अगर आपकी भावनाएं आहत हुई तो मुझे खेद है, नलसार विवाद में बढ़ा था बवाल।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो।
2: नई सदी में भारत ने विकास की रफ्तार को और ज्यादा तेज किया, 3 नए राज्यों के गठन से लेकर आईटी क्रांति तक देश ने अपनी नई पहचान बनाई, जीएसएलवी और चंद्रयान ने अंतरिक्ष में महत्वाकांक्षा बढ़ाई और सड़कों के जरिए देश को जोड़ने का काम शुरू हुआ, आरटीआई और मनरेगा ने आम आदमी को अधिकार और रोजगार का सहारा दिया, आधार और शिक्षा के अधिकार ने नई व्यवस्था की नींव रखी, यानी कि 21वीं सदी के पहले ही दशक में भारत तेजी से बदल रहा था और अब बारी थी उस भारत की जो दुनिया को अपनी नई ताकत दिखाने वाला था।
3: शुरुआत में निराशा लेकिन बाद में सफलता, भारत ने 1994 में पीएसएलवी की सफल उड़ान हासिल की, यह भारत की भरोसेमंद उपग्रह प्रक्षेपण क्षमता की दिशा में बड़ा कदम था। आगे चलकर पीएसएलवी ने देश और विदेश के कई उपग्रह अंतरिक्ष में पहुंचाए, यही लॉन्च क्षमता आगे चलकर चंद्रयान और मंगलयान जैसे मिशनों की मजबूत नींव बनी। भारत में मोबाइल फोन सेवा की शुरुआत 31 जुलाई 1995 को हुई थी, उस वक्त पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने कोलकाता से दिल्ली में केंद्रीय संचार मंत्री सुखराम को पहली बार मोबाइल कॉल किया था, यही शुरुआत आगे चलकर मोबाइल क्रांति में बदल गई। पचानवे में भारत में सार्वजनिक इंटरनेट सेवा शुरू हुई, शुरुआत में कनेक्शन महंगे और धीमे थे लेकिन ईमेल और वेबसाइटों के साथ एक नई डिजिटल दुनिया खुलने लगी, धीरे धीरे इंटरनेट कारोबार शिक्षा संचार और मनोरंजन का बड़ा माध्यम बन गया, कुछ लोगों तक सीमित ये तकनीक आगे चलकर करोड़ों भारतीयों की जिंदगी का हिस्सा बन गई। पश्चिमी तट के दुर्गम पहाड़ों, गहरी घाटियों और नदियों के बीच रेल लाइन बिछाना कभी लगभग असंभव माना जाता था, लेकिन 1988 में कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन की स्थापना के बाद इस चुनौती को मिशन की तरह लिया गया। ई श्रीधरन के नेतृत्व में इंजीनियरों ने महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक को जोड़ने वाली करीब 741 किलोमीटर लंबी रेल लाइन तैयार की, हजारों पुल और 91 सुरंगों से गुजरती ये परियोजना इंजीनियरिंग का शानदार उदाहरण बनी। मई 1998 में भारत ने पोखरण में कई परमाणु परीक्षण किए, बेहद गोपनीय तरीके से किए गए इन परीक्षणों ने दुनिया को भारत की रणनीतिक क्षमता का स्पष्ट संदेश दिया, इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय दबाव और प्रतिबंध भी सामने आए लेकिन भारत ने अपनी सुरक्षा और रणनीतिक जरूरतों को प्राथमिकता दी, पोखरण सेकंड ने भारत की रक्षा नीति और वैश्विक पहचान दोनों को प्रभावित किया। भारत और रूस ने 12 फरवरी 1998 को ब्रह्मोस के लिए समझौता किया, 12 जून 2001 को ओडिशा के चांदीपुर से पहली सफल टेस्ट फायरिंग हुई, ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों में ये तैनात है, 2022 में फिलीपींस ने करीब 37.5 करोड़ डॉलर का ब्रह्मोस सौदा किया। ১৯৯৯ में करगिल की ऊंची चोटियों पर घुसपैठ के बाद भारत ने ऑपरेशन विजय शुरू किया। करीब 60 दिनों तक भारतीय जवानों ने बेहद मुश्किल हालात में लड़ाई लड़ी। दुर्गम पहाड़, माइनस तापमान और करीब 16 से 18 हजार फीट की ऊंचाई के बावजूद जवानों ने टोलोलिंग से टाइगर हिल तक एक एक मोर्चा वापस हासिल किया। 26 जुलाई 1999 को भारत ने करगिल युद्ध में जीत की घोषणा की। इस युद्ध में 527 भारतीय सैनिक शहीद हुए जबकि 1363 जवान घायल हुए। साल 2000 में भारत के नक्शे पर तीन नए राज्यों ने जन्म लिया, उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़। लंबे समय से अलग राज्य की मांग कर रहे लोगों को अपनी अलग पहचान और प्रशासन का नया ढांचा मिला। उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड बना, बिहार से झारखंड और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ। तीनों राज्यों का गठन भारतीय संघीय व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव था। भारत ने लड़ाकू विमान के मामले में आत्मनिर्भर बनने का सपना 1983 में शुरू हुए लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी LCA कार्यक्रम के साथ देखा था, लेकिन सपना पूरा हुआ 2001 में, जब पहली बार हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और भारतीय वैज्ञानिकों की मेहनत की वजह से तेजस ने 2001 में पहली उड़ान भरी। 2016 में भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ। आज स्कूल जाना बच्चों के जीवन का सामान्य हिस्सा लगता है, लेकिन भारत में लंबे समय तक लाखों बच्चे स्कूल से बाहर रहे। इसी चुनौती से निपटने के लिए सर्व शिक्षा अभियान को बड़े राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में आगे बढ़ाया गया। मकसद था प्राथमिक शिक्षा की पहुंच बढ़ाना और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को स्कूल से जोड़ना।

0: दिल्ली की बढ़ती आबादी और ट्रैफिक के बीच एक ऐसे सार्वजनिक परिवहन की जरूरत थी जो तेज, सुरक्षित और भरोसेमंद हो। इसी सोच के साथ 1995 में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी DMRC की स्थापना हुई। केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार की साझेदारी में बनी इस परियोजना का नेतृत्व ई श्रीधरन ने किया। 25 दिसंबर 2002 को शाहदरा से 30,000 के बीच पहली मेट्रो चली। इसके बाद दिल्ली NCR में मेट्रो का नेटवर्क लगातार बढ़ता गया। लोकतंत्र में सरकार जनता के लिए काम करती है, लेकिन सरकार क्या कर रही है, पैसा कहां खर्च हो रहा है और फैसले कैसे लिए जा रहे हैं, ये जानना भी नागरिक का अधिकार है। इसी सोच ने सूचना के अधिकार की मांग को मजबूत किया। सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की कोशिश शुरू हुई। इसका असर आगे चलकर 2005 के सूचना का अधिकार कानून के रूप में सामने आया। गांव में अगर रोजगार नहीं है तो परिवार के सामने सबसे बड़ा सवाल होता है, कमाई कहां से होगी। इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए 2005 में मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम आया। इसके तहत ग्रामीण परिवारों को एक साल में कम से कम 100 दिनों के अकुशल मजदूरी वाले रोजगार की कानूनी गारंटी दी गई। साल 2007 में भारतीय क्रिकेट के लिए एक नए युग की शुरुआत हुई। दक्षिण अफ्रीका में पहली बार T20 वर्ल्ड कप खेला गया और युवा खिलाड़ियों से सजी महेंद्र सिंह धोनी की टीम ने इतिहास रच दिया। फाइनल में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से हुआ। भारत ने 5 रन से जीत दर्ज कर पहली बार T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम की। भारत ने अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजे, रॉकेट बनाए और लॉन्चिंग की क्षमता विकसित की, लेकिन अगला सपना था धरती से करोड़ों किलोमीटर दूर चांद तक पहुंचना। 2008 में भारत ने चंद्रयान 1 लॉन्च किया। ये भारत का पहला चंद्र मिशन था। मिशन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में चांद पर पानी के अणुओं से जुड़े महत्वपूर्ण संकेतों की खोज शामिल थी। भारत जैसे विशाल देश में हर व्यक्ति की एक ऐसी पहचान हो जिसे अलग अलग सरकारी और सार्वजनिक सेवाओं से जोड़ा जा सके, ये काम आसान नहीं था। लेकिन 2009 में आधार परियोजना की शुरुआत हुई। इसका उद्देश्य देश के निवासियों को एक विशिष्ट पहचान संख्या देना था। आगे चलकर आधार दुनिया की सबसे बड़ी बायोमेट्रिक पहचान प्रणालियों में शामिल हुआ। उंगलियों के निशान और आंखों की पुतली जैसी बायोमेट्रिक जानकारी के आधार पर पहचान सत्यापन की व्यवस्था विकसित की गई। देश में स्कूलों की संख्या बढ़ रही थी, लेकिन सवाल था क्या हर बच्चे को शिक्षा की गारंटी मिल रही है। इसी सवाल का जवाब बना शिक्षा का अधिकार कानून। 2009 में कानून पारित हुआ और 2010 से लागू हुआ। इसके तहत 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को कानूनी अधिकार बनाया गया।
1: ऐसा लग रहा है जैसे भीम की ध्वनि।
0: 2010 में दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन हुआ। भारत के लिए ये सिर्फ खेल प्रतियोगिता नहीं थी, बल्कि दुनिया के सामने अपनी आयोजन क्षमता दिखाने का बड़ा मौका था। भारतीय खिलाड़ियों ने भी खेलों में शानदार प्रदर्शन किया और पदक तालिका में 2रा स्थान हासिल किया। इस आयोजन ने भारत की अंतर्राष्ट्रीय खेल मेजबानी की क्षमता को चर्चा में ला दिया। कभी रुपए के लिए RSRE या अलग अलग भाषाओं में अलग अलग संक्षिप्त रूप इस्तेमाल होते थे। फिर भारत ने अपनी मुद्रा को डॉलर, पाउंड और येन जैसी अलग पहचान देने का फैसला किया। 2010 में रुपए के नए प्रतीक को मंजूरी मिली। इसे डी उदय कुमार ने डिजाइन किया था। ये डिजाइन देवनागरी के र और रोमन आर का मेल है। 15 जुलाई 2010 को इसे मंजूरी दी गई और बाद में इसे यूनिकोड में भी जगह मिली। '83 के बाद भारत को वनडे विश्व कप जीतने के लिए 28 साल इंतजार करना पड़ा। 2011 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारतीय टीम ने ये इंतजार खत्म किया। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए फाइनल में भारत ने श्रीलंका को हरा दिया। गंभीर की शानदार 97 रन की पारी और कप्तान धोनी के नाबाद 91 रन की बदौलत जीत मिली।
2: 2010 के बाद भारत की रफ्तार और तेज हुई। मंगलयान ने अंतरिक्ष में भारत की नई पहचान बनाई, तो वहीं जनधन और डिजिटल इंडिया ने आम आदमी को बैंकिंग और डिजिटल सेवाओं से जोड़ दिया। यूपीआई ने पैसे के लेन देन का तरीका बदल दिया। जीएसटी ने टैक्स व्यवस्था को और नया रूप दे दिया और आयुष्मान भारत ने स्वास्थ्य सुरक्षा का दायरा बढ़ा दिया। वहीं चंद्रयान 2 और अनुच्छेद 370 ने विज्ञान और राजनीति दोनों मोर्चों पर बड़े फैसले दिखाए। लेकिन भारत की ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अगले कुछ सालों में दुनिया ने भारत की कई और बड़ी उपलब्धियां देखी।
3: 24 सितंबर 2014 वो तारीख जब भारत ने अंतरिक्ष की दुनिया में इतिहास रच दिया। मंगलयान सफलतापूर्वक मंगल की कक्षा में पहुंच गया। खास बात ये थी कि भारत अपने पहले ही प्रयास में मंगल की कक्षा तक पहुंचने वाला पहला देश बना। इस कामयाबी ने पूरी दुनिया का ध्यान भारत की अंतरिक्ष क्षमता पर खींचा। एक वक्त था जब पोलियो भारत के लाखों बच्चों के लिए बड़ा खतरा था। इस बीमारी को खत्म करने की लड़ाई में 1994 में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हुई। नारा बना दो बूंद जिंदगी की। हर बच्चे तक पोलियो की दो बूंद पहुंचाने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों और स्वयं सेवकों ने घर घर और दूर दराज के इलाकों तक पहुँच बनाई। 13 जनवरी 2011 को भारत में पोलियो का आखिरी केस सामने आया। 27 मार्च 2014 को WHO ने भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया। एक वक्त था जब देश में खुले में शौच और गंदगी बड़ी चुनौती थी। फिर 2014 में शुरू हुआ स्वच्छ भारत मिशन, जिसने सफाई को सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी बनाने की कोशिश की। 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की। गांवों से लेकर शहरों तक स्वच्छता अभियान चलाए गए। इस अभियान ने स्वच्छता को देशव्यापी चर्चा का हिस्सा बना दिया। एक वक्त था जब सरकारी काम के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे। फॉर्म, फाइल और लंबी कतारें आम बात थी। 2015 में डिजिटल इंडिया अभियान ने सरकारी सेवाओं को डिजिटल माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया। धीरे धीरे सरकारी दस्तावेज, आवेदन, भुगतान और कई तरह की सेवाएं ऑनलाइन होने लगी। डिजिटल इंडिया ने उस बदलाव को बड़ी रफ्तार दी। एक समय पैसे भेजने के लिए बैंक जाना पड़ता था, फिर ATM और कार्ड आए। लेकिन 2016 के बाद भारत ने डिजिटल भुगतान की दुनिया में एक और बड़ी छलांग लगाई, UPI यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। इस व्यवस्था ने अलग अलग बैंक खातों के बीच तुरंत डिजिटल भुगतान को आसान बना दिया। QR कोड ने इस बदलाव को और आसान बना दिया। सितंबर 2016 में उरी आतंकी हमले के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी रणनीति में बड़ा संदेश देने वाला कदम उठाया। भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा के पार जाकर आतंकवादी लॉन्च पैड्स के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की। इस कार्रवाई के बाद भारत ने साफ संदेश दिया कि सीमा पार से होने वाले आतंकवादी हमलों का जवाब सिर्फ कूटनीतिक स्तर पर नहीं बल्कि जरूरत पड़ने पर सैन्य तरीके से भी दिया जा सकता है। गरीब परिवार के सामने सबसे बड़ी मुश्किलों में एक है बीमारी और इलाज का खर्च। इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए 2018 में आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बड़े अस्पतालों में इलाज के लिए स्वास्थ्य कवरेज उपलब्ध कराना था। सरकारी और कुछ निजी अस्पतालों को भी इस व्यवस्था से जोड़ा गया। गुजरात के केवड़िया में बनी सरदार पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आज दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसकी ऊंचाई 182 मीटर है। इसे बनाने का काम 2013 में शुरू हुआ और करीब 4 साल में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तैयार हो गई। इसे मशहूर मूर्तिकार राम विसुतार ने डिजाइन किया और L&T ने इसका निर्माण किया। करीब 3,000 करोड़ रुपए की लागत से बनी इस प्रतिमा का उद्घाटन 31 अक्टूबर 2018 को हुआ। चौदह फरवरी 2019 पुलवामा में आतंकी हमले में CRPF के 40 जवान शहीद हुए। इसके बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ा फैसला लिया। 26 जनवरी 2019 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के प्रशिक्षण शिविर को निशाना बनाया। ये घटना इसलिए भी अहम थी क्योंकि पहली बार भारत ने पाकिस्तान की सीमा के भीतर जाकर आतंकी ठिकाने को निशाना बनाने की बात सार्वजनिक रूप से कही थी। 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर की संवैधानिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने का फैसला किया। संसद में प्रस्ताव और कानूनों के जरिए अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को मिले विशेष प्रावधानों को प्रभावी रूप से समाप्त किया गया और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पुनर्गठित किया गया। 2019 का ये फैसला आजाद भारत के संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास के सबसे बड़े बदलावों में गिना जाता है। 2020 में कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को हिला दिया। अस्पतालों में मरीज बढ़ रहे थे, अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा था और सबसे बड़ा सवाल था कि इस वायरस से बचाव कब मिलेगा। इसी दौरान देश में वैक्सीन विकसित करने और बड़े पैमाने पर उसका उत्पादन करने की कोशिश तेज हुई। कोवैक्सीन जैसी स्वदेशी वैक्सीन भारत की वैज्ञानिक क्षमता का उदाहरण बनी। एक वक्त था जब भारत के जंगलों से चीता पूरी तरह गायब हो चुके थे। करीब 70 साल बाद प्रोजेक्ट चीता के तहत चीते को भारत वापस लाने की शुरुआत हुई। 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 चीते कुनू नेशनल पार्क लाए गए। इसके बाद फरवरी 2023 में दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते और आए। मार्च 2026 तक भारत में चीते की संख्या 53 तक पहुंच गई, जिनमें 33 भारत में जन्मे हैं। 23 अगस्त 2023, वो तारीख जब भारत ने अंतरिक्ष इतिहास में अपना नाम हमेशा के लिए दर्ज कर दिया। चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम चांद की सतह पर सफलतापूर्वक उतर गया और भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में सफल सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बना। रोवर प्रज्ञान ने चांद की सतह पर कई वैज्ञानिक प्रयोग किए। चांद और मंगल के बाद भारत की नजर उस सितारे पर गई जिसके बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, सूरज। सितंबर 2023 में इसरो ने आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया। इसका मकसद सूर्य की बाहरी परतों, सौर हवाओं और अंतरिक्ष मौसम से जुड़ी घटनाओं का अध्ययन करना था। जनवरी 2024 में आदित्य L1 अपने निर्धारित हेलो ऑर्बिट में पहुंचा। 2023 में भारत के पास दुनिया के सबसे बड़े कूटनीतिक मंचों में से एक की मेजबानी थी। G20 की अध्यक्षता के दौरान देश के अलग अलग शहरों में बैठकें हुई और सितंबर में नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के नेता भारत पहुंचे। शिखर सम्मेलन में नई दिल्ली घोषणा पत्र पर सहमति बनी, जिसे भारत की कूटनीतिक उपलब्धि के तौर पर देखा गया। आजादी के बाद लंबे समय तक पुरानी संसद ही भारत के लोकतांत्रिक सफर की गवाह रही, लेकिन सांसदों की बढ़ती संख्या और आधुनिक जरूरतों को देखते हुए नए संसद भवन की जरूरत महसूस हुई। 28 मई 2023 को नए संसद भवन को राष्ट्र को समर्पित किया गया। नए संसद में लोकसभा कक्ष में 1272 सांसद तक बैठ सकते हैं। नए संसद को बनाने में 971 करोड़ रुपए खर्च हुए। अयोध्या में राम मंदिर का सपना सिर्फ एक इमारत बनाने का नहीं था, इसके पीछे सदियों की आस था और लंबी कानूनी लड़ाई की कहानी थी। सुप्रीम कोर्ट के 2019 के फैसले के बाद मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हुआ और 2020 में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बनाया गया। 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन हुआ और मंदिर का निर्माण तेजी से आगे बढ़ा। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी के ऊपर बना चिनाब रेल ब्रिज आज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। नदी से करीब 359 मीटर ऊपर बना ये पुल 1.3 किलोमीटर लंबा है। पहाड़ों और गहरी खाई के बीच पुल बनाना आसान नहीं था। स्टील के बड़े बड़े हिस्सों को खास केबल क्रेन से ऊपर पहुंचाकर जोड़ा गया। करीब 1486 करोड़ रुपए की लागत से बना ये पुल 6 जून 2025 को शुरू हुआ।
0: क्रिकेट में लंबे वक्त तक भारत की पहचान पुरुष टीम से रही, लेकिन भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी 50 ओवर के मैच में आखिरकार वो मुकाम हासिल कर लिया जिसका इंतजार दशकों से था। 2025 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार वनडे महिला वर्ल्ड कप का खिताब जीता। फाइनल में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर इतिहास रच दिया। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ जिसमें 26 लोगों की जान गई। इसके बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का फैसला किया। 7 मई 2025 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मौजूद आतंकी ढांचे से जुड़े 9 ठिकानों को निशाना बनाया गया। ये सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी बल्कि आतंकवाद के खिलाफ भारत के कड़े रुख का एक और बड़ा संदेश था।
2: फिलहाल कहानी मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ। अब तक देश और दुनिया की तमाम खबरों के देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
5: ये पूरा रेला विधानसभा जा रहा छात्रों का।
6: जब तक वो सीबीआई जांच नहीं कराएंगे तब तक हम लोग इस पे डटे रहेंगे।
5: छात्रों को पीछे हटाने की कोशिश की जा रही है। वाटर कैनन खत्म हो गए, फायर टेंडर खत्म हो गए।
7: प्रोटेस्टर हैं, देखिए उनको कैसे चोट लगी है।
8: विधानसभा के करीब ये पहुंच चुका है।
9: पुलिस काफी देर तक रोक नहीं सकी छात्रों को। और छात्र देखिए विधानसभा के अंदर प्रवेश करते हुए
10: विधानसभा का लाइट ऑफ करके मारा है।
5: पूरे प्रदर्शन मार्च के बाद भी छात्रों ने ऐलान किया है वो अभी भी डटे हुए हैं। जयपाल सिंह स्टेडियम में लोकेंद्र के साथ मैं आशुतोष मिश्रा आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
11: इस बीच रांची से एक बड़ी खबर आ रही है। रांची में आंदोलन कर रहे छात्रों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के घर के घेराव का ऐलान किया है। छात्र परीक्षा धांधली की सीबीआई जांच की मांग पर अड़ गए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार छात्रों की इस मांग को मांग नहीं रही है। छात्रों ने कहा है कि 18 अगस्त तक आप हमारी मांगे मान लीजिए, नहीं तो 20 को हम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के घर का घेराव करेंगे और सीबीआई की जांच भी आप इससे करवाइए। लेकिन साथ ही साथ ये कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उन्हें समर्थन देने वाले राहुल गांधी दोनों पूरे जिम्मेदार हैं इस मामले में और दोनों हमारे विरोध के निशाने पर रहेंगे। बीस अगस्त का दिन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए मुश्किलों भरा रहने वाला।
12: हमारी जो मांग है जेएसएससी सीजीएल को लेकर के और 11-13 जेपीएससी को लेकर के, रद्द मतलब रद्द, जेपीएससी 11-13 जेएसएससी सीजीएल रद्द और साथ में सीबीआई जांच, और अगर नहीं हो पा रहा है तो माननीय मुख्यमंत्री इस्तीफा दें। माननीय मुख्यमंत्री इस्तीफा दें। यह मंच पहली बार यह मांग कर रहा है कि अगर आपसे सीजीएल और 11-13 जेपीएससी रद्द नहीं हो रहा है तो आप इस्तीफा दें। दूसरा, कल हम लोग महापुतला दहन करने वाले हैं सरकार बहादुर का, झारखंड के 24 जिलों के हर मुख्यालय में, और मुख्य पुतला अल्बर्ट एक्का चौक पे दहन किया जाएगा। पूरे झारखंड के 24 जिलों के छात्र सरकार बहादुर का पुतला दहन करने वाले हैं और रांची में भी पुतला दहन होने जा रहा है। तीसरा, अगर तब भी हमारी मांगे नहीं मानी गई तो मैं झारखंड के तमाम छात्रों से आह्वान करता हूं, 10 तारीख को विधानसभा का घेराव झांकी था, सीएम आवास बाकी है, 20 तारीख को हम सीएम आवास घेरेंगे और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती हम वहीं बैठे रहेंगे।
13: पुतला दहन झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का होने वाला है और जो उनको समर्थन दे रहे कांग्रेस सरकार, राहुल गांधी का भी 2400 जिला में पुतला दहन करने वाले, इसलिए कि राहुल गांधी जी ने ऑडियो कॉल पर हम लोग से बात किए कि हम आपके साथ है, ये ऑडियो कॉल और वीडियो कॉल खेलना बंद करें। अगर आप छात्रों के साथ है तो छात्रों के साथ रहिए। आपकी कोशिश करने के बावजूद भी अगर झारखंड सरकार आपके बात नहीं मान रही है तो सत्ता से आप रिजाइन दीजिए, समर्थन वापस लीजिए, नहीं तो हम तमाम छात्र जितनी मजबूती के साथ हेमंत सोरेन का विरोध कर रहे हैं उससे ज्यादा मजबूती के साथ आपका विरोध करेंगे, ये हम आज बता रहे हैं।
11: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: are with you, friends.
1: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
2: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

किले से पीएम मोदी के दिमागी नक्सल के उल्लेख पर सुलगी राजनीति, कहा अवसर की तलाश में ऐसे लोग। कांग्रेस का पलटवार, पहले किसानों और युवाओं को प्रधानमंत्री ने कहा था नक्सली। वंदे मातरम पर छिड़ी नई जंग, बीजेपी का आरोप। कांग्रेस मुख्यालय में सोनिया और खड़गे ने किया राष्ट्रगीत का अपमान, कांग्रेस का जवाब, ऐसी कोई कोशिश नहीं। अटारी बॉर्डर पर जोश जुनून जज्बे का रंग, बीएसएफ ने जश्न आजादी की हुंकार भरी, तिरंगे में रंगी दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा। रांची में छात्रों की चेतावनी, मांगे पूरी नहीं तो 20 को करेंगे सीएम के घर का घेराव, परीक्षा में गड़बड़ी की सीबीआई जांच, आज राहुल और सोरेन का करेंगे पुतला दहन। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन मिश्रा ने लॉ छात्रों से मांगी माफी, कहा अगर भावनाएं आपकी आहत हुई तो खेद, नलसार विवाद में हुआ था बवाल।

जय हिंद, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले हमारे सभी दर्शकों को 80वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तिरंगा सिर्फ एक कपड़ा नहीं, करोड़ों भारतीयों की धड़कन है। उन वीरों के लहू की अमिट स्याही है जिन्होंने अपनी जवानी हंसते हंसते भारत माता के चरणों में अर्पित कर दी। आज इतिहास के पन्नों से महकती हवाएं कुछ अलग ही पैगाम ला रही हैं। आज वो पावन दिन है जब गगनचुंबी इमारतों से लेकर बर्फीली चोटियों और रेगिस्तानों की रेत तक, समंदर की लहरों से असीम आसमान तक, सुदूर दुर्गम और आदिवासी आंचलों से लेकर हर चौक, हर चौराहा, हर नुक्कड़ तक बस एक ही स्वर गूंज रहा है, भारत माता की जय। देश अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस का महापर्व मना रहा है। आज का दिन उस अटूट संकल्प का प्रतीक है जिसे हमारे अमर शहीदों ने अपने खून से सींचा था। सोचिए, कोई माँ हंसते हंसते अपने बेटे को भेज देती थी क्योंकि वो भारत माँ को आजाद करने के लिए लड़ रहा था। सोचिए, कोई पिता अपने जवान बेटे को तिलक लगाकर भेजता था खुशी से कि जा तू देश पर मर मिट, ये देश तुमसे तुम्हारा जो जिम्मेदारी है वो पूरा करने की बात कर रहा है। आज लाल किले की प्राचीर से जब तिरंगा पूरे शान से लहराया तो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। आज के इस ऐतिहासिक समारोह में वंदे मातरम के 150 गौरवशाली वर्ष पूरे होने पर उसकी गूंज ने पूरे वायुमंडल को राष्ट्रभक्ति के रस से सराबोर कर दिया। ये जश्न उन रणबांकुरों के बलिदान को समर्पित है जिनकी बदौलत आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। ये देश अब रुकने वाला नहीं है। आज आजादी के मायने बदल चुके हैं। अब ये सिर्फ गुलामी की जंजीरों से मुक्ति नहीं बल्कि विकसित भारत का महासंकल्प है जिसको हकीकत में बदलने की जिजीविषा पूरे देश के 140 करोड़ लोगों में है। लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की युवा शक्ति, माताओं, बहनों और किसानों के असीम सामर्थ्य को ललकारते हुए एक नया इतिहास लिखने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि अब भारत छोटे छोटे सपनों में बंधने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री के संबोधन में बहुत कुछ साफ था। फॉर्च्यून 500 कंपनीज में भारत का परचम, दुनिया के टॉप बैंक्स और फार्मा दिग्गजों में भारतीय कंपनीज का दबदबा, यानी अब दुनिया भारत की चाल से चलेगी। डिफेंस प्रोडक्शन जिसमें 4 गुना हम बढ़े, मोबाइल उत्पादन जिसमें 33 गुना, डिजिटल ट्रांजैक्शन जिसमें 100 गुना की छलांग, ये आज जोर शोर से कह रही है कि भारत अब ग्लोबल सप्लाई चेन का सिरमौर बन रहा है। आने वाले 1 साल में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल्स की ट्रेनिंग और ऑनलाइन कोचिंग का कवच देकर देश की युवा फौज को भविष्य के युद्ध के लिए तैयार किया जा रहा है। दुनिया चाहे संसाधनों को वेपनाइज्ड बनाए, भारत अपने आत्मनिर्भरता के मंत्र और वोकल फॉर लोकल, इसकी ताकत से हर चुनौती को धूल चटाने को तैयार है। एक तरफ जहां कभी हिंसा, खौफ की छांव हुआ करती थी, आज वहां विकास का तिरंगा शान से लहरा रहा है। प्रधानमंत्री ने आगाह किया कि हथियारबंद नक्सल तो धराशायी हो चुके हैं, लेकिन अब उन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा जो देश की प्रगति में रोड़े अटकाना चाहते हैं, जो मौके की फिराक में है, गलियों में है। देश अब इन संकीर्ण सोचों से बहुत

0: लेकिन आज सबसे पहले हम उस ऐतिहासिक कदम की बात करेंगे जिसकी चर्चा सदियों तक होगी। आजाद भारत और उसके इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब लाल किले से देश के राष्ट्रगीत वंदे मातरम की धुन गुनगुनाई गई। अभी तक परंपरागत रूप से स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस पर जनगणमन जो है जनगणमन का राष्ट्रगान जो है उससे गौरवान्वित होता था, लेकिन अब देश के लोग राष्ट्रगान के साथ साथ वंदे मातरम से मातृभूमि को भी नमन कर सकेंगे। साल 1950 के बाद से स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम की परंपरा यही थी कि झंडारोहण के बाद राष्ट्रगान की धुन बजाई जाती थी, लेकिन इसमें नया अपडेट जुड़ गया है। अब से हर साल झंडारोहण से पहले राष्ट्रगीत वंदे मातरम की धुन बजेगी और उसी से शुरुआत भी आज हुई। उसके बाद फिर प्रधानमंत्री झंडारोहण करेंगे और उसके बाद राष्ट्रगान की धुन बजाई जाएगी, जनगण जनगणमन। यानी पहले मातृभूमि को नमन होगा, फिर स्वतंत्रता भारत के जो गौरव की पहचान है वो तिरंगे का आरोहण होगा, और फिर इसके बाद देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की पहचान, राष्ट्रगान गाया जाएगा। देश का 80वां स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम वंदे मातरम को समर्पित था। देशवासियों के दिलों में इसकी अमिट छाप बनी रहे इसके लिए वंदे मातरम को विशेष रूप से प्रदर्शित किया गया था। आज देश के 2500 एनसीसी कैडेट्स एक विशेष टी शर्ट पहनकर इस कार्यक्रम में पहुंचे थे। उनमें से कुछ सफेद, कुछ ऑरेंज। उनकी फॉर्मेशन इस तरह से बनाई गई थी कि टॉप एंगल से देखने पर दुनिया को एक विशाल वंदे मातरम शब्द दिखाई दे रहा था। बच्चों के ठीक सामने थल सेना, नौसेना, वायुसेना के जवान मौजूद थे, जो इस बात का प्रतीक था कि मातृभूमि पर मंडराने वाले हर खतरे को धूल में मिलाने के लिए ये जवान हर समय तैयार रहते हैं। आज की ये तस्वीर हमेशा हमेशा के लिए देशवासियों के दिमाग में रहेगी, क्योंकि देश में ऐसा पहली बार हुआ है। वंदे मातरम को समर्पित इस स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में पहली बार लाल किले की प्राचीर पर फूलों से वंदे मातरम लिखा गया था। लाल किले की जिस प्राचीर पर झंडारोहण होता है और जहां से प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं, उसके दोनों तरफ रंग बिरंगे फूल, इस बार उस फूलों से वंदे मातरम लिखा गया था। फूलों से लिखे गए वंदे मातरम के बीच खूबसूरत तिरंगा भी बनाया गया था। आज वायुसेना के दो MI-17 हेलीकॉप्टर्स ने देश के राष्ट्रगीत को अपनी सलामी आसमान से फूलों की बारिश करके दी। लाल किले पर मौजूद लोगों पर फूलों की बारिश करने के अलावा इन हेलीकॉप्टर्स में से एक पर तिरंगा और दूसरे वंदे मातरम का बैनर था। पिछले साल नवंबर में वंदे मातरम के 150 साल पूरे हुए हैं। पहली बार वंदे मातरम को साहित्यिक पत्रिका बंग दर्शन में 7 नवंबर 1875 को प्रकाशित किया गया था। वंदे मातरम को देश के प्रसिद्ध साहित्यकार और विचारक बंकिम चंद्र चैटर्जी ने लिखा था। बंकिम चंद्र चैटर्जी ने स्वतंत्रता के प्रति राष्ट्रीय चेतना को जगाने के लिए इसकी रचना की थी। शुरुआत में इसे बंग दर्शन में छापा गया, लेकिन इसके बाद साल 1882 इसे आनंद मठ नाम के उपन्यास में शामिल किया गया था। ये उपन्यास भी बंकिम चंद्र चैटर्जी की ही रचना थी। वंदे मातरम को पहली बार साल 1896 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। इसे तब रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था, जिन्होंने हमारे राष्ट्रगान की रचना भी की है। स्वतंत्रता के लिए राजनीतिक नारे के तौर पर वंदे मातरम का इस्तेमाल 7 अगस्त 1905 को किया गया था। इसके बाद साल 1907 में भीकाजी कामा ने पहली बार भारत के बाहर बर्लिन में तिरंगा झंडा फहराया था। उस झंडे पर तब वंदे मातरम लिखा हुआ था। आजादी के बाद साल 1950 में संविधान सभा के द्वारा इसे भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया। रचना के 150 वर्षों के बाद इसी साल मानसून सत्र में वंदे मातरम को राष्ट्रगान जैसा सम्मान दिलवाया गया है। इसके लिए प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 में संशोधन किया गया। परंपरागत रूप से सरकारी कार्यक्रमों में हमेशा से राष्ट्रगान गाया जाता था और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाया जाता था, लेकिन इस संबोधन के बाद अब से सरकारी कार्यक्रमों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया गया है। यानी जहां भी राष्ट्रगान गाया जाता रहा है वहां अब से राष्ट्रगीत भी गाया जाएगा।
1: आजादी के बाद 15 अगस्त लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है।

0: ¡Vande! ¡Vande!
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 13वीं बार देश को लाल किले से संबोधित किया है और अपने संबोधन के जरिए उन्होंने देश के हर वर्ग को कुछ ना कुछ तरीके से संबोधित किया। इस बार पीएम मोदी का भाषण 76 मिनट चला और ये उनके कार्यकाल में तीसरा सबसे छोटा संबोधन था, लेकिन 76 मिनट के इस संबोधन में उन्होंने देश को आगे बढ़ाने वाली शक्ति की 7 धाराओं के बारे में मंत्र दिया। देशवासियों से इन सप्तधारा से जुड़ने की अपील की, जिससे देश 2047 से पहले ही विकसित भारत के सपने को, संकल्प को पूरा कर सके। सप्तधारा के मंत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने युवा शक्ति, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, कनेक्टिविटी, डिफेंस, एनर्जी और सॉफ्ट पावर जैसे टूरिज्म है, योग है, आयुर्वेद है, इन सब को उन्होंने शामिल किया। आज हम प्रधानमंत्री मोदी के शक्ति के सप्तधाराओं का ही विश्लेषण करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि अगर हम वैश्विक रूप से देखें तो भारत आज कहां पर मौजूद है, कहां खड़ा है और इन सप्तधारा की शक्तियां अगले कुछ वर्षों में भारत को कहां तक पहुंचा सकती हैं। सबसे पहले हम युवा शक्ति की बात करेंगे, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास कुछ विशेष प्लान है जिसके बारे में आज उन्होंने बताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपील की है कि अगर देश के युवा देश की इन सप्तधाराओं से जुड़कर काम करें तो अगले कुछ वर्षों में ऐसा चमत्कार होगा जो विश्व ने कभी नहीं देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से अपील की है कि वो अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल विकसित भारत की दिशा में लगाएं और अपनी युवा ऊर्जा से अगर 5 से 6 वर्षों में ऐसा करके दिखाएं जो पिछले कई दशकों में नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि वो 1 करोड़ युवाओं को अगले 1 वर्ष में AI स्किल ट्रेनिंग दिलवाएंगे। ये जरूरी भी है क्योंकि AI आने वाले वक्त में एक बड़े चैलेंज की तरह होगा और जो फ्यूचर रेडी नहीं होगा, AI की तकनीक को समझेगा नहीं, उससे अभ्यस्त नहीं होगा, उसको मुश्किलें आएंगी। उन्होंने अपने भाषण में AI के महत्व की बात की और माना कि आने वाले वक्त में AI की ट्रेनिंग ही भारतीय युवाओं को रोजगार दिलवाएगी। प्रधानमंत्री मोदी मानते हैं कि आने वाले AI स्किल को ही भारतीय युवाओं की सबसे बड़ी ताकत बनेगी और इसीलिए उनका पूरा का पूरा, एक तरह से आप समझिए, जो फोकस था वो AI स्किल डेवलपमेंट पर आज उन्होंने रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक ऐसे मुद्दे को भी छुआ जो गरीब मिडिल क्लास के लिए चिंता का विषय था। वो चिंता थी प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग। गरीब और मिडिल क्लास युवा पैसे की कमी या कारणों से चूक जाते हैं, तो प्रधानमंत्री ने आज ऐलान किया कि फ्री ऑनलाइन कोचिंग, जिसकी उन्होंने बात कही, उन्होंने गरीब मिडिल क्लास युवाओं को भरोसा दिलाया है कि सरकार कोचिंग का एक ऐसे डिजिटल नेटवर्क पर काम करेगी, तैयार करेगी, जिसमें अच्छे शिक्षक, प्रतिभाशाली युवा परीक्षाओं के लिए बच्चों को मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं की शक्ति को देश के निर्माण से जोड़ा और इसके लिए हर तरह की मदद का भरोसा दिलाया। हालांकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के खास खतरे से भी उनको सावधान किया। उन्होंने देश के युवाओं को दिमागी नक्सलियों से सावधान रहने के लिए कहा है। प्रधानमंत्री ने देश के नक्सल मुक्त होने की चर्चा की और ये करते हुए उन्होंने युवाओं को ऐसे लोगों से सावधान किया है जो दिमाग से नक्सलवाद के समर्थक हैं, दिमागी नक्सल जिसे उन्होंने कहा। उन्होंने युवाओं के भटकाव से बचने के लिए युवाओं को अपील की और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे तमाम दिमागी नक्सली हैं जो देश में मौके के फिराक में रहते हैं कि कहीं पर उनको कोई मौका लगे वो देश में अराजकता फैलाएं। वो अलग अलग जगहों पर होते हैं। उन्होंने कहा कि कैसे ऐसे ही लोग पहले दिमागी नक्सली जो है वो देश की नीतियों को प्रभावित करते थे, अब आज की पीढ़ी को उनसे संभलने की जरूरत है। देखिए,

0: सिरे से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा कर रहा हूं, हमने तय किया है कि आने वाले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
1: भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। देश की करीब 65% आबादी की उम्र 35 वर्ष से कम है। हमारे यहाँ दुनिया के सबसे ज्यादा स्कूल के बच्चे हैं। देश में दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल सिस्टम है, जिनकी संख्या 14,67,000 है और इनमें 24,72,00,000 बच्चे पढ़ते हैं। यानी इस वक्त हमारे पास मौजूदा समय में देश की तस्वीर बदलने वाली युवा शक्ति भी है और आने वाले भविष्य के तैयार हो रहे युवाओं की एक पूरी फौज है जो विकसित भारत के सपने को पूरा करेगी।
0: हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों के सामने एक बहुत बड़ा बोझ बन चुका है कोचिंग क्लासेस की स्पर्धा। हर माँ बाप को लग रहा है कि कोचिंग क्लास में बच्चे को नहीं भेजा तो हम प्रतिष्ठित परिवार नहीं है। इन गरीब और मिडिल क्लास परिवारों की हम चिंता करते हुए हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये बात अच्छी तरह से जानते हैं और शायद इसीलिए उन्होंने युवाओं की आकांक्षाओं को समझते हुए उन्हें वो सब देने की बात कही जो आज का युवा चाहता है। 2014-15 में 3.4 करोड़ छात्र उच्च शिक्षा हासिल कर रहे थे, जिनकी संख्या साल 2023-24 में 4.5 करोड़ हो गई। यानी उच्च शिक्षा के लिए ज्यादा बच्चे अपना नामांकन करवा रहे हैं। इसमें खास बात यह है कि छात्राओं का नामांकन साल 2014-15 के मुकाबले साल 2023-24 में करीब 42.2% बढ़ा है। 2023-24 में 2.2 करोड़ छात्राओं ने उच्च शिक्षा में नामांकन करवाया है। इसके अलावा बेरोजगारी दर भी 2014 में 7.71% थी, जो 2025 में घटकर 4.2% हो गई। स्टार्टअप इंडिया के तहत स्टार्टअप्स की संख्या 2014 से पहले लगभग 350 थी, जो अगस्त 2026 तक बढ़कर 2,47,000 हो गई है।
2: इसके अलावा साल 2014 और 2025 के बीच ITI की संख्या 9,977 से बढ़कर 14,688 हो गई है और इनमें छात्रों का नामांकन 9,50,000 से बढ़कर 14,70,000 हो गया है।
1: राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान भी 25 से बढ़कर 33 हो गए हैं। यानी पीएम मोदी चाहते हैं कि युवा अपनी ऊर्जा को देश के विकास पर लगाएं और इसके लिए सरकार की ओर से जो संभव मदद होगी वो की जाएगी। हालांकि पीएम मोदी की नज़र केवल जेन सी पर नहीं थी, बल्कि उनकी नज़र जेन अल्फा पर भी थी। उन्होंने जेन अल्फा की ऊर्जा को पढ़ाई ही नहीं बल्कि खेलों में भी इस्तेमाल करने की बात कही। उन्होंने 5 से 15 वर्ष तक के बच्चों को 2036 ओलंपिक का टारगेट दिया है। उनका कहना है कि आज से ही ये तैयारी शुरू करनी होगी और उसके लिए सरकार भी उनके साथ है।
0: हमने तय किया है कि 2036 में जो ओलंपिक होगा, जिन विधाओं में आज भारत खेलता नहीं है, जिन विधाओं में भारत क्वालिफाई नहीं करता है, जिन स्पर्धाओं में भारत ने छोड़ के रखा है, 3/4 हिस्सा हमारे इंतजार कर रहा है, भारत उस पर बल देगा। और इसके लिए हम टैलेंट हंट का एक अभियान भी चलाना चाहते हैं। हमें अगर 2036 के लिए खिलाड़ी चाहिए तो आज जो 5 साल 10 साल 15 साल की उम्र के नौजवान हैं, बेटे हैं, उनके तरफ ध्यान देना होगा, उन बेटियों पर ध्यान देना होगा। और इसलिए 5 से 15 उम्र के बच्चों में खेल प्रतिभा ढूंढने के लिए गांव गांव शहर शहर स्कूल स्कूल एक टैलेंट हंट का अभियान चलाया जाएगा।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में देश को एक नए खतरे से भी आगाह किया और वो है साइबर अटैक। उनका मानना था कि जिस तरह से सेना के जवान सीमा पर देश की सुरक्षा करते हैं, ठीक वैसे ही देश के युवाओं को देश की साइबर सुरक्षा की मजबूती पर काम करना चाहिए और इसके अलावा नई टेक्नोलॉजी को सीखना और उसे देश के विकास के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, इस पर भी जोर दिया। आज तक ब्यूरो।
3: आज प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से एक ऐसा आर्थिक शंखनाद किया है जो आने वाले कल में भारत की तस्वीर ही नहीं तकदीर भी बदल सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित भारत के अपने विजन की सप्तधारा में मैन्युफैक्चरिंग पावर को इसकी चमचमाती हुई धुरी बनाया और ये जरूरी भी था। लंबे वक्त से इस बात पर चर्चा हो रही थी देश में कि हम अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ सर्विस सेक्टर या अन्य क्षेत्रों में अगर हम सीमित रह जाएंगे और मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बनेंगे तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है और यही सब भारत में अर्थव्यवस्था की शायद सबसे कमजोर कड़ी बन रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री ने हमारे देश के निर्माताओं को एकदम साफ और दो टूक शब्दों में गुरु मंत्र दिया है, क्वालिटी क्वालिटी क्वालिटी। अब वक्त आ गया है भारत से छोटे मोटे कलपुर्जे जोड़ने तक सीमित ना रहे, दुनिया के बाजार में छा जाने वाले फिनिश प्रोडक्ट्स, उन्होंने कहा कॉस्ट क्वालिटी और इन सब पर जोर हो, लागत हो गुणवत्ता हो या फिर बड़े पैमाने पर स्केल की उन्होंने बात की, कॉस्ट क्वालिटी एंड स्केल, बड़े पैमाने पर उत्पादन पर ध्यान जरूरी है जिसके जरिए भारत अब ग्लोबल सप्लाई चेन का एक सेंटर बनने के लिए तैयारी करेगा। और ये सिर्फ दावे नहीं है, आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं कि कैसे मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में देश की फिजा बदल रही है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में 33 गुना की जबरदस्त वृद्धि हुई है, वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनों के डिब्बों का निर्माण 21 गुना बढ़ा है, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन में 7 गुना का उछाल आया है और तो और रक्षा उत्पादन में भी मेक इन इंडिया का डंका बजते हुए 4 गुना की छलांग भारत ने लगाई है। साफ है कि भारतीय उत्पादों की पैकेजिंग प्रिसिशन ऐसी होगी जो दुनिया को अपनी तरफ खींचेगी। आइए सुनते हैं मैन्युफैक्चरिंग के महाअभियान पर प्रधानमंत्री ने आज लाल किले से क्या कहा।
0: मेरे प्यारे देशवासियों, हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत आगे बढ़ाना होगा और प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ साथ हमें छोटे छोटे पुर्जे भी बनाने हैं और बड़े बड़े प्रोडक्ट भी बनाने हैं। पूरा वैल्यू चेन हमारा होना चाहिए और उसे लेकर के चलना, हमें कंपोनेंट भी चाहिए और हमें कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग भी चाहिए, कंप्लीट प्रोडक्ट भी चाहिए। डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन का भरोसामंद केंद्र बनना होगा। इसके लिए मैं 3 चीजों पर विशेष जोर देना चाहता हूं। मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में जो मेरे भाई बहन हैं, ये समय का ये अवसर है, इस अवसर को जाने मत दें और इसके लिए हमें कॉस्ट क्वालिटी और स्केल इसके विषय में वैश्विक मानदंडों से खरा उतरना पड़ेगा। हमारी फैक्ट्रीज कॉम्पिटिटिव हो, हमारे प्रोडक्ट्स यूजर फ्रेंडली हो, हमारा पैकेजिंग दुनिया के लोगों को लुभावने वाला हो, आकर्षित करने वाला हो, हमारा जीरो डिफेक्ट प्रिसिशन मैन्युफैक्चरिंग ये हमारी पहचान बनना चाहिए।
3: अक्सर कहा जाता है कि 21वीं सदी की जो जियोपॉलिटिक्स है, जो अर्थव्यवस्था इकोनॉमी है, जियोपॉलिटिक्स और इकोनॉमी, इनकी धुरी सिर्फ एक छोटी सी चीज पर टिकी है और वो है चिप सेमीकंडक्टर। जब दुनिया के बाकी देश भविष्य की इस जंग में अपनी मजबूत पकड़ तलाश रहे हैं और दुनिया में अपनी बार्गेनिंग पावर को अपने मैन्युफैक्चरिंग, अपने रेयर अर्थ मिनरल्स, अपने सेमीकंडक्टर कैपेसिटी, इन सब से वो मजबूत कर रहे हैं, तब आज लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के इरादे दुनिया के सामने बिल्कुल साफ कर दिए हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने देश के तकनीकी भविष्य का एक ऐसा विजन रखा है जो हर भारतीय को गर्व से भर देगा। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में ऐलान किया है कि आने वाले 7 से 8 वर्षों के भीतर भारत में 5 से 8 नए सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित किए जाएंगे। यानी साफ है कि भारत अब सिर्फ तकनीक का उपभोक्ता नहीं, दुनिया का बड़ा निर्माता बनने की राह पर बढ़ेगा और ये जरूरी भी है और इसमें जल्दबाजी होनी चाहिए, तेजी आनी चाहिए। प्रधानमंत्री इसके पीछे जमीन पर वो कह रहे हैं कि जल्द से जल्द हम सिर्फ प्लांट्स नहीं बनाएंगे, उनको शुरू भी करेंगे। इसके पीछे जमीन पर उतर चुका है एक पूरा खाका, एक मजबूत इकोसिस्टम है। भारत ने सेमिकॉन 1.0 के जरिए इस सफर की शुरुआत 76,000 करोड़ के बजट से की थी। आज स्थिति यह है कि सरकार के इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत देश भर में कुल 12 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को मंजूरी मिल चुकी है, जिसमें 1,64,000 करोड़ रुपए से अधिक का विशाल निवेश शामिल है। अब सबसे बड़ी और गर्व की बात यह है कि महज बातों से आगे बढ़कर भारत अब धरातल पर मैन्युफैक्चरिंग के फेज में प्रवेश कर रहा है। गुजरात के सानंद में स्थित माइक्रॉन केन्स और सीजी सेमी, ये तीनों संयंत्र जो हैं वो आज सफलतापूर्वक अपना कमर्शियल प्रोडक्शंस शुरू कर चुके हैं। फरवरी से जुलाई 2026 तक इन प्लांट्स ने ये साबित कर दिया है कि भारत का जो सिलिकॉन सपना है वो अब हकीकत बनने की राह पर तेजी से बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, जुलाई 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 1,27,500 करोड़ के भारी भरकम बजट के साथ सेमिकॉन 2.0 की मंजूरी ने इस क्रांति को पंख दिए हैं। चिप डिजाइन से लेकर एडवांस पैकेजिंग, R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टैलेंट डेवलपमेंट तक भारत के 6 रणनीतिक स्तंभ अब ग्लोबल सप्लाई चेन को एक नई दिशा देंगे। चाहे अमेरिका हो, जापान हो, यूरोपियन यूनियन हो, दुनिया के तमाम दिग्गज देश भारत को एक भरोसेमंद मजबूत तकनीकी साझेदार के रूप में आज देख रहे हैं। और लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह हुंकार इस बात का संकेत भी है कि आने वाले कल में भारत मजबूत बनेगा और आने वाला कल भारत का होगा, तब इस तकनीकी आत्मनिर्भरता को अब कोई रोक नहीं सकता। देखिए
0: मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं सेमीकंडक्टर का। देश आजाद होने के बाद विश्व में तो सेमीकंडक्टर की चर्चा हो चुकी थी, हमारे यहां भी बातें होती थी, लेकिन सेमीकंडक्टर का कोई बड़ा प्लान हम आगे नहीं बढ़ा पाए। और आज स्थिति क्या है, आज की डिजिटल दुनिया में, आज की टेक्नोलॉजी में चिप का महात्म्य हम समझते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होगा, हमारे मेडिकल इक्विपमेंट होंगे, हमारे ट्रांसपोर्ट के रास्ते होंगे, हर किसी में चिप अनिवार्य है। और इसे, इस चिप के बिना दुनिया थम जाए ऐसी स्थिति पैदा हो जाए। और इसलिए भारत ने आत्मनिर्भर होने की दिशा में अपना सेमीकंडक्टर प्लांट, बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट, 3 सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हो चुके। और मुझे बताया गया है कि वहां जो प्रोडक्शन हो रहा है वो एक्सपोर्ट होना शुरू हो चुका है। और मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, आने वाले 7-8 वर्ष में और 5, 7 या 8 सेमीकंडक्टर प्लांट बहुत ही जल्द शुरू होने वाले। ये आत्मनिर्भर भारत हमें विकसित भारत की दिशा में जाने का महामार्ग देता।
3: देश की रफ्तार अब नई पहचान बनने वाली है। लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा विजन रखा है जो भारत को ग्लोबल स्टेज पर सुपर फास्ट ट्रैक पर लाने वाला है। आज देश रुकने वाला नहीं है, बल्कि गति शक्ति के सहारे उड़ान भरने को तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया है कि अब दूरियां कम होंगी, विकास की रफ्तार को बढ़ाएंगे। विकास की सप्तधारा का जिक्र करते हुए चौथी शक्ति यानी गति शक्ति पर सबसे बड़ा उनका फोकस था। उनका मंत्र है सीमलेस फास्ट एंड कंटिन्यूअस कनेक्टिविटी, यानी कोई बाधाएं ना हो और लगातार निरंतर रूप से ये कनेक्टिविटी रहे। और इसके लिए शहरों में हाई स्पीड रेल से अब शहर जुड़ेंगे, देश में आधुनिक हाईवे का जाल बिछेगा और अब आसमान छूते एयरपोर्ट्स और इनलैंड वाटरवेज क्रांति लाएंगे। खास बात यह है कि अब हमारे बंदरगाह सिर्फ जहाजों के लंगर डालने की जगह नहीं, बल्कि ये पोर्ट लेड डेवलपमेंट की आज उन्होंने बात की, यानी समंदर के रास्ते देश की आर्थिक समृद्धि का नया द्वार बनेंगे। शिप्स के जरिए हम कैसे व्यापार बढ़ा सकते हैं, इन सब पर उन्होंने फोकस की बात की। आइए सुनते हैं खुद प्रधानमंत्री मोदी ने देश की इस रफ्तार और गति शक्ति को लेकर लाल किले से क्या क्या कहा।
0: गति शक्ति, ये गति शक्ति देश के अंदर सीमलेस फास्ट कनेक्टिविटी पर हमें बल देना होगा। शहरों को हाई स्पीड रेल से हमें जोड़ना होगा। मॉडर्न हाईवे चाहिए, इनलाइन वाटरवेज चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक की व्यवस्था चाहिए। हमें पोर्ट को सिर्फ सामान उतारना चढ़ाने की जगह नहीं, दुनिया के शिप्स आकर के लंगर हो जाए इतना नहीं, हमें हमारे पोर्ट को पोर्ट लेड डेवलपमेंट ग्रोथ की दिशा में हमें आगे बढ़ना होगा।
3: प्रधानमंत्री मोदी जब आज लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के संकल्प को स्वर दे रहे थे, तब रक्षा का वो क्षेत्र जो उनकी सरकार की प्राथमिकताओं में हमेशा रहा है उसका खास जिक्र हुआ। बीते एक दशक में रक्षा क्षेत्र में भारत सिर्फ खरीदार होने से आगे बढ़कर अब डिफेंस सप्लायर या विक्रेता के रूप में एक बड़ी पहचान बनाता जा रहा है। 80वें स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में डिफेंस प्रोडक्शन में चौगुना बढ़ोतरी की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को बताई। भारत के रक्षा निर्यात की सबसे खास बात है भारत की विश्वसनीयता, देश की संप्रभुता की हर कीमत पर रक्षा की राष्ट्र की नीति और हमारे डिफेंस प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता की कसौटी दोनों भारत के रक्षा क्षेत्र को दुनिया में एक नई पहचान देते हैं। हमारे रक्षा क्षेत्र का बढ़ा हुआ आत्मविश्वास 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सामने आया। ऑपरेशन सिंदूर की शक्ति ने भारत के रक्षा क्षेत्र के प्रति दुनिया का उत्साह बढ़ाया। आज लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन में भारत के रक्षा क्षेत्र का आत्मगौरव भी दिखा। देखिए,
0: पिछले 12 साल में भारत ने एक नई रफ्तार पकड़ी, तेज गति से हम आगे बढ़ रहे हैं और देशवासियों का संकल्प है कि अब 140 करोड़ देशवासियों के संकल्प को सामर्थ्य को रोकना नामुमकिन है। प्यारे देशवासियों, पिछले 12 वर्षों में डिफेंस प्रोडक्शन करीब 4 गुना,
1: भारत का रक्षा उत्पादन 4 गुना बढ़ना सिर्फ एक आंकड़ा भर नहीं, रक्षा शक्ति में ये चौगुनी बढ़ोतरी भारत के बढ़े आत्मविश्वास की दीन दुनी रात चौगुनी तरक्की है। 2014 से 16 में भारत का रक्षा उत्पादन 46,429 करोड़ रुपए था, जो 2025-26 में बढ़कर 1,78,000 करोड़ रुपए पहुंच गया। हर साल भारत का रक्षा उत्पादन बेहद तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। 2024-25 के मुकाबले 2025-26 में रक्षा उत्पादन में 15.6% की बढ़ोतरी हुई। रक्षा उत्पादन ने निर्यात की संभावनाओं को भी पंख लगा दिए। 2013-14 में सिर्फ 686 करोड़ का रक्षा निर्यात करने वाला भारत 2025-26 में 38,424 करोड़ का रक्षा निर्यात करने वाला देश बना। अब भारत 80 से ज्यादा देशों को रक्षा उत्पाद बेचता है।
0: मेरे प्यारे देशवासियों, डिफेंस में आत्मनिर्भर होना अब भारत ने अनुभव कर लिया, दुनिया ने अनुभव कर लिया है, इसके बिना कोई चारा नहीं है। विश्व जब अपनी अपनी ही सोच रहा है तब भारत विश्व के लिए बाजार बन करके नहीं रह सकता है। हमें डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना हुआ, नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस टेक्नोलॉजी डेवलप करके हमें ग्लोबल सप्लायर बनने की दिशा में हमें लक्ष्य लेकर के चलना है। हमें ड्रोन काउंटर ड्रोन सिस्टम को विकसित करना होगा और हाइपरसोनिक डिफेंस टेक्नोलॉजीज उस पर हमें लीडरशिप लेनी होगी। साथियों, साइबर सुरक्षा भी आज हर घर के लिए एक समस्या बन रही है, वो भी एक रक्षा का क्षेत्र है जिसमें हमारे युवाओं की जो सामर्थ्य है उस सामर्थ्य का उपयोग हम देश के और दुनिया के लिए कर सकते हैं।
3: 140 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाला भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है और 2047 तक विकसित भारत का महान लक्ष्य हमारे सामने है। इस लक्ष्य को ऊर्जा आत्मनिर्भरता के बिना हासिल नहीं किया जा सकता। लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रीन इकोनॉमी और ब्लू इकोनॉमी की बात की है। इसके लिए उन्होंने देश में उठाए जा रहे कदमों का जिक्र किया। भारत की पहली हाइड्रोजन शक्ति वाली जो ट्रेन है वहां से लेकर न्यूक्लियर एनर्जी के लिए संसद से पास किए गए शांति एक्ट की बात प्रधानमंत्री ने लाल किले से की है। लाल किले से प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत का जो 99% कोस्टल एरिया एक्सप्लोरेशन के लिए नो गो एरिया था उसे अब गो अहेड एरिया के तौर पर विकसित करने की मंजूरी दे दी गई है। यानी कच्चे तेल के क्षेत्र में अपनी ताकत बढ़ाना भारत की प्राथमिकताओं में शामिल हो गया है। और हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा जिस तरह से अलग अलग ऐसे जो तेल वाले देश हैं जिनसे हम तेल खरीदते थे वहां पर युद्ध की स्थिति पैदा होने की वजह से कैसे पूरे विश्व में और भारत में भी कीमतों पर असर पड़ा, तो ऐसे में तेल के मामले में कैसे भारत को समृद्ध बनाना है इस पर एक बड़ा कदम ये माना जाएगा। पहले के 90 वर्षों में सिर्फ 30% रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन से आगे बढ़कर बीते एक दशक में 100% रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का लक्ष्य पा लेना प्रधानमंत्री मोदी के लाल किले की स्पीच का भी हिस्सा बना। चिप, AI, डेटा सेंटर्स के लिए बहुत बड़ी मात्रा में बिजली की जरूरतों के मद्देनजर एनर्जी सिक्योरिटी की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के अपने भाषण में कही है। देखिए,
0: ग्रीन इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी जो ग्रीन जॉब को भी जन्म देती है, हमें ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी स्टोरेज, ग्रीन मोबिलिटी, ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग, इन ग्लोबल स्केल हमें पा करके रहना है। हमें दुनिया में, दुनिया जब ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा करती रहती है, हम रास्ते खोजते रहते हैं, हम समस्याओं का समाधान दे रहे हैं, और भारत ये ग्रीन मूवमेंट का बहुत बड़ा सामर्थ्य लेकर के चलिए।
4: आज लाल किले से ऊर्जा के क्षेत्र में भारत के विस्तार का विजन और मिशन था। ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की हाल की उपलब्धियों का दस्तावेज आज लाल किले पर रखा गया।
0: जैसे सेमीकंडक्टर की बात हो, क्रिटिकल मिनरल की बात हो, वैसे ही जिस टेक्नोलॉजी की दिशा में हम जा रहे हैं, दुनिया जा रही है, उसमें एनर्जी का महत्व और बढ़ता चला जा रहा है। आपको जानकर के हैरानी होगी, ये जो हमारी रेलवे है उसका इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हमारे देश में 1925 में शुरू हुआ था। 1925 में इलेक्ट्रिफिकेशन का काम शुरू हुआ, लेकिन 90 साल में, 1925 से लेकर के 90 साल में सिर्फ 30% रेल का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था। यानी 90 साल में 30%। हमारी रफ्तार देखिए, लक्ष्य को पाने के लिए हमारी दौड़ देख लीजिए। हमने इन एक दशक के अंदर 100% काम पूरा कर दिया। अब एनर्जी के बिना भी नई दुनिया को चलाना मुश्किल है, और इसलिए हमें चीप हो, एआई हो, डेटा सेंटर हो, हमें बहुत बड़ी मात्रा में बिजली की जरूरत होगी। एनर्जी सिक्योरिटी ये हमारे समय की मांग है, और इसलिए हमने पहले से ही उस दिशा में एक के बाद एक मजबूत कदम उठाए हैं।
3: आज पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा है, लेकिन आज की सबसे भव्य, सबसे अलौकिक और दिल को छू लेने वाली तस्वीरें आ रही हैं धरती के स्वर्ग यानी हमारे अपने कश्मीर से। आज लाल चौक से लेकर डल झील तक, गुलमर्ग की बर्फीली चोटियों से लेकर आतंकवाद के साए से बाहर निकले शोपियां और पुलवामा तक, चारों तरफ बस एक ही झलक है, तिरंगा। कल तक जहां गोलियों की गूंज सुनाई देती थी, आज वहां वंदे मातरम और भारत माता की जय के उद्घोष से फिजा गूंज रही है। कश्मीर में बदलाव की एक ऐसी शक्तिशाली बयार बह रही है जिससे पाकिस्तान और उसके पाले गए आतंकवादियों के सीने पर समझिए सांप लौट रहा है। स्वतंत्रता दिवस के इस माहौल में श्रीनगर की मशहूर डल झील का नजारा कुछ ऐसा है कि हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाए। झील के नीले पानी में तिरंगे से पटे शिकारे की कतारें एक अद्भुत छटा बिखेर रही हैं। सिर्फ श्रीनगर ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के चप्पे चप्पे पर आज देशभक्ति का ज्वार है। ये तस्वीरें आज सिर्फ आज नहीं बल्कि समझिए कि पिछले कई दिनों से आ रही हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, जहां बच्चों से लेकर युवाओं तक सब तिरंगे के रंग में रंगे। रामबन में छात्रों ने करीब 1300 मीटर लंबा विशाल ध्वज लेकर जब मार्च पास किया तो देखने वालों की आंखें नम हो गई। वहीं गुलमर्ग जहां पर 14,500 फीट ऊंची अपर्वत पहाड़ियां हैं, उन पर घोड़ों पर सवार होकर युवाओं ने यह तिरंगा यात्रा निकाली है। अपने आप में यह एक मिसाल ही कहिएगा। सबसे खूबसूरत तस्वीर आई है पुंछ, डोडा और बारामूला से, जहां मदरसों के बच्चों ने हाथों में तिरंगा थामकर हिंदुस्तान जिंदाबाद और इंडिया इंडिया के ऐसे नारे लगाए जिन्हें सुनकर हर देशवासी का दिल गर्व से झूम उठा है। कभी आतंकवाद का गढ़ रहे शोपियां, कुलगांव, अनंतनाग, पुलवामा, त्राल, पंपोर जैसे जो इलाके हैं उनमें भारी जनसैलाब के साथ बाइक और पैदल तिरंगा रैलियां निकाली गई हैं। आज कश्मीर फिर से संवर रहा है। कश्मीरी पंडित अपनी जमीनों पर गर्व से लौट रहे हैं, अपनी जड़ों को फिर से पा रहे हैं। घाटी में बहती विकास और शांति की इस बयार ने उन आतंकियों और उनके आकाओं की नींद उड़ा दी है जो कश्मीर को हमेशा अंधेरे में रखना चाहते थे। लाल चौक पर तिरंगे को शान से लहराते देख पाकिस्तान परस्तों के सीने में कटार चुभ रही है। वो इस नए और शक्तिशाली भारत की तस्वीर देखकर बौखलाए हुए हैं। लेकिन आप बदलते भारत के बदलते जम्मू कश्मीर से ये जबरदस्त रिपोर्ट देखिए जो आपको गर्व से भर देगी।

जन्नत कहे जाने वाले हमारे जम्मू कश्मीर में इस बार 80वें स्वतंत्रता दिवस पर बदलाव की एक ऐसी ऐतिहासिक बयार बह रही है जो हर देशवासी का सीना गर्व से चौड़ा कर दे। श्रीनगर के ऐतिहासिक लाल चौक से लेकर भारत चीन सीमा से सटे न्योमा और उधमपुर तक सड़कों पर उमड़ा जनसैलाब और हाथ में तिरंगा आजादी के इस पावन पर्व पर नए और बदलते भारत की सबसे खूबसूरत तस्वीर पेश कर रहा है। स्वतंत्रता दिवस के उल्लास में डूबे गुजरात के एक नौजवान ने अपने पूरे शरीर पर तिरंगे के रंग पेंट किए और श्रीनगर के ऐतिहासिक लाल चौक पर राष्ट्रीय ध्वज लहराकर सबका दिल जीत लिया। अलग अलग जिलों में निकाली गई मेगा तिरंगा रैलियों में स्थानीय नागरिकों, युवाओं और स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।

0: स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सलाल डैम को तिरंगे के रंगों से सजाया गया। केसरिया, सफेद और हरे प्रकाश के बीच डैम से बहता पानी स्वतंत्रता दिवस के इस पर्व पर अद्भुत नजारा पेश कर रहा है।
1: आजादी के इस पावन पर्व पर छत्तीसगढ़ से आई ये तस्वीरें भी आपको देखनी चाहिए। ये वो तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर हर देशवासी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। ये वो तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी, दिल भी गर्व से भर जाएगा। जरा इन चेहरों को देखिए और इन कदमों की ताल को अपने सीने में महसूस कीजिए। कल तक जिन हाथों में खौफ की बंदूकें हुआ करती थी, आज उन्हीं हाथों ने स्वदेशी का दामन थामा है। हथकरघा के वस्त्र हैं और उन्हीं वस्त्रों को सवारा है। और रायपुर के इस मंच पर जब ये महिलाएं उतरी तो ये सिर्फ एक फैशन शो नहीं था, ये बदलते हुए बस्तर की नई और सुनहरी तस्वीर थी। ये मौका था बुनकर सम्मेलन का, सरकार की बेहद संवेदनशील पुनर्वास नीति और सकारात्मक जो पहल है उनका एक सुखद परिणाम इसे आप कह सकते हैं। नक्सलवाद छोड़कर हथियार डाल चुकी सुकमा जिले की 9 महिलाओं ने जब पेशेवर मॉडल्स के साथ रैंप वॉक किया, पूरा ऑडिटोरियम तालियों की गड़गड़ाहट से समझिए गूंज उठा। और मुख्यमंत्री भी वहां विष्णुदेव साय थे और एक उनका आत्मीय संवाद भी इन बेटियों से हुआ और नए सफर के लिए उन्हें डेरो शुभकामनाएं दी गई। ये दृश्य सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश को यह संदेश दे रहा है कि मुख्यधारा से जुड़ने की चाह, सही मार्गदर्शन हो तो अंधेरे से निकलकर जिंदगी के उजाले में कदम रखना नामुमकिन नहीं है। बंदूक की डरावनी गूंज पीछे छूट चुकी है और अब बस्तर के हाथों में विकास का धागा है, आत्मनिर्भरता का कोसा सिल्क है और गर्व से भरा एक नया सवेरा। आप आजादी के पर्व पर गर्व से भर देने वाली ये रिपोर्ट देखिए।

0: कभी जहां हिंसा का काला साया था, आज वहां छत्तीसगढ़ की समृद्ध हथकरघा विरासत का नूर है। बस्तर की उन गलियों से जहां गोलियों की आवाज गूंजती थी, वहां की बेटियां आज आत्मविश्वास की नई कहानी लिख रही हैं। ये तस्वीरें महज एक रैंप वॉक नहीं, बल्कि हिंसा के अंधेरे को चीरकर विकास और विश्वास की मुख्य धारा में लौटने का जीवंत सबूत है। देखिए कैसे बस्तर की ये अग्निपुत्रियां अब बंदूक छोड़कर हुनर की माला पहन रही हैं। ये सुकमा की वो बेटियां हैं जिन्होंने लाल आतंक का रास्ता छोड़कर सफेद और सुनहरी उम्मीदों का दामन थामा है। कभी जंगलों की ओट में छिपने वाली ये महिलाएं आज रैंप पर किसी प्रोफेशनल मॉडल की तरह आत्मविश्वास से भरी नजर आई।
1: और रैंप वॉक किए तो कैसा लगा?
2: अच्छा
1: लगा।
2: नक्सली में थी उस समय, जंगल के लिए वहाँ रहती थी। वहाँ से आने के बाद बारूद जैसे कई घटना हो जाएगा तो मर भी जाऊंगी बोल के सोच के सिलेंडर की है। सिलेंडर करने के बाद यहाँ आने के बाद पुनर्वास में कदम लेने के बाद इधर रायपुर जाने से इनको जैसे पहले जंगल में कुछ नहीं देखी थी, रायपुर जाने के बाद देखने का मिला है बोल के बता रही।
0: ये सिर्फ फैशन नहीं, बस्तर का नया पैशन है, जहाँ बंदूक नहीं कोसा का धागा भविष्य बुनता है। बस्तर अब अपनी पहचान हिंसा से नहीं बल्कि अपने हुनर और सम्मान से तय कर रहा है। आपको बस्तर के अबूझ मार की ये तस्वीरें भी देखनी चाहिए। ये तस्वीरें उस बदलाव की हैं जिसकी कल्पना कभी बेहद मुश्किल मानी जाती थी। ये वही अबूझ मार है जहां कभी नक्सलवाद का साया था, आज उसी धरती पर तिरंगा शान से लहरा रहा है। आज तक ब्यूरो।
3: 15 अगस्त सिर्फ एक तारीख भर नहीं है, एक इमोशन है। 1947 का वो दिन नया इतिहास लिख रहा था। विभाजन की त्रासदी की वजह से नया भूगोल भी बना था, लेकिन 15 अगस्त 1947 का सूरज अपने साथ उम्मीदों का उजाला लेकर आया था, क्योंकि उस वक्त 34 करोड़ आबादी वाला ये हिंदुस्तान, उसको अपना स्वतंत्रता का वो अनुभव हुआ था जिसे उस समय के हिंदुस्तान की पुरानी पीढ़ियों ने, बीती सदियों ने पहले महसूस नहीं किया था। एक नया सवेरा। लेकिन 15 अगस्त की तारीख ही क्यों आजादी की तारीख बनी? आज हम इसे पर आपको जरा कुछ बताने वाले हैं। क्या ब्रिटिश हुकूमत की योजना में भारत के स्वतंत्रता की कोई और तारीख थी? 15 अगस्त की ही तारीख को भारत की स्वतंत्रता घोषित करने में लॉर्ड माउंटबैटन की भूमिका क्यों अहम है? क्या 15 अगस्त की इस तारीख का कोई कनेक्शन वर्ल्ड वॉर टू में जापान के सरेंडर की तारीख से भी है? 15 अगस्त 1947 को जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो इस तारीख ने कैसे भारत को एक नई पहचान दी? स्वतंत्रता के इस 80वें वर्ष में आज इस तारीख को इस नजरिए से भी देखने की जरूरत है। 15 अगस्त को मिली स्वतंत्रता के बाद भारत ने अपना संविधान, अपना विधान, अपनी नीति, अपना भविष्य खुद तय किया। इन 80 वर्षों की यात्रा में भारत कई चुनौतियों से जूझा है, कई जगहों पर चूका है, लेकिन उपलब्धियों के ढेरों अफसाने भी हैं। हम आज जो कुछ भी हैं, आज हम 2047 के विकसित भारत की जो कल्पना कर रहे हैं, जिसे आत्मनिर्भर भारत की सोच को लेकर हम एक सपना साकार करना चाहते हैं, उन सब की एक धुरी है 15 अगस्त 1947 की तारीख।

आज अंजना 2.0 भी हमारे साथ हैं, तो स्वतंत्रता दिवस की आपको भी ढेरों शुभकामनाएं। बहुत खास मौका है और देश भर से अलग अलग तस्वीरें और भव्य खबरें आ रही हैं। आज आपके पास बेहद खास मौके पर क्या खबर है बताइए अंजना। आज मैं देश भर से आई आजादी के जश्न की शानदार तस्वीरें दिखाऊंगी। समंदर की लहरों से लेकर आसमान तक तिरंगा लहरा रहा है। दुर्गम इलाकों से लेकर देश के हर कोने में आजादी का जश्न है। हर कोई तिरंगे के रंग में रंगा हुआ है। ये तस्वीरें सबको गर्व से भर देंगी।

0: स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित किया, विकसित भारत के लक्ष्य को दोहराया, सप्त सिंधु से सप्त धरा मंत्र पीएम ने दिया। 15 अगस्त का कार्यक्रम एक और मायने में विशेष रहा, पहली बार वंदे मातरम की धुन सुनाई दी, लेकिन इस पर दिल्ली में राजनीति भी देखने को मिली।
1: कांग्रेस दफ्तर में वंदे मातरम के दौरान सोनिया गांधी के इशारा करने की इन तस्वीरों पर बीजेपी सवाल पूछ रही है। बीजेपी इसे वंदे मातरम का अपमान बता रही है।
2: एक बहुत विचित्र, विडंबनापूर्ण और दुर्भाग्यपूर्ण दृश्य देखने को मिला जब कांग्रेस कार्यालय में वंदे मातरम गीत गाया जा रहा था। उस समय कांग्रेस की सुप्रीम लीडर सोनिया गांधी जी, सुपर अध्यक्ष राहुल गांधी जी और सिटिंग अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी बहुत ही विचित्र और आपत्तिजनक तरीके से असम्मान व्यक्त करते हुए एक दूसरे से बातचीत करते हुए नजर आए, किसी को बुलाते हुए नजर आए, और कोई व्यक्ति आकर उनसे कुछ बता भी रहा था और एक दूसरे को इशारे कर रहे थे। यह राष्ट्रगीत वंदे मातरम के प्रति उनका अपमान है।
1: बीजेपी के सवालों पर कांग्रेस का जवाब आया, इशारों के पीछे की वजह बताई गई।
3: आज यहाँ इंदिरा भवन में पूरा वंदे मातरम गाया गया, इसमें कोई वाद विवाद का सवाल नहीं उठता, कोई रोकने का प्रयास नहीं था, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस अध्यक्ष खड़े हुए थे, सोनिया जी कह रही थी उनके लिए कुर्सी लाके रख दो, बस कोई नहीं था।
1: वंदे मातरम पर यह घमासान उस वक्त शुरू हुआ है जब वंदे मातरम के पूर्ण संस्करण को हाल ही में राष्ट्रगान के समान कानूनी संरक्षण दिया गया है। 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्र के नाम संबोधन से पहले और उसके समापन पर भी वंदे मातरम बजाया गया था। वहीं आज पहली बार लाल किले में भी राष्ट्रगान से पहले वंदे मातरम गाया गया। संसद में वंदे मातरम बिल पारित के बाद अब 15 अगस्त पर इसके घमासान की पहली सियासी किश्त सामने आई है।
4: आजादी के बाद 15 अगस्त को लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं तो इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
1: आज तक ब्यूरो।
0: पीएम मोदी ने अपने भाषण में दिमागी नक्सल, महिला आरक्षण जैसे मुद्दों का उल्लेख किया जिस पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है।
1: लाल किले की प्राचीर से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्वजारोहण किया तो साथ में महिला सैन्य अधिकारी नजर आईं और पीएम ने भाषण में महिला आरक्षण पर विपक्ष से साथ आने की अपील की।
4: मैं देश के सभी राजनीतिक दलों से आज लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे की छाया में खड़े होकर के प्रार्थना करता हूं, आग्रह करता हूं, आइए उन महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनिए, उन महिलाओं के सम्मान में आगे आइए और जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, वे भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है।
1: पीएम की महिला आरक्षण को लेकर इस अपील पर कांग्रेस सरकार से सवाल पूछ रही है।
5: कानून बन चुका है, राहुल गांधी जी बार बार यही तो कहते हैं जब कानून बन चुका है लागू क्यों नहीं कर रहे आप लोग। अब वो सपना देख रहे हैं, हम तो 800 संख्या बढ़ाएंगे पहले पार्लियामेंट के अंदर, असेंबली में बढ़ाएंगे, इसके मायने कि परिसमन अपने हाथ में ले लेंगे,
6: महिला आरक्षण को लगातार दोयम दर्जा देने के लिए, पीछे धकेलने के लिए यदि कोई जिम्मेदार है तो स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2023 में जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया तो उसको दो शर्तों की बैसाखी पर खड़ा करने वाला कौन था? परिसीमन और जनगणना से जोड़ने वाला कौन था? वो प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार थी।
1: उधर पीएम मोदी ने नक्सल के सफाए का जिक्र किया तो वहीं दिमागी नक्सल से लड़ाई की बात कही।
4: हथियारी नक्सल तो गए लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा।
7: पहले भी जिनको जमीनी नक्सल कहा फिर उन्हीं किसानों की बात माननी पड़ी, नौजवानों को नक्सल कहा फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ा। तो पहले तो ये हाथ पांव मारते हैं नक्सल नक्सल नक्सल और उसके बाद उनकी बात मान लेते हैं।
8: पहले तो दिमागी नक्सल की परिभाषा बताओ, क्या दिमागी नक्सल की क्या परिभाषा होती, किसे आप दिमागी नक्सल करेंगे? ये तो एक आपने मुहावरा बना दिया, हर व्यक्ति दिमागी नक्सल हो सकता, तो ये कहना अपने आप में मुझे लगता है तमाम उन युवाओं का अपमान है।
1: इस बीच एक सियासत, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के लाल किले के कार्यक्रम में ना शामिल होने को लेकर भी हो रही है। लगातार दूसरे साल कांग्रेस के बड़े नेताओं ने इस अहम सरकारी कार्यक्रम से दूरी बनाए रखी। राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समारोह में नहीं पहुंचे। 2024 को 15 अगस्त के कार्यक्रम में राहुल गांधी की सीट को लेकर विवाद हुआ था, जहां राहुल गांधी पीछे की सीट पर बैठे थे। ऐसे में राहुल के नदारद होने को एक बार फिर सीट अरेंजमेंट के विवाद से जोड़ा जा रहा है। आज तक ब्यूरो।
0: लाल किले से पीएम मोदी ने जेन जी हो या जेन अल्फा सबके लिए सौगात का ऐलान किया। एआई ट्रेनिंग को लेकर भी बड़ा ऐलान किया।

0: मेरे प्यारे देशवासियों, डिफेंस में आत्मनिर्भर होना अब भारत ने अनुभव कर लिया, दुनिया ने अनुभव कर लिया है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे। हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है।
1: लाल किले की प्राचीर से आज तिरंगा सिर्फ आसमान में नहीं लहरा रहा था, भारत के भविष्य की तस्वीर भी सामने रखी जा रही थी और उस तस्वीर के केंद्र में था भारत का युवा। प्रधानमंत्री ने साफ संदेश दिया, भारत की अगली उड़ान का इंजन युवा होगा।
0: जब मैं विकसित भारत की बात कर रहा हूँ, देश को तेज गति से आगे बढ़ाने की बात कर रहा हूँ, उसका सबसे बड़ा लाभार्थी कौन है? इन सारे प्रयासों का सबसे बड़ा साधक कौन है? अगर साधक है तो मेरे देश का युवा है, मेरे देश की युवा शक्ति है। विकसित भारत की यात्रा में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। इतना ही नहीं, विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी मेरे देश का युवा है और इसलिए हमें विकसित भारत के लक्ष्य को युवाओं के साथ जोड़ करके आगे बढ़ाना है। ऊंचे होने
1: जेन जी हो या जेन अल्फा, संदेश साफ था, भारत का भविष्य सिर्फ युवाओं के लिए नहीं, युवाओं के हाथों से बनेगा। आत्मनिर्भर भारत, युवा शक्ति, तकनीक, राष्ट्रीय सुरक्षा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की ताकत और भविष्य का खाका खींचा। 1 करोड़ युवाओं को AI ट्रेनिंग, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग, 5 से 15 साल के बच्चों के लिए स्पोर्ट्स टैलेंट हंट, स्टार्टअप और इनोवेशन को बढ़ावा, मैन्युफैक्चरिंग में रोजगार के नए अवसर, सेमीकंडक्टर से लेकर डिफेंस तक आत्मनिर्भर युवा शक्ति। हालांकि विपक्ष पूछता है AI की ट्रेनिंग के साथ रोजगार कितना बढ़ेगा, फ्री कोचिंग के साथ परीक्षा व्यवस्था कितनी पारदर्शी होगी, टैलेंट हंट के साथ खेलों में अवसर कितने बढ़ेंगे और क्या युवा की आवाज सिर्फ चुनाव के समय सुनी जाएगी।
2: प्रधानमंत्री जी का सवालों का जवाब न देना पार्लियामेंट में, क्या ये लोकतंत्र का तरीका है? हमने क्या उठाया? लोकसभा में हो, राज्यसभा में हो, हमने जो सवाल उठाए वो विद्यार्थियों के सवाल थे। मैं पूछता हूं मेरे दोस्त, अगर तुम पार्लियामेंट में आते क्या तुम्हारा उम्र कम होने वाली थी? क्या तुम्हारी पार्टी घटने वाली थी?
1: इसी बेचैनी के बीच बाबा रामदेव ने भी सरकारी भर्तियों में भ्रष्टाचार और युवाओं के असंतोष का मुद्दा उठाया। उन्होंने चेतावनी दी कि व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो युवाओं का आंदोलन फिर तेज हो सकता है।
3: चारों तरफ देश में हंगामा है, छोटे छोटे स्कूल कॉलेजों से बच्चे निकल रहे हैं कि हमारे यहाँ टीचर नहीं है, हमारे यहाँ लाइट नहीं, हमारे यहाँ पानी नहीं, हमारे यहाँ शौचालय नहीं है, हमारे यहाँ टीचर है तो किताबें नहीं है, किताबें हैं तो टीचर नहीं है, और टीचर है तो पढ़ाई में नकल हो जाती है, कहीं पेपर लीक हो जाता है। ऐसे ही आंदोलन करना पड़ा तो देश कैसे चलेगा? इसलिए भाई सुधर जाओ, नहीं तो देश में आंदोलन और ज्यादा भी हो सकते हैं। आंदोलन के नाम पर मैं अराजकता अनार्की का समर्थक नहीं हूं, लेकिन भाई ये बात तो जरूर है, देश में घपला भी बहुत है, ये घपले ठीक कर लो। मैं तो कहीं ऐसा ना हो कि बाबा रामदेव को दोबारा आंदोलन करना पड़े।
1: प्रधानमंत्री ने युवाओं से 2047 का निर्माता बनने का आह्वान किया है, क्योंकि आज का युवा कल का नागरिक नहीं, आज के भारत का सबसे बड़ा निर्माता है। आज तक ब्यूरो।
4: जेन जी वोटर्स पर अचानक से हर पार्टी का फोकस बढ़ गया। जंतर मंतर प्रदर्शन के बाद यूपी चुनाव जेन जी की पहली प्रयोगशाला बनने जा रहा है और इसीलिए युवाओं को अपने पाले में करने के लिए पार्टियां हर तरह के और तरह तरह के हथकंडे अपना रही।
5: जंतर मंतर आंदोलन की इन तस्वीरों ने देश की सियासत की रणनीति को और नए सिरे से गढ़ने पर हर पार्टी को मजबूर कर दिया है। धर्म और जाति के समीकरण पर अब जेन जी की इक्वेशन भारी नजर आ रही है। जेन जी पर जारी घमासान के बाद अब पहली बड़ी परीक्षा यूपी का विधानसभा चुनाव है, जहां सबकी नजरें इस बात पर है कि क्या रील और सोशल मीडिया पर दिख रही तस्वीर मतदान में तब्दील होगी। लेकिन इसे लेकर कोई पार्टी जोखिम नहीं लेना चाहती, और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जेंजी की इस ताकत को समझ रहे हैं, जिसकी एक तस्वीर उनके आज 15 अगस्त के भाषण में भी देखने को मिली।
6: जेंजी और जेन अल्फा के लिए एआई, मशीन लर्निंग, सेमीकंडक्टर, स्टार्टअप इकोसिस्टम, डेटा सेंटर, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, साइबर, रोबोटिक, इलेक्ट्रिक व्हीकल, एग्रीटेक, फिनटेक, डीप टेक, मेडटेक जैसे क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश ने तेजी के साथ जो कार्य आगे बढ़ाया है उसमें निवेश, नवाचार और एम्प्लॉयमेंट के नए नए द्वार खुल रहे हैं।
5: योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में पेपर लीक जैसे मुद्दों का जिक्र किया और छात्रों का भरोसा जीतने की कोशिश की।
6: स्वाधीनता दिवस के अवसर पर मैं प्रदेश के युवाओं से कहना चाहता हूं, आपकी प्रतिभा से ही यूपी की शक्ति निहित है। हमारी सरकार ने नकल माफिया, भर्ती माफिया के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की है। हम अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को डेवलपमेंट इंजन के रूप में बदल रहे हैं।
7: यूपी के अंदर बहुत शीघ्र युवा नीति लेकर के आ रहे हैं।
5: यूपी चुनाव के लिए फोकस पूरी तरह से युवा मतदाताओं पर केंद्रित हो चुका है, जिसकी तस्वीरें ग्राउंड से भी नजर आ रही हैं। यूपी सरकार के तमाम बड़े मंत्री ऐसे ही स्कूल कॉलेजों में पहुंचकर सीधा युवाओं से संवाद कर रहे हैं। बीजेपी की सरकार सीधे युवाओं के मन की बात टटोल रही है, इसीलिए मंत्री अपने

0: तैयार की जा रही है। टीम के सदस्य स्कूल कॉलेजों के युवाओं से बातचीत कर उनकी समस्याओं, अपेक्षाओं और सरकार को लेकर उनकी राय जानेंगे। टीम उन्हें सरकार की ओर से युवाओं के लिए शुरू की गई योजनाओं, रोजगार कार्यक्रम की जानकारी देगी। विधानसभा स्तर पर गठित होने वाले कार्यक्रमों और संवाद की जिम्मेदारी दी जाएगी। ये अभियान शुरू भी हो चुका है। कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे ने रायबरेली में बड़े स्तर पर युवाओं से संपर्क साधा, उनसे बातचीत की, उनकी समस्याएं सुनी।
1: आपके क्षेत्र में कार्यक्रम था तिरंगा यात्रा से लेकर युवा संवाद
2: जी, आप देख रहे हैं जिस तरीके से आज युवा संवाद कार्यक्रम यहाँ रखा गया, कई हजार यूथ आज इस युवा संवाद में शामिल हुए और ये उनसे सीधे संवाद हुआ। उन्होंने अपनी भावनाएं भी बताई, अपनी दिक्कतों को भी बताई और उन्होंने सराहना भी किया भारत के प्रधानमंत्री जी के कार्यों के और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के। ये यूथ हमारा भविष्य है, ये हमारे कल है और इन यूथ के साथ संवाद होना जरूरी है। इनसे जब कम्युनिकेशन गैप रहता है तो बहुत सारी चीजें रह जाती हैं। इनसे लगातार हम सबका संवाद रहेगा और इनकी बहुत महत्वपूर्ण चीजें भी हम सबको जानकारी में आई है, जिसको हम लोग आगे धीरे धीरे करके उसे भी ठीक करने का भी काम करेंगे।
0: बीजेपी का टारगेट यही लगता है कि 2027 के चुनाव में युवाओं के तमाम वोट्स पर कब्जा हो, इसीलिए सीधे मुख्यमंत्री भी सक्रिय हैं, लगातार युवाओं की बात कर रहे हैं।
3: हमारा युवा प्रतिभाशाली है, हमारा युवा ऊर्जा का प्रतीक है, हमारा युवा देश की हर चुनौती का सामना करने की सामर्थ्य रखता है और उस सामर्थ्य के प्रतीक इस युवा ऊर्जा को आगे बढ़ने के लिए एक उचित प्लेटफॉर्म प्राप्त हो, वो अपने परंपरागत पाठ्यक्रम के साथ साथ देश और समाज की उन चुनौतियों का भी सामना करने के लिए अपने आप को तैयार कर सके।
0: यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ युवाओं से हवा हवाई बातें नहीं कर रहे, बल्कि उनके लिए पूरी युवा नीति तैयार की जा रही है, लंबी चौड़ी रणनीति है। सरकारी कोचिंग में आईएएस और पीएससी की तैयारी करने वालों की कलेक्टर और कप्तान की क्लास होगी। नीट की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए मुफ्त में डॉक्टरों की क्लास होगी। आईटी की तैयारी करने वालों को आईटीएन अफसर पढ़ाएंगे। बैंक पीओ की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए सरकारी बैंक के मैनेजर मार्गदर्शन करेंगे।
4: यूपी के अंदर बहुत शीघ्र युवा नीति लेकर के आ रहे हैं। हर जिले के अंदर, हर महाविद्यालय के अंदर, हर विश्वविद्यालय के अंदर युवा के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था। आपको प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करनी हो, आपको आपके महाविद्यालय विश्वविद्यालय में हम वर्चुअल भी और फिजिकल भी वहां क्लास की व्यवस्था रहेगी। और पढ़ाने वाले कौन होंगे? पढ़ाने वाला होगा वहां का डीएम भी एक घंटा देगा, एसपी एक घंटा देगा, क्योंकि उन्होंने यूपीएससी क्लियर किया।
0: बीजेपी के अलावा समाजवादी पार्टी की भी युवाओं को लेकर अपनी तैयारी है। समाजवादी पार्टी ने भी चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। सबसे पहला काम सर्वे से शुरू हो रहा है, वहाँ भी जीताऊ प्रत्याशी खोजे जा रहे हैं।
5: यूपी चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने बूथ स्तर से लेकर विधानसभा सीट तक अपनी तैयारी शुरू कर दी और इसी के चलते कुल मिलाकर पार्टी 3 सर्वे करा रही है। सूत्रों के मुताबिक 2 सर्वे एक प्राइवेट एजेंसीज के द्वारा किए जा रहे हैं तो 3रा सर्वे संगठन के द्वारा किया जा रहा है। आकलन ये करना है हर बूथ पर, हर विधानसभा पर कौन उम्मीदवार है जो जिताऊ हो सकता है, कौन उम्मीदवार है जो जातीय समीकरणों को साध सकता है। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी को लगता है कि सर्वे के जरिए हर बूथ के, हर विधानसभा के एक फ्रेश जातीय आंकड़े सामने आ सकते हैं। यूं तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से या डेटा के जरिए जातीय आंकड़े मिल जाते हैं, लेकिन सपा को ऐसा लगता है कि अपने स्तर पर भी जातीय आंकड़े निकालने चाहिए, क्योंकि कई ऐसे विधानसभा सीट्स हैं जहां पर सपा को कुछ चौंकाने वाले जातीय आंकड़े मिले हैं, जो पेपर्स पर कुछ और थे लेकिन जमीन पर सर्वे में कुछ और सामने आए हैं। और इसी के चलते 2 एजेंसीज और संगठनात्मक तौर पर समाजवादी पार्टी के यूथ विंग्स मिलकर ये सर्वे कर रहे हैं। सर्वे अलग है लेकिन एक तरीके से माहौल एक है कि विधानसभा में जिताऊ कैंडिडेट हो जिससे सही उम्मीदवार चुना जा सके और चुनाव जीता जा सके।
0: समाजवादी पार्टी तो इसी दावे पर है कि उनके पास तो युवाओं के सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव मौजूद हैं, जिनकी युवाओं में

0: पहुंच भी है और पकड़ भी।
1: बीजेपी एक प्लानिंग के तहत अब जो है उनकी जो यूथ विंग है उनको जिम्मेदारी दे रही है कि स्कूल कॉलेजेस में जाएं। यूपी सरकार के तमाम मंत्री भी अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में ये काम करने वाले हैं, जैसे कि मनोज पांडे आज रायबरेली से कर रहे हैं, वो युवाओं का सम्मेलन कर रहे हैं, युवाओं से मिलेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे, तमाम अन्य मंत्री भी प्लान कर रहे हैं। तो ये जेन जी कितना बड़ा वोटर एकदम से यूपी में हो गया है?
2: देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी अब कर रही है, समाजवादी पार्टी तो नौजवानों की पार्टी रही है और सबसे ज्यादा यंग मिनिस्टर्स और यंग लोगों को चुनाव लड़ने का मौका या यंग लोगों की बात अगर किसी ने सबसे ज्यादा की है तो वो समाजवादी पार्टी के संस्थापक आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, श्रद्धेय नेता जी ने की थी। और अब उसी मशाल को आगे लेकर के आदरणीय अखिलेश यादव जी चल रहे हैं और लगातार जिन जेंजीज की बात आज सरकार जागी है इन आंदोलन के बाद, समाजवादी पार्टी ने सबसे कम उम्र के लोगों को चुनाव लड़ा करके सदन में भेजा। कर मुझे अपना मैं अगर बात करूं तो मैं जब 25 साल 4 दिन की थी तब मैंने नॉमिनेशन किया था, तो मैं भी एक जेंजी हूं। और साथ ही साथ अब मैं देखूं तो हमारी पार्टी में सबसे ज्यादा युवा विधायक हैं जो 25 साल के हैं, 25 साल के हमने सांसद बनाए।
0: लेकिन खबरें तो ये भी हैं कि जेंजी को मिल रहे इस समर्थन से तमाम राजनीतिक पार्टियों के बड़े बड़े और पुराने नेता बहुत परेशान हैं, उन्हें अपनी सीट खिसकने का डर सता रहा है।
1: खबर ये भी है कि जेंजी फोर्स को देखते हुए यूपी के तमाम वरिष्ठ और दिग्गज नेताओं की जमीन खिसकी हुई है। कई राजनीतिक दलों के वरिष्ठ विधायक ऐसे भी हैं जिन्हें लगता है कि कहीं उनका इस बार विधानसभा चुनाव में टिकट ही ना कट जाए, क्योंकि एक बात तो साफ है, सभी राजनीतिक दल इस बार जेंजी को उम्मीदवारी में उतारने वाले हैं। यानी कि इस बार जो उम्मीदवारों की एक लिस्ट आएगी, चाहे विपक्ष की हो चाहे सरकार की हो, उसमें जेंजी को तवज्जो मिलनी तय है। ऐसे में एक दिलचस्प बात की चर्चा यह भी है, जो विधायक पहले अपनी पत्नी या पति के नाम से जाने जाते थे जिनको टिकट मिलता था, वो अब जेंजी के पिता के नाम से, यानी कि जेंजी विधायक के पिता के नाम से भी जाने जाएंगे।
0: समर श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
3: हमारे देश की राजनीतिक पार्टियों को अचानक से अब युवा वोटर्स की याद आने लगी है, लेकिन सवाल यह है कि युवाओं के वोट तो हर पार्टी को चाहिए, लेकिन उनकी भागीदारी कितनी है और क्या युवा वोटर सरकारों को गिराने और बनाने का दम रखते हैं? इसका पहला टेस्ट उत्तर प्रदेश में होगा।
4: जेन जी के इस फोर्स की राजनीतिक ताकत पूरे देश ने देखी और सरकारों ने महसूस की। दिल्ली से लेकर झारखंड तक युवाओं की ताकत का अनुमान इस देश के हुक्मरानों को हो चुका है, इसीलिए अब राजनीतिक पार्टियों के एजेंडे पर यही जेन जी है। और जेन जी की ताकत का पहला इम्तिहान होने वाला है उत्तर प्रदेश में, जहां सबसे पहले चुनाव होंगे। वैसे तो राजनीतिक दलों के एजेंडे पर हमेशा से ही युवा रहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान की राजनीतिक पार्टियों में युवाओं की भूमिका एक वोटर से ज्यादा कुछ नहीं रहती। लेकिन अब ऐसा लगता है कि मौजूदा आंदोलन के बाद इन पार्टियों में जेंजी को बड़ी जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं, इसीलिए सारी पार्टियों का फोकस इस वक्त इसी युवा वोटर पर है।
1: उत्तर प्रदेश की सभी राजनीतिक पार्टियों को यह समझ में आ गया है कि आखिर जेंजी की ताकत क्या है। खासकर दिल्ली के जंतर मंतर में हुए प्रोटेस्ट के बाद यह बात साफ हो गई है कि जेंजी को खुश रखना जरूरी है। जिस पार्टी के नेता ये कहते थे कि कितना भी बड़ी बात हो जाए हम अपने मंत्री का इस्तीफा नहीं कराते हैं, उसी पार्टी के नेताओं को धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कराना पड़ा है। अगला चुनाव उत्तर प्रदेश का है, इसलिए सभी राजनीतिक दल जानते हैं कि जेंजी एक बेहद अहम वोट है और इसीलिए उसको महत्व देना भी जरूरी है। नतीजा जेंजी चौपाल, जेंजी तिरंगा यात्रा और जेंजी के बीच जाकर बातें करना, परेशानियां समझना।
4: उत्तर प्रदेश में हर पार्टी जेंजी पर जोर लगा रही है। बीजेपी ने मंत्रियों की जेंजी चौपाल लगाई है। समाजवादी पार्टी चुनावों के लिए युवाओं का सर्वे करवा रही है। बीएसपी ने ऐलान किया है कि वो युवाओं को प्रत्याशी बनाएंगे। कांग्रेस के राहुल गांधी तो लगातार छात्रों के मुद्दों को उठा ही रहे हैं। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि यूपी में जेंजी एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल फोर्स है। जेंजी का मतलब हुआ 1997 से 2012 के बीच पैदा हुई जनरेशन। इस हिसाब से 14 से 29 साल के लोग जेंजी हुए, लेकिन भारत में मतदान की उम्र 18 साल है, तो उत्तर प्रदेश में 18 से 29 साल के युवा वोटर्स की संख्या करीब 21.19% है, जो बनते हैं करीब 3,27,00,000। अब अगर इतनी बड़ी संख्या में जेंजी वोटर होंगे तो राजनीतिक दल तो जोर लगाएंगे ही। मतलब कि अगर जेंजी किसी एक पार्टी को तय कर ले तो उसका चुनाव जीतना तय है, और इसी फोर्स को उत्तर प्रदेश की पार्टियां अच्छे से समझ रही हैं। इसीलिए आज बीएसपी ने भी युवाओं के लिए बड़े बड़े ऐलान किए हैं। बीएसपी का कहना है कि आने वाले चुनावों में वो प्रत्याशियों के चयन में युवाओं को प्राथमिकता देगी। जालौन की माधोगढ़ सीट से बसपा ने आशीष पांडे को अपना पहला प्रत्याशी घोषित किया है, जो पार्टी के युवा चेहरों में शामिल है। बीएसपी की रणनीति, संगठन, सोशल मीडिया और चुनावी मैदान, तीनों स्तरों पर युवा नेतृत्व को आगे लाने की है। पार्टी को उम्मीद है कि जेंजी और युवा मतदाताओं के बीच सक्रियता बढ़ाकर वो 2027 के विधानसभा चुनाव में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत कर सकती है। मायावती ने अपने भतीजे और राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद को जेंजी की नब्ज टटोलने की जिम्मेदारी दी है। हालांकि आकाश खुद जेंजी नहीं है, 32 साल के हैं, युवा हैं। युवाओं की तासीर और उनके मुद्दों को कितना समझते हैं ये पता नहीं, लेकिन बीएसपी को सोशल मीडिया पर सक्रिय रखने की जिम्मेदारी भी आकाश आनंद की टीम संभाल रही है। हाथरस के सादाबाद में आकाश ने अपनी चुनावी तैयारियां भी दिखा दी और यहां से युवाओं को संदेश भी दिया।
5: हमारे समाज के बच्चे अगर पढ़ गए तो अपने अधिकारों के लिए लड़ना खड़े हो जाएंगे, लड़ेंगे अपने अधिकारों के लिए। तो जैसे आपने देखा था अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में, हमारी जनरेशन के बच्चे अपने अधिकारों के लिए लड़े, वैसे ही हमारे समाज के बच्चे प्रदेश के कोने कोने में, चौराहे चौराहे पर इनसे सवाल करेंगे, आरक्षण के लिए, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए और लॉ एंड ऑर्डर के लिए, रोजगार के लिए, तब इनके लिए जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। साथियों, जो सरकार स्कूल बंद कर दे, जो सरकार आपके स्कूलों में पढ़ने वाले टीचरों की भर्ती ना करे, क्या वो सरकार लायक है आपके प्रदेश में सत्ता में रहने के लिए?
1: ये भी उठता है कि आखिर एकदम से उत्तर प्रदेश की राजनीतिक पार्टियों को जेंजी की याद क्यों आई? क्या अगर दिल्ली में या रांची में ये प्रदर्शन ना हुए होते तो राजनीतिक दल यूपी के जेंजीज को इतना महत्व दे रहे होते? क्या यही मंत्री जगह जगह जाकर चौपाले कर रहे होते, या फिर यूपी सरकार नई युवा नीति की बात भी कर रही होती है, ऐसा कोई ऑर्डर भी आने वाला होता? बड़ी बात तो ये है, यूपी में जेंजी एक बड़ा वोटर है जो चुनाव के नतीजों में बदलाव भी कर सकता है, लेकिन कभी भी विधानसभा चुनावों में उनके हक के मुताबिक उन्हें टिकट नहीं मिले। अब दिलचस्प होगा देखना इस यूपी चुनाव में क्या सियासी गणित बदलती है और जेंजी को उनका हक मिलता है।
4: आंकड़े तो यही बता रहे हैं कि राजनीतिक दलों को युवाओं के वोट तो चाहिए, लेकिन उन्हें हिस्सेदारी नहीं देनी है। कुल 543 लोकसभा सांसदों में से सिर्फ 6 सांसद ही जेंजी हैं। पूरे देश में कुल 4,131 विधायक हैं और पूरे देश भर में सिर्फ 20 जेंजी विधायक हैं। हालांकि ये भी एक फैक्ट है कि 2022 के बाद ही जेंजी चुनाव लड़ने की उम्र में आए, लेकिन 2022 से भी इस देश में बहुत से चुनाव हुए हैं। सबसे ज्यादा जेंजी विधायक तमिलनाडु में है 4, इनमें से 3 टीवीके के हैं और 1 एडीएमके के। पश्चिम बंगाल में 3 जेंजी विधायक हैं, तीनों बीजेपी के हैं। इसके अलावा बिहार, मेघालय और तेलंगाना में 2-2 जेंजी विधायक हैं। इन सभी राज्यों में 2023 से 2026 के बीच चुनाव हुआ। ये आंकड़े बता रहे हैं कि राजनीतिक दलों ने युवाओं को वोटर तो समझा, लेकिन उन्हें भागीदारी नहीं दी। हालांकि यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि भारत में सांसद या विधायक बनने के लिए आपको 25 साल का होना जरूरी है। इस हिसाब से जेंजी सिर्फ 4 साल पहले ही चुनाव लड़ने के लायक बने हैं, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि आने वाले चुनावों में तमाम पार्टियां अपने टिकटों में जेंजी उम्मीदवारों की संख्या बढ़ाकर रखेंगी। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
3: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

0: इस बीच रांची से एक बड़ी खबर आ रही है। रांची में आंदोलन कर रहे छात्रों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के घर के घेराव का ऐलान किया है। छात्र परीक्षा धांधली की सीबीआई जांच की मांग पर अड़ गए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार छात्रों की इस मांग को मांग नहीं रही है। छात्रों ने कहा है कि 18 अगस्त तक आप हमारी मांगे मान लीजिए, नहीं तो 20 को हम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के घर का घेराव करेंगे और सीबीआई की जांच भी आप इससे करवाइए। लेकिन साथ ही साथ ये कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उन्हें समर्थन देने वाले राहुल गांधी दोनों पूरे जिम्मेदार हैं इस मामले में और दोनों हमारे विरोध के निशाने पर रहेंगे। बीस अगस्त का दिन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए मुश्किलों भरा रहने वाला है।
1: हमारी जो मांग है जेएसएससी सीजीएल को लेकर के और 11-13 जेपीएससी को लेकर के, रद्द मतलब रद्द, जेपीएससी 11-13 जेएसएससी सीजीएल रद्द और साथ में सीबीआई जांच, और अगर नहीं हो पा रहा है तो माननीय मुख्यमंत्री इस्तीफा दें। यह मंच पहली बार यह मांग कर रहा है कि अगर आपसे सीजीएल और 11-13 जेपीएससी रद्द नहीं हो रहा है तो आप इस्तीफा दें। दूसरा, कल हम लोग महापुतला दहन करने वाले हैं सरकार बहादुर का, झारखंड के 24 जिलों के हर मुख्यालय में, और मुख्य पुतला अल्बर्ट एक्का चौक पे दहन किया जाएगा। पूरे झारखंड के 24 जिलों के छात्र सरकार बहादुर का पुतला दहन करने वाले हैं और रांची में भी पुतला दहन होने जा रहा है। तीसरा, अगर तब भी हमारी मांगे नहीं मानी गई तो मैं झारखंड के तमाम छात्रों से आह्वान करता हूं, 10 तारीख को विधानसभा का घेराव झांकी था, सीएम आवास बाकी है, 20 तारीख को हम सीएम आवास घेरेंगे और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती हम वहीं बैठे रहेंगे।
2: पुतला दहन झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का होने वाला है और जो उनको समर्थन दे रहे कांग्रेस सरकार राहुल गांधी का भी 2400 जिला में पुतला दहन करने वाले, इसलिए कि राहुल गांधी जी ने ऑडियो कॉल पर हम लोग से बात किए कि हम आपके साथ है, ये ऑडियो कॉल और वीडियो कॉल खेलना बंद करें। अगर आप छात्रों के साथ है तो छात्रों के साथ रहिए। आपकी कोशिश करने के बावजूद भी अगर झारखंड सरकार आपके बात नहीं मान रही है तो सत्ता से आप रिजाइन दीजिए, समर्थन वापस लीजिए, नहीं तो हम तमाम छात्र जितनी मजबूती के साथ हेमंत सोरेन का विरोध कर रहे हैं उससे ज्यादा मजबूती के साथ आपका विरोध करेंगे, ये हम आज बता रहे हैं।
0: और छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

0: स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित किया, विकसित भारत के लक्ष्य को दोहराया, सप्त सिंधु से सप्त धरा मंत्र पीएम ने दिया। 15 अगस्त का कार्यक्रम एक और मायने में विशेष रहा, पहली बार वंदे मातरम की धुन सुनाई दी, लेकिन इस पर दिल्ली में राजनीति भी देखने को मिली।
1: कांग्रेस दफ्तर में वंदे मातरम के दौरान सोनिया गांधी के इशारा करने की इन तस्वीरों पर बीजेपी सवाल पूछ रही है। बीजेपी इसे वंदे मातरम का अपमान बता रही है।
2: एक बहुत विचित्र, विडंबनापूर्ण और दुर्भाग्यपूर्ण दृश्य देखने को मिला जब कांग्रेस कार्यालय में वंदे मातरम गीत गाया जा रहा था। उस समय कांग्रेस की सुप्रीम लीडर सोनिया गांधी जी, सुपर अध्यक्ष राहुल गांधी जी और सिटिंग अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी बहुत ही विचित्र और आपत्तिजनक तरीके से असम्मान व्यक्त करते हुए एक दूसरे से बातचीत करते हुए नजर आए, किसी को बुलाते हुए नजर आए, और कोई व्यक्ति आकर उनसे कुछ बता भी रहा था और एक दूसरे को इशारे कर रहे थे। यह राष्ट्रगीत वंदे मातरम के प्रति उनका अपमान है।
1: बीजेपी के सवालों पर कांग्रेस का जवाब आया, इशारों के पीछे की वजह बताई गई।
3: आज यहाँ इंदिरा भवन में पूरा वंदे मातरम गाया गया, इसमें कोई वाद विवाद का सवाल नहीं उठता, कोई रोकने का प्रयास नहीं था, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस अध्यक्ष खड़े हुए थे, सोनिया जी कह रही थी उनके लिए कुर्सी लाके रख दो, बस कोई नहीं था।
1: वंदे मातरम पर यह घमासान उस वक्त शुरू हुआ है जब वंदे मातरम के पूर्ण संस्करण को हाल ही में राष्ट्रगान के समान कानूनी संरक्षण दिया गया है। 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्र के नाम संबोधन से पहले और उसके समापन पर भी वंदे मातरम बजाया गया था। वहीं आज पहली बार लाल किले में भी राष्ट्रगान से पहले वंदे मातरम गाया गया। संसद में वंदे मातरम बिल पारित के बाद अब 15 अगस्त पर इसके घमासान की पहली सियासी किश्त सामने आई है।
4: आजादी के बाद 15 अगस्त को लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं तो इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
1: आज तक ब्यूरो।
0: पीएम मोदी ने अपने भाषण में दिमागी नक्सल, महिला आरक्षण जैसे मुद्दों का उल्लेख किया जिस पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है।

0: लाल किले की प्राचीर से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्वजारोहण किया तो साथ में महिला सैन्य अधिकारी नजर आईं और पीएम ने भाषण में महिला आरक्षण पर विपक्ष से साथ आने की अपील की।
1: मैं देश के सभी राजनीतिक दलों से आज लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे की छाया में खड़े होकर के प्रार्थना करता हूं, आग्रह करता हूं, आइए उन महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनिए, उन महिलाओं के सम्मान में आगे आइए और जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, वे भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है।
0: पीएम की महिला आरक्षण को लेकर इस अपील पर कांग्रेस सरकार से सवाल पूछ रही है।
2: कानून बन चुका है, राहुल गांधी जी बाबा ही तो कहते हैं जब कानून बन चुका है लागू क्यों नहीं करो आप लोग। अब वो सपना देख रहे हैं, हम तो 800 संख्या बढ़ाएंगे पहले पार्लियामेंट के अंदर, असेंबली में बढ़ाएंगे, इसके मायने की परिसमन अपने हाथ में ले लेंगे।
3: महिला आरक्षण को लगातार दोयम दर्जा देने के लिए, पीछे धकेलने के लिए यदि कोई जिम्मेदार है तो स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2023 में जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया तो उसको दो शर्तों की बैसाखी पर खड़ा करने वाला कौन था? परिसीमन और जनगणना से जोड़ने वाला कौन था? वो प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार थी।
0: उधर पीएम मोदी ने नक्सल के सफाए का जिक्र किया तो वहीं दिमागी नक्सल से लड़ाई की बात कही।
1: हथियारी नक्सल तो गए लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा।
4: पहले भी जिनको जमीनी नक्सल कहा फिर उन्हीं किसानों की बात माननी पड़ी, नौजवानों को नक्सल कहा फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ा। तो पहले तो ये हाथ पांव मारते हैं नक्सल नक्सल नक्सल और उसके बाद उनकी बात मान लेते हैं।
5: पहले तो दिमागी नक्सल की परिभाषा बताओ क्या है, दिमागी नक्सल की क्या परिभाषा होती है, किसे आप दिमागी नक्सल करेंगे? ये तो एक आपने मुहावरा बना दिया, हर व्यक्ति दिमागी नक्सल हो सकता, तो ये कहना अपने आप में मुझे लगता तमाम उन युवाओं का अपमान है।
0: इस बीच एक सियासत राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के लाल किले के कार्यक्रम में ना शामिल होने को लेकर भी हो रही है। लगातार दूसरे साल कांग्रेस के बड़े नेताओं ने इस अहम सरकारी कार्यक्रम से दूरी बनाए रखी। राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समारोह में नहीं पहुंचे। 2024 को 15 अगस्त के कार्यक्रम में राहुल गांधी की सीट को लेकर विवाद हुआ था, जहां राहुल गांधी पीछे की सीट पर बैठे थे। ऐसे में राहुल के नदारद होने को एक बार फिर सीट अरेंजमेंट के विवाद से जोड़ा जा रहा है। आज तक ब्यूरो।
6: लाल किले से पीएम मोदी ने जेन जी हो या जेन अल्फा सबके लिए सौगात का ऐलान किया। एआई ट्रेनिंग को लेकर भी बड़ा ऐलान किया।

0: मेरे प्यारे देशवासियों, डिफेंस में आत्मनिर्भर होना अब भारत ने अनुभव कर लिया, दुनिया ने अनुभव कर लिया है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे। हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है।
1: लाल किले की प्राचीर से आज तिरंगा सिर्फ आसमान में नहीं लहरा रहा था, भारत के भविष्य की तस्वीर भी सामने रखी जा रही थी और उस तस्वीर के केंद्र में था भारत का युवा। प्रधानमंत्री ने साफ संदेश दिया, भारत की अगली उड़ान का इंजन युवा होगा।
0: जब मैं विकसित भारत की बात कर रहा हूँ, देश को तेज गति से आगे बढ़ाने की बात कर रहा हूँ, उसका सबसे बड़ा लाभार्थी कौन है? इन सारे प्रयासों का सबसे बड़ा साधक कौन है? अगर साधक है तो मेरे देश का युवा है, मेरे देश की युवा शक्ति है। विकसित भारत की यात्रा में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। इतना ही नहीं, विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी मेरे देश का युवा है और इसलिए हमें विकसित भारत के लक्ष्य को युवाओं के साथ जोड़ करके आगे बढ़ाना है। ऊंचे होने
1: जेन जी हो या जेन अल्फा, संदेश साफ था, भारत का भविष्य सिर्फ युवाओं के लिए नहीं, युवाओं के हाथों से बनेगा। आत्मनिर्भर भारत, युवा शक्ति, तकनीक, राष्ट्रीय सुरक्षा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की ताकत और भविष्य का खाका खींचा। 1 करोड़ युवाओं को AI ट्रेनिंग, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग, 5 से 15 साल के बच्चों के लिए स्पोर्ट्स टैलेंट हंट, स्टार्टअप और इनोवेशन को बढ़ावा, मैन्युफैक्चरिंग में रोजगार के नए अवसर, सेमीकंडक्टर से लेकर डिफेंस तक आत्मनिर्भर युवा शक्ति। हालांकि विपक्ष पूछता है AI की ट्रेनिंग के साथ रोजगार कितना बढ़ेगा, फ्री कोचिंग के साथ परीक्षा व्यवस्था कितनी पारदर्शी होगी, टैलेंट हंट के साथ खेलों में अवसर कितने बढ़ेंगे और क्या युवा की आवाज सिर्फ चुनाव के समय सुनी जाएगी?
2: प्रधानमंत्री जी का सवालों का जवाब न देना पार्लियामेंट में क्या ये लोकतंत्र का तरीका है? हमने क्या उठाया? लोकसभा में हो, राज्यसभा में हो, हमने जो सवाल उठाए वो विद्यार्थियों के सवाल थे। मैं पूछता हूं मेरे दोस्त, अगर तुम पार्लियामेंट में आते क्या तुम्हारा उम्र कम होने वाली थी? क्या तुम्हारी पार्टी घटने वाली थी?
1: इसी बेचैनी के बीच बाबा रामदेव ने भी सरकारी भर्तियों में भ्रष्टाचार और युवाओं के असंतोष का मुद्दा उठाया। उन्होंने चेतावनी दी कि व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो युवाओं का आंदोलन फिर तेज हो सकता है।
3: चारों तरफ देश में हंगामा है, छोटे छोटे स्कूल कॉलेजों से बच्चे निकल रहे हैं कि हमारे यहाँ टीचर नहीं है, हमारे यहाँ लाइट नहीं है, हमारे यहाँ पानी नहीं है, हमारे यहाँ शौचालय नहीं है, हमारे यहाँ टीचर है तो किताबें नहीं है, किताबें हैं तो टीचर नहीं है, और टीचर है तो पढ़ाई में नकल हो जाती है, कहीं पेपर लीक हो जाता है। ऐसे ही आंदोलन करना पड़ा तो देश कैसे चलेगा? इसलिए भाई सुधर जाओ, नहीं तो देश में आंदोलन और ज्यादा भी हो सकते हैं। आंदोलन के नाम पर मैं अराजकता अनार्की का समर्थक नहीं हूं, लेकिन भाई ये बात तो जरूर है देश में घपला भी बहुत है, ये घपले ठीक कर लो, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि बाबा रामदेव को दोबारा आंदोलन करना पड़े।
1: प्रधानमंत्री ने युवाओं से 2047 का निर्माता बनने का आह्वान किया है, क्योंकि आज का युवा कल का नागरिक नहीं, आज के भारत का सबसे बड़ा निर्माता है। आज तक ब्यूरो।
4: जेन जी वोटर्स पर अचानक से हर पार्टी का फोकस बढ़ गया। जंतर मंतर प्रदर्शन के बाद यूपी चुनाव जेन जी की पहली प्रयोगशाला बनने जा रहा है और इसीलिए युवाओं को अपने पाले में करने के लिए पार्टियां हर तरह के और तरह तरह के हथकंडे अपना रही हैं।
5: जंतर मंतर आंदोलन की इन तस्वीरों ने देश की सियासत की रणनीति को और नए सिरे से गढ़ने पर हर पार्टी को मजबूर कर दिया है। धर्म और जाति के समीकरण पर अब जेन जी की इक्वेशन भारी नजर आ रही है। जेन जी पर जारी घमासान के बाद अब पहली बड़ी परीक्षा यूपी का विधानसभा चुनाव है, जहां सबकी नजरें इस बात पर है कि क्या रील और सोशल मीडिया पर दिख रही तस्वीर मतदान में तब्दील होगी। लेकिन इसे लेकर कोई पार्टी जोखिम नहीं लेना चाहती, और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जेंजी की इस ताकत को समझ रहे हैं, जिसकी एक तस्वीर उनके आज 15 अगस्त के भाषण में भी देखने को मिली।
6: जेंजी और जेन अल्फा के लिए एआई, मशीन लर्निंग, सेमीकंडक्टर, स्टार्टअप इकोसिस्टम, डेटा सेंटर, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, साइबर, रोबोटिक, इलेक्ट्रिक व्हीकल, एग्रीटेक, फिनटेक, डीपटेक, मेडटेक जैसे क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश ने तेजी के साथ जो कार्य आगे बढ़ाया है उसमें निवेश, नवाचार और एम्प्लॉयमेंट के नए द्वार खुल रहे हैं।
5: योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में पेपर लीक जैसे मुद्दों का जिक्र किया और छात्रों का भरोसा जीतने की कोशिश की।
6: स्वाधीनता दिवस के अवसर पर मैं प्रदेश के युवाओं से कहना चाहता हूं, आपकी प्रतिभा से ही यूपी की शक्ति निहित है। हमारी सरकार ने नकल माफिया, भर्ती माफिया के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की है। हम अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को डेवलपमेंट इंजन के रूप में बदल रहे हैं।
7: यूपी के अंदर बहुत शीघ्र युवा नीति लेकर के आ रहे हैं।
5: यूपी चुनाव के लिए फोकस पूरी तरह से युवा मतदाताओं पर केंद्रित हो चुका है, जिसकी तस्वीरें हम ग्राउंड से भी नजर आ रही हैं। यूपी सरकार के तमाम बड़े मंत्री ऐसे ही स्कूल कॉलेजों में पहुंचकर सीधा युवाओं से संवाद कर रहे हैं। बीजेपी की सरकार सीधे युवाओं के मन की बात टटोल रही है, इसीलिए मंत्री अपने अपने क्षेत्रों में जेंजी चौपाले लगा रहे हैं। इस अभियान के तहत विधानसभा बार 10-10 युवाओं की टीमें तैयार की जा रही है। टीम के सदस्य स्कूल कॉलेजों के युवाओं से बातचीत कर उनकी समस्याओं, अपेक्षाओं और सरकार को लेकर उनकी राय जानेंगे। टीम उन्हें सरकार की ओर से युवाओं के लिए शुरू की गई योजनाओं, रोजगार कार्यक्रम की जानकारी देगी, विधानसभा स्तर पर गठित होने वाले कार्यक्रमों और संवाद की जिम्मेदारी दी जाएगी। ये अभियान शुरू भी हो चुका है। कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे ने रायबरेली में बड़े स्तर पर युवाओं से संपर्क साधा, उनसे बातचीत की, उनकी समस्याएं सुनी।
8: आपके क्षेत्र में कार्यक्रम था तिरंगा यात्रा से लेके युवा संवाद?
9: जी, आप देख रहे हैं जिस तरीके से आज युवा संवाद कार्यक्रम यहाँ रखा गया, कई हजार यूथ आज इस युवा संवाद में शामिल हुए और ये उनसे सीधे संवाद हुआ। उन्होंने अपनी भावनाएं भी बताई, अपनी दिक्कतों को भी बताई और उन्होंने सराहना भी किया भारत के प्रधानमंत्री जी के कार्यों के और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के। ये यूथ हमारा भविष्य है, ये हमारे कल है और इन यूथ के साथ संवाद होना जरूरी है। इनसे जब कम्युनिकेशन गैप रहता है तो बहुत सारी चीजें रह जाती हैं। इनसे लगातार हम सबका संवाद रहेगा और इनकी बहुत महत्वपूर्ण चीजें भी हम सबको जानकारी में आई है, जिसको हम लोग आगे धीरे धीरे करके उसे भी ठीक करने का भी काम करेंगे।
5: बीजेपी का टारगेट यही लगता है कि 2027 के चुनाव में युवाओं के तमाम वोट्स पर कब्जा हो, इसीलिए सीधे मुख्यमंत्री भी सक्रिय हैं, लगातार युवाओं की बात कर रहे हैं।
10: हमारा युवा प्रतिभाशाली है, हमारा युवा ऊर्जा का प्रतीक है, हमारा युवा देश की हर चुनौती का सामना करने की सामर्थ्य रखता है और उस सामर्थ्य के प्रतीक इस युवा ऊर्जा को आगे बढ़ने के लिए एक उचित प्लेटफॉर्म प्राप्त हो, वो अपने परंपरागत पाठ्यक्रम के साथ साथ देश और समाज की उन चुनौतियों का भी सामना करने के लिए अपने आप को तैयार कर सके।
5: यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ युवाओं से हवा हवाई बातें नहीं कर रहे, बल्कि उनके लिए पूरी युवा नीति तैयार की जा रही है, लंबी चौड़ी रणनीति है। सरकारी कोचिंग में आईएएस और पीएससी की तैयारी करने वालों की कलेक्टर और कप्तान की क्लास होगी। नीट की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए मुफ्त में डॉक्टरों की क्लास होगी। आईआईटी की तैयारी करने वालों को आईआईटीएन अफसर पढ़ाएंगे। बैंक पीओ की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए सरकारी बैंक के मैनेजर मार्गदर्शन करेंगे।
7: यूपी के अंदर बहुत शीघ्र युवा नीति लेकर के आ रहे हैं। हर जिले के अंदर, हर महाविद्यालय के अंदर, हर विश्वविद्यालय के अंदर युवा के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था, आपको प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करनी हो, आपको आपके महाविद्यालय विश्वविद्यालय में हम वर्चुअल भी और फिजिकल भी वहां क्लास की व्यवस्था रहेगी, और पढ़ाने वाले कौन होंगे, पढ़ाने वाला होगा वहां का डीएम भी एक घंटा देगा, एसपी एक घंटा देगा, क्योंकि उन्होंने यूपीएससी क्लियर किया।
5: बीजेपी के अलावा समाजवादी पार्टी की भी युवाओं को लेकर अपनी तैयारी है। समाजवादी पार्टी ने भी चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। सबसे पहला काम सर्वे से शुरू हो रहा है, वहां भी जीताऊ प्रत्याशी खोजे जा रहे हैं।
11: यूपी चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने बूथ स्तर से लेकर विधानसभा सीट्स तक अपनी तैयारी शुरू कर दी, और इसी के चलते कुल मिलाकर पार्टी 3 सर्वे करा रही है। सूत्रों के मुताबिक 2 सर्वे एक प्राइवेट एजेंसीज के द्वारा किए जा रहे हैं, तो तीसरा सर्वे संगठन के द्वारा किया जा रहा है। आकलन ये करना है हर बूथ पर, हर विधानसभा पर कौन उम्मीदवार है जो जिताऊ हो सकता है, कौन उम्मीदवार है जो जातीय समीकरणों को साध सकता है। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी को लगता है कि सर्वे के जरिए हर बूथ के, हर विधानसभा के एक फ्रेश जातीय आंकड़े सामने आ सकते हैं। यूं तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से या डेटा के जरिए जातीय आंकड़े मिल जाते हैं, लेकिन सपा को ऐसा लगता है कि अपने स्तर पर भी जातीय आंकड़े निकालने चाहिए, क्योंकि कई ऐसे विधानसभा सीट्स हैं जहां पर सपा को कुछ चौंकाने वाले जातीय आंकड़े मिले हैं, जो पेपर्स पर कुछ और थे लेकिन जमीन पर सर्वे में कुछ और सामने आए हैं। और इसी के चलते 2 एजेंसीज और संगठनात्मक तौर पर समाजवादी पार्टी के यूथ विंग्स मिलकर ये सर्वे कर रहे हैं। सर्वे अलग है लेकिन एक तरीके से माहौल एक है कि विधानसभा में जिताऊ कैंडिडेट हो जिससे सही उम्मीदवार चुना जा सके और चुनाव जीता जा सके।
5: समाजवादी पार्टी तो इसी दावे पर है कि उनके पास तो युवाओं के सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव मौजूद हैं, जिनकी युवाओं में पहुंच भी है और पकड़ भी।
11: बीजेपी एक प्लानिंग के तहत अब जो है उनकी जो यूथ विंग है उनको जिम्मेदारी दे रही है कि स्कूल कॉलेजेस में जाएं। यूपी सरकार के तमाम मंत्री भी अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में ये काम करने वाले हैं, जैसे कि मनोज पांडे आज रायबरेली से कर रहे हैं, वो युवाओं का सम्मेलन कर रहे हैं, युवाओं से मिलेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे, तमाम अन्य मंत्री भी प्लान आउट कर रहे हैं। तो ये जेंजी कितना बड़ा वोटर एकदम से यूपी में हो गया है?
12: देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी अब कर रही है, समाजवादी पार्टी तो नौजवानों की पार्टी रही है और सबसे ज्यादा यंग मिनिस्टर्स और यंग लोगों को चुनाव लड़ने का मौका या यंग लोगों की बात अगर किसी ने सबसे ज्यादा की है तो वो समाजवादी पार्टी के संस्थापक आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, श्रद्धेय नेता जी ने की थी, और अब उसी मशाल को आगे लेकर के आदरणीय अखिलेश यादव जी चल रहे हैं। और लगातार जिन जेंजीज की बात आज सरकार जागी है इन आंदोलन के बाद, समाजवादी पार्टी ने सबसे कम उम्र के लोगों को चुनाव लड़ा करके सदन में भेजा। कर मुझे अपना मैं अगर बात करूं तो मैं जब 25 साल 4 दिन की थी तब मैंने नॉमिनेशन किया था, तो मैं भी एक जेंजी हूं। और साथ ही साथ अब मैं देखूं तो हमारी पार्टी में सबसे ज्यादा युवा विधायक हैं जो 25 साल के हैं, 25 साल के हमने सांसद बनाए।
5: लेकिन खबरें तो ये भी हैं कि जेंजी को मिल रहे इस समर्थन से तमाम राजनीतिक पार्टियों के बड़े बड़े और पुराने नेता बहुत परेशान हैं, उन्हें अपनी सीट खिसकने का डर सता रहा है।
11: खबर ये भी है कि जेंजी फोर्स को देखते हुए यूपी के तमाम वरिष्ठ और दिग्गज नेताओं की जमीन खिसकी हुई है। कई राजनीतिक दलों के वरिष्ठ विधायक ऐसे भी हैं जिन्हें लगता है कि कहीं उनका इस बार विधानसभा चुनाव में टिकट ही ना कट जाए, क्योंकि एक बात तो साफ है, सभी राजनीतिक दल इस बार जेंजी को उम्मीदवारी में उतारने वाले हैं। यानी कि इस बार जो उम्मीदवारों की एक लिस्ट आएगी, चाहे विपक्ष की हो चाहे सरकार की हो, उसमें जेंजी को तवज्जो मिलनी तय है। ऐसे में एक दिलचस्प बात की चर्चा यह भी है, जो विधायक पहले अपनी पत्नी या पति के नाम से जाने जाते थे, जिनको टिकट मिलता था, वो अब जेंजी के पिता के नाम से, यानी कि जेंजी विधायक के पिता के नाम से भी जाने जाएंगे।
5: समर श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
4: हमारे देश की राजनीतिक पार्टियों को अचानक से अब युवा वोटर्स की याद आने लगी है, लेकिन सवाल यह है कि युवाओं के वोट तो हर पार्टी को चाहिए, लेकिन उनकी भागीदारी कितनी है और क्या युवा वोटर सरकारों को गिराने और बनाने का दम रखते हैं? इसका पहला टेस्ट उत्तर प्रदेश में होगा।
13: जेन जी के इस फोर्स की राजनीतिक ताकत पूरे देश ने देखी और सरकारों ने महसूस की। दिल्ली से लेकर झारखंड तक युवाओं की ताकत का अनुमान इस देश के हुक्मरानों को हो चुका है, इसीलिए अब राजनीतिक पार्टियों के एजेंडे पर यही जेन जी। और जेन जी की ताकत का पहला इम्तिहान होने वाला है उत्तर प्रदेश में, जहां सबसे पहले चुनाव होंगे। वैसे तो राजनीतिक दलों के एजेंडे पर हमेशा से ही युवा रहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान की राजनीतिक पार्टियों में युवाओं की भूमिका एक वोटर से ज्यादा कुछ नहीं रहती। लेकिन अब ऐसा लगता है कि मौजूदा आंदोलन के बाद इन पार्टियों में जेन जी को बड़ी जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं, इसीलिए सारी पार्टियों का फोकस इस वक्त इसी युवा वोटर पर है।
14: उत्तर प्रदेश की सभी राजनीतिक पार्टियों को यह समझ में आ गया है कि आखिर जेन जी की ताकत क्या है। खासकर दिल्ली के जंतर मंतर में हुए प्रोटेस्ट के बाद ये बात साफ हो गई है कि जेन जी को खुश रखना जरूरी है। जिस पार्टी के नेता ये कहते थे कि कितना भी बड़ी बात हो जाए हम अपने मंत्री का इस्तीफा नहीं कराते हैं, उसी पार्टी के नेताओं को धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कराना पड़ा है। अगला चुनाव उत्तर प्रदेश का है, इसलिए सभी राजनीतिक दल जानते हैं कि जेन जी एक बेहद अहम वोट है और इसीलिए उसको महत्व देना भी जरूरी है। नतीजा जेन जी चौपाल, जेन जी तिरंगा यात्रा और जेन जी के बीच जाकर बातें करना, परेशानियां समझना।
13: उत्तर प्रदेश में हर पार्टी जेन जी पर जोर लगा रही है। बीजेपी ने मंत्रियों की जेन जी चौपाल लगाई है। समाजवादी पार्टी चुनावों के लिए युवाओं का सर्वे करवा रही है। बीएसपी ने ऐलान किया है कि वो युवाओं को प्रत्याशी बनाएंगे। कांग्रेस के राहुल गांधी तो लगातार छात्रों के मुद्दों को उठा ही रहे हैं, और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि यूपी में जेन जी एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल फोर्स है। जेन जी का मतलब हुआ 1997 से 2012 के बीच पैदा हुई जनरेशन। इस हिसाब से 14 से 29 साल के लोग जेन जी हुए, लेकिन भारत में मतदान की उम्र 18 साल है, तो उत्तर प्रदेश में 18 से 29 साल के युवा वोटर्स की संख्या करीब 21.19% है, जो बनते हैं करीब 3,27,00,000। अब अगर इतनी बड़ी संख्या में जेन जी वोटर होंगे तो राजनीतिक दल तो जोर लगाएंगे ही। मतलब कि अगर जेन जी किसी एक पार्टी को तय कर ले तो उसका चुनाव जीतना तय है, और इसी फोर्स को उत्तर प्रदेश की पार्टियां अच्छे से समझ रही है। इसीलिए आज बीएसपी ने भी युवाओं के लिए बड़े बड़े ऐलान किए हैं। बीएसपी का कहना है कि आने वाले चुनावों में वो प्रत्याशियों के चयन में युवाओं को प्राथमिकता देगी। जालौन की माधोगढ़ सीट से बसपा ने आशीष पांडे को अपना पहला प्रत्याशी घोषित किया है, जो पार्टी के युवा चेहरों में शामिल है। बीएसपी की रणनीति, संगठन, सोशल मीडिया और चुनावी मैदान तीनों स्तरों पर युवा नेतृत्व को आगे लाने की है। पार्टी को उम्मीद है कि जेन जी और युवा मतदाताओं के बीच सक्रियता बढ़ाकर वो 2027 के विधानसभा चुनाव में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत कर सकती है। मायावती ने अपने भतीजे और राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद को जेन जी की नब्ज टटोलने की जिम्मेदारी दी है। हालांकि आकाश खुद जेन जी नहीं है, 32 साल के हैं, युवा हैं। युवाओं की तासीर और उनके मुद्दों को कितना समझते हैं ये पता नहीं, लेकिन बीएसपी को सोशल मीडिया पर सक्रिय रखने की जिम्मेदारी भी आकाश आनंद की टीम संभाल रही है। हाथरस के सादाबाद में आकाश ने अपनी चुनावी तैयारियां भी दिखा दी और यहां से युवाओं को संदेश भी दिया।
15: हमारे समाज के बच्चे अगर पढ़ गए तो अपने अधिकारों के लिए लड़ना खड़े हो जाएंगे, लड़ेंगे अपने अधिकारों के लिए। तो जैसे आपने देखा था अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में, हमारी जनरेशन के बच्चे अपने अधिकारों के लिए लड़े, वैसे ही हमारे समाज के बच्चे प्रदेश के कोने कोने में चौराहे चौराहे पर इनसे सवाल करेंगे, आरक्षण के लिए, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए और लॉ एंड ऑर्डर के लिए, रोजगार के लिए, तब इनके लिए जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। साथियों, जो सरकार स्कूल बंद कर दे, जो सरकार आपके स्कूलों में पढ़ने वाले टीचरों की भर्ती ना करे, क्या वो सरकार लायक है आपके प्रदेश में सत्ता में रहने के लिए?
14: ये भी उठता है कि आखिर एकदम से उत्तर प्रदेश की राजनीतिक पार्टियों को जेन जी की याद क्यों आई? क्या अगर दिल्ली में या रांची में ये प्रदर्शन ना हुए होते तो राजनीतिक दल यूपी के जेन जी को इतना महत्व दे रहे होते? क्या यही मंत्री जगह जगह जाकर चौपाले कर रहे होते, या फिर यूपी सरकार नई युवा नीति की बात भी कर रही होती है? ऐसा कोई ऑर्डर भी आने वाला होता बड़ी बात तो ये है, यूपी में जेंजी एक बड़ा वोटर है जो चुनाव के नतीजों में बदलाव भी कर सकता है, लेकिन कभी भी विधानसभा चुनावों में उनके हक के मुताबिक उन्हें टिकट नहीं मिले। अब दिलचस्प होगा देखना इस यूपी चुनाव में क्या सियासी गणित बदलती है और जेंजी को उनका हक मिलता है।
13: आंकड़े तो यही बता रहे हैं कि राजनीतिक दलों को युवाओं के वोट तो चाहिए लेकिन उन्हें हिस्सेदारी नहीं देनी है। कुल 543 लोकसभा सांसदों में से सिर्फ 6 सांसद ही जेंजी हैं। पूरे देश में कुल 4131 विधायक हैं और पूरे देश भर में सिर्फ 20 जेंजी विधायक हैं। हालांकि ये भी एक फैक्ट है कि 2022 के बाद ही जेंजी चुनाव लड़ने की उम्र में आए, लेकिन 2022 से भी इस देश में बहुत से चुनाव हुए हैं। सबसे ज्यादा जेंजी विधायक तमिलनाडु में है 4, इनमें से 3 टीवीके के हैं और 1 एडीएमके के। पश्चिम बंगाल में 3 जेंजी विधायक हैं, तीनों बीजेपी के हैं। इसके अलावा बिहार, मेघालय और तेलंगाना में 2-2 जेंजी विधायक हैं। इन सभी राज्यों में 2023 से 2026 के बीच चुनाव हुआ। ये आंकड़े बता रहे हैं कि राजनीतिक दलों ने युवाओं को वोटर तो समझा लेकिन उन्हें भागीदारी नहीं दी। हालांकि यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि भारत में सांसद या विधायक बनने के लिए आपको 25 साल का होना जरूरी है। इस हिसाब से जेंजी सिर्फ 4 साल पहले ही चुनाव लड़ने के लायक बने हैं, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि आने वाले चुनावों में तमाम पार्टियां अपने टिकटों में जेंजी उम्मीदवारों की संख्या बढ़ाकर रखेंगी। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
4: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर हर सुबह आपके मोबाइल में, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें epaper.aajtak.in या स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करें।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: सीपीएम मोदी के दिमागी नक्सल के उल्लेख पर सुलगी राजनीति, कहा अवसर की तलाश में ऐसे लोग। कांग्रेस का पलटवार, पहले किसानों और युवाओं को प्रधानमंत्री ने कहा था नक्सली। वंदे मातरम पर छिड़ी नई जंग, बीजेपी का आरोप। कांग्रेस मुख्यालय में सोनिया और खड़गे ने किया राष्ट्रगीत का अपमान। कांग्रेस का जवाब, ऐसी कोई कोशिश नहीं। अटारी बॉर्डर पर जोश जुनून जज्बे का रंग, बीएसएफ ने जश्न आजादी की हुंकार भरी। तिरंगे में रंगी दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा। रांची में छात्रों की चेतावनी, मांगे पूरी नहीं तो 20 को करेंगे सीएम के घर का घेराव। परीक्षा में गड़बड़ी की सीबीआई जांच, आज राहुल और सोरेन का करेंगे पुतला दहन। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन मिश्रा ने लॉ छात्रों से मांगी माफी, कहा अगर भावनाएं आपकी आहत हुई तो खेद, नलसार विवाद में हुआ था बवाल। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित किया, विकसित भारत के लक्ष्य को दोहराया। सप्त सिंधु से सप्त धरा मंत्र पीएम ने दिया। 15 अगस्त का कार्यक्रम एक और मायने में विशेष रहा, पहली बार वंदे मातरम की धुन सुनाई दी, लेकिन इस पर दिल्ली में राजनीति भी देखने को मिली।
1: कांग्रेस दफ्तर में वंदे मातरम के दौरान सोनिया गांधी के इशारा करने की इन तस्वीरों पर बीजेपी सवाल पूछ रही है। बीजेपी इसे वंदे मातरम का अपमान बता रही है।
2: एक बहुत विचित्र, विडंबनापूर्ण और दुर्भाग्यपूर्ण दृश्य देखने को मिला जब कांग्रेस कार्यालय में वंदे मातरम गीत गाया जा रहा था। उस समय कांग्रेस की सुप्रीम लीडर सोनिया गांधी जी, सुपर अध्यक्ष राहुल गांधी जी और सिटिंग अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी बहुत ही विचित्र और आपत्तिजनक तरीके से असम्मान व्यक्त करते हुए एक दूसरे से बातचीत करते हुए नजर आए, किसी को बुलाते हुए नजर आए, और कोई व्यक्ति आकर उनसे कुछ बता भी रहा था और एक दूसरे को इशारे कर रहे थे। यह राष्ट्रगीत वंदे मातरम के प्रति उनका अपमान है।
1: बीजेपी के सवालों पर कांग्रेस का जवाब आया, इशारों के पीछे की वजह बताई गई।
3: आज यहाँ इंदिरा भवन में पूरा वंदे मातरम गाया गया, इसमें कोई वाद विवाद का सवाल नहीं उठता, कोई रोकने का प्रयास नहीं था, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस अध्यक्ष खड़े हुए थे, सोनिया जी कह रही थी उनके लिए कुर्सी लाके रख दो, बस कोई नहीं था।
1: वंदे मातरम पर यह घमासान उस वक्त शुरू हुआ है जब वंदे मातरम के पूर्ण संस्करण को हाल ही में राष्ट्रगान के समान कानूनी संरक्षण दिया गया है। 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्र के नाम संबोधन से पहले और उसके समापन पर भी वंदे मातरम बजाया गया था। वहीं आज पहली बार लाल किले में भी राष्ट्रगान से पहले वंदे मातरम गाया गया। संसद में वंदे मातरम बिल पारित के बाद अब 15 अगस्त पर इसके घमासान की पहली सियासी किश्त सामने आई है।
4: आजादी के बाद 15 अगस्त को लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं तो इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
1: आज तक ब्यूरो।
0: पीएम मोदी ने अपने भाषण में दिमागी नक्सल, महिला आरक्षण जैसे मुद्दों का उल्लेख किया जिस पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है।
5: Let's go!
1: लाल किले की प्राचीर से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्वजारोहण किया तो साथ में महिला सैन्य अधिकारी नजर आईं और पीएम ने भाषण में महिला आरक्षण पर विपक्ष से साथ आने की अपील की।
4: मैं देश के सभी राजनीतिक दलों से आज लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे की छाया में खड़े होकर के प्रार्थना करता आग्रह करता आइए उन महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनिए, उन महिलाओं के सम्मान में आगे आइए और जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, वे भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है।
1: पीएम की महिला आरक्षण को लेकर इस अपील पर कांग्रेस सरकार से सवाल पूछ रही है।
5: कानून बन चुका है, राहुल गांधी जी बार बार ही तो कहते हैं जब कानून बन चुका है लागू क्यों नहीं कर रहे आप लोग। अब वो सपना देख रहे हैं, हम तो 800 संख्या बढ़ाएंगे पहले पार्लियामेंट के अंदर, असेंबली में बढ़ाएंगे, इसके मायने की परिसमन अपने हाथ में ले लेंगे।
6: महिला आरक्षण को लगातार दोयम दर्जा देने के लिए, पीछे धकेलने के लिए यदि कोई जिम्मेदार है तो स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2023 में जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया तो उसको दो शर्तों की बैसाखी पर खड़ा करने वाला कौन था? परिसीमन और जनगणना से जोड़ने वाला कौन था? वो प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार थी।
1: उधर पीएम मोदी ने नक्सल के सफाए का जिक्र किया तो वहीं दिमागी नक्सल से लड़ाई की बात कही।
4: हथियारी नक्सल तो गए लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा।
7: पहले भी जिनको जमीनी नक्सल कहा फिर उन्हीं किसानों की बात माननी पड़ी, नौजवानों को नक्सल कहा फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ा। तो पहले तो ये हाथ पांव मारते हैं नक्सल नक्सल नक्सल और उसके बाद उनकी बात मान लेते हैं।
8: पहले तो दिमागी नक्सल की परिभाषा बताओ, क्या दिमागी नक्सल की क्या परिभाषा होती है, किसे आप दिमागी नक्सल करेंगे? ये तो एक आपने मुहावरा बना दिया, हर व्यक्ति दिमागी नक्सल हो सकता, तो ये कहना अपने आप में मुझे लगता है तमाम उन युवाओं का अपमान है।
1: इस बीच एक सियासत राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के लाल किले के कार्यक्रम में ना शामिल होने को लेकर भी हो रही है। लगातार दूसरे साल कांग्रेस के बड़े नेताओं ने इस अहम सरकारी कार्यक्रम से दूरी बनाए रखी। राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समारोह में नहीं पहुंचे। 2024 को 15 अगस्त के कार्यक्रम में राहुल गांधी की सीट को लेकर विवाद हुआ था, जहां राहुल गांधी पीछे की सीट पर बैठे थे। ऐसे में राहुल के नदारद होने को एक बार फिर सीट अरेंजमेंट के विवाद से जोड़ा जा रहा है। आज तक ब्यूरो।
0: लाल किले से पीएम मोदी ने जेन जी हो या जेन अल्फा सबके लिए सौगात का ऐलान किया। एआई ट्रेनिंग को लेकर भी बड़ा ऐलान किया।

0: मेरे प्यारे देशवासियों, डिफेंस में आत्मनिर्भर होना अब भारत ने अनुभव कर लिया, दुनिया ने अनुभव कर लिया है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे। हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है।
1: लाल किले की प्राचीर से आज तिरंगा सिर्फ आसमान में नहीं लहरा रहा था, भारत के भविष्य की तस्वीर भी सामने रखी जा रही थी और उस तस्वीर के केंद्र में था भारत का युवा। प्रधानमंत्री ने साफ संदेश दिया, भारत की अगली उड़ान का इंजन युवा होगा।
0: जब मैं विकसित भारत की बात कर रहा हूँ, देश को तेज गति से आगे बढ़ाने की बात कर रहा हूँ, उसका सबसे बड़ा लाभार्थी कौन है? इन सारे प्रयासों का सबसे बड़ा साधक कौन है? अगर साधक है तो मेरे देश का युवा है, मेरे देश की युवा शक्ति है। विकसित भारत की यात्रा में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। इतना ही नहीं, विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी मेरे देश का युवा है और इसलिए हमें विकसित भारत के लक्ष्य को युवाओं के साथ जोड़ करके आगे बढ़ाना है। ऊंचे
1: होने जेन जी हो या जेन अल्फा, संदेश साफ था, भारत का भविष्य सिर्फ युवाओं के लिए नहीं, युवाओं के हाथों से बनेगा। आत्मनिर्भर भारत, युवा शक्ति, तकनीक, राष्ट्रीय सुरक्षा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की ताकत और भविष्य का खाका खींचा। 1 करोड़ युवाओं को AI ट्रेनिंग, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग, 5 से 15 साल के बच्चों के लिए स्पोर्ट्स टैलेंट हंट, स्टार्टअप और इनोवेशन को बढ़ावा, मैन्युफैक्चरिंग में रोजगार के नए अवसर, सेमीकंडक्टर से लेकर डिफेंस तक आत्मनिर्भर युवा शक्ति। हालांकि विपक्ष पूछता है AI की ट्रेनिंग के साथ रोजगार कितना बढ़ेगा, फ्री कोचिंग के साथ परीक्षा व्यवस्था कितनी पारदर्शी होगी, टैलेंट हंट के साथ खेलों में अवसर कितने बढ़ेंगे और क्या युवा की आवाज सिर्फ चुनाव के समय सुनी जाएगी।
2: प्रधानमंत्री जी का सवालों का जवाब न देना पार्लियामेंट में क्या ये लोकतंत्र का तरीका है? हमने क्या उठाया? लोकसभा में हो, राज्यसभा में हो, हमने जो सवाल उठाए वो विद्यार्थियों के सवाल थे। मैं पूछता हूं मेरे दोस्त, अगर तुम पार्लियामेंट में आते क्या तुम्हारा उम्र कम होने वाली थी? क्या तुम्हारी पार्टी घटने वाली थी?
1: इसी बेचैनी के बीच बाबा रामदेव ने भी सरकारी भर्तियों में भ्रष्टाचार और युवाओं के असंतोष का मुद्दा उठाया। उन्होंने चेतावनी दी कि व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो युवाओं का आंदोलन फिर तेज हो सकता है।
3: चारों तरफ देश में हंगामा है, छोटे छोटे स्कूल कॉलेजों से बच्चे निकल रहे हैं कि हमारे यहाँ टीचर नहीं है, हमारे यहाँ लाइट नहीं है, हमारे यहाँ पानी नहीं है, हमारे यहाँ शौचालय नहीं है, हमारे यहाँ टीचर है तो किताबें नहीं है, किताबें हैं तो टीचर नहीं है, और टीचर है तो पढ़ाई में नकल हो जाती है, कहीं पेपर लीक हो जाता है। ऐसे ही आंदोलन करना पड़ा तो देश कैसे चलेगा? इसलिए भाई सुधर जाओ, नहीं तो देश में आंदोलन और ज्यादा भी हो सकते हैं। आंदोलन के नाम पर मैं अराजकता अनार्की का समर्थक नहीं हूं, लेकिन भाई ये बात तो जरूर है देश में घपला भी बहुत है, ये घपले ठीक कर लो, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि बाबा रामदेव को दोबारा आंदोलन करना पड़े।
1: प्रधानमंत्री ने युवाओं से 2047 का निर्माता बनने का आह्वान किया है, क्योंकि आज का युवा कल का नागरिक नहीं, आज के भारत का सबसे बड़ा निर्माता है। आज तक ब्यूरो।
4: जेन जी वोटर्स पर अचानक से हर पार्टी का फोकस बढ़ गया। जंतर मंतर प्रदर्शन के बाद यूपी चुनाव जेन जी की पहली प्रयोगशाला बनने जा रहा है और इसीलिए युवाओं को अपने पाले में करने के लिए पार्टियां हर तरह के और तरह तरह के हथकंडे अपना रही हैं।
5: जंतर मंतर आंदोलन की इन तस्वीरों ने देश की सियासत की रणनीति को और नए सिरे से गढ़ने पर हर पार्टी को मजबूर कर दिया है। धर्म और जाति के समीकरण पर अब जेन जी की इक्वेशन भारी नजर आ रही है। जेन जी पर जारी घमासान के बाद अब पहली बड़ी परीक्षा यूपी का विधानसभा चुनाव है, जहां सबकी नजरें इस बात पर है कि क्या रील और सोशल मीडिया पर दिख रही तस्वीर मतदान में तब्दील होगी। लेकिन इसे लेकर कोई पार्टी जोखिम नहीं लेना चाहती और यूपी के मुख्यमंत्री योगी

0: आदित्यनाथ भी जेन जी की इस ताकत को समझ रहे हैं, जिसकी एक तस्वीर उनके आज 15 अगस्त के भाषण में भी देखने को मिली।
1: जेन जी और जेन अल्फा के लिए एआई, मशीन लर्निंग, सेमीकंडक्टर, स्टार्टअप इकोसिस्टम, डेटा सेंटर, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, साइबर, रोबोटिक, इलेक्ट्रिक व्हीकल, एग्रीटेक, फिनटेक, डीपटेक, मेडटेक जैसे क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश ने तेजी के साथ जो कार्य आगे बढ़ाया है उसमें निवेश, नवाचार और एम्प्लॉयमेंट के नए द्वार खुल रहे हैं।
0: योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में पेपर लीक जैसे मुद्दों का जिक्र किया और छात्रों का भरोसा जीतने की कोशिश की।
1: स्वाधीनता दिवस के अवसर पर मैं प्रदेश के युवाओं से कहना चाहता हूं, आपकी प्रतिभा से ही यूपी की शक्ति निहित है। हमारी सरकार ने नकल माफिया, भर्ती माफिया के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की है। हम अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को डेवलपमेंट इंजन के रूप में बदल रहे हैं।
2: यूपी के अंदर बहुत शीघ्र युवा नीति लेकर के आ रहे हैं।
0: यूपी चुनाव के लिए फोकस पूरी तरह से युवा मतदाताओं पर केंद्रित हो चुका है, जिसकी तस्वीरें ग्राउंड से भी नजर आ रही हैं। यूपी सरकार के तमाम बड़े मंत्री ऐसे ही स्कूल कॉलेजों में पहुंचकर सीधा युवाओं से संवाद कर रहे हैं। बीजेपी की सरकार सीधे युवाओं के मन की बात टटोल रही है, इसीलिए मंत्री अपने अपने क्षेत्रों में जेन जी चौपाले लगा रहे हैं। इस अभियान के तहत विधानसभा बार 10-10 युवाओं की टीमें तैयार की जा रही हैं। टीम के सदस्य स्कूल कॉलेजों के युवाओं से बातचीत कर उनकी समस्याओं, अपेक्षाओं और सरकार को लेकर उनकी राय जानेंगे। टीम उन्हें सरकार की ओर से युवाओं के लिए शुरू की गई योजनाओं, रोजगार कार्यक्रम की जानकारी देगी, विधानसभा स्तर पर गठित होने वाले कार्यक्रमों और संवाद की जिम्मेदारी दी जाएगी। ये अभियान शुरू भी हो चुका है। कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे ने रायबरेली में बड़े स्तर पर युवाओं से संपर्क साधा, उनसे बातचीत की, उनकी समस्याएं सुनी।
3: आपके क्षेत्र में कार्यक्रम था तिरंगा यात्रा से लेकर युवा संवाद?
4: जी, आप देख रहे हैं जिस तरीके से आज युवा संवाद कार्यक्रम यहाँ रखा गया, कई हजार यूथ आज इस युवा संवाद में शामिल हुए और ये उनसे सीधे संवाद हुआ। उन्होंने अपनी भावनाएं भी बताई, अपनी दिक्कतों को भी बताई और उन्होंने सराहना भी किया भारत के प्रधानमंत्री जी के कार्यों के और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के। ये यूथ हमारा भविष्य है, ये हमारे कल हैं और इन यूथ के साथ संवाद होना जरूरी है। इनसे जब कम्युनिकेशन गैप रहता है तो बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं। इनसे लगातार हम सबका संवाद रहेगा और इनकी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें भी हम सबको जानकारी में आई है, जिसको हम लोग आगे धीरे धीरे करके उसे भी ठीक करने का भी काम करेंगे।
0: बीजेपी का टारगेट यही लगता है कि 2027 के चुनाव में युवाओं के तमाम वोट्स पर कब्जा हो, इसीलिए सीधे मुख्यमंत्री भी सक्रिय हैं, लगातार युवाओं की बात कर रहे हैं।
5: हमारा युवा प्रतिभाशाली है, हमारा युवा ऊर्जा का प्रतीक है, हमारा युवा देश की हर चुनौती का सामना करने की सामर्थ्य रखता है और उस सामर्थ्य के प्रतीक इस युवा ऊर्जा को आगे बढ़ने के लिए एक उचित प्लेटफॉर्म प्राप्त हो, वो अपने परंपरागत पाठ्यक्रम के साथ साथ देश और समाज की उन चुनौतियों का भी सामना करने के लिए अपने आप को तैयार कर सके।
0: यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ युवाओं से हवा हवाई बातें नहीं कर रहे, बल्कि उनके लिए पूरी युवा नीति तैयार की जा रही है, लंबी चौड़ी रणनीति है। सरकारी कोचिंग में आईएएस और पीएससी की तैयारी करने वालों की कलेक्टर और कप्तान की क्लास होगी। नीट की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए मुफ्त में डॉक्टरों की क्लास होगी। आईआईटी की तैयारी करने वालों को आईआईटीएन अफसर पढ़ाएंगे। बैंक पीओ की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए सरकारी बैंक के मैनेजर मार्गदर्शन करेंगे।
2: यूपी के अंदर बहुत शीघ्र युवा नीति लेकर के आ रहे हैं। हर जिले के अंदर, हर महाविद्यालय के अंदर, हर विश्वविद्यालय के अंदर युवा के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था, आपको प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करनी हो, आपको आपके महाविद्यालय विश्वविद्यालय में हम वर्चुअल भी और फिजिकल भी वहां क्लास की व्यवस्था रहेगी। और पढ़ाने वाले कौन होंगे? पढ़ाने वाला होगा वहां का डीएम भी एक घंटा देगा, एसपी एक घंटा देगा, क्योंकि इन्होंने यूपीएससी क्लियर किया।
0: बीजेपी के अलावा समाजवादी पार्टी की भी युवाओं को लेकर अपनी तैयारी है। समाजवादी पार्टी ने भी चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। सबसे पहला काम सर्वे से शुरू हो रहा है, वहां भी जीताऊ प्रत्याशी खोजे जा रहे हैं।
6: यूपी चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने बूथ स्तर से लेकर विधानसभा सीट्स तक अपनी तैयारी शुरू कर दी, और इसी के चलते कुल मिलाकर पार्टी 3 सर्वे करा रही है। सूत्रों के मुताबिक 2 सर्वे एक प्राइवेट एजेंसीज के द्वारा किए जा रहे हैं, तो तीसरा सर्वे संगठन के द्वारा किया जा रहा है। आकलन ये करना है हर बूथ पर, हर विधानसभा पर कौन उम्मीदवार है जो जिताऊ हो सकता है, कौन उम्मीदवार है जो जातीय समीकरणों को साध सकता है। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी को लगता है कि सर्वे के जरिए हर बूथ के, हर विधानसभा के एक फ्रेश जातीय आंकड़े सामने आ सकते हैं। यूं तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से या डेटा के जरिए जातीय आंकड़े मिल जाते हैं, लेकिन सपा को ऐसा लगता है कि अपने स्तर पर भी जातीय आंकड़े निकालने चाहिए, क्योंकि कई ऐसे विधानसभा सीट्स हैं जहां पर सपा को कुछ चौंकाने वाले जातीय आंकड़े मिले हैं, जो पेपर्स पर कुछ और थे लेकिन जमीन पर सर्वे में कुछ और सामने आए हैं। और इसी के चलते 2 एजेंसीज और संगठनात्मक तौर पर समाजवादी पार्टी के यूथ विंग्स मिलकर ये सर्वे कर रहे हैं। सर्वे अलग है लेकिन एक तरीके से माहौल एक है कि विधानसभा में जिताऊ कैंडिडेट हो, जिससे सही उम्मीदवार चुना जा सके और चुनाव जीता जा सके।
0: समाजवादी पार्टी तो इसी दावे पर है कि उनके पास तो युवाओं के सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव मौजूद हैं, जिनकी युवाओं में पहुंच भी है और पकड़ भी।
6: बीजेपी एक प्लानिंग के तहत अब जो है उनकी जो यूथ विंग है उनको जिम्मेदारी दे रही है कि स्कूल कॉलेजेस में जाएं। यूपी सरकार के तमाम मंत्री भी अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में ये काम करने वाले हैं, जैसे कि मनोज पांडे आज रायबरेली से कर रहे हैं, वो युवाओं का सम्मेलन कर रहे हैं, युवाओं से मिलेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे। तमाम अन्य मंत्री भी प्लान आउट कर रहे हैं। तो ये जेंजी कितना बड़ा वोटर एकदम से यूपी में हो गया है?
7: देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी अब कर रही है, समाजवादी पार्टी तो नौजवानों की पार्टी रही है और सबसे ज्यादा यंग मिनिस्टर्स और यंग लोगों को चुनाव लड़ने का मौका या यंग लोगों की बात अगर किसी ने सबसे ज्यादा की है तो वो समाजवादी पार्टी के संस्थापक आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, श्रद्धेय नेताजी ने की थी। और अब उसी मशाल को आगे लेकर के आदरणीय अखिलेश यादव जी चल रहे हैं और लगातार जिन जेंजीज की बात आज सरकार जागी है इन आंदोलन के बाद, समाजवादी पार्टी ने सबसे कम उम्र के लोगों को चुनाव लड़ा करके सदन में भेजा। कर मुझे अपना मैं अगर बात करूं तो मैं जब 25 साल 4 दिन की थी तब मैंने नॉमिनेशन किया था, तो मैं भी एक जेंजी हूं। और साथ ही साथ अब मैं देखूं तो हमारी पार्टी में सबसे ज्यादा युवा विधायक हैं जो 25 साल के हैं, 25 साल के हमने सांसद बनाए।
0: लेकिन खबरें तो ये भी हैं कि जेंजी को मिल रहे समर्थन से तमाम राजनीतिक पार्टियों के बड़े बड़े और पुराने नेता बहुत परेशान हैं, उन्हें अपनी सीट खिसकने का डर सता रहा है।
6: खबर ये भी है कि जेंजी फोर्स को देखते हुए यूपी के तमाम वरिष्ठ और दिग्गज नेताओं की जमीन खिसकी हुई है। कई राजनीतिक दलों के वरिष्ठ विधायक ऐसे भी हैं जिन्हें लगता है कि कहीं उनका इस बार विधानसभा चुनाव में टिकट ही ना कट जाए, क्योंकि एक बात तो साफ है, सभी राजनीतिक दल इस बार जेंजी को उम्मीदवारी में उतारने वाले हैं। यानी कि इस बार जो उम्मीदवारों की एक लिस्ट आएगी, चाहे विपक्ष की हो चाहे सरकार की हो, उसमें जेंजी को तवज्जो मिलनी तय है। ऐसे में एक दिलचस्प बात की चर्चा यह भी है, जो विधायक पहले अपनी पत्नी या पति के नाम से जाने जाते थे, जिनको टिकट मिलता था, वो अब जेंजी के पिता के नाम से, यानी कि जेंजी विधायक के पिता के नाम से भी जाने जाएंगे।
0: समर श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
8: हमारे देश की राजनीतिक पार्टियों को अचानक से अब युवा वोटर्स की याद आने लगी है, लेकिन सवाल यह है कि युवाओं के वोट तो हर पार्टी को चाहिए, लेकिन उनकी भागीदारी कितनी है और क्या युवा वोटर सरकारों को गिराने और बनाने का दम रखते हैं? इसका पहला टेस्ट उत्तर प्रदेश में होगा।
9: जेन जी के इस फोर्स की राजनीतिक ताकत पूरे देश ने देखी और सरकारों ने महसूस की। दिल्ली से लेकर झारखंड तक युवाओं की ताकत का अनुमान इस देश के हुक्मरानों को हो चुका है, इसीलिए अब राजनीतिक पार्टियों के एजेंडे पर यही जेन जी। और जेन जी की ताकत का पहला इम्तिहान होने वाला है उत्तर प्रदेश में, जहां सबसे पहले चुनाव होंगे। वैसे तो राजनीतिक दलों के एजेंडे पर हमेशा से ही युवा रहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान की राजनीतिक पार्टियों में युवाओं की भूमिका एक वोटर से ज्यादा कुछ नहीं रहती। लेकिन अब ऐसा लगता है कि मौजूदा आंदोलन के बाद इन पार्टियों में जेन जी को बड़ी जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं, इसीलिए सारी पार्टियों का फोकस इस वक्त इसी युवा वोटर पर है।
6: उत्तर प्रदेश की सभी राजनीतिक पार्टियों को यह समझ में आ गया है कि आखिर जेन जी की ताकत क्या है। खासकर दिल्ली के जंतर मंतर में हुए प्रोटेस्ट के बाद ये बात साफ हो गई है कि जेन जी को खुश रखना जरूरी है। जिस पार्टी के नेता ये कहते थे कि कितना भी बड़ी बात हो जाए हम अपने मंत्री का इस्तीफा नहीं कराते हैं, उसी पार्टी के नेताओं को धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कराना पड़ा है। अगला चुनाव उत्तर प्रदेश का है, इसलिए सभी राजनीतिक दल ये जानते हैं कि जेन जी एक बेहद अहम वोट है और इसीलिए उसको महत्व देना भी जरूरी है। नतीजा जेन जी चौपाल, जेन जी तिरंगा यात्रा और जेन जी के बीच जाकर बातें करना, परेशानियां समझना।
9: उत्तर प्रदेश में हर पार्टी जेन जी पर जोर लगा रही है। बीजेपी ने मंत्रियों की जेन जी चौपाल लगाई है। समाजवादी पार्टी चुनावों के लिए युवाओं का सर्वे करवा रही है। बीएसपी ने ऐलान किया है कि वो युवाओं को प्रत्याशी बनाएंगे। कांग्रेस के राहुल गांधी तो लगातार छात्रों के मुद्दों को उठा ही रहे हैं, और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि यूपी में जेन जी एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल फोर्स है। जेन जी का मतलब हुआ 1997 से 2012 के बीच पैदा हुई जनरेशन। इस हिसाब से 14 से 29 साल के लोग जेन जी हुए, लेकिन भारत में मतदान की उम्र 18 साल है, तो उत्तर प्रदेश में 18 से 29 साल के युवा वोटर्स की संख्या करीब 21.19% है, जो बनते हैं करीब 3,27,00,000। अब अगर इतनी बड़ी संख्या में जेन जी वोटर होंगे तो राजनीतिक दल तो जोर लगाएंगे ही। मतलब कि अगर जेन जी किसी एक पार्टी को तय कर ले तो उसका चुनाव जीतना तय है, और इसी फोर्स को उत्तर प्रदेश की पार्टियां अच्छे से समझ रही है। इसीलिए आज बीएसपी ने भी युवाओं के लिए बड़े बड़े ऐलान किए हैं। बीएसपी का कहना है कि आने वाले चुनावों में वो प्रत्याशियों के चयन में युवाओं को प्राथमिकता देगी। जालौन की माधोगढ़ सीट से बसपा ने आशीष पांडे को अपना पहला प्रत्याशी घोषित किया है, जो पार्टी के युवा चेहरों में शामिल है। बीएसपी की रणनीति, संगठन, सोशल मीडिया और चुनावी मैदान तीनों स्तरों पर युवा नेतृत्व को आगे लाने की है। पार्टी को उम्मीद है कि जेन जी और युवा मतदाताओं के बीच सक्रियता बढ़ाकर वो 2027 के विधानसभा चुनाव में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत कर सकती है। मायावती ने अपने भतीजे और राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद को जेन जी की नब्ज टटोलने की जिम्मेदारी दी है। हालांकि आकाश खुद जेन जी नहीं है, 32 साल के हैं, युवा हैं। युवाओं की तासीर और उनके मुद्दों को कितना समझते हैं ये पता नहीं, लेकिन बीएसपी को सोशल मीडिया पर सक्रिय रखने की जिम्मेदारी भी आकाश आनंद की टीम संभाल रही है। हाथरस के सादाबाद में आकाश ने अपनी चुनावी तैयारियां भी दिखा दी और यहां से युवाओं को संदेश भी दिया।
10: हमारे समाज के बच्चे अगर पढ़ गए तो अपने अधिकारों के लिए लड़ना खड़े हो जाएंगे, लड़ेंगे अपने अधिकारों के लिए। तो जैसे आपने देखा था अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में, हमारी जनरेशन के बच्चे अपने अधिकारों के लिए लड़े, वैसे ही हमारे समाज के बच्चे प्रदेश के कोने कोने में चौराहे चौराहे पर इनसे सवाल करेंगे, आरक्षण के लिए, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए और लॉ एंड ऑर्डर के लिए, रोजगार के लिए, तब इनके लिए जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। साथियों, जो सरकार स्कूल बंद कर दे, जो सरकार आपके स्कूलों में पढ़ने वाले टीचरों की भर्ती ना करे, क्या वो सरकार लायक है आपके प्रदेश में सत्ता में रहने के लिए?
6: ये भी उठता है कि आखिर एकदम से उत्तर प्रदेश की राजनीतिक पार्टियों को जेन जी की याद क्यों आई? क्या अगर दिल्ली में या रांची में ये प्रदर्शन ना हुए होते तो राजनीतिक दल यूपी के जेन जी को इतना महत्व दे रहे होते? क्या यही मंत्री जगह जगह जाकर चौपाले कर रहे होते, या फिर यूपी सरकार नई युवा नीति की बात भी कर रही होती है, ऐसा कोई ऑर्डर भी आने वाला होता? बड़ी बात तो ये है, यूपी में जेंजी एक बड़ा वोटर है जो चुनाव के नतीजों में बदलाव भी कर सकता है, लेकिन कभी भी विधानसभा चुनावों में उनके हक के मुताबिक उन्हें टिकट नहीं मिले। अब दिलचस्प होगा देखना इस यूपी चुनाव में क्या सियासी गणित बदलती है और जेंजी को उनका हक मिलता है।
9: आंकड़े तो यही बता रहे हैं कि राजनीतिक दलों को युवाओं के वोट तो चाहिए लेकिन उन्हें हिस्सेदारी नहीं देनी है। कुल 543 लोकसभा सांसदों में से सिर्फ 6 सांसद ही जेंजी हैं। पूरे देश में कुल 4131 विधायक हैं और पूरे देश भर में सिर्फ 20 जेंजी विधायक हैं। हालांकि ये भी एक फैक्ट है कि 2022 के बाद ही जेंजी चुनाव लड़ने की उम्र में आए, लेकिन 2022 से भी इस देश में बहुत से चुनाव हुए हैं। सबसे ज्यादा जेंजी विधायक तमिलनाडु में हैं, 4, इनमें से 3 टीवीके के हैं और 1 एडीएमके के। पश्चिम बंगाल में 3 जेंजी विधायक हैं, 3 बीजेपी के हैं। इसके अलावा बिहार, मेघालय और तेलंगाना में 2 जेंजी विधायक हैं। इन सभी राज्यों में 2023 से 2026 के बीच चुनाव हुआ। ये आंकड़े बता रहे हैं कि राजनीतिक दलों ने युवाओं को वोटर तो समझा लेकिन उन्हें भागीदारी नहीं दी। हालांकि यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि भारत में सांसद या विधायक बनने के लिए आपको 25 साल का होना जरूरी है। इस हिसाब से जेंजी सिर्फ 4 साल पहले ही चुनाव लड़ने के लायक बने हैं, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि आने वाले चुनावों में तमाम पार्टी अपने टिकटों में जेंजी उम्मीदवारों की संख्या बढ़ाकर रखेंगे। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
8: और छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर हर सुबह आपके मोबाइल में, और वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें epaper.aajtak.in या स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करें।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: किले से पीएम मोदी के दिमागी नक्सल के उल्लेख पर सुलगी राजनीति, कहा अवसर की तलाश में ऐसे लोग। कांग्रेस का पलटवार, पहले किसानों और युवाओं को प्रधानमंत्री ने कहा था नक्सली। वंदे मातरम पर छिड़ी नई जंग, बीजेपी का आरोप। कांग्रेस मुख्यालय में सोनिया और खड़गे ने किया राष्ट्रगीत का अपमान। कांग्रेस का जवाब, ऐसी कोई कोशिश नहीं। अटारी बॉर्डर पर जोश जुनून जज्बे का रंग, बीएसएफ ने जश्न आजादी की हुंकार भरी। तिरंगे में रंगी दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा। रांची में छात्रों की चेतावनी, मांगे पूरी नहीं तो 20 को करेंगे सीएम के घर का घेराव। परीक्षा में गड़बड़ी की सीबीआई जांच, आज राहुल और सोरेन का करेंगे पुतला दहन। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन मिश्रा ने लॉ छात्रों से मांगी माफी, कहा अगर भावनाएं आपकी आहत हुई तो खेद, नलसार विवाद में हुआ था बवाल। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित किया, विकसित भारत के लक्ष्य को दोहराया। सप्त सिंधु से सप्त धरा मंत्र पीएम ने दिया। 15 अगस्त का कार्यक्रम एक और मायने में विशेष रहा, पहली बार वंदे मातरम की धुन सुनाई दी, लेकिन इस पर दिल्ली में राजनीति भी देखने को मिली।
1: कांग्रेस दफ्तर में वंदे मातरम के दौरान सोनिया गांधी के इशारा करने की इन तस्वीरों पर बीजेपी सवाल पूछ रही है। बीजेपी इसे वंदे मातरम का अपमान बता रही है।
2: एक बहुत विचित्र, विडंबनापूर्ण और दुर्भाग्यपूर्ण दृश्य देखने को मिला जब कांग्रेस कार्यालय में वंदे मातरम गीत गाया जा रहा था। उस समय कांग्रेस की सुप्रीम लीडर सोनिया गांधी जी, सुपर अध्यक्ष राहुल गांधी जी और सिटिंग अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी बहुत ही विचित्र और आपत्तिजनक तरीके से असम्मान व्यक्त करते हुए एक दूसरे से बातचीत करते हुए नजर आए, किसी को बुलाते हुए नजर आए, और कोई व्यक्ति आकर उनसे कुछ बता भी रहा था और एक दूसरे को इशारे कर रहे थे। यह राष्ट्रगीत वंदे मातरम के प्रति उनका अपमान है।
1: बीजेपी के सवालों पर कांग्रेस का जवाब आया, इशारों के पीछे की वजह बताई गई।
3: आज यहाँ इंदिरा भवन में पूरा वंदे मातरम गाया गया, इसमें कोई वाद विवाद का सवाल नहीं उठता, कोई रोकने का प्रयास नहीं था, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस अध्यक्ष खड़े हुए थे, सोनिया जी कह रही थी उनके लिए कुर्सी लाके रख दो, बस कोई नहीं था।
1: वंदे मातरम पर यह घमासान उस वक्त शुरू हुआ है जब वंदे मातरम के पूर्ण संस्करण को हाल ही में राष्ट्रगान के समान कानूनी संरक्षण दिया गया है। 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्र के नाम संबोधन से पहले और उसके समापन पर भी वंदे मातरम बजाया गया था। वहीं आज पहली बार लाल किले में भी राष्ट्रगान से पहले वंदे मातरम गाया गया। संसद में वंदे मातरम बिल पारित के बाद अब 15 अगस्त पर इसके घमासान की पहली सियासी किश्त सामने आई है।
4: आजादी के बाद 15 अगस्त को लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं तो इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
1: आज तक ब्यूरो।
0: लाल किले से पीएम मोदी ने जेन जी हो या जेन अल्फा सबके लिए सौगात का ऐलान किया। एआई ट्रेनिंग को लेकर भी बड़ा ऐलान किया।

0: मेरे प्यारे देशवासियों, डिफेंस में आत्मनिर्भर होना अब भारत ने अनुभव कर लिया, दुनिया ने अनुभव कर लिया है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे। हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है।
1: लाल किले की प्राचीर से आज तिरंगा सिर्फ आसमान में नहीं लहरा रहा था, भारत के भविष्य की तस्वीर भी सामने रखी जा रही थी और उस तस्वीर के केंद्र में था भारत का युवा। प्रधानमंत्री ने साफ संदेश दिया, भारत की अगली उड़ान का इंजन युवा होगा।
0: जब मैं विकसित भारत की बात कर रहा हूँ, देश को तेज गति से आगे बढ़ाने की बात कर रहा हूँ, उसका सबसे बड़ा लाभार्थी कौन है? इन सारे प्रयासों का सबसे बड़ा साधक कौन है? अगर साधक है तो मेरे देश का युवा है, मेरे देश की युवा शक्ति है। विकसित भारत की यात्रा में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। इतना ही नहीं, विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी मेरे देश का युवा है और इसलिए हमें विकसित भारत के लक्ष्य को युवाओं के साथ जोड़ करके आगे बढ़ाना है। ऊंचे होने
1: जेन जी हो या जेन अल्फा, संदेश साफ था, भारत का भविष्य सिर्फ युवाओं के लिए नहीं, युवाओं के हाथों से बनेगा। आत्मनिर्भर भारत, युवा शक्ति, तकनीक, राष्ट्रीय सुरक्षा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की ताकत और भविष्य का खाका खींचा। 1 करोड़ युवाओं को AI ट्रेनिंग, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग, 5 से 15 साल के बच्चों के लिए स्पोर्ट्स टैलेंट हंट, स्टार्टअप और इनोवेशन को बढ़ावा, मैन्युफैक्चरिंग में रोजगार के नए अवसर, सेमीकंडक्टर से लेकर डिफेंस तक आत्मनिर्भर युवा शक्ति। हालांकि विपक्ष पूछता है AI की ट्रेनिंग के साथ रोजगार कितना बढ़ेगा, फ्री कोचिंग के साथ परीक्षा व्यवस्था कितनी पारदर्शी होगी, टैलेंट हंट के साथ खेलों में अवसर कितने बढ़ेंगे और क्या युवा की आवाज सिर्फ चुनाव के समय सुनी जाएगी?
2: प्रधानमंत्री जी का सवालों का जवाब न देना पार्लियामेंट में क्या ये लोकतंत्र का तरीका है? हमने क्या उठाया? लोकसभा में हो, राज्यसभा में हो, हमने जो सवाल उठाए वो विद्यार्थियों के सवाल थे। मैं पूछता हूं मेरे दोस्त, अगर तुम पार्लियामेंट में आते क्या तुम्हारा उम्र कम होने वाली थी? क्या तुम्हारी पार्टी घटने वाली थी?
1: इसी बेचैनी के बीच बाबा रामदेव ने भी सरकारी भर्तियों में भ्रष्टाचार और युवाओं के असंतोष का मुद्दा उठाया। उन्होंने चेतावनी दी कि व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो युवाओं का आंदोलन फिर तेज हो सकता है।
3: चारों तरफ देश में हंगामा है, छोटे छोटे स्कूल कॉलेजों से बच्चे निकल रहे हैं कि हमारे यहाँ टीचर नहीं है, हमारे यहाँ लाइट नहीं है, हमारे यहाँ पानी नहीं है, हमारे यहाँ शौचालय नहीं है, हमारे यहाँ टीचर है तो किताबें नहीं है, किताबें हैं तो टीचर नहीं है, और टीचर है तो पढ़ाई में नकल हो जाती है, कहीं पेपर लीक हो जाता है। ऐसे ही आंदोलन करना पड़ा तो देश कैसे चलेगा? इसलिए भाई सुधर जाओ, नहीं तो देश में आंदोलन और ज्यादा भी हो सकते हैं। आंदोलन के नाम पर मैं अराजकता अनार्की का समर्थक नहीं हूं, लेकिन भाई ये बात तो जरूर है देश में घपला भी बहुत है, ये घपले ठीक कर लो, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि बाबा रामदेव को दोबारा आंदोलन करना पड़े।
1: प्रधानमंत्री ने युवाओं से 2047 का निर्माता बनने का आह्वान किया है, क्योंकि आज का युवा कल का नागरिक नहीं, आज के भारत का सबसे बड़ा निर्माता है। आज तक ब्यूरो।
4: जेन जी वोटर्स पर अचानक से हर पार्टी का फोकस बढ़ गया। जंतर मंतर प्रदर्शन के बाद यूपी चुनाव जेन जी की पहली प्रयोगशाला बनने जा रहा है और इसीलिए युवाओं को अपने पाले में करने के लिए पार्टियां हर तरह के और तरह तरह के हथकंडे अपना रही हैं।
5: जंतर मंतर आंदोलन की इन तस्वीरों ने देश की सियासत की रणनीति को और नए सिरे से गढ़ने पर हर पार्टी को मजबूर कर दिया है। धर्म और जाति के समीकरण पर अब जेन जी की इक्वेशन भारी नजर आ रही है। जेन जी पर जारी घमासान के बाद अब पहली बड़ी परीक्षा यूपी का विधानसभा चुनाव है, जहां सबकी नजरें इस बात पर है कि क्या रील और सोशल मीडिया पर दिख रही तस्वीर मतदान में तब्दील होगी। लेकिन इसे लेकर कोई पार्टी जोखिम नहीं लेना चाहती और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जेंजी की इस ताकत को समझ रहे हैं, जिसकी एक तस्वीर उनके आज 15 अगस्त के भाषण में भी देखने को मिली।
6: जेंजी और जेन अल्फा के लिए एआई, मशीन लर्निंग, सेमीकंडक्टर, स्टार्टअप इकोसिस्टम, डेटा सेंटर, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, साइबर, रोबोटिक, इलेक्ट्रिक व्हीकल, एग्रीटेक, फिनटेक, डीप टेक, मेडटेक जैसे क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश ने तेजी के साथ जो कार्य आगे बढ़ाया है उसमें निवेश, नवाचार और एम्प्लॉयमेंट के नए नए द्वार खुल रहे हैं।
5: योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में पेपर लीक जैसे मुद्दों का जिक्र किया और छात्रों का भरोसा जीतने की कोशिश की।
6: स्वाधीनता दिवस के अवसर पर मैं प्रदेश के युवाओं से कहना चाहता हूं, आपकी प्रतिभा से ही यूपी की शक्ति निहित है। हमारी सरकार ने नकल माफिया, भर्ती माफिया के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की है। हम अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को डेवलपमेंट इंजन के रूप में बदल रहे हैं।
7: यूपी के अंदर बहुत शीघ्र युवा नीति लेकर के आ रहे हैं।
5: यूपी चुनाव के लिए फोकस पूरी तरह से युवा मतदाताओं पर केंद्रित हो चुका है, जिसकी तस्वीरें ग्राउंड से भी नजर आ रही हैं। यूपी सरकार के तमाम बड़े मंत्री ऐसे ही स्कूल कॉलेजों में पहुंचकर सीधा युवाओं से संवाद कर रहे हैं। बीजेपी की सरकार सीधे युवाओं के मन की बात टटोल रही है, इसीलिए मंत्री अपने अपने क्षेत्रों में जेंजी चौपाले लगा रहे हैं। और मैं सारे इस अभियान के तहत विधानसभा बार 10-10 युवाओं की टीमें तैयार की जा रही है। टीम के सदस्य स्कूल कॉलेजों के युवाओं से बातचीत कर उनकी समस्याओं, अपेक्षाओं और सरकार को लेकर उनकी राय जानेंगे। टीम उन्हें सरकार की ओर से युवाओं के लिए शुरू की गई योजनाओं, रोजगार कार्यक्रम की जानकारी देगी, विधानसभा स्तर पर गठित होने वाले कार्यक्रमों और संवाद की जिम्मेदारी दी जाएगी। ये अभियान शुरू भी हो चुका है। कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे ने रायबरेली में बड़े स्तर पर युवाओं से संपर्क साधा, उनसे बातचीत की, उनकी समस्याएं सुनी।
8: आपके क्षेत्र में कार्यक्रम था तिरंगा यात्रा से लेकर युवा संवाद?
9: जी, आप देख रहे हैं जिस तरीके से आज युवा संवाद कार्यक्रम यहाँ रखा गया, कई हजार यूथ आज इस युवा संवाद में शामिल हुए और ये उनसे सीधे संवाद हुआ। उन्होंने अपनी भावनाएं भी बताई, अपनी दिक्कतों को भी बताई और उन्होंने सराहना भी किया भारत के प्रधानमंत्री जी के कार्यों के और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के। ये यूथ हमारा भविष्य है, ये हमारे कल हैं और इन यूथ के साथ संवाद होना जरूरी है। इनसे जब कम्युनिकेशन गैप रहता है तो बहुत सारी चीजें रह जाती हैं। इनसे लगातार हम सबका संवाद रहेगा और इनकी बहुत महत्वपूर्ण चीजें भी हम सबको जानकारी में आई है, जिसको हम लोग आगे धीरे धीरे करके उसे भी ठीक करने का भी काम करेंगे।
5: बीजेपी का टारगेट यही लगता है कि 2027 के चुनाव में युवाओं के तमाम वोट्स पर कब्जा हो, इसीलिए सीधे मुख्यमंत्री भी सक्रिय हैं, लगातार युवाओं की बात कर रहे हैं।
10: हमारा युवा प्रतिभाशाली है, हमारा युवा ऊर्जा का प्रतीक है, हमारा युवा देश की हर चुनौती का सामना करने की सामर्थ्य रखता है और उस सामर्थ्य के प्रतीक इस युवा ऊर्जा को आगे बढ़ने के लिए एक उचित प्लेटफॉर्म प्राप्त हो, वो अपने परंपरागत पाठ्यक्रम के साथ साथ देश और समाज की उन चुनौतियों का भी सामना करने के लिए अपने आप को तैयार कर सके।
5: यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ युवाओं से हवा हवाई बातें नहीं कर रहे, बल्कि उनके लिए पूरी युवा नीति तैयार की जा रही है, लंबी चौड़ी रणनीति है। सरकारी कोचिंग में आईएएस और पीएससी की तैयारी करने वालों की कलेक्टर और कप्तान की क्लास होगी। नीट की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए मुफ्त में डॉक्टरों की क्लास होगी। आईटी की तैयारी करने वालों को आईटीएन अफसर पढ़ाएंगे। बैंक पीओ की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए सरकारी बैंक के मैनेजर मार्गदर्शन करेंगे।
7: यूपी के अंदर बहुत शीघ्र युवा नीति लेकर के आ रहे हैं। हर जिले के अंदर, हर महाविद्यालय के अंदर, हर विश्वविद्यालय के अंदर युवा के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था, आपको प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करनी हो, आपको आपके महाविद्यालय विश्वविद्यालय में हम वर्चुअल भी और फिजिकल भी वहां क्लास की व्यवस्था रहेगी, और पढ़ाने वाले कौन होंगे, पढ़ाने वाला होगा वहां का डीएम भी एक घंटा देगा, एसपी एक घंटा देगा, क्योंकि उन्होंने यूपीएससी क्लियर किया।
5: बीजेपी के अलावा समाजवादी पार्टी की भी युवाओं को लेकर अपनी तैयारी है। समाजवादी पार्टी ने भी चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। सबसे पहला काम सर्वे से शुरू हो रहा है, वहां भी जीताऊ प्रत्याशी खोजे जा रहे हैं।
11: यूपी चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने बूथ स्तर से लेकर विधानसभा सीट्स तक अपनी तैयारी शुरू कर दी, और इसी के चलते कुल मिलाकर पार्टी 3 सर्वे करा रही है। सूत्रों के मुताबिक 2 सर्वे एक प्राइवेट एजेंसीज के द्वारा किए जा रहे हैं, तो तीसरा सर्वे संगठन के द्वारा किया जा रहा है। आकलन ये करना है हर बूथ पर, हर विधानसभा पर कौन उम्मीदवार है जो जिताऊ हो सकता है, कौन उम्मीदवार है जो जातीय समीकरणों को साध सकता है। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी को लगता है कि सर्वे के जरिए हर बूथ के, हर विधानसभा के एक फ्रेश जातीय आंकड़े सामने आ सकते हैं। यूं तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से या डेटा के जरिए जातीय आंकड़े मिल जाते हैं, लेकिन सपा को ऐसा लगता है कि अपने स्तर पर भी जातीय आंकड़े निकालने चाहिए, क्योंकि कई ऐसे विधानसभा सीट्स हैं जहां पर सपा को कुछ चौंकाने वाले जातीय आंकड़े मिले हैं, जो पेपर्स पर कुछ और थे लेकिन जमीन पर सर्वे में कुछ और सामने आए हैं। और इसी के चलते 2 एजेंसीज और संगठनात्मक तौर पर समाजवादी पार्टी के यूथ विंग्स मिलकर ये सर्वे कर रहे हैं। सर्वे अलग है लेकिन एक तरीके से माहौल एक है कि विधानसभा में जिताऊ कैंडिडेट हो जिससे सही उम्मीदवार चुना जा सके और चुनाव जीता जा सके।
5: समाजवादी पार्टी तो इसी दावे पर है कि उनके पास तो युवाओं के सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव मौजूद हैं, जिनकी युवाओं में पहुंच भी है और पकड़ भी।
11: बीजेपी एक प्लानिंग के तहत अब जो है उनकी जो यूथ विंग है उनको जिम्मेदारी दे रही है कि स्कूल कॉलेजेस में जाएं। यूपी सरकार के तमाम मंत्री भी अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में ये काम करने वाले हैं, जैसे कि मनोज पांडे आज रायबरेली से कर रहे हैं, वो युवाओं का सम्मेलन कर रहे हैं, युवाओं से मिलेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे। तमाम अन्य मंत्री भी प्लान आउट कर रहे हैं, तो ये जेंजी कितना बड़ा वोटर एकदम से यूपी में हो गया है।
12: देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी अब कर रही है, समाजवादी पार्टी तो नौजवानों की पार्टी रही है और सबसे ज्यादा यंग मिनिस्टर्स और यंग लोगों को चुनाव लड़ने का मौका या यंग लोगों की बात अगर किसी ने सबसे ज्यादा की है तो वो समाजवादी पार्टी के संस्थापक आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, श्रद्धेय नेताजी ने की थी, और अब उसी मशाल को आगे लेकर के आदरणीय अखिलेश यादव जी चल रहे हैं। और लगातार जिन जेंजीज की बात आज सरकार जागी है इन आंदोलन के बाद, समाजवादी पार्टी ने सबसे कम उम्र के लोगों को चुनाव लड़ा करके सदन में भेजा। कर मुझे अपना, मैं अगर बात करूं तो मैं जब 25 साल 4 दिन की थी तब मैंने नॉमिनेशन किया था, तो मैं भी एक जेंजी ही हूं। और साथ ही साथ अब मैं देखूं तो हमारी पार्टी में सबसे ज्यादा युवा विधायक हैं जो 25 साल के हैं, 25 साल के हमने सांसद बनाए।
5: लेकिन खबरें तो ये भी हैं कि जेंजी को मिल रहे इस समर्थन से तमाम राजनीतिक पार्टियों के बड़े बड़े और पुराने नेता बहुत परेशान हैं, उन्हें अपनी सीट खिसकने का डर सता रहा है।
11: खबर ये भी है कि जेंजी फोर्स को देखते हुए यूपी के तमाम वरिष्ठ और दिग्गज नेताओं की जमीन खिसकी हुई है। कई राजनीतिक दलों के वरिष्ठ विधायक ऐसे भी हैं जिन्हें लगता है कि कहीं उनका इस बार विधानसभा चुनाव में टिकट ही ना कट जाए, क्योंकि एक बात तो साफ है, सभी राजनीतिक दल इस बार जेंजी को उम्मीदवारी में उतारने वाले हैं। यानी कि इस बार जो उम्मीदवारों की एक लिस्ट आएगी, चाहे विपक्ष की हो चाहे सरकार की हो, उसमें जेंजी को तवज्जो मिलनी तय है। ऐसे में एक दिलचस्प बात की चर्चा यह भी है, जो विधायक पहले अपनी पत्नी या पति के नाम से जाने जाते थे, जिनको टिकट मिलता था, वो अब जेंजी के पिता के नाम से, यानी कि जेंजी विधायक के पिता के नाम से भी जाने जाएंगे।
5: समर श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
4: हमारे देश की राजनीतिक पार्टियों को अचानक से अब युवा वोटर्स की याद आने लगी है, लेकिन सवाल यह है कि युवाओं के वोट तो हर पार्टी को चाहिए, लेकिन उनकी भागीदारी कितनी है और क्या युवा वोटर सरकारों को गिराने और बनाने का दम रखते हैं? इसका पहला टेस्ट उत्तर प्रदेश में होगा।
13: जेन जी के इस फोर्स की राजनीतिक ताकत पूरे देश ने देखी और सरकारों ने महसूस की। दिल्ली से लेकर झारखंड तक युवाओं की ताकत का अनुमान इस देश के हुक्मरानों को हो चुका है, इसीलिए अब राजनीतिक पार्टियों के एजेंडे पर यही जेन जी। और जेन जी की ताकत का पहला इम्तिहान होने वाला है उत्तर प्रदेश में, जहां सबसे पहले चुनाव होंगे। वैसे तो राजनीतिक दलों के एजेंडे पर हमेशा से ही युवा रहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान की राजनीतिक पार्टियों में युवाओं की भूमिका एक वोटर से ज्यादा कुछ नहीं रहती। लेकिन अब ऐसा लगता है कि मौजूदा आंदोलन के बाद इन पार्टियों में जेन जी को बड़ी जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं, इसीलिए सारी पार्टियों का फोकस इस वक्त इसी युवा वोटर पर है।
14: उत्तर प्रदेश की सभी राजनीतिक पार्टियों को इस समझ में आ गया है कि आखिर जेन जी की ताकत क्या है। खासकर दिल्ली के जंतर मंतर में हुए प्रोटेस्ट के बाद ये बात साफ हो गई है कि जेन जी को खुश रखना जरूरी है। जिस पार्टी के नेता ये कहते थे कि कितना भी बड़ी बात हो जाए हम अपने मंत्री का इस्तीफा नहीं कराते हैं, उसी पार्टी के नेताओं को धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कराना पड़ा है। अगला चुनाव उत्तर प्रदेश का है, इसलिए सभी राजनीतिक दल ये जानते हैं कि जेन जी एक बेहद अहम वोट है और इसीलिए उसको महत्व देना भी जरूरी है। नतीजा जेन जी चौपाल, जेन जी तिरंगा यात्रा और जेन जी के बीच जाकर बातें करना, परेशानियां समझना।
13: उत्तर प्रदेश में हर पार्टी जेन जी पर जोर लगा रही है। बीजेपी ने मंत्रियों की जेन जी चौपाल लगाई है। समाजवादी पार्टी चुनावों के लिए युवाओं का सर्वे करवा रही है। बीएसपी ने ऐलान किया है कि वो युवाओं को प्रत्याशी बनाएंगे। कांग्रेस के राहुल गांधी तो लगातार छात्रों के मुद्दों को उठा ही रहे हैं। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि यूपी में जेन जी एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल फोर्स है। जेन जी का मतलब हुआ 1997 से 2012 के बीच पैदा हुई जनरेशन। इस हिसाब से 14 से 29 साल के लोग जेन जी हुए, लेकिन भारत में मतदान की उम्र 18 साल है, तो उत्तर प्रदेश में 18 से 29 साल के युवा वोटर्स की संख्या करीब 21.19% है, जो बनते हैं करीब 3,27,00,000। अब अगर इतनी बड़ी संख्या में जेन जी वोटर होंगे तो राजनीतिक दल तो जोर लगाएंगे ही। मतलब कि अगर जेन जी किसी एक पार्टी को तय कर ले तो उसका चुनाव जीतना तय है, और इसी फोर्स को उत्तर प्रदेश की पार्टियां अच्छे से समझ रही है। इसीलिए आज बीएसपी ने भी युवाओं के लिए बड़े बड़े ऐलान किए हैं। बीएसपी का कहना है कि आने वाले चुनावों में वो प्रत्याशियों के चयन में युवाओं को प्राथमिकता देगी। जालौन की माधोगढ़ सीट से बसपा ने आशीष पांडे को अपना पहला प्रत्याशी घोषित किया है, जो पार्टी के युवा चेहरों में शामिल है। बीएसपी की रणनीति, संगठन, सोशल मीडिया और चुनावी मैदान तीनों स्तरों पर युवा नेतृत्व को आगे लाने की है। पार्टी को उम्मीद है कि जेन जी और युवा मतदाताओं के बीच सक्रियता बढ़ाकर वो 2027 के विधानसभा चुनाव में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत कर सकती है। मायावती ने अपने भतीजे और राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद को जेन जी की नब्ज टटोलने की जिम्मेदारी दी है। हालांकि आकाश खुद जेन जी नहीं है, 32 साल के हैं, युवा हैं। युवाओं की तासीर और उनके मुद्दों को कितना समझते हैं ये पता नहीं, लेकिन बीएसपी को सोशल मीडिया पर सक्रिय रखने की जिम्मेदारी भी आकाश आनंद की टीम संभाल रही है। हाथरस के सादाबाद में आकाश ने अपनी चुनावी तैयारियां भी दिखा दी और यहां से युवाओं को संदेश भी दिया।
15: हमारे समाज के बच्चे अगर पढ़ गए तो अपने अधिकारों के लिए लड़ना खड़े हो जाएंगे, लड़ेंगे अपने अधिकारों के लिए। तो जैसे आपने देखा था अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में, हमारी जनरेशन के बच्चे अपने अधिकारों के लिए लड़े, वैसे ही हमारे समाज के बच्चे प्रदेश के कोने कोने में चौराहे चौराहे पर इनसे सवाल करेंगे, आरक्षण के लिए, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए और लॉ एंड ऑर्डर के लिए, रोजगार के लिए, तब इनके लिए जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। साथियों, जो सरकार स्कूल बंद कर दे, जो सरकार आपके स्कूलों में पढ़ने वाले टीचरों की भर्ती ना करे, क्या वो सरकार लायक है आपके प्रदेश में सत्ता में रहने के लिए?
14: ये भी उठता है कि आखिर एकदम से उत्तर प्रदेश की राजनीतिक पार्टियों को जेन जी की याद क्यों आई? क्या अगर दिल्ली में या रांची में ये प्रदर्शन ना हुए होते तो राजनीतिक दल यूपी के जेन जी को इतना महत्व दे रहे होते? क्या यही मंत्री जगह जगह जाकर चौपाले कर रहे होते, या फिर यूपी सरकार नई युवा नीति की बात भी कर रही होती है? ऐसे कोई ऑर्डर भी आने वाला होता? बड़ी बात तो ये है, यूपी में जेंजी एक बड़ा वोटर है जो चुनाव के नतीजों में बदलाव भी कर सकता है, लेकिन कभी भी विधानसभा चुनावों में उनके हक के मुताबिक उन्हें टिकट नहीं मिले। अब दिलचस्प होगा देखना इस यूपी चुनाव में क्या सियासी गणित बदलती है और जेंजी को उनका हक मिलता है।
13: आंकड़े तो यही बता रहे हैं कि राजनीतिक दलों को युवाओं के वोट तो चाहिए लेकिन उन्हें हिस्सेदारी नहीं देनी है। कुल 543 लोकसभा सांसदों में से सिर्फ 6 सांसद ही जेंजी हैं। पूरे देश में कुल 4131 विधायक हैं और पूरे देश भर में सिर्फ 20 जेंजी विधायक हैं। हालांकि ये भी एक फैक्ट है कि 2022 के बाद ही जेंजी चुनाव लड़ने की उम्र में आए, लेकिन 2022 से भी इस देश में बहुत से चुनाव हुए हैं। सबसे ज्यादा जेंजी विधायक तमिलनाडु में है 4, इनमें से 3 टीवीके के हैं और 1 एडीएमके के। पश्चिम बंगाल में 3 जेंजी विधायक हैं, तीनों बीजेपी के हैं। इसके अलावा बिहार, मेघालय और तेलंगाना में 2-2 जेंजी विधायक हैं। इन सभी राज्यों में 2023 से 2026 के बीच चुनाव हुआ। ये आंकड़े बता रहे हैं कि राजनीतिक दलों ने युवाओं को वोटर तो समझा लेकिन उन्हें भागीदारी नहीं दी। हालांकि यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि भारत में सांसद या विधायक बनने के लिए आपको 25 साल का होना जरूरी है। इस हिसाब से जेंजी सिर्फ 4 साल पहले ही चुनाव लड़ने के लायक बने हैं, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि आने वाले चुनावों में तमाम पार्टियां अपने टिकटों में जेंजी उम्मीदवारों की संख्या बढ़ाकर रखेंगे। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
4: और छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

0: जिले से पीएम मोदी के दिमागी नक्सल के उल्लेख पर सुलगी राजनीति, कहा अवसर की तलाश में ऐसे लोग। कांग्रेस का पलटवार, पहले किसानों और युवाओं को प्रधानमंत्री ने कहा था नक्सली। वंदे मातरम पर छिड़ी नई जंग, बीजेपी का आरोप। कांग्रेस मुख्यालय में सोनिया और खड़गे ने किया राष्ट्रगीत का अपमान, कांग्रेस का जवाब, ऐसी कोई कोशिश नहीं। अटारी बॉर्डर पर जोश, जुनून, जज्बे का रंग, बीएसएफ ने जश्न आजादी की हुंकार भरी, तिरंगे में रंगी दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा। रांची में छात्रों की चेतावनी, मांगे पूरी नहीं तो 20 को करेंगे सीएम के घर का घेराव, परीक्षा में गड़बड़ी की सीबीआई जांच, आज राहुल और सोरेन का करेंगे पुतला दहन। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन मिश्रा ने लॉ छात्रों से मांगी माफी, कहा अगर भावनाएं आपकी आहत हुई तो खेद, नलसार विवाद में हुआ था बवाल। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित किया, विकसित भारत के लक्ष्य को दोहराया, सप्त सिंधु से सप्त धरा मंत्र पीएम ने दिया। 15 अगस्त का कार्यक्रम एक और मायने में विशेष रहा, पहली बार वंदे मातरम की धुन सुनाई दी, लेकिन इस पर दिल्ली में राजनीति भी देखने को मिली।
1: कांग्रेस दफ्तर में वंदे मातरम के दौरान सोनिया गांधी के इशारा करने की इन तस्वीरों पर बीजेपी सवाल पूछ रही है, बीजेपी इसे वंदे मातरम का अपमान बता रही है।
2: एक बहुत विचित्र, विडंबनापूर्ण और दुर्भाग्यपूर्ण दृश्य देखने को मिला जब कांग्रेस कार्यालय में वंदे मातरम गीत गाया जा रहा था, उस समय कांग्रेस की सुप्रीम लीडर सोनिया गांधी जी, सुपर अध्यक्ष राहुल गांधी जी और सिटिंग अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी बहुत ही विचित्र और आपत्तिजनक तरीके से असम्मान व्यक्त करते हुए एक दूसरे से बातचीत करते हुए नजर आए, किसी को बुलाते हुए नजर आए, और कोई व्यक्ति आकर उनसे कुछ बता भी रहा था और एक दूसरे को इशारे कर रहे थे। यह राष्ट्रगीत वंदे मातरम के प्रति उनका अपमान है।
1: बीजेपी के सवालों पर कांग्रेस का जवाब आया, इशारों के पीछे की वजह बताई गई।
3: आज यहाँ इंदिरा भवन में पूरा वंदे मातरम गाया गया, इसमें कोई वाद विवाद का सवाल नहीं उठता, कोई रोकने का प्रयास नहीं था, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस अध्यक्ष खड़े हुए थे, सोनिया जी कह रही थी उनके लिए कुर्सी लाके रख दो, बस कोई नहीं था।
1: वंदे मातरम पर यह घमासान उस वक्त शुरू हुआ है जब वंदे मातरम के पूर्ण संस्करण को हाल ही में राष्ट्रगान के समान कानूनी संरक्षण दिया गया है। 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्र के नाम संबोधन से पहले और उसके समापन पर भी वंदे मातरम बजाया गया था। वहीं आज पहली बार लाल किले में भी राष्ट्रगान से पहले वंदे मातरम गाया गया। संसद में वंदे मातरम बिल पारित के बाद अब 15 अगस्त पर इसके घमासान की पहली सियासी किश्त सामने आई है।
4: आजादी के बाद 15 अगस्त को लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं तो इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
1: आज तक ब्यूरो।
0: पीएम मोदी ने अपने भाषण में दिमागी नक्सल, महिला आरक्षण जैसे मुद्दों का उल्लेख किया जिस पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है।

0: लाल किले की प्राचीर से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्वजारोहण किया तो साथ में महिला सैन्य अधिकारी नजर आईं और पीएम ने भाषण में महिला आरक्षण पर विपक्ष से साथ आने की अपील की।
1: मैं देश के सभी राजनीतिक दलों से आज लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे की छाया में खड़े होकर के प्रार्थना करता हूं, आग्रह करता हूं, आइए उन महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनिए, उन महिलाओं के सम्मान में आगे आइए और जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, वे भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है।
0: पीएम की महिला आरक्षण को लेकर इस अपील पर कांग्रेस सरकार से सवाल पूछ रही है।
2: कानून बन चुका है, राहुल गांधी जी बार बार ही तो कहते हैं जब कानून बन चुका है लागू क्यों नहीं करो आप लोग, अब वो सपना देख रहे हैं। हम तो 800 संख्या बढ़ाएंगे पहले पार्लियामेंट के अंदर, असेंबली में बढ़ाएंगे, इसके मायने की परिसमन अपने हाथ में ले लेंगे।
3: महिला आरक्षण को लगातार दोयम दर्जा देने के लिए, पीछे धकेलने के लिए यदि कोई जिम्मेदार है तो स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2023 में जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया तो उसको दो शर्तों की बैसाखी पर खड़ा करने वाला कौन था? परिसीमन और जनगणना से जोड़ने वाला कौन था? वो प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार थी।
0: उधर पीएम मोदी ने नक्सल के सफाए का जिक्र किया तो वहीं दिमागी नक्सल से लड़ाई की बात कही।
1: हथियारी नक्सल तो गए लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा।
4: पहले भी जिनको जमीनी नक्सल कहा फिर उन्हीं किसानों की बात माननी पड़ी, नौजवानों को नक्सल कहा फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ा, तो पहले तो ये हाथ पांव मारते हैं नक्सल नक्सल नक्सल और उसके बाद उनकी बात मान लेते हैं।
5: पहले तो दिमागी नक्सल की परिभाषा बताओ क्या है, दिमागी नक्सल की क्या परिभाषा होती, किसे आप दिमागी नक्सल करेंगे? ये तो एक आपने मुहावरा बना दिया, हर व्यक्ति दिमागी नक्सल हो सकता, तो ये कहना अपने आप में मुझे लगता है तमाम उन युवाओं का अपमान है।
0: इस बीच एक सियासत, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के लाल किले के कार्यक्रम में ना शामिल होने को लेकर भी हो रही है। लगातार दूसरे साल कांग्रेस के बड़े नेताओं ने इस अहम सरकारी कार्यक्रम से दूरी बनाए रखी। राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समारोह में नहीं पहुंचे। 2024 को 15 अगस्त के कार्यक्रम में राहुल गांधी की सीट को लेकर विवाद हुआ था, जहां राहुल गांधी पीछे की सीट पर बैठे थे। ऐसे में राहुल के नदारद होने को एक बार फिर सीट अरेंजमेंट के विवाद से जोड़ा जा रहा है। आज तक ब्यूरो।
6: लाल किले से पीएम मोदी ने जेन जी हो या जेन अल्फा सबके लिए सौगात का ऐलान किया। एआई ट्रेनिंग को लेकर भी बड़ा ऐलान किया।

0: हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है।
1: लाल किले की प्राचीर से आज तिरंगा सिर्फ आसमान में नहीं लहरा रहा था, भारत के भविष्य की तस्वीर भी सामने रखी जा रही थी और उस तस्वीर के केंद्र में था भारत का युवा। प्रधानमंत्री ने साफ संदेश दिया, भारत की अगली उड़ान का इंजन युवा होगा।
0: जब मैं विकसित भारत की बात कर रहा हूँ, देश को तेज गति से आगे बढ़ाने की बात कर रहा हूँ, उसका सबसे बड़ा लाभार्थी कौन है? इन सारे प्रयासों का सबसे बड़ा साधक कौन है? अगर साधक है तो मेरे देश का युवा है, मेरे देश की युवा शक्ति है। विकसित भारत की यात्रा में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। इतना ही नहीं, विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी मेरे देश का युवा है और इसलिए हमें विकसित भारत के लक्ष्य को युवाओं के साथ जोड़ करके आगे बढ़ाना है। ऊंचे
1: होने जेन जी हो या जेन अल्फा, संदेश साफ था, भारत का भविष्य सिर्फ युवाओं के लिए नहीं, युवाओं के हाथों से बनेगा। आत्मनिर्भर भारत, युवा शक्ति, तकनीक, राष्ट्रीय सुरक्षा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की ताकत और भविष्य का खाका खींचा। 1 करोड़ युवाओं को AI ट्रेनिंग, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग, 5 से 15 साल के बच्चों के लिए स्पोर्ट्स टैलेंट हंट, स्टार्टअप और इनोवेशन को बढ़ावा, मैन्युफैक्चरिंग में रोजगार के नए अवसर, सेमीकंडक्टर से लेकर डिफेंस तक आत्मनिर्भर युवा शक्ति। हालांकि विपक्ष पूछता है AI की ट्रेनिंग के साथ रोजगार कितना बढ़ेगा, फ्री कोचिंग के साथ परीक्षा व्यवस्था कितनी पारदर्शी होगी, टैलेंट हंट के साथ खेलों में अवसर कितने बढ़ेंगे और क्या युवा की आवाज सिर्फ चुनाव के समय सुनी जाएगी?
2: प्रधानमंत्री जी का सवालों का जवाब न देना पार्लियामेंट में क्या ये लोकतंत्र का तरीका है? हमने क्या उठाया? लोकसभा में हो, राज्यसभा में हो, हमने जो सवाल उठाए वो विद्यार्थियों के सवाल थे। मैं पूछता हूं मेरे दोस्त, अगर तुम पार्लियामेंट में आते क्या तुम्हारा उम्र कम होने वाली थी? क्या तुम्हारी पार्टी घटने वाली थी?
1: इसी बेचैनी के बीच बाबा रामदेव ने भी सरकारी भर्तियों में भ्रष्टाचार और युवाओं के असंतोष का मुद्दा उठाया। उन्होंने चेतावनी दी कि व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो युवाओं का आंदोलन फिर तेज हो सकता है।
3: चारों तरफ देश में हंगामा है, छोटे छोटे स्कूल कॉलेजों से बच्चे निकल रहे हैं कि हमारे यहाँ टीचर नहीं है, हमारे यहाँ लाइट नहीं है, हमारे यहाँ पानी नहीं है, हमारे यहाँ शौचालय नहीं है, हमारे यहाँ टीचर है तो किताबें नहीं है, किताबें हैं तो टीचर नहीं है, और टीचर है तो पढ़ाई में नकल हो जाती है, कहीं पेपर लीक हो जाता है। ऐसे ही आंदोलन करना पड़ा तो देश कैसे चलेगा? इसलिए भाई सुधर जाओ, नहीं तो देश में आंदोलन और ज्यादा भी हो सकते हैं। आंदोलन के नाम पर मैं अराजकता अनार्की का समर्थक नहीं हूं, लेकिन भाई ये बात तो जरूर है देश में घपला भी बहुत है, ये घपले ठीक कर लो, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि बाबा रामदेव को दोबारा आंदोलन करना पड़े।
1: प्रधानमंत्री ने युवाओं से 2047 का निर्माता बनने का आह्वान किया है, क्योंकि आज का युवा कल का नागरिक नहीं, आज के भारत का सबसे बड़ा निर्माता है। आज तक ब्यूरो।
4: जेन जी वोटर्स पर अचानक से हर पार्टी का फोकस बढ़ गया। जंतर मंतर प्रदर्शन के बाद यूपी चुनाव जेन जी की पहली प्रयोगशाला बनने जा रहा है और इसीलिए युवाओं को अपने पाले में करने के लिए पार्टियां हर तरह के और तरह तरह के हथकंडे अपना रही हैं।
5: जंतर मंतर आंदोलन की इन तस्वीरों ने देश की सियासत की रणनीति को और नए सिरे से गढ़ने पर हर पार्टी को मजबूर कर दिया है। धर्म और जाति के समीकरण पर अब जेन जी की इक्वेशन भारी नजर आ रही है। जेन जी पर जारी घमासान के बाद अब पहली बड़ी परीक्षा यूपी का विधानसभा चुनाव है, जहां सबकी नजरें इस बात पर है कि क्या रील और सोशल मीडिया पर दिख रही तस्वीर मतदान में तब्दील होगी। लेकिन इसे लेकर कोई पार्टी जोखिम नहीं लेना चाहती और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जेन जी की इस ताकत को समझ रहे हैं, जिसकी एक तस्वीर उनके आज 15 अगस्त के भाषण में भी देखने को मिली।
6: जेन जी और जेन अल्फा के लिए AI, मशीन लर्निंग, सेमीकंडक्टर, स्टार्टअप इकोसिस्टम, डेटा सेंटर, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, साइबर, रोबोट

0: इलेक्ट्रिक व्हीकल, एग्रीटेक, फिनटेक, डीपटेक, मेडटेक जैसे क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश ने तेजी के साथ जो कार्य आगे बढ़ाया है उसमें निवेश, नवाचार और एम्प्लॉयमेंट के नए नए द्वार खुल रहे हैं।
1: योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में पेपर लीक जैसे मुद्दों का जिक्र किया और छात्रों का भरोसा जीतने की कोशिश की।
0: स्वाधीनता दिवस के अवसर पर मैं प्रदेश के युवाओं से कहना चाहता हूं, आपकी प्रतिभा से ही यूपी की शक्ति निहित है। हमारी सरकार ने नकल माफिया, भर्ती माफिया के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की है। हम अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को डेवलपमेंट इंजन के रूप में बदल रहे हैं।
2: यूपी के अंदर बहुत शीघ्र युवा नीति लेकर के आ रहे हैं।
1: यूपी चुनाव के लिए फोकस पूरी तरह से युवा मतदाताओं पर केंद्रित हो चुका है, जिसकी तस्वीरें ग्राउंड से भी नजर आ रही हैं। यूपी सरकार के तमाम बड़े मंत्री ऐसे ही स्कूल कॉलेजों में पहुंचकर सीधा युवाओं से संवाद कर रहे हैं। बीजेपी की सरकार सीधे युवाओं के मन की बात टटोल रही है, इसीलिए मंत्री अपने अपने क्षेत्रों में जेंजी चौपाले लगा रहे हैं। इस अभियान के तहत विधानसभा बार 10-10 युवाओं की टीमें तैयार की जा रही हैं। टीम के सदस्य स्कूल कॉलेजों के युवाओं से बातचीत कर उनकी समस्याओं, अपेक्षाओं और सरकार को लेकर उनकी राय जानेंगे। टीम उन्हें सरकार की ओर से युवाओं के लिए शुरू की गई योजनाओं, रोजगार कार्यक्रम की जानकारी देगी, विधानसभा स्तर पर गठित होने वाले कार्यक्रमों और संवाद की जिम्मेदारी दी जाएगी। ये अभियान शुरू भी हो चुका है। कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे ने रायबरेली में बड़े स्तर पर युवाओं से संपर्क साधा, उनसे बातचीत की, उनकी समस्याएं सुनी।
3: आपके क्षेत्र में कार्यक्रम था तिरंगा यात्रा से लेकर युवा संवाद?
4: जी, आप देख रहे हैं जिस तरीके से आज युवा संवाद कार्यक्रम यहाँ रखा गया, कई हजार यूथ आज इस युवा संवाद में शामिल हुए और ये उनसे सीधे संवाद हुआ। उन्होंने अपनी भावनाएं भी बताई, अपनी दिक्कतों को भी बताई और उन्होंने सराहना भी किया भारत के प्रधानमंत्री जी के कार्यों के और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के। ये यूथ हमारे भविष्य हैं, ये हमारे कल हैं और इन यूथ के साथ संवाद होना जरूरी है। इनसे जब कम्युनिकेशन गैप रहता है तो बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं। इनसे लगातार हम सबका संवाद रहेगा और इनकी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें भी हम सबको जानकारी में आई है, जिसको हम लोग आगे धीरे धीरे करके उसे भी ठीक करने का भी काम करेंगे।
1: बीजेपी का टारगेट यही लगता है कि 2027 के चुनाव में युवाओं के तमाम वोट्स पर कब्जा हो, इसीलिए सीधे मुख्यमंत्री भी सक्रिय हैं, लगातार युवाओं की बात कर रहे हैं।
5: हमारा युवा प्रतिभाशाली है, हमारा युवा ऊर्जा का प्रतीक है, हमारा युवा देश की हर चुनौती का सामना करने की सामर्थ्य रखता है और उस सामर्थ्य के प्रतीक इस युवा ऊर्जा को आगे बढ़ने के लिए एक उचित प्लेटफॉर्म प्राप्त हो, वो अपने परंपरागत पाठ्यक्रम के साथ साथ देश और समाज की उन चुनौतियों का भी सामना करने के लिए अपने आप को तैयार कर सके।
1: यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ युवाओं से हवा हवाई बातें नहीं कर रहे, बल्कि उनके लिए पूरी युवा नीति तैयार की जा रही है, लंबी चौड़ी रणनीति है। सरकारी कोचिंग में आईएएस और पीएससी की तैयारी करने वालों की कलेक्टर और कप्तान की क्लास होगी। नीट की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए मुफ्त में डॉक्टरों की क्लास होगी। आईटी की तैयारी करने वालों को आईटीएन अफसर पढ़ाएंगे। बैंक पीओ की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए सरकारी बैंक के मैनेजर मार्गदर्शन करेंगे।
2: यूपी के अंदर बहुत शीघ्र युवा नीति लेकर के आ रहे हैं। हर जिले के अंदर, हर महाविद्यालय के अंदर, हर विश्वविद्यालय के अंदर युवा के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था। आपको प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करनी हो, आपको आपके महाविद्यालय विश्वविद्यालय में हम वर्चुअल भी और फिजिकल भी वहां क्लास की व्यवस्था रहेगी। और पढ़ाने वाले कौन होंगे? पढ़ाने वाला होगा वहां का डीएम भी एक घंटा देगा, एसपी एक घंटा देगा, क्योंकि उन्होंने यूपीएससी क्लियर किया।
1: बीजेपी के अलावा समाजवादी पार्टी की भी युवाओं को लेकर अपनी तैयारी है। समाजवादी पार्टी ने भी चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। सबसे पहला काम सर्वे से शुरू हो रहा है, वहाँ भी जीताऊ प्रत्याशी खोजे जा रहे हैं।
6: यूपी चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने बूथ स्तर से लेकर विधानसभा सीट्स तक अपनी तैयारी शुरू कर दी और इसी के चलते कुल मिलाकर पार्टी 3 सर्वे करा रही है। सूत्रों के मुताबिक 2 सर्वे एक प्राइवेट एजेंसीज के द्वारा किए जा रहे हैं तो तीसरा सर्वे संगठन के द्वारा किया जा रहा है। आकलन ये करना है हर बूथ पर, हर विधानसभा पर कौन उम्मीदवार है जो जिताऊ हो सकता है, कौन उम्मीदवार है जो जातीय समीकरणों को साध सकता है। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी को लगता है कि सर्वे के जरिए हर बूथ के, हर विधानसभा के एक फ्रेश जातीय आंकड़े सामने आ सकते हैं। यूं तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से या डेटा के जरिए जातीय आंकड़े मिल जाते हैं, लेकिन सपा को ऐसा लगता है कि अपने स्तर पर भी जातीय आंकड़े निकालने चाहिए, क्योंकि कई ऐसे विधानसभा सीट्स हैं जहां पर सपा को कुछ चौंकाने वाले जातीय आंकड़े मिले हैं जो पेपर्स पर कुछ और थे लेकिन जमीन पर सर्वे में कुछ और सामने आए हैं। और इसी के चलते 2 एजेंसीज और संगठनात्मक तौर पर समाजवादी पार्टी के यूथ विंग्स मिलकर ये सर्वे कर रहे हैं। सर्वे अलग है लेकिन एक तरीके से माहौल एक है कि विधानसभा में जिताऊ कैंडिडेट हो जिससे सही उम्मीदवार चुना जा सके और चुनाव जीता जा सके।
1: समाजवादी पार्टी तो इसी दावे पर है कि उनके पास तो युवाओं के सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव मौजूद हैं, जिनकी युवाओं में पहुंच भी है और पकड़ भी।
6: बीजेपी एक प्लानिंग के तहत अब जो है उनकी जो यूथ विंग है उनको जिम्मेदारी दे रही है कि स्कूल कॉलेजेस में जाएं। यूपी सरकार के तमाम मंत्री भी अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में ये काम करने वाले हैं, जैसे कि मनोज पांडे आज रायबरेली से कर रहे हैं, वो युवाओं का सम्मेलन कर रहे हैं, युवाओं से मिलेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे। तमाम अन्य मंत्री भी प्लान आउट कर रहे हैं। तो ये जेन जी कितना बड़ा वोटर एकदम से यूपी में हो गया है?
7: देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी अब कर रही है, समाजवादी पार्टी तो नौजवानों की पार्टी रही है और सबसे ज्यादा यंग मिनिस्टर्स और यंग लोगों को चुनाव लड़ने का मौका या यंग लोगों की बात अगर किसी ने सबसे ज्यादा की है तो वो समाजवादी पार्टी के संस्थापक आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, श्रद्धेय नेता जी ने की थी और अब उसी मशाल को आगे लेकर के आदरणीय अखिलेश यादव जी चल रहे हैं। और लगातार जिन जेंजीज की बात आज सरकार जागी है इन आंदोलन के बाद, समाजवादी पार्टी ने सबसे कम उम्र के लोगों को चुनाव लड़ा करके सदन में भेजा। कर मुझे अपना, मैं अगर बात करूं तो मैं जब 25 साल 4 दिन की थी तब मैंने नॉमिनेशन किया था, तो मैं भी एक जेंजी हूं। और साथ ही साथ अब मैं देखूं तो हमारी पार्टी में सबसे ज्यादा युवा विधायक हैं जो 25 साल के हैं, 25 साल के हमने सांसद बनाए।
1: लेकिन खबरें तो ये भी हैं कि जेन जी को मिल रहे इस समर्थन से तमाम राजनीतिक पार्टियों के बड़े बड़े और पुराने नेता बहुत परेशान हैं, उन्हें अपनी सीट खिसकने का डर सता रहा है।
6: खबर ये भी है कि जेन जी फोर्स को देखते हुए यूपी के तमाम वरिष्ठ और दिग्गज नेताओं की जमीन खिसकी हुई है। कई राजनीतिक दलों के वरिष्ठ विधायक ऐसे भी हैं जिन्हें लगता है कि कहीं उनका इस बार विधानसभा चुनाव में टिकट ही ना कट जाए, क्योंकि एक बात तो साफ है, सभी राजनीतिक दल इस बार जेन जी को उम्मीदवारी में उतारने वाले हैं। यानी कि इस बार जो उम्मीदवारों की एक लिस्ट आएगी, चाहे विपक्ष की हो चाहे सरकार की हो, उसमें जेन जी को तवज्जो मिलनी तय है। ऐसे में एक दिलचस्प बात की चर्चा यह भी है, जो विधायक पहले अपनी पत्नी या पति के नाम से जाने जाते थे, जिनको टिकट मिलता था, वो अब जेन जी के पिता के नाम से, यानी कि जेन जी विधायक के पिता के नाम से भी जाने जाएंगे।
1: समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
8: हमारे देश की राजनीतिक पार्टियों को अचानक से अब युवा वोटर्स की याद आने लगी है, लेकिन सवाल यह है कि युवाओं के वोट तो हर पार्टी को चाहिए, लेकिन उनकी भागीदारी कितनी है और क्या युवा वोटर सरकारों को गिराने और बनाने का दम रखते हैं? इसका पहला टेस्ट उत्तर प्रदेश में होगा।
9: जेन जी के इस फोर्स की राजनीतिक ताकत पूरे देश ने देखी और सरकारों ने महसूस की। दिल्ली से लेकर झारखंड तक युवाओं की ताकत का अनुमान इस देश के हुक्मरानों को हो चुका है, इसीलिए अब राजनीतिक पार्टियों के एजेंडे पर यही जेन जी है। और जेन जी की ताकत का पहला इम्तिहान होने वाला है उत्तर प्रदेश में, जहां सबसे पहले चुनाव होंगे। वैसे तो राजनीतिक दलों के एजेंडे पर हमेशा से ही युवा रहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान की राजनीतिक पार्टियों में युवाओं की भूमिका एक वोटर से ज्यादा कुछ नहीं रहती। लेकिन अब ऐसा लगता है कि मौजूदा आंदोलन के बाद इन पार्टियों में जेन ज़ी को बड़ी जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। इसीलिए सारी पार्टियों का फोकस इस वक्त इसी युवा वोटर पर है।
6: उत्तर प्रदेश की सभी राजनीतिक पार्टियों को यह समझ में आ गया है कि आखिर जेन ज़ी की ताकत क्या है। खासकर दिल्ली के जंतर मंतर में हुए प्रोटेस्ट के बाद ये बात साफ हो गई है कि जेन ज़ी को खुश रखना जरूरी है। जिस पार्टी के नेता ये कहते थे कि कितना भी बड़ी बात हो जाए हम अपने मंत्री का इस्तीफा नहीं कराते हैं, उसी पार्टी के नेताओं को धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कराना पड़ा है। अगला चुनाव उत्तर प्रदेश का है, इसलिए सभी राजनीतिक दल ये जानते हैं कि जेन ज़ी एक बेहद अहम वोट है और इसीलिए उसको महत्व देना भी जरूरी है। नतीजा जेन ज़ी चौपाल, जेन ज़ी तिरंगा यात्रा और जेन ज़ी के बीच जाकर बातें करना, परेशानियां समझना।
9: उत्तर प्रदेश में हर पार्टी जेन ज़ी पर जोर लगा रही है। बीजेपी ने मंत्रियों की जेन ज़ी चौपाल लगाई है। समाजवादी पार्टी चुनावों के लिए युवाओं का सर्वे करवा रही है। बीएसपी ने ऐलान किया है कि वो युवाओं को प्रत्याशी बनाएंगे। कांग्रेस के राहुल गांधी तो लगातार छात्रों के मुद्दों को उठा ही रहे हैं और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि यूपी में जेन ज़ी एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल फोर्स है। जेन ज़ी का मतलब हुआ 1997 से 2012 के बीच पैदा हुई जनरेशन। इस हिसाब से 14 से 29 साल के लोग जेन ज़ी हुए, लेकिन भारत में मतदान की उम्र 18 साल है तो उत्तर प्रदेश में 18 से 29 साल के युवा वोटर्स की संख्या करीब 21.19% है, जो बनते हैं करीब 3,27,00,000। अब अगर इतनी बड़ी संख्या में जेन ज़ी वोटर होंगे तो राजनीतिक दल तो जोर लगाएंगे ही। मतलब कि अगर जेन ज़ी किसी एक पार्टी को तय कर ले तो उसका चुनाव जीतना तय है और इसी फोर्स को उत्तर प्रदेश की पार्टियां अच्छे से समझ रही हैं। इसीलिए आज बीएसपी ने भी युवाओं के लिए बड़े बड़े ऐलान किए हैं। बीएसपी का कहना है कि आने वाले चुनावों में वो प्रत्याशियों के चयन में युवाओं को प्राथमिकता देगी। जालौन की माधोगढ़ सीट से बसपा ने आशीष पांडे को अपना पहला प्रत्याशी घोषित किया है, जो पार्टी के युवा चेहरों में शामिल है। बीएसपी की रणनीति, संगठन, सोशल मीडिया और चुनावी मैदान तीनों स्तरों पर युवा नेतृत्व को आगे लाने की है। पार्टी को उम्मीद है कि जेन ज़ी और युवा मतदाताओं के बीच सक्रियता बढ़ाकर वो 2027 के विधानसभा चुनाव में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत कर सकती है। मायावती ने अपने भतीजे और राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद को जेन ज़ी की नब्ज टटोलने की जिम्मेदारी दी है। हालांकि आकाश खुद जेन ज़ी नहीं है, 32 साल के हैं, युवा हैं। युवाओं की तासीर और उनके मुद्दों को कितना समझते हैं ये पता नहीं, लेकिन बीएसपी को सोशल मीडिया पर सक्रिय रखने की जिम्मेदारी भी आकाश आनंद की टीम संभाल रही है। हाथरस के सादाबाद में आकाश ने अपनी चुनावी तैयारियां भी दिखा दी और यहां से युवाओं को संदेश भी दिया।
10: हमारे समाज के बच्चे अगर पढ़ गए तो अपने अधिकारों के लिए लड़ना खड़े हो जाएंगे, लड़ेंगे अपने अधिकारों के लिए। तो जैसे आपने देखा था अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में, हमारी जनरेशन के बच्चे अपने अधिकारों के लिए लड़े, वैसे ही हमारे समाज के बच्चे प्रदेश के कोने कोने में चौराहे चौराहे पर इनसे सवाल करेंगे, आरक्षण के लिए, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए और लॉ एंड ऑर्डर के लिए, रोजगार के लिए, तब इनके लिए जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। साथियों, जो सरकार स्कूल बंद कर दे, जो सरकार आपके स्कूलों में पढ़ने वाले टीचरों की भर्ती ना करे, क्या वो सरकार लायक है आपके प्रदेश में सत्ता में रहने के लिए?
6: ये भी उठता है कि आखिर एकदम से उत्तर प्रदेश की राजनीतिक पार्टियों को जेन ज़ी की याद क्यों आई? क्या अगर दिल्ली में या रांची में ये प्रदर्शन ना हुए होते तो राजनीतिक दल यूपी के जेन ज़ी को इतना महत्व दे रहे होते? क्या यही मंत्री जगह जगह जाकर चौपाले कर रहे होते, या फिर यूपी सरकार नई युवा नीति की बात भी कर रही होती है, ऐसा कोई ऑर्डर भी आने वाला होता? बड़ी बात तो ये है, यूपी में जेन ज़ी एक बड़ा वोटर है जो चुनाव के नतीजों में बदलाव भी कर सकता है, लेकिन कभी भी विधानसभा चुनावों में उनके हक के मुताबिक उन्हें टिकट नहीं मिले। अब दिलचस्प होगा देखना इस यूपी चुनाव में क्या सियासी गणित बदलती है और जेन ज़ी को उनका हक मिलता है।
9: आंकड़े तो यही बता रहे हैं कि राजनीतिक दलों को युवाओं के वोट तो चाहिए लेकिन उन्हें हिस्सेदारी नहीं देनी है। कुल 543 लोकसभा सांसदों में से सिर्फ लेकिन उन्हें हिस्सेदारी नहीं देनी है। कुल 543 लोकसभा सांसदों में से सिर्फ 6 सांसद ही जनजी हैं। पूरे देश में कुल 4131 विधायक हैं। में आए लेकिन 2022 से भी इस देश में बहुत से चुनाव हुए हैं। सबसे ज्यादा जनजी विधायक तमिलनाडु में है 4, इनमें से 3 टीवीके के हैं और 1 एडीएमके के। पश्चिम बंगाल में 3 जनजी विधायक हैं, 3 बीजेपी के हैं। इसके अलावा बिहार, मेघालय और तेलंगाना में 2 जनजी विधायक हैं। इन सभी राज्यों में 2023 से 2026 के बीच चुनाव हुआ। ये आंकड़े बता रहे हैं कि राजनीतिक दलों ने युवाओं को वोटर तो समझा लेकिन उन्हें भागीदारी नहीं दी। हालांकि यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि भारत में सांसद या विधायक बनने के लिए आपको 25 साल का होना जरूरी है। इस हिसाब से जेंजी सिर्फ 4 साल पहले ही चुनाव लड़ने के लायक बने हैं, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि आने वाले चुनावों में तमाम पार्टियां अपने टिकटों में जेंजी उम्मीदवारों की संख्या बढ़ाकर रखेंगे। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
8: और छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।

0: किले से पीएम मोदी के दिमागी नक्सल के उल्लेख पर सुलगी राजनीति, कहा अवसर की तलाश में ऐसे लोग। कांग्रेस का पलटवार, पहले किसानों और युवाओं को प्रधानमंत्री ने कहा था नक्सली। वंदे मातरम पर छिड़ी नई जंग, बीजेपी का आरोप। कांग्रेस मुख्यालय में सोनिया और खड़गे ने किया राष्ट्रगीत का अपमान, कांग्रेस का जवाब, ऐसी कोई कोशिश नहीं। अटारी बॉर्डर पर जोश जुनून जज्बे का रंग, बीएसएफ ने जश्न आजादी की हुंकार भरी, तिरंगे में रंगी दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा। रांची में छात्रों की चेतावनी, मांगे पूरी नहीं तो 20 को करेंगे सीएम के घर का घेराव। परीक्षा में गड़बड़ी की सीबीआई जांच, आज राहुल और सोरेन का करेंगे पुतला दहन। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन मिश्रा ने लॉ छात्रों से मांगी माफी, कहा अगर भावनाएं आपकी आहत हुई तो खेद, नलसार विवाद में हुआ था बवाल। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित किया, विकसित भारत के लक्ष्य को दोहराया, सप्त सिंधु से सप्त धरा मंत्र पीएम ने दिया। 15 अगस्त का कार्यक्रम एक और मायने में विशेष रहा, पहली बार वंदे मातरम की धुन सुनाई दी, लेकिन इस पर दिल्ली में राजनीति भी देखने को मिली।
1: कांग्रेस दफ्तर में वंदे मातरम के दौरान सोनिया गांधी के इशारा करने की इन तस्वीरों पर बीजेपी सवाल पूछ रही है, बीजेपी इसे वंदे मातरम का अपमान बता रही है।
2: एक बहुत विचित्र, विडंबनापूर्ण और दुर्भाग्यपूर्ण दृश्य देखने को मिला जब कांग्रेस कार्यालय में वंदे मातरम गीत गाया जा रहा था, उस समय कांग्रेस की सुप्रीम लीडर सोनिया गांधी जी, सुपर अध्यक्ष राहुल गांधी जी और सिटिंग अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी बहुत ही विचित्र और आपत्तिजनक तरीके से असम्मान व्यक्त करते हुए एक दूसरे से बातचीत करते हुए नजर आए, किसी को बुलाते हुए नजर आए, और कोई व्यक्ति आकर उनसे कुछ बता भी रहा था और एक दूसरे को इशारे कर रहे थे। यह राष्ट्रगीत वंदे मातरम के प्रति उनका अपमान है।
1: बीजेपी के सवालों पर कांग्रेस का जवाब आया, इशारों के पीछे की वजह बताई गई।
3: आज यहाँ इंदिरा भवन में पूरा वंदे मातरम गाया गया, इसमें कोई वाद विवाद का सवाल नहीं उठता, कोई रोकने का प्रयास नहीं था, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस अध्यक्ष खड़े हुए थे, सोनिया जी कह रही थी उनके लिए कुर्सी लाके रख दो, बस कोई नहीं था।
1: वंदे मातरम पर यह घमासान उस वक्त शुरू हुआ है जब वंदे मातरम के पूर्ण संस्करण को हाल ही में राष्ट्रगान के समान कानूनी संरक्षण दिया गया है। 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्र के नाम संबोधन से पहले और उसके समापन पर भी वंदे मातरम बजाया गया था। वहीं आज पहली बार लाल किले में भी राष्ट्रगान से पहले वंदे मातरम गाया गया। संसद में वंदे मातरम बिल पारित के बाद अब 15 अगस्त पर इसके घमासान की पहली सियासी किश्त सामने आई है।
4: आजादी के बाद 15 अगस्त को लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं तो इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
1: आज तक ब्यूरो।
0: पीएम मोदी ने अपने भाषण में दिमागी नक्सल, महिला आरक्षण जैसे मुद्दों का उल्लेख किया जिस पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है।

0: लाल किले की प्राचीर से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्वजारोहण किया तो साथ में महिला सैन्य अधिकारी नजर आईं और पीएम ने भाषण में महिला आरक्षण पर विपक्ष से साथ आने की अपील की।
1: मैं देश के सभी राजनीतिक दलों से आज लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे की छाया में खड़े होकर के प्रार्थना करता हूं, आग्रह करता हूं, आइए उन महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनिए, उन महिलाओं के सम्मान में आगे आइए और जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, वे भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है।
0: पीएम की महिला आरक्षण को लेकर इस अपील पर कांग्रेस सरकार से सवाल पूछ रही है।
2: कानून बन चुका है, राहुल गांधी जी बाबा ही तो कहते हैं जब कानून बन चुका है लागू क्यों नहीं करो आप लोग। अब वो सपना देख रहे हैं, हम तो 800 संख्या बढ़ाएंगे पहले पार्लियामेंट के अंदर, असेंबली में बढ़ाएंगे, इसके मायने की परिसमन अपने हाथ में ले लेंगे।
3: महिला आरक्षण को लगातार दोयम दर्जा देने के लिए, पीछे धकेलने के लिए यदि कोई जिम्मेदार है तो स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2023 में जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया तो उसको दो शर्तों की बैसाखी पर खड़ा करने वाला कौन था? परिसीमन और जनगणना से जोड़ने वाला कौन था? वो प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार थी।
0: उधर पीएम मोदी ने नक्सल के सफाई का जिक्र किया तो वहीं दिमागी नक्सल से लड़ाई की बात कही।
1: हथियारी नक्सल तो गए लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा।
4: पहले भी जिनको जमीनी नक्सल कहा फिर उन्हीं किसानों की बात माननी पड़ी, नौजवानों को नक्सल कहा फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ा। तो पहले तो ये हाथ पांव मारते हैं नक्सल नक्सल नक्सल और उसके बाद उनकी बात मान लेते हैं।
5: पहले तो दिमागी नक्सल की परिभाषा बताओ क्या है, दिमागी नक्सल की क्या परिभाषा होती है, किसे आप दिमागी नक्सल करेंगे? ये तो एक आपने मुहावरा बना दिया, हर व्यक्ति दिमागी नक्सल हो सकता, तो ये कहना अपने आप में मुझे लगता है तमाम उन युवाओं का अपमान है।
0: इस बीच एक सियासत राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के लाल किले के कार्यक्रम में ना शामिल होने को लेकर भी हो रही है। लगातार दूसरे साल कांग्रेस के बड़े नेताओं ने इस अहम सरकारी कार्यक्रम से दूरी बनाए रखी। राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समारोह में नहीं पहुंचे। 2024 को 15 अगस्त के कार्यक्रम में राहुल गांधी की सीट को लेकर विवाद हुआ था, जहां राहुल गांधी पीछे की सीट पर बैठे थे। ऐसे में राहुल के नदारद होने को एक बार फिर सीट अरेंजमेंट के विवाद से जोड़ा जा रहा है। आज तक ब्यूरो।
6: लाल किले से पीएम मोदी ने जेन जी हो या जेन अल्फा सबके लिए सौगात का ऐलान किया। एआई ट्रेनिंग को लेकर भी बड़ा ऐलान किया।

0: मेरे प्यारे देशवासियों, डिफेंस में आत्मनिर्भर होना अब भारत ने अनुभव कर लिया, दुनिया ने अनुभव कर लिया है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे। हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है।
1: लाल किले की प्राचीर से आज तिरंगा सिर्फ आसमान में नहीं लहरा रहा था, भारत के भविष्य की तस्वीर भी सामने रखी जा रही थी और उस तस्वीर के केंद्र में था भारत का युवा। प्रधानमंत्री ने साफ संदेश दिया, भारत की अगली उड़ान का इंजन युवा होगा।
0: जब मैं विकसित भारत की बात कर रहा हूँ, देश को तेज गति से आगे बढ़ाने की बात कर रहा हूँ, उसका सबसे बड़ा लाभार्थी कौन है? इन सारे प्रयासों का सबसे बड़ा साधक कौन है? अगर साधक है तो मेरे देश का युवा है, मेरे देश की युवा शक्ति है। विकसित भारत की यात्रा में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। इतना ही नहीं, विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी मेरे देश का युवा है और इसलिए हमें विकसित भारत के लक्ष्य को युवाओं के साथ जोड़ करके आगे बढ़ाना है। ऊंचे होने
1: जेन जी हो या जेन अल्फा, संदेश साफ था, भारत का भविष्य सिर्फ युवाओं के लिए नहीं, युवाओं के हाथों से बनेगा। आत्मनिर्भर भारत, युवा शक्ति, तकनीक, राष्ट्रीय सुरक्षा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की ताकत और भविष्य का खाका खींचा। 1 करोड़ युवाओं को AI ट्रेनिंग, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग, 5 से 15 साल के बच्चों के लिए स्पोर्ट्स टैलेंट हंट, स्टार्टअप और इनोवेशन को बढ़ावा, मैन्युफैक्चरिंग में रोजगार के नए अवसर, सेमीकंडक्टर से लेकर डिफेंस तक आत्मनिर्भर युवा शक्ति। हालांकि विपक्ष पूछता है AI की ट्रेनिंग के साथ रोजगार कितना बढ़ेगा, फ्री कोचिंग के साथ परीक्षा व्यवस्था कितनी पारदर्शी होगी, टैलेंट हंट के साथ खेलों में अवसर कितने बढ़ेंगे और क्या युवा की आवाज सिर्फ चुनाव के समय सुनी जाएगी।
2: प्रधानमंत्री जी का सवालों का जवाब न देना पार्लियामेंट में, क्या ये लोकतंत्र का तरीका है? हमने क्या उठाया? लोकसभा में हो, राज्यसभा में हो, हमने जो सवाल उठाए वो विद्यार्थियों के सवाल थे। मैं पूछता हूं मेरे दोस्त, अगर तुम पार्लियामेंट में आते क्या तुम्हारा उम्र कम होने वाली थी? क्या तुम्हारी पार्टी घटने वाली थी?
1: इसी बेचैनी के बीच बाबा रामदेव ने भी सरकारी भर्तियों में भ्रष्टाचार और युवाओं के असंतोष का मुद्दा उठाया। उन्होंने चेतावनी दी कि व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो युवाओं का आंदोलन फिर तेज हो सकता है।
3: चारों तरफ देश में हंगामा है, छोटे छोटे स्कूल कॉलेजों से बच्चे निकल रहे हैं कि हमारे यहाँ टीचर नहीं है, हमारे यहाँ लाइट नहीं है, हमारे यहाँ पानी नहीं है, हमारे यहाँ शौचालय नहीं है, हमारे यहाँ टीचर है तो किताबें नहीं है, किताबें हैं तो टीचर नहीं है, और टीचर है तो पढ़ाई में नकल हो जाती है, कहीं पेपर लीक हो जाता है। ऐसे ही आंदोलन करना पड़ा तो देश कैसे चलेगा? इसलिए भाई सुधर जाओ, नहीं तो देश में आंदोलन और ज्यादा भी हो सकते हैं। आंदोलन के नाम पर मैं अराजकता अनार्की का समर्थक नहीं हूं, लेकिन भाई ये बात तो जरूर है देश में घपला भी बहुत है, ये घपले ठीक कर लो, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि बाबा रामदेव को दोबारा आंदोलन करना पड़े।
1: प्रधानमंत्री ने युवाओं से 2047 का निर्माता बनने का आह्वान किया है, क्योंकि आज का युवा कल का नागरिक नहीं, आज के भारत का सबसे बड़ा निर्माता है। आज तक ब्यूरो।
4: जेन जी वोटर्स पर अचानक से हर पार्टी का फोकस बढ़ गया। जंतर मंतर प्रदर्शन के बाद यूपी चुनाव जेन जी की पहली प्रयोगशाला बनने जा रहा है और इसीलिए युवाओं को अपने पाले में करने के लिए पार्टियां हर तरह के और तरह तरह के हथकंडे अपना रही हैं।
5: जंतर मंतर आंदोलन की इन तस्वीरों ने देश की सियासत की रणनीति को और नए सिरे से गढ़ने पर हर पार्टी को मजबूर कर दिया है। धर्म और जाति के समीकरण पर अब जेन जी की इक्वेशन भारी नजर आ रही है। जेन जी पर जारी घमासान के बाद अब पहली बड़ी परीक्षा यूपी का विधानसभा चुनाव है, जहां सबकी नजरें इस बात पर है कि क्या रील और सोशल मीडिया पर दिख रही तस्वीर मतदान में तब्दील होगी। लेकिन इसे लेकर कोई पार्टी जोखिम नहीं लेना चाहती, और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जेंजी की इस ताकत को समझ रहे हैं, जिसकी एक तस्वीर उनके आज 15 अगस्त के भाषण में भी देखने को मिली।
6: जेंजी और जेन अल्फा के लिए एआई, मशीन लर्निंग, सेमीकंडक्टर, स्टार्टअप इकोसिस्टम, डेटा सेंटर, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, साइबर, रोबोटिक, इलेक्ट्रिक व्हीकल, एग्रीटेक, फिनटेक, डीपटेक, मेडटेक जैसे क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश ने तेजी के साथ जो कार्य आगे बढ़ाया है उसमें निवेश, नवाचार और एम्प्लॉयमेंट के नए द्वार खुल रहे हैं।
5: योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में पेपर लीक जैसे मुद्दों का जिक्र किया और छात्रों का भरोसा जीतने की कोशिश की।
6: स्वाधीनता दिवस के अवसर पर मैं प्रदेश के युवाओं से कहना चाहता हूं, आपकी प्रतिभा से ही यूपी की शक्ति निहित है। हमारी सरकार ने नकल माफिया, भर्ती माफिया के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की है। हम अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को डेवलपमेंट इंजन के रूप में बदल रहे हैं।
7: यूपी के अंदर बहुत शीघ्र युवा नीति लेकर के आ रहे हैं।
5: यूपी चुनाव के लिए फोकस पूरी तरह से युवा मतदाताओं पर केंद्रित हो चुका है, जिसकी तस्वीरें ग्राउंड से भी नजर आ रही हैं। यूपी सरकार के तमाम बड़े मंत्री ऐसे ही स्कूल कॉलेजों में पहुंचकर सीधा युवाओं से संवाद कर रहे हैं। बीजेपी की सरकार सीधे युवाओं के मन की बात टटोल रही है, इसीलिए मंत्री अपने अपने क्षेत्रों में जेंजी चौपाले लगा रहे हैं। इस अभियान के तहत विधानसभा बार 10-10 युवाओं की टीमें तैयार की जा रही है। टीम के सदस्य स्कूल कॉलेजों के युवाओं से बातचीत कर उनकी समस्याओं, अपेक्षाओं और सरकार को लेकर उनकी राय जानेंगे। टीम उन्हें सरकार की ओर से युवाओं के लिए शुरू की गई योजनाओं, रोजगार कार्यक्रम की जानकारी देगी, विधानसभा स्तर पर गठित होने वाले कार्यक्रमों और संवाद की जिम्मेदारी दी जाएगी। ये अभियान शुरू भी हो चुका है। कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे ने रायबरेली में बड़े स्तर पर युवाओं से संपर्क साधा, उनसे बातचीत की, उनकी समस्याएं सुनी।
8: आपके क्षेत्र में कार्यक्रम था तिरंगा यात्रा से लेके युवा संवाद?
9: जी, आप देख रहे हैं जिस तरीके से आज युवा संवाद कार्यक्रम यहाँ रखा गया, कई हजार यूथ आज इस युवा संवाद में शामिल हुए और ये उनसे सीधे संवाद हुआ। उन्होंने अपनी भावनाएं भी बताई, अपनी दिक्कतों को भी बताई और उन्होंने सराहना भी किया भारत के प्रधानमंत्री जी के कार्यों के और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के। ये यूथ हमारा भविष्य है, ये हमारे कल हैं और इन यूथ के साथ संवाद होना जरूरी है। इनसे जब कम्युनिकेशन गैप रहता है तो बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं। इनसे लगातार हम सबका संवाद रहेगा और इनकी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें भी हम सबको जानकारी में आई है, जिसको हम लोग आगे धीरे धीरे करके उसे भी ठीक करने का भी काम करेंगे।
5: बीजेपी का टारगेट यही लगता है कि 2027 के चुनाव में युवाओं के तमाम वोट्स पर कब्जा हो, इसीलिए सीधे मुख्यमंत्री भी सक्रिय हैं, लगातार युवाओं की बात कर रहे हैं।
10: हमारा युवा प्रतिभाशाली है, हमारा युवा ऊर्जा का प्रतीक है, हमारा युवा देश की हर चुनौती का सामना करने की सामर्थ्य रखता है और उस सामर्थ्य के प्रतीक इस युवा ऊर्जा को आगे बढ़ने के लिए एक उचित प्लेटफॉर्म प्राप्त हो, वह अपने परंपरागत पाठ्यक्रम के साथ साथ देश और समाज की उन चुनौतियों का भी सामना करने के लिए अपने आप को तैयार कर सके।
5: यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ युवाओं से हवा हवाई बातें नहीं कर रहे, बल्कि उनके लिए पूरी युवा नीति तैयार की जा रही है, लंबी चौड़ी रणनीति है। सरकारी कोचिंग में आईएएस और पीएससी की तैयारी करने वालों की कलेक्टर और कप्तान की क्लास होगी। नीट की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए मुफ्त में डॉक्टरों की क्लास होगी। आईटी की तैयारी करने वालों को आईटीएन अफसर पढ़ाएंगे। बैंक पीओ की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए सरकारी बैंक के मैनेजर मार्गदर्शन करेंगे।
7: यूपी के अंदर बहुत शीघ्र युवा नीति लेकर के आ रहे हैं। हर जिले के अंदर, हर महाविद्यालय के अंदर, हर विश्वविद्यालय के अंदर युवा के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था, आपको प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करनी हो, आपको आपके महाविद्यालय विश्वविद्यालय में हम वर्चुअल भी और फिजिकल भी वहां क्लास की व्यवस्था रहेगी, और पढ़ाने वाले कौन होंगे, पढ़ाने वाला होगा वहां का डीएम भी एक घंटा देगा, एसपी एक घंटा देगा, क्योंकि उन्होंने यूपीएससी क्लियर किया।
5: बीजेपी के अलावा समाजवादी पार्टी की भी युवाओं को लेकर अपनी तैयारी है। समाजवादी पार्टी ने भी चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। सबसे पहला काम सर्वे से शुरू हो रहा है, वहां भी जीताऊ प्रत्याशी खोजे जा रहे हैं।
11: यूपी चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने बूथ स्तर से लेकर विधानसभा सीट्स तक अपनी तैयारी शुरू कर दी, और इसी के चलते कुल मिलाकर पार्टी 3 सर्वे करा रही है। सूत्रों के मुताबिक 2 सर्वे एक प्राइवेट एजेंसीज के द्वारा किए जा रहे हैं, तो तीसरा सर्वे संगठन के द्वारा किया जा रहा है। आकलन ये करना है हर बूथ पर, हर विधानसभा पर कौन उम्मीदवार है जो जिताऊ हो सकता है, कौन उम्मीदवार है जो जातीय समीकरणों को साध सकता है। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी को लगता है कि सर्वे के जरिए हर बूथ के, हर विधानसभा के एक फ्रेश जातीय आंकड़े सामने आ सकते हैं। यूं तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से या डेटा के जरिए जातीय आंकड़े मिल जाते हैं, लेकिन सपा को ऐसा लगता है कि अपने स्तर पर भी जातीय आंकड़े निकालने चाहिए, क्योंकि कई ऐसे विधानसभा सीट्स हैं जहां पर सपा को कुछ चौंकाने वाले जातीय आंकड़े मिले हैं, जो पेपर्स पर कुछ और थे लेकिन जमीन पर सर्वे में कुछ और सामने आए हैं। और इसी के चलते 2 एजेंसीज और संगठनात्मक तौर पर समाजवादी पार्टी के यूथ विंग्स मिलकर ये सर्वे कर रहे हैं। सर्वे अलग है लेकिन एक तरीके से माहौल एक है कि विधानसभा में जिताऊ कैंडिडेट हो जिससे सही उम्मीदवार चुना जा सके और चुनाव जीता जा सके।
5: समाजवादी पार्टी तो इसी दावे पर है कि उनके पास तो युवाओं के सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव मौजूद हैं, जिनकी युवाओं में पहुंच भी है और पकड़ भी।
11: बीजेपी एक प्लानिंग के तहत अब जो है उनकी जो यूथ विंग है उनको जिम्मेदारी दे रही है कि स्कूल कॉलेजेस में जाएं। यूपी सरकार के तमाम मंत्री भी अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में ये काम करने वाले हैं, जैसे कि मनोज पांडे आज रायबरेली से कर रहे हैं, वो युवाओं का सम्मेलन कर रहे हैं, युवाओं से मिलेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे, तमाम अन्य मंत्री भी प्लान आउट कर रहे हैं। तो ये जेन जी कितना बड़ा वोटर एकदम से यूपी में हो गया है?
12: देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी अब कर रही है, समाजवादी पार्टी तो नौजवानों की पार्टी रही है, और सबसे ज़्यादा यंग मिनिस्टर्स और यंग लोगों को चुनाव लड़ने का मौका या यंग लोगों की बात अगर किसी ने सबसे ज़्यादा की है तो वो समाजवादी पार्टी के संस्थापक आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, श्रद्धेय नेता जी ने की थी, और अब उसी मशाल को आगे लेकर के आदरणीय अखिलेश यादव जी चल रहे हैं। और लगातार जिन जेंजीज की बात आज सरकार जागी है इन आंदोलन के बाद, समाजवादी पार्टी ने सबसे कम उम्र के लोगों को चुनाव लड़ा करके सदन में भेजा। कर मुझे अपना मैं अगर बात करूं तो मैं जब 25 साल 4 दिन की थी तब मैंने नॉमिनेशन किया था, तो मैं भी एक जेंजी हूं, और साथ ही साथ अब मैं देखूं तो हमारी पार्टी में सबसे ज्यादा युवा विधायक हैं जो 25 साल के हैं, 25 साल के हमने सांसद बनाए।
5: लेकिन खबरें तो ये भी हैं कि जेन जी को मिल रहे इस समर्थन से तमाम राजनीतिक पार्टियों के बड़े बड़े और पुराने नेता बहुत परेशान हैं, उन्हें अपनी सीट खिसकने का डर सता रहा है।
11: खबर ये भी है कि जेन जी फोर्स को देखते हुए यूपी के तमाम वरिष्ठ और दिग्गज नेताओं की जमीन खिसकी हुई है। कई राजनीतिक दलों के वरिष्ठ विधायक ऐसे भी हैं जिन्हें लगता है कि कहीं उनका इस बार विधानसभा चुनाव में टिकट ही ना कट जाए, क्योंकि एक बात तो साफ है, सभी राजनीतिक दल इस बार जेन जी को उम्मीदवारी में उतारने वाले हैं, यानी कि इस बार जो उम्मीदवारों की एक लिस्ट आएगी, चाहे विपक्ष की हो चाहे सरकार की हो, उसमें जेन जी को तवज्जो मिलनी तय है। ऐसे में एक दिलचस्प बात की चर्चा यह भी है, जो विधायक पहले अपनी पत्नी या पति के नाम से जाने जाते थे, जिनको टिकट मिलता था, वो अब जेन जी के पिता के नाम से, यानी कि जेन जी विधायक के पिता के नाम से भी जाने जाएंगे।
5: समर श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
4: हमारे देश की राजनीतिक पार्टियों को अचानक से अब युवा वोटर्स की याद आने लगी है, लेकिन सवाल यह है कि युवाओं के वोट तो हर पार्टी को चाहिए, लेकिन उनकी भागीदारी कितनी है और क्या युवा वोटर सरकारों को गिराने और बनाने का दम रखते हैं? इसका पहला टेस्ट उत्तर प्रदेश में होगा।
13: जेन जी के इस फोर्स की राजनीतिक ताकत पूरे देश ने देखी और सरकारों ने महसूस की। दिल्ली से लेकर झारखंड तक युवाओं की ताकत का अनुमान इस देश के हुक्मरानों को हो चुका है, इसीलिए अब राजनीतिक पार्टियों के एजेंडे पर यही जेन जी। और जेन जी की ताकत का पहला इम्तिहान होने वाला है उत्तर प्रदेश में, जहां सबसे पहले चुनाव होंगे। वैसे तो राजनीतिक दलों के एजेंडे पर हमेशा से ही युवा रहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान की राजनीतिक पार्टियों में युवाओं की भूमिका एक वोटर से ज्यादा कुछ नहीं रहती। लेकिन अब ऐसा लगता है कि मौजूदा आंदोलन के बाद इन पार्टियों में जेन जी को बड़ी जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं, इसीलिए सारी पार्टियों का फोकस इस वक्त इसी युवा वोटर पर है।
14: उत्तर प्रदेश की सभी राजनीतिक पार्टियों को यह समझ में आ गया है कि आखिर जेन जी की ताकत क्या है। खासकर दिल्ली के जंतर मंतर में हुए प्रोटेस्ट के बाद ये बात साफ हो गई है कि जेन जी को खुश रखना जरूरी है। जिस पार्टी के नेता ये कहते थे कि कितना भी बड़ी बात हो जाए हम अपने मंत्री का इस्तीफा नहीं कराते हैं, उसी पार्टी के नेताओं को धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कराना पड़ा है। अगला चुनाव उत्तर प्रदेश का है, इसलिए सभी राजनीतिक दल जानते हैं कि जेन जी एक बेहद अहम वोट है और इसीलिए उसको महत्व देना भी जरूरी है। नतीजा जेन जी चौपाल, जेन जी तिरंगा यात्रा और जेन जी के बीच जाकर बातें करना, परेशानियां समझना।
13: उत्तर प्रदेश में हर पार्टी जेन जी पर जोर लगा रही है। बीजेपी ने मंत्रियों की जेन जी चौपाल लगाई है। समाजवादी पार्टी चुनावों के लिए युवाओं का सर्वे करवा रही है। बीएसपी ने ऐलान किया है कि वो युवाओं को प्रत्याशी बनाएंगे। कांग्रेस के राहुल गांधी तो लगातार छात्रों के मुद्दों को उठा ही रहे हैं। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि यूपी में जेन जी एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल फोर्स है। जेन जी का मतलब हुआ 1997 से 2012 के बीच पैदा हुई जनरेशन। इस हिसाब से 14 से 29 साल के लोग जेन जी हुए, लेकिन भारत में मतदान की उम्र 18 साल है, तो उत्तर प्रदेश में 18 से 29 साल के युवा वोटर्स की संख्या करीब 21.19% है, जो बनते हैं करीब 3,27,00,000। अब अगर इतनी बड़ी संख्या में जेन जी वोटर होंगे तो राजनीतिक दल तो जोर लगाएंगे ही। मतलब कि अगर जेन जी किसी एक पार्टी को तय कर ले तो उसका चुनाव जीतना तय है, और इसी फोर्स को उत्तर प्रदेश की पार्टियां अच्छे से समझ रही है। इसीलिए आज बीएसपी ने भी युवाओं के लिए बड़े बड़े ऐलान किए हैं। बीएसपी का कहना है कि आने वाले चुनावों में वो प्रत्याशियों के चयन में युवाओं को प्राथमिकता देगी। जालौन की माधोगढ़ सीट से बसपा ने आशीष पांडे को अपना पहला प्रत्याशी घोषित किया है, जो पार्टी के युवा चेहरों में शामिल है। बीएसपी की रणनीति, संगठन, सोशल मीडिया और चुनावी मैदान तीनों स्तरों पर युवा नेतृत्व को आगे लाने की है। पार्टी को उम्मीद है कि जेन जी और युवा मतदाताओं के बीच सक्रियता बढ़ाकर वो 2027 के विधानसभा चुनाव में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत कर सकती है। मायावती ने अपने भतीजे और राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद को जेन जी की नब्ज टटोलने की जिम्मेदारी दी है। हालांकि आकाश खुद जेन जी नहीं है, 32 साल के हैं, युवा हैं। युवाओं की तासीर और उनके मुद्दों को कितना समझते हैं ये पता नहीं, लेकिन बीएसपी को सोशल मीडिया पर सक्रिय रखने की जिम्मेदारी भी आकाश आनंद की टीम संभाल रही है। हाथरस के सादाबाद में आकाश ने अपनी चुनावी तैयारियां भी दिखा दी और यहां से युवाओं को संदेश भी दिया।
15: हमारे समाज के बच्चे अगर पढ़ गए तो अपने अधिकारों के लिए लड़ना खड़े हो जाएंगे, लड़ेंगे अपने अधिकारों के लिए। तो जैसे आपने देखा था अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में, हमारी जनरेशन के बच्चे अपने अधिकारों के लिए लड़े, वैसे ही हमारे समाज के बच्चे प्रदेश के कोने कोने में चौराहे चौराहे पर इनसे सवाल करेंगे, आरक्षण के लिए, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए और लॉ एंड ऑर्डर के लिए, रोजगार के लिए, तब इनके लिए जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। साथियों, जो सरकार स्कूल बंद कर दे, जो सरकार आपके स्कूलों में पढ़ने वाले टीचरों की भर्ती ना करे, क्या वो सरकार लायक है आपके प्रदेश में सत्ता में रहने के लिए?
14: ये भी उठता है कि आखिर एकदम से उत्तर प्रदेश की राजनीतिक पार्टियों को जेन जी की याद क्यों आई? क्या अगर दिल्ली में या रांची में ये प्रदर्शन ना हुए होते तो राजनीतिक दल यूपी के जेन जी को इतना महत्व दे रहे होते? क्या यही मंत्री जगह जगह जाकर चौपाले कर रहे होते, या फिर यूपी सरकार नई युवा नीति की बात भी कर रही होती है? ऐसा कोई ऑर्डर भी आने वाला होता? बड़ी बात तो ये है, यूपी में जेंजी एक बड़ा वोटर है जो चुनाव के नतीजों में बदलाव भी कर सकता है, लेकिन कभी भी विधानसभा चुनावों में उनके हक के मुताबिक उन्हें टिकट नहीं मिले। अब दिलचस्प होगा देखना इस यूपी चुनाव में क्या सियासी गणित बदलती है और जेंजी को उनका हक मिलता है।
13: आंकड़े तो यही बता रहे हैं कि राजनीतिक दलों को युवाओं के वोट तो चाहिए लेकिन उन्हें हिस्सेदारी नहीं देनी है। कुल 543 लोकसभा सांसदों में से सिर्फ 6 सांसद ही जेंजी हैं। पूरे देश में कुल 4131 विधायक हैं और पूरे देश भर में सिर्फ 20 जेंजी विधायक हैं। हालांकि ये भी एक फैक्ट है कि 2022 के बाद ही जेंजी चुनाव लड़ने की उम्र में आए, लेकिन 2022 से भी इस देश में बहुत से चुनाव हुए हैं। सबसे ज्यादा जेंजी विधायक तमिलनाडु में है 4, इनमें से 3 टीवीके के हैं और 1 एडीएमके के। पश्चिम बंगाल में 3 जेंजी विधायक हैं, तीनों बीजेपी के हैं। इसके अलावा बिहार, मेघालय और तेलंगाना में 2-2 जेंजी विधायक हैं। इन सभी राज्यों में 2023 से 2026 के बीच चुनाव हुआ। ये आंकड़े बता रहे हैं कि राजनीतिक दलों ने युवाओं को वोटर तो समझा लेकिन उन्हें भागीदारी नहीं दी। हालांकि यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि भारत में सांसद या विधायक बनने के लिए आपको 25 साल का होना जरूरी है। इस हिसाब से जेंजी सिर्फ 4 साल पहले ही चुनाव लड़ने के लायक बने हैं, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि आने वाले चुनावों में तमाम पार्टियां अपने टिकटों में जेंजी उम्मीदवारों की संख्या बढ़ाकर रखेंगी। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
4: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

0: अल किले से पीएम मोदी के दिमागी नक्सल के उल्लेख पर सुलगी राजनीति, कहा अवसर की तलाश में ऐसे लोग। कांग्रेस का पलटवार, पहले किसानों और युवाओं को प्रधानमंत्री ने कहा था नक्सली। वंदे मातरम पर छिड़ी नई जंग, बीजेपी का आरोप। कांग्रेस मुख्यालय में सोनिया और खड़गे ने किया राष्ट्रगीत का अपमान। कांग्रेस का जवाब, ऐसी कोई कोशिश नहीं। अटारी बॉर्डर पर जोश जुनून जज्बे का रंग, बीएसएफ ने जश्न आजादी की हुंकार भरी। तिरंगे में रगी दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा। रांची में छात्रों की चेतावनी, मांगे पूरी नहीं तो 20 को करेंगे सीएम के घर का घेराव। परीक्षा में गड़बड़ी की सीबीआई जांच आज। राहुल और सोरेन का करेंगे पुतला दहन। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन मिश्रा ने लॉ छात्रों से मांगी माफी, कहा अगर भावनाएं आपकी आहत हुई तो खेद, नलसार विवाद में हुआ था बवाल। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित किया, विकसित भारत के लक्ष्य को दोहराया। सप्त सिंधु से सप्त धरा मंत्र पीएम ने दिया। 15 अगस्त का कार्यक्रम एक और मायने में विशेष रहा, पहली बार वंदे मातरम की धुन सुनाई दी, लेकिन इस पर दिल्ली में राजनीति भी देखने को मिली।
1: कांग्रेस दफ्तर में वंदे मातरम के दौरान सोनिया गांधी के इशारा करने की इन तस्वीरों पर बीजेपी सवाल पूछ रही है। बीजेपी इसे वंदे मातरम का अपमान बता रही है।
2: एक बहुत विचित्र, विडंबनापूर्ण और दुर्भाग्यपूर्ण दृश्य देखने को मिला जब कांग्रेस कार्यालय में वंदे मातरम गीत गाया जा रहा था। उस समय कांग्रेस की सुप्रीम लीडर सोनिया गांधी जी, सुपर अध्यक्ष राहुल गांधी जी और सिटिंग अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी बहुत ही विचित्र और आपत्तिजनक तरीके से असम्मान व्यक्त करते हुए एक दूसरे से बातचीत करते हुए नजर आए, किसी को बुलाते हुए नजर आए, और कोई व्यक्ति आकर उनसे कुछ बता भी रहा था और एक दूसरे को इशारे कर रहे थे। यह राष्ट्रगीत वंदे मातरम के प्रति उनका अपमान है।
1: बीजेपी के सवालों पर कांग्रेस का जवाब आया, इशारों के पीछे की वजह बताई गई।
3: आज यहाँ इंदिरा भवन में पूरा वंदे मातरम गाया गया, इसमें कोई वाद विवाद का सवाल नहीं उठता, कोई रोकने का प्रयास नहीं था, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस अध्यक्ष खड़े हुए थे, सोनिया जी कह रही थी उनके लिए कुर्सी लाके रख दो बस।
1: वंदे मातरम पर यह घमासान उस वक्त शुरू हुआ है जब वंदे मातरम के पूर्ण संस्करण को हाल ही में राष्ट्रगान के समान कानूनी संरक्षण दिया गया है। 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्र के नाम संबोधन से पहले और उसके समापन पर भी वंदे मातरम बजाया गया था। वहीं आज पहली बार लाल किले में भी राष्ट्रगान से पहले वंदे मातरम गाया गया। संसद में वंदे मातरम बिल पारित के बाद अब 15 अगस्त पर इसके घमासान की पहली सियासी किश्त सामने आई है।
4: आजादी के बाद 15 अगस्त को लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं तो इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
1: आज तक ब्यूरो।
0: लाल किले से पीएम मोदी ने जेन जी हो या जेन अल्फा सबके लिए सौगात का ऐलान किया। एआई ट्रेनिंग को लेकर भी बड़ा ऐलान किया।

0: मेरे प्यारे देशवासियों, डिफेंस में आत्मनिर्भर होना अब भारत ने अनुभव कर लिया, दुनिया ने अनुभव कर लिया है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे। हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है।
1: लाल किले की प्राचीर से आज तिरंगा सिर्फ आसमान में नहीं लहरा रहा था, भारत के भविष्य की तस्वीर भी सामने रखी जा रही थी और उस तस्वीर के केंद्र में था भारत का युवा। प्रधानमंत्री ने साफ संदेश दिया, भारत की अगली उड़ान का इंजन युवा होगा।
0: जब मैं विकसित भारत की बात कर रहा हूँ, देश को तेज गति से आगे बढ़ाने की बात कर रहा हूँ, उसका सबसे बड़ा लाभार्थी कौन है? इन सारे प्रयासों का सबसे बड़ा साधक कौन है? अगर साधक है तो मेरे देश का युवा है, मेरे देश की युवा शक्ति है। विकसित भारत की यात्रा में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। इतना ही नहीं, विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी मेरे देश का युवा है और इसलिए हमें विकसित भारत के लक्ष्य को

0: नहीं युवाओं के हाथों से बनेगा। आत्मनिर्भर भारत, युवा शक्ति, तकनीक, राष्ट्रीय सुरक्षा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की ताकत और भविष्य का खाका खींचा। 1 करोड़ युवाओं को AI ट्रेनिंग, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग, 5 से 15 साल के बच्चों के लिए स्पोर्ट्स टैलेंट हंट, स्टार्टअप और इनोवेशन को बढ़ावा, मैन्युफैक्चरिंग में रोजगार के नए अवसर, सेमीकंडक्टर से लेकर डिफेंस तक आत्मनिर्भर युवा शक्ति। हालांकि विपक्ष पूछता है AI की ट्रेनिंग के साथ रोजगार कितना बढ़ेगा, फ्री कोचिंग के साथ परीक्षा व्यवस्था कितनी पारदर्शी होगी, टैलेंट हंट के साथ खेलों में अवसर कितने बढ़ेंगे और क्या युवा की आवाज सिर्फ चुनाव के समय सुनी जाएगी।
1: प्रधानमंत्री जी का सवालों का जवाब न देना पार्लियामेंट में क्या ये लोकतंत्र का तरीका है? हमने क्या उठाया? लोकसभा में हो, राज्यसभा में हो, हमने जो सवाल उठाए वो विद्यार्थियों के सवाल थे। मैं पूछता हूं मेरे दोस्त, अगर तुम पार्लियामेंट में आते क्या तुम्हारा उम्र कम होने वाली थी? क्या तुम्हारी पार्टी घटने वाली थी?
0: इसी बेचैनी के बीच बाबा रामदेव ने भी सरकारी भर्तियों में भ्रष्टाचार और युवाओं के असंतोष का मुद्दा उठाया। उन्होंने चेतावनी दी कि व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो युवाओं का आंदोलन फिर तेज हो सकता है।
2: चारों तरफ देश में हंगामा है, छोटे छोटे स्कूल कॉलेजों से बच्चे निकल रहे हैं कि हमारे यहाँ टीचर नहीं है, हमारे यहाँ लाइट नहीं है, हमारे यहाँ पानी नहीं है, हमारे यहाँ शौचालय नहीं है, हमारे यहाँ टीचर है तो किताबें नहीं है, किताबें हैं तो टीचर नहीं है, और टीचर है तो पढ़ाई में नकल हो जाती है, कहीं पेपर लीक हो जाता है। ऐसे ही आंदोलन करना पड़ा तो देश कैसे चलेगा? इसलिए भाई सुधर जाओ, नहीं तो देश में आंदोलन और ज्यादा भी हो सकते हैं। आंदोलन के नाम पर मैं अराजकता अनार्की का समर्थक नहीं हूं, लेकिन भाई ये बात तो जरूर है देश में घपला भी बहुत है, ये घपले ठीक कर लो। मैं तो कहीं ऐसा ना हो कि बाबा रामदेव को दोबारा आंदोलन करना पड़े।
0: प्रधानमंत्री ने युवाओं से 2047 का निर्माता बनने का आह्वान किया है, क्योंकि आज का युवा कल का नागरिक नहीं, आज के भारत का सबसे बड़ा निर्माता है। आज तक ब्यूरो।
3: जेन जी वोटर्स पर अचानक से हर पार्टी का फोकस बढ़ गया। जंतर मंतर प्रदर्शन के बाद यूपी चुनाव जेन जी की पहली प्रयोगशाला बनने जा रहा है, और इसीलिए युवाओं को अपने पाले में करने के लिए पार्टियां हर तरह के और तरह तरह के हथकंडे अपना रही।
4: जंतर मंतर आंदोलन की इन तस्वीरों ने देश की सियासत की रणनीति को और नए सिरे से गढ़ने पर हर पार्टी को मजबूर कर दिया है। धर्म और जाति के समीकरण पर अब जेन जी की इक्वेशन भारी नजर आ रही है। जेन जी पर जारी घमासान के बाद अब पहली बड़ी परीक्षा यूपी का विधानसभा चुनाव है, जहां सबकी नजरें इस बात पर है कि क्या रील और सोशल मीडिया पर दिख रही तस्वीर मतदान में तब्दील होगी। लेकिन इसे लेकर कोई पार्टी जोखिम नहीं लेना चाहती, और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जेन जी की इस ताकत को समझ रहे हैं, जिसकी एक तस्वीर उनके आज 15 अगस्त के भाषण में भी देखने को मिली।
5: जेन जी और जेन अल्फा के लिए AI, मशीन लर्निंग, सेमीकंडक्टर, स्टार्टअप इकोसिस्टम, डेटा सेंटर, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, साइबर, रोबोटिक, इलेक्ट्रिक व्हीकल, एग्रीटेक, फिनटेक, डीपटेक, मेडटेक जैसे क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश ने तेजी के साथ जो कार्य आगे बढ़ाया है उसमें निवेश, नवाचार और एम्प्लॉयमेंट के नए नए द्वार खुल रहे हैं।
4: योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में पेपर लीक जैसे मुद्दों का जिक्र किया और छात्रों का भरोसा जीतने की कोशिश की।
5: स्वाधीनता दिवस के अवसर पर मैं प्रदेश के युवाओं से कहना चाहता हूं, आपकी प्रतिभा से ही यूपी की शक्ति निहित है। हमारी सरकार ने नकल माफिया, भर्ती माफिया के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की है। हम अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को डेवलपमेंट इंजन के रूप में बदल रहे हैं।
6: जो यूपी के अंदर बहुत शीघ्र युवा नीति लेकर के आ रहे हैं।

0: यूपी चुनाव के लिए फोकस पूरी तरह से युवा मतदाताओं पर केंद्रित हो चुका है, जिसकी तस्वीरें ग्राउंड से भी नजर आ रही हैं। यूपी सरकार के तमाम बड़े मंत्री ऐसे ही स्कूल कॉलेजों में पहुंचकर सीधा युवाओं से संवाद कर रहे हैं। बीजेपी की सरकार सीधे युवाओं के मन की बात टटोल रही है, इसीलिए मंत्री अपने अपने क्षेत्रों में जेंजी चौपाले लगा रहे हैं। इस अभियान के तहत विधानसभा बार 10-10 युवाओं की टीमें तैयार की जा रही हैं। टीम के सदस्य स्कूल कॉलेजों के युवाओं से बातचीत कर उनकी समस्याओं, अपेक्षाओं और सरकार को लेकर उनकी राय जानेंगे। टीम उन्हें सरकार की ओर से युवाओं के लिए शुरू की गई योजनाओं, रोजगार कार्यक्रम की जानकारी देगी, विधानसभा स्तर पर गठित होने वाले कार्यक्रमों और संवाद की जिम्मेदारी दी जाएगी। ये अभियान शुरू भी हो चुका है। कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे ने रायबरेली में बड़े स्तर पर युवाओं से संपर्क साधा, उनसे बातचीत की, उनकी समस्याएं सुनी।
1: आपके क्षेत्र में कार्यक्रम था तिरंगा यात्रा से लेकर युवा संवाद?
2: जी, आप देख रहे हैं जिस तरीके से आज युवा संवाद कार्यक्रम यहाँ रखा गया, कई हजार यूथ आज इस युवा संवाद में शामिल हुए और ये उनसे सीधे संवाद हुआ। उन्होंने अपनी भावनाएं भी बताई, अपनी दिक्कतों को भी बताई और उन्होंने सराहना भी किया भारत के प्रधानमंत्री जी के कार्यों के और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के। ये यूथ हमारा भविष्य है, ये हमारे कल है और इन यूथ के साथ संवाद होना जरूरी है। इनसे जब कम्युनिकेशन गैप रहता है तो बहुत सारी चीजें रह जाती हैं। इनसे लगातार हम सबका संवाद रहेगा और इनकी बहुत महत्वपूर्ण चीजें भी हम सबको जानकारी में आई है, जिसको हम लोग आगे धीरे धीरे करके उसे भी ठीक करने का भी काम करेंगे।
0: बीजेपी का टारगेट यही लगता है कि 2027 के चुनाव में युवाओं के तमाम वोट्स पर कब्जा हो, इसीलिए सीधे मुख्यमंत्री भी सक्रिय हैं, लगातार युवाओं की बात कर रहे हैं।
3: हमारा युवा प्रतिभाशाली है, हमारा युवा ऊर्जा का प्रतीक है, हमारा युवा देश की हर चुनौती का सामना करने की सामर्थ्य रखता है और उस सामर्थ्य के प्रतीक इस युवा ऊर्जा को आगे बढ़ने के लिए एक उचित प्लेटफॉर्म प्राप्त हो, वो अपने परंपरागत पाठ्यक्रम के साथ साथ देश और समाज की उन चुनौतियों का भी सामना करने के लिए अपने आप को तैयार कर सके।
0: यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ युवाओं से हवा हवाई बातें नहीं कर रहे, बल्कि उनके लिए पूरी युवा नीति तैयार की जा रही है, लंबी चौड़ी रणनीति है। सरकारी कोचिंग में आईएएस और पीएससी की तैयारी करने वालों की कलेक्टर और कप्तान की क्लास होगी। नीट की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए मुफ्त में डॉक्टरों की क्लास होगी। आईटी की तैयारी करने वालों को आईटीएन अफसर पढ़ाएंगे। बैंक पीओ की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए सरकारी बैंक के मैनेजर मार्गदर्शन करेंगे।
4: यूपी के अंदर बहुत शीघ्र हम युवा नीति लेकर के आ रहे हैं। हर जिले के अंदर, हर महाविद्यालय के अंदर, हर विश्वविद्यालय के अंदर युवा के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था। आपको प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करनी हो, आपको आपके महाविद्यालय विश्वविद्यालय में हम वर्चुअल भी और फिजिकल भी वहां क्लास की व्यवस्था रहेगी। और पढ़ाने वाले कौन होंगे? पढ़ाने वाला होगा वहां का डीएम भी एक घंटा देगा, एसपी एक घंटा देगा, क्योंकि उन्होंने यूपीएससी क्लियर किया।
0: बीजेपी के अलावा समाजवादी पार्टी की भी युवाओं को लेकर अपनी तैयारी है। समाजवादी पार्टी ने भी चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। सबसे पहला काम सर्वे से शुरू हो रहा है, वहाँ भी जीताऊ प्रत्याशी खोजे जा रहे हैं।
5: यूपी चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने बूथ स्तर से लेकर विधानसभा सीट्स तक अपनी तैयारी शुरू कर दी और इसी के चलते कुल मिलाकर पार्टी 3 सर्वे करा रही है। सूत्रों के मुताबिक 2 सर्वे एक प्राइवेट एजेंसीज के द्वारा किए जा रहे हैं तो तीसरा सर्वे संगठन के द्वारा किया जा रहा है। आकलन ये करना है हर बूथ पर, हर विधानसभा पर कौन उम्मीदवार है जो जिताऊ हो सकता है, कौन उम्मीदवार है जो जातीय समीकरणों को साध सकता है। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी को लगता है कि सर्वे के जरिए हर बूथ के, हर विधानसभा के एक फ्रेश जातीय आंकड़े सामने आ सकते हैं। यूं तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से या डेटा के जरिए जातीय आंकड़े मिल जाते हैं, लेकिन सपा को ऐसा लगता है कि अपने स्तर पर भी जातीय आंकड़े निकालने चाहिए, क्योंकि कई ऐसे विधानसभा सीट्स हैं जहां पर सपा को कुछ चौंकाने वाले जातीय आंकड़े मिले हैं, जो पेपर्स पर कुछ और थे लेकिन जमीन पर सर्वे में कुछ और सामने आए हैं। और इसी के चलते दो एजेंसीज और संगठनात्मक तौर पर समाजवादी पार्टी के यूथ विंग्स मिलकर ये सर्वे कर रहे हैं। सर्वे अलग है लेकिन एक तरीके से माहौल एक है कि विधानसभा में जिताऊ कैंडिडेट हो जिससे सही उम्मीदवार चुना जा सके और चुनाव जीता जा सके।
0: समाजवादी पार्टी तो इसी दावे पर है कि उनके पास तो युवाओं के सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव मौजूद हैं, जिनकी युवाओं में पहुंच भी है और पकड़ भी।
5: बीजेपी एक प्लानिंग के तहत अब जो है उनकी जो यूथ विंग है उनको जिम्मेदारी दे रही है कि स्कूल कॉलेजेस में जाएं। यूपी सरकार के तमाम मंत्री भी अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में ये काम करने वाले हैं, जैसे कि मनोज पांडे आज रायबरेली से कर रहे हैं, वो युवाओं का सम्मेलन कर रहे हैं, युवाओं से मिलेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे। तमाम अन्य मंत्री भी प्लान आउट कर रहे हैं। तो ये जेन जी कितना बड़ा वोटर एकदम से यूपी में हो गया है?
6: देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी अब कर रही है, समाजवादी पार्टी तो नौजवानों की पार्टी रही है और सबसे ज्यादा यंग मिनिस्टर्स और यंग लोगों को चुनाव लड़ने का मौका या यंग लोगों की बात अगर किसी ने सबसे ज्यादा की है तो वो समाजवादी पार्टी के संस्थापक आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, श्रद्धेय नेता जी ने की थी। और अब उसी मशाल को आगे लेकर के आदरणीय अखिलेश यादव जी चल रहे हैं और लगातार जिन जेंजीज की बात आज सरकार जागी है इन आंदोलन के बाद, समाजवादी पार्टी ने सबसे कम उम्र के लोगों को चुनाव लड़ा करके सदन में भेजा। कर मुझे अपना मैं अगर बात करूं तो मैं जब 25 साल 4 दिन की थी तब मैंने नॉमिनेशन किया था, तो मैं भी एक जेंजी हूं। और साथ ही साथ अब मैं देखूं तो हमारी पार्टी में सबसे ज्यादा युवा विधायक हैं जो 25 साल के हैं, 25 साल के हमने सांसद बनाए।
0: लेकिन खबरें तो ये भी हैं कि जेंजी को मिल रहे समर्थन से तमाम राजनीतिक पार्टियों के बड़े बड़े और पुराने नेता बहुत परेशान हैं, उन्हें अपनी सीट खिसकने का डर सता रहा है।
5: खबर ये भी है कि जेंजी फोर्स को देखते हुए यूपी के तमाम वरिष्ठ और दिग्गज नेताओं की जमीन खिसकी हुई है। कई राजनीतिक दलों के वरिष्ठ विधायक ऐसे भी हैं जिन्हें लगता है कि कहीं उनका इस बार विधानसभा चुनाव में टिकट ही ना कट जाए, क्योंकि एक बात तो साफ है, सभी राजनीतिक दल इस बार जेंजी को उम्मीदवारी में उतारने वाले हैं। यानी कि इस बार जो उम्मीदवारों की एक लिस्ट आएगी, चाहे विपक्ष की हो चाहे सरकार की हो, उसमें जेंजी को तवज्जो मिलनी तय है। ऐसे में एक दिलचस्प बात की चर्चा यह भी है, जो विधायक पहले अपनी पत्नी या पति के नाम से जाने जाते थे, जिनको टिकट मिलता था, वो अब जेंजी के पिता के नाम से, यानी कि जेंजी विधायक के पिता के नाम से भी जाने जाएंगे।
0: समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
7: हमारे देश की राजनीतिक पार्टियों को अचानक से अब युवा वोटर्स की याद आने लगी है, लेकिन सवाल यह है कि युवाओं के वोट तो हर पार्टी को चाहिए, लेकिन उनकी भागीदारी कितनी है और क्या युवा वोटर सरकारों को गिराने और बनाने का दम रखते हैं? इसका पहला टेस्ट उत्तर प्रदेश में होगा।
8: जेन जी के इस फोर्स की राजनीतिक ताकत पूरे देश ने देखी और सरकारों ने महसूस की। दिल्ली से लेकर झारखंड तक युवाओं की ताकत का अनुमान इस देश के हुक्मरानों को हो चुका है, इसीलिए अब राजनीतिक पार्टियों के एजेंडे पर यही जेन जी। और जेन जी की ताकत का पहला इम्तिहान होने वाला है उत्तर प्रदेश में, जहां सबसे पहले चुनाव होंगे। वैसे तो राजनीतिक दलों के एजेंडे पर हमेशा से ही युवा रहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान की राजनीतिक पार्टियों में युवाओं की भूमिका एक वोटर से ज्यादा कुछ नहीं रहती। लेकिन अब ऐसा लगता है कि मौजूदा आंदोलन के बाद इन पार्टियों में जेंजी को बड़ी जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं, इसीलिए सारी पार्टियों का फोकस इस वक्त इसी युवा वोटर पर है।
5: उत्तर प्रदेश की सभी राजनीतिक पार्टियों को यह समझ में आ गया है कि आखिर जेंजी की ताकत क्या है। खासकर दिल्ली के जंतर मंतर में हुए प्रोटेस्ट के बाद ये बात साफ हो गई है कि जेंजी को खुश रखना जरूरी है। जिस पार्टी के नेता ये कहते थे कि कितना भी बड़ी बात हो जाए हम अपने मंत्री का इस्तीफा नहीं कराते हैं, उसी पार्टी के नेताओं को धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कराना पड़ा है। अगला चुनाव उत्तर प्रदेश का है, इसलिए सभी राजनीतिक दल जानते हैं कि जेंजी एक बेहद अहम वोट है और इसीलिए उसको महत्व देना भी जरूरी है। नतीजा जेंजी चौपाल, जेंजी तिरंगा यात्रा और जेंजी के बीच जाकर बातें करना, परेशानियां समझना।
8: उत्तर प्रदेश में हर पार्टी जेंजी पर जोर लगा रही है। बीजेपी ने मंत्रियों की जेंजी चौपाल लगाई है। समाजवादी पार्टी चुनावों के लिए युवाओं का सर्वे करवा रही है। बीएसपी ने ऐलान किया है कि वो युवाओं को प्रत्याशी बनाएंगे। कांग्रेस के राहुल गांधी तो लगातार छात्रों के मुद्दों को उठा ही रहे हैं, और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि यूपी में जेंजी एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल फोर्स है। जेंजी का मतलब हुआ 1997 से 2012 के बीच पैदा हुई जनरेशन। इस हिसाब से 14 से 29 साल के लोग जेंजी हुए, लेकिन भारत में मतदान की उम्र 18 साल है, तो उत्तर प्रदेश में 18 से 29 साल के युवा वोटर्स की संख्या करीब 21.19% है, जो बनते हैं करीब 3,27,00,000। अब अगर इतनी बड़ी संख्या में जेंजी वोटर होंगे तो राजनीतिक दल तो जोर लगाएंगे ही। मतलब कि अगर जेंजी किसी एक पार्टी को तय कर ले तो उसका चुनाव जीतना तय है, और इसी फोर्स को उत्तर प्रदेश की पार्टियां अच्छे से समझ रही हैं। इसीलिए आज बीएसपी ने भी युवाओं के लिए बड़े बड़े ऐलान किए हैं। बीएसपी का कहना है कि आने वाले चुनावों में वो प्रत्याशियों के चयन में युवाओं को प्राथमिकता देगी। जालौन की माधोगढ़ सीट से बसपा ने आशीष पांडे को अपना पहला प्रत्याशी घोषित किया है, जो पार्टी के युवा चेहरों में शामिल है। बीएसपी की रणनीति, संगठन, सोशल मीडिया और चुनावी मैदान तीनों स्तरों पर युवा नेतृत्व को आगे लाने की है। पार्टी को उम्मीद है कि जेन ज़ी और युवा मतदाताओं के बीच सक्रियता बढ़ाकर वो 2027 के विधानसभा चुनाव में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत कर सकती है। मायावती ने अपने भतीजे और राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद को जेन ज़ी की नब्ज टटोलने की जिम्मेदारी दी है। हालांकि आकाश खुद जेन ज़ी नहीं है, 32 साल के हैं, युवा हैं। युवाओं की तासीर और उनके मुद्दों को कितना समझते हैं ये पता नहीं, लेकिन बीएसपी को सोशल मीडिया पर सक्रिय रखने की जिम्मेदारी भी आकाश आनंद की टीम संभाल रही है। हाथरस के सादाबाद में आकाश ने अपनी चुनावी तैयारियां भी दिखा दी और यहां से युवाओं को संदेश भी दिया।
9: हमारे समाज के बच्चे अगर पढ़ गए तो अपने अधिकारों के लिए लड़ना खड़े हो जाएंगे, लड़ेंगे अपने अधिकारों के लिए। तो जैसे आपने देखा था अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में, हमारी जनरेशन के बच्चे अपने अधिकारों के लिए लड़े, वैसे ही हमारे समाज के बच्चे प्रदेश के कोने कोने में चौराहे चौराहे पर इनसे सवाल करेंगे, आरक्षण के लिए, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए और लॉ एंड ऑर्डर के लिए, रोजगार के लिए, तब इनके लिए जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। साथियों, जो सरकार स्कूल बंद कर दे, जो सरकार आपके स्कूलों में पढ़ने वाले टीचरों की भर्ती ना करे, क्या वो सरकार लायक है आपके प्रदेश में सत्ता में रहने के लिए?
5: ये भी उठता है कि आखिर एकदम से उत्तर प्रदेश की राजनीतिक पार्टियों को जेंजी की याद क्यों आई? क्या अगर दिल्ली में या रांची में ये प्रदर्शन ना हुए होते तो राजनीतिक दल यूपी के जेंजीज को इतना महत्व दे रहे होते? क्या यही मंत्री जगह जगह जाकर चौपाले कर रहे होते, या फिर यूपी सरकार नई युवा नीति की बात भी कर रही होती है, ऐसा कोई ऑर्डर भी आने वाला होता? बड़ी बात तो ये है, यूपी में जेंजी एक बड़ा वोटर है जो चुनाव के नतीजों में बदलाव भी कर सकता है, लेकिन कभी भी विधानसभा चुनावों में उनके हक के मुताबिक उन्हें टिकट नहीं मिले। अब दिलचस्प होगा देखना इस यूपी चुनाव में क्या सियासी गणित बदलती है और जेंजी को उनका हक मिलता है।
8: आंकड़े तो यही बता रहे हैं कि राजनीतिक दलों को युवाओं के वोट तो चाहिए, लेकिन उन्हें हिस्सेदारी नहीं देनी है। कुल 543 लोकसभा सांसदों में से सिर्फ 6 सांसद ही जेंजी हैं। पूरे देश में कुल 4,131 विधायक हैं और पूरे देश भर में सिर्फ 20 जेंजी विधायक हैं। हालांकि ये भी एक फैक्ट है कि 2022 के बाद ही जेंजी चुनाव लड़ने की उम्र में आए, लेकिन 2022 से भी इस देश में बहुत से चुनाव हुए हैं। सबसे ज्यादा जेंजी विधायक तमिलनाडु में है, 4, इनमें से 3 टीवीके के हैं और 1 एडीएमके के। पश्चिम बंगाल में 3 जेंजी विधायक हैं, तीनों बीजेपी के हैं। इसके अलावा बिहार, मेघालय और तेलंगाना में 2-2 जेंजी विधायक हैं। इन सभी राज्यों में 2023 से 2026 के बीच चुनाव हुआ। ये आंकड़े बता रहे हैं कि राजनीतिक दलों ने युवाओं को वोटर तो समझा, लेकिन उन्हें भागीदारी नहीं दी। हालांकि यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि भारत में सांसद या विधायक बनने के लिए आपको 25 साल का होना जरूरी है। इस हिसाब से जेंजी सिर्फ 4 साल पहले ही चुनाव लड़ने के लायक बने हैं, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि आने वाले चुनावों में तमाम पार्टियां अपने टिकटों में जेंजी उम्मीदवारों की संख्या बढ़ाकर रखेंगी। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।
7: और छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

0: किले से पीएम मोदी के दिमागी नक्सल के उल्लेख पर सुलगी राजनीति, कहा अवसर की तलाश में ऐसे लोग। कांग्रेस का पलटवार, पहले किसानों और युवाओं को प्रधानमंत्री ने कहा था नक्सली। वंदे मातरम पर छिड़ी नई जंग, बीजेपी का आरोप, कांग्रेस मुख्यालय में सोनिया और खड़गे ने किया राष्ट्रगीत का अपमान, कांग्रेस का जवाब, ऐसी कोई कोशिश नहीं। अटारी बॉर्डर पर जोश जुनून जज्बे का रंग, बीएसएफ ने जश्न आजादी की हुंकार भरी, तिरंगे में रंगी दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा। रांची में छात्रों की चेतावनी, मांगे पूरी नहीं तो 20 को करेंगे सीएम के घर का घेराव, परीक्षा में गड़बड़ी की सीबीआई जांच, आज राहुल और सोरेन का करेंगे पुतला दहन। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन मिश्रा ने लॉ छात्रों से मांगी माफी, कहा अगर भावनाएं आपकी आहत हुई तो खेद, नलसार विवाद में हुआ था बवाल। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित किया, विकसित भारत के लक्ष्य को दोहराया, सप्त सिंधु से सप्त धरा मंत्र पीएम ने दिया। 15 अगस्त का कार्यक्रम एक और मायने में विशेष रहा, पहली बार वंदे मातरम की धुन सुनाई दी, लेकिन इस पर दिल्ली में राजनीति भी देखने को मिली।
1: कांग्रेस दफ्तर में वंदे मातरम के दौरान सोनिया गांधी के इशारा करने की इन तस्वीरों पर बीजेपी सवाल पूछ रही है, बीजेपी इसे वंदे मातरम का अपमान बता रही है।
2: एक बहुत विचित्र, विडंबनापूर्ण और दुर्भाग्यपूर्ण दृश्य देखने को मिला जब कांग्रेस कार्यालय में वंदे मातरम गीत गाया जा रहा था, उस समय कांग्रेस की सुप्रीम लीडर सोनिया गांधी जी, सुपर अध्यक्ष राहुल गांधी जी और सिटिंग अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी बहुत ही विचित्र और आपत्तिजनक तरीके से असम्मान व्यक्त करते हुए एक दूसरे से बातचीत करते हुए नजर आए, किसी को बुलाते हुए नजर आए, और कोई व्यक्ति आकर उनसे कुछ बता भी रहा था और एक दूसरे को इशारे कर रहे थे। यह राष्ट्रगीत वंदे मातरम के प्रति उनका अपमान है।
1: बीजेपी के सवालों पर कांग्रेस का जवाब आया, इशारों के पीछे की वजह बताई गई।
3: आज यहाँ इंदिरा भवन में पूरा वंदे मातरम गाया गया, इसमें कोई वाद विवाद का सवाल नहीं उठता, कोई रोकने का प्रयास नहीं था, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस अध्यक्ष खड़े हुए थे, सोनिया जी कह रही थी उनके लिए कुर्सी लाके रख दो, बस कोई नहीं था।
1: वंदे मातरम पर यह घमासान उस वक्त शुरू हुआ है जब वंदे मातरम के पूर्ण संस्करण को हाल ही में राष्ट्रगान के समान कानूनी संरक्षण दिया गया है। 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्र के नाम संबोधन से पहले और उसके समापन पर भी वंदे मातरम बजाया गया था। वहीं आज पहली बार लाल किले में भी राष्ट्रगान से पहले वंदे मातरम गाया गया। संसद में वंदे मातरम बिल पारित के बाद अब 15 अगस्त पर इसके घमासान की पहली सियासी किश्त सामने आई है।
4: आजादी के बाद 15 अगस्त को लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं तो इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
1: आज तक ब्यूरो।
0: पीएम मोदी ने अपने भाषण में दिमागी नक्सल, महिला आरक्षण जैसे मुद्दों का उल्लेख किया जिस पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है।
5: Let's go!
1: लाल किले की प्राचीर से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्वजारोहण किया तो साथ में महिला सैन्य अधिकारी नजर आईं और पीएम ने भाषण में महिला आरक्षण पर विपक्ष से साथ आने की अपील की।
4: मैं देश के सभी राजनीतिक दलों से आज लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे की छाया में खड़े होकर के प्रार्थना करता हूं, आग्रह करता हूं, आइए उन महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनिए, उन महिलाओं के सम्मान में आगे आइए और जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, वे भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है।
1: पीएम की महिला आरक्षण को लेकर इस अपील पर कांग्रेस सरकार से सवाल पूछ रही है।
5: कानून बन चुका है, राहुल गांधी जी बार बार यही तो कहते हैं जब कानून बन चुका है लागू क्यों नहीं कर रहे आप लोग। अब वो सपना देख रहे हैं, हम तो 800 संख्या बढ़ाएंगे पहले पार्लियामेंट के अंदर, असेंबली में बढ़ाएंगे, इसके मायने की परिसमन अपने हाथ में ले लेंगे।
6: महिला आरक्षण को लगातार दोयम दर्जा देने के लिए, पीछे धकेलने के लिए यदि कोई जिम्मेदार है तो स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2023 में जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया तो उसको दो शर्तों की बैसाखी पर खड़ा करने वाला कौन था? परिसीमन और जनगणना से जोड़ने वाला कौन था? वो प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार थी।
1: उधर पीएम मोदी ने नक्सल के सफाए का जिक्र किया तो वहीं दिमागी नक्सल से लड़ाई की बात कही।
4: हथियारी नक्सल तो गए लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा।
7: पहले भी जिनको जमीनी नक्सल कहा फिर उन्हीं किसानों की बात माननी पड़ी, नौजवानों को नक्सल कहा फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ा। तो पहले तो ये हाथ पांव मारते हैं नक्सल नक्सल नक्सल और उसके बाद उनकी बात मान लेते हैं।
8: पहले तो दिमागी नक्सल की परिभाषा बताओ, क्या दिमागी नक्सल की क्या परिभाषा होती, किसे आप दिमागी नक्सल करेंगे? ये तो एक आपने मुहावरा बना दिया, हर व्यक्ति दिमागी नक्सल हो सकता, तो ये कहना अपने आप में मुझे लगता है तमाम उन युवाओं का अपमान है।
1: इस बीच एक सियासत, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के लाल किले के कार्यक्रम में ना शामिल होने को लेकर भी हो रही है। लगातार दूसरे साल कांग्रेस के बड़े नेताओं ने इस अहम सरकारी कार्यक्रम से दूरी बनाए रखी। राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समारोह में नहीं पहुंचे। 2024 को 15 अगस्त के कार्यक्रम में राहुल गांधी की सीट को लेकर विवाद हुआ था, जहां राहुल गांधी पीछे की सीट पर बैठे थे। ऐसे में राहुल के नदारद होने को एक बार फिर सीट अरेंजमेंट के विवाद से जोड़ा जा रहा है। आज तक ब्यूरो।
0: लाल किले से पीएम मोदी ने जेन जी हो या जेन अल्फा सबके लिए सौगात का ऐलान किया। एआई ट्रेनिंग को लेकर भी बड़ा ऐलान किया।

0: मेरे प्यारे देशवासियों, डिफेंस में आत्मनिर्भर होना अब भारत ने अनुभव कर लिया, दुनिया ने अनुभव कर लिया है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे। हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है।
1: लाल किले की प्राचीर से आज तिरंगा सिर्फ आसमान में नहीं लहरा रहा था, भारत के भविष्य की तस्वीर भी सामने रखी जा रही थी और उस तस्वीर के केंद्र में था भारत का युवा। प्रधानमंत्री ने साफ संदेश दिया, भारत की अगली उड़ान का इंजन युवा होगा।
0: जब मैं विकसित भारत की बात कर रहा हूँ, देश को तेज गति से आगे बढ़ाने की बात कर रहा हूँ, उसका सबसे बड़ा लाभार्थी कौन है? इन सारे प्रयासों का सबसे बड़ा साधक कौन है? अगर साधक है तो मेरे देश का युवा है, मेरे देश की युवा शक्ति है। विकसित भारत की यात्रा में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। इतना ही नहीं, विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी मेरे देश का युवा है और इसलिए हमें विकसित भारत के लक्ष्य को युवाओं के साथ जोड़ करके आगे बढ़ाना है। ऊंचे होने
1: जेन जी हो या जेन अल्फा, संदेश साफ था, भारत का भविष्य सिर्फ युवाओं के लिए नहीं, युवाओं के हाथों से बनेगा। आत्मनिर्भर भारत, युवा शक्ति, तकनीक, राष्ट्रीय सुरक्षा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की ताकत और भविष्य का खाका खींचा। 1 करोड़ युवाओं को AI ट्रेनिंग, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग, 5 से 15 साल के बच्चों के लिए स्पोर्ट्स टैलेंट हंट, स्टार्टअप और इनोवेशन को बढ़ावा, मैन्युफैक्चरिंग में रोजगार के नए अवसर, सेमीकंडक्टर से लेकर डिफेंस तक आत्मनिर्भर युवा शक्ति। हालांकि विपक्ष पूछता है AI की ट्रेनिंग के साथ रोजगार कितना बढ़ेगा, फ्री कोचिंग के साथ परीक्षा व्यवस्था कितनी पारदर्शी होगी, टैलेंट हंट के साथ खेलों में अवसर कितने बढ़ेंगे और क्या युवा की आवाज सिर्फ चुनाव के समय सुनी जाएगी?
2: प्रधानमंत्री जी का सवालों का जवाब न देना पार्लियामेंट में क्या ये लोकतंत्र का तरीका है? हमने क्या उठाया? लोकसभा में हो, राज्यसभा में हो, हमने जो सवाल उठाए वो विद्यार्थियों के सवाल थे। मैं पूछता हूं मेरे दोस्त, अगर तुम पार्लियामेंट में आते क्या तुम्हारा उम्र कम होने वाली थी? क्या तुम्हारी पार्टी घटने वाली थी?
1: इसी बेचैनी के बीच बाबा रामदेव ने भी सरकारी भर्तियों में भ्रष्टाचार और युवाओं के असंतोष का मुद्दा उठाया। उन्होंने चेतावनी दी कि व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो युवाओं का आंदोलन फिर तेज हो सकता है।
3: चारों तरफ देश में हंगामा है, छोटे छोटे स्कूल कॉलेजों से बच्चे निकल रहे हैं कि हमारे यहाँ टीचर नहीं है, हमारे यहाँ लाइट नहीं, हमारे यहाँ पानी नहीं, हमारे यहाँ शौचालय नहीं है, हमारे यहाँ टीचर है तो किताबें नहीं है, किताबें हैं तो टीचर नहीं है, और टीचर है तो पढ़ाई में नकल हो जाती है, कहीं पेपर लीक हो जाता है। ऐसे ही आंदोलन करना पड़ा तो देश कैसे चलेगा? इसलिए भाई सुधर जाओ, नहीं तो देश में आंदोलन और ज्यादा भी हो सकते हैं। आंदोलन के नाम पर मैं अराजकता अनार्की का समर्थक नहीं हूं, लेकिन भाई ये बात तो जरूर है, देश में घपला भी बहुत है, ये घपले ठीक कर लो। मैं तो कहीं ऐसा ना हो कि बाबा रामदेव को दोबारा आंदोलन करना पड़े।
1: प्रधानमंत्री ने युवाओं से 2047 का निर्माता बनने का आह्वान किया है, क्योंकि आज का युवा कल का नागरिक नहीं, आज के भारत का सबसे बड़ा निर्माता है। आज तक ब्यूरो।
4: जेन जी वोटर्स पर अचानक से हर पार्टी का फोकस बढ़ गया। जंतर मंतर प्रदर्शन के बाद यूपी चुनाव जेन जी की पहली प्रयोगशाला बनने जा रहा है और इसीलिए युवाओं को अपने पाले में करने के लिए पार्टियां हर तरह के और तरह तरह के हथकंडे अपना रही।
5: जंतर मंतर आंदोलन की इन तस्वीरों ने देश की सियासत की रणनीति को और नए सिरे से गढ़ने पर हर पार्टी को मजबूर कर दिया है। धर्म और जाति के समीकरण पर अब जेन जी की इक्वेशन भारी नजर आ रही है। जेन जी पर जारी घमासान के बाद अब पहली बड़ी परीक्षा यूपी का विधानसभा चुनाव है, जहां सबकी नजरें इस बात पर है कि क्या रील और सोशल मीडिया पर दिख रही तस्वीर मतदान में तब्दील होगी। लेकिन इसे लेकर कोई पार्टी जोखिम नहीं लेना चाहती। और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जेंजी की इस ताकत को समझ रहे हैं, जिसकी एक तस्वीर उनके आज 15 अगस्त के भाषण में भी देखने को मिली।
6: जेंजी और जेन अल्फा के लिए एआई, मशीन लर्निंग, सेमीकंडक्टर, स्टार्टअप इकोसिस्टम, डेटा सेंटर, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, साइबर, रोबोटिक, इलेक्ट्रिक व्हीकल, एग्रीटेक, फिनटेक, डीपटेक, मेडटेक जैसे क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश ने तेजी के साथ जो कार्य आगे बढ़ाया है उसमें निवेश, नवाचार और एम्प्लॉयमेंट के नए नए द्वार खुल रहे हैं।
5: योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में पेपर लीक जैसे मुद्दों का जिक्र किया और छात्रों का भरोसा जीतने की कोशिश की।
6: स्वाधीनता दिवस के अवसर पर मैं प्रदेश के युवाओं से कहना चाहता हूं, आपकी प्रतिभा से ही यूपी की शक्ति निहित है। हमारी सरकार ने नकल माफिया, भर्ती माफिया के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की है। हम अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को डेवलपमेंट इंजन के रूप में बदल रहे हैं।
7: यूपी के अंदर बहुत शीघ्र युवा नीति लेकर के आ रहे हैं।
5: यूपी चुनाव के लिए फोकस पूरी तरह से युवा मतदाताओं पर केंद्रित हो चुका है, जिसकी तस्वीरें ग्राउंड से भी नजर आ रही हैं। यूपी सरकार के तमाम बड़े मंत्री ऐसे ही स्कूल कॉलेजों में पहुंचकर सीधा युवाओं से संवाद कर रहे हैं। बीजेपी की सरकार सीधे युवाओं के मन की बात टटोल रही है, इसीलिए मंत्री अपने अपने क्षेत्रों में जेंजी चौपाले लगा रहे हैं। इस अभियान के तहत विधानसभा बार 10-10 युवाओं की टीमें तैयार की जा रही है। टीम के सदस्य स्कूल कॉलेजों के युवाओं से बातचीत कर उनकी समस्याओं, अपेक्षाओं और सरकार को लेकर उनकी राय जानेंगे। टीम उन्हें सरकार की ओर से युवाओं के लिए शुरू की गई योजनाओं, रोजगार कार्यक्रम की जानकारी देगी, विधानसभा स्तर पर गठित होने वाले कार्यक्रमों और संवाद की जिम्मेदारी दी जाएगी। ये अभियान शुरू भी हो चुका है। कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे ने रायबरेली में बड़े स्तर पर युवाओं से संपर्क साधा, उनसे बातचीत की, उनकी समस्याएं सुनी।
8: आपके क्षेत्र में कार्यक्रम था तिरंगा यात्रा से लेकर युवा संवाद?
9: जी, आप देख रहे हैं जिस तरीके से आज युवा संवाद कार्यक्रम यहाँ रखा गया, कई हजार यूथ आज इस युवा संवाद में शामिल हुए और ये उनसे सीधे संवाद हुआ। उन्होंने अपनी भावनाएं भी बताई, अपनी दिक्कतों को भी बताई और उन्होंने सराहना भी किया भारत के प्रधानमंत्री जी के कार्यों के और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के। ये यूथ हमारे भविष्य हैं, ये हमारे कल हैं और इन यूथ के साथ संवाद होना जरूरी है। इनसे जब कम्युनिकेशन गैप रहता है तो बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं। इनसे लगातार हम सबका संवाद रहेगा और इनकी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें भी हम सबको जानकारी में आई है, जिसको हम लोग आगे धीरे धीरे करके उसे भी ठीक करने का भी काम करेंगे।
5: बीजेपी का टारगेट यही लगता है कि 2027 के चुनाव में युवाओं के तमाम वोट्स पर कब्जा हो, इसीलिए सीधे मुख्यमंत्री भी सक्रिय हैं, लगातार युवाओं की बात कर रहे हैं।
10: हमारा युवा प्रतिभाशाली है, हमारा युवा ऊर्जा का प्रतीक है, हमारा युवा देश की हर चुनौती का सामना करने की सामर्थ्य रखता है और उस सामर्थ्य के प्रतीक इस युवा ऊर्जा को आगे बढ़ने के लिए एक उचित प्लेटफॉर्म प्राप्त हो, वो अपने परंपरागत पाठ्यक्रम के साथ साथ देश और समाज की उन चुनौतियों का भी सामना करने के लिए अपने आप को तैयार कर सके।
5: यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ युवाओं से हवा हवाई बातें नहीं कर रहे, बल्कि उनके लिए पूरी युवा नीति तैयार की जा रही है, लंबी चौड़ी रणनीति है। सरकारी कोचिंग में आईएएस और पीएससी की तैयारी करने वालों की कलेक्टर और कप्तान की क्लास होगी। नीट की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए मुफ्त में डॉक्टरों की क्लास होगी। आईटी की तैयारी करने वालों को आईटीएन अफसर पढ़ाएंगे। बैंक पीओ की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए सरकारी बैंक के मैनेजर मार्गदर्शन करेंगे।
7: यूपी के अंदर बहुत शीघ्र युवा नीति लेकर के आ रहे हैं। हर जिले के अंदर, हर महाविद्यालय के अंदर, हर विश्वविद्यालय के अंदर युवा के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था, आपको प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करनी हो, आपको आपके महाविद्यालय विश्वविद्यालय में हम वर्चुअल भी और फिजिकल भी वहां क्लास की व्यवस्था रहेगी, और पढ़ाने वाले कौन होंगे, पढ़ाने वाला होगा वहां का डीएम भी एक घंटा देगा, एसपी एक घंटा देगा, क्योंकि उन्होंने यूपीएससी क्लियर किया।
5: बीजेपी के अलावा समाजवादी पार्टी की भी युवाओं को लेकर अपनी तैयारी है। समाजवादी पार्टी ने भी चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। सबसे पहला काम सर्वे से शुरू हो रहा है, वहां भी जीताऊ प्रत्याशी खोजे जा रहे हैं।
11: यूपी चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने बूथ स्तर से लेकर विधानसभा सीट्स तक अपनी तैयारी शुरू कर दी, और इसी के चलते कुल मिलाकर पार्टी 3 सर्वे करा रही है। सूत्रों के मुताबिक 2 सर्वे एक प्राइवेट एजेंसीज के द्वारा किए जा रहे हैं, तो तीसरा सर्वे संगठन के द्वारा किया जा रहा है। आकलन ये करना है हर बूथ पर, हर विधानसभा पर कौन उम्मीदवार है जो जिताऊ हो सकता है, कौन उम्मीदवार है जो जातीय समीकरणों को साध सकता है। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी को लगता है कि सर्वे के जरिए हर बूथ के, हर विधानसभा के एक फ्रेश जातीय आंकड़े सामने आ सकते हैं। यूं तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से या डेटा के जरिए
4: हमारे देश की राजनीतिक पार्टियों को अचानक से अब युवा वोटर्स की याद आने लगी है, लेकिन सवाल यह है कि युवाओं के वोट तो हर पार्टी को चाहिए, लेकिन उनकी भागीदारी कितनी है और क्या युवा वोटर सरकारों को गिराने और बनाने का दम रखते हैं? इसका पहला टेस्ट उत्तर प्रदेश में होगा।
12: जेन जी के इस फोर्स की राजनीतिक ताकत पूरे देश ने देखी और सरकारों ने महसूस की। दिल्ली से लेकर झारखंड तक युवाओं की ताकत का अनुमान इस देश के हुक्मरानों को हो चुका है, इसीलिए अब राजनीतिक पार्टियों के एजेंडे पर यही जेन जी है। और जेन जी की ताकत का पहला इम्तिहान होने वाला है उत्तर प्रदेश में, जहां सबसे पहले चुनाव होंगे। वैसे तो राजनीतिक दलों के एजेंडे पर हमेशा से ही युवा रहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान की राजनीतिक पार्टियों में युवाओं की भूमिका एक वोटर से ज्यादा कुछ नहीं रहती। लेकिन अब ऐसा लगता है कि मौजूदा आंदोलन के बाद इन पार्टियों में जेन जी को बड़ी जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं, इसीलिए सारी पार्टियों का फोकस इस वक्त इसी युवा वोटर पर है।
11: उत्तर प्रदेश की सभी राजनीतिक पार्टियों को यह समझ में आ गया है कि आखिर जेन जी की ताकत क्या है। खासकर दिल्ली के जंतर मंतर में हुए प्रोटेस्ट के बाद ये बात साफ हो गई है कि जेन जी को खुश रखना जरूरी है। जिस पार्टी के नेता ये कहते थे कि कितना भी बड़ी बात हो जाए हम अपने मंत्री का इस्तीफा नहीं कराते हैं, उसी पार्टी के नेताओं को धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कराना पड़ा है। अगला चुनाव उत्तर प्रदेश का है, इसलिए सभी राजनीतिक दल जानते हैं कि जेन जी एक बेहद अहम वोट है और इसीलिए उसको महत्व देना भी जरूरी है। नतीजा जेन जी चौपाल, जेन जी तिरंगा यात्रा और जेन जी के बीच जाकर बातें करना, परेशानियां समझना।
12: उत्तर प्रदेश में हर पार्टी जेन जी पर जोर लगा रही है। बीजेपी ने मंत्रियों की जेन जी चौपाल लगाई है। समाजवादी पार्टी चुनावों के लिए युवाओं का सर्वे करवा रही है। बीएसपी ने ऐलान किया है कि वो युवाओं को प्रत्याशी बनाएंगे। कांग्रेस के राहुल गांधी तो लगातार छात्रों के मुद्दों को उठा ही रहे हैं, और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि यूपी में जेन जी एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल फोर्स है। जेन जी का मतलब हुआ 1997 से 2012 के बीच पैदा हुई जनरेशन। इस हिसाब से 14 से 29 साल के लोग जेन जी हुए, लेकिन भारत में मतदान की उम्र 18 साल है, तो उत्तर प्रदेश में 18 से 29 साल के युवा वोटर्स की संख्या करीब 21.19% है, जो बनते हैं करीब 3,27,00,000। अब अगर इतनी बड़ी संख्या में जेन जी वोटर होंगे तो राजनीतिक दल तो जोर लगाएंगे ही। मतलब कि अगर जेन जी किसी एक पार्टी को तय कर ले तो उसका चुनाव जीतना तय है, और इसी फोर्स को उत्तर प्रदेश की पार्टियां अच्छे से समझ रही हैं। इसीलिए आज बीएसपी ने भी युवाओं के लिए बड़े बड़े ऐलान किए हैं। बीएसपी का कहना है कि आने वाले चुनावों में वो प्रत्याशियों के चयन में युवाओं को प्राथमिकता देगी। जालौन की माधोगढ़ सीट से बसपा ने आशीष पांडे को अपना पहला प्रत्याशी घोषित किया है, जो पार्टी के युवा चेहरों में शामिल है। बीएसपी की रणनीति, संगठन, सोशल मीडिया और चुनावी मैदान, तीनों स्तरों पर युवा नेतृत्व को आगे लाने की है। पार्टी को उम्मीद है कि जेन जी और युवा मतदाताओं के बीच सक्रियता बढ़ाकर वो 2027 के विधानसभा चुनाव में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत कर सकती है। मायावती ने अपने भतीजे और राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद को जेन जी की नब्ज टटोलने की जिम्मेदारी दी है। हालांकि आकाश खुद जेन जी नहीं है, 32 साल के हैं, युवा हैं। युवाओं की तासीर और उनके मुद्दों को कितना समझते हैं ये पता नहीं, लेकिन बीएसपी को सोशल मीडिया पर सक्रिय रखने की जिम्मेदारी भी आकाश आनंद की टीम संभाल रही है। हाथरस के सादाबाद में आकाश ने अपनी चुनावी तैयारियां भी दिखा दी और यहां से युवाओं को संदेश भी दिया।
13: हमारे समाज के बच्चे अगर पढ़ गए तो अपने अधिकारों के लिए लड़ना खड़े हो जाएंगे, लड़ेंगे अपने अधिकारों के लिए। तो जैसे आपने देखा था अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में, हमारी जनरेशन के बच्चे अपने अधिकारों के लिए लड़े, वैसे ही हमारे समाज के बच्चे प्रदेश के कोने कोने में चौराहे चौराहे पर इनसे सवाल करेंगे, आरक्षण के लिए, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए और लॉ एंड ऑर्डर के लिए, रोजगार के लिए, तब इनके लिए जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। साथियों, जो सरकार स्कूल बंद कर दे, जो सरकार आपके स्कूलों में पढ़ने वाले टीचरों की भर्ती ना करे, क्या वो सरकार लायक है आपके प्रदेश में सत्ता में रहने के लिए?
11: ये भी उठता है कि आखिर एकदम से उत्तर प्रदेश की राजनीतिक पार्टियों को जेन जी की याद क्यों आई? क्या अगर दिल्ली में या रांची में ये प्रदर्शन ना हुए होते तो राजनीतिक दल यूपी के जेन जी को इतना महत्व दे रहे होते? क्या यही मंत्री जगह जगह जाकर चौपाले कर रहे होते, या फिर यूपी सरकार नई युवा नीति की बात भी कर रही होती है, ऐसा कोई ऑर्डर भी आने वाला होता? बड़ी बात तो ये है, यूपी में जेन जी एक बड़ा वोटर है जो चुनाव के नतीजों में बदलाव भी कर सकता है, लेकिन कभी भी विधानसभा चुनावों में उनके हक के मुताबिक उन्हें टिकट नहीं मिले। अब दिलचस्प होगा देखना इस यूपी चुनाव में क्या सियासी गणित बदलती है और जेन जी को उनका हक मिलता है।
12: आंकड़े तो यही बता रहे हैं कि राजनीतिक दलों को युवाओं के वोट तो चाहिए, लेकिन उन्हें हिस्सेदारी नहीं देनी है। कुल 543 लोकसभा सांसदों में से सिर्फ 6 सांसद ही जेन जी हैं। पूरे देश में कुल 4131 विधायक हैं और पूरे देश भर में सिर्फ 20 जेन जी विधायक हैं। हालांकि ये भी एक फैक्ट है कि 2022 के बाद ही जेन जी चुनाव लड़ने की उम्र में आए, लेकिन 2022 से भी इस देश में बहुत से चुनाव हुए हैं। सबसे ज्यादा जेन जी विधायक तमिलनाडु में है, 4, इनमें से 3 टीवीके के हैं और 1 एडीएमके के। पश्चिम बंगाल में 3 जेन जी विधायक हैं, 3 बीजेपी के हैं। इसके अलावा बिहार, मेघालय और तेलंगाना में 2 जेन जी विधायक हैं। इन सभी राज्यों में 2023 से 2026 के बीच चुनाव हुआ। ये आंकड़े बता रहे हैं कि राजनीतिक दलों ने युवाओं को वोटर तो समझा, लेकिन उन्हें भागीदारी नहीं दी। हालांकि यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि भारत में सांसद या विधायक बनने के लिए आपको 25 साल का होना जरूरी है। इस हिसाब से जेन जी सिर्फ 4 साल पहले ही चुनाव लड़ने के लायक बने हैं, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि आने वाले चुनावों में तमाम पार्टियां अपने टिकटों में जेन जी उम्मीदवारों की संख्या बढ़ाकर रखेंगी। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
4: और छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

0: सीपीएम मोदी के दिमागी नक्सल के उल्लेख पर सुलगी राजनीति, कहा अवसर की तलाश में ऐसे लोग। कांग्रेस का पलटवार, पहले किसानों और युवाओं को प्रधानमंत्री ने कहा था नक्सली। वंदे मातरम पर छिड़ी नई जंग, बीजेपी का आरोप। कांग्रेस मुख्यालय में सोनिया और खड़गे ने किया राष्ट्रगीत का अपमान, कांग्रेस का जवाब, ऐसी कोई कोशिश नहीं। अटारी बॉर्डर पर जोश जुनून जज्बे का रंग, बीएसएफ ने जश्न आजादी की हुंकार भरी, तिरंगे में रंगी दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा। रांची में छात्रों की चेतावनी, मांगे पूरी नहीं तो 20 को करेंगे सीएम के घर का घेराव। परीक्षा में गड़बड़ी की सीबीआई जांच, आज राहुल और सोरेन का करेंगे पुतला दहन। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन मिश्रा ने लॉ छात्रों से मांगी माफी, कहा अगर भावनाएं आपकी आहत हुई तो खेद, नलसार विवाद में हुआ था बवाल। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित किया, विकसित भारत के लक्ष्य को दोहराया, सप्त सिंधु से सप्त धरा मंत्र पीएम ने दिया। 15 अगस्त का कार्यक्रम एक और मायने में विशेष रहा, पहली बार वंदे मातरम की धुन सुनाई दी, लेकिन इस पर दिल्ली में राजनीति भी देखने को मिली।
1: कांग्रेस दफ्तर में वंदे मातरम के दौरान सोनिया गांधी के इशारा करने की इन तस्वीरों पर बीजेपी सवाल पूछ रही है। बीजेपी इसे वंदे मातरम का अपमान बता रही है।
2: एक बहुत विचित्र, विडंबनापूर्ण और दुर्भाग्यपूर्ण दृश्य देखने को मिला जब कांग्रेस कार्यालय में वंदे मातरम गीत गाया जा रहा था। उस समय कांग्रेस की सुप्रीम लीडर सोनिया गांधी जी, सुपर अध्यक्ष राहुल गांधी जी और सिटिंग अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी बहुत ही विचित्र और आपत्तिजनक तरीके से असम्मान व्यक्त करते हुए एक दूसरे से बातचीत करते हुए नजर आए, किसी को बुलाते हुए नजर आए, और कोई व्यक्ति आकर उनसे कुछ बता भी रहा था और एक दूसरे को इशारे कर रहे थे। यह राष्ट्रगीत वंदे मातरम के प्रति उनका अपमान है।
1: बीजेपी के सवालों पर कांग्रेस का जवाब आया, इशारों के पीछे की वजह बताई गई।
3: आज यहाँ इंदिरा भवन में पूरा वंदे मातरम गाया गया, इसमें कोई वाद विवाद का सवाल नहीं उठता, कोई रोकने का प्रयास नहीं था, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस अध्यक्ष खड़े हुए थे, सोनिया जी कह रही थी उनके लिए कुर्सी लाके रख दो, बस कोई नहीं था।
1: वंदे मातरम पर यह घमासान उस वक्त शुरू हुआ है जब वंदे मातरम के पूर्ण संस्करण को हाल ही में राष्ट्रगान के समान कानूनी संरक्षण दिया गया है। 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्र के नाम संबोधन से पहले और उसके समापन पर भी वंदे मातरम बजाया गया था। वहीं आज पहली बार लाल किले में भी राष्ट्रगान से पहले वंदे मातरम गाया गया। संसद में वंदे मातरम बिल पारित के बाद अब 15 अगस्त पर इसके घमासान की पहली सियासी किश्त सामने आई है।
4: आजादी के बाद 15 अगस्त को लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं तो इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
1: आज तक ब्यूरो।
0: पीएम मोदी ने अपने भाषण में दिमागी नक्सल, महिला आरक्षण जैसे मुद्दों का उल्लेख किया जिस पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है।
5: Let's go!
1: लाल किले की प्राचीर से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्वजारोहण किया तो साथ में महिला सैन्य अधिकारी नजर आईं और पीएम ने भाषण में महिला आरक्षण पर विपक्ष से साथ आने की अपील की।
4: मैं देश के सभी राजनीतिक दलों से आज लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे की छाया में खड़े होकर के प्रार्थना करता हूं, आग्रह करता हूं, आइए उन महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनिए, उन महिलाओं के सम्मान में आगे आइए और जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, वे भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है।
1: पीएम की महिला आरक्षण को लेकर इस अपील पर कांग्रेस सरकार से सवाल पूछ रही है।
5: कानून बन चुका है, राहुल गांधी जी बार बार यही तो कहते हैं जब कानून बन चुका है लागू क्यों नहीं करो आप लोग। अब वो सपना देख रहे हैं, हम तो 800 संख्या बढ़ाएंगे पहले पार्लियामेंट के अंदर, असेंबली में बढ़ाएंगे, इसके मायने की परिसमन अपने हाथ में ले लेंगे।
6: महिला आरक्षण को लगातार दोयम दर्जा देने के लिए, पीछे धकेलने के लिए यदि कोई जिम्मेदार है तो स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2023 में जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया तो उसको दो शर्तों की बैसाखी पर खड़ा करने वाला कौन था? परिसीमन और जनगणना से जोड़ने वाला कौन था? वो प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार थी।
1: उधर पीएम मोदी ने नक्सल के सफाए का जिक्र किया तो वहीं दिमागी नक्सल से लड़ाई की बात कही।
4: हथियारी नक्सल तो गए लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा।
7: पहले भी जिनको जमीनी नक्सल कहा फिर उन्हीं किसानों की बात माननी पड़ी, नौजवानों को नक्सल कहा फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ा, तो पहले तो ये हाथ पांव मारते हैं नक्सल नक्सल नक्सल और उसके बाद उनकी बात मान लेते हैं।
8: पहले तो दिमागी नक्सल की परिभाषा बताओ, क्या दिमागी नक्सल की क्या परिभाषा होती, किसे आप दिमागी नक्सल करेंगे? ये तो एक आपने मुहावरा बना दिया, हर व्यक्ति दिमागी नक्सल हो सकता, तो ये कहना अपने आप में मुझे लगता है तमाम उन युवाओं का अपमान है।
1: इस बीच एक सियासत, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के लाल किले के कार्यक्रम में ना शामिल होने को लेकर भी हो रही है। लगातार दूसरे साल कांग्रेस के बड़े नेताओं ने इस अहम सरकारी कार्यक्रम से दूरी बनाए रखी। राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समारोह में नहीं पहुंचे। 2024 को 15 अगस्त के कार्यक्रम में राहुल गांधी की सीट को लेकर विवाद हुआ था, जहां राहुल गांधी पीछे की सीट पर बैठे थे। ऐसे में राहुल के नदारद होने को एक बार फिर सीट अरेंजमेंट के विवाद से जोड़ा जा रहा है। आज तक ब्यूरो।
0: लाल किले से पीएम मोदी ने जेन जी हो या जेन अल्फा सबके लिए सौगात का ऐलान किया। एआई ट्रेनिंग को लेकर भी बड़ा ऐलान किया।

0: मेरे प्यारे देशवासियों, डिफेंस में आत्मनिर्भर होना अब भारत ने अनुभव कर लिया, दुनिया ने अनुभव कर लिया है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे। हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है।
1: लाल किले की प्राचीर से आज तिरंगा सिर्फ आसमान में नहीं लहरा रहा था, भारत के भविष्य की तस्वीर भी सामने रखी जा रही थी और उस तस्वीर के केंद्र में था भारत का युवा। प्रधानमंत्री ने साफ संदेश दिया, भारत की अगली उड़ान का इंजन युवा होगा।
0: जब मैं विकसित भारत की बात कर रहा हूँ, देश को तेज गति से आगे बढ़ाने की बात कर रहा हूँ, उसका सबसे बड़ा लाभार्थी कौन है? इन सारे प्रयासों का सबसे बड़ा साधक कौन है? अगर साधक है तो मेरे देश का युवा है, मेरे देश की युवा शक्ति है। विकसित भारत की यात्रा में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। इतना ही नहीं, विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी मेरे देश का युवा है और इसलिए हमें विकसित भारत के लक्ष्य को युवाओं के साथ जोड़ करके आगे बढ़ाना है। ऊंचे
1: होने जेन जी हो या जेन अल्फा, संदेश साफ था, भारत का भविष्य सिर्फ युवाओं के लिए नहीं, युवाओं के हाथों से बनेगा। आत्मनिर्भर भारत, युवा शक्ति, तकनीक, राष्ट्रीय सुरक्षा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की ताकत और भविष्य का खाका खींचा। 1 करोड़ युवाओं को AI ट्रेनिंग, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग, 5 से 15 साल के बच्चों के लिए स्पोर्ट्स टैलेंट हंट, स्टार्टअप और इनोवेशन को बढ़ावा, मैन्युफैक्चरिंग में रोजगार के नए अवसर, सेमीकंडक्टर से लेकर डिफेंस तक आत्मनिर्भर युवा शक्ति। हालांकि विपक्ष पूछता है AI की ट्रेनिंग के साथ रोजगार कितना बढ़ेगा, फ्री कोचिंग के साथ परीक्षा व्यवस्था कितनी पारदर्शी होगी, टैलेंट हंट के साथ खेलों में अवसर कितने बढ़ेंगे और क्या युवा की आवाज सिर्फ चुनाव के समय सुनी जाएगी?
2: प्रधानमंत्री जी का सवालों का जवाब

0: लोकसभा में हो, राज्यसभा में हो, हमने जो सवाल उठाए वो विद्यार्थियों के सवाल थे। मैं पूछता हूं मेरे दोस्त, अगर तुम पार्लियामेंट में आते क्या तुम्हारा उम्र कम होने वाली थी? क्या तुम्हारी पार्टी घटने वाली थी?
1: इसी बेचैनी के बीच बाबा रामदेव ने भी सरकारी भर्तियों में भ्रष्टाचार और युवाओं के असंतोष का मुद्दा उठाया। उन्होंने चेतावनी दी कि व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो युवाओं का आंदोलन फिर तेज हो सकता है।
2: चारों तरफ देश में हंगामा है, छोटे छोटे स्कूल कॉलेजों से बच्चे निकल रहे हैं कि हमारे यहाँ टीचर नहीं है, हमारे यहाँ लाइट नहीं है, हमारे यहाँ पानी नहीं है, हमारे यहाँ शौचालय नहीं है, हमारे यहाँ टीचर है तो किताबें नहीं है, किताबें हैं तो टीचर नहीं है, और टीचर है तो पढ़ाई में नकल हो जाती है, कहीं पेपर लीक हो जाता है। ऐसे ही आंदोलन करना पड़ा तो देश कैसे चलेगा? इसलिए भाई सुधर जाओ, नहीं तो देश में आंदोलन और ज्यादा भी हो सकते हैं। आंदोलन के नाम पर मैं अराजकता अनार्की का समर्थक नहीं हूं, लेकिन भाई ये बात तो जरूर है देश में घपला भी बहुत है, ये घपले ठीक कर लो, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि बाबा रामदेव को दोबारा आंदोलन करना पड़े।
1: प्रधानमंत्री ने युवाओं से 2047 का निर्माता बनने का आह्वान किया है, क्योंकि आज का युवा कल का नागरिक नहीं, आज के भारत का सबसे बड़ा निर्माता है। आज तक ब्यूरो।
3: जेन जी वोटर्स पर अचानक से हर पार्टी का फोकस बढ़ गया। जंतर मंतर प्रदर्शन के बाद यूपी चुनाव जेन जी की पहली प्रयोगशाला बनने जा रहा है, और इसीलिए युवाओं को अपने पाले में करने के लिए पार्टियां हर तरह के और तरह तरह के हथकंडे अपना रही हैं।
4: जंतर मंतर आंदोलन की इन तस्वीरों ने देश की सियासत की रणनीति को और नए सिरे से गढ़ने पर हर पार्टी को मजबूर कर दिया है। धर्म और जाति के समीकरण पर अब जेन जी की इक्वेशन भारी नजर आ रही है। जेन जी पर जारी घमासान के बाद अब पहली बड़ी परीक्षा यूपी का विधानसभा चुनाव है, जहां सबकी नजरें इस बात पर है कि क्या रील और सोशल मीडिया पर दिख रही तस्वीर मतदान में तब्दील होगी। लेकिन इसे लेकर कोई पार्टी जोखिम नहीं लेना चाहती, और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जेन जी की इस ताकत को समझ रहे हैं, जिसकी एक तस्वीर उनके आज 15 अगस्त के भाषण में भी देखने को मिली।
5: जेन जी और जेन अल्फा के लिए एआई, मशीन लर्निंग, सेमीकंडक्टर, स्टार्टअप इकोसिस्टम, डेटा सेंटर, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, साइबर, रोबोटिक, इलेक्ट्रिक व्हीकल, एग्रीटेक, फिनटेक, डीप टेक, मेडटेक जैसे क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश ने तेजी के साथ जो कार्य आगे बढ़ाया है उसमें निवेश, नवाचार और एम्प्लॉयमेंट के नए नए द्वार खुल रहे हैं।
4: योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में पेपर लीक जैसे मुद्दों का जिक्र किया और छात्रों का भरोसा जीतने की कोशिश की।
5: स्वाधीनता दिवस के अवसर पर मैं प्रदेश के युवाओं से कहना चाहता हूं, आपकी प्रतिभा से ही यूपी की शक्ति निहित है। हमारी सरकार ने नकल माफिया, भर्ती माफिया के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की है। हम अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को डेवलपमेंट इंजन के रूप में बदल रहे हैं।
6: यूपी के अंदर बहुत शीघ्र युवा नीति लेकर के आ रहे हैं।
4: यूपी चुनाव के लिए फोकस पूरी तरह से युवा मतदाताओं पर केंद्रित हो चुका है, जिसकी तस्वीरें ग्राउंड से भी नजर आ रही हैं। यूपी सरकार के तमाम बड़े मंत्री ऐसे ही स्कूल कॉलेजों में पहुंचकर सीधा युवाओं से संवाद कर रहे हैं। बीजेपी की सरकार सीधे युवाओं के मन की बात टटोल रही है, इसीलिए मंत्री अपने अपने क्षेत्रों में जेन जी चौपाले लगा रहे हैं। और मैं सारे इस अभियान के तहत विधानसभा बार 10-10 युवाओं की टीमें तैयार की जा रही है। टीम के सदस्य स्कूल कॉलेजों के युवाओं से बातचीत कर उनकी समस्याओं, अपेक्षाओं और सरकार को लेकर उनकी राय जानेंगे। टीम उन्हें सरकार की ओर से युवाओं के लिए शुरू की गई योजनाओं, रोजगार कार्यक्रम की जानकारी देगी, विधानसभा स्तर पर गठित होने वाले कार्यक्रमों और संवाद की जिम्मेदारी दी जाएगी। ये अभियान शुरू भी हो चुका है। कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे ने रायबरेली में बड़े

0: स्तर पर युवाओं से संपर्क साधा, उनसे बातचीत की, उनकी समस्याएं सुनी।
1: आपके क्षेत्र में कार्यक्रम था तिरंगा यात्रा से लेकर युवा संवाद।
2: जी, आप देख रहे हैं जिस तरीके से आज युवा संवाद कार्यक्रम यहाँ रखा गया, कई हजार यूथ आज इस युवा संवाद में शामिल हुए और ये उनसे सीधे संवाद हुआ। उन्होंने अपनी भावनाएं भी बताई, अपनी दिक्कतों को भी बताई और उन्होंने सराहना भी किया भारत के प्रधानमंत्री जी के कार्यों के और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के। ये यूथ हमारा भविष्य है, ये हमारे कल हैं और इन यूथ के साथ संवाद होना जरूरी है। इनसे जब कम्युनिकेशन गैप रहता है तो बहुत सारी चीजें रह जाती हैं। इनसे लगातार हम सबका संवाद रहेगा और इनकी बहुत महत्वपूर्ण चीजें भी हम सबको जानकारी में आई है, जिसको हम लोग आगे धीरे धीरे करके उसे भी ठीक करने का भी काम करेंगे।
0: बीजेपी का टारगेट यही लगता है कि 2027 के चुनाव में युवाओं के तमाम वोट्स पर कब्जा हो, इसीलिए सीधे मुख्यमंत्री भी सक्रिय हैं, लगातार युवाओं की बात कर रहे हैं।
3: हमारा युवा प्रतिभाशाली है, हमारा युवा ऊर्जा का प्रतीक है, हमारा युवा देश की हर चुनौती का सामना करने की सामर्थ्य रखता है और उस सामर्थ्य के प्रतीक इस युवा ऊर्जा को आगे बढ़ने के लिए एक उचित प्लेटफॉर्म प्राप्त हो, वो अपने परंपरागत पाठ्यक्रम के साथ साथ देश और समाज की उन चुनौतियों का भी सामना करने के लिए अपने आप को तैयार कर सके।
0: यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सरकारी कोचिंग में आईएएस और पीएससी की तैयारी करने वालों की कलेक्टर और कप्तान की क्लास होगी। नीट की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए मुफ्त में डॉक्टरों की क्लास होगी। आईटी की तैयारी करने वालों को आईटीएन अफसर पढ़ाएंगे। बैंक पीओ की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए सरकारी बैंक के मैनेजर मार्गदर्शन करेंगे।
4: यूपी के अंदर बहुत शीघ्र युवा नीति लेकर के आ रहे हैं। हर जिले के अंदर, हर महाविद्यालय के अंदर, हर विश्वविद्यालय के अंदर युवा के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था। आपको प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करनी हो, आपको आपके महाविद्यालय विश्वविद्यालय में हम वर्चुअल भी और फिजिकल भी वहां क्लास की व्यवस्था रहेगी। और पढ़ाने वाले कौन होंगे? पढ़ाने वाला होगा वहां का डीएम भी एक घंटा देगा, एसपी एक घंटा देगा, क्योंकि इन्होंने यूपीएससी क्लियर किया।
0: बीजेपी के अलावा समाजवादी पार्टी की भी युवाओं को लेकर अपनी तैयारी है। समाजवादी पार्टी ने भी चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। सबसे पहला काम सर्वे से शुरू हो रहा है, वहां भी जीताऊ प्रत्याशी खोजे जा रहे हैं।
5: यूपी चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने बूथ स्तर से लेकर विधानसभा सीट्स तक अपनी तैयारी शुरू कर दी और इसी के चलते कुल मिलाकर पार्टी 3 सर्वे करा रही है। सूत्रों के मुताबिक 2 सर्वे एक प्राइवेट एजेंसीज के द्वारा किए जा रहे हैं तो तीसरा सर्वे संगठन के द्वारा किया जा रहा है। आकलन ये करना है हर बूथ पर, हर विधानसभा पर कौन उम्मीदवार है जो जिताऊ हो सकता है, कौन उम्मीदवार है जो जातीय समीकरणों को साध सकता है। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी को लगता है कि सर्वे के जरिए हर बूथ के, हर विधानसभा के एक फ्रेश जातीय आंकड़े सामने आ सकते हैं। यूं तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से या डेटा के जरिए जातीय आंकड़े मिल जाते हैं, लेकिन सपा को ऐसा लगता है कि अपने स्तर पर भी जातीय आंकड़े निकालने चाहिए, क्योंकि कई ऐसे विधानसभा सीट्स हैं जहां पर सपा को कुछ चौंकाने वाले जातीय आंकड़े मिले हैं जो पेपर्स पर कुछ और थे लेकिन जमीन पर सर्वे में कुछ और सामने आए हैं। और इसी के चलते 2 एजेंसीज और संगठनात्मक तौर पर समाजवादी पार्टी के यूथ विंग्स मिलकर ये सर्वे कर रहे हैं। सर्वे अलग है लेकिन एक तरीके से माहौल एक है कि विधानसभा में जिताऊ कैंडिडेट हो जिससे सही उम्मीदवार चुना जा सके और चुनाव जीता जा सके।
0: समाजवादी पार्टी तो इसी दावे पर है कि उनके पास तो युवाओं के सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव मौजूद हैं, जिनकी युवाओं में पहुंच भी है और पकड़ भी।
5: बीजेपी एक प्लानिंग के तहत अब जो है उनकी जो यूथ विंग है उनको जिम्मेदारी दे रही है कि स्कूल कॉलेजेस में जाएं। यूपी सरकार के तमाम मंत्री भी अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में ये काम करने वाले हैं, जैसे कि मनोज पांडे आज रायबरेली से कर रहे हैं, वो युवाओं का सम्मेलन कर रहे हैं, युवाओं से मिलेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे। तमाम अन्य मंत्री भी प्लान आउट कर रहे हैं। तो ये जेन जी कितना बड़ा वोटर एकदम से यूपी में हो गया है?
6: देखिए जो भारतीय जनता पार्टी अब कर रही है, समाजवादी पार्टी तो नौजवानों की पार्टी रही है और सबसे ज्यादा यंग मिनिस्टर्स और यंग लोगों को चुनाव लड़ने का मौका या यंग लोगों की बात अगर किसी ने सबसे ज्यादा की है तो वो समाजवादी पार्टी के संस्थापक आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, श्रद्धेय नेताजी ने की थी और अब उसी मशाल को आगे लेकर के आदरणीय अखिलेश यादव जी चल रहे हैं और लगातार जिन जेंजीज की बात आज सरकार जागी है।
7: हमारे देश की राजनीतिक पार्टियों को अचानक से अब युवा वोटर्स की याद आने लगी है, लेकिन सवाल यह है कि युवाओं के वोट तो हर पार्टी को चाहिए, लेकिन उनकी भागीदारी कितनी है और क्या युवा वोटर सरकारों को गिराने और बनाने का दम रखते हैं? इसका पहला टेस्ट उत्तर प्रदेश में होगा।
8: जेन जी के इस फोर्स की राजनीतिक ताकत पूरे देश ने देखी और सरकारों ने महसूस की। दिल्ली से लेकर झारखंड तक युवाओं की ताकत का अनुमान इस देश के हुक्मरानों को हो चुका है, इसीलिए अब राजनीतिक पार्टियों के एजेंडे पर यही जेन जी है। और जेन जी की ताकत का पहला इम्तिहान होने वाला है उत्तर प्रदेश में, जहां सबसे पहले चुनाव होंगे। वैसे तो राजनीतिक दलों के एजेंडे पर हमेशा से ही युवा रहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान की राजनीतिक पार्टियों में युवाओं की भूमिका एक वोटर से ज्यादा कुछ नहीं रहती। लेकिन अब ऐसा लगता है कि मौजूदा आंदोलन के बाद इन पार्टियों में जेन जी को बड़ी जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं, इसीलिए सारी पार्टियों का फोकस इस वक्त इसी युवा वोटर पर है।
9: उत्तर प्रदेश की सभी राजनीतिक पार्टियों को समझ में आ गया है कि आखिर जेन जी की ताकत क्या है। खासकर दिल्ली के जंतर मंतर में हुए प्रोटेस्ट के बाद ये बात साफ हो गई है कि जेन जी को खुश रखना जरूरी है। जिस पार्टी के नेता ये कहते थे कि कितना भी बड़ी बात हो जाए हम अपने मंत्री का इस्तीफा नहीं कराते हैं, उसी पार्टी के नेताओं को धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कराना पड़ा है। अगला चुनाव उत्तर प्रदेश का है, इसलिए सभी राजनीतिक दल जानते हैं कि जेन जी एक बेहद अहम वोट है और इसीलिए उसको महत्व देना भी जरूरी है। नतीजा जेन जी चौपाल, जेन जी तिरंगा यात्रा और जेन जी के बीच जाकर बातें करना, परेशानियां समझना।
8: उत्तर प्रदेश में हर पार्टी जेन जी पर जोर लगा रही है। बीजेपी ने मंत्रियों की जेन जी चौपाल लगाई है। समाजवादी पार्टी चुनावों के लिए युवाओं का सर्वे करवा रही है। बीएसपी ने ऐलान किया है कि वो युवाओं को प्रत्याशी बनाएंगे। कांग्रेस के राहुल गांधी तो लगातार छात्रों के मुद्दों को उठा ही रहे हैं और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि यूपी में जेन जी एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल फोर्स है। जेन जी का मतलब हुआ 1997 से 2012 के बीच पैदा हुई जनरेशन। इस हिसाब से 14 से 29 साल के लोग जेन जी हुए, लेकिन भारत में मतदान की उम्र 18 साल है, तो उत्तर प्रदेश में 18 से 29 साल के युवा वोटर्स की संख्या करीब 21.19% है, जो बनते हैं करीब 3,27,00,000। अब अगर इतनी बड़ी संख्या में जेन जी वोटर होंगे तो राजनीतिक दल तो जोर लगाएंगे ही, मतलब कि अगर जेन जी किसी एक पार्टी को तय कर ले तो उसका चुनाव जीतना तय है और इसी फोर्स को उत्तर प्रदेश की पार्टियां अच्छे से समझ रही हैं। इसीलिए आज बीएसपी ने भी युवाओं के लिए बड़े बड़े ऐलान किए हैं। बीएसपी का कहना है कि आने वाले चुनावों में वो प्रत्याशियों के चयन में युवाओं को प्राथमिकता देगी। जालौन की माधोगढ़ सीट से बसपा ने आशीष पांडे को अपना पहला प्रत्याशी घोषित किया है, जो पार्टी के युवा चेहरों में शामिल है। बीएसपी की रणनीति, संगठन, सोशल मीडिया और चुनावी मैदान तीनों स्तरों पर युवा नेतृत्व को आगे लाने की है। पार्टी को उम्मीद है कि जेन जी और युवा मतदाताओं के बीच सक्रियता बढ़ाकर वो 2027 के विधानसभा चुनाव में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत कर सकती है। मायावती ने अपने भतीजे और राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद को जेन जी की नब्ज टटोलने की जिम्मेदारी दी है। हालांकि आकाश खुद जेन जी नहीं है, 32 साल के हैं, युवा हैं। युवाओं की तासीर और उनके मुद्दों को कितना समझते हैं ये पता नहीं, लेकिन बीएसपी को सोशल मीडिया पर सक्रिय रखने की जिम्मेदारी भी आकाश आनंद की टीम संभाल रही है। हाथरस के सादाबाद में आकाश ने अपनी चुनावी तैयारियां भी दिखा दी और यहां से युवाओं को संदेश भी दिया।
10: हमारे समाज के बच्चे अगर पढ़ गए तो अपने अधिकारों के लिए लड़ना खड़े हो जाएंगे, लड़ेंगे अपने अधिकारों के लिए। तो जैसे आपने देखा था अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में, हमारी जनरेशन के बच्चे अपने अधिकारों के लिए लड़े, वैसे ही हमारे समाज के बच्चे प्रदेश के कोने कोने में चौराहे चौराहे पर इनसे सवाल करेंगे, आरक्षण के लिए, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए और लॉ एंड ऑर्डर के लिए, रोजगार के लिए, तब इनके लिए जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। साथियों, जो सरकार स्कूल बंद कर दे, जो सरकार आपके स्कूलों में पढ़ने वाले टीचरों की भर्ती ना करे, क्या वो सरकार लायक है आपके प्रदेश में सत्ता में रहने के लिए?
9: ये भी उठता है कि आखिर एकदम से उत्तर प्रदेश की राजनीतिक पार्टियों को जेंजी की याद क्यों आई? क्या अगर दिल्ली में या रांची में ये प्रदर्शन ना हुए होते तो राजनीतिक दल यूपी के जेंजीज को इतना महत्व दे रहे होते? क्या यही मंत्री जगह जगह जाकर चौपाले कर रहे होते, या फिर यूपी सरकार नई युवा नीति की बात भी कर रही होती है, ऐसा कोई ऑर्डर भी आने वाला होता? बड़ी बात तो ये है, यूपी में जेंजी एक बड़ा वोटर है जो चुनाव के नतीजों में बदलाव भी कर सकता है, लेकिन कभी भी विधानसभा चुनावों में उनके हक के मुताबिक उन्हें टिकट नहीं मिले। अब दिलचस्प होगा देखना इस यूपी चुनाव में क्या सियासी गणित बदलती है और जेंजी को उनका हक मिलता है।
8: आंकड़े तो यही बता रहे हैं कि राजनीतिक दलों को युवाओं के वोट तो चाहिए, लेकिन उन्हें हिस्सेदारी नहीं देनी है। कुल 543 लोकसभा सांसदों में से सिर्फ 6 सांसद ही जेंजी हैं। पूरे देश में कुल 4131 विधायक हैं और पूरे देश भर में सिर्फ 20 जेंजी विधायक हैं। हालांकि ये भी एक फैक्ट है कि 2022 के बाद ही जेंजी चुनाव लड़ने की उम्र में आए, लेकिन 2022 से भी इस देश में बहुत से चुनाव हुए हैं। सबसे ज्यादा जेंजी विधायक तमिलनाडु में है, 4, इनमें से 3 टीवीके के हैं और 1 एडीएमके के। पश्चिम बंगाल में 3 जेंजी विधायक।
7: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

0: से पीएम मोदी के दिमागी नक्सल के उल्लेख पर सुलगी राजनीति, कहा अवसर की तलाश में ऐसे लोग। कांग्रेस का पलटवार, पहले किसानों और युवाओं को प्रधानमंत्री ने कहा था नक्सली। वंदे मातरम पर छिड़ी नई जंग, बीजेपी का आरोप। कांग्रेस मुख्यालय में सोनिया और खड़गे ने किया राष्ट्रगीत का अपमान, कांग्रेस का जवाब, ऐसी कोई कोशिश नहीं। अटारी बॉर्डर पर जोश जुनून जज्बे का रंग, बीएसएफ ने जश्न आजादी की हुंकार भरी, तिरंगे में रंगी दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा। रांची में छात्रों की चेतावनी, मांगे पूरी नहीं तो 20 को करेंगे सीएम के घर का घेराव। परीक्षा में गड़बड़ी की सीबीआई जांच, आज राहुल और सोरेन का करेंगे पुतला दहन। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन मिश्रा ने लॉ छात्रों से मांगी माफी, कहा अगर भावनाएं आपकी आहत हुई तो खेद, नलसार विवाद में हुआ था बवाल। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित किया, विकसित भारत के लक्ष्य को दोहराया, सप्त सिंधु से सप्त धरा मंत्र पीएम ने दिया। 15 अगस्त का कार्यक्रम एक और मायने में विशेष रहा, पहली बार वंदे मातरम की धुन सुनाई दी, लेकिन इस पर दिल्ली में राजनीति भी देखने को मिली।
1: कांग्रेस दफ्तर में वंदे मातरम के दौरान सोनिया गांधी के इशारा करने की इन तस्वीरों पर बीजेपी सवाल पूछ रही है। बीजेपी इसे वंदे मातरम का अपमान बता रही है।
2: एक बहुत विचित्र, विडंबनापूर्ण और दुर्भाग्यपूर्ण दृश्य देखने को मिला जब कांग्रेस कार्यालय में वंदे मातरम गीत गाया जा रहा था। उस समय कांग्रेस की सुप्रीम लीडर सोनिया गांधी जी, सुपर अध्यक्ष राहुल गांधी जी और सिटिंग अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी बहुत ही विचित्र और आपत्तिजनक तरीके से असम्मान व्यक्त करते हुए एक दूसरे से बातचीत करते हुए नजर आए, किसी को बुलाते हुए नजर आए, और कोई व्यक्ति आकर उनसे कुछ बता भी रहा था और एक दूसरे को इशारे कर रहे थे। यह राष्ट्रगीत वंदे मातरम के प्रति उनका अपमान है।
1: बीजेपी के सवालों पर कांग्रेस का जवाब आया, इशारों के पीछे की वजह बताई गई।
3: आज यहाँ इंदिरा भवन में पूरा वंदे मातरम गाया गया, इसमें कोई वाद विवाद का सवाल नहीं उठता, कोई रोकने का प्रयास नहीं था, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस अध्यक्ष खड़े हुए थे, सोनिया जी कह रही थी उनके लिए कुर्सी लाके रख दो, बस कोई नहीं था।
1: वंदे मातरम पर यह घमासान उस वक्त शुरू हुआ है जब वंदे मातरम के पूर्ण संस्करण को हाल ही में राष्ट्रगान के समान कानूनी संरक्षण दिया गया है। 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्र के नाम संबोधन से पहले और उसके समापन पर भी वंदे मातरम बजाया गया था। वहीं आज पहली बार लाल किले में भी राष्ट्रगान से पहले वंदे मातरम गाया गया। संसद में वंदे मातरम बिल पारित के बाद अब 15 अगस्त पर इसके घमासान की पहली सियासी किश्त सामने आई है।
4: आजादी के बाद 15 अगस्त को लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं तो इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
1: आज तक ब्यूरो।
0: पीएम मोदी ने अपने भाषण में दिमागी नक्सल, महिला आरक्षण जैसे मुद्दों का उल्लेख किया जिस पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है।

0: लाल किले की प्राचीर से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्वजारोहण किया तो साथ में महिला सैन्य अधिकारी नजर आईं और पीएम ने भाषण में महिला आरक्षण पर विपक्ष से साथ आने की अपील की।
1: मैं देश के सभी राजनीतिक दलों से आज लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे की छाया में खड़े होकर के प्रार्थना करता हूं, आग्रह करता हूं, आइए उन महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनिए, उन महिलाओं के सम्मान में आगे आइए और जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, वे भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है।
0: पीएम की महिला आरक्षण को लेकर इस अपील पर कांग्रेस सरकार से सवाल पूछ रही है।
2: कानून बन चुका है, राहुल गांधी जी बाबा ही तो कहते हैं जब कानून बन चुका है लागू क्यों नहीं कर रहे आप लोग। अब वो सपना देख रहे हैं, हम तो 800 संख्या बढ़ाएंगे पहले पार्लियामेंट के अंदर, असेंबली में बढ़ाएंगे, इसके मायने की परिसमन अपने हाथ में ले लेंगे।
3: महिला आरक्षण को लगातार दोयम दर्जा देने के लिए, पीछे धकेलने के लिए यदि कोई जिम्मेदार है तो स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2023 में जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया तो उसको दो शर्तों की बैसाखी पर खड़ा करने वाला कौन था? परिसीमन और जनगणना से जोड़ने वाला कौन था? वो प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार थी।
0: उधर पीएम मोदी ने नक्सल के सफाए का जिक्र किया तो वहीं दिमागी नक्सल से लड़ाई की बात कही।
1: हथियारी नक्सल तो गए लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा।
4: पहले भी जिनको जमीनी नक्सल कहा फिर उन्हीं किसानों की बात माननी पड़ी, नौजवानों को नक्सल कहा फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ा। तो पहले तो ये हाथ पांव मारते हैं, नक्सल नक्सल नक्सल, और उसके बाद उनकी बात मान लेते हैं। पहले तो